कि ये हर एक टीचर जो बाप की आशाएं हैं, जो बाप चाहते हैं, वह प्रत्यक्ष करने और कराने वाली है। इसलिए एक एक टीचर को बाप दादा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों को देखकर बाबा कहते हैं, डबल विदेशी भी बाप दादा ने देखा, सेवा में भारत की आत्माओं से कम नहीं है। बाप दादा खुश होते हैं कि हर एक अपने अपने स्थान में सेवा की वृद्धि भी कर रहे हैं और स्वयं को भी अच्छे उमंग उत्साह में चला रहे हैं। डबल विदेशियों का ये संस्कार है कि जो करेंगे वह उमंग उत्साह से करके पूरा करेंगे और पुरुषार्थ के तरफ भी अटेंशन है, सेवा और पुरुषार्थ दोनों के तरफ अटेंशन है। तो सभी हाथ उठाओ कि सभी तीव्र पुरुषार्थी है, तीव्र पुरुषार्थी है। अच्छा, सबके तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक है। क्यों क्यों बाबा ने मुबारक दी? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात बाप दादा को पूर्ण प्रैक्टिकल करने वाले। तो बाप दादा तीव्र पुरुषार्थ की मुबारक दे रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी है और सदा तीव्र पुरुषार्थी बन औरों को भी तीव्र पुरुषार्थी बनाएंगे। तो सारा विदेश तीव्र पुरुषार्थी के लिस्ट में आ जाए, ऐसा रिकॉर्ड कुछ है और कुछ दिखाना है। ऐसा रिकॉर्ड कुछ है तीव्र पुरुषार्थी का और कुछ दिखाना है, लेकिन बाप दादा पुरुषार्थ की मुबारक दे रहे हैं। मुरली के ऊपर भी अटेंशन है, ये बाप दादा को मुरली कसने अच्छा लगता है। मधुबन से भी प्यार, मुरली से भी प्यार, परिवार से भी प्यार और मेरा बाबा से भी प्यार। अभी सूक्ष्म पुरुषार्थ के तरफ भी अटेंशन अच्छा है और बाप दादा ने देखा कि जनक बच्चे का भी बहुत ध्यान है। विदेश के ऊपर जनक बच्चे का भी बहुत ध्यान है, यानी जनक की दादी जी का बहुत ध्यान रहता है। यहां रहते भी हर क्लास पहले फॉरेन को पहुंचता है, तो पालना भी अच्छी मिल रही है। यह भी आपका लक है, बाबा कहते यह भी विदेशी भाई बहनों का लक है। लकीएस्ट और स्वीटेस्ट दोनों ही है। अच्छा, फिर पहली बारी आने वाले को भी बाबा मिलते हैं और कहते हैं ये तो बहुत है, हाथ हिलाओ। पहली बारी जो आए हैं, बाबा कहते बहुत है, हाथ हिलाओ। तो सभी अपने मधुबन घर में पधारे हैं, उसकी बाप दादा एक एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट समय के पहले पहुंच गए हो, लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है। बाप दादा बच्चों को देख खुश हो रहे हैं, आए भले पधारे और आगे के लिए अब तीव्र पुरुषार्थ कर आगे से भी आगे जाने का दृढ़ संकल्प करो। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो बाप दादा जो भी आज बच्चे आए हैं, उनको विशेष दृढ़ता के चाबी की सौगात दे रहे हैं। दृढ़ता को कभी भी हल्का नहीं करना। दृढ़ता आपको सहज आगे बढ़ाती रहेगी। तो बाप दादा खुश है, भले पधारे, अपना वर्षा लेने के लिए आए, उसकी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मणों को बाप दादा दिल का प्यार और सदा आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प दे रहे हैं। एक एक बच्चे को बाप देख भी रहे हैं और देख देख दिल में समा रहे हैं। नजदीक वाले तो बाप दादा को सामने देख रहे हैं और आप सब साधन द्वारा सामने ही देख रहे हो।
बाप दादा भी आप सभी को जहां भी बैठे हो तो ऐसे ही देख रहा है जैसे सन्मुख ही बैठे हैं और एक एक को दिल का प्यार दे रहे हैं। बढ़ते चलो तीव्र पुरुषार्थ कर, आगे से आगे बढ़ते चलो। वरदान भी दे दिया बाबा ने, बाबा सामने देख भी रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं। अच्छा, सन्मुख बैठने वालों को भी बाप दादा का याद प्यार और सदा आगे बढ़ने की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूरत भव। हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूरत भव। जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखते लेकिन उन्हें स्वरूप में लाते हैं, वह ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं। जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे वही पॉइंट रूप में स्थित हो सकेंगे। पॉइंट का मनन अथवा वर्णन करना सहज है लेकिन स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना, यही है सबूत देना अर्थात सपूत व साक्षात्कार मूरत बनना। आज का स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। आज का व्यक्ति इशारा है, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। कोई भी निर्बल आत्मा आपके सामने आए तो उस निर्बल को बल दो। सर्व शक्तियों का वर्षा जो प्राप्त किया है वह उसे दो। सर्व आत्माओं को बाप का खजाना देने वाले दाता बनो। अपनी शक्तियों द्वारा प्यासी व तड़पती हुई आत्माओं को जीवदान दो। वरदाता बन प्राप्त हुए वरदानों द्वारा उन्हें भी बाप के समीप संबंध में लाओ। यहाँ के दातापन के संस्कारों से भविष्य में 21 जन्म तक राज्य पद प्राप्त होगा। यहाँ के दातापन के संस्कारों से भविष्य में 21 जन्मों तक राज्य पद प्राप्त होगा। अच्छा, ओम शांति।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ डांस, बट डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म, अर्थात ये जीवन को हमेशा उमंग और उत्साह के साथ जियो। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है जिसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हर पल हर क्षण हमें उमंग उत्साह में रहना है। और वो बहुत सुंदर स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। तो देखो, हमें अपने भाग्य पर कितना नशा होना चाहिए, कितना नाज होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। तो क्या हमें दुखी होना चाहिए क्या? नहीं, हर पल हर क्षण वी हैव टू डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाने वाला हूँ। सभी करेंगे डांस। इसको कहते हैं पीकॉक डांस। पीकॉक जब खुशी में होता है ना तो कितना वंडरफुल डांस करते हैं, वही डांस मैं आपको भी सिखाता हूँ। और वो कैसे करना है? वाह मेरा जीवन वाह। जब आप ये डांस करते हो तो एक तो इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, और दूसरा मन में भी जो आपको विचार मिलते हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक और मोटिवेटिंग होते हैं। तो मैं आपको एक एक बोलता रहूंगा, वैसे आप करते रहना, ठीक है? करेंगे सभी? ओके, चलिए। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे मम्मी डैडी वाह, वाह मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह। स्टूडेंट्स बहुत खुशी से कह सकते हैं वाह एग्जाम्स वाह, वाह मेरी पढ़ाई वाह, वाह ये दिन वाह, वाह वाह वाह। तालियां बजाइए। तो हर दिन सुबह उठकर ये पीकॉक डांस जरूर जरूर करना।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। दोस्तों, कहा जाता है, मत परवाह कर जो आज देते हैं ताना, मत परवाह कर जो आज देते हैं ताना, झुक जाएंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस जब आप स्टार्ट करेंगे, जब आप अच्छे कर्म करने के लिए खुद को तैयार करेंगे, तो हो सकता है कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। वो आपको ताना भी दे सकते हैं, हाँ बहुत बड़े आ गए काम करने वाले। लेकिन दोस्तों, दुनिया बदलती है, जब आप दृढ़ता से उसी मार्ग पर डटे रहेंगे, तो वो लोग आपको सर झुकाएंगे, नमन करेंगे, और तभी हमारे अंदर का देवत्व जो है वो उनके सामने आएगा। और ऐसे ही हमारे अंदर का देवत्व जागृत करने के लिए और गुडनेस की एक्ट करने के लिए और क्या करना है, इसके बारे में सुनाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी। सबसे पहले रेडियो मधुबन की तरफ से हम सब उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग।
1: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भक्ति जी, और सभी मेरे रेडियो मधुबन के श्रोतागण को बहुत बहुत सुप्रभात, शुभकामनाएं। आपने शेर तो बहुत अच्छा सुनाया
0: जी,
1: और शेर सुनने के बाद 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छी बात कही। और ये जब बात कहते हैं, तब मुझे ये लगा कि बहुत बार हम क्या करते हैं, हम दूसरों की तरफ देखते हैं। सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, अरे वाह क्या बात कही, 700 करोड़ अच्छे काम, और उसकी शुरुआत करने के लिए हम दूसरों की तरफ देखते हैं। इसलिए नजर बदलनी चाहिए और काम खुद से शुरू करना चाहिए। इसलिए ऐसे कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है।
0: वाह,
1: तो ये कमजोरी हमारी इसलिए होती है कि हम हमेशा कोई भी अच्छा काम है तो दूसरों की तरफ देखते हैं। ब्लड डोनेशन करना है, दूसरा करे, स्वच्छता करनी है, दूसरा करे, भ्रष्टाचार कम करना है, दूसरा करे, सरकार क्या कर रही है, हर तरफ हर बार हम दूसरों की तरफ देखती है, सरकार की तरफ देखती है। यह सरकार है किसकी?
0: बिल्कुल,
1: यह सरकार है किसकी? 26 जनवरी हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, गणतंत्र दिन हम धूमधाम से मनाते हैं, और फिर बोलते हैं तिरंगा लहराते हैं, और एक दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी वहां देखिए तो हर किसी का भाव, मन भाव विभोर हो जाता है, राष्ट्रभक्ति झरने लगती है
0: जी,
1: और राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होके हर कोई मन से दृढ़ संकल्प करता है, ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरा देश है, उसको मुझे आगे बढ़ाना है। लेकिन वो संकल्प हमारा टिकता है?
0: लेकिन वो संकल्प हमारा 16 अगस्त और 27 जनवरी तक भी कभी कभी नहीं टिकता। ऐसे दिखाई देता है कि उस दिन, उन दो दिनों में जो हम राष्ट्रीय त्योहार या राष्ट्रीय पर्व कहते हैं, उन दो दिनों में देशभक्ति की भावना हर दिल में जागृत होती है, लेकिन अगर 365 दिन वो जागृत रहती है,
1: ये हमें बदलना है
0: जी।
1: जागृत नहीं रहती या रहती, ये अभी हमें सोचना नहीं है, क्योंकि ठीक है उसका उत्तर है नहीं रहती। आपने जो प्रश्न पूछा कि जागृत रहती है या नहीं, उसका उत्तर शायद नहीं आ सकता है, कई लोगों का हाँ भी आ सकता
0: बिल्कुल
1: है। लेकिन मुझे ये कहना है कि अगर जागरूक के ही लोगों को लगता है नहीं है तो हम कर तो सकते हैं. कोई भी चीज मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है. देखिए हम जब स्वर्णिम भारत का सपना देखते हैं तो क्या है वो अच्छे दिन है कि नहीं. और ये अच्छे दिन अगर हमें लाने हैं तो हम किसी एक व्यक्ति के तरफ सिर्फ ना देखेंगे लेकिन हमारा भी हाथ बटाएंगे. उसमें मुझे हमेशा एक उदाहरण याद आता है श्री कृष्ण जी का. देखिए गोवर्धन पर्वत उठाना है यह संकल्प था श्री कृष्ण जी का
0: जी.
1: और बालकृष्ण थे उन्होंने संकल्प लिया गोवर्धन पर्वत उठाना है और अपने गोप गोपी जो साथी है उनको कहा कि ये गोवर्धन पर्वत उठाओ. जैसे उन्होंने संकल्प दिया तो बाकी सब गोप गोपियों ने मान लिया कि हां पर्वत उठ सकता है. किसी ने यह प्रश्न नहीं पूछा कृष्ण जी को क्या बात कर रहे हो इतना बड़ा पर्वत है वो उठेगा. कोई उनके ऊपर हंसा भी नहीं कि ये क्या बात है ऐसे थोड़े ही उठ सकता है
0: और वो भी एक उंगली से.
1: और श्री कृष्ण जी ने क्या कहा अपनी एक करांगुली है उसको लगाइए और बाकी लोगों को कहा अपनी अपनी लकड़ियां लगा दो. तो अगर हमारे यहां देश के पंत प्रधान जो है प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी जो है वो अगर संकल्प करते हैं कि हमारे भारत को मेरे भारत को फिर से अच्छे दिन लाना है तो कम से कम मेरी एक संकल्प की लकड़ी तो वहां लगे.
0: बिल्कुल सही कहा आपने.
1: एक मेरा अच्छा काम जो एक्ट ऑफ गुडनेस 7 बिलियन एक्ट ऑफ गुडनेस मैं तो बोलता हूं सब मैं सिर्फ बाकी बात नहीं कर रहा हूं ये पूरे विश्व की बात कर रहा हूं. और यहां तो मोदी जी भारत को अच्छे दिन लाने की बात कर रहे हैं लेकिन सिर्फ भारत की बात नहीं है. अगर भारत को अच्छे दिन आते हैं तो इनडायरेक्टली सारे विश्व को आते हैं क्योंकि भारत जो है मेरा भारत सिर्फ महान नहीं है लेकिन भारत का जो राष्ट्रगीत है जब यह राष्ट्रगीत मैं सुनता हूं भारत भाग्य विधाता तब तो मेरे मन में आता है कि यह राष्ट्रगीत बनाते समय क्या भावना होगी. ये भारत भाग्य विधाता कैसे बन सकता है. और फिर मुझे याद आया कि सिर्फ भारत में अच्छे दिन आएंगे तो भारत के अच्छा नहीं हो भारत में अच्छे दिन आएंगे तो सिर्फ भारत का अच्छा नहीं होगा सारे विश्व का अच्छा होगा.
0: बिल्कुल. और इसीलिए ही हम कहते हैं सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्. अर्थात सर्व का भला हो सर्व सदा सुखी रहे सर्व को अच्छी काया मिले इसमें सर्व आ जाता है. ये सर्व क्या है और स्व क्या है इसके बारे में दोस्तों हमें सोचना चाहिए और उस सोच को कर्म में बदल देना चाहिए लेकिन उसके बारे में चर्चा करें एक ब्रेक के बाद.

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन, रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। सब दोस्तों का ब्रेक के बाद अमृतधारा प्रोग्राम में फिर से स्वागत है। कहा जाता है कि ईश्वर के मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम आगे बढ़ता है। इसलिए ही जब हम सर्व के प्रति अच्छी भावना रखते हैं तो ये स्व का जो अच्छा चिंतन है, स्व चिंतन जो अच्छा रहता है, तो अपने आप ही हमारे साथ वो ईश्वरीय शक्ति, वो परम शक्ति, वो श्रेष्ठ ताकत भी जरूर मिलती है। क्योंकि एक कदम हमारा 100 कदम भगवान के, ऐसे कहा जाता है। ज्ञानेश्वर जी, आपका क्या ख्याल है?
2: बिल्कुल सही कहा, एक कदम हमारा और 100 कदम भगवान के, लेकिन वो एक कदम हमारा आगे बढ़ना चाहिए।
1: कभी कभी क्या होता है कि एक कदम हमारा, ये पहला वाला चरण हम भूल जाते हैं और 100 कदम भगवान के ये ही चरण हम ध्यान में रखते हैं,
2: और इसलिए हम आंखें बंद कर देते हैं और भगवान को कहते हैं आ जाओ और बचाओ
1: जी।
2: लेकिन अगर हम एक कदम चढ़े और वो एक कदम है दृढ़ता का, वो एक कदम है संकल्पों का, हमें हर चीज को एक्सेप्ट करना है। मन से अगर एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत आता है। और इसे देखो, 700 करोड़ लोगों ने अगर ये मन में ठान लिया कि ये मैं एक, मेरा एक काम जो है, मेरा एक नेक काम, मेरा एक नेक संकल्प, मेरा एक शुभ संकल्प अगर अच्छा है तो ये विश्व परिवर्तक हो सकता है। और सिर्फ भारत में नहीं, सारे विश्व में अच्छे दिन आएंगे, सुवर्ण युग आएगा, ये संकल्प अगर मैं मन में करता हूं। आप गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इंसान हो, यही काफी है।
1: हम सब भगवान के बच्चे हैं, यही काफी है। और इसके लिए दोस्तों दृढ़ता के साथ निश्चय की भी जरूरी है। अगर हमारे पास उतना निश्चय है तो जरूर हम उस निश्चय को कर्म में ला सकते हैं, उतार सकते हैं। तो ज्ञानेश्वर जी, हमारी बात चल रही है अहिल्या के ऊपर।
2: बिल्कुल,
1: अहिल्या जो है, उस अहिल्या ने श्री रामचंद्र का पदस्पर्श होने के बाद क्या अनुभव किया होगा और इस बात से हमें प्रभु रामचंद्र क्या बताना चाहते हैं?
2: दो चीजें हैं ये रामायण की। जब अहिल्या की कथा मैं सुनता हूं या पढ़ता हूं तब मुझे दो चीजें नजर आती है। एक तो है अहिल्या सालों से, सालों तक उनका इंतजार कर रही है कि कब प्रभु रामचंद्र जी आएंगे और उनका चरण स्पर्श मुझे होगा।
1: इस बात में मुझे ऐसा लगता है ज्ञानेश्वर जी कि जब बुरी बात हमारे ऊपर आती है ना, तो छोटा सा समय भी सालों जैसा लगता है। भले अहिल्या ने सालों साल इंतजार किया भी नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आपका क्या ख्याल है, जब हमारे ऊपर कोई कड़ी परिस्थिति आती है, जब बुरी फेज या जिसको हम बैड फेज कहते हैं वो आती है, तो वो दिन जल्दी कटते नहीं है? शायद मुझे लगता है कि अहिल्या के लिए भी ऐसे ही हुआ होगा।
2: और भी एक उसमें पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम मुक्त चिंतन करते हैं। आप जैसे आपने एक सोच सामने रखी है, वैसे और एक सोच हम शेयर कर सकते हैं हमारे श्रोतागण के साथ। देखिए, हम जो युगों की संकल्पना लेके चर्चा कर रहे थे, सतयुग त्रेता युग जिसे हम स्वर्ग जैसे कहते हैं, उसके बाद एक संकल्प जो है गलत संकल्प आ गया। वो गलत संकल्प है परखने की शक्ति। अहिल्या को जो श्राप मिला था गौतम ऋषि से, वो इसलिए मिला था कि अहिल्या ने, वो इंद्रदेव जो थे वो गौतम ऋषि की भेष में घर में आए थे और अहिल्या उनको पहचान नहीं पाई वो गलती हो गई
1: जी।
2: और ये गलती की सजा जो है वो गौतम ऋषि ने उसे दी और वो पत्थर बुद्धि बन गई। उसमें मुझे बहुत सिमिलैरिटी लगती है। देखिए अहिल्या की कथा है और सीता जी की भी कथा है। अभी देखो सीता जी जब वो तो बाद में हम देखेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सीता जी भी रावण को पहचानने में परख शक्ति कम हो गई और उनको परिणाम भोगने पड़े और वो लंका में उठा के लेके गए। यहां अहिल्या का क्या हो गई, पत्थर बुद्धि बन गई। तो ये द्वापर युग जो है सतयुग और त्रेता युग तक हमारी बुद्धि पारस थी, क्या अच्छा क्या बुरा, बुरा तो था ही नहीं, जो कुछ था वो अच्छा था। फिर क्या हो गया, द्वापर में हमारे संकल्प दूषित हो गए, संकल्प पतित हो गए और धीरे धीरे धीरे हम पत्थर जैसे बनते गए। बुद्धि जो है पारस बुद्धि थी वो पत्थर बुद्धि जैसे बनते गए
1: जी।
2: फिर जैसे गौतम ऋषि ने अहिल्या जी को उस श्राप दिया, पहले श्राप दिया पत्थर बन जाओगी, फिर अहिल्या ने बताया कि ठीक है आपने श्राप दिया लेकिन कोई तो उस श्राप दो। ऐसी कथाएं जितनी हम कथाएं सुनते हैं, पहले श्राप होता है, पहले ताला होता है, फिर उसकी चाबी भी हो जाती है। वैसे वो उस श्राप जो है वो उन्होंने बताया था कि राम जी आएंगे वनवास में और फिर आपको चरण स्पर्श करेंगे और आप वापस आएगी। वैसे हमारी जो पारस बुद्धि जो थी संगम युग जो है, तब राम जो है आत्माओं का राम, वो अगर परमात्मा जो है वो हमें आके स्पर्श करता है, हमारे बुद्धि को स्पर्श करता है, तब यही पत्थर बुद्धि जो है वो पारस बुद्धि बन जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और वो भी परखने की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने उसको भी नहीं परखा तो वैसे कि वैसे हम पत्थर रह जाएंगे। और इसीलिए शायद मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि हमने पत्थरों की पूजा करना शुरू किया। और इसलिए कहा जाता है कि पत्थर एक बार मंदिर में जाता है तो मूर्ति बन जाता है, लेकिन इंसान रोज मंदिर में जाता है फिर भी पत्थर ही पत्थर रह जाता है।
2: क्योंकि मुझे ये लगता है कि पत्थर को तराशा जाता है तो फिर वो भगवान बन जाता है, और इंसान तराशने के लिए तैयार नहीं है, कोई उसको तराशता है तो वो चिल्लाते रहता है और इसलिए वो भगवान का दर्शन करने के लिए रोज मंदिर में जाता है। अगर वो खुद को तराशने की कोशिश करे, खुद को तराशना कैसे है, भले आप छिन्नी और हथौड़ा लेके मत बैठिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जैसे आप सुबह उठते हो, हमने जैसे वो श्लोक का देखा, वैसे अगर सुबह उठते हो तो आईने के सामने बैठ जाओ, आईने के सामने खड़े हो जाओ और अपना मेकअप करते रहो।
1: अच्छा, मतलब आपका ये ख्याल है कि हमारे भाई बहने सब उठने के बाद मेकअप शुरू करें। अभी अभी तो आपने कहा था कि करों का दर्शन करें, कराग्रे वसते लक्ष्मी, अभी आप मेकअप कह रहे हैं।
2: कराग्रे वसते लक्ष्मी, करों का दर्शन होने के बाद करों का काम तो होना चाहिए। वो करों का काम जो है वो मेकअप है, और वो मेकअप जो है आप सुबह उठने के बाद आईने के सामने खड़े हो जाओ। लेकिन वो जो आईना है, वो आईना कौन सा है,
1: मन का आईना है,
2: तोरा मन दर्पण कहलाए। वो मन दर्पण जो है, मन का जो आईना है, उसमें खुद को देखो और फिर हम ये देख सकते हैं कि मेरी आंखें ठीक है, मेरी आंखों में आंसू है या हांसू है, आंखों में आंसू है या मुस्कुराहट है, मेरे होठों में बोल मधुर है या कड़वे है। हर चीज हम कंपेयर कर सकते हैं, अगर ठीक नहीं है तो उसको मेकअप, मेकअप का अर्थ ही क्या है, टू मेक अप, जो कमी है वो भरनी है। अगर वो ऐसे हम मेकअप करते रहेंगे तो फिर अपने आप जो कमियां है वो भरती जाएगी।
1: बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपको यह मेकअप करने के लिए न कोई ब्यूटी पार्लर जाना है, न कोई मेकअप का सामान दुकान से अभी अभी खरीदना है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास वो सामान ऑलरेडी है। और दर्पण भी हमारा है, वो भी भगवान ने जब हमें इस धरती पर भेजा है तब दर्पण के साथ भेजा है, तो उस मन रूपी दर्पण में ये बहुत सुंदर मेकअप करते रहो, जो कभी मेक डाउन होगा ही नहीं, और इस मेकअप से खुद भी मुस्कुराओ और उनको भी मुस्कुराओ। दोस्तों अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूं ममता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
1: रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो. मेकअप भी करते रहो और मेकअप भी कराते रहो. कैसा लगता है? आपने कुछ मेकअप किया? अभी जो ब्रेक था उसमें भी मैं समझती हूँ हमारे कोई प्यारे भाई बहनों ने थोड़ा सा मेकअप जरूर किया होगा. ज्ञानेश्वर जी, हमारे भाई बहन, हमारे श्रोतागण मेकअप करके तैयार है, अभी आगे क्या करना है?
2: आगे जो करना है वो आपको करना है.
1: अच्छा,
2: देखिए, जैसे हम 7 बिलियन एक्ट्स की बात किया, हमने मेकअप की बात की, तो ये मेकअप आपने जो कहा बहुत अच्छा किया, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, हम खुद का मेकअप करने के बजाय दूसरों का मेकअप करते हैं.
1: अच्छा, दूसरों का भी मेकअप करना हमें आता है?
2: हम हमेशा दूसरों का ही मेकअप करते हैं क्योंकि कमियां दूसरों की निकालते हैं और फिर उनको ठीक करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, उनको कोसते रहते हैं और अपना मेकअप ऐसा ही रह जाता है.
1: ओह, ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी अगर हम दूसरों का मेकअप करेंगे तो. दूसरे तो अच्छे बन जाएंगे और हम तो ऐसे के ऐसे रह जाएंगे.
2: और इसलिए, और दूसरों को अलाउ भी नहीं करते हमारा मेकअप करने के लिए.
1: ओह,
2: ये जैसे देवताओं की आपने जो स्टोरी सुनाई थी बीच में, वो मुझे याद है कि देवताएं जो थे और असुर जो थे, उन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया. वो विष्णु जी के पास गए थे और उन्होंने कहा कि आप देवताओं को ज्यादा फेवर करते हो, असुरों की तरफ देखते ही नहीं हो. तो फिर विष्णु जी ने कहा कि आप एक काम करो, आप हमारे घर दोनों खाना खा के लिए आ जाओ. असुरों को भी बुलाया, देवताओं को भी बुलाया और कहा कि आपका हाथ मुड़ना नहीं चाहिए, बिना मुड़े आप खाना खा सकते हो. बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया था,
1: लेकिन शर्त भी बड़ी अजीब थी.
2: बड़ी अजीब थी. और उसके बाद में क्या हो गया?
1: उसके बाद असुरों को पहले खाने के लिए बुलाया गया और शर्त तो दोनों के लिए ही थी. जब असुरों ने उस शर्त के अनुसार खाना खाना चाहा, तब बिचारों का हाल बेहाल हो गया. इतनी भूख लगी हुई थी, इतनी भूख लगी हुई थी, सामने बहुत सुंदर 36 प्रकार का भोजन भी था, लेकिन अगर वो हाथ ही मोड़ नहीं सकते तो फिर खाएंगे कैसे? और इसीलिए आधे पेट से भूखे प्यासे वैसे ही उठ गए. और इतना ही नहीं, सारा खाना जो है वो भी बिखर गया. लेकिन जब फिर विष्णु जी ने कहा आपका हो गया है, अब देवताओं को बुलाओ, और जब देवताओं को बुलाया तब वो आमने सामने बैठे और आमने सामने बैठकर एक दूसरे को खिलाते रहे और असुर जो है वो देखते रह गए. ज्ञानेश्वर जी, मुझे लगता है कि आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दूसरों को खुद अपना मेकअप करने को अलाउ करना, ये कहानी यही बात बताती है.
2: बिल्कुल. देखिए, अगर हम हमारा खुद का मेकअप नहीं कर सकते तो हम दूसरों का करने की कोशिश करते रहते हैं, तो हमें दूसरों को भी अपना मेकअप करने के लिए अलाउ करना है.
1: मतलब ये एक इसमें अच्छाई मुझे नजर आ रही है कि अगर हम दूसरों के मेकअप करने के पीछे पड़े हुए हैं,
2: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: तो भी कोई बात नहीं.
2: सबसे बेस्ट तरीका है कि खुद का मेकअप खुद करें.
1: हाँ.
2: लेकिन हमें आदत पड़ी है कि हमें दूसरों का मेकअप करना है, तो फिर हमारा मेकअप करने के लिए दूसरों को भी हमें अलाउ करना चाहिए, परमिशन देनी चाहिए, तो फिर क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा.
1: और एक बहुत सुंदर बात मुझे मेकअप से अभी ध्यान में आई, क्योंकि एक औरत होने के नाते भले ब्यूटी पार्लर में हम नहीं गए हैं लेकिन मालूम तो सब रहता है. तो जब कोई ब्यूटिशियन मेकअप करती है, हमारी बहनें, हमारी माताएं इस बात का अनुभव ही करती होगी कि या होगा कि जब कोई हमारा मेकअप करता है तो मेकअप मन मेकअप करता है, तब हम बहुत शांति से बैठते हैं. हम उसको कोई डायरेक्शन नहीं देते, ऐसा करो वैसा करो, हम शांति से बैठते हैं और वो ब्यूटीशियन या वो मेकअप मैन जो है वो मेकअप करता है, क्योंकि ज्ञानेश्वर जी आजकल तो भाइयों को भी पार्लर्स निकले हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: ऐसे
2: बिल्कुल।
1: नहीं, पहले जमाने में तो सिर्फ बहनें जो थी वो पार्लर्स में जाती थी, आजकल हम बोर्ड देखते हैं मेंस ब्यूटी पार्लर।
2: बहुत बहुत बहुत वो सही है, और इसलिए मेकअप जो करना है, हम जो मेकअप की बात करते हैं उसलिए स्त्री हो या पुरुष हो, मेकअप करना जरूरी है, मेकअप कराना जरूरी है। और इसलिए मुझे ये कहना था कि बहुत सारी चीजें अभी तक हम जो चर्चा कर रहे हैं, तब हमारे मन में एक आता है कि हर कोई संकल्प सब अच्छा लगता है, सुनने के लिए अच्छा लगता है, भारत को भाग्य विधाता करना है, भारत को स्वर्ण भूमि बनाना है, सब कोई ठीक लगता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये इतना मुश्किल काम है, ये कौन करेगा। और इसलिए और एक मुझे मैंने वीडियो क्लिप देखी है, इतनी अच्छी लगी मुझे वो वीडियो क्लिप, आई है कि ट्रैफिक जाम हो गया है, ट्रैफिक जाम हो गया है, कोई बड़े बड़े कोई हस्ती है वो गाड़ी में बैठी है और वो पूछती है क्या हो गया। फिर उनका पीए जो है वो बोलता है, साहब जी ये जो ट्रैफिक जाम हो गया है क्या हो गया, देखो तो देखते हैं कि एक पेड़ जो है वो रास्ते पे गिर गया है
1: और बहुत बारिश भी है,
2: बारिश बहुत तेज है, और हर कोई बोलता है ये सरकार क्या कर रही है,
1: और कोई कोई तो अपने सिर को हाथ लगाते हुए पूरा का पूरा मतलब निराश होकर बैठ जाते हैं।
2: कोई निराश होकर बैठा है,
1: गाड़ी से उतरते नहीं,
2: गाड़ी से कोई उतर नहीं रहा है, और एक दूसरे को कोसते रहते हैं या सरकार को कोसते रहते हैं, ये सब होने के बावजूद हॉर्न बजाते रहते हैं, नॉइज बढ़ाते हैं, शोर शराबा करते हैं,
1: या तो पुलिस की राह देखते
2: राह देखते हैं, या कोई दूसरा कोई आए और ये पेड़ उठाए। तब एक छोटा बच्चा आता है और वो जो पेड़ है वो उठाने की कोशिश करता है, पहले तो सब लोग हंसते हैं, एक छोटा स्कूल जाते हुए बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, लेकिन वो अपना प्रयत्न छोड़ता नहीं, और ये देखने के बाद और उसका जो मित्र है स्कूल जाने वाला बच्चा, एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, और जब चार पांच बच्चे इकट्ठे आते हैं और कोशिश करते हैं तो
1: बड़े भी आने लगते
2: बड़े है। भी आने लगते हैं, और देखते देखते वो पेड़ जो है पेड़। इतना बड़ा पेड़ है वो रास्ते से हट जाता है।
1: इसीलिए ज्ञानेश्वर जी कहा जाता है साथी हाथ बढ़ाना,
2: बिल्कुल,
1: एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो ये जो आप बोझ की बात कर रहे हैं, आपने जो श्री कृष्ण ने करांगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाने की बात की, मुझे लगता है कि हमारे ऊपर भी जो ये बोझ है, या कहो ये कलियुग का जो दुखमय पर्वत जैसा है, जो पर्वत जैसा लगता है, वो पर्वत भी सबके एक एक उंगली से और भगवान को साथ लेकर हम उठाएंगे तो ये पूरा पर्वत उठ जाएगा, और यहाँ ही वो हेवन, वो जन्नत, वो स्वर्ग जरूर आ जाएगा जिसका इंतजार हर एक करता है।
2: बिल्कुल, और वो देखिए वीडियो क्लिप में भी एक छोटा बच्चा है, और जो श्री कृष्ण की जी कथा सुनते हैं वो भी एक बच्चा है, वो प्रेरणादायी बन जाता है वीडियो क्लिप में जो बच्चा दिखाया है, और वहां श्री कृष्ण जी बच्चा होते हुए भी प्रेरणादायी हो जाते हैं। तो ये प्रेरणा हमें छोटा हो या बड़ा हो, ये नहीं, उसकी उम्र नहीं देखनी है, लेकिन हमें प्रेरणा लेनी है, और ये प्रेरणा से हम जिंदगी तो बदल सकते हैं, युग भी बदल सकते हैं, और सारे विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं।
1: बहुत सुंदर, ये प्रेरणा देने का काम अमृत धारा प्रोग्राम के द्वारा ज्ञानेश्वर जी हमारे स्टूडियो में आकर कर रहे हैं, और इस प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम हमारे सारे भाई बहने कर रहे हैं, हर एक कर रहा है। दोस्तों, ये प्रेरणा जब हर एक के दिल में जग जाएगी, और ये प्रेरणा का स्रोत सुनते सुनते आप भी एक प्रेरणा का स्रोत बन के लोगों के सामने खड़े हो जाएंगे, तो कितना भी बड़ा दुख का पहाड़ हो, कलयुग का पहाड़ हो, वो जरूर उड़ जाएगा, आपका क्या ख्याल है? दोस्तों, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों का ब्रेक के बाद फिर से सहर्ष स्वागत है। ज्ञानेश्वर जी, मुझे एक बात का चिंतन मन में चल रहा है जो मैं आपको पूछे बिना रह नहीं सकती। वो ये कि अहिल्या जो है, जो पत्थर बन गए, जिसको श्राप मिल गया, वो श्राप इसलिए मिला क्योंकि उसने अपने पति को नहीं पहचाना, उसकी परख शक्ति कम हो गई। ये बात तो हमारे समझ में आ गई। लेकिन इंद्र जो है, वो इंद्र जी अहिल्या को चाहते थे, ऐसे मैंने सुना हुआ है। इस कहानी का जो मूल है, स्रोत, वो ये। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने महान स्वर्ग का पद जिनके हाथ में है, इतना ऊंचा स्थान जिनका है इंद्र पद, तो ऐसे इंद्र जी अहिल्या को चाहते थे, ये थोड़ा अटपटा लगता है।
3: बहुत सही प्रश्न पूछा आपने, और ये प्रश्न जो है वो हर एक के मन में आ सकता है। मेरे भी मन में आया था, जब भी मैं अहिल्या की कहानी जब भी मैं पढ़ता था, कब जब भी सुनता था या टीवी में सीरियल देखता था, तब मुझे ये प्रश्न हमेशा बचपन से आता था कि ये जो कहानी बनाते हैं, शास्त्रों में जो कहानी है, उसके ऊपर जब मैं प्रश्न हमारे बुजुर्गों को पूछता था या खुद को पूछता था, तो उसका सही तरीके से उत्तर नहीं मिलता था। एक तो क्या करते हैं, अगर हमें मालूम नहीं है तो हम, अगर समझो हमारे बच्चे हैं और हमें ये प्रश्न पूछते हैं, अगर हम उनको सही उत्तर नहीं दे सकते तो हम बोलते हैं ऐसे उल्टे सुलटे सवाल नहीं बोलना है, जो मैं बोलता हूं वो सुनो। और फिर बच्चे चुप हो जाते हैं, लेकिन सवाल तो सवाल ही रह जाता है। तो आपने जो प्रश्न पूछा वो स्वाभाविक है, और मुझे ये लगता है कि देखिए, अहिल्या तो मनुष्य जाति की है। अहिल्या ने जो गलती की वो मनुष्य योनि की है, और उसने गलती की, भले वो देव ऋषि पत्नी थी, गौतम ऋषि तपस्वी थे, अहिल्या भी तपस्वी थी, और उसने गलती की। लेकिन इंद्रदेव जो है वो तो देवताओं के राजा है, सिर्फ देवता नहीं है, देवताओं के राजा है। तो ये कहानी के पीछे महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने ये रामायण लिखी, कुछ ना कुछ भावना होगी। और मैं अगर ये हमेशा देखूंगा कि जो कथा ये है, एक तो क्या करते हैं हम,

0: अगर उसके पीछे का भाव जानने की कोशिश करेंगे तो फिर ये कहानी मुझे कुछ ना कुछ जचती है। अभी उसके ऊपर जब मैंने चिंतन किया तब मुझे ये लगा कि देखिए इंद्रियों का राजा आत्मा जब जो है, जब इंद्रियों का राजा बनती है इंद्रियों के आकर्षण से परे, जब आत्मा इंद्रियों का राजा बन जाती है तब वो देवता बन जाती है। और यहां तो इंद्रदेव जो है वो देवताओं के राजा है, लेकिन हमेशा देखिए इंद्रदेव का पद जो है वो निश्चित नहीं है।
1: उनको हमेशा शक रहता है कि मेरा पद कभी चला न जाए,
0: क्योंकि उनको डर लगता है, क्योंकि एक कंडीशन ऐसी है कि अगर किसी ने तपस्या की और तपस्या फलीभूत हो गई तो वो पद ले सकता है। तो पद पोजीशन है, जैसे कॉरपोरेट सेक्टर में या बड़ी बड़ी कंपनी में जो अपनी पोजीशन है, प्रमोशन मिलने के बाद एक पद होता है, समझो चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर में एक्स वाई जेड कोई भी है तो वो पद पा सकता है और बाकी लोगों का प्रमोशन होते रहता है, वो रिटायर हो जाएगा दूसरा आ जाएगा। वैसे ये इंद्र पद है, इसलिए इंद्र देव के बजाय इंद्र पद कहते हैं और दूसरा वो हासिल कर सकता है। अभी उसमें अगर इस तरीके से अगर ये कथा को मैं देखूं तो मुझे ये लगता है कि इंद्रियों के आकर्षण से परे जब मैं जाता हूं, तपस्या करना क्या है, तपस्या करना है इंद्रियों के ऊपर मुझे विजय प्राप्त करनी है
1: जी।
0: और ये विजय प्राप्त करते समय अगर उसमें मैं यशस्वी हो गया, उसमें मैं
1: काबिल हो गया
0: या मुझे उसमें
1: जीत पाई,
0: हासिल किया, ये जीत मैंने हासिल की इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने की कला या जीत मैंने हासिल की, तो मुझे इंद्रपद मिल सकता है। इंद्रपद मीन्स ए पोजीशन। अभी ये पोजीशन करने के लिए अगर इंद्रपद मिलना है तो उसमें क्या क्या कठिनाई आ सकती है। जब मैं तपस्या के लिए बैठता हूं तो मेरे मन में बुरे संकल्प आ सकते हैं,
1: बिल्कुल,
0: मेरे मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं और ये नकारात्मक विचार है वो श्राप के रूप में मुझे मेरे तपस्या को भंग कर सकते हैं
1: और मेरा इंद्रपद जो है वो चला जाएगा।
0: तो अभी ये जब टेक्निकल शब्द है उसको काव्य में फिट नहीं होते। जब मैं कोई काव्य रचता हूं, क्योंकि ये काव्य महाकाव्य है, ये तो सिंपल काव्य नहीं है, महाकाव्य है, इसलिए ऐसे महाकवि, ऐसे तपस्वी, ऐसे ऋषि वो कुछ ना कुछ संदेश वो काव्य से देते हैं। और मुझे लगता है ये अहिल्या की जो कथा है उसका संदेश जो दिया है वो ये है कि मुझे इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है।
1: इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा कि हम सब अहिल्या है या हमारे मन में, हरेक के मन में अहिल्या छिपी हुई है।
0: बिल्कुल, हम सब अहिल्या है
1: जी।
0: और अहिल्या है, तप करते हैं और इंद्र जो है, इंद्र कोई इंद्रदेव जो है, वहां की कथा का इंद्रदेव तो है, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकल रूप में देखे तो इंद्रदेव जो है वो अलग अलग प्रकार के भेष लेके, ये जो हमारे पास संकल्प आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं जिसके ऊपर हम विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो अलग अलग तरीके से आते हैं
1: जी,
0: अलग अलग भेष बदल के आते हैं, अलग अलग चेहरों से आते हैं, और वो नकारात्मक संकल्प जो है वो हमारी परीक्षा लेते हैं। जब हम परीक्षा पास हो जाते हैं तब हमारा गायन हो जाता है, और अगर परीक्षा में फेल हो जाते हैं, नापास हो जाते हैं, तब हम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं।
1: और अहिल्या जैसी इतनी महान हस्ती जो पतिव्रता थी, जो स्वप्न में भी नहीं ये हो सकता कि वो अपने पति को नहीं पहचानेगी,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन फिर भी उसके हाथ से भी यह छोटी सी भूल हुई जिसका बहुत बड़ा परिणाम उसको भुगतना पड़ा। वैसे ही मुझे लगता है ज्ञानेश्वर जी, हम भी कभी कभी खुद को बहुत विद्वान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम तो बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, बहुत अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, हमने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है जिंदगी में, लेकिन कब किस प्रकार से ये माया रूपी रावण जो है या हमारी परख शक्ति जो है वो

0: हमारे ऊपर हावी हो जाएगी और हम उसमें फेल होने की संभावना है।
1: एकदम सही कहा आपने। और ये इंद्रदेव मींस इंद्र रूपी इंद्रिय रूपी आकर्षण जो है, हमारे इंद्रियों का आकर्षण जो है, वो आकर्षण हमें कहीं ना कहीं फंसा देता है
0: जी।
1: चाहे वो मोह हो, चाहे वो अहंकार हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, कौन से रूप में आए वो पता नहीं चलता। और उसी समय हमें अलर्ट होना है, उसी समय हमें देखना है कि हमारा कोई ऐसे मायावी व्यक्ति या मायावी विचार हमारे मन में ना आए और हमारा जो लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए उनको षड रिपु कहा जाता है। रिपु अर्थात शत्रु, और शत्रु तब हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है जब हम शत्रु को नहीं पहचानेंगे। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमारे पास जो शुद्ध संकल्प है, उन शुद्ध संकल्पों को सदा करते रहना है। उन शुद्ध संकल्पों के द्वारा अशुद्ध संकल्प या जो इंद्रियों की जो आसक्ति है, उस आसक्ति पर विजय प्राप्त करना है, तभी हम भी ऐसे ही महान बन जाएंगे। दोस्तों, अब समय है वाणी को विराम देने का। इसके साथ ही हम आपसे बार बार यही बताते रहेंगे कि इस अमृत धारा का जो महान स्रोत है, वह स्रोत हजारों तक पहुंचाने के लिए आप भी इसका एक हिस्सा बन जाओ। अब फिर से मिलते रहेंगे अमृत धारा के द्वारा। रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो।

क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सबका समाधान में। विद्यार्थियों की चर्चा बहुत गुह्य से गुह्यतम होती चली जा रही है और बहुत आनंद भी आ रहा है इन सभी चर्चाओं को करते हुए कि सचमुच किन किन बातों का यदि समावेश जीवन में हो जाए तो जीवन का पूरा ही स्वरूप परिवर्तित हो जाए। मूल्यों की चर्चा पिछले सत्र में हम सब कर रहे थे और हमने देखा कि बहुत सारे मूल्य यदि जीवन में आ जाते हैं तो जीवन मूल्यवान बनता चला जाता है, जिनमें सादगी है, स्वच्छता है, सम्मान है, सहनशीलता है। कहने में कितने सुंदर लग रहे हैं, तो यदि वो हमारे जीवन में आ जाएं तो कितना सुंदर हो जाएगा, पूरा ही समाज, पूरा ही देश परिवर्तित हो जाएगा। और एक अच्छी बात ये भी थी कि हम बीड़ा उठाएं, ये ना सोचें कि समाज में क्या हो रहा है, लेकिन हम बीड़ा उठाएं क्योंकि एक महापुरुष अपने साथ परिवर्तन लेकर चलता है और जब वो चलता है कार उसके पीछे पीछे चलने लगती है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्राता जी हमारे साथ हैं, आइए हम सब मिलकर के उनका स्वागत करते हैं। प्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: प्राता जी, पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि मूल्यों का संबंध हमारी एकाग्रता से भी है और आज हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्कूल में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, तो एक बात जरूर उठकर सामने आती है कि आज एकाग्रता कहीं ना कहीं कम होती चली जा रही है। तो पहले तो हम इस चीज को स्पष्ट करना चाहेंगे भ्राता जी कि वास्तव में एकाग्रता है क्या, किस चीज को हम एकाग्रता कहेंगे?
1: देखिए, शब्द ही एकाग्र जी, एक पर जब हम स्थिर हो जाएं, किसी भी एक चीज पर
0: जी,
1: मान लो पढ़ाया जा रहा है हमें
0: तो हम पढ़ाई पर एकाग्र,
1: केवल पढ़ाई पर एकाग्र, हम खेल रहे हैं तो केवल खेल पर एकाग्र। जैसे महाभारत में अर्जुन का दृश्य इसमें दिखाया गया, जब उनकी परीक्षा हो रही थी तो गुरु द्रोणाचार्य सबसे पूछ रहे थे कि सामने चिड़िया की आंख में तीर मारना, कौन क्या देख रहा है? तो कोई कहता पेड़ भी है, गुरुदेव भी हैं, सब पांडव कौरव भी हैं, लेकिन केवल अर्जुन ने कहा था मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है,
0: दे रही है।
1: तो वो हुई संपूर्ण एकाग्रता
0: जी।
1: तो किसी भी एक लक्ष्य में अपनी मन और बुद्धि को स्थिर कर देना
0: ये एकाग्रता है। मतलब जो भी, यदि आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय पढ़ाई पे एकाग्र, खेल रहे हैं तो खेल पे एकाग्र। और वास्तव में यदि देखा भी जाए रहता जी, यदि बैट्समैन यदि बैटिंग कर रहा है और उस समय यदि वो वहां नहीं है, अर्थात एकाग्र नहीं है,
1: तो जल्दी
0: आउट हो जाएगा। या फिर कोई डॉक्टर है, ऑपरेशन कर रहा है, उस समय यदि वो एकाग्र नहीं है, उसका मन उसकी बुद्धि कहीं और है,
1: तो कैंची अंदर छोड़ देगा।
0: बिल्कुल, कई ऐसे केसेस देखने में भी आते हैं कि एकाग्रता की कमी के कारण ये सब होती हैं। तो एक चीज पर अपने आप को स्थिर कर देना, ये एकाग्रता है। महत्ता भ्राता जी इसकी क्या है, मतलब न केवल विद्यार्थी काल में बल्कि पूरे जीवन में इसकी जरूरत पड़ेगी हमें?
1: बस सिंपली इतना ही समझें कि जहां एकाग्रता है वहां संपूर्ण सफलता है, और एकाग्रचित व्यक्ति अपने में बहुत संतुष्ट भी रहता है, उससे अपनी खुशी भी उसकी कायम रहती है, उसके मन में चिड़चिड़ापन भी नहीं होता, परेशानी भी नहीं होती, तो टोटल जीवन की भी ये सफलता।
0: और ये भी होता है ब्रता जी कि जिस कार्य को वो कर रहा होता है वो बिल्कुल ही परफेक्शन के साथ करता है, उसमें समय भी संभवतः कम
1: लगेगा और उसमें उलझने कम आएंगी, उसमें समस्याएं भी कम आएंगी।
0: तो यही बात हो जाती है ब्रता जी की, क्लास में लेक्चरर या टीचर पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे बैठे हुए हैं, सामने टीचर तो पढ़ा रहे हैं लेकिन उनका मन कहीं और है। मान लीजिए बाहर प्लेग्राउंड में दूसरी क्लास के बच्चे खेल रहे हैं, तो उसके मन में आता है कि कितना अच्छा होता कि मैं भी वहां खेल रहा होता, मैं इस ढंग से खेलता। तो यहाँ कुछ और पढ़ाया जा रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है, या फिर वो बैठा तो क्लासरूम में है लेकिन कल यदि कोई बात हो गई है वो चल रहा है, तो शायद ये उनकी एकाग्रता में कमी का कारण बन रहा है।
1: बिल्कुल, ये होता है, और उसमें विशेष रूप से बातों का इफेक्ट
0: जी,
1: खेल रहे हैं बच्चे उसका थोड़ा इफेक्ट होगा, लेकिन जो उसके साथ हो गया है
0: जी,
1: किसी ने उसको कुछ कह दिया है, कहीं उसकी भावनाओं को हर्ट कर दिया गया, बच्चों की भावनाएं हर्ट होती हैं, कहीं उससे किसी ने दुर्व्यवहार कर दिया है, कहीं उसकी कोई इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं, तो उसका इफेक्ट उसकी एकाग्रता को नष्ट करता ही रहेगा और यहाँ उसका मन नहीं लगेगा, तो न वो यहाँ को एंजॉय करेगा पढ़ाई को और न वो उन चीजों से मुक्त होगा।
0: मतलब बातें उसके मन में चल रही हैं और जब मन बुद्धि में, क्योंकि मन बुद्धि से ही उसे ग्रहण करना है जो भी मिल रहा है, और यदि मन में वो बातें चल रही हैं तो वो ग्रहण शक्ति उसकी कम हो जाती है, एकाग्रता कम हो जाती है। तो भ्रत जी, ये जो बातें चल रही हैं वो कैसे दूर हो?
1: अब इस रिलेशनशिप को भी पहले सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि हमारे पास जो ये शक्तियां हैं, पहले भी हमने चर्चा की थी, मन और बुद्धि, और इनको स्थूल रूप देने वाला जैसे कंप्यूटर है हमारा ब्रेन, तो मन जितना उलझनों से मुक्त रहेगा
0: जी,
1: मन जितना किसी भी बुरी बात के प्रभाव से मुक्त रहेगा, या सहज भाषा में कहें मन जितना शांत है तो बुद्धि उतनी एक्टिव है, बुद्धि की जो ग्रहण शक्ति है बहुत बढ़ी हुई, बहुत सेंसिटिव है उसके बारे में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, साथ साथ उसको ग्रहण कर रही है, कुछ भी रिजेक्ट नहीं करेगी, कुछ भी बाहर नहीं फेंकेगी। तो फाइनल बात यही है कि मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। अब जैसा आपने पूछा, ये बातें कुछ हो गई हैं बच्चों के सामने, अब बच्चों के पास ना तो और तरह का ज्ञान है कि वो उसको अवॉइड करें, उससे मुक्त हो जाएं, लेकिन हम उन्हें कुछ अवेयरनेस देंगे और बच्चे इस पे ध्यान देंगे तो बच्चे उस बात से जल्द ही मुक्त हो जाएंगे। मान लो उन्हें कोई चीज चाहिए थी, उन्होंने बाजार में कोई चीज देखी और मम्मी से जिद की मुझे यही चाहिए, अब मम्मी के पास पैसा नहीं है या वक्त नहीं है कि वो उसको खरीद के लाके दे दे, तो बच्चों को थोड़ा सा यहाँ धैर्यता धारण करनी है कि कोई बात नहीं, मैंने मम्मी को अपनी इच्छा बता दी है और मम्मी तो मेरी बहुत अच्छी है, सदाई मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने का ख्याल रखती है, आज नहीं तो कल वो ला देगी, ठीक है मुझे वो चीज मिल जाएगी। अच्छा, इससे इससे मन शांत होगा और उसे वो चीज मिल भी जाएगी।
0: मतलब बातें कहीं पे भी हुई हो, चाहे घर में मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहन के साथ कोई बात हो गई है, या स्कूल में अपने साथियों के साथ कोई बात हो गई है, तो उस बात को वो पकड़ के ना रखें, और यदि कोई नेगेटिव कमेंट दे भी दिया गया है तो उसी का चिंतन ना करते रहें, उसे थोड़ा सा पॉजिटिव कर दें कि चलिए ऐसा हो भी गया तो कोई बात नहीं, अभी समय है स्टडी करने का, मुझे पूरी तरह फोकस करना है।
1: बड़े बच्चे हो गए, अभी 9th में, 10th में, 12वीं में आ गए हैं, अभी ये बच्चे समझदार हो गए हैं, अभी इनके ऊपर घर की बहुत सारी घटनाओं का भी इफेक्ट होता रहता है। मान लो बच्चा गरीब घर से आया है और आज स्कूल में किसी चीज की जरूरत थी, मान लो यही था कि बच्चे टूर पर जा रहे हैं और हर एक को 500-500 रुपए जमा करने हैं, लेकिन इसने जब घर में ये बात कही तो इसको उत्तर निराशात्मक मिला है। अब इसके मन पे कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हो गया है, वो भी जानता है मेरे माँ बाप के पास 500 रुपए इस समय नहीं है, लेकिन उसके मन में जो एक उलझन सी हो गई, एक परेशानी सी कि सब बच्चे तो देखो

0: पिकनिक पे जाएंगे या
1: जी
0: कहीं टूरिंग पे जाएंगे
1: मैं यहीं रह
0: और मैं
1: जाऊंगा
0: यहीं रह जाऊंगा,
1: जी,
0: तो एक एक निराशा जो उसके मन की एकाग्रता को भटका
1: भंग
0: रहे।
1: कर रही है
0: ऐसे ही
1: जी।
0: मान लो घर में कोई टेंशन की बात आ गई है, कोई विवाद चल रहा है, कब बच्चे बड़े हो गए, 12वीं क्लास में आ गए हैं, या उसके माँ बाप के बीच में कुछ मन मुटाव है, तो वो भी उनके मस्तिष्क पर, उनके मन पर एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है
1: जी
0: और इससे भी बच्चों की जो एकाग्रता है वो नष्ट होती है।
1: नष्ट
0: इसमें भी उनको कुछ अच्छे ज्ञान की जरूरत होगी।
1: जी। तो परिवार में भी जब इस प्रकार की नेगेटिव एटमॉस्फेयर, जैसे आपने कहा, यदि पेरेंट्स के बीच ये चल रहा होता है तो भी बच्चे के मन में कहीं ना कहीं चलता है। तो भ्राता जी, एक बात तो ये हुई कि ये जो चारों तरफ या आजकल एक मास एक साल पहले की जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी एकाग्रता को भंग कर रही है, जिसके कारण से वो जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो विद्यार्थी की एकाग्रता को भंग कर रहे हैं आज के दौर
0: इसमें
1: में?
0: ही मान लो
1: जी
0: उनकी नींद बहुत अच्छी नहीं हुई,
1: जी
0: रात को स्वप्नों से भरी नींद थी, या किसी कारण से उनको दो चार बार जागना पड़ गया,
1: जी
0: कोई बीमारी थी, बाहर कोई आवाज थी,
1: जी
0: कोई अपने अंदर की ही उनकी आहट उनको साउंड स्लीप न लेने दे, तो
1: जी
0: इससे ब्रेन पर इफेक्ट आता है, इससे भी उनकी एकाग्रता भंग होती है। कई बार बच्चों के अपने हेल्थ में भी, क्योंकि आजकल बच्चे भी हेल्दी तो रहे नहीं है,
1: जी जी
0: बचपन से ही कईयों को तो कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ प्रॉब्लम भी उन्हें इरिटेट किए रखती है और
1: जी
0: ये इरिटेशन उनकी एकाग्रता को नष्ट करता है। तो कारण तो बहुत हो सकते हैं,
1: जी
0: कहीं उनके रिलेशनशिप में गड़बड़ हो रही हो, अब
1: बिल्कुल
0: बच्चे तो फ्रेंड शुरू से ही बन
1: फ्रेंड्स में
0: जाते
1: हैं
0: हैं, लड़के
1: जी।
0: लड़की सब होंगे, उनसे उनको धोखा मिल रहा हो, मिसबिहेव मिल रहा हो,
1: जी
0: एक दूसरे की जो अपेक्षाएं थी उस पे वो खरे न उतर रहे हों, बुरे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा हो, गाली
1: जी
0: गलौच भी दी जा रही हो, उसे मन उनका भटकता है अवश्य। अब बात यह है कि इनसे मुक्त कैसे होना है,
1: जी।
0: असली बात तो ये। तो वही बात मैं दो चार टिप्स देना चाहता हूँ अपने विद्यार्थियों को।
1: जी
0: एक तो सभी विद्यार्थी पास्ट के इफेक्ट को साथ साथ समाप्त करते चलें, जो बीत गया है,
1: जी
0: 3 मास पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, उसकी जो छाया, उसका जो इन्फ्लुएंस इनके मन पे रहता है, उसको हटाएं और
1: जी
0: इस विचार से हटाएं कि जो पास्ट हो गया उसको बदला नहीं जा सकता है,
1: जी
0: जो पास्ट हो गया वो दोबारा भी नहीं होने जा रहा है, वो तो 1-2 मास पहले या साल 2 साल पहले की बात हो
1: एक
0: गई।
1: बहुत अच्छा सर्वे
0: हाँ
1: आया था भ्राता जी इस पे, और उस सर्वे में ये कहा गया था कि व्यक्ति 80% अपने पास्ट में रहता है,
0: हाँ
1: 15% अपने फ्यूचर में, और केवल 5% ही आप वो प्रेजेंट में रहते हैं। एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि
0: हाँ
1: पास्ट का प्रभाव सचमुच बहुत ज्यादा शायद
0: बहुत ज्यादा,
1: विद्यार्थियों पर
0: और
1: रहता है।
0: यही हमने भी सीखा और हम सबको सिखाते हैं कि एंजॉय योर प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहना। देखिए,
1: जी
0: भविष्य तो हमारा उज्जवल हो ही जाएगा अगर
1: उज्जवल
0: वर्तमान हमारा सुंदर है, और
1: एस
0: ठीक है भविष्य का थोड़ा हम टारगेट भी रखें, उसकी
1: जी
0: प्लानिंग भी करें, लेकिन चिंताएं नहीं, उसको निगेटिव स्वरूप ना होने दे।
1: जी
0: लेकिन ये जो बात हो गई है विद्यार्थियों पर भी, क्योंकि कई विद्यार्थी बहुत ही सेंसिटिव होते हैं,
1: जी
0: कोई बात अगर उनके मानस पटल पर एक बार छप गई तो उसको डिलीट करना उनको आता नहीं है,
1: जी
0: तो सुंदर विचारों से ही पुरानी छाप डिलीट हो जाती है। हम सुंदर विचार करेंगे, मान लो पास्ट के बारे में हमने यही सोचा कि भाई किसी ने हमसे बहुत बुरा व्यवहार किया था,
1: जी
0: हमें अपशब्द कहे थे 4 लोगों के बीच में, उससे हमारा ईगो भी हर्ट हुआ था, हमारे सम्मान को भी ठेस पहुंची थी,
1: जी
0: उससे हमारी खुशी भी चली गई थी, हमारा मूड भी ऑफ हो गया था, लेकिन अब उसी में हमें थोड़ा ही रहना है, हमारा हर दिन बहुत सुंदर है,
1: जी
0: हम हर दिन को एंजॉय करेंगे, वो तो बीत गया, वो तो आने वाला नहीं है,
1: बिल्कुल
0: तो उसी मूड को लेकर हम क्यों रहें। तो
1: बिल्कुल
0: ऐसे सुंदर विचार कि मुझे तो वर्तमान को एंजॉय करना
1: और
0: है,
1: वैसे भी गड़े मुर्दे
0: बस
1: उखाड़ने से कोई
0: फायदा
1: फायदा तो
0: कुछ
1: है
0: नहीं
1: ही
0: होगा।
1: नहीं। वहां से हम कोई चीज, अच्छी चीज सीख लें, आगे बढ़ें और उसे लेकर के यदि चलते रहेंगे तो हमारा प्रेजेंट भी प्रभावित होगा, और प्रेजेंट प्रभावित हो रहा है मतलब फ्यूचर भी हमारा प्रभावित हो
0: इस
1: रहा है,
0: तरह उस हर बात के लिए जिसने मनुष्य की एकाग्रता को नष्ट किया है,
1: उसे हम
0: हम
1: चेंज
0: ऐसे
1: करें।
0: सुंदर विचारों से चेंज
1: जी
0: करें और अपने को फ्रेश करें, अपने को वर्तमान में ले आएं,
1: बहुत
0: ताकि
1: सुंदर
0: हमारे मन की जो भटकन है, जो अननेसेसरीली हमको परेशान कर रही है, हमारी इनर पावर्स को नष्ट करती जा रही है, उससे हम मुक्त हो जाएं।
1: जी जी जी, एक सुंदर बात आपने कही ब्राता जी, कि पास्ट का प्रभाव जो है, इस प्रभाव से मुक्त हो विद्यार्थी, ताकि उसकी एकाग्रता अच्छी हो। इसके साथ ब्राता जी, मैं जैसे हम लोग चर्चा कर भी आए हैं, जो चीजें विजुअल्स है, उन चीजों का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभाव मानस पटल पर विद्यार्थियों के पड़ता है। और हम चर्चा कर भी आए हैं कि यदि टीवी है बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, मूवीज देखी जा रही हैं, इंटरनेट पे बहुत ज्यादा समय बिताया जा रहा है, तो वो चीजें जो वो देख रहा है, वो चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में चलती रहती हैं, इस कारण भी वो अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाता।
0: हाँ, नहीं, ये तो परम सत्य है
1: जी।
0: केवल टीवी की बात ही नहीं, बाजार से जब बच्चे निकलते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े बोर्ड
1: जी,
0: होर्डिंग्स, उन सब में कुछ गंदे चित्र, ये उनकी दृष्टि को आकर्षित करते हैं
1: जी।
0: और एकाग्रता का संबंध मनुष्य की दृष्टि से भी है, जो कुछ वो देखता है उसमें भी उसकी एनर्जी जाती है, तो ब्रेन की एनर्जी डाइवर्ट हो रही है भिन्न भिन्न डायरेक्शंस में
1: जी।
0: इससे भी एकाग्रता बहुत भंग होती है बच्चों की। तो कोशिश करें, चाहे टीवी चाहे और किस चीज पे, ऐसी चीजों को ना देखें। आपकी बात सुनकर मुझे एक अनुभव याद आ गया
1: जी।
0: एक बच्चा मेरे पास आया और उसने मेरे से प्रश्न पूछा कि मुझे अनेक बार रोज ऐसा लगता है मेरा ब्रेन ब्लॉक हो गया, मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ते पढ़ते पढ़ने की इच्छा नहीं
1: जी,
0: मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ते पढ़ते मन में नीरस था, तो जैसे ब्लॉकेज हो गया है। तो मैंने उससे बहुत सारी चीजें पूछी, कितना सोते हो, मुझे लगा कहीं ये कम सोता हो, कितने बजे सोते हो, जब मैंने पूछा तो कहा 1 बजे सोता हूँ, उठते कितने बजे हो, 8 बजे उठता हूँ। मैंने कहा क्यों 1 बजे क्यों सोते हो भाई तुम, तो हाँ हूँ करते करते आखिर बता दिया मुझे आदत पड़ गई है 10:30 बजे नेट खोल लेता हूँ, फिल्म देखने लगता हूँ, 1 बजे तक सोता हूँ, अभी जब सोता हूँ तो नींद में वही सीन आते हैं
1: जी जी जी।
0: अब मैं समझ गया कि न इसकी गहरी नींद होती है और जो ये गंदी फिल्में देखता है उससे इसका मन बिल्कुल डाइवर्ट होता जा रहा है, तो ब्रेन में ब्लॉकेज प्रारंभ हो रहे हैं। तो मेरे को कहने लगा क्या करूं मैं
1: जी जी जी।
0: मैंने उसको हंस के कहा कि अगर अपने को बचाना चाहते हो तो लैपटॉप पास के तालाब में फेंक देना आज ही जाके, ताकि क्योंकि तुम्हें आदत पड़ गई है, अभी तुम चाहो ना चाहो तुम वही साइट पर जाओगे। तो ये ऐसी चीज विजुअल भी हो गई है
1: जी, जी।
0: जो बच्चों की एकाग्रता पर कम नहीं
1: बहुत
0: गहरी छाप छोड़ रही है, इनसे उनकी मेमोरी वीक होती जा रही है, एजुकेशन के प्रति इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। तो जहाँ ये चीजें विज्ञान की देन है, मनुष्य के लिए वरदान है, इस तरह मनुष्य इनको श्राप भी बना लेता है।
1: एक बहुत सुंदर बात ब्रहता जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात मैं सुन रहा था उनके एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने अपने पूरे विद्यार्थी काल में कभी भी टीवी नहीं देखा, और आज ऐसा लगता है कि टीवी एक बहुत ही अभिन्न अंग बन गया और हमें ऐसा लगता है कि टीवी के बिना काम ही नहीं चलेगा। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो भारत रत्न है, देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इतने महान साइंटिस्ट रह चुके हैं, वो यदि इतने महान कार्य बिना इनके कर सकते हैं, तो विद्यार्थी वर्ग जो आज का है वो क्यों नहीं कर सकता?
0: देखिए, ये है कि उनके काल में टीवी थी भी कहाँ, हम जब पढ़ते थे, हमसे तो बड़े ही आयु के हैं, हमारे यहाँ भी टीवी दिल्ली में हम थे तो कहीं कहीं दिखाई देती थी। तो क्या होता है, जो चीज मनुष्य के सामने है उसको ही वो अपना साधन मान लेता कि इससे ही मुझे सब कुछ मिलेगा, इससे ही मनोरंजन होगा, इससे इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलेंगी, मेरी बुद्धि का विकास होगा। पर जब वो चीज नहीं है तो देखिए, मैं आपको एक बहुत गुही बात और बता देना चाहता हूँ। मनुष्य का जो ब्रेन है ना, इसमें अनंत शक्तियां और अनंत ज्ञान समाहित भी है
1: जी,
0: इसमें भरा हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि हमने हजारों साल में भी जो जानकारी प्राप्त की होंगी ना पास्ट में, वो हमारे वर्तमान ब्रेन में भी सूक्ष्म तरंगों के रूप में प्रिंट है। हमारी जो एजुकेशन है वो तो उसको जस्ट एक्टिवेट कर रही है। तो हमारे पास ज्ञान का भंडार है, हमारे पास एकाग्रता की शक्ति भी बहुत है। सच तो यही है कि अगर हम वेस्ट न करें अपने ब्रेन की शक्ति को, तो हमें हमें पढ़ने में तो बहुत थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे आपने सुना हो कि बहुत सारे लोग संसार में अपने ब्रेन का 5% 10% यूज करते हैं। इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 30% यूज किया। अब सोचो अगर कोई व्यक्ति 100% यूज कर ले तो ही विल बिकम डाइटी, देवता बन जाएगा वो। तो इसका तरीका है एकाग्रता, व्यर्थ से अपने को मुक्त करना। तो ये
1: चीजें ही बनता जी, जैसे हम टीवी या इंटरनेट या मूवीज की बात कर रहे हैं, और बात हमारी हुई भी थी कि इसमें कहीं ना कहीं संयम बनाए रखें, क्योंकि जहां ये एक्सेस होता है वहां हमारी एकाग्रता को सीधे तौर पे प्रभावित करता है। और यदि हम क्लासरूम में भी बैठे हुए हैं तो अंदर वही चित्र चलते रहते हैं, वही मूवी चलती रहती है, वही सीरियल चलता रहता है कि आगे क्या होगा।
0: हाँ, एक चीज और मुझे कहनी है इस संबंध में जी, कि देखिए जो बच्चे लंबा समय टीवी देखते हैं, मान लो 4 घंटे रोज देखते हैं, अब कईयों को तो रुचि हो जाती है और भी ज्यादा देखते रहे, भोजन भी खा रहे तो टीवी देख रहे हैं, और भी कुछ सोने भी जा रहे तो टीवी देखते हुए, तो इससे एक बड़ा नुकसान हमारे विद्यार्थी वर्ग को हो रहा हो, तो सबको रहा है, पर हम विद्यार्थियों को इसके बारे में सावधान करना चाहेंगे कि क्योंकि वो 4 घंटे बहुत कुछ सुन रहा है तो उसके अपने अंदर की क्रिएटिव एनर्जी नष्ट होती जा रही है, क्योंकि उसकी चिंतन धारा वही है जो वो देख रहा है, जो वो सुन रहा है, तो उसमें स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की शक्ति दबती जा रही है, और हर मनुष्य के अंदर, उसके ब्रेन में, उसके माइंड में बहुत जबरदस्त क्रिएटिव एनर्जी है, उसको हम नष्ट कर रहे हैं, उसको हम खो रहे हैं, क्योंकि हम उसको यूज नहीं कर रहे, तो एक दिन वो हमारा साथ छोड़ जाएगी। ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को इन चीजों से सीखने की बजाय हमारे ब्रेन में ही बहुत कुछ है, हम नया क्रिएट करें, क्रिएटिव एनर्जी को यूज करें, तो ये हमारे लिए कहीं भविष्य के लिए बहुत ज्यादा कल्याणकारी होगा
1: जी। तो उसमें ज्यादा समय ना दे करके, एक सीमित समय दे करके, जितनी आवश्यकता है अपने आप में रहें, अपने चिंतन को बढ़ाएं, अपने अध्ययन को बढ़ाएं, तो हमारे पास की आपने जैसे बात कही कि ब्रेन में हमारे पास इतनी एनर्जी है उसको हम यूज कर पाएंगे, और हमारी एकाग्रता भी जहां भंग हो रही है वो भंग नहीं होगी। दत्ता जी, और कुछ ऐसे स्थान हैं, बातें हैं जिनके कारण आज के विद्यार्थी वर्ग की एकाग्रता भंग हो रही है?
0: देखिए, मुझे जो दिख रहा है, जो फोन कॉल मुझे आते हैं और बच्चे जो कुछ बातें सुनाते हैं, उसमें इनके अंदर वासनाओं का प्रकोप, रिलेशनशिप में निगेटिविटी, शुद्ध प्यार का बहुत ज्यादा अभाव जी, एक दूसरे को धोखा मिलना, तो ये जो रिलेशनशिप चल रहा आजकल, इसके कारण बच्चों का माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है।
1: आपकी जो बात की दाता जी, आप बढ़ाएं तो उससे पहले मैं बीच में, मुझे एक बात याद आ गई, 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को हमारे एक टीचर मित्र पढ़ा रहे थे, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, वो मुझे सुना रहे थे कि जब उन्होंने कोई होमवर्क दिया तो किसी लड़की के नोटबुक पे ये लिखा हुआ था कि इसका बॉयफ्रेंड ये है, या किसी लड़के के नोटबुक पे ये लिखा हुआ था कि 7th स्टैंडर्ड में ये हाल है। उन्होंने ये भी कहा कि 11th में एक लड़का क्लास से बंक करके वैलेंटाइन डे पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। तो ये एक सच्ची एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि इस विद्यार्थी काल में यदि ये स्थिति रही कि हम अपने आप को वासनाओं की ओर ले चलेंगे तो शायद एकाग्रता की बात तो बहुत दूर है।
0: इससे एकाग्रता भंग हो रही है और मुझे ये बढ़ता नजर आ रहा है, प्रकोप के रूप में नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं माँ बाप भी इससे बहुत दुखी भी हो रहे हैं, इसी कारण कई बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं जब उनके अफेयर्स पूरे नहीं होते। तो इससे विद्यार्थियों को बचाना, इसकी अवेयरनेस देना कि इससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम्हारे संबंधों में न मिठास रहेगी, न उनमें प्योरिटी रहेगी, न तुम एक दूसरों को अपना प्यार और स्नेह और सम्मान दे पाओगे, इसकी अवेयरनेस उन्हें देकर उससे मुक्त करना, ये एक्चुअली हर व्यक्ति का, चाहे गार्जियन है चाहे शिक्षक है, अवेयरनेस दी जाए।
1: शायद ये उस समय का उनका एक शारीरिक परिवर्तन का दौर होता है, तो ये आकर्षण उनमें लाजमी है।
0: ये आजकल बच्चों में होने लगा है, जो प्राचीन चीज थी, जो मेडिकल हमें कहता था कि बच्चों में 15 साल के बाद, 16 साल के बाद कन्याओं में परिवर्तन होगा, अब ये उससे बहुत जल्दी होने लगा है, 10 साल में भी होने लगा है, तो ये म्यूचुअल अट्रैक्शन उनमें हो रहा है। लेकिन अगर उनको एजुकेट किया जाए इस संबंध में कि महत्व तो इसका नहीं है, महत्व तो किसी और चीज का है, तुम्हारी पढ़ाई का है, तुम्हारे कंसंट्रेशन का है, तुम्हारे सुंदर विचारों का है, ये चीज तो चलती रहेगी, तुम बाद में भी कर सकते हो। तो यहाँ भी हम केवल इस चीज को स्वीकार न कर लें कि ये हो रहा है और ये बढ़ रहा है। ये तो सत्य है कि वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट बहुत बहुत प्रभावशाली रूप से भारत के जो युवा वर्ग है, विद्यार्थी, उनके मानस पटल पर छाता जा रहा है। परंतु हमें इसकी अवेयरनेस उन्हें देना, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं उनके बारे में जागरूकता लाना ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि विदेशों में जो कुछ हुआ स्वतंत्रता के नाम पर, लेकिन वहां के लोगों की मानसिक स्थिति अब इतनी दयनीय है कि डिप्रेशन के केस, अनिद्रा के केस, साइकेट्रिक पेशेंट, इनकी संख्या इतनी ज्यादा है हमारे एक शहर की और उनके पूरे देश के बराबर है। तो इसलिए इसकी अवेयरनेस, एजुकेशन देना परम आवश्यक है।
1: बहुत सुंदर चर्चा भ्राता जी आपने की है कि किस प्रकार एकाग्रता बहुत आवश्यक है हमारे विद्यार्थी वर्ग के लिए और किन किन कारणों से ये नष्ट हो रही है। आज समय का यही समाप्ति हो रही है, समय का अभाव है, इसलिए हम अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। भ्राता जी, एकाग्रता पे इतनी सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा कि एकाग्रता वास्तव में विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत बहुत बहुत आवश्यक है। एकाग्रता सीधे ही हमारी सफलता के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी हम में से नहीं होगा जो ये चाहेगा कि मैं असफल रहूं, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे मार्क्स कम हो, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि लोग उस पे कमेंट्स करें इस कारण कि वो विफल हो गया, असफल हो गया। लेकिन सफलता तभी प्राप्त होगी जब हमारी एकाग्रता बहुत सुंदर होगी। इसलिए हम ये ठान लें कि जैसे अर्जुन केवल पक्षी के नेत्र को देख रहा था इसलिए वो सफल हुआ सभी कौरवों और पांडवों के बनिस्पत, वैसे ही हम अपने विद्यार्थी काल में अपने आप को पूरी तरह एकाग्र रखेंगे अपनी पढ़ाई पर। अपनी इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज़ हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो पूरी दुनिया आपके अनुकूल हो जाएगी। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही सुंदर जो है आज का दिन है, रविवार का दिन है और हॉलीडे यानी छुट्टी का दिन है ना। 27 सितंबर 2026 आज का तारीख है और भारतीय समय के अनुसार देखा जाए तो अश्विन रविवार आज है और अश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा रविवार उत्तर भाद्रपद आज है और इस्लामी हिजरी रबी उल अखीर इतवार आज है। इसके साथ ही आज विशेष पुत्री दिवस है, विश्व पर्यटन दिवस भी आज है। तो आइए आज के इस यादगार दिन को खूबसूरत बनाते हैं आप सभी के साथ मिलके गुड मॉर्निंग आबू इस कार्यक्रम में। जी हाँ साथियों, आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर गुड मॉर्निंग आबू इस कार्यक्रम को और आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के इस गुड मॉर्निंग आबू कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पुत्री दिवस पर। ये विशेष बेटी दिवस या डॉक्टर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है, डॉक्टर्स डे सॉरी, तो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये दिन बेटियों को समर्पित है। विभिन्न देशों में डॉटर्स डे अलग अलग दिन मनाया जाता है लेकिन भारत में इसे सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है, जो हर वर्ष 2020 से इसकी शुरुआत हो गई थी और यह 27 सितंबर को आता है। ये दिन दुनिया भर की बेटियों के लिए खास दिन होता है। कहावत है कि बेटे वंश को आगे बढ़ाते हैं लेकिन घर की रौनक बेटियों की खिलखिलाहट से ही आती है। तो आइए आज के दिन को यादगार बनाते हैं आप सभी के लिए और पुत्री दिवस यानी बेटी के नाम कुछ गाने आपको सुनाने वाला हूं और अभी बताइए मुझे कि कौन सा गीत आपको बेटी पर या बेटी के लिए डेडिकेट करना है, तो मुझे भी खुशी होगी कि आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं। तो चलिए, जो लोग अपनी बेटी से प्यार करते हैं उन सभी के लिए आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हुए आइए बेटियों के लिए नमन और सलाम, उनके लिए ये गीत आज के इस गुड मॉर्निंग आबू में। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। चलिए, मेरी छोटी सी कली, बहुत ही प्यारा सा अनिल कपूर और गुड़िया पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत गीत आपने सुना। और आइए आगे बढ़ते हैं और पुत्री दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। भारत विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा, लेकिन अभी भी किसी हिस्से में, कई जगहों पे बेटियों को लेकर गलत धारणाएं बनी हुई हैं कि बेटियां परिवार का एक तरह से बोझ है। उनके जन्म से ही परिवार को दहेज से लेकर तमाम चीज़ों की चिंता रहती है। कई बार बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, उन्हें घरेलू हिंसा के रूप में देखा जाता है और ऐसे दुष्कर्म, दहेज आदि का शिकार होना पड़ता है। बेटियों को बचाने और उनके प्रति समाज में जागरूकता लाने के लिए ही इस दिवस की शुरुआत की गई है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप भी अगर इस तरह के किसी चीज़ों में फंसे हुए या खुद आप इसमें घेरे में घिरे हुए हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा झकझोर दीजिए और थोड़ा सा अपने आप को झटक कर आगे आइए और देखिए कि संसार में बेटियाँ और बेटे समान रूप से हैं। आज के समय में सारा संसार बदल रहा है, तो आप क्यों नहीं बदल रहे, है ना? तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और बेटी के नाम बहुत ही प्यारा सा गीत गुड़िया रानी है आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। हेलो जी, नमस्कार। चलिए, हमारे गुड़ीलाल जी शायद याद कर रहे होंगे,

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। अभी अभी सुभाष जी ने आप सभी को बड़े प्यार से याद किया और बेटी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं, पुत्री दिवस की। और उन्होंने कहा कि लोग बेटी पैदा होने पर दुखी होते हैं, लेकिन दुखी नहीं होना चाहिए, उन्हें सुखी होना चाहिए। बेटी घर की लक्ष्मी है और बेटी आती है तो जीवन में बदलाव जरूर आता है। तो आइए, बेटी दिवस का महत्व ये है कि बेटियों को किसी से कम ना समझे, उनको भी बराबरी का हक दे। इस दिन देश भर की बेटियों के सफलता को सहारा जाता है और भारत में ये दिन सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। भारत में डॉक्टर्स डे मनाने के लिए रविवार का दिन इसलिए चुना गया ताकि माता पिता अपनी बेटियों के साथ ज़्यादा समय बिता सके और उनका ये दिन खास बना पाए। आज भी दुनिया के ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिला और पुरुष में फर्क किया जाता है, इसीलिए कुछ देशों में सरकारों ने समानता की प्रोत्साहन करने का प्रयास किया। बेटी दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए जाने और त्यौहार मनाने का फैसला लिया गया। सरकार की नज़र में हर इंसान बराबर है और लोगों को भी इस बात के लिए जागरूक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आइए, बेटी पर एक और खूबसूरत गीत, नन्ही सी गुड़िया अभी आपके नाम, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। चलिए, बेटी पर बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे थे और निश्चित तौर पे जब आप इस तरह के खूबसूरत गाने सुनते हैं तो मन जो है खुशियों से भर जाता है। और बेटी दिवस की फिर एक बार बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएँ करते हैं। और बात कर रहे थे हम लोग विशेष आज के दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है, लोगों को बेटियों के प्रति जागरूक करना, लोगों के मन में इस भ्रांति को दूर करना है कि बेटियां समाज के लिए बोझ है। इसके साथ ही बेटियों को जन्म से पहले मारना या फिर घरेलू हिंसा, बेटियों को ना पढ़ाना, दहेज लेना जैसी बहुत सी रूढ़वादियाँ भ्रांतियों को दूर कर लोगों को इसके लिए प्रति जागरूकता फैलाना है, बल्कि उन्हें ये समझाना है कि बेटियां हम सभी के घरों का एक अहम हिस्सा होती है। तो आज ये धारणा टूट रही है कि बेटियां बेटों से किसी भी मामले में कमतर है। सरकार ने भी कई योजनाओं के माध्यम से लड़कियों की स्थिति को सुधारने का काम किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लड़कियों के सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है। उनके शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लिंग अनुपात में अनुसुधार, इस कारण लड़कियों के लिंग अनुपात में भी सुधार आया है। यूनिसेफ की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में लड़कियों और लड़कों के स्थिति बेहतर हुई है। प्राइमरी स्कूलों में लैंगिक अनुपात सुधारा है जिससे बाल विवाह में कमी आई है और किशोर अवस्था में गर्भधारण के मामले भी कम होते जा रहे हैं। आज अगर एक बेटी के पिता या अभिभावक है तो आप भी इसी अपने इस दिन अपनी बेटी को कुछ खास महसूस कराने के लिए उनके पसंद की चीज़ें करें। उसे कोई किताब या उसकी पसंद की कोई चीज़ उपहार में दें। आप चाहे तो घर पर उसकी पसंद का कुछ भोजन आदि बना सकते हैं। इस दिन आप अपनी बेटियों को आशीर्वाद देकर उनके सफल जीवन की कामना कर सकते हैं, उनके विचारों को गले लगा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आप उन पर कितना गर्व करते हैं। बेटियों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, संस्कार अति ज़रूरी है और जब बेटियों को सही संस्कार मिलेंगे तो बेटियां केवल अपने माता पिता का ही नहीं बल्कि अपने कुलों का व सारे समाज का नाम भी रोशन कर सकती है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए, बेटियां किसी से कम नहीं।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ चलिए बेटी दिवस की बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। आशा करूंगा कि आज का ये संदेश आप तक पहुंच गया होगा कि कैसे हम बेटियों का सम्मान करें, उन्हें भी उतना ही सम्मान, उतना ही प्यार, उतना ही सब कुछ दे जितना हम लड़कों को देते हैं। तो निश्चित तौर पर बेटा बेटी में ना करे कोई भेद, वही माता पिता है महान। तो आइए बात करते हैं अब पर्यटन दिवस के बारे में। आज विश्व पर्यटन दिवस भी है। हर साल 27 दिसंबर को सितंबर को ये खास मनाया जाता है विश्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और उसमें जो लोग हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और आजकल तो वर्ल्ड टूरिज्म डे के साथ साथ हम लोग विलेज टूरिज्म की भी बातें सामने आ रही है, क्योंकि विदेशों में जो लोग रहते हैं गाड़ी ट्रैफिक चकाचौंध भरी चीज़ों को देखकर नेचर से दूर हो रहे हैं। तो वर्ल्ड टूरिज्म विश्व पर्यटक दिवस के साथ साथ गाँव का पर्यटन भी विकसित हो रहा है विलेज टूरिज्म के नाम से। आप देखेंगे जितने भी टूरिज्म डिपार्टमेंट हैं हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये टूरिज्म का एक विशेष ऑफिस होता है, वहाँ से आप अगर जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको विलेज टूरिज्म की कुछ बातें शेयर होगी और वो आप खुद भी अपने घर से कर सकते हैं। तो ये कैसा होगा संभव, इसके बारे में बातें करेंगे। और 1980 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व पर्यटन दिवस आयोजन करने का शुरुआत किया। 27 सितंबर को ही उन्होंने शुरू की थी, तब से लेकर आज तक निरंतर विश्व पर्यटन दिवस सभी विश्व के संगठन मिलकर देश में मनाते आ रहे हैं। अच्छा, इसका मेन उद्देश्य क्या है? जैसे कि विश्व पर्यटन दिवस के लिए 27 सितंबर का दिन चुना गया क्योंकि इस दिन 1970 में विश्व पर्यटन संगठन का संविधान स्वीकार किया गया था, और महासभा हर साल विश्व पर्यटन दिवस की विषय वस्तु तय भी करती है। विश्व पर्यटन दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यटन और उसके सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक व आर्थिक मूल्यों के प्रति विश्व समुदाय को जागरूक करना है। विश्व पर्यटन दिवस का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटन के द्वारा अपने देश की आय को बढ़ाना है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एक राष्ट्र को मेजबान राष्ट्र घोषित किया जाता है जो कि जियोग्राफिकल ऑर्डर पर होता है। विश्व पर्यटन दिवस का मेजबान 2006 से यूरो, 2007 में दक्षिण एशियाई, 2008 में अमेरिका और 2009 में अफ्रीका को बनाया गया था। इस तरह पूरे विश्व के देशों में पर्यटन को बढ़ावा देना, कार्यक्रमों का आयोजन करना जिनमें सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। तो कुल मिलाकर विश्व पर्यटन दिवस मनाने के पीछे यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों को इसके बारे में बताना, और जो लोग सामाजिक तत्वों से जुड़े हुए हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी इसमें शामिल करके उनके जीवन को बेहतर बनाने का भी विकल्प जोड़ा गया है। तो देखिए, जैसे कि ये सारी योजनाएं जो हैं कहीं ना कहीं हम सभी को हमारी रुचि के अनुसार, अगर आपका संस्कृति में, सामाजिक सेवाओं में या पर्यटन में रुचि है, घूमने के शौकीन हैं, तो आपके लिए ये दिन काफ़ी ख़ास है। तो इसमें जो चीज़ें बनती हैं वो लोगों को सुविधा दें, लोगों को अच्छी चीज़ों की तरफ ले जाएं, इसके लिए ये सारी योजनाएं बनती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 8:23 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ। विश्व पर्यटन दिवस की बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हुए बेटी दिवस पर भी बहुत शुभकामनाएं। एक और गीत आपको सुनाते हैं और ये गीत बेटियों के लिए खास पिक्चराइज किया गया है। लोरी है ये, और ये बड़ा अच्छा लगेगा आपको। सुनिए, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। 8:31 हो रहे हैं और आइए विश्व पर्यटन दिवस के बारे में बातें कर रहे थे और हम लोग जैसे कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आप घर से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप गांव में हैं, आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है और अगर आप अपने घर को साफ सुथरा रखने वाले हो तो पर्यटन का ये खूबसूरत अवसर जो है आप ले सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है गांव में ज्ञान समझ और स्वच्छता की कमी के कारण ही व्यक्ति पीछे रह जाता है। अगर आप स्वच्छता को अपनाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके छोटे से ज़मीन और एक घर उसी में से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कैसे शुरू कर सकते हैं, आइडियाज़ शेयरिंग करना हमारा काम है, प्रैक्टिकल करना आपके लिए है। तो कैसे करेंगे हम लोग, जैसे कि एक तो पहला आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के जो पर्यटक ऑफिस है, टूरिज्म ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट का, शिरोई में जाके वहाँ पर संपर्क करना है सबसे पहली बात, ठीक है। आपके घर और आपका जो क्या कहते हैं ज़मीन, उसको कंपाउंड लगा देना है, ठीक है। हल्की सी जो है आप कंपाउंड, तो वैसे जो है कैंपस में जैसे आप जाएंगे किसी यूनिवर्सिटी में वगैरह, उनका कैंपस वॉल होता है ना। अब आप वॉल बनाने के बजाय आप अगर पेड़ पौधे ही अच्छे बांस की लकड़ियाँ का लगाकर आप पूरा अपना एरिया को कवर कर लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक तो वो सबसे पहला काम वो होगा, बांस के बंबू आप बॉर्डर पर अपना जो ज़मीन है उसके चारों ओर कंपाउंड बना दीजिए, जितना भी आपका जगह है, ठीक है। और उसको एक आगे गेट लगाइए और दूसरी तरफ पीछे भी एक गेट रखिएगा। उसके साथ में आप पूरा स्वाद मेन है आपके जो ज़मीन है उसकी पूरी जो है फ्लैट कर लीजिए उसको एक बार, जैसे पीछे जो है सुंदर उसको बना लीजिए टेबल लैंड की तरह। और उसके बाद आप उसके इर्द गिर्द जो है रूम्स बनाइए, 3-4 बनाइए, जितना बना पाते हैं 1-2 बनाइए, और वो बांस के लकड़ी का ही बनाइए ताकि आपको कोई चीज़ बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सीमेंट रेती का इस्तेमाल ना करते हुए 2-3 झोपड़ी नुमा स्वच्छ सुंदर दिखने वाले बम्बू के घर बनाइए और उसके अंदर जो है आधुनिक चीज़ें रखिए। उसके अंदर क्या करना है, बहुत ही सुंदर बेड हो और लाइट हो, बाथरूम हो, ये सारी चीज़ें आपको आधुनिक रूप से उसको यूज़ करना है। तो और बीच में जो स्पेस है वहाँ पर आप फूल फल जो भी आप लगाना चाहे, और उसमें बीच बीच में कुछ रास्ते बनाइए छोटे से जो पैदल चल सकें, ठीक है। आपका समझो जितना भी ज़मीन है उसके आसपास में 4 दिशा के अंदर 2 दिशा में आप घर बनाइए, 2 दिशा में दरवाजे रखिए, गेट रखा आपने, और बीच में जो स्पेस है आप में उसमें 4 प्लॉट बनाइए। 4 प्लॉट में अलग अलग तरह के आप चीज़ों को उगाइए और उन 4 प्लॉट के बीच में कोई भी आना जाना कर सके पैदल, इतना सा रास्ता ज़रूर रखिए। हो गया आपका टूरिज्म का बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म तैयार, और आप इसके फोटोग्राफ्स बनाइए, उसको जो है अच्छी तरह से फोटोग्राफी करके वीडियो बना के आप अपने टूरिज्म वेबसाइट जो है उसमें अपलोड कीजिए। अपना खुद का एक छोटा सा वेबसाइट फ्री में गूगल वेबसाइट बनता है, उसमें आप अपलोड कीजिए और उस साइट को आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो टूरिज्म पर्यावरण का जो ऑफिस है वहाँ पर आप जाके अपने साइट को उनके साथ में जोड़ दीजिए और आपका फ़ोन नंबर ज़रूर दीजिएगा, तो बस आपका काम शुरू हो जाता है। फिर तुरंत आपको जो है लोग फ़ोन करना शुरू करेंगे और जो लोग आएंगे उनको बहुत सम्मान, उनको बहुत वैल्यू देना है, ठीक है ना। इतना ज़रूर याद रखिए कि आप जो स्टेशन पर आएगा बंदा तो स्टेशन से सीधे आपके खेत के पास पहुँचे, आपके घर तक पहुँचे जहाँ आपने ये बनाया है, ये सुविधा ज़रूर ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कोई बंदा बाहर से आएगा
तो आपके यहाँ पहुँचने में उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपने उनको आपका फ़ोन आ गया, मेल आ गया, डिटेल्स आ गया, तो आप एक प्राइवेट जो है रिक्शा वाले को बोल के रखिए और उसे भेजिए, उसको जो भी अमाउंट है वो तय करके आप खुद उनको लेने भेज दीजिए। तो इससे क्या होगा, टूरिज्म में जो लोग आएंगे उनको वैल्यू मिलेगा कि जैसे हम अपने कोई करीबी दोस्त आते हैं, अपने परिवार वाले आते हैं, हम स्टेशन जाते हैं, उन्हें लेने जाते हैं और लेकर अपने घर बहुत ही प्यार से लेकर आते हैं। इसी तरह जो पर्यटक आपके पास आ रहा है तो उसे भी अपना घर जैसा महसूस हो, इसलिए आप स्टेशन पे भले आपके कोई गाड़ी नहीं हो, आप रिक्शा वाले को ज़रूर नंबर देके उसे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे देना। अगर 100 रुपये उसका चार्ज है स्टेशन से आपके यहाँ आने तक का, उसको आप 150 रुपये दीजिए और उनको बोलना स्टेशन पे इस आदमी का बैग वगैरह लेके आप सीधा इधर लेके आओ। तो इससे क्या हो जाएगा, एक वैल्यू बढ़ जाएगा और वो वैल्यू आप अपने इसमें प्राइजेस में ऐड कर सकते हैं। आपको अपने जेब से तो नहीं देना है, लेकिन आप वैल्यू एडेड चीज़ें इस तरह से करेंगे तो विलेज टूरिज्म का जो सपना है वो आपके लिए, विश्व पर्यटक दिवस आपके लिए एक नया जो है विकल्प खोलेगा। अपने घर को, अपने खेती को टूरिज्म के नक्शे पर लेकर आइए। तो अच्छा लगा हो आइडिया तो फोन करके बताइएगा हमें। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ विश्व पर्यटन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। देखिए, पर्यटन दिवस को थोड़ा सा जो है इन्वेस्टमेंट जरूर है शुरुआत में, और थोड़ा सा उसको अगर आप डेकोरेट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप थोड़ा सा इसके लिए अपने किसी टूरिज्म ऑफिस से ज़रूर संपर्क करें, और साथ ही साथ अपने स्वच्छता को जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, जहाँ पर सफाई होगा वहाँ पर लक्ष्मी का निवास होगा, ऐसा कहा जाता है। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अपने जीवन को और थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप जो है विशेष रूप से आपको बहुत कम लागत में भी बहुत अच्छा आप जो है टूरिज्म प्लेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसके लिए और राजस्थान जो है एक ऐसा खूबसूरत टूरिज्म प्लेस है जहाँ पर लोग आना भी पसंद करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप सभी इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। और जब आप लाभ लेंगे तो आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसी तरह का कार्य करते हुए इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देने से, आपके एक बार काम करने से जीवन भर के लिए आपका काम हो जाता है। तो आइए अब सीधी मैं आपको ले चलता हूँ। अगर आपके पास कोई आइडिया हो, कोई विकल्प हो, तो फ़ोन कर सकते हैं 94-1415-1415 इस नंबर पर, और हमें बता सकते हैं कि आपके यहाँ आप विलेज टूरिज्म के लिए क्या सोच रहे हैं। अगर आप सचमुच करना चाहते हैं तो हमारी रेडियो मधुबन की टीम भी आपको हेल्प कर सकती है। तो आप हमारे पास सीधे आइएगा और हम आपके पास जो एसेट है उसको कैसे हम पर्यावरण में या टूरिज्म में बदल सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्लानिंग करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज के इस खूबसूरत दिन को यादगार

0: टूरिज्म वर्ल्ड ट्रैवल तथा पर्यटन के क्षेत्र में अग्रीन संगठनों ने भारतीय पर्यटन को सबसे ज़्यादा तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र के रूप में देखा है, तो फिर हमें भी देखना चाहिए। हेलो जी, नमस्कार।
1: जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, सुरेश जी बोलते हैं।
0: जी सुरेश जी, स्वागत है, बताइए।
1: बस अच्छे मीठे हैं, सुन रहे हैं, आज पर्यावरण दिवस भी है, बेटी डे। तो बताओ तो सर, बेटी होती तो बात कहना भी ऐसी होती है, बताओ तो मेरे भी दो बेटी है, तो बेटियाँ तो हमें से कोई काम होता पहले आती है, तो ध्यान तो बेटी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: माँ बाप का सभी का ध्यान रखती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हमारे सभी जो बेटियां हैं इसको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पिता की सेवा तो बेटियां ही कर रही, देखो आज बेटे होते ही भी बेटियां बेटो अपने माँ बाप को साथ में रख रही है, बेटा है फिर भी, लेकिन बेटा नहीं रखता है, ऐसे कई जगह पे देखने को मिला है। तो सभी को हमारे तरफ से नमस्ते सर, और सोम आज रविवार है, सभी को आज के दिन की भी शुभकामना, श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है, तो बताओ तो हमारे माता जी का भी श्राद्ध आज के दिन ही है,
0: तो बिल्कुल बिल्कुल
1: थोड़ी देर में हमारे घर पे भी पूजा होती है, पूजा होगी आज, तीन साल पूरे हो गए, तो कई सारे मेहमान भी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है, तो छुट्टी है, मैं घर पे
0: जी जी
1: पूजा भी थोड़ी देर में है, और साथ का भी सभी को नमस्ते, ओम शांति सर।
0: ओम शांति सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और चलिए श्राद्ध माता जी का रखा है अपने, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बेटियों को भी आपने याद किया तो बेटी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, पर्यटन दिवस और बेटी दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को ले चलता हूं समाचारों की तरफ, उसके बाद फिर हम लोग आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम को भी सुनेंगे। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित, और भारत वेस्टइंडीज के बीच तीन मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया। आतंकवाद पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
4: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए, खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
5: श्री
3: जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सामने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से संबंधित बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि भारत

0: 75 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हर देश को अपनी जरूरतों के अनुसार AI विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
2: तमिलनाडु देश के प्रमुख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME राज्यों में से एक है। राज्यों में कारोबारी एक ही पोर्टल से अलग अलग विभागों से जरूरी मंजूरियां ले सकते हैं। MSME के विकास के लिए राज्य में अलग मंत्रालय भी है। MSME क्षेत्र देश की GDP में करीब 31% का योगदान देता है और कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कोयम्बटूर में विनिर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग से जुड़े 80,000 से अधिक पंजीकृत MSME है। कोयम्बटूर के लीड बैंक के जिला प्रबंधक कार्तिकेय ने आकाशवाणी को बताया कि मुद्रा योजना शुरू होने के बाद जिले के उद्यमियों ने कारोबार और उत्पादन बढ़ाने में काफी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की 4 श्रेणियों में मिलने वाले ऋण से उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने और वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है। तमिलनाडु में कुल 7,59,847 सूक्ष्म, 1,01,861 लघु और 2,818 मध्यम उद्योग पंजीकृत हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का दोपहर में बालारामपुरम में श्री उथराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। एक रिपोर्ट।
4: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की GDP में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ 50 लाख से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। एक रिपोर्ट।
5: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पिछले 24 घंटों में उधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे अधिक वर्षा हुई। लगातार बारिश के बीच प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी भी हुई है। इस बीच मौसम की चेतावनी को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों, नदी नालों तथा जल भराव वाले इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार वर्षा से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है।
6: गुरुवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत राज्य के कई हिस्सों में जारी है। 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में सामान्य से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट आई है और फसलों, विशेष तौर पर गन्ना, धान और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उड़ीसा के कई हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: जी धन्यवाद जागृति। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला भी खेली जाएगी। और जागृति, अगर बात करें जापान में जारी एशियाई खेलों में, तो भारतीय पुरुष और महिला तीरंदाजी टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों की तिकड़ी साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशल दलाल ने भूटान को करीबी अंतर से हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिलाओं की टीम चिकिता तनिपार्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रतिका प्रदीप ने कजाकिस्तान को हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिलाओं के शॉर्ट बोर्ड स्पर्धा में भी शुगर शांति गायन और कमाली प्रकाश दोनों तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदकों सहित कुल 30 पदक जीते हैं।
1: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में कल एक विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और 35 घायल हो गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने निर्वाचन आयोग की बैठक को प्रमुखता दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। दैनिक भास्कर ने डिफेंस रिफॉर्म शीर्षक से लिखा है, रक्षा सौदों की मंजूरी में लगने वाले समय को घटाने की तैयारी में सरकार, छोटे रक्षा सौदों को कैबिनेट से छूट पर विचार। दैनिक जागरण ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को प्रमुखता दी है, पाकिस्तान आतंकवाद का सीरियल प्रैक्टिशनर, कहा पश्चिम एशिया में व्यापारिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। जापान एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर हिंदुस्तान ने गर्व शीर्षक से शब्द दिए हैं। कबड्डी में भारत को दोहरा स्वर्ण, निशानेबाज और एथलीट भी चमके। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, कबड्डी में भारत का सोने पर सुहागा। राजस्थान पत्रिका ने विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष खबर दी है, नींद, खामोशी, नो फोन और गांव की धीमी जिंदगी बनी लोगों की नई मंजिल। पहले दुनिया देखने निकले थे, अब दुनिया से दूर होने, मन की शांति के लिए करते हैं यात्रा। नवभारत टाइम्स ने स्वास्थ्य के नजरिए से एक शोध प्रकाशित किया है, चाय के साथ रोज 100 ग्राम नमकीन बना सकती है बीमार। पैकेज चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, मीठे फ्लेवर ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड मीट में कैलोरी ज्यादा है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: अभी बजे हैं सुबह के 9। एक मिनट का समय स्वयं को दे

ओम शांति। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आ गए हम भूल जाऊंगा। साथियों, आज हम लोग विशेष इस एपिसोड के अंतर्गत खास बातें आपसे शेयर करेंगे, जैसे पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लोग करते आ रहे हैं कि नेचुरोपैथी या फिर हमारे डाइट, हमारे लाइफस्टाइल को लेकर हम लोग कितना अवेयर है, ये बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम लोग जागरूक होंगे, वैसे हमारी सारी चीज़ें जो है बनती जाएगी और जागरूक होने से ही हम बीमारियों से दूर हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि हम कितने नॉलेज अपने पास रखते हैं। जितना नॉलेज आपके पास होगा, उतना आप जो है खुद को समृद्ध, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रख सकते हैं। तो जब भी दुख है, दुख का कारण यही है कि ज्ञान की कमी। जब ज्ञान बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा आपके पास और आप उसे अपने अंतर्करण से स्वीकार करके अपने जीवन में बदलाव या ज्ञान को अपनाएंगे, तो निश्चित तौर पर एक सुकून जो है आपको मिलने लगेगा और अंतर आत्मा भी संतुष्टता फील करेंगे। तो इसीलिए ज्ञान की ज्योति को हमेशा बढ़ाते जाना है, ज्ञान का आलाक जगाते जाना है। सुनते रहो मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का स्वागत है, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में। और निश्चित तौर पे आप सभी को पता है कि हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जागरूक करने का काम करते हैं। और आज हम लोग नरेश अग्रवाल जी हमारे साथ है, जो पिछले कुछ एपिसोड में हमने उनके साथ बातें की, आपको जो गर्मियों के समय में जो विशेष शरबत बनाने की बात बताई थी गुड़ और इमली का, ये जो आपको रिफ्रेशमेंट भी देता है और लू लगने से भी बचाता है। तो इस तरह के बहुत घरेलू जो टिप्स है वो आपको देते हैं। आज हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में बात करेंगे, और जैसे कि हल्दी भी अलग अलग प्रकार की है, काली हल्दी के बारे में आज जानकारी मिलेगी। और साथ ही साथ हमारा जो डायबिटीज है या कैंसर है, इनको कैसे हम लोग मैनेज करें, क्या इसके लिए हमें एलोपैथिक मेडिसिन पे जाना ही होता है या हम लोग इसको पहले से प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे
1: जी,
0: हैं
1: नमस्कार,
0: आप? नमस्कार जी। जी जी, तो मैं चाहूँगा कि आज जैसे कि लाइफस्टाइल जो डिजीजेस है उसमें, और ख़ास करके डायबिटीज़ है या फिर कैंसर है, और कैंसर को हमेशा देखा गया कि वो दूसरे तीसरे चौथे स्टेज पे पता चल जाता है, शुरू शुरू में तो मालूम ही नहीं कुछ सिम्टम्स उसके होते हैं। और डायबिटीज़ भी जब पूरा आगे बढ़ जाता है तब जाके हमको पता चलता है कि ये डायबिटीज़ है। तो ऐसे में हमें अपने जीवन में इनको समझने के लिए प्राइमरी स्टेज पर क्या इसको पकड़ सकते हैं हमें?
1: जी
0: जी,
1: जैसे कि कोई भी बीमारी बनती है,
0: हाँ,
1: तो जैसे एक स्टेज के बाद आगे चल के हमें पता चलता है काफी सिम्टम्स आते हैं, तो तब तक क्या करते हैं ना, बॉडी की जो लाइफ फोर्स एनर्जी जो है
0: वो बचा के रखते
1: हैं, वो जो है उसको जो है उस टॉक्सिन्स को या उस बीमारी को जैसे वो ढक के या उसको संभाल के रखती है, अपनी एनर्जी उसमें खर्चा करती रहती है। एंड उसके बाद जब वो मैनेज नहीं कर पाते, उसकी एनर्जी से ऊर्जा के लिमिट से जब बाहर चला जाता है और वो ग्रोथ जब अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, तब जाके हमें जो है सिम्टम्स के रूप में पता चलता है। जैसे मैं सिंपल से अगर बात कहूँ तो लेट जॉइंट पेन की बात कर लेते हैं, या कमर के दर्द की बात कर लेते हैं, गर्दन के दर्द है ये, चलो नहीं तो हार्ट की प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं।
0: जी, जी।
1: लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम में व्यक्ति को जब कब जब पता चलता है, मतलब पहले तो सांस नहीं फूल रहा था, कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, अब उसको जिस दिन पता चला तो उस दिन एंजियोग्राफी कराने पे ब्लॉकेज कितना मिलते हैं है ना, 70%, 80%, 90%, 100% तक के ब्लॉकेज मिलते हैं। मतलब प्रकृति ने बॉडी के ऑर्गन्स को जो है इतनी ताकत दे रखा है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कि एटलीस्ट 50% तक की जब तक उसकी एफिशिएंसी कम नहीं होगी तब तक कोई सिम्टम्स नहीं होते,
0: नहीं होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा,
1: तो इसलिए अरे लास्ट ईयर तो हम वैष्णो देवी जाके पहाड़ी चढ़ के आए थे, कोई सिम्टम नहीं था, आज कैसे छाती में दर्द होना शुरू हो गया? क्योंकि वो ब्लॉकेज डेवलप हो रहा है और 50% तक डेवलप हो चुका है, और उसके बावजूद भी प्रकृति क्या करती है ना, कोलेट्रल्स खोल देती है, मतलब जो मेन हार्ट की नली है उसके बाजू में से जो साइड की छोटे छोटे कोलेट्रल्स नलियां जो है, छोटे छोटे नसों में से ब्लड फ्लो चालू हो जाता है। वो जब स्ट्रेस फैक्टर आती है, डाइट में गलती वाला फैक्टर आता है, और साइड की नसें बंद होती है, मेन नस तो पहले से बंद था, लेकिन साइड की नसों का जब ब्लड फ्लो जिस दिन कम होता है उस दिन छाती में दर्द शुरू होता है, और हमें पता चलता है कि मेन नस तो जो है पहले से ही ब्लॉक है, 100% ब्लॉक तो कितने साल से होता है कि नहीं है। तो इसी तरह से बॉडी के हर ऑर्गन्स के हैं। एंड अभी जो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि आम व्यक्ति में जो है कैंसर कहीं ना कहीं जो है देखने के लिए जो है, मतलब जो है डायग्नोसिस में आ रही है, बहुत ज्यादा डायग्नोसिस में आ रही है। और डायबिटिक भी जो है हमें पता नहीं होता है, लेकिन हमें जब पता है लाइफस्टाइल डिजीज बुला हुआ है कि परिवार में अगर किसी को डायबिटिक है तो उनको होने की, बच्चों को होने की संभावना जो है बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे सोसाइटी में जिन माँ बाप का ऑलरेडी डायग्नोस्ड है, उनके बच्चे क्या उसके प्रति, या उनके माँ बाप उनके बच्चों को केयर लेने के लिए कभी जो है अवेयरनेस है क्या?
0: हाँ, वो भी नहीं है,
1: वो बिल्कुल जीरो अवेयरनेस है कि हम हाँ कोई रिस्क फैक्टर है, या रिस्क फैक्टर को जो है आगे चल के 30-40 साल की एज में उनकी ना हो, तो हमें 30-40 साल समय मिलता है, या चलो बच्चा बड़ा होने के बाद भी 18-20 साल होने के बाद भी जो 10 साल मिलता है उसके लाइफस्टाइल को भी हम अच्छा बना दें। तो ये अवेयरनेस जो है ये जब तक समझ नहीं होगी, और हमने डायबिटिक के लिए नया रिस्क फैक्टर्स जो है हमने जो है और कैंसर के लिए जो नया रिस्क फैक्टर्स हमने जो प्रकृति के नियमों पर आधारित रोग मुक्त दवा मुक्त जीवन जो हमने जिसके बारे में बेस जो उसके प्रिंसिपल्स है उसको लेके हमने जो बार बार डिस्कशंस जो किया है कि घर का खाया हुआ खाना चबा के खाया हुआ खाना किन गलतियों से जाके पेट में सड़ता है। एंड उसमें हमने जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स को रेज किया, जो कि लोग जो है कंसर्न नहीं है कि अगर भोजन खाना चबा के नहीं खाते तो खाना पचने में नहीं जाएगा। लेकिन आज के अगर बच्चों को देखते हैं, न्यू जनरेशन के जो है साल डेढ़ साल दो साल के बच्चे हैं, जब तक मोबाइल में वीडियो चला के उनके हाथ में ना दे दो तो आज वो कोई भी जनरेशन का, मतलब आज की जनरेशन का बच्चा जो है खाना खाने के लिए नहीं बैठेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बड़ों में भी खाना खाने के ऊपर, मतलब हमारे अपने इष्ट को याद करके शांति से बैठ के मन को शांत करके एक खाना खाने की एक विधि थी।
0: बिल्कुल।
1: आज जो टीवी देख रहे हैं, बड़े हैं तो मोबाइल चला रहे हैं, फोन से बात कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अन सिस्टम से कर रहे हैं। पहले तो खाना चबा के नहीं खाएंगे तो कितना भी अच्छा खाना खा लो पचने में तो नहीं जाएगा। और दूसरा हमने जो सबसे ज्यादा पॉइंट को जो हमने किया कि आम व्यक्ति जो गलती करते हैं, प्रकृति की जो भोजन पाचन व्यवस्था है, अगर कार्बोहाइड्रेट डाइट, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट माना रोटी चावल आलू से बनी हुई चीजें, चाहे उसमें पोहा आ गया, उपमा आ गया, चाहे ब्रेड आ गया, जो भी, मतलब रोटी चावल आलू से बनी हुई चीजें जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट बोलते हैं, उसको अगर चबा के नहीं खाते हैं या उसके साथ दही छाछ टमाटर इमली अचार कोई भी खटाई नींबू आदि खटाई खाते हैं तो वो खाना जो है चबा के खाने पर भी ढंग से पचने में नहीं जाएगा। इसके बारे में हमने बार बार डिस्कशंस किए हुए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आइए एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका।
2: नमस्ते, कैसे हो सर?
0: बढ़िया बढ़िया है, आप बताइए कैसे हैं?
2: बस हमारे नल सर को भी हमारी तरफ से नमस्ते
1: जी। नमस्ते।
2: और आप आते हैं तो हमको एक खुशी रहती है कि आप जो बताते हैं ये एकदम स्पष्ट बताते हैं, तो इससे सबको सबको समझ में आ जाता है कि आप क्या बात कर रहे हो। तो एक आपके जो हमको बहुत खुशी रहती है, आपकी बातें हमको अच्छा लगता है। हम ये कोई भी घरेलू जो इलाज होता है हम अच्छी तरह से कर पाते हैं।
0: क्या बात
2: है। ये आपको जो बहुत अच्छी बात बताई सर की आज बिल्कुल सही बात है। आज लोग खाते खाते चले मोबाइल ही में ध्यान रखते हैं, खाना में तो ध्यान नहीं रखते बिल्कुल। कुछ कुछ अंदर खा जाए तो उसको भी पता तो मैंने क्या खाया है। तो आज मोबाइल में ज्यादा ध्यान है, इसलिए सर खाना पचता नहीं है, खाना अच्छी तरह से खाते ही नहीं है। और खाने में जो मोबाइल में जो मन होता है तो खाने में कुछ स्वाद नहीं होता सर। खाना खाए नहीं खाए सब रबर है। शुरू से आज ऐसा हो गया, आप देखो बच्चों को भी मोबाइल शुरू करते हैं, बाद में बच्चे खाना खाते हैं। तो आज बच्चों को भी लत लग गई है, बड़े तो लगती है लेकिन छोटों को भी लग गई है। तो ऐसा नहीं करना है सर। और मैं एक मेरी बात बताऊँ सर की मैं 4-5 दिन पहले थोड़ा सा मैं गिर गया था, तो जो घुटन में मुझे घुटन में लगी है थोड़ी, तो क्या है मैंने एक्सरे तो पढ़वाया लेकिन एक्सरे में कुछ आया नहीं है कि कोई क्रैक क्रैक नहीं है, लेकिन दर्द बढ़ जाता है कभी कभी ना बैठा तो वो खड़े होते ही बहुत दर्द होता है। तो उसके लिए डॉक्टर ने दवाई भी दी है और वो ट्यूब लगाने की भी है मालिश करने की, क्योंकि 4-5 दिन हो गया कोई फर्क कभी थोड़ा कम पड़ा है।
0: अच्छा।
1: तो जी आप क्या करें, जो भी तेल है तेल की मसाज करें या ऑइंटमेंट्स लगाएं, तो उसके ऊपर पतला कपड़ा डाल के जो मोटा नमक होता है ना अपना घर में खाने वाला, या खाने वाला नमक हो या मोटा नमक हो या नमक की डली हो, उसको कपड़े में बांध के उसको गर्म करें, या नमक को गर्म करके पोटली में बांधे और उसको उसकी सिकाई करें बाद में। तो नमक का जो गुण होता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है ब्लड फ्लो को बढ़ाना, क्योंकि नमक गर्म होता है ना तो गहराई से उसकी जो गर्मी है ना वो गर्मी बॉडी के गहराई तक पहुंचती है और वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन चालू करता है, और नमक की टेंडेंसी होती है वहाँ का नेगेटिव एनर्जी को भी खींच के बाहर निकालने की कैपेसिटी, और कोई ब्लड क्लॉट हो रहा है तो उसको भी निकालने की कैपेसिटी है। और दूसरा जो खून का थकाव जो जमावट होती है, जैसे बोलते हैं चोट लग गई तो उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन जाम हो गया है, जमा है, तो आप क्या करें, फिटकरी को जो फुला के प्यूरिफिकेशन करने का तरीका हमने बताया हुआ है, फिटकरी का एक टुकड़ा लीजिए, गर्म तवा पे रख दीजिए, तो वो 5-10 मिनट में जैसे मोम पिघलता है ऐसे पूरा पिघलेगा, और उसके पानी जो है एवापोरेट होकर पूरा जो है ड्राई पाउडर बन जाएगा। उसको 15-20 मिनट लगते हैं, और बाद में जब पानी पूरा खत्म हो जाए तो उसको बंद कर दीजिए और उस फिटकरी का फिर पाउडर बना लीजिए, और इसका आप आधा चम्मच पाउडर सुबह शाम जो है इसका जो है पानी के साथ आप फांकी मार लें। तो फिटकरी क्या करती ना, शरीर में कहीं भी जमा हुआ नस नाड़ी में जो खून का फ्लो है ना, उस ब्लड क्लॉट को जो खोलने की कैपेसिटी जो फिटकरी में है, ठीक है ना, तो फिटकरी का पाउडर को खाने में प्रयोग करें, आपके जो भी ऑइंटमेंट मसाज जो भी कर रहे हैं तो उसके बाद जो है नमक का प्रयोग करें, और दूसरा जो है सबसे बड़ा हथियार कौन सा है, एक टाइम का अगर भोजन आप त्याग देते हैं, उपवास करते हैं, तो शरीर अपनी सब पूरी की पूरी ऊर्जा कहाँ पर फोकस करेगी, शरीर में जहाँ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी अपनी ऊर्जा को इन्वॉल्व करती है। इसके बारे में मैंने पहले बताया होता तो एक बार जो है मेरा एक खुद का जो है, मैं खुद कार ड्राइविंग कर रहा था और किसी गलती के कारण जो है गाड़ी जो है दो राउंड पलटी मार के जो है एक्सीडेंट हो गई थी, बड़ा बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन ऐसे परमात्मा के छत्रा छाया था कि किसी को जो है मतलब खरोच तक नहीं आई थी। हाईवे में 70-80 की स्पीड में गाड़ी दाहिने तरफ पे दो राउंड लेके पलट जाना, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम पे जो मेरे को जो दर्द था, तो मैंने जैसे ही प्रकृति के नियम के ऊपर जैसे मैंने स्टडी कर रहा था, तो मैंने क्या किया ना, उसी टाइम पे से जो है उसको खाना का जो है मैंने खाना को त्याग दिया, जैसे कुछ भी अनाज का सेवन नहीं किया, सिर्फ पानी और अपना जो दर्द कम करने के लिए काढ़ा होता है ना, जो हम बुखार के लिए भी यूज करने के लिए बोलते हैं, दालचीनी पुदीना जीरा लौंग अदरक या अपना सौंठ है, तो ये सब को लेके जब काढ़ा बनाया, काढ़ा बना के जैसे उसमें एक आधा नीम का पत्ता थोड़ा हल्दी भी डाल दिया और अनाज नहीं खाया 24 घंटे के लिए, तो मेरा दर्द जो है अगले दिन जो है वो अगले दिन ठीक हो गया था। तुम बोलने का भाव है कि अगर उसी टाइम पे अगर हम फास्टिंग का भी प्रयोग करते हैं, उपवास का प्रयोग करते हैं, एक दिन जैसे हम पानी पर उपवास करते हैं, तो बॉडी की टोटल एनर्जी पाचन से जो ऊर्जा बचता है वो ऊर्जा बॉडी के वहाँ के डेड सेल्स को रिपेयरिंग करके वहाँ का पेन मैनेजमेंट है उसकी रिपेयरिंग के काम में फोकस करती है। ये लॉ ऑफ नेचर है। हम तीनों टाइम खाना खाते हुए दर्द कम करने की गोली खाते हुए जो फायदा नहीं मिलता है उसमें से अगर एक दो दिन का हम उपवास कर लें या अनाज या के बदले में सब्जियों पे रह जाते हैं और उसको हीलिंग करने के लिए प्रकृति का सपोर्ट देते हैं, तो कैसे भी पुराने से पुराना दर्द है कम से कम समय में ठीक होने की जो संभावना बढ़ जाती है। आप समझ पा रहे
2: हैं?
1: हाँ, तो अभी आपको मैंने दो तीन टिप्स दिए भोजन के साथ खटाई को। मैं बोला ना लोकल एरिया में चोट लगी है, हड्डी में चोट लगी है, तो उस दर्द को जाने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ इससे आपको 5-7 दिन में जो है 60-70-80% तक फायदा हो जाएगा। समझ गए?
2: नमक वाला मैं कर सकता हूँ आराम से।
1: जी जी जी
2: जी जी
1: ओके।
2: शायद एक बार बता देना, मैं टेलीफोन रख के एक बार और बता देना सर, वो नमक वाला मैं समझता हूँ।
1: हाँ, आप जब फोन नंबर नोट कर लीजिए, किसी को अगर कुछ कुछ समझने में दिक्कत हो तो बाद में आप फोन से भी पूछ सकते हैं।
0: 9 9 9
1: आप रिपीट कर दो।
0: 9 9 2 8 2 8 4 0 4 0 9 1 9 1 9 7 9 7। तो ये नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और 9:22 हो रहे हैं। निश्चित तौर पे आप सभी को हम लोग जो बातें कर रहे हैं, सुरेश जी ने भी अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा किया। जब कार्यक्रम करते हैं तो नरेश जी अपनी भावनाएं विचार जो है बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताते हैं, कोई मेडिकल टर्म उसमें होती नहीं है। घरेलू हिसाब से आप घर में जिस तरह से बातें करते हैं, अच्छी चीज आपको समझ में आ जाता है। तो आप सभी को ये कार्यक्रम इसलिए भी पसंद आता है क्योंकि आपको अपनी बातें समझ में आ जाती है और आप भी अपनी भावनाओं को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको अच्छी तरह से पूछ लेते हैं। तो ये एक अच्छा शो है जहाँ पर आप अपनी बातों के साथ जो है अपने सेहत के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो आइए, जैसे कि हम लोग शुरू में मैंने कहा था काली हल्दी के बारे में बात करेंगे। काली हल्दी तो नाम भी पहली बार सुना मैंने, हल्दी पीली होती है ये तो हमको पता है। तो ये काली हल्दी का क्या रहस्य है और आयुर्वेद में इसको क्या इम्पोर्टेंस दिया है और ये कैंसर जैसे बीमारी पर भी कैसे काम करता है? जी
3: जी, तो काली हल्दी पे भी मैं डिस्कशंस करूंगा, लेकिन जो है अभी जैसे बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: ठीक है ना। अब हाँ। इसके बाद जो है अब पूरा का पूरा टाइम में से अब ज्यादा टाइम स्क्रीन टाइम बढ़ने वाला है ना। और दूसरा क्या होता है, जैसे माइंड का कनेक्शन जैसे हमारे होता है ना, तो जैसे आजकल जैसे यूट्यूब है, आप जैसे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज जो देखते हैं और लगातार देखने के बाद हमने क्या किया, एक एक मिनट में जो है हमने मान लो कि 30-40-50 वीडियोज देख लिए। अब 50 इनपुट तो हमने डाल दिए, लेकिन काम किसके ऊपर करेंगे? उसमें मान लो कि कोई काम की भी बात मिली, लेकिन नेक्स्ट सेकंड पे नेक्स्ट मिनट पे आप जो दूसरी वीडियो देख रहे हो, तीसरी देख रहे हो, अब जो लास्ट में 50-100 वीडियोस देख लिए, अब उसके बाद अमल आप किस काम पे ऊपर करने वाले हो? दिमाग के ऊपर कितना प्रेशर क्रिएट हुआ। और आज की डेट में यही हो रहा है क्योंकि शॉर्ट वीडियोस दिखाते हैं और ये जो दिमाग में जो है कोई डिसीजंस लेना या काम करने की जो कैपेसिटी या वर्कआउट करने की जो क्रिएटिविटी की कैपेसिटी जो है ये खत्म कर रहा है।
2: बिल्कुल,
3: तो आज की डेट में जो है बच्चे अभी छुट्टी है तो जो समय क्योंकि कल से सब छुट्टियां डिक्लेरेशन के 1.5 से 2 महीना है, तो बच्चों को कैसे क्रिएटिविटी काम में लगाएं।
2: सही बात है,
3: स्क्रीन टाइम पे अपने लिए और दूसरों के लिए, क्योंकि ये अभी जैसे छुट्टियां हो गई तो बच्चों का एक रूटीन था या दूसरों का भी है, तो जो रात को 10 बजे के बाद अगर हम सोएंगे तो बॉडी की ऊर्जा रीजनरेट कैसे होगी, क्योंकि जो स्लीप साइकिल है 10 से 12 और 12 से 2, ये जो 4 घंटे का नींद में जो है डेल्टा स्लीप में जो है दिमाग जो है 10-10 मिनट के लिए, ये साइकिल में भी 10-10 मिनट के लिए डेल्टा रिदम का स्लीप जाता है, और जो कि हमारी शरीर की जो अगले दिन काम करने की जो तरोताजगी या जो ऊर्जा जो देना है ना, शारीरिक ऊर्जा या दिमाग की ऊर्जा जो देता है वो 10-10 मिनट का नींद और पहले 2 साइकिल 10 से 12 और 12 से 2, क्योंकि सूरज के साथ अर्थ के रोटेशन के साथ ये साइकिल चलता है। हम चाहेंगे कि हम 12 से 2, 2 से 4 सो जाएं तो वो साइकिल एक साइकिल तो मिस कर चुके हैं और 12 बजे वाली नींद क्वालिटी आएगी ही नहीं।
2: सही बात।
3: तो ये एनर्जी जो हम डेप्लीसिएशन कर रहे हैं, जो हम खर्च कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं, शरीर को स्वस्थ रखने का काम कौन करती है? प्रकृति की दी हुई जो ऊर्जा जो है, जब तक वो चालू है तब तक हम स्वस्थ हैं। अगर ये ऊर्जा को हम खत्म कर रहे हैं, और खत्म किससे कर रहे हैं, हमारे दिमागी जो थॉट्स है नेगेटिव है, वेस्ट है, या आज की डेट में जो है इंटरनेट मोबाइल के थ्रू जो जितना ज्यादा हमारे दिमाग की ऊर्जा हम खपत कर रहे हैं। और दूसरा, जो खाना खा रहे हैं वो खाना हम कितना पेट में सड़ा रहे हैं, जो पच रहा है वो तो हमें ऊर्जा देगा, लेकिन पचाने के लिए इतनी ज्यादा ऊर्जा खर्चा करने के बाद खाना अगर जाके पेट में सड़ रहा है तो जाके शराब बन रहा है और जहरीला एसिड बन रहा है, और उस जहरीले एसिड को दुष्प्रभाव को संभालने के लिए बॉडी की 300% ऊर्जा उसमें वेस्ट जा रही है। अगर उस ऊर्जा को वेस्ट जाने से हम बचा ले तो जाके हम स्वस्थ रह सकते हैं, बाकी अदरवाइज सिंगल सिंगल बीमारी के लिए हम जो है कोई हेल्दी या कोई बीमारी ट्रीटमेंट करने के सोचे तो फिर उसका प्रिवेंशन संभव नहीं है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो इस पे जो है अभी जैसे आम का सीजन आया, हमने बताया कि खाना पेट में सड़ने का, जैसे हमने बताया कि जो है एक तो हो गया कि खाना चबा के खाने की आदत को पक्का करो, अगर घर में एक संस्कार लाना है, बच्चों में कोई डिसिप्लिन लानी है, कुछ करनी है, तो उस टाइम पे टीवी देखना, मोबाइल देखना, कार्टून्स देखना, ये करना सारा करके जो खाना चबा के खाना जो है बहुत ही मना पहला ही स्टेप है कि माइंड को स्टेबलाइज करना और घर में कोई संस्कार लाने की अगर आदत का पहला सीढ़ी है तो खाना बैठ के शांति से बैठ के चबा के खाना सिखाओ। चाहे इसके लिए मेहनत करनी पड़े, चाहे 5 से 8 के बच्चों को खाना खिलाने के लिए, शांति से बैठ के खिलाने के लिए 5 से 6 महीने को पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसे कोई एक दिन में परिवर्तन होने वाला आदत नहीं, खुद की आदत बदले और घर में बच्चों को जो है शांति से बैठ के खाना खिलाना सिखाने के लिए चाहे अपना टाइम देना पड़ेगा। और इस बात को बिल्कुल पक्का करें और जो है ये डिसिप्लिन को घर में लाने का करें, क्योंकि कोई भी संस्कार धारण करना है, कोई भी बच्चों में जो अच्छा ही धारण करना है, तो पहला कि माइंड स्टेबल हो, मेडिटेशन दूसरा चीज सिखाएं, ये टाइम के जो है क्रिएटिविटी कराएं बच्चों से। जो है ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में बच्चों के लिए भी समर कैंप चलते हैं, अपने अपने ब्रांचेस में भी चलते हैं, हेडक्वार्टर में भी बच्चों का प्रोग्राम्स होता है, तो इस टाइम पे उनको जो है आध्यात्मिकता की तरफ जो है उस चीज के ऊपर और कुछ अच्छी चीजें सीखने की तरफ भी उनके माइंड डाइवर्ट करने की जो है जरूरत
2: जरूरत,
3: ठीक है ना। अब इसके बाद जो है आम का सीजन आ गया, फल का सीजन। अब फल को खाने के साथ खाएंगे या अलग से खाना चाहिए?
2: फल को अलग से खाना चाहिए, लेकिन
3: क्योंकि
2: खाने
3: फल
2: के साथ
3: जो है फल पचने के लिए, जो अगर खाली पेट में फल खा रहे तो 20 मिनट के लिए पेट में प्रोसेसिंग होता है, अगर अनाज खाते हो तो उसका रस बनने के लिए जो प्रोसेसिंग टाइम में 3 से 4 घंटा है, और उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, काफी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए, लेकिन फल अगर खाली पेट में खाएंगे तो कैसे पचेगा? उसको मिनिमम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या मिनिमम डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए, और सेल्फ पचा पचा होता है, 20 मिनट में उसका रस जो पेट में तैयार हो सकता है, और बाद में सीधे छोटे आंत में पहुंच के 1 से 2 घंटे में उसके मिनरल्स फाइबर से, न्यूट्रिशन से सीधे खून में मिलके शरीर को फायदा करते हैं।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन अनाज के साथ मिला के फल खाएंगे तो क्या होगा?
2: सड़ जाएगा।
3: तो जब तक अनाज का पाचन नहीं होगा, फल को भी 3 घंटे से 4 घंटे तक पेट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सारे अनाज के साथ पड़ा रहना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
3: और पड़ा रहेगा तो अनाज की पाचन व्यवस्था अलग है, फल की पाचन व्यवस्था अलग है, दोनों की टाइमिंग्स अलग है, और दोनों साथ में खाएंगे तो जाके पेट में सड़ना की गारंटी है। सिर्फ आम पेट में सड़ेगा, पूरा का पूरा भोजन पेट में सड़ेगा,
2: खराब हो गया।
3: तो इसलिए मेरी खास रिक्वेस्ट है कि आप जो है आम का अगर सेवन करते हैं, दूसरे भी फल का सेवन करते हैं, तो आप भोजन से 2 घंटा पहले या भोजन से 4-5 घंटे बाद ही उसका सेवन करें, माना नाश्ता ही आम का कर लें, शाम को 5-6 बजे खा लें, और फल को दूध के साथ ना मिलाएं। आयुर्वेद कहता है ये जहर है, दूध का पाचन व्यवस्था अलग है, उसके साथ 1 कटोरी बर्फ डाल दिया, 1 कटोरी दूध डाल दिया और उसको जो है कबाड़ बना दिया, ठीक है ना, टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, कम क्वांटिटी में महीने में 1 बार या 2 बार ले लिए वो बात अलग है, बच्चे हैं, इच्छा होती है, पीते आए हैं, लेकिन हर रोज हम दूध में फल मिलाएंगे
2: तो
3: 1 कटोरी बर्फ मिलाएंगे, 1 कटोरी खाएंगे और उसको भी जो है अनाज के साथ खाएंगे, तो डबल डबल गलतियां करते हैं। तो मेरी खास रिक्वेस्ट है कि तरबूज है, खरबूज है, जो भी फल आ रहा है, एक तो पहले उसको जो है पानी में डालें, उसकी गर्मी निकलने दे, ठंडा हो, और उसके बाद जो है उसको सेपरेटली खाएं, उसको खाने के साथ मिला के या दूध के साथ मिला के खाने की गलतियां ना करें, नहीं तो पूरा का पूरा भोजन पेट में सड़ता है, शराब बनता है और जहरीला एसिड बनता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो इस बात पे खास ध्यान दें। दूसरा जो है आज की डेट में जो प्रॉब्लम जो कर रहे हैं माइक्रोप्लास्टिक। मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर को हमने प्लास्टिक के बोतल में डाल के रखा है, कार में है, कार में जो है अगर 2 दिन से ज्यादा वो प्लास्टिक के बोतल में अगर पड़ा हुआ है तो पानी क्या होगा? जब डीमिनरलाइज वाटर है तो एक्सीलरेट होकर वो पानी को जो है पानी में से प्लास्टिक को जो है ऑब्जर्व करता है, टॉक्सिन्स को ऑब्जर्व करता है। तो जैसे एक मैं पॉइंट्स को अगर रेज कराऊं, जैसे अच्छे घर हैं, बड़े घर हैं, तो फर्नीचर जो बनाएंगे कौन से लकड़ी से बनाएंगे? जो कि टर्माइट प्रूफ,
2: बिल्कुल
3: वाटर प्रूफ। तो टर्माइट प्रूफ और वाटर प्रूफ करने के लिए उस लकड़ी को किस में प्रोसेस किया गया है? केमिकल में प्रोसेस किया गया है। तो वो फर्नीचर अपने घर में पड़ा है, अब उस फर्नीचर में से वो जो गैस है, वो गैस जो है उसके केमिकल की जो है कुछ रिलीज करता रहेगा जिंदगी भर।
2: बिल्कुल।
3: और उस केमिकल को इनहेल कौन करेगा? मतलब हमारे कैंसर के जो कारण है, जो बीमारी के कारण है, माना इतने छोटे छोटे लेवल पे जो माइक्रो प्लास्टिक की बात की, अटेंशन तो है ही नहीं,
2: है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल
3: ठीक है ना। और ऐसे जो ऐसे अच्छे घर है, अच्छी चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके थ्रू से भी केमिकल्स की जो रिलीज हो रही है,
2: बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग खिलौना बनाने के लिए फाइबर यूज करते हैं,
3: हाँ,
2: वो सारी चीजें गंध दो दिन तक ऐसे
3: मतलब
2: बंद,
3: जो है बंद तो, मतलब हम समझ नहीं पा रहे कि, लेकिन मैं भी उसमें से जो आपको डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप भोजन सड़ाने से अगर आप रोक लेते हैं, आपकी जो है 75% एनर्जी जो आपका वेस्ट कहाँ जा रहा है, जो खाना खा रहे, घर का खाया हुआ खाना, चबा के खाया हुआ खाना किन गलती से पेट में सड़ता है, वहां पर हमारी बॉडी की 75% एनर्जी खाना सड़ने के बाद वेस्ट जा रहा है। आप उस वेस्ट को जाने से बचाओ,
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो इसलिए खाना चबा के खाना, और भोजन के साथ जैसे अंकुरित खा रहे हैं आप, उसमें नींबू और टमाटर डाल के खाओ, प्रोटीन रिच डाइट है, पचने में मदद करेगा। लेकिन आप रोटी चावल आलू के साथ आप दही खाओगे, छाछ खाएंगे, इमली अचार खाएंगे, नींबू खाएंगे, खटाई खाएंगे, तो चबा के खाने पर भी खाना पचने में नहीं जाएगा। क्योंकि गर्मी का दिन आया है, लोगों की टेंडेंसी है कि दही और छाछ का जो भरपूर यूज करेंगे, लेकिन आयुर्वेद बोलता है कि दही की तासीर जो है गर्म होती है, गर्मी के दिन में खाना नहीं चाहिए। और खट्टी चीज को जो है दही की तासीर, चाहे मीठी दही है, ताजा दही है, अरे मीठा दही बोलते हैं, लेकिन उसकी तासीर तो हमेशा खट्टी ही।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप दही और छाछ का प्रयोग कर रहे हैं तो छाछ तो बिलोने वाला छाछ होता है, बिलोने वाला छाछ तो है नहीं,
2: है
3: और खट्टा छाछ, पैकेट वाला छाछ पीके जो है मैंने देखा है कि यंग बच्चों को जॉइंट पेन हो जाते हैं। तो फिर भी आपको जो भी छाछ मिल रही है, आप खाने से जो है गर्मी से बचना चाहते हैं, छाछ अच्छी चीज है, लेकिन आप खाने से घंटे पहले या दो घंटे बाद यूज करें,
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और दही का भी इस्तेमाल करना तो सेपरेट करें, दही के साथ सुबह में पराठा खाएंगे, दही के साथ रोटी खाएंगे, दोपहर को दही के साथ चावल खाएंगे, खाने के साथ एक कटोरी दही ले लेंगे, दही हेल्दी होता है समझ के, वो एक्चुअली जाके शरीर में एसिड बना रहा है। आप ऑब्जर्व करिए, आपको जो पेट में और छाती में हल्की सी जलन की महसूसता होती है, लेकिन वो गलत खाने के सिस्टम के कारण हो रही है, आपको पता नहीं और आप समझ नहीं पाते।
2: सही बात है,
3: आप सिर्फ सिस्टम चेंज करके देखिए, उस एक कटोरी दही को जो है आप अलग से सेपरेट खा लीजिए, खाने के साथ ना खाएं, और आप देखिए आपका जो हल्का सा जो जलन होने का जो टेंडेंसी है ना,
2: वो खत्म,
3: बिल्कुल होती है, हर एक को होती है, लेकिन किसी को पता नहीं है, कि समझ नहीं कि वो जो है प्रकृति के भोजन पाचन व्यवस्था के विपरीत हम खाने के कारण वो जो है वो खाना पेट में सड़ने के कारण छाती में जलन हो रही है।
2: जी जी जी।
3: तो आप इन छोटी छोटी गलतियों को बचाइए, और सबसे ज्यादा आपको जो हेल्दी रहना है, शरीर के सब टॉक्सिन्स को मैनेज करना है, सबसे अच्छी बीमारी से करनी है, कैंसर को प्रिवेंशन करना है, डायबिटिक प्रिवेंशन करनी है, तो हफ्ते में एक दिन का उपवास करिए, महीने में चलो एक दिन का नहीं कर पाते हैं तो महीने में एक दिन का करिए,
2: सही बात,
3: साल में 3 दिन का उपवास एक बार कर लीजिए।
2: तो आपको समझ में आ गया होगा उपवास कितना जरूरी है,
3: उपवास कैसे करना है वो भी डिस्कस करते हैं, बताते हैं डिटेल्स में।

0: मैं कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छी बातें बताई जा रही है। निश्चित तौर पे खाने का मैकेनिज्म पेट में जाकर कैसे काम करता है ये आपने समझ लिया। अब इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे, साल में 3-4 उपवास कर लेंगे और एक अच्छी बात यह है कि आप खाना चबा चबा के खाइएगा और उसे सड़ने ना दे, तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे और वेल्दी रहेंगे। आइए बात करते हैं आगे।

0: ये हमारे जो है ऑटोफेजी बोलते हैं, जो जापान के साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, कि शरीर अपने टॉक्सिन्स को, अपने कचड़े को, अपने कैंसर सेल्स को जो है अगर 17 घंटा से लंबा फास्टिंग हम कर लेते हैं तो वहां पर ऑटोफेजी शुरू होता है। जैसे हमने उपवास के ऊपर कितने घंटे में क्या फायदा होता है, तो अगर उसको अगर आप समझ ले तो आपका उपवास के महत्व को जो है उसको जो है और समझने में, जो डीप समझने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर हम 8 घंटे तक लगातार हम ग्लूकोज नहीं खाते, मतलब कोई भी अनाज या खाना हम सिस्टम को नहीं देते हैं, तो फिर हमारा क्या होता है ना, ब्लड शुगर का लेवल जो है कम होना शुरू करता है। और जैसे ब्लड शुगर का लेवल कम होना शुरू करता है, उसके साथ क्या होता है, हमारे थॉट्स की जो स्पीड है वो बढ़ती है घटती है, हमारे दिमाग के थॉट्स की स्पीड भी जो घटनी शुरू हो जाती है, और बॉडी में कीटोन्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और एक बार तो जो है 3-4 घंटे तक भूख की फीलिंग तेज आती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे 10 घंटे 11 घंटे हो जाते हैं तो भूख की फीलिंग जो है न्यूट्रल हो जाती है, वो भूख की फीलिंग हमें तंग नहीं करती है। उसके बाद जैसे फास्टिंग 12 घंटे तक जैसे हमें एक्सटेंड कर लेते हैं तो बॉडी के जो फैट सेल्स है, फैट सेल्स जलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद जब 15 घंटे तक, जब 17 घंटे तक हम उसको फास्टिंग को कर लेते हैं, तो 15 घंटे पे क्या होता है, बॉडी के जो इंटरनल CRP लेवल है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं, तो शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स में सूजन पैदा करता है वो लेवल कम होना शुरू कर देता है। अगर 17 घंटे का तक लगातार हमने उपवास करते हैं तो 17 घंटे के बाद क्या करते हैं ना, शरीर के जो कैंसर सेल्स है, जो ऑटोफेजी हम बात कर रहे थे, तो ये बॉडी के जो टॉक्सिन्स को जो है, बॉडी की ऊर्जा, उसको खाना जब पचाने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो टॉक्सिन्स को पहला रूप में जो है भोजन के रूप में करके, या डेड सेल्स को हटाने का काम जो है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम, कैंसर सेल को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देती है। अगर 24 घंटे तक हम लगातार उपवास करते हैं तो जो गट लाइन है हमारे स्टोमा का, जो इनर लाइनिंग्स है, वो गट लाइनिंग्स की रिपेयरिंग होती है। अगर 36 घंटे तक का हम लगातार उपवास करते हैं तो जिनको बोलते हैं ना कि हमारा चर्बी जलता नहीं, पेट की एरिया की चर्बी है, दूसरी एरिया की चर्बी है, तो उस एरिया की चर्बी अगर किसको जलाना है तो उसको 36 घंटे तक का उपवास और हर महीने एक बार तो उसको जो है कम से कम करना पड़ेगा। अगर 48 घंटे का उपवास करते हैं तो ये हमारा डोपामाइन लेवल, माना जो ब्रेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, उस रिसेप्टर लेवल का जो है टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करना और उसको जो है रेगुलराइज करने का काम करता है। माना जिनको चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है, उनको कंसंट्रेशन माइंड नहीं हो रही है, या तो फिर दूसरे सारे साइकोलॉजिकल जो हम प्रॉब्लम्स बोलते हैं, तरह तरह के प्रॉब्लम्स है, वो अगर हर 3 महीने में अगर 48 घंटे का उपवास करते हैं तो उनको उन सब के मेडिकेशन से जो प्रॉब्लम है, मतलब चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, डिप्रेशन रहता है, इरिटेशन रहता है, वो सारे समस्याएं से लेके इवन के साइकोलॉजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर है तो उसको रिकवर करने में हेल्प कर सकता है। अगर 72 घंटे तक के हम फास्टिंग कर लेते हैं तो बॉडी की टोटल इम्यूनो सिस्टम जो है, लिम्फाटिक सिस्टम से लेके इम्यूनो सिस्टम से लेके बॉडी के हर सेल्स को जो है उसको रीसेट करने की कैपेसिटी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो उपवास जो काम कर सकता है, जो शरीर में रिपेयरिंग कर सकता है, जो बेनिफिट्स दे सकता है, दुनिया की कोई भी मेडिकेशन सिस्टम्स नहीं दे सकती। अगर इस बात को आप गहराई से समझ जाए तो इस बात को कौन प्रमोट करेगा, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी करेगी क्या? उनको तो कोई प्रोडक्ट बना के बेचने में फायदा है। तो ये इस बात को अगर लोगों को अवार कर दे, अगर लोगों के मन से डर निकल जाए और बीमारी होने की, बड़ी बड़ी गंभीर बीमार होने की समस्याएं अगर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 80-90-100% अगर
1: कम कर हो जाए, एलिब्रेट हो जाए,
0: मतलब जो व्यक्ति जैसे भोजन में खाना पेट में सड़ने की 2-3 बातों के ऊपर हमने ध्यान दिलाया, अटेंशन दिलाया, अगर अपने जीवन में गलतियां भी कुछ कर रहा है लेकिन फिर भी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उपवास का तरीका कर लेता है, तो मैं गारंटी करता हूं कि उसके जीवन में कोई मेडिकल फाइल नहीं खुलेगी।
1: बिल्कुल।
0: माना फाइल खुलने की रिस्क फैक्टर 80-100% तक उसकी जो है एलिमिनेट होगी।
1: सही बात।
0: तो कैंसर भी बचेगा, होने की संभावना है तो जो करेगी, और कैंसर है या कोई भी ट्रीटमेंट करा लिया है, कोई भी थेरापी लिया हुआ है, फिर भी अगर इन प्रिंसिपल्स को बाद में भी अप्लाई करते हैं तो भी उनको आगे चल के री कैंसर, री प्रॉब्लम होना, या डायबिटिक है तो डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ना, वो सब में जो है प्रिवेंशन का काम कौन करेगा या हेल्प कौन करेगा, दवाई से ज्यादा मदद जो है उपवास, और दूसरा जो है यंग और हेल्दी रहने के लिए मैं और एक बात बोलता हूँ कि सलाद खाने के नियम को कंपल्सरी करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे।

0: अच्छा
1: तो मैं जो प्रिंसिपल्स हम डिस्कशंस कर रहे थे जी, जी, बहुत जी. अच्छे से जो है ब्लड प्रेशर को प्रिवेंशन भी करेगा और ब्लड प्रेशर को ट्रीटमेंट भी करेगा.
0: अच्छा ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन क्यों बोलते हैं? उसका दूसरा नाम हाइपरटेंशन दिया.
1: जी जी उसको जो है मतलब जैसे स्ट्रेस बढ़ता है ना तो स्ट्रेस बढ़ने से जैसे क्या बोलते हैं कि जो है हाइपर हो गया हाइपर, स्ट्रेस हाइपर, तो जैसे वो हाइपर मना बढ़ना,
0: बढ़ना
1: जैसे हम थायराइड के लिए बोलते हैं हाइपर और हाइपो. तो हाइपर मना जो है हमारा थायराइड का लेवल बढ़ा हुआ है, हाइपो में कम होता है तो उसके लिए दूसरी मेडिकेशंस लगता है. तो हाइपर मना हाई जा रहा है, मना जो है लेवल से ऊपर जा रहा है, तो इसलिए हाइपर टेंशन. ठीक है ना. तो दूसरा जो है अभी जैसे मतलब सलाद खाने के नियम को अगर कंपल्सन करते हैं
0: जी, जी,
1: तो
0: जी,
1: जो नेचुरल फॉर्म ऑफ सलाद है और सलाद को क्वांटिटी में खाएं, क्वांटिटी में खाएं मतलब एक्चुअल जो हमारा जो है सलाद को अगर हम मेडिसिन के तौर पे बनाना चाहते हैं तो अगर 60 किलो का व्यक्ति है 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हुआ 300 ग्राम. तो 300 ग्राम के सलाद जो है एक प्लेट सलाद खाने की जो है एक बार मेजर कर ले कि 300 ग्राम खीरा कितना होता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: चाहे खीरा खाएं, गाजर खाएं, चाहे
0: कुछ भी खाएं, पर 300 ग्राम
1: जो भी सलाद खाएं
0: 300 ग्राम.
1: मतलब कोशिश करें जिनको एक्चुअली डिजीज प्रिवेंशन के लिए काम में लेना है.
0: जी जी जी जी.
1: तो एक बार में नहीं खाए तो दो बार में खाए, मना नहीं है. लेकिन 300 ग्राम के सलाद जो दवाई का, ये नहीं कि 300 ग्राम सलाद खाएंगे उनके खाने की क्वांटिटी कम हो जाएगी, उनको भूख अच्छे से लगेगी और नॉर्मल खाना खा पाएंगे और उनको सेटिस्फेक्शंस भी अच्छी लगेगी.
0: बिल्कुल.
1: और सलाद खाना अच्छा भी लगता है लेकिन हमारे पास पेशेंस नहीं है. मैं जो खाना चबा के खाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि सलाद को निगल तो नहीं सकते हो,
0: इसको भी चबाना पड़ेगा.
1: अंकुरित खाओगे तो अंकुरित को निगल तो नहीं सकता, उसको तो चबाना पड़ेगा ना, कंपल्सरी उसको चबाना पड़ेगा. तो वो पेशेंस हमारे पास नहीं है. माइंड मतलब हमारा इतना आउट ऑफ कंसंट्रेशन, इतना भटक रहा है कि हम माइंड को स्टेबलाइज करना या खाने के टाइम पे उसको जो है उसको स्टेबल करना, इवन कि नींद के टाइम पे भी जीरो हमारा थॉट्स होगा तब तो नींद आएगी. इसलिए क्वालिटी नींद नहीं होना.
0: बिल्कुल.
1: वरना आज की डेट में विचारधारा को थोड़ा कम करके माइंड को कंसंट्रेट करना और एक ही बात पे फोकस करके रखना जो है आज की डेट में ये जो है ये प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. तो हम जो बोलते हैं ना माइंड हमारे कनेक्टेड है. तो कोई भी चीज लर्निंग हो, कुछ हो, जैसे गुरुकुल है आज भी, कुछ स्कूल से दूसरी जगह है, इवन के स्टाफ को भी मोबाइल यूज करना मना है. ऐसे भी स्कूल्स हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं आज भी, और वहां के बच्चों के जो ग्रोथ है, जो विजडम है, उनका जो ज्ञान का प्रकाश है, जो ये है वो डिफरेंट ही है. वो वातावरण में एक मोबाइल यूज नहीं करने वाला एक वातावरण में ऐसे जाओ कि उसके वाइब्रेशन से अलग है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: इवन कि अगर मैं लौकिक में बोलूं तो राजस्थान में एक मंदिर है, वो मौनी मंदिर कुछ समथिंग कुछ बोलते हैं, मतलब वहां पर जो गुरु थे
0: जी,
1: वो संपूर्ण रीति से मौन में कई साल जो है उन्होंने जो है साधना की हुई थी.
0: बिल्कुल.
1: और वहां पर कोई भी जाए तो उस हॉल के अंदर, उस वातावरण के अंदर जो है आपको बोलने की जो है बोलने का जो है अलाउड नहीं है, व्हिस्पर करने का भी अलाउड नहीं है, पर उसका वाइब्रेशन इतना तेज है. अगर छोटे बच्चे गोद में होते हैं तो कोई भी जगह पे क्या होता है, रोना चिल्लाना शुरू कर देता, और उस वातावरण में जाने के बाद बच्चे को भी जो है बच्चे भी नहीं रोते. उसका इतना प्रभाव पड़ता है. इसलिए हम बोलते हैं कि मेडिटेशन रूम में आओ, मेडिटेशन रूम में जाओ, मंदिर में जाओ. घर में भी तो पूजा कर रहे हैं लेकिन वहां का जो वातावरण है, उस मेडिटेशन रूम में जो हजारों व्यक्ति जाके चाहे हमारे सेंटर्स के वातावरण में, चाहे हेडक्वार्टर के वातावरण में आते हैं, कदम रखते हैं, बोलते हैं कि अलग से शांति की महसूसता होती है. तो इसलिए मैं बताता हूँ कि जो है एक तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना, अपने बच्चों में जो है उस नियम को आप लेके आओ. ये छुट्टियां हो तो उनको मेडिटेशन और कंसंट्रेशन की लर्निंग करने के लिए लाओ, और खुद के लिए जो है सबसे ज्यादा जरूरी है आज की डेट में मोबाइल और फास्ट लाइफ में जो है सबसे पहले अगर हेल्दी रहना है तो अपना माइंड को कम से कम स्टेबल करने का रीजन तो समझो. हार्मोनल सिक्रेशन भी कब ठीक होगा?
0: वेलकम.
1: जब सुबह उठेंगे. तो अपना डाइट को समझना, प्रकृति का जो उपवास का जो है रोग निवारण का जो नियम है, सिर्फ दिन भर हम फल खाएं सलाद खाएं फिर भी उपवास करना जरूरी है. तो भी एक बार पाचन तंत्र तो आपको आराम देना पड़ेगा, तो ही गट लाइन को रीसेट होगी। हमारे हेल्दी बैक्टीरियल फ्लोरा जो बोल रहे हैं कि ये कांजी पियो वो पियो, तरह तरह के उपाय बताते हैं। मैं बताता हूँ कि आप खाना सड़ने के से ये गलतियां को कम करो और जो है अपना वीकली वंस या मंथली वंस या साल में एक बार 3 दिन का उपवास,
2: साल में एक बार 3 दिन का उपवास
1: करने के बाद जो वो एक्चुअली 72 आवर्स तक का आपके एक बार टारगेट दोगे तो बॉडी जो 17 घंटे में ऑटोफेजी का प्रोसेस शुरू हुआ है, आप 17 घंटे के बाद 20 घंटे में बंद कर दोगे क्या?
0: बिल्कुल।
1: तो 3 घंटे में बॉडी की क्लीनिंग होगी क्या?
0: नहीं होगी।
1: तो साल में मैं 3 दिन का एक बार टारगेट दे रहा हूँ।
0: बिल्कुल।
1: तो 72 घंटे के 17 घंटे में शुरू हुई प्रोसेस को आप 72 घंटे तक एक्सटेंड करेंगे तब तो बॉडी की क्लीनिंग होगी। और महीने में एक दिन या 15 दिन में एक दिन जो है 24 घंटे का उपवास कर रहे हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने विशेष
1: काली हल्दी का बताया,
0: काली हल्दी ये इस पे बारे में बात करेंगे, जैसे कि अभी हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर और ये डायबिटीज़ के बारे में बातें की, और बॉडी का क्लींजिंग या हीलिंग प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक सिंपल तरीका है कि आप उपवास करते ही चीज़ें सेट होने शुरू हो जाएगी। तो अब काली हल्दी के बारे में बताइए
1: जी, जैसे वैरायटी ऑफ हल्दी आती है, अपने खाने वाली हल्दी तो है ही, और उसमें भी हल्दी अगर यूज करते हैं तो ऑर्गेनिक और अच्छी क्वालिटी की हल्दी मिले तो उसका जो है औषधीय मूल्य जो है अपने आप ही एक
0: अलग ही है,
1: ठीक है ना। तो हम तेल के बारे में जो होता है सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम करते हैं, तेल हमारा प्रॉब्लम करता है। तेल खाने के लिए कम करने के लिए मोदी जी ने आह्वान किया है तो अच्छी बात है, रिफाइंड तेल से अपने घाणी से निकाल के तेल यूज करें। और हल्दी में भी जैसे दारू हल्दी आती है ना, जंगली हल्दी आती है, और ये आंबा हल्दी आती है, खाने वाली हल्दी आती है, ऐसे एक हल्दी की वेराइटी काली हल्दी, तो वो ब्लैक कलर ही होता है अंदर से जो होता है ना, पर्पल कलर ब्लैक कलर होता है।
0: अच्छा,
1: और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है और भारत में अलग अलग जगह में होना शुरू हो गया है, लेकिन खास तौर पर जो है अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, उस साइड में जो है
0: ये
1: ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसकी की जाती है। और इस हल्दी को ग्रो करने के लिए 8 महीना समय लगता है, जैसे दूसरी हल्दी मान लो कि 4 महीने में हो जाती है,
0: इसको
1: 8 महीना समय लगता है। और ये अंदर से पर्पल कलर की होती है और उसका जो पाउडर होता है एक थोड़ा कड़वा टेस्ट होता है। लेकिन इसकी जो है कैंसर प्रिवेंशन की जो कैपेसिटी है, जॉइंट पेन ठीक करना हो, चाहे कैंसर को प्रिवेंशन करना हो या कैंसर का ट्रीटमेंट करना हो, या तो फिर डायबिटीज का प्रिवेंशन करना हो,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो इसमें काली हल्दी जो है बहुत ही इसकी जो है एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू जो ओराक वैल्यू बोलते हैं, या तो फिर इसकी जो करकुमिन की जो क्वालिटी है,
0: क्वालिटी है ज्यादा है।
1: हाँ, और दूसरे जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिशंस है वो आम हल्दी से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। तो इसको काली हल्दी हल्का कड़वा होता है, तो इसको शहद के साथ जो है आधा चम्मच पौना चम्मच की मात्रा जो है हम इसको ले सकते हैं, या पानी के साथ भी फांकी मार सकते हैं। और ये ऑनलाइन से ये सब में अवेलेबल है, नॉर्मली दुकानों में वो सब में बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी
0: नहीं,
1: कॉमन अवेलेबिलिटी शुरू नहीं हुई है, तो आप इसके बारे में जरूर से जो है ज्यादा पढ़ें। एंड ये अपने आप में जो है अच्छी एंटीऑक्सीडेंट और अच्छी चीज है, दवाइयों में हजारों रुपया खर्चा करने से तो जो है 300-400 रुपया अगर हम इस काली हल्दी का यूज या ऑर्गेनिक हल्दी खाने वाली हल्दी भी हो जाए ना, ऑर्गेनिक और अच्छी क्वालिटी की हल्दी अगर आपको सोर्स मिलती है तो सामान्य सी मार्केट से 100-150 रुपया एक्स्ट्रा किलो की हल्दी का प्राइस देकर वो चीज अवेलेबल हो सकती है, तो आप उसकी भी अगर फांकी मारते हैं अगर आपको काली हल्दी नहीं मिलता है तो। जिनको भी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, जॉइंट पेन को मैनेज करने के लिए है, अंदर की सूजन कम करेगा है ना इंटरनल, क्योंकि उसके एंटीऑक्सीडेंट और ओराक वैल्यू से, तो आप नॉर्मल अच्छी क्वालिटी का हल्दी है तो आप उसको भी आप यूज करिए, आमले का यूज करिए। कैंसर प्रिवेंशन करना है, डायबिटिक ठीक करना है तो सुबह में आमला लेना चालू करो ना, कंपल्सरी करो ना डेली आमला लेना, ठीक है ना। आई थिंक ये छोटी छोटी बातें कैंसर प्रिवेंट कर सकता है, आंवला कर सकता है, लौंग कर सकता है, पालक कर सकता है, टमाटर को सेपरेट खाए तो कैंसर प्रिवेंशन कर सकता है, डायबिटिक ठीक कर सकता है, उसी टमाटर को खाने में सब्जी में दाल में नहीं डाल के आप सलाद में खा लीजिए, अलग से खा लीजिए
0: जी,
1: ठीक है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया, आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को आज हल्दी के जो प्रकार है इसके बारे में समझ में आ गया होगा और काली हल्दी किस तरह से कैंसर प्रिवेंशन करता है, डायबिटीज और ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। बस उसको जो है आप ऑनलाइन मंगा के यूज़ कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे आपको जो उपवास के बारे में नरेंद्र जी ने बताया है इसका प्रयोग ज़रूर करके देखिए आप, तो जैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेगा तो आप अपने आप करना शुरू कर देंगे। एक बार करके देखिए, है ना। तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलेंगे अगले संडे इसी तरह कुछ नई बातें लेकर। और आज हाइपर टेंशन डे है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है, तो जो भी हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं उनको तो रेगुलर गोली खानी पड़ती है। बिना गोली के उनका कंट्रोल हो सकता है क्या?
1: जी, हमने जो सिस्टम्स बताए उसको करें और उसको कंट्रोल आने के साथ दवाई की मात्रा अपने डॉक्टर के सलाह से कम करें। बिल्कुल जो है, आप अगर इन उपायों को अगर करते हैं, लिवर क्लीन थेरापी है करते हैं और आप एक टारगेट ले लेते कि मुझे बीपी की जो है बीपी से मुक्त होना है, जब कैंसर प्रिवेंट हो सकता है, डायबिटिक रिवर्स हो सकती है, तो बीपी ठीक नहीं हो सकती। बीपी ठीक होती है या तो फिर आपके जो है कम से कम दवाई में या तो सम आमला आयुर्वेदिक चीजों से भी मैनेज हो सकता है। हाँ, लेकिन मैं बोलूंगा कि मैनेज करने के बाद अपनी दवाई का डोज कम करें और एक लक्ष्य ले लें। अगर 6 महीने डाइट को मैनेज करना, फास्टिंग करना, दूसरे उपाय को करेंगे तो उनकी बीपी की मेडिसिन जो है तो उनका तो जो जल्दी से जो विड्रॉल हो सकता है और जिनका पुराना है उनका आधे से कम दवाइयां हो सकती है। हाँ, लेकिन चेकिंग करा के अपने डॉक्टर के सलाह से दवाई कम करेंगे बिल्कुल उनसे जो है दवाई से बीपी के प्रॉब्लम से जो है विड्रॉ अपना कर सकते हैं, संभव है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है। और आज के दिन इसका उद्देश्य ही है कि भाई हाई ब्लड प्रेशर के खतरों के बारे में बताया जाए और इसे कंट्रोल करने के ठीक तरीकों के बारे में जागरूक किया जाए। इस साल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की थीम भी नो योर नंबर्स है, यानी आपका ब्लड प्रेशर कितनी मात्रा में है और कैसे बढ़ रहा है इसको समझें और फिर इसके लिए आप अलग अलग तरीके अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलेंगे अगले कड़ी में, तब तक आप बने रहिए। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, नमस्ते, नमस्ते।

0: अरावली की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम कार्यक्रम एक नारी शक्ति पर आधारित है। हर एक महिलाओं में कोई न कोई विशेषताएं होती है, लेकिन वो विशेषताएं बाहर तक नहीं आ पाती है। लेकिन रेडियो मधुबन का मंच ऐसा है जिसके द्वारा आप अपनी आवाज, आप अपने विचार, आप अपनी बात को सभी तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी नारी शक्ति आज हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो में विराजमान है, जिनका नाम है नीलम शर्मा। आप आबू तलेटी में रहते हैं। आपने पढ़ाई नहीं की है, आपकी उम्र 50 वर्ष की है। शिक्षा का अभाव है जो आज भी आपको खलता है। बाकी आप कढ़ाई बुनाई और मधुर व्यवहार आपका सभी के साथ है, और घर बार तो सभी संभालते हैं। और एक नारी शक्ति घर परिवार को कितनी बखूबी संभालती वो आप सभी जानते ही है। तो आइए मिलवाते हैं नीलम जी से। नमस्कार नीलम जी।
1: नमस्ते दीदी,
0: बहुत बहुत स्वागत आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: थैंक यू दीदी।
0: तो नीलम जी, चलिए हम आपके बचपन की तरफ चलते हैं थोड़े समय के लिए। आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता?
1: सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है।
0: सोनीपत हरियाणा?
1: जी हरियाणा।
0: अच्छा जी।
1: उधर मेरा जन्म हुआ था और एक गरीब परिवार से जन्म हुआ था। हम 7 भाई बहन हैं
0: जी।
1: 3 भाई हैं 4 बहनें।
0: अच्छा, आपका नंबर कौन सा था?
1: मैं सबसे लास्ट हूँ।
0: क्या बात है, आप तो सबसे छोटे, तो आपके ऊपर इतना लोड नहीं रहा होगा?
1: नहीं, लोड तो नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे मास्टर मारते पीटते बहुत थे बच्चों को।
0: अच्छा।
1: तो मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन भाइयों ने मेरे को भेजा नहीं। कह रहे नहीं नहीं, बहुत मारते हैं, तू मार नहीं सहन कर पाएगी। तो इस कारण से मेरे को स्कूल में भेजा ही नहीं।
0: अच्छा, तो आप कोई भी बहन ने पढ़ाई नहीं की?
1: कोई बहन ने पढ़ाई नहीं।
0: भाइयों ने की?
1: हाँ, भाइयों ने किसी ने 8, किसी ने 10, किसी आगे नहीं।
0: अच्छा, इससे ज्यादा नहीं। तो आपके पढ़ने की इच्छा थी?
1: जी।
0: तो आप कहते ना कि भाई मैं गलती करूंगी तो मुझे मारेंगे, बिना गलती मुझे कैसे मारेंगे, मुझे पढ़ने दो।
1: लेकिन कोशिश तो करी थी, किसी ने मेरा नाम ही नहीं लिखवाया वहाँ पे।
0: अच्छा, पढ़ने की बड़ी इच्छा थी लेकिन नाम नहीं लिखाया और आप पढ़ाई से वंचित रहे।
1: जी।
0: तो आपकी सखी सहेलियां भी रही होगी, वो भी सभी अनपढ़ी थी या उन्होंने पढ़ी की?
1: बस एक ही थी, वो भी कम ही पढ़ी हुई थी, बाकी खेती थी हमारी, तो खेत वगैरह का ही काम था।
0: अच्छा, खेती बाड़ी संभालते थे।
1: जी।
0: और आपस में आप सभी भाई बहन कैसे रहते थे?
1: मैं सबसे छोटी थी तो बस एक भाई के साथ में मैं अच्छे से बोल लेती थी, बाकी के साथ में तो चुप ही रहती थी।
0: अच्छा, उम्र का ज्यादा गैप था क्या?
1: जो बड़ी बहनें वे सब जब मैं 2 साल की थी, उनकी शादी हो चुकी थी।
0: अच्छा जी जी। तो एक भाई के साथ आपकी अच्छी बनती थी, जो आपसे बड़े थे?
1: हाँ।
0: उनको आप दिल खोल करके बात करते थे?
1: हाँ, उनसे अच्छे से बात।
0: लड़ाई झगड़ा भी होता था कभी? चिटचैट
1: होती थी।
0: और बाकी तो भाई बड़े हैं, बहनें बड़ी हैं, तो शादी हुई होगी तो आपके सामने भाभियां भी रही होगी, आपके जीजा जी भी आए होंगे। तो भाभियों के साथ किस तरह का तालमेल था?
1: बस जो छोटे वाले हैं उनके साथ में थोड़ा अच्छा था, क्योंकि वो मेरे साथ सीखे थे, बाकी बड़ों के साथ में तो ऐसे ही जैसे माँ बाप के सामने रहते हैं।
0: जी जी, उस समय की बात कर रहे हैं जब मर्यादाएं हुआ करती थी, भाभियों को भी माँ के समान देखा जाता था।
1: जी।
0: तो ज्यादा ऐसे हंसी मजाक वगैरह नहीं होती थी?
1: नहीं।
0: फिर आपको कोई चीज चाहिए तो आप किसको कहते थे, अपने माता जी को या भाइयों को?
1: मम्मी को बोलती थी।
0: जी जी, चलिए अच्छी बात है। और खेती बाड़ी में आप क्या काम करते थे?
1: खेती बाड़ी में हर प्रकार की खेती होती थी, जैसे भुट्टे वाला मक्का होता और सगरगंदी वगैरह, गेहूं भी होते, धान भी होते, सभी खेती होती थी, सब्जी भी सभी होती है।
0: तो आप क्या करते थे, बोतने का काम करते थे या पानी या केयर करने का, पंछी पक्षी कहीं आपके दाने नहीं खा जाए ऐसे?
1: नहीं, जैसे भाई वगैरह जाते थे तो उनका खाना देने के लिए चले जाते थे, और थोड़ा अपने खेत को चारों तरफ से देखते थे, बाकी तो काम तो कोई और ही करते थे।
0: भाई लोग खेत पर जाते तो आप खाना लेके जाते, बना के आपके भाभी देते, तो आप किचन में मदद करते थे?
1: जी।
0: अपनी भाभियों की मदद करते थे?
1: जी।
0: अच्छा, और आप सबसे छोटे हैं तो प्यार तो बहुत आपको मिला होगा सभी का?
1: हाँ
0: जी,
1: सभी का बहुत प्यार मिला है।
0: खेती बाड़ी में जाना आपको अच्छा लगता था? आप टिफिन लेके जाते थे, फिर वहाँ खेतों को निहारते थे, और आपको क्या अच्छा लगता है?
1: बस ऐसे जैसे सभी खेतों में होते थे, उनके साथ में ऐसे ही चिट चैट करना, थोड़ा पेड़ पौधों पे चढ़ जाना।
0: अच्छा।
1: ऐसे खेल कूद में
0: पेड़ पौधों पर क्या तोड़ने के लिए, कुछ फ्रूट तोड़ने के लिए?
1: हाँ, जैसे कोई अमरूद तोड़ने के लिए, कभी जामुन तोड़ने के लिए, ऐसे कई बार पेड़ से गिर भी गई थी।
0: अच्छा, वो तो चढ़ेंगे तो गिरेंगे भी है, लेकिन बचपना होता है ना तो गिरने का भी डर नहीं रहता है कि गिरे तो फिर से संभलेंगे और फिर से चढ़ेंगे।
1: वही वही।
0: तो कभी कोई डांटते नहीं थे कि भाई गिर गई हो, लगी है, अब नहीं चढ़ना है?
1: डांटते थे लेकिन बचपना था, फिर कर देते थे वही।
0: जी जी जी, वो मजा ही अलग है। भले सब नीचे अपने को मिल जाता है, कि किसी को बोलते तो कोई आपको हाथ में लाके दे देते हैं। हाँ। लेकिन एक चढ़ करके तोड़ के खाने का मजा ही अलग था।
1: वो अलग।
0: और आप क्या क्या काम करते हैं?
1: जैसे सिलाई वगैरह करते थे।
0: अच्छा, सिलाई आती थी?
1: हाँ,
0: सिलाई कहाँ से सीखी आपने?
1: सिलाई मैंने घर से ही सीखी थी, और सिलाई वैसे तो कम ही आती थी, लेकिन फिर जैसे ससुराल में चले गए थे उस टाइम के बाद थोड़ी सी कुछ परिस्थिति आई, तो उस टाइम पे थोड़ा सिलाई का।
0: अच्छा, बाद में सीखा, पहले नहीं सीखा था?
1: पहले सीखी थी लेकिन कम ही करते थे।
0: जी, आप सबसे छोटे थे, इतनी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। आपकी भाभियाँ थी, माता जी थे। हाँ। बहनें थी बड़ी। हाँ। तो वो करते होंगे। हाँ। लेकिन आपने वो ध्यान नहीं दिया होगा।
1: हाँ
0: जी जी। और किचन में आप क्या बनाते थे, किस तरह की मदद करते थे अपने मम्मी और भाभी?
1: ऐसे जैसे बर्तन वगैरह धुलाई कर दिए, थोड़ी साफ सफाई में, खाना तो बाकी वही बनाते थे।
0: अच्छा। कभी खाना नहीं बनाया आपने शादी के पहले?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो कभी जैसे कोई घर पर नहीं है, कुछ बनाने का आपको बोल दिया तो
1: बनाते?

0: अच्छा ऐसे ज्ञान था।
1: हाँ हाँ ऐसे तो बना लेते रोटी सब्जी सब कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी।
0: जी जी और आप बता रहे कि आपके सखी एक ही है।
1: हाँ वो एक ही है।
0: तो आपके मोहल्ले में एक ही?
1: नहीं और भी थी लेकिन ज्यादा कर उन्हीं के साथ मैं ज्यादा रहती थी।
0: अच्छा
1: हाँ और उससे पहले एक और भी थी जिसको थोड़ा सांप ने काट लिया था और उनकी डेथ हो गई थी।
0: अच्छा तो क्या सांप भी निकलते थे क्या आप जा रहते थे वहाँ?
1: पता नहीं वो जैसे अपने ही घर में कोई पैसे उसने छुपा रखे थे वहाँ पे, तो उनकी मम्मी ने बोला कि कुछ सामान लेके आना है, तो वो वहाँ से पैसे निकालने लगी, कह लगी पता नहीं मेरे हाथ में कुछ लग गया, तो एक दो घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई।
0: अच्छा तो फिर कैसे पता चला वो सांप पकड़ में आया?
1: नहीं सांप पकड़ में नहीं आया, बस फिर जैसे वो नीली हो गई जहर चढ़ गया तो यही लगा कि वहां से पैसे निकाल थे शायद फिर वहीं पे इसको कुछ
0: काट दिया। ओहो पता भी नहीं चला और सांप भी पकड़ में नहीं आया। कितने बड़ी होगी और उसकी डेथ हुई इस तरह?
1: नहीं उसकी डेथ हुई जब वो होगी 16-17 साल तक की।
0: अच्छी बड़ी होकर गई।
1: काफी बड़ी थी।
0: आपको तो उस समय बहुत ऐसा लगा होगा कि जैसे मेरा कोई नहीं लगता है ना।
1: बिल्कुल
0: सखियों के साथ जितना हम खुल करके बात कर सकते हैं उतना किसी के सामने नहीं कर सकते।
1: किसी के सामने नहीं कर सकते
0: जी।
1: बिल्कुल
0: थोड़े हंसी मजाक भी कर लेते हैं।
1: हाँ।
0: हर प्रकार से हम जैसे चाहे सखियों के साथ रह सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप तीन सखियां थी जी, फिर आप दो ही रह गए।
1: फिर हम दो
0: तो खेती बाड़ी में आप दोनों साथ में जाते या फिर आप ही जाते?
1: नहीं साथ साथ में भी चले जाते थे हम, कभी उन्होंने भी जाना होता था जब कह देते ठीक है चलो आज दोनों चलते हैं
0: जी,
1: तो दोनों चले जाते थे। फिर ऐसे थोड़ा जैसे पापा के भाई थे चाचा हमारे
0: जी,
1: तो उनके साथ में ज्यादा हमारी टकराव ज्यादा रहते थे।
0: अच्छा क्यों कारण?
1: बस कुछ ऐसा होता था जैसे मैं तो जब जन्म लिया था मैंने एक दो साल की होंगी तभी मेरे पापा की डेथ हो गई थी।
0: अच्छा तो आपने तो पिताजी को देखा ही नहीं?
1: नहीं मेरे कोई शक्ल भी याद नहीं है मेरे पापा की
0: जी।
1: तो उसके बाद में फिर जैसे चाचा अम्मा को दबा के रखना चाहते थे
0: जी।
1: एक बार चाचा ने काफी कुछ हमारे साथ में मारपीट की, भाभी का हाथ तोड़ दिया था।
0: भाभी के ऊपर भी हाथ उठा दिया?
1: हाँ भैया का सिर फोड़ दिया था और हमारी भैंसों को जहर वगैरह भी दे दिया था।
0: तो भैंसे भी मर गई?
1: सब मर गई थी।
0: फिर आपने पुलिस केस नहीं किया?
1: सब कुछ हुआ था लेकिन मैं तो उस टाइम पे बिल्कुल छोटी थी
0: जी,
1: तो सब कुछ किया था। मेरी मम्मी के भी अंगूठे भी खा लिए थे।
0: अच्छा
1: उनकी लड़की? हाँ काफी कुछ हुआ था।
0: चलिए नीलम जी और भी आपके अनुभव सुनेंगे लेकिन यहाँ समय हो चाहे गीत सुनने का, तो एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, कहीं भी जाइएगा नहीं। नीलम जी के अनुभव और भी बाकी है जो हम बाद में सुनेंगे, पहले सुनेंगे गीत। तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नारी केवल रिश्तों की डोर नहीं, नारी केवल रिश्तों की डोर नहीं, आधुनिक युग की मजबूत हकदार है। वो चलती है स्नेह भी लेकर, वो चलती है स्नेह भी लेकर, और हर कदम पर प्रखर प्रहार है, और हर कदम पर प्रखर प्रहार है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में नीलम जी हमारे साथ बने हुए हैं। नीलम जी के काफी अनुभव हमने सुने हैं, और आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। तो नीलम जी, जैसे आप बता रहे थे कि आप साल डेढ़ साल के थे और आपके पिताजी का देहांत हो गया
2: जी।
1: फिर चाचा जी ने बहुत खराब व्यवहार किया, हाथ भी तोड़ दिया आपके भाभी के, आपके मम्मी के हाथ की उंगलियां खा गए, भाई का सिर फोड़ दिया, आपके जो भैंसे थी उनको जहर दे दिया
2: जी।
1: पहले तो ये बताइए कि आपका गांव कितना बड़ा था, शहर था या गांव था?
2: गांव था,
1: गांव था। तो आपके आसपास के लोगों ने या और भी रिश्तेदारों ने कुछ कहा? नहीं
2: नहीं, सभी आए थे, लेकिन जो हो गया तो उसको तो कोई बदल नहीं सकता था उस टाइम पे
1: जी।
2: लेकिन उसके बाद फिर पुलिस केस वगैरह हुए, काफी दिन तक केस चले
1: जी।
2: लेकिन हमारे चाचा का यही रहता था, थोड़ा सा चलते थे, एक केस खत्म हुआ दूसरे के साथ में फिर कर देते थे।
1: आपके साथ ही करते थे
2: और किसी के साथ में भी कर देते थे?
1: अच्छा।
2: लेकिन हमारे साथ में कुछ ज्यादा करते थे।
1: अच्छा, तो वो हर एक के साथ ऐसे झगड़ना करना?
2: हमारे साथ में तो इसी बात पे किया था कि उनका घर नीचे की साइड में था, हमारा ऊपर की साइड में, कह रहे यहाँ से ना पानी नहीं जाने देंगे आपका।
1: अच्छा।
2: जो ढलाव में पानी जाता था, क्योंकि पानी नहीं जाने देंगे, तो कह लगे भी पानी तो यहीं से ही जाएगा
1: जी।
2: तो ऐसे करके उन्होंने हमारा पानी रोक रखा था
1: जी।
2: फिर पड़ोसियों ने आके भाइयों को बोल दिया तुम खोल लो, हम खड़े हैं
1: जी।
2: जैसे उन्होंने उस पानी को खोला तो बस उस टाइम पे फिर मारपीट उन्होंने शुरू कर दी।
1: तो आपके तो चार भाई है, वो तो अकेले चाचा जी थे?
2: नहीं नहीं, उनके भी चार पांच लड़के थे, और उसके पास में और भी कोई आते थे बाहर के भी।
1: बाहर के लोग भी सपोर्ट करते थे?
2: हाँ।
1: तो सबने मिल के मारा? तो उस समय गांव वालों ने कुछ नहीं किया जब उन्होंने कहा कि आप खोलो? तो
2: बस उस टाइम पे देखो, बीच में लड़ाई के बीच में जब मारपीट होती है तो तब कोई नहीं जाता है
1: जी।
2: लेकिन फिर भी कुछ इंसान आगे आके छुड़वाने के लिए आए थे
1: जी,
2: छुड़वाया था। उसके बाद फिर केस वगैरह आगे चले गया
1: जी। तो आपके एक ही चाचा जी है?
2: हाँ, एक ही थे, वो भी चले गए अब तो
1: जी। लेकिन ऐसे वो बहुत उन्होंने,
2: हाँ बहुत कुछ उन्होंने
1: जी
2: किया।
1: तो
2: हाँ।
1: उनके बेटे भी ऐसा ही करते थे जैसे चाचा कहते वैसे ही करते थे उनके बेटे? हाँ। या वो थोड़े अक्कल वाले थे?
2: बस एक ही उनका अच्छा था, जो नहीं मानता था, वो अपनी पत्नी को लेके कहीं बाहर चला गया था, कैसे ना कैसे करके उन्होंने खत्म करवा दिया।
1: बेटे को ही खत्म करवा दिया?
2: उनको भी खत्म करवा दिया था।
1: अच्छा, ये तो बड़े खतरनाक बात है। तो आपके
2: फिर जैसे उनकी बहू को भी एक बेटा था, उन्होंने अपने घर पे जन्म दिया, वहीं पे पाला, कम से कम 10-12 साल का हो गया, वो वहीं पे बैठी थी कि भाई मेरे को ले जाएं, लेकिन कोई इसको लेने नहीं जा रहा था। तो फिर जैसे थोड़ा सा वो बड़ा हो गया था, बड़ा होने के बाद उसको खोस लिया, लड़के को भी
1: खुद ले गए, लड़के को ले गए?
2: लड़के को भी उन्होंने खोस लिया।
1: क्यों, लड़के को क्यों ले गए भाई? आपने तो माता पिता को चाहा ही नहीं, फिर लड़के को कैसे ले जा सकते? उन्होंने केस नहीं किया?
2: बस वो बहू भी थोड़ी गरीब घर की थी, तो ज्यादा कुछ नहीं उसने किया, बस इंतजार ही किया। लेकिन लास्ट में सुनाई में आई है कि वो आ गई थी वहीं पे ही, अपने बेटे के पास में ही आ गई थी।
1: अच्छा, बेटा तो छोटा था, फिर पालन पोषण कौन करता है?
2: उस टाइम तो पे दादा दादी जिंदे थे तो उन्होंने ही किया।
1: फिर वो बहू को ले आए?
2: नहीं, वो नहीं लेके आए। जब जैसे धीरे धीरे वो बड़ा हुआ तो थोड़ा सा हमारे चाचा जी चले गए, फिर उसके अंदर में थोड़ी हिम्मत आ गई कि मैं अब जाके अपना हक लूं, मेरा बच्चा है मैं उससे मिलूं, तो ऐसे करके फिर वो लास्ट में उधर आ गई थी।
1: अच्छा, फिर तो बेटा ने भी माँ को
2: हाँ
1: रखा। तो उनके साथ तो फिर अच्छे रहे, वो उनके भी चाचा चाची हो गए ना?
2: हाँ उनके भी चाचा चाची थे, लेकिन उस टाइम पे थोड़े सही रहे, लेकिन हमारे साथ में बाकी कुल मिला के अच्छा नहीं रहा था।
1: तो ये कितने साल आपके चला था?
2: ये कम से कम चला होगा 15-20 साल।
1: 15-20 साल बहुत लंबे होते हैं। आपके पिताजी की डेथ के बाद ही वो झगड़ते या पहले से झगड़ते आए?
2: डेथ के बाद ही।
1: अच्छा, बाकी आपके पिताजी का रुतबा था?
2: हाँ, बाकी उस टाइम पे कुछ नहीं कहते थे।
1: तो बाद में उनको क्या सूझा, क्यों वो आड़ाई पर आ गए?
2: पता नहीं उनका क्या दिमाग में आ जाती थी, जैसे खेत में अच्छा कुछ हो जाता था उनके जैसे, तो पैसा आने के बाद उनके अंदर में एक अजीब सी फीलिंग हो जाती थी।
1: पैसा कहाँ से आता उनका?
2: वो जो खेत में जाते थे ना
1: जी,
2: तो खेत से उनके पैसा आता था।
1: तो आपके शामिल तो नहीं था, अलग अलग था?
2: अलग अलग था।
1: अच्छा, तो वो पैसे को ऐसे बर्बाद करते थे?
2: बर्बाद कर देते थे।
1: तो बेटे कुछ नहीं कहते कि घर में पैसे नहीं है और आप झगड़ा?
2: बेटे भी उनके साथ में थे।
1: अच्छा, इसलिए वो सब ऐसे ही करते थे। तो कभी पुलिस तक वो पहुंचे? जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत जनों के साथ झगड़ते थे, तो कभी उनको अरेस्ट भी किया नहीं?
2: हाँ, अरेस्ट भी किया था उनको, लेकिन वही बात है, फिर आगे भी क्या होता है, पैसा वगैरह भर देते हैं और छूट जाते हैं।
1: जी जी जी हाँ।
2: तो केस तो काफी साल चला भी था
1: जी,
2: लेकिन फिर हो कुछ नहीं पाया, पैसा भर दिया गया और वे छूट गए।
1: जी जी जी। अभी कैसा है? अभी जैसे चाचा जी तो नहीं आपके, उनके लड़के हैं, तो वो सब आते जाते हैं परिवार में?
2: नहीं, आते जाते नहीं है।
1: पर अभी तो झगड़ा खत्म हो गया या अभी तक भी ऐसा ही है?
2: नहीं, झगड़ा तो खत्म हो गया है, लेकिन आते जाते नहीं है। किसी ने कभी बोलना हो तो बोल भी लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं है।
1: वो तो फिर रख के भी क्या करेंगे? हाँ। जब कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, इतना नुकसान पहुंचा चुके हाँ। हैं। कितनी भैंसे मरी होगी उस समय?
2: 5।
1: 5 भैंस। अब उनको मारने से उनको क्या मिला?
2: अब क्या बताएं, ये सोच रहे थे ना भाई अभी ये कहीं कहीं से पैसा, इनका नुकसान हो जाएगा, कहाँ से लगाएंगे केस में, इस प्रकार से मतलब उन्होंने सोच के ऐसा।
1: जी जी जी। और झूठ भी बोल दिया होगा, क्योंकि डायरेक्ट तो मारेंगे नहीं।
2: हाँ नहीं, ऐसे देखो देखा नहीं कुछ वो करते हुए, लेकिन जैसे ऐसे कभी किसी के साथ में हुआ नहीं कि भाई सभी भैंस एकदम से ऐसे मर गई हैं और फट भी गई हैं जैसे।
1: अच्छा। हाँ। ओहो, वो जहर इतना खतरनाक था। चलिए, आपके बचपन की बातें चल रही है, आप तो 1.5 साल के थे तो आपको कुछ पता नहीं। जब आप संभले तो आपके पिताजी तो नहीं थे, आपके माताजी ने आपको शिक्षा संस्कार दी होगी?
2: जी।
1: तो उस समय आपके माताजी के साथ सब अच्छे रहते थे, भाई भाभी आपके सभी?
2: हाँ, सभी अच्छे रहते थे।
1: जी। तो आपको विशेष करके उस समय क्या आपको सीखने को मिलता, क्योंकि आप सबसे छोटे हैं तो काफी मर्यादाओं में आप रहे होंगे, बड़ों के सामने नहीं बोलना या विशेष डिमांड नहीं करना। पिताजी ने होने से भी बहुत सारी चीजें ऐसे लगता है ना कि माताजी दे नहीं पाएंगे, तो अपने मन को मारते थे या फिर आपको मिल जाता था जो चाहते थे वो?
2: नहीं, बस किसी बड़ी चीज की तैसी में डिमांड नहीं करती थी, क्योंकि हमने पता था अपने घर का हालात कैसे हैं।
1: जी।
2: लेकिन कोई भी ऐसी छोटी मोटी कोई सूट है, कोई भी चीज है ऐसी मेरी, तो मम्मी को बोल देती थी, दिला देती थी।
1: अच्छा, मम्मी दिलाते?
2: भाई भी कोई ऐसे वो नहीं करते थे, सब अच्छे थे।
1: जी जी। और आपके तो बड़ी बहनें भी थी?
2: हाँ, बड़ी बहनें।
1: तो बहनों से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा?
2: बस बहनें तकरीबन ससुराल में ही चली गई थी।
1: जी।
2: तो कई बार बहनों के पास में जाना हुआ, जैसे उनके छोटे छोटे बच्चे थे इस टाइम पे।
1: जी।
2: तो कई बार चली जाती थी, काफी काफी दिन उधर रुकी आती थी। वहां का भी उनका सबका प्यार बहुत अच्छा रहता था, क्योंकि सबसे छोटी थी तो सबका ही लगाव था मेरे साथ में।
1: जी जी जी। और जैसे आप बड़े हुए, आपने दुनिया देखना शुरू किया, तब आपके चाचा चाची आपको बुलाते थे या बिल्कुल बेटियों से भी बात नहीं करते थे?
2: नहीं, वो बात नहीं करते थे।
1: अच्छा। और उनके बेटों बेटियों से भी बात नहीं करना?
2: नहीं, कभी कभी कभार हो भी जाती थी, लेकिन वो बात नहीं थी कि उनके घर जाके बैठना।
1: हाँ,
2: ये करना।
1: हाँ, वो कुछ नहीं था।
2: हाँ, ऐसा नहीं था।
1: जी जी जी।
2: बस निकलते राम रमी हो जाती थी।
1: जी जी,
2: बस इतना ही।
1: अच्छा, और आपको क्या शौक रहा?
2: सिलाई का भी शौक था मेरे को और पढ़ाई का भी शौक था। सिलाई का तो फिर भी कुछ हद तक मैंने पूरा किया, लेकिन पढ़ाई का नहीं हो पाया।
1: तो जैसे घर में बैठ के भी तो आप पढ़ सकते थे, कभी ये नहीं सोचा कि मैं घर पर बैठ कर भी अपना साइन करना है, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना सीखूं?
2: नहीं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। भाभी भी मेरी कोई सी पढ़ी लिखी नहीं है और बहन भी पढ़ी लिखी नहीं है।
1: अच्छा,
2: भाई पढ़े लिखे थे।
1: जी जी।
2: तो भाइयों ने भी कुछ फिर आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की।
1: जी जी, सभी उन्हीं उलझन में उलझे हुए थे।
2: जो मेरा छोटा वाला भाई था मास्टर, उसको इतना मार देते थे, वो चक्कर खा के बेहोश होकर गिर जाता था।
1: टीचर इतना मारते थे?
2: इतना मारते थे। तो इसीलिए वो कहता था, देख मैं इतना, मेरे को मार देते तू तो इतना सहन भी नहीं कर पाएगी।
1: तो इतना क्यों मारते?
2: पता नहीं क्या पहले के क्यों करते थे ऐसा। अभी तक
1: भाई बच्चे गलती करे तो उनको भाई समझाओ मारो, लेके ऐसे मारते थे कि चक्कर भी आ जाए।
2: हाँ, चक्कर खा के बेहोश हो जाता था।
1: ओ, तो फिर सुन करके तो दूसरे तो घबराएंगे ना। तो फिर कभी कंप्लेन नहीं की कि आप क्यों इतना मारते हो?
2: बस ऐसे कंप्लेन वगैरह का नहीं था उस टाइम पे इतना कुछ।
1: अच्छा,
2: इतना कुछ नहीं था, बस काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ।
1: चलो, अब उसका तो कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि समय बीत चुका है। तो नीलम जी, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर से समय हो चला है गीत सुनने का। तो ये गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: Jis ghar mein betiyan muskura de, jis ghar mein betiyan muskura de, wo ghar mandir ho jata hai. Uske aanchal ki thandi chhaya mein har dukh chhota ho jata hai. Uske aanchal ki thandi chhaya mein har dukh छोटा हो जाता है. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में नीलम जी हमारे साथ बने हुए हैं. नीलम जी, आपके काफी अनुभव हमने सुने हैं. अब इतना सा हम पूछना चाहेंगे कि आपके शादी कितने साल के थे और हुई, और शादी के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया?
2: जब मैं होंगी 24 साल के करीब तब मेरी शादी हुई थी
1: जी.
2: तो अगले ससुराल में भी 6 भाई थे, 2 ननद थी
1: जी,
2: ससुर नहीं थे, सास थी
1: जी.
2: सभी परिवार अच्छा था. और लेकिन जैसे जैसे ससुराल में रहे, सभी के साथ में अच्छे से रहे.
1: आपका ससुराल में कौन सा नंबर आता है?
2: ससुराल में मेरा 3रा नंबर आता है.
1: अच्छा अच्छा. गांव से कितना दूर था?
2: गांव से काफी दूर था. गांव से?
1: अच्छा, काफी दूर.
2: हाँ.
1: क्या नाम है आपके ससुराल के गांव का?
2: लेकिन है सोनीपत के उसमें मुरथल.
1: मतलब मुरथल में आपकी शादी हुई. तो ये एक गांव है, कस्बा है, कैसा है?
2: सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ही लगता है.
1: मतलब गांव है या कस्बा है, शहर है?
2: शहर में ही लगता है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के नजदीक है, बिल्कुल लगता ही है.
1: जी जी. तो यहाँ पर भी बड़ा परिवार, सभी साथ में रहते थे?
2: साथ में रहते थे. दो जो बड़े जेठ थे वे बाहर गए हुए थे.
1: अच्छा, वो बाहर रहते थे?
2: वो बाहर रहते थे.
1: अच्छा, और आप लोग गांव में रहते थे?
2: हम गांव में रहते थे.
1: तो आपके हस्बैंड क्या काम करते थे?
2: इनका अपना काम था, बस थोड़े दिन रहे थे गांव में, फिर इनका अपना काम था. हम दिल्ली आ गए थे, इनका फ्रूट का काम था. हिमाचल से फ्रूट लेके आते थे और आड़त की दुकान पे सप्लाई करते थे.
1: होलसेल का?
2: होलसेल का
1: जी. तो फिर आप कितने समय ससुराल रह करके हिमाचल चले गए?
2: मैं दो साल के करीब रहे होंगे.
1: अच्छा, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आए? ससुराल में आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपको मिलता था?
2: हाँ, ठीक था, सब अच्छा था
1: जी. और ससुराल वाले भी, सास ससुर
2: सभी
1: अच्छे थे?
2: सभी अच्छे थे.
1: जेठ जेठानी देवर देवरानी
2: सभी अच्छे थे
1: जी. जी, तो दो साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला होगा
2: जी.
1: फिर उसके बाद आप हिमाचल चले गए, तो वहां पर आपको बहुत ही अकेलापन लगा होगा, क्योंकि बड़े परिवार से आप निकले.
2: नहीं, हिमाचल ऐसे बीच बीच में जाते थे, बाकी दिल्ली आ गए थे हम.
1: अच्छा.
2: हाँ,
1: फिर दिल्ली. तो दिल्ली आप अकेले रहते होंगे?
2: दिल्ली अकेले नहीं, साथ में रहते. हाँ, हस्बैंड के साथ में.
1: हाँ, वही आप. हाँ, और आपके हस्बैंड. हाँ. तो इधर तो इतना बड़ा परिवार, उधर आप दोनों जने, तो आपको बहुत ही ऐसे अकेलापन महसूस हुआ होगा.
2: ये तो है.
1: तो पूरे दिन आप क्या करते हैं? आपके हस्बैंड बिजनेस पर चले जाते हैं फिर?
2: वो करीब 10 बजे सी बज जाते थे, उसके बाद घर का काम करना, कपड़े धुलाई, साफ सफाई, इसी में लगे रहते थे. और उसी टाइम पे था
1: बेटे का जन्म भी हुआ.
2: जन्म हुआ उसी टाइम पे, समय से सत्संग में जाने लग गई थी.
1: अच्छा, आप गर्भवती थे तब से आपको सत्संग मिल गया?
2: जी.
1: तो आप सत्संग में जाते थे
2: जी,
1: दिल्ली में
2: जी.
1: तो आप एक छोटे से गांव से बड़े शहर में आए, आपको पहले तो बड़ा अजीब लगा होगा कि ये मैं कहाँ आ गई. एक तो गांवों में तो मिलना जुलना चालू रहता है.
2: बिल्कुल.
1: अब शहरों में सब व्यस्त होते हैं.
2: हाँ,
1: तो कैसे आप समय व्यतीत करते थे? आपको ऐसा लगता होगा ना कि मैं किससे बात करूं?
2: जिसके हम किराए पर रहते थे वो दीदी बहुत अच्छे थे
1: जी.
2: बहुत प्यार से रहते थे, ऐसे रहते थे जैसे अपने घर की तरह से. खाना भी मेरे पास ही आके खाते थे और अच्छे मिलजुल कर रहते थे बहुत अच्छी तरह से.
1: जी जी.
2: उन्होंने
1: जी.
2: कभी ये महसूस नहीं होने दिया.
1: अच्छा.
2: हाँ, अच्छे से रहते थे.
1: तो आप कितने साल
2: वहाँ? मैं 4 साल के करीब
1: दिल्ली में.
2: दिल्ली.
1: फिर 4 साल बाद?
2: फिर 4 साल बाद जैसे इधर भी आए थे एक बार
1: आबू.
2: आबू भी
1: जी.
2: तो पूरे परिवार के साथ में आए थे, बेटा भी और उनके पापा भी
1: जी.
2: तो उस टाइम पे ये इससे जुड़ चुके थे, इस सत्संग से.
1: जी जी.
2: तो फिर जैसे यहाँ आए उसके बाद, फिर वो जाने के बाद थोड़े से ऐसे सत्संग में जाते थे, उनको पसंद नहीं आता था, भाई कहते थे नहीं ये कुछ नहीं है, ढोंग होता है, ये होता है।
1: अच्छा हाँ। फिर आबू आने के बाद आप अपने ससुराल गए?
2: नहीं ससुराल नहीं गए, हाँ फिर एक बार यहाँ से आके फिर एक बार वापसी चले गए थे।
1: हाँ तो आप अपने गांव ही गए होंगे ना आपके
2: हाँ,
1: ससुराल।
2: हाँ
1: तो वहाँ पर फिर सभी ने कहा कि इस सत्संग में नहीं जाना है, तो फिर क्या किया आपने?
2: तो फिर ऐसे करके इनकी तबीयत खराब हो गई, ये दौर चलते चलते तबीयत खराब होने के बाद ये एक दो साल बीमार रहे, और फिर इनको अचानक ही उल्टी दस्त वगैरह और उनकी उस टाइम पे फिर डेथ हो गई।
1: तो इलाज नहीं करवाया?
2: हाँ हॉस्पिटल में ही थे उस टाइम पे जिस टाइम पे डेथ हुई, तो इलाज ही अच्छा। चल रहा था लेकिन कुछ नहीं हो पाया।
1: अच्छा बेटा कितना बड़ा था उस समय?
2: 4 साल का।
1: 4 साल का ही था? आपके ससुराल में ही ये हादसा हुआ?
2: नहीं ये हादसा हुआ करनाल में।
1: करनाल आ गए थे रहने
2: जो हॉस्पिटल में?
1: नहीं वो तो है लेकिन रहते थे आप अपने ही घर में, ससुराल में ही रहते थे?
2: नहीं करनाल में ही रहते थे।
1: अच्छा करनाल में क्या बिजनेस था आपका?
2: नहीं फिर उन्होंने दिल्ली से जब बीमार हो गए थे तो कहने लगे भाई मैं थोड़ा सा ऐसे एरिया में रहना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आ गए थे थोड़ा खुला खुला से उसमें।
1: अच्छा करनाल आ गए रहने और फिर यहीं पर ये तकलीफ शुरू हो गई?
2: जी।
1: और यहीं पर डेथ हो गई? तो फिर क्या किया आपने? आप अपने ससुराल जाकर रहे या फिर सीधे आबू आए रहने?
2: नहीं ससुराल तो नहीं गई, थोड़े ही जैसे उनकी डेथ के बाद जो जेठ थे उनके थोड़े से मेरे प्रति गलत संकल्प हो गए थे
1: जी,
2: तो थोड़ा जिठानी के दिल दिमाग में ऐसा हो गया भाई मेरा घर उजड़ जाएगा ये हो जाएगा
1: जी,
2: तो मैंने उसको बोला कि दीदी आप चिंता ना करें, मैं ऐसा कभी सुन नहीं सकती जो आप सोच रहे हैं
1: जी,
2: तो ऐसा कभी नहीं होएगा। तो फिर मैं बेटे को उधर से लेके और मैं कहीं बाहर आ गई, रेवाड़ी आ गई मैं।
1: रेवाड़ी क्या है?
2: बस ऐसे ही आ गई, रेवाड़ी की जान पहचान थी उधर, तो उनके उधर आके मैं किराए पर रहने लग गई।
1: 4 साल के बच्चे को लेके? उस समय आपके सास ससुर नहीं थे?
2: नहीं ससुर तो पहले ही नहीं था, सास थी
1: जी। तो आपके सास ने कुछ नहीं कहा कि तू अकेली कहाँ जाएगी रहने, तू यही घर में रह?
2: नहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा उस टाइम पे।
1: तो फिर रेवाड़ी में आकर
2: उन्होंने और उल्टा इल्जाम मेरे ऊपर ही लगा दिया कि तेरे वजह से ये हो गया वो हो गया, तो फिर इसलिए मैंने वहां पर रहना फिर अच्छा नहीं समझा
1: जी। तो रेवाड़ी तो कोई नहीं था, आप अपने पियर जा सकते थे?
2: देखो पियर में भी अब मैं सबसे छोटी थी और सबको ये हो जाता, मम्मी मेरी डेथ हो गई थी।
1: अच्छा जी जी जी हाँ, तो भाई भाभी है तो फिर अपना अधिकार इतना नहीं रहता।
2: हाँ फिर सभी को ये रहता उसके पास रहे उसके पास रहे, तो ये चीजें मैं फिर मैं उधर मैंने किसी को परेशान नहीं किया
1: जी। बहुत अच्छा किया। फिर रेवाड़ी में आपने क्या किया?
2: मैंने वहाँ पे आके सिलाई शुरू की।
1: अच्छा तो पहले सिलाई सीखी होगी आपने?
2: नहीं सिलाई मैं पहले से थोड़ी सीख रही थी ना, तो वहाँ पे मैं रेडीमेड जैसे साड़ी के नीचे वाले पेटीकोट होते हैं वो मैं रेडीमेड सिलती थी।
1: अच्छा।
2: और बच्चे को पढ़ाती थी।
1: तो गुजारा चल जाता था?
2: बस चल जाता था
1: जी जी। तो चलिए नीलम जी के अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन फिर से समय हो चला है एक गीत सुनने का, तो एक ब्रेक लेंगे उसके बाद पुनः लौटेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। नारी को कमजोर कहने वालों, हिम्मत करो, पहले उसे समझो तो सही। नारी को कमजोर कहने वालों, हिम्मत करो, पहले उसे समझो तो सही। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में नीलम जी हमारे साथ है। नीलम जी के काफी अनुभव सुने हैं, और आइए और भी हम सुनेंगे। नीलम जी, जैसे आप बता रहे थे कि आपके हस्बैंड की डेथ के बाद आप रेवाड़ी चले गए रहने के लिए, 4 साल के बच्चे को लेकर। उस समय आपके पास कोई काम धंधा नहीं था, क्या करेंगे क्या नहीं कुछ पता नहीं था। फिर वहां आकर के आपने सिलाई शुरू की, फिर कैसे आप आगे बढ़े? और वहां पर किसी का सपोर्ट मिलता था?
3: नहीं, जैसे कुछ मेरे को इंश्योरेंस था इनका, तो वो पैसा मिला था, उधर ही मैंने घर ले लिया था।
2: अच्छा।
3: और बस ऐसे सिलाई वगैरह करती रही, थोड़ा किराए पे भी मैंने दे दिया था उधर।
2: अच्छा, घर रेवाड़ी में खरीदा आपने?
3: जी।
2: तो आपको घर में से तो कुछ नहीं मिला हिस्सा?
3: नहीं मिला, उधर से तो कुछ नहीं मिला था, इंश्योरेंस था, मैं वहां से कुछ नहीं लेके आई।
2: अच्छा अच्छा, हाँ वो इंश्योरेंस था जो उससे आपका बच्चे हाँ, का भी गुजारा हाँ। और आपका मतलब घर भी खरीद सके।
3: हाँ।
2: तो ये अच्छा किया कि कम से कम अपना घर होगा तो कोई निकालने वाला तो नहीं मिलेगा।
3: भाई।
2: फिर आप आबू तलेटी कैसे आए?
3: जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी रही, तो मैंने बस ये ठान लिया, भगवान भी कहते हैं कि लास्ट में इधर ही आना है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अभी से ही अपने जाने की तैयारी करूं। बीच बीच में इधर मैं माउंट आबू में आती रहती थी,
2: तो ये अच्छा लग गया आपको?
3: अच्छा लगता था जब अपने बहन भाइयों का इतना प्यार, इतना स्नेह से मिलन देखते थे, बाबा का प्यार, तो फिर मैंने ठान लिया कि अब मैं यहाँ से अब रोड चली जाऊंगी।
2: बच्चा कितना बड़ा था और आप इधर आए?
3: अब तो बड़ा हो गया था बच्चा, काफी 17-18 साल का हो गया।
2: और आपको इधर आए हुए कितना समय हो गया?
3: 5-6 साल हो गए।
2: 5-6 साल हो गए, तो अच्छा लग रहा है यहाँ आपको?
3: हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान के प्यार में, सभी भाई बहनों के स्नेह में, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
2: जी, कहते हैं ना कि आपके 4 साल का बच्चा था और आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, बहुत जने दूसरी शादी कर लेते हैं, आपने कभी सोचा नहीं?
3: नहीं, लेकिन देखो परिस्थितियों को देखते हुए देख रहे थे, और फिर थोड़ा सा सत्संग की तरफ भी थे
2: जी,
3: तो इसी कारण से फिर समझा के ठीक है, जो भी हमारी किस्मत में था वो मिल गया है, अब भगवान में जुड़ गए तो फिर दूसरी तरफ नहीं देखा।
2: जी जी, बिल्कुल आपने सोचा ही नहीं, क्योंकि आप सत्संग में शुरू से जाते थे इसलिए।
3: जी,
2: चलिए बहुत अच्छा। और बच्चे को कहाँ तक पढ़ाया आपने?
3: बच्चे ने 10 की थी बस, उससे आ गया, इसका दिमाग नहीं चला, बाकी ये और काम हर काम कर लेता है, इससे कोई काम भी नहीं छूटा। शायद ऐसा महसूस होता जैसे पिछले जन्मों का कोई इंजीनियर है।
2: अच्छा।
3: इससे कोई काम नहीं छूटा, हर काम को कर लेता है ये।
2: चलिए बहुत बढ़िया। और आपके ससुराल जाते हैं आप?
3: नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाती हूँ, न माई के जाती ना ससुराल जाती।
2: नहीं बुलाते वो, या फिर आपने अपने मन से?
3: मैं जाती ही नहीं हूँ।
2: और बच्चा अभी यहाँ पे खुश है?
3: हाँ खुश है
2: जी। सिलाई काम अभी भी करते हैं आप?
3: नहीं अभी नहीं करती।
2: तो अभी आप क्या काम करते हैं?
3: अभी बस थोड़ा सा ये SLPS कंपनी से जुड़े हुए हैं, और उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हम अभी इसी में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागृत करते हैं।
2: अच्छा, तो ये आपने कहीं से ट्रेनिंग ली?
3: हाँ, ये ट्रेनिंग चलती है हमारी ऑनलाइन।
2: अच्छा, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर के ऐसे आप हाँ, जुड़े हैं
3: जी।
2: तो आपका काम अच्छा चल रहा है?
3: जी अच्छा चल रहा है।
2: और फिर आपके रेवाड़ी में घर, उसका क्या किया?
3: नहीं, उसको बेच के हमने इधर ही ले लिया था।
2: अच्छा, इधर खरीद लिया?
3: हाँ।
2: चलिए बहुत अच्छा है। और नीलम जी, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जो हमारी बहनें सुन रही है उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
3: देखो यही कहना चाहते कि अब खुद ही हम करेंगे तभी हमें सुख मिलेगा, दूसरों के ऊपर जिएंगे तो दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है।
2: जी जी जी, तो आपके कहने का मतलब यह है कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए।
3: जी,
2: तो बहुत अच्छा संदेश दिया है नीलम जी ने कि आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। दूसरों पर डिपेंड रहेंगे तो दुखी होंगे और आत्मनिर्भर बन के रहेंगे तो सुखी होंगे। बहुत ही सही मैसेज आपने दिया है, क्योंकि आपने भी सिलाई के द्वारा अपने बच्चे की पालना की है और स्वयं का भी किया है। तो नीलम जी के हिम्मत को दाद देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, जो आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन के अनुभव शेयर किए सभी के साथ इसके लिए।
3: थैंक यू दीदी, थैंक यू।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में नीलम जी शर्मा हमारे साथ बने हुए थे। आपकी उम्र 50 वर्ष की, आप हरियाणा से थे, लेकिन अभी 6-7 वर्षों से आप आबू तलेटी में रहते हैं और आपके जीवन के अनुभव हम सभी ने सुने हैं कितने गहरे हैं। कम उम्र में आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और आपने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन सिलाई के द्वारा आपने 4 साल के बच्चे की परवरिश की, घर चलाया। उस समय आप किराए पर रहते थे, धीरे धीरे आपने घर भी खरीदा, बच्चे को भी काबिल बनाया और इस तरह आप अपने घर की गाड़ी को आज भी अच्छी तरह चला रहे हैं। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। सत्ता मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83

साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की ये तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं, मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो,
सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवड़ता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत की इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों,
हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है
उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे, 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही है। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को
अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहाँ भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहाँ आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहां हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और
1: भारत माता की जय।
2: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुद से सच्चा संवाद करें, क्योंकि दुनिया के सभी उत्तर आपके भीतर ही छिपे हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: The Best Writer Award goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकते, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। प्रकृति के साथ भी संगीत का एक गहरा संबंध है। हर ऋतु के साथ कोई न कोई राग जरूर जुड़ा हुआ है, जैसे वर्षा ऋतु में मियां मल्हार या जय जयंती राग, और वसंत ऋतु में वसंत राग का हम उल्लेख कर सकते हैं। प्रकृति के पांचों ही तत्व की हलचल में भी संगीत समाया हुआ है। जैसे हवा चलती है, सागर के भी पानी की हलचल या लहरों की धीमी धीमी आवाज भी एक प्रकार से संगीत की धुन ही तो है। तो आइए, संगीत के बारे में और जानकारी देने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ गीता जी, आपको भी प्रणाम। जितने सारे लिसनर हैं सबको मैं नमस्कार करती हूँ।
0: श्यामली जी, जौनपुरी राग के बारे में हम दो एपिसोड से सुनते आए, समझते आए।
1: हाँ जी,
0: आज आप हमें क्या सिखाने वाले हैं?
1: हाँ, अभी जौनपुरी तो बड़ा ख्याल हो गया। तो अभी मध्यलय, उसके साथ थोड़ा तान बंदीश जो होता है ख्याल करना ही है
0: जी।
1: तो आज हम क्या करेंगे, मध्यलय की जो होता है स्वरलिपि दे देंगे। बंदिश का स्वरलिपि होता है दे देंगे, तीन ताल के ऊपर है। अगर लिसनर जो है
0: जी
1: किताब पेन से लिख लेते हैं तो अच्छा है। तो पहले उसको जौनपुरी राग की जो थोड़ा फिर से मैं थोड़ा बता देती हूँ
0: जी,
1: कौन सा ठाट है,
0: रिवीजन।
1: हाँ, रिवीजन कराती हूँ कि ठाट आशावरी की है, और जाति जो है सारव संपूर्ण है, वादी धा है, संवादी गा है, कुमल गा है। इसमें धा गा नी कुमल है
0: जी,
1: कि आशावरी से हम अंतर कर सकते हैं। आरोहण में जैसे धा सा होता है आशावरी में, और जौनपुरी में धा नी सा, ये फर्क है एकदम। धा के साथ नी भी आते हैं तो इसमें फर्क हो जाते हैं आशावरी से। और पहले बताया कि ये आशावरी ठाट की है, तो गा धा नी कोमल है, प्रकृति बहुत शांत स्वरूप की है, और समय जो है दिन में दूसरा प्रहर, मतलब 9 से 12 तक,
0: ठीक है,
1: इस तक हम कर सकते हैं। तो अगर हम देते हैं स्वरलिपि, तीन ताल की है, जैसे 16 मात्रा की होता है, फाक से शुरू होता है। अगर लिसनर जो है वो लिख लेते हैं तो अच्छा है, ठीक है
0: जी।
1: एक साथ एक मात्रा में 2 स्वर है, पाधा नीसा, ध्यान देना है, धा नी सा, धा नी गा कोमल है
0: जी।
1: लिसनर को जो है गा धा नी कोमल, मैं नहीं बताऊंगी लेकिन ऐसे करना है। खाली मैं बोल दूंगी कि मंद्र स्वर की है, मध्य स्वर की है या तार स्वर की है, ठीक है। पाधा नीसा नी रेसा, ये जो रेसा है ऊपर की है, एक साथ निधा आ पाधा मापा मागा ए रेसा, सब नीचे का है, रेसा मंद स्वर की है। रे मा पा आ, पा मा पा सा, निधा आ पा आ, मागा आ रे सा, गा रे सा रे सा, सा रे मा मा पा पा गा आ, ये गा जो है ऊपर की है
0: जी।
1: गा आ रे ए सा आ, सब ऊपर की है। नी रेसा ऊपर की है, निधा पा, फिर से मैं बताती हूँ फर्स्ट लाइन जो है, पाधा नीसा नी रेसा निधा आ, पाधा मापा मागा आ रेसा रे मा पा आ। दूसरा लाइन पा मा पा सा निधा आ पा आ मागा आ रेसा गा रे सा रे सा आ। थर्ड लाइन सा रे मा मा पा पा गा आ रे ए सा आ नी रेसा निधा पा, ये जो है तीन लाइन की है, स्थाई जो है तीन लाइन की है। मैं करके सुनाती हूँ
0: जी,
1: धुन में करती हूँ।

0: यह है सायका है। अगर लिसनर इसके साथ आकर सहयोग से करते हैं, बाद में जब बंदिश हम दे देंगे, उठाने में मेहनत नहीं जींगे, ठीक है। अभी अंतरा भी दे देते हैं। अंतरा की जो स्वरलिपि है वो हम दे देते हैं, मा मा पा पा निधा धा निधा नी सा आ सा सा सा। ये जो सा है तार स्वर की है, रे नी सा आ, ये जो है रे सा ऊपर की है, दूसरा लाइन है, निधा धा धा नि सा सा आ सा रे, ये जो सा है रे है सब तार स्वर की है, साड़ी मागा रे सा, ये सब तार स्वर की है, निसा रे सा निधा पा पागा आगा रे रे सा आ, ये जो है गा है ऊपर की है, रे ऊपर की है, सा ऊपर की है, सानी नी सा रे निसा रे सा निधा पा, ये जो सा है सा रे है जो है ऊपर की है। फिर से मैं बताती हूँ, मामा पापा निधा धा निधा नी सा आ सा सा रे नी सा आ, दूसरा लाइन है, निधा धा धा नी सा सा आ सा रे सारी मागा रे सा निसा रे सा निधा पा, थर्ड लाइन है, पा गा आ गा रे रे सा आ सानी नी सा रे निसा रे सा निधा पा। ये है जो अंतरा जो है, अंतरा की जो स्वरलिपि है ये हमने दे दिया, अभी इसमें धुन में बैठाएंगे।
1: हाँ जी श्यामली जी, जरूर आप धुन में बिठाने का भी हमको सिखाएंगे, मगर उसके पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में जौनपुरी राग के संबंधित एक हम मीठा सा गीत सुनाना चाहते हैं। हम सभी इसका आनंद भी लेंगे और हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया। इस कार्यक्रम में सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने श्यामली जी से जौनपुरी राग के बारे में बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ इसलिए कहते हैं क्योंकि तीसरा एपिसोड चल रहा है जौनपुरी राग का।
1: हाँ,
0: और उसमें आशावरी राग और जौनपुरी में क्या डिफरेंस है ये भी हमने स्पष्ट समझा। आगे श्यामली जी आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, ब्रेक के पहले हमने क्या किया, अंतरा की स्वरलिपि दे दिया था
0: जी,
1: अभी उसमें धुन में बैठाना है।
0: हाँ जी,
1: धुन में सुनाती हूँ।
0: ओके।

0: ही हमने अंतर की भी स्वरलिपि धुन में बैठा दिया। एक है कि शायद लिसनर को थोड़ा कठिन लग रहे हैं, लेकिन जब ये आकर सहयोग कर लेंगे ना, जब हम बंदिश बैठा देंगे आसानी से उड़ जाएंगे। बहुत सुंदर इसका बंदिश जो है, इसमें धुन भी जो है आपने देखा डबल डबल स्वर, एक मात्रा में दो स्वर है
1: जी।
0: अगर ऐसे नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जौनपुरी थोड़ा ऐसी राग है, ठीक है,
1: मतलब दो बार करने से उसकी सुंदरता और
0: सुंदरता और भी
1: बढ़ जाती है,
0: बढ़ जाती है
1: जी। श्यामली जी, आगे आप क्या सिखाना चाहेंगे?
0: हाँ, अभी क्या करेंगे, छोटा सा तीन तल के ऊपर एक छोटा सा बंदिश सुनाती हूँ।
1: हाँ जी,
0: अगर बंदिश नए नए बंदिश सुनाते हैं तो लिसनर को भी उमंग उत्साह बढ़ जाते हैं
1: जी।
0: तो करके सुनाती हूँ।
1: हाँ जी।

0: ये थी छोटी सी बंदिश जौनपुरी राग की। श्यामली जी, वक्त देता है हमको अभी इजाजत, मगर आपसे सुने बिना तो हम जा ही नहीं सकते। आज आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं?
1: हाँ, बहुत पुराने फिल्म है आंधी, एक फिल्म है लता जी, किशोर जी ने दोनों ने किया है
0: जी,
1: तेरे बिना जिंदगी से कोई सिद्धू।
0: बहुत सुंदर गीत,
1: बहुत सुंदर गीत है, जौनपुरी राग के ऊपर है
0: जी।
1: थोड़ा शायद होता है मिश्रती होता ही है, थोड़ा इधर उधर होता है, गीत है ना
0: जी,
1: तो करके सुनाती हूँ।

0: सचमुच संगीत नहीं जिंदगी नहीं सचमुच क्योंकि ये गीत सुनकर पुरानी यादें पुरानी बातें
1: कोशिश किया है लता जी किशोर जी ने इतना अच्छा निभाया है
0: जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया श्यामली जी इसी के साथ हम लेते हैं आज के लिए अलविदा पुनः मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में श्रोता मित्रों आपके कोई प्रश्न हो कोई सुझाव हो कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में तो आप हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिए हमारा नंबर है 9414151415 फिर से रिपीट करती हूँ हमारा नंबर है 9414151415 तब तक के लिए रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कल राठौड़ परिवार में माहौल थोड़ा गंभीर था, क्योंकि घर में दामाद पुराना बना है, घर जमाई नया। हमारे देश में दामाद को बहुत इज्जत दी जाती है, जिसकी आदत सूरजमल को भी थी। लेकिन अब जो इन्हीं घर वालों के साथ रहने लगे हैं, तो क्या वैसी ही इज्जत मिलेगी? या चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आज राठौड़ परिवार में, जहां परिवार के बच्चे भी कैंप से लौट कर आ गए हैं और अब जमाई जी यानी सूरजमल जी लगे हुए हैं नई जॉब की तलाश में।
1: अरे सुबह सुबह ये क्या लगा रखा है, इतना शोर क्यों हो रहा है घर में?
2: जाह्नवी क्या है ये, तुम लोग कल ही अपने कैंपस से वापस आए हो, इसका मतलब यह नहीं कि घर को ही कैंपस बना दो।
3: दादी लेकिन मैं ये गाना नहीं बजा रही हूँ, दिस सॉन्ग डज नॉट हैज रिज।
1: चीज? क्या चीज नहीं है, अब गाने में कौन सी चीज आ गई?
3: चीज नहीं दादी, रिज रिज।
4: अरे बेटा हमारे देश में कितनी सुंदर सुंदर भाषाएं हैं, तुम लोग हिंदी बोलो, मारवाड़ी बोलो या चलो अंग्रेजी ही बोलो, पर ये कौन सी एलियन भाषा बोलते रहते हो?
3: पापा प्लीज डोंट बी सो बेसिक।
1: अरे ये कैसी अंग्रेजी है, पटर पटर करती रहती है, हमको तो कुछ समझ नहीं आता।
5: दादी जाह्नवी के कहने का मतलब है कि उसे ये गाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसने ये गाना नहीं बजाया है।
1: तो कौन बजा रहा है ये गाना, जिसने मेरे सर में दर्द कर दिया है?
5: दादी चलिए चल के कमरे में देख लेते हैं।
6: चांदनी क्यों फंसा रही है वीरू को?
5: कुछ नहीं होगा, देखती जा।
4: ये लीजिए, ये तो वीर जी है। अरे सर गाना बंद करेंगे आप, पीर पीर।
7: अरे किसने मेरा गाना बंद किया?
4: मैंने किया, कोई आपत्ति है आपको?
7: अरे बड़े बड़े चाचू आप, अच्छा किया गाना बंद कर दिया, किसने चलाया था ये गाना?
3: तुमने।
7: हाँ वो बड़े चाचू वो रॉकिंग गाना है, तो मैं तो बस ग्रूव कर रहा था।
4: सुबह सुबह इतना जोर से गाना चलाया है, घर के बाकी लोगों के बारे में भी सोचा कर, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं।
1: हाँ तो इसमें क्या हो गया, गाना ही तो चलाया है। आजा मेरा पोता, मेरा लाडला बच्चा, सुन तू कर वो क्या कहते हैं, भूम भूम भूम, तू कर।
3: भूम नहीं दादी, ग्रू।
1: अरे वो ही तो कह रही हूँ मैं। अरे हाँ वही वही, अरे करने दो बेचारे को, क्या सुबह सुबह उसको परेशान करने में लग रहे हो सारे।
4: माँ आपके ही सर में दर्द हो रहा था ना।
1: देख वीरेंद्र तू नहीं समझेगा, क्योंकि तेरी तो दो दो बेटियां हैं। अरे लड़कों को ऐसे नहीं रखा जाता मीन मेख निकाल के, आखिर इकलौता चिराग है हमारे घर का, समझा?
5: और हम क्या है दादी?
0: इस सवाल का जवाब है किसी के पास, पोते को टोको नहीं रोको नहीं, और पोती को? वैसे अंबिका देवी राठौड़ शुरू से बेटों पर प्राण न्योछावर करती आई हैं। हालांकि बेटियों को भी शिक्षित तो किया, लेकिन उनकी शिक्षा को अहम नहीं समझा। हम सोचते हैं कि एक लड़की को स्कूल भेज तो रहे हैं, इससे ज्यादा बराबरी क्या होगी, लेकिन रोज किसी न किसी तरीके से बेटी को दिखा ही देते हैं कि बेटा ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं राठौड़ परिवार की सुबह और कौन से रंग दिखाती है।
8: राजकुमारी, ओ राजकुमारी कहाँ मर गई?
9: जिंदा हूँ जेठानी जी, बस आई।
8: राजकुमारी आज ना मेरे पैर में बड़ा दर्द है, आज नाश्ता तू ही बना लेना।
9: जेठानी जी नाश्ता तो बन गया।
8: अच्छा आज नाश्ता इतनी जल्दी बन गया?
9: जल्दी कहाँ जेठानी जी, 8 बज रहे हैं।
8: अरे 8 बज गए, ये बाकी के 7 और 6 कहाँ गए?
10: बड़ी भाभी वो आए थे घर पे, राजकुमारी भाभी के हाथ का नाश्ता खाकर चले गए।
8: हे राम मजाक मत

0: कर किशन, मुझे तो डर लगता है इस कम उम्र में ये मुझे क्या हो रहा है।
1: कम उम्र?
2: हाँ हाँ हाँ भाभी जी, आप तो बस हमसे थोड़ी सी बड़ी हैं, आपको क्या होगा।
0: हाँ वो तो है, वैसे इस घर के नए जमाईसा कहाँ हैं? अभी तक अपने कमरे में पड़े सो रहे हैं का?
3: बड़ी भाभी ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी और जीजू साथ में वॉक करने गए हैं, आते ही होंगे।
2: लो आ गए वो।
4: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो घर आ गया, चलो जमाई सा करने चलो।
5: हाँ, पर बढ़िया
4: चलो,
5: बढ़िया
4: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
5: अच्छा अच्छा ठीक है ठीक।
4: वाह आज तो मजा आ गया, सूरजमल बेटा बड़ा समझदार, आज तो पेड़ पौधों के बारे में बड़ी जानकारी दी इसने।
6: हाँ बस इन्हीं खेती बाड़ी के चक्कर में लगे रहते हैं ये, इनको बताइए पापा कि पेड़ पौधे पर पैसे नहीं लगते।
4: शांति, थोड़ा शांति से बात किया कर बेटा।
6: कैसे शांत रहूं पापा, एक हफ्ता निकलने को आया है और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, ना नौकरी ढूंढते हैं ना कोई।
5: पापा आप शांति को कुछ मत कहिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ।
4: शांति चुप हो जा, जमाई साहब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यही बैठी है।
6: क्यों पापा, मैं क्यों चुप हो जाऊं? आपको पता है मैं सुबह ही एक पोस्ट देख रही थी, मेरी क्लास में जो सुषमा थी ना, वो अपने पति के साथ वेकेशन पे लंदन गई है और मैं यहाँ।
7: शांति तू ये क्या बोले जा रही है बहन, एक पोस्ट की वजह से तू जीजा जी को इतना सुना रही है।
6: रागिनी दीदी आपकी शादी नहीं हुई है ना, अभी आप नहीं समझेंगी।
7: मैं इतना तो समझती हूँ शांति कि पैसे कमाना सिर्फ पुरुष की जिम्मेदारी नहीं होती है, जब रिश्ता बराबरी का है तो जिम्मेदारी भी तो बराबरी की होनी चाहिए। मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन अब मुझे कहनी ही पड़ेगी, ये जो तू रोज पार्टी करती है, इधर उधर जाती है, इससे अच्छा है जाके कुछ काम कर, पैसे कमा।
6: हाँ जैसे आप कमा रही है अपने एनजीओ से, कितना कमाती है दीदी आप बताइए जरा।
4: तुम दोनों बस करो, घर के मुद्दों पर बैठ के सम्मान के साथ बात की जाती है, फैसले लिए जाते हैं, ऐसे लड़ झगड़ के नहीं। अभी इस बारे में कोई बात नहीं होगी, गुस्से में एक दूसरे को जो भी कह रहे हो वह शब्द जैसे बाण से छूटे तीर है, वापस नहीं आएंगे। इसलिए जाओ सब हाथ धोकर आओ, पहले सब नाश्ता करेंगे, दिमाग ठंडा होगा तब फिर बात होगी।
2: राजकुमारी जाओ सबके लिए नाश्ता लगा दो।
8: हाँ जाती हूँ।
2: कहाँ जा रही हो, किचन उधर है?
8: वो आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है।
2: इतना क्या स्पेशल बना दिया जो किचन के बाहर है?
8: अरे आप बस देखते जाइए, शौक ही हो जाएंगे आप।
2: इसी बात का तो डर है,
8: हा? कुछ कहा आपने?
2: नहीं नहीं बस पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उनकी आवाज सुनाई दी होगी तुमको।
8: तो फिर मैं आती हूँ, मैं कीड़े मकोड़े लेकर आऊँ आपके चूहों के लिए।
2: क्या?
8: अरे मजाक कर रही थी।
2: राजकुमारी घर में वैसे ही कितना टेंशन है और तुम।
1: भैया इस टेंशन में किसी को तो मजाक करने दीजिए, वरना हमारी बहनें तो नदी में आए तूफान की तरह सब तहस नहस कर देंगी।
2: चल ठीक है अब नाश्ता करने चले।
9: वैसे क्या लगता है आपको, राजकुमारी जी ने आज ऐसा क्या बनाया होगा जो किचन की दीवारों में नहीं समा पाया, और भगवत जी ने तो कह दिया कि जो बात होगी अब नाश्ते के बाद होगी, लेकिन नाश्ता करने के बाद ये सब लोग बोलने लायक बचेंगे भी या नहीं? वैसे जिस गुस्से में सब लोग गए हैं उससे तो लगता है कि नाश्ते की टेबल पर भी हंगामा होने वाला है, लेकिन ये राठौड़ परिवार है जी, यहाँ की हवाओं का किसे पता कब किस दिशा में बहने लगे। वैसे भगवत जी की बात से मैं सहमत हूँ, गुस्से में कही बात का बाद में कितना भी दुख हो, पर वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे इस घर के शेर शायर किशन कल रात अपने कमरे में बैठे बैठे कुछ पंक्तियां लिख रहे थे, जाते जाते आप भी सुनते जाइए।
3: रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं। एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं। नीचे से सहारा भी देती हैं, ऊपर से उजाला भी देती हैं। अकेली हों तो बस ये धूल बनती हैं। रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं। एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं।
10: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
11: घर ऑन एयर, पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौर, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ चैलेंज, जीवन एक सुंदर एक चुनौती है, एक्सेप्ट इट एंड फेस इट, है ना। मैं एक बार एक बहुत सुंदर आर्टिकल पढ़ रहा था जिसे मैं काफी मोटिवेट हुआ। उसमें था कि एक रिपोर्टर बच्चों के पेंटिंग कंपटीशन में गए, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग कर रहे थे। जब सेकंड प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ तो ये रिपोर्टर ने देखा कि एक व्यक्ति एक 10 वर्ष के बच्चे को स्टेज पर लेकर जा रहा है टू रिसीव द सेकंड प्राइज। तो रिपोर्टर को लगा व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस बॉय। जब वो नीचे उतरे तो रिपोर्टर उस बच्चे के पास जाकर पूछे, एनी प्रॉब्लम विद योर लेग्स, आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर 10 वर्ष का बच्चे ने कहा, मैडम वन ऑफ माई लेग इज एम्प्यूटेड, मेरे एक पैर को काटा गया। तो उन्होंने कहा, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ऐसे कैसे हुआ? बोला, जेनेटिक डायबिटीज प्रॉब्लम, डॉक्टर्स ने कहा इसको एम्प्यूट करना पड़ेगा। तो रिपोर्टर ने उस 10 वर्ष के बच्चे से एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी उम्र के बच्चे इतना खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, उनको देखकर आपको कैसे लगता है? और ये 10 वर्ष बच्चा का ब्यूटीफुल जवाब था, मैडम इस संसार में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ये सारे प्रॉब्लम को सुधारने के लिए भगवान को बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती होगी और शायद भगवान को एक मजबूत पैर की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए शायद भगवान ने मेरा एक पैर ले लिया है। कैन वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस 10-year-old बॉय? क्या हम उनसे कुछ सीख सकते क्या? है ना, परिस्थिति आई लेकिन उस परिस्थिति को चैलेंज समझकर एक्सेप्ट किया, फेस किया और आगे बढ़े। आज हम देखते हैं समाज में इतने सारे सुसाइड रेट्स क्यों हो रहे हैं। उसका एक कारण हो सकता है कि वो परिस्थिति को चैलेंज के रूप में वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हताश हो रहे हैं, टूट रहे हैं। और विशेष तौर पर मैं उस स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो प्लीज आप जो भी रिजल्ट्स आए उसको आप एक्सेप्ट करो, और अगर आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं तो यू फेस इट एंड देन ट्राई अगेन टू स्कोर मच गुड मार्क्स। हम देखते हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उनका रिजल्ट्स डिक्लेयर होने होता ना तो उसके एक दिन पहले बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और हर एक न्यूज़पेपर का हॉरोस्कोप पढ़ेंगे, राशिफल। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम कहते हैं, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो बीच बीच में अपने लाइफ को रिफ्लेक्ट करो और इंट्रोस्पेक्ट करो और अपनी जो जीवन की जो खुशी, द हैप्पी मोमेंट्स, शेयर इट विद एवरीवन, एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप और रेडियो मधुबन पर अभी कार्यक्रम समय हो रहा है सलाम है जिंदगी का। दोस्तों आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम और जहां पर आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम जो हर सप्ताह में एक ऐसे व्यक्तित्व को हम आपके सामने लेकर आते हैं जिनके जीवन में हम थोड़ा झांकने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे समाज में सीनियर सिटीजन्स हैं उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। तो आज ऐसे ही एक विशेष शख्सियत रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर पधारे हैं जिनका नाम है अनिल वर्मा अमरोही जी। और अनिल वर्मा जी उत्तराखंड रुड़की से आज हमारे स्टूडियो पर पधारे हैं। अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: आज एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो अरावली पर्वतमाला में स्थित है और ब्रह्मा कुमारी इसके कैंपस में है और आज आपका यहाँ आना हुआ है, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आत्मिक शांति प्राप्त हो रही है
0: जी। और जो ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है रेडियो मधुबन, हमारे यहाँ के आसपास के जो जनसाधारण है उनकी आवाज है और उनके लिए आप जैसे लोगों को भी लेकर आता है जिनके जीवन से बहुत सारे अनुभवों में से कुछ अनुभव हम अपने श्रोता तक पहुँचाते हैं। आज के इस कार्यक्रम सलामी जिंदगी में आगे की ओर चलते हैं और सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बारे में आपके श्रीमुख से। सबसे पहले चलेंगे आपके बचपन की ओर कि जो बचपन होता है वो हमारे पूरे जीवन की नींव होती है और उस नींव में जो पत्थर रखे गए हैं उस नींव में उसके अनुसार ही उतना मजबूत हमारा जीवन का मकान बनता है
1: जी।
0: तो आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए, कहाँ आपका जन्म हुआ, माता पिता आपके कौन थे, अपने माताजी से क्या सीखा, पिताजी से क्या सीखा जो अभी भी आपको काम आता है।
1: मैं अमरोहा जिला मुरादाबाद में आता था, अब तो अमरोहा अपने आप में एक जिला बन चुका है। मेरा जन्म वहाँ पर हुआ
0: जी
1: 19 नवंबर 1954 को, लेकिन मेरी जो डेट ऑफ बर्थ मैंने बताई है 30 जुलाई 1955, वो स्कूल में जो लिखवाई गई वो अलग है, पुराने लोग ऐसी लिखवा दिया करते थे
0: जी जी।
1: तो माता जी ने बताया कि आपका जन्म उसको हुआ था, तो अमरोहा से मैं जन्म के बाद जो है वहाँ पे ही कुछ चौथी क्लास तक वहीं तक पढ़ा। मेरे पिताजी पुलिस लाइन में थे, रामपुर पुलिस लाइन में। पुलिस में होने की वजह से हम फिर वहाँ से अमरोहा से उनके पास चले गए रामपुर उत्तर प्रदेश में रहने के लिए।
0: जो बचपन के बारे में पूछ रहा था, जैसे हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहला जो परिचय हमारा होता है अपने माँ माता जी से और पिताजी से होता है
1: जी,
0: तो माता जी के अंदर कौन सी ऐसी विशेषता आप देखते
1: जी? माता जी से मैंने सबसे ज्यादा जो प्रेरणा ली है एक तो इस बात के लिए है कि वो बहुत सच्चाई और ईमानदारी पे चलने का उनका वो था, दूसरे उनकी आवाज बहुत अच्छी थी, भजन गाया करती थी, तो वो मुझे भी शौक लग गया। ये बहुत ही अच्छा मेरा सौभाग्य रहा कि आज वो चीज मेरे गले में उनकी आवाज दी हुई है जो काम आ रही है।
0: और पिताजी से क्या?
1: पिताजी पुलिस में थे तो अनुशासन प्रियता तो स्वाभाविक सी बात है, और वो थोड़ा गुस्सा तो करते थे यार, पुलिस वालों को गुस्सा भी ज्यादा आता है, लेकिन पिताजी से मैंने ये सीखा कि आप कम बोलिए लेकिन संतुलित बोलिए और अनुशासित रहिए जीवन में।
0: तो ये विशेषताएं आपने भी अपने जीवन में डालने का प्रयास किया?
1: बिल्कुल किया। मैं एक चीज और बताऊंगा कि जब मैं पिताजी के साथ उनका ट्रांसफर शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में हो गया
0: जी,
1: वहां से मुझे जाना पड़ा चांदपुर जिला बिजनौर मेरे मामा जी के यहाँ, वो मुझे ले गए, उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था, बड़ा था हमारे, हम तीन बहन भाई थे, वो चांदपुर में ले गए, वहां मेरी हाई स्कूल तक की शिक्षा हुई 1965 से लेकर के और 1970 तक। इस दौरान जो हमारे जो पैतृक उनका व्यवसाय था स्वर्णकार, हम लोग हैं वर्मा, वो सोने का काम हमारे मामा जी करते थे, तो मेरे लिए सिर्फ इतना ही था कि आपने स्कूल जाना है और स्कूल से जो है घर आना है और घर से दुकान, इतना ही मेरा जीवन था। वहाँ मामा जी के यहाँ रह करके जो मेरी नींव जो पड़ी है वो ये थी पड़ी कि वहाँ वो जो काम करते थे वो बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी पे चलते थे, वही गुण मामा जी में थे, वही माता जी में थे।
0: माता जी में,
1: और कहते हैं ना कि माता जी में तो एक माँ होती है लेकिन मामा में दो माँ होती है, इस नाते जो मैंने वहां से सीखा वो और जो मेरे जीवन में काम आया वो सच्चाई ईमानदारी थी सबसे ज्यादा जो मैंने सीखा।
0: बहुत अच्छी बात है। और आज इस सलामी जिंदगी के मंच से इन दोनों आत्माओं का जिनका आपके जीवन में गहरा प्रभाव रहा उनको भी हम सलाम करना चाहेंगे
1: जी, जी।
0: और आगे बढ़ना चाहेंगे कि जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है तो अगले कदम पे उसको सामना होता है अपने शिक्षक से
1: जी
0: स्कूल की तरफ जाता है, माता पिता उसको लेकर भले जाते हैं, तो उसके बाद ऐसा समय आता है कि शिक्षक का प्रभाव माता पिता से भी ज्यादा एक छात्र के जीवन में हो, तो उनको कैसे याद करना चाहिए, कैसा स्कूल था, आपके दोस्त थे और शिक्षक कौन हुआ करते?
1: जी जी, मैं जरूर इस पे प्रकाश डालूंगा। 1970 में मामा जी के यहाँ से हमें अमरोहा आना पड़ गया, जो हमारा पैतृक निवास था।
0: जी,
1: जब मैं वहाँ फर्स्ट ईयर में 11वीं क्लास में दाखिला लिया, मेरी छवि जो थी एक अच्छे स्टूडेंट की थी, तो वहाँ पर जो मेरे शिक्षक थे, तब तक मैं बहुत शर्मीला था, स्टेज का मुझे कोई अनुभव नहीं था। मेरे एक शिक्षक थे, मैं आज उनको याद करना चाहूँगा, श्री श्याम सुंदर जी, जो हमें हिंदी पढ़ाया करते थे।
0: जी,
1: उन्होंने मुझे एक बार, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हम थे, सेकेंड ईयर वालों को हम वो दिया करते थे विदाई, फेयरवेल जो होती ना
0: जी,
1: सीनियर्स को विदाई देने के लिए, उन्होंने मुझे जबरदस्ती भेजा, हमसे कहा अनिल तुम्हें वहाँ जाकर के कुछ बोलना है विदाई के लिए। और बिल्कुल कोई अनुभव नहीं था, कुछ नहीं था, बोलना कैसा है, जुबान लड़खड़ा रही थी, लेकिन मैं गया और जाकर के जो भी मन में आया, जो कुछ था, वो मैंने बोला। लेकिन उन श्याम सुंदर जी की उस मुझे जो जबरदस्ती धक्का दिया था या भेजा था माइक पे, उसका प्रभाव ये हुआ कि उसके बाद मैं मेरा सिलेक्शन होने लगा डिबेट्स के लिए। मैंने स्कूल से जो थी कई डिबेट्स में, जैसे हमारा जिला था मुरादाबाद, तो वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए गया, तीन लड़कों की या लड़कियों के साथ जिस तरह से टीम बनती थी, तो हम लोग जाते थे वहाँ पे, गए, कुछ सफलता कम मिली, लेकिन माइक फेस करने की वो हुई। फिर उसके बाद जो है हमें रामपुर भेजा गया किसी डिबेट के लिए, एक प्रोग्राम के लिए,
0: एक सिलसिला चल निकला।
1: और ऐसा हुआ, मतलब धीरे धीरे करते करते, जब मैं डिग्री कॉलेज में 1972 में आया, तब तक जो है मेरा कॉन्फिडेंस काफी बिल्डअप हो चुका था। और मुझे अपने शिक्षकों को ही सारा मतलब क्रेडिट देना चाहूंगा कि अगर वो मुझे उस दिन 11वीं कक्षा में नहीं भेजते विदाई समारोह में, तो मैं शायद जो आज बोल रहा हूँ आपके सामने, इतना भी नहीं बोल पाता।
0: बिल्कुल, एक इंसान के जीवन में जो मार्ग से हम गुजरते जाते हैं, तो उस मार्ग में जो भी हमको मिलते हैं, हर एक का कहीं ना कहीं कम बेसी योगदान होता है। कई जगह पे अनुभव हमारे बहुत मीठे होते हैं, कई जगह खट्टे या कड़वे अनुभव भी होते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए एक योगदान देती हैं कि क्या हमको और ज़्यादा करना चाहिए, कौन सी चीज़ों से हमको दूरी बनानी चाहिए। कुछ ना कुछ शिक्षा तो हर एक बात में होती है
1: जी।
0: और इसी पथ पर जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, स्कूल में जो शिक्षक हैं, उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव रहा?
1: शिक्षकों का पहला प्रभाव तो यही है कि मुझे स्टेज मिला
0: जी।
1: फिर वहाँ से जो है, जब मेरा डिबेट्स वगैरह में जाना हो गया, तो मुझे स्टेज पे एक्टिंग के लिए भी चांस मिला, तो एज एन एक्टर मैंने काम किया। और एक्टर बन गया तो फिर छोटे बच्चों को डायरेक्ट करने के लिए निर्देशक का भी दायित्व मुझे सौंपा गया, वो सब भी मैंने छोटे बच्चों के लिए नाटक वगैरह,
0: एक प्रतिभा से दूसरी प्रतिभा, दूसरी से तीसरी प्रतिभा निखर
1: वो होता गया। तो जब तक मैं डिग्री कॉलेज में पहुंचा, तब तक जो था हमारी ये पोजीशन हो गई थी कि हम तीन लोग जाया करते थे एक टीम की तौर से प्रोग्राम करने के लिए डिबेट्स में।
0: उनके नाम याद करना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, एक थे श्री ओमदत्त त्यागी, जो हमसे बहुत सीनियर थे डिग्री कॉलेज में, और एक मेरे साथी थे, वो आज भी हैं, श्री सुल्तान अख्तर जी, जो अमरोहा में रहते हैं, और वो बहुत प्यारे इंसान हैं, मेरे प्यारे मित्र हैं। तीनों गए वहाँ पे रामपुर में, और वहाँ से हम तीनों ही को फर्स्ट सेकंड थर्ड अवार्ड मिला। और एक जो चल वैजयंती कहलाती है, जो कॉलेज को दी जाती है, एक बहुत बड़ी ट्रॉफी होती है, तो वो भी ट्रॉफी हमें मिली। और फिर जो स्टेज पे
0: रनिंग ट्रॉफी,
1: जी रनिंग ट्रॉफी, तो वो लेकर के जब हम आए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हमारे यहाँ से ही है, रनिंग ट्रॉफी भी हमारी है, तो फिर वो सम्मान जो प्रेयर के टाइम पे होता है स्टूडेंट्स का, जो कुछ अचीव करते हैं, वो बड़ा प्रेरणादायक रहा।
0: बिल्कुल।
1: फिर इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं 1972 में मैंने एनसीसी ज्वाइन कर ली थी।
0: Okay.
1: तो एक तो पिताजी का पुलिस में होना, दूसरा अनुशासन प्रियता मन में आ चुकी थी, और एनसीसी में कद छोटा होने के नाते हम सबसे आगे रहते थे
0: जी।
1: उसका प्रभाव यह हुआ कि एनसीसी बेस्ट कैडेट में गिने जाने लगे, क्योंकि उस जमाने में एक उपराष्ट्रपति हुआ करते थे श्री गोपाल स्वरूप पाठक जी।
0: ओके।
1: उनका हिंदू इंटर कॉलेज चांदपुर में, हिंदू इंटर कॉलेज अमरोहा में आना हुआ, तो उनको हमने एनसीसी के कैडेट के नाते गार्ड ऑफ ऑनर दिया।
0: ओके।
1: तो उस गार्ड ऑफ ऑनर की ट्रेनिंग हमारी चली एक महीना तक राइफल के साथ। तो वो जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उसका सर्टिफिकेट हमें मिला, इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा। और मैंने एनसीसी में रह करके 20 सर्टिफिकेट पास किया।
0: वाह।
1: अब 20 सर्टिफिकेट पास करने का मतलब ये था कि हम LNG खोलना और बंद करना, ये सब चीजें सिखाई गई। आज मैं शायद पहली बार ही इन सब चीजों को व्यक्त कर रहा हूँ और बड़ी खुशी भी हो रही है जो आप।
0: बिल्कुल, ये जो मंच है सलाम जिंदगी रेडियो मधुबन का, ये मंच इसीलिए है कि बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे समाज के बड़े और बुजुर्ग अपने घर के बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को भी नहीं बताया होते हैं,
1: बिल्कुल,
0: वो इस मंच के माध्यम से कहीं ना कहीं सामने आती है और एक दोबारा से आपको उन पलों को जीने का मौका मिलता है।
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: तो बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर, आपकी जो जीवन की सत्य कथा है उसे जानकर। और भी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले समय हो रहा है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और हमारे श्रोताओं को एक गीत सुनाएं और फिर लौट कर आए। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन कार्यक्रम सलामी जिंदगी और हमारे साथ बने हुए हैं अनिल वर्मा जी। और भी उनकी कहानी को जानेंगे और उनके जीवन से कुछ ऐसा सीखने का प्रयास करेंगे जो आज तक हमने नहीं किया है। लेकिन तब तक लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, फिर लौट कर आते हैं। सुनते रहिए।

0: This is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: दोस्तों फिर लौट कर आ गए हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी में और हमारे साथ बने हुए हैं अनिल वर्मा जी। अनिल वर्मा जी के बचपन और शिक्षा काल के अनुभवों को हमने सुना और उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको भी हमने जाना कि कैसे एक विशेषता दूसरी विशेषता को लेकर आती है। तो जरूर आप भी जो युवा साथी हमारे सुन रहे हैं आप जरूर ये कोशिश करिए कि किसी ने आपको धक्का लगाया, खींच के लाया या ना लाया, आप अपनी ओर से भी प्रयास करिए। कहीं पर एक मंच मिलता है तो कुछ अपनी भावों को व्यक्त करने का प्रयास करिए और ये विशेषताएं धीरे धीरे आगे एक सुंदर रूप लेकर आपके जीवन को और बेहतर बना देगी। तो अनिल जी, जैसे आपने बचपन के दिनों को और स्कूल के दिनों के बारे में बताया, आप थोड़ा सा आगे चलना चाहेंगे?
2: जी बिल्कुल।
1: कि जैसे ही स्कूल का समय पूरा होता है कॉलेज जाते हैं और कॉलेज पूरा होने से पहले ही हमारे मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि अब हमें क्या करना है। एक सामाजिक रूप से भी प्रेशर होता है कि कहीं आपको जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। आगे की यात्रा आपकी कैसी रही, कि जब स्कूल से कैसे निकले, फिर जो आपकी पहली जॉब कैसे लगी?
2: मैं वही बताना चाहूँगा, 1972 में मैंने इंटर किया और उसके बाद मैं 1973 में आया डिग्री कॉलेज में। हिंदू इंटर कॉलेज अमरोहा और डिग्री कॉलेज बराबर बराबर ही थे, सिर्फ एक दीवार थी बीच में। जब हम डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हुई, जो हमारा अनुशासन और वो सब था उसको देखते हुए मेरे कुछ पारिवारिक मित्रों ने ये कहा कि अब अनिल बड़े हो रहे हैं, इनको कुछ काम करना चाहिए। 1973 में मैंने, जबकि मेरी उस समय उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, 18 साल का भी पूरा नहीं था, तो मैंने बाटा इंडिया लिमिटेड में टेम्परेरी काम करना शुरू किया।
1: तो ये कंपनी आपके वहीं पर थी?
2: अमरोहा में शॉप थी, बाटा शॉप। बाटा इंडिया तो वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में है, लेकिन वहाँ का जो स्टोर था उसमें मैंने पढ़ते पढ़ते फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने 3 दिन काम किया, 4 दिन काम किया, जो भी उस समय मिल।
1: कैसे मैनेज होते थे पढ़ाई और ये दोनों चीज़?
2: वो इस तरह से होता था कि या तो मुझे स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी या छुट्टियों में मैं काम करता था पार्ट टाइम। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे एक वैकेंसी हो गई बाटा की दुकान, और वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा। इस तरह से कि 1973 में मैंने जब बाटा कंपनी को 2 अगस्त 1973 मुझे आज भी डेट याद है ज्वाइन किया, मैं काम करता रहा मेहनत से, ईमानदारी से, और सबसे छोटे पद पर मैं लगा था।
1: ओके।
2: उस पद को उस समय नाम था हेल्पर, मैंने जब 1973 में ज्वाइन किया
1: जी।
2: लेकिन मेरी जो बैकग्राउंड मैंने बताई कि मैं मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई, इसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि मेरे सारे जो ऑफिसर थे बहुत खुश हो गए, और मैं दूसरे एक मैनेजर के साथ काम कर रहा था, फिर दूसरे एक और मैनेजर आ गए। इस बीच में क्या है, मेरा जाना हुआ बाटा शू कंपनी से छुट्टी लेकर के कुछ दिन की, मैं अपने दोस्तों के साथ बम्बई गया। बम्बई मेरे औरों की तरह मेरा भी ख्वाबों का शहर था।
1: अगर तो आपके अंदर छुपाई था पहले
2: जी
1: से।
2: वो था, तो वहाँ चाहता था मैं कुछ बनने के लिए, तो मैं वैसे ही घूमने के लिए गया आपके साथ। तो मैं वहाँ बाटा के शॉप के एक मैनेजर थे, जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मुरादाबाद में थे, वो बॉम्बे में बहुत बड़ी शॉप पे मैनेजर हुआ करता।
1: Okay.
2: क्राफर्ड मार्केट एक जगह है वहाँ बम्बई में, वहाँ पर मैं उनसे मिलने के लिए गया, जस्ट फॉर कर्टसी कॉल, सम्मान। मैं मिलने के लिए गया तो मैंने उनसे कहा, सर मैं तो बम्बई में आना चाहता हूँ। तो बोले, पता है तुम्हें बम्बई में कैसे रहा जाता है? यहाँ सब कुछ मिल सकता है लेकिन रहने की जगह नहीं मिलने की, तुम्हें ये लिख करके देना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो ट्रांसफर। में ट्रांसफर तो तुम्हारा चुटकियों में करा दूंगा, 15 दिन के अंदर अंदर तुम ट्रांसफर हो जाओगे, लेकिन ये समझ लो कि रहने के लिए मत कहना तुम मुझसे। फिर मैंने कहा, साहब मैं नहीं कहूँगा। मैंने वापस गया अमरोहा, जाकर के अपने मैनेजर साहब से बात करी, और तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है बेटा, तुम आगे जाना चाहते हो तो अच्छी बात है
1: जी।
2: मेरा ट्रांसफर जो था 1978 में 8 अगस्त 1978 को मैंने अमरोहा छोड़ा और मैं बम्बई की यात्रा पर निकल गया। लोग मुझे इस तरह से अमरोहा में छोड़ने के लिए आए थे, जिस तरह हाजी लोग जाते हैं हज के लिए, तो वो इस तरह से मालाओं को पहना करके मेरे दोस्तों ने मुझे
1: बम्बई जा रहे
2: हैं, हाँ बम्बई जा रहे हैं, कि बम्बई में चले गए। वहां जाकर के दिल्ली होकर के जाते थे, पहले तो दिल्ली जाकर टिकट बुक कराते थे, वो बम्बई चले गए, वहां पे ज्वाइन कर लिया। वहां जाने का फायदा ये हुआ, एक वाइड स्कोप मिला मुझे, बड़ा
1: समझ,
2: सारी दुनिया
1: समझ विकसित हुई।
2: तो लेकिन वहां सबसे ज्यादा वही चीज काम आई जो इनिशियली मैंने आपको बताया, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, पंक्चुअलिटी ऑफ द टाइम। मैं जब वहां पे पहुंचा और मेरा वर्किंग वहां पे मैनेजर्स ने देखा, और वहां के बाकी स्टाफ जो थे वो सब मैच्योर्ड थे और मुझसे बड़े थे सारे, जब उन्होंने वर्किंग मेरे देखा तो मेरा टेस्ट के लिए, सेल्समैन के प्रमोशन के लिए लेटर आया अमरोहा, लेकिन मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि मैं प्रमोशन से रह जाऊंगा, मैं यहाँ ट्रांसफर होके आ गया। लेकिन हमारे जो मैनेजर थे वो कलकत्ता से डायरेक्ट, जो हमारा हेडक्वार्टर था वहां से जुड़े हुए थे, उन्होंने ये कहा तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें यहीं पे बम्बई में बैठाऊंगा एग्जाम के लिए। तो बम्बई में जब मैं एग्जाम के लिए बैठा तो मेरा सबसे लास्ट नंबर था 46वां नंबर जितने कैंडिडेट आए हुए थे। मैं देने के लिए गया और उन्होंने ये कहा तुम्हें एग्जाम में बैठाऊंगा मैं तुम्हें जब कि जब तुम्हें मैं कुछ पेपर्स दूंगा उनको तुम सॉल्व करके लाओगे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे दिया, बोले तुम सुबह को सॉल्व करके लाओगे। मैं रात को 10 बजे घर पहुंचा क्योंकि बम्बई की लाइफ तो ऐसी है, भागदौड़ बहुत है। वहां से जब मैं लौट के अगले दिन लेकर के आया तो ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुए कि आपने जो है वो सारी चीजें सही किया, ठीक है नाउ अब तुम पार्टिसिपेट की। मैंने पार्टिसिपेट किया उस एग्जाम में और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं दुकान पे वापस लौट के नहीं आया था एग्जाम से। मैंने जब अपने मैनेजर साहब से कहा कि मैं दे आया हूँ, कैसा हुआ? ठीक हुआ। भावुक हो गया मैं, रोने लगा। तो बोले क्यों रो क्यों रहे हो? मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, मैं इतनी दूर आया हुआ हूँ बम्बई छोटे से। उन्होंने कहा जाओ तुम पास हो गए। ही डिक्लेयर्ड एग्जाम दे के कोई बच्चा आया हो उसको ये कह दिया जाए कि तुम पास हो जाओगे तो कितना हौसला बढ़ता है। मैंने और हौसले से काम किया और फिर वहां से मेरा ट्रांसफर जो है एज ए सेल्समैन आगरा कैंट की शॉप पे हुआ 79 में। वहां पे जब आगरा आया तो आजकल वो समय इनलैंड लेटर वगैरह सब पहुंचा करते थे। बम्बई में मेरे पास बहुत लेटर आते थे दोस्तों के, सुबह की डाक में 7 और शाम की डाक में 3, तो 10-10 लेटर एक दिन में आते थे। मेरे आगरा कैंट की खबर पहले पहुंच चुकी थी। आगरा में मेरे पहुंचने से पहले मेरे 5 लेटर मैनेजर के फाइल में रखे हुए थे। कौन लड़का ऐसा आ रहा है जिसके आने से पहले नील कुमार वर्मा के नाम से जो है वो 5 लेटर पड़े हुए ऑलरेडी। तो मैं उससे मिलने गया बिफोर जानी उसी दिन शाम को, जिस दिन मैं पंजाब मेल से आगरा उतरा उसी दिन मैं शाम को मिलने गया। तो उन्होंने कहा इसी तरह से मिस्टर वर्मा वेलकम और ये आपके 5 लेटर आए रखे हैं, टुमारो यू कैन ज्वाइन। तो मैंने 15 जुलाई, मुझे याद है आज ही, 15 जुलाई 1979 को मैंने आगरा कैंट शॉप पर ज्वाइन किया। और वहाँ फिर वही चीज काम आई, मेहनत ईमानदारी, जिससे जब वहाँ पे काम किया तो हमारी जो बाटा कंपनी के मालिक थे मिस्टर बाटा का वहाँ पे विजिट हुआ। और ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है कि आपकी किसी भी संस्था के सबसे बड़े जो रचयिता जो है वो आकर के अगर विजिट करते हैं तो उससे बड़ी खुशी वो नहीं हो सकती। वो अटेंड किया उनके साथ एक रात को, फिर 5-स्टार होटल में प्रोग्राम था आगरा में, वो अटेंड किया। बहरहाल बड़ा अच्छा आगरा का रहा, 6 साल तक मैं वहाँ रहा, 84 दिसंबर तक।
1: कितने साल आप बाटा कंपनी में? टोटल
2: मैंने बाटा शू कंपनी में टोटल जो काम किया है 35 साल, 35 years। 1973 से लेकर के मैंने 15 मार्च 2007 को मैंने छोड़ा बाटा कंपनी।
1: आप फिर बता रहे थे कि IIT रुड़की में भी आपने कार्य किया, तो ये और भी बाटा के बाद फिर आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन?
2: जी मैंने कोई और कंपनी ज्वाइन नहीं की। मैंने फिर उसके बाद वहाँ पे फर्नीचर स्टोर था अग्रवाल फर्नीचर स्टोर, मैं उनके पास गया किसी के जरिए क्योंकि पैसों की जरूरत थी। वो बाटा कंपनी का कोई और इशू था जिसकी वजह से 2007 में मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, रिटायर नहीं हुआ था 2007 की बात
1: जी।
2: तो वहां से जो है मैंने 1 महीने भी पूरा काम नहीं किया और वो इतने ईमानदार और बढ़िया आदमी थे, उन्होंने मेरी कदर किया क्या। तो मैं इस बीच में IIT में जाकर के उन लोगों से, अधिकारियों से मिला। तो हम लोग अपने बाटा के शूज, सैंडल्स और सॉक्स वगैरह सप्लाई किया करते थे। अधिकारियों से मिला तो उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसे आदमी की जरूरत है जो इतना मतलब सच्चाई ईमानदारी और उसके साथ काम करने वाला हो। तो मैं जाकर के जब उनसे मिला अग्रवाल फर्नीचर पे काम करते करते, क्या ठीक है ये बात है 27 दिसंबर की और 4 दिन बाद नया साल शुरू होने वाला था 2008। तो उन्होंने मुझे, अग्रवाल फर्नीचर वालों ने इजाजत दे दी, बोले हमें बहुत खुशी होगी कि आप एक अच्छी जगह जा रहे हैं। तो वहां मैंने 2008 में 1 जनवरी से काम शुरू किया IIT रुड़की में ऑफिस में। और मैंने वहां पे 3 डिफरेंट स्टेजेस पे अलग अलग उसमें डिपार्टमेंट्स में काम किया IIT में। और ये परमानेंट जॉब नहीं था, ये टेम्परेरी जॉब था, लेकिन किसी एजेंसी के थ्रू, जैसे आजकल वर्क हायर पर लोग रखे जाते हैं। तो इस तरह से मैंने वहाँ पे 30 जून 2018 तक मैंने जो है वहाँ IIT में काम किया 11 साल।
1: जैसे अगर मैं ये पूछूं कि बाटा कंपनी में जो आपकी लर्निंग है
2: जी,
1: कौन सी ऐसी वैल्यूज आपने सीखी जो आपको लगता है कि दूसरों को पता होना चाहिए?
2: मेरी फिर वही बात आती है जो मैंने शुरू में कही, जो बाटा कंपनी में पंक्चुअलिटी, ईमानदारी, मेहनत, यही चीज मेरे काम आई सबसे।
1: कंपनी से क्या आप सीखा?
2: कंपनी से मैंने ये सीखा कि आपको जो है वो यू विल हैव टू हार्ड वर्क, और कस्टमर जो है हमारा मास्टर होता है। अगर कोई कस्टमर आपको आया है और आप चाय पी रहे हैं तो आप चाय ठंडी हो जाने दीजिए, रख दीजिए, छोड़ दीजिए, यू वेलकम योर कस्टमर फर्स्ट। तरह से हमने जो था ये इस चीज को सीखा। और मैं अब लोगों से कहता भी हूँ, कहीं जाता हूँ शॉप पे कि भाई आप कम से कम मोबाइल से नजर उठा करके कस्टमर की तरफ देख तो लीजिए, आई टू आई कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी होता है। बाटा शू कंपनी में कहा जाता है कस्टमर इज किंग, वो हमें कुछ देने आ रहा है, हम उसे कुछ नहीं दे रहे, हमें तो कंपनी काम करने के पैसे दे रही है। लेकिन बाटा कंपनी में जो बाटा कंपनी चल रही है या कोई भी संस्थान जो चलता है वो उसके एम्प्लॉयज की वजह से चलता है, कस्टमर की वजह से चलता है। एम्प्लॉयज कस्टमर को अच्छी सर्विस देंगे तभी वो कंसर्न काम करेगा।
1: और ऐसे अगर मैं ये पूछूं कि आपकी आखिरी जॉब थी आईआईटी रुड़की वाली, वहां से क्या लर्निंग हुई आपकी?
2: वहां से मेरा जो चीज वो काम आई, जो बाटा कंपनी का एक्सपीरियंस था, लोगों से पोलाइटली मिलना, प्यार से मिलना, अंग्रेजों की कंपनी थी तो इंग्लिश का ज्यादा था, अभी भी शायद आप महसूस कर रहे हैं मेरी भाषा में हिंदी उर्दू और इंग्लिश का समावेश ज्यादा हो रहा है। वही चीज मेरे जो वहाँ स्टूडेंट थे, मेरा स्टूडेंट से कंसर्न रहता था और मेरा डिपार्टमेंट था वो स्टूडेंट्स की समस्याओं से रिलेटेड था। उसमें कहते थे डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर, DSOW, तो उस ऑफिस में मैं काम करता था। ज्यादातर फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट से मेरा लिंक रहता था और वो मेरे जो इंग्लिश का शौक था, यह समय का वो था बाटा कंपनी का एक्सपीरियंस, वो वहाँ पे काम आया। और स्टूडेंट से जो है मैंने स्टूडेंट से भी बहुत सीखा, स्टूडेंट ने मेरे को बहुत इज्जत दी, प्यार दिया और मेरा वहाँ से भी एक टर्निंग पॉइंट हुआ। वो टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि मुझे गाना गाने का शौक था तो मैं वहाँ रह करके लंच टाइम में एक गाना जरूर गाता था विदाउट म्यूजिक
1: जी।
2: तो वहाँ किसी स्टूडेंट ने आकर के मुझसे ये कहा कि सर आप इतना अच्छा गाते हैं तो आप इस म्यूल या स्टार मेकर के थ्रू क्यों नहीं गाते, वहाँ पे आपको लिरिक्स भी मिल जाएंगे, म्यूजिक मिल जाएगा और आपका एक्सपोजर जो है और ज्यादा होगा। तो कर लिया।
1: काफी इंस्पायरिंग जर्नी है, अलग अलग फेजेस, अलग अलग लोग, अलग अलग कंपनी, अलग अलग जगह।
2: बिल्कुल।
1: और कहीं ना कहीं इस पूरी यात्रा के अंदर जो यात्राएं आपने की है उसमें से अपने अंदर भी आपने बहुत सारी विशेषताओं को भी अडॉप्ट किया
2: जी।
1: तो जैसे आपने गीत के बारे में बोला
2: जी,
1: कुछ ऐसा सुनाइए हमारे श्रोताओं को जो आपके दिल के बहुत करीब है।
2: अभी एक गीत रिकॉर्ड करके आ रहा हूँ, उसी को सुनाया देता हूँ
1: जी।
2: लता जी का गाया हुआ गीत है, मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो मैंने अब तक मतलब हजारों गाने रिकॉर्ड किए हैं लेकिन जो ये अभी अभी रिकॉर्ड करके आता हूँ इमीजिएटली याद आ रहा है।

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: कुमार जी की रचना है,
0: क्यों ना यही गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं और फिर लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद। तो श्रोताओं सुनिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो अनिल जी के दिल के बहुत करीब है और दो लाइन उन्होंने भी गाया है आपके लिए, और बाकी गीत आप सुनेंगे रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन कार्यक्रम सलामी जिंदगी।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: दोस्तों, फिर लौट कर आ गए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम सलामी जिंदगी में। जैसे हम बात कर रहे थे अनिल वर्मा जी से कि उनके बचपन, युवा काल, स्कूल की लाइफ, फिर जो उनका कार्यमय जीवन है, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी अपनी यात्रा के बारे में बताया। कैसे इंसान कहीं अनुभव लेता है, कहीं सीखता है, और साथ साथ उन्होंने अपने गायकी का भी थोड़ा सा हमारे को एक झलक दिखलाई। आइए आगे चलते हैं और उनके जीवन की ओर। सर, जैसे आपने अपने कार्यमय जीवन तक बताया, इसी कड़ी में जैसे स्कूल से निकले, काम पे लगे, कंपनियां चेंज की, और इसी बीच में कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन भी आरंभ हो जाता है
2: जी।
1: तो आपका विवाह कौन से वर्ष में हुआ?
2: 1980 में।
1: 1980 में कितने साल के थे आप?
2: मैं 1980 में 25 साल का था।
1: जिनसे आपका विवाह हुआ उनके बारे में कुछ बताइए, और कैसा आपका विवाह का स्थिर हुआ, और उनकी क्या विशेषताएं?
2: जब बम्बई से ट्रांसफर होकर के आगरा आया, तब तक मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं वहाँ शादी करूँगा, लेकिन मेरे वहाँ पहुँचने के दो दिन बाद ही मेरे जीजा जी वहाँ रहते थे आगरा में,
1: okay.
2: उन्होंने ये कहा, अनिल हमने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है, सरप्राइज गिफ्ट। मैंने कहा अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, और फिर मुझे अपने माता पिता से पूछना पड़ेगा। बोले नहीं देख, तो वहाँ से सिलसिला चालू हुआ। लड़की वाले जो थे वो देखने के लिए आए बाटा की दुकान पे
1: जी।
2: आकर के उन्होंने देखा कि भाई यहाँ, तो उनको कुछ जचा होगा अब, लेकिन मेरे को फिर वही बीमारी सच बोलने की। तो हमारे साले साहब मिलने के लिए आए, तो वो कहने लगे, मैंने कहा भी सोच लीजिए, मुझे केवल 500 रुपये महीना मिलता है, कैसे गुजारा होगा आपकी बहन के लिए? इसके बारे में बोले, हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो क्या मिलता है हम इस बात से मतलब नहीं है। मैं 6 जुलाई हमारी शादी की,
1: आगरा में ही विवाह हुआ,
2: आगरा में शादी हो गई
1: जी।
2: बस वहीं से पहला जीवन शुरू हुआ, और 1983 में हमारे बेटे का जन्म हुआ।
1: नाम क्या है
2: जी
1: आपकी युगल का? नाम क्या है?
2: मेरी पत्नी का नाम था स्वर्गीय श्रीमती विनीता वर्मा
1: जी। उनको कैसे याद करते हैं अभी आप? कौन सी विशेषताएं आपको उनकी अच्छी लगती है?
2: वो बड़ा इमोशनल सब्जेक्ट है। वो बहुत इंस्पायरिंग थी, बहुत मजबूत थी, बहुत टेक्निकल माइंडेड थी।
1: अच्छा।
2: हाँ, समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं था। उन्होंने मेरी जिंदगी को सजाया संवारा, और घर कैसे बनता है, घर जो है वो घर जब बनता है, जब कोई उसको बनाता है, उससे पहले वो एक कमरा होता है
1: जी।
2: घर किसी के बनाने से बनता है, अकेला व्यक्ति घर नहीं बना सकता।
1: तो जैसे आपके सामने दोनों समय है, एक समय जब आपका विवाह हुआ था, और एक वर्तमान समय है जहाँ आपके भी बच्चे होंगे, और भी समाज में आप देखते हैं कि परिवार बन रहे हैं, कई परिवार बिगड़ भी जाते हैं, कई बार बच्चे बिगड़ जाते हैं, कई बार पति पत्नी के बीच मन हो जाती है। कौन सी वो वैल्यूज हैं, कौन सी वो जो हमारे भारतीय मूल्य हैं, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, एक परिवार को संगठित करके रखने मददगार होते हैं, आप क्या देखते हैं इसमें?
2: मेरे तो यही हमेशा कहना है कि जब हमारा किसी से वैवाहिक संबंध होता है, तो हमें उसको बेइंतहा प्यार करना चाहिए, और शक जो है वो एक बहुत बड़ी दीवार पैदा कर देता है, बहुत बड़ी बीमारी है, वो कभी नहीं लाना चाहिए। और जितना आप एक दूसरे को समझेंगे, उतना ही मजबूती संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, उतना ही मजबूत संबंध बनेंगे, उतना ही जीवन सुचारू रूप से चलेगा। अब आना और जाना तो जिंदगी में कौन पहले जाएगा, कौन आएगा, ये बात की बात है
1: जी।
2: लेकिन मेरी जिससे शादी हुई, वो उसने मतलब मेरे अनिल वर्मा को जो है वो जो एक्चुअल मतलब एक गृह स्वामी कह सकते हैं, या जो भी कुछ बनाया वो उन्होंने बनाया,
1: उन्होंने बनाया। तो आज उस आत्मा को भी हम यहाँ से श्रद्धांजलि भी देते हैं, याद भी करते हैं, और सलामी जिंदगी से सलाम कहते हैं। और बच्चों के बारे में क्या बताना चाहिए?
2: मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटी की शादी मैंने 2008 में कर दी थी।
1: कहाँ शादी?
2: बुलंदशहर में, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। उसके हस्बैंड डॉक्टर है। और बेटे की शादी 2010 में की
1: जी।
2: वो अब तो उल्टा ही कहना पड़ता है, पहले बच्चे रहते थे माँ बाप के साथ, अब तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बच्चों के साथ रह रहा हूँ। मेरा एक पोता है
1: जी।
2: और बहू रानी है, और हम लोग साथ।
1: बेटा कहाँ रहता है?
2: बेटा साथ में ही है, रुड़की में रहते हैं।
1: रुड़की में रहते
2: हैं। हाँ, अब तक वो IIT में काम कर रहे थे, वो भी एक डिपार्टमेंट में, लेकिन अब वो आजकल चूंकि परमानेंट नहीं हो पाए, परमानेंट जॉब नहीं मिलता
1: जी।
2: तो आजकल वो अपना ही कुछ काम
1: कारोबार कर रही है। परिवार को बेहतर बनाने का एक सवाल मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था, परिवार में जैसे पति और पत्नी का संबंध है उसके लिए तो दो लोगों की मेहनत होती है, बच्चे जब जन्म लेते हैं और बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उस समय कौन सी ऐसी बातें हमको सावधानी रखनी चाहिए और कौन सी वैल्यूज हैं बच्चों को देनी चाहिए?
2: देखिए, हम बच्चों को वही सिखा सकते हैं जो हम सीख करके वहां तक आए हैं
1: जी।
2: वो जो हमारा सामाजिक दायित्व उनको दुनिया में लाने के बाद होता है और वो हम उनको वही चीज देते हैं जो हमारे पास होता है
1: जी
2: इस जर्नी में अब तक की
1: जी,
2: शादी के बाद उनके जन्म होने तक। मैं तो यही कहूंगा कि हम बच्चों को जैसा पौधों की तरह होते हैं बच्चे छोटे, जैसा उनको हम खाद पानी देंगे वैसे ही वो बनेंगे, और वाकई वैसे ही है, बच्चे जो है वो उसी राह पे चल रहे हैं।
1: कच्चा घड़ा को जैसे बना रहे होता है फिर पकाया जाता है, तो माता पिता कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी होती है कि जो हम उनको बता रहे हैं वो हम खुद भी प्रैक्टिस करें।
2: और माता पिता बताते भी वही है जो उनका अपना एक्सपीरियंस होता है।
1: कई बार आजकल हम देखते हैं एक शब्द यूज किया जाता है जनरेशन गैप
2: जी,
1: और ये माता पिता भी करते हैं और बच्चे तो उससे भी ज्यादा करते हैं कि आप नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे,
2: आपको आता ही क्या
1: है। आता ही क्या तो बहुत बाद में आता है, लेकिन पहले तो बच्चों को लगता है हमें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, या कई चीजें होती है, कई चीजें माता पिता की अनुभव की होती है, तो वो भी अपनी बात सही जगह रख रहे होते हैं। इस चीज का क्या सोल्यूशन देखते हैं?
2: देखिये, आजकल जिस हिसाब से तेजी के साथ ये दुनिया भाग रही है और नए नए गजेट्स आ रहे हैं, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट वो हमारे जमाना तो रहा नहीं कि उपन्यास पढ़ करके बड़े हो गए है ना, या पढ़ाई करके बड़े हो गए। अब तो इसके हाथ में कंप्यूटर भी अलग हो गया, तो जो है सबके पास जो है वो लैपटॉप और मोबाइल,
1: मोबाइल
2: के अंदर सभी चीजें आ गई हैं। कल भी जो हमारा मीडिया का विषय था उसमें भी यही चर्चा हो रही थी कि आजकल हर वक्त जो है बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है और मोबाइल में सारी चीजें आती जा रही हैं। अब ये हमें माँ बाप होने के नाते ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे क्या देखें और क्या नहीं देखें, हालांकि वो इसमें अपने इंटरफेरेंस मानते हैं माँ बाप का,
1: प्राइवेसी की बात आ जाती है,
2: प्राइवेसी वाली बात आ जाती है बड़ा होते ही, लेकिन फिर भी हमें अंकुश तो लगाना पड़ेगा कि नहीं अब टाइम हो गया, जाइए आप सोइए, अब आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, आप रोते चिल्लाते हैं कुछ भी करते रहिए। लेकिन अगर बच्चों को संवारना है, सजाना है, तो उनको थोड़ा सख्ती तो करनी।
1: फैमिली वैल्यूज या पारिवारिक मूल्य जो कहते हैं
2: जी,
1: ये कौन से वैल्यूज हैं जो एक परिवार को बांध के रखते हैं?
2: देखिए, परिवार को बांध करके जब ही रखा जा सकता है जब हम इमोशनली एक दूसरे से अटैच्ड हों,
1: कनेक्टेड हों।
2: अगर हम जरा सा भी मम्मी काम पे चली गई, पापा काम पे चले गए, बच्चे स्कूल चले गए और शाम को आए तो मोबाइल लेकर के बैठ गए, तो उससे कनेक्टिविटी अब उतनी नहीं है, पहले हुआ करती थी
1: जी।
2: जब हम पढ़ते थे हमारी माताजी पढ़ाती थी या, तो वो था, अब दौर अलग हो गया है। अब बच्चे कहते हैं कि हमारे पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, बल्कि देखा जाए तो अगर मोबाइल चलाना सिखाया तो बच्चों ने सिखाया हमें, जितना भी हम करते हैं आजकल
1: जी।
2: बच्चों को हमें ध्यान रखते हुए उनको करना पड़ेगा कि वो पढ़े लिखे, काबिल बने और जो है वो अपना जीवन जैसे हमने कोशिश की है संवारने की, ऐसी हमसे बेहतर बन के दिखाएं।
1: बहुत ही खूबसूरत अनुभव, और अपने जो सवाल हमारे श्रोताओं की ओर से मैंने रखा उनके भी अच्छे जवाब आपने दिए, और भी जानेंगे, पर इस बीच में एक छोटा सा एक ब्रेक लेंगे क्योंकि समय हमारा लिमिटेड है
2: जी जी,
1: और जीवन इतना लंबा है कि अनुभव गाथा खत्म नहीं हो सकती है
2: जी जी।
1: छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौट कर आते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM, श्रोताओं सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए, तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड. एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप, अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो. हम यू वर्ड भी ये यूज़ करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी. उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है, जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए.
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 107.8 FM रेडियो मधुबन, और कार्यक्रम चल रहा है सलामी जिंदगी. और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अनिल जी से फिर मुखातिब होते हैं. अनिल जी, जैसे आपने जीवन के अलग अलग पड़ाव के बारे में बातचीत की, एक पड़ाव जो है वो वर्तमान है आपका
3: जी,
2: और इस समय आपने अपने जो कार्यमय जीवन था उससे अवसर भी ले लिया है
3: जी,
2: और बच्चों के साथ रहते हैं. कहीं ना कहीं एक जीवन भर एक ढर्रे से हम बंधे रहते हैं, जो हम सुबह 8 बज गए 9 बज गए अपना टिफिन लेना है, काम पे जाना है, फिर रात को लौट के आना है, फिर अगले दिन की तैयारी के साथ, मेंटल तैयारी के साथ सो जाना है, फिर सुबह उठ के जाना है,
3: डेली रूटीन रहता है.
2: फिर एक वो समय जब आपने रिटायरमेंट लिया तो वो एक पैटर्न ब्रेक हुआ, कहीं ना कहीं ये भी एक चुनौती रही होगी. अब
3: बिल्कुल चुनौती थी
2: जी,
3: बहुत ही अजीब सा लगता था. और मैं जितना स्लिम ट्रिम उस जमाने में था जब मैं मेहनत करता था, उतना अब मैं नहीं रहा. एक कुर्सी पे बैठ करके जो काम किया IIT रुड़की में 11 साल, उससे जो है वो थोड़ा सा बल्कीनेस तो आ गई है, हमें इससे थोड़ा सा बचना चाहिए.
2: तो जैसे हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं अभी, तो हर उम्र के लोग रेडियो मधुबन पर अभी आपको जैसे सुन रहे होंगे, चीज मैं जानना चाहूंगा, एक चीज तो नहीं कई बातें ऐसी हैं जो वर्तमान जीवन से है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे जो बुजुर्ग होने वाले होंगे, हो सकता है 10 साल बाद 20 साल बाद उनकी भी उम्र आगे बढ़ेगी. कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें जिस भी उम्र के हम हैं वहाँ ध्यान रखनी चाहिए, ताकि जब हम बुजुर्ग हों स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे.
3: देखिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना तो बहुत ही जरूरी है
2: जी,
3: सभी को. और वो स्वास्थ्य को एक आपको शौक बना लेना चाहिए, जैसे आपको गाने का शौक है, एक कविताओं लिखने का शौक है, कुछ भी चीज है, तो उसी तरह स्वास्थ्य का हमें रोजाना ध्यान रखना पड़ेगा. स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, बिना स्वास्थ्य के कुछ भी नहीं है. वो एक कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है.
2: सही बात.
3: इसलिए योगा है या एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, सुबह शाम का वॉकिंग बहुत जरूरी है, और संतुलित डाइट लेना है
2: जी.
3: अपने आप को, खुराक तो कम हो ही जाती है इस उम्र तक आते आते, है ना, बहुत सी चीजें भूलने भी लगता है आदमी, तो अपने आप माइंड को शार्प रखने के लिए अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए. और मैं तो बिल्कुल अपने आप को पहले जैसे था, मैं अपने आप को व्यस्त रखता हूँ. मेरे पास 24 घंटे पहले भी कम होते थे और आज भी कम है.
2: क्या रूटीन रहती है, आप कैसे दिन आरंभ कर, क्या भोजन लेते हैं?
3: मेरा देखिए, जैसे सप्ताह में 6 दिन का तो रहता ही है कि पोते को स्कूल छोड़ करके आना, वो IIT में ही स्कूल है तो उसको वहां छोड़ जाता हूँ मैं जब सुबह, उसकी वजह से ही मुझे जल्दी उठना पड़ता है. ये बहुत मेरे लिए फायदे की चीज.
2: कितने बजे उठते हैं
3: सुबह? वैसे तो मुझे नींद ही 4 घंटे की केवल रह गई है, लेकिन फिर भी मैं 5:30 या 6 बजे तक भी सच. और उसके बाद जब मैं उसको लेकर के जाता हूँ IIT में, स्कूल छोड़ने के बाद मैं फिर IIT के जो ग्राउंड है वहां पे मैं चक्कर लगाता हूँ, घूमता हूँ, टहलता हूँ, अपने जो मेरा शौक है गाने का वो भी कई बार रिकॉर्ड करता हूँ, रील्स बनाने का शौक है वो करता हूँ, सब कुछ करता हूँ.
2: बहुत अच्छी बात है.
3: 1.5 घंटे बाद मैं 9 बजे तक वापस आता हूँ
2: जी जी.
3: और फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद नाश्ता वाश्ता किया, और उसके बाद थोड़ा सा नहाने धोने के बाद अपने पूजा अर्चना की, और फिर जब तक फिर थोड़ा और काम वाम निपटाए जो घर के होते हैं, और उसके बाद फिर वो 1:30 बज जाता है, उसको लेकर जाना होता है. 2:30 बजे तक आए, फिर खाना खाया
2: जी,
3: थोड़ा आराम कर लिया, सो गए, 5:30 5:30 बजे उठे, फिर उसके बाद चाय पी, और फिर उसके बाद शाम का इवनिंग वॉक है या कहीं मिलने जाना है, कुछ सामान लाना है
2: जी. तो ये हो गया फिजिकल पार्ट, कहीं ना कहीं इससे भी मन पे प्रभाव

0: पड़ता है, जैसे आपने कहा कि एक स्वस्थ शरीर पे स्वस्थ दिमाग का वास होता है, पर एक स्वस्थ शरीर एक अच्छी स्वस्थ आत्मा के लिए भी हेल्पफुल होता है। आजकल एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आ रहा है, सरकार भी इस पे कई चीज़ों पे ध्यान दे रही है, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो बहुत प्रकार की जागरूकता होती है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना या जागरूक रहना, या जैसे आपने मेमोरी की बात की, या एक सामाजिक रूप से भी एक्टिव रहना, इसके लिए क्या क्या प्रैक्टिस की जा सकती है?
1: मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें यही है कि हमें जो डेली रूटीन है हमारा, उसके अंदर जैसे हमारा शौक है मान लीजिए अखबार पढ़ने का या टीवी पर न्यूज़ देखने का है
0: जी,
1: गजेट्स नए नए आ रहे हैं, जितना भी पॉसिबल हो हमें उसके अंदर अपने आप को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं आती तो बेटे से पूछें, बेटे से को नहीं पता तो पोते से पूछें, जिससे भी पूछ सकते हैं,
0: सीखने की
1: अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आज जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो मानसिक विकास भी अपने होता रहता है, उतना नहीं होता जितना नई जनरेशन का होता है, लेकिन होता तो है।
0: जैसे गीत गाते हैं उसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है मन पे?
1: बहुत ज्यादा, बहुत सुकून मिलता है।
0: अच्छा,
1: इससे ज्यादा तो कोई चीज है ही नहीं, म्यूजिक इज माय लाइफ।
0: और आध्यात्मिकता भी एक बड़ा सब्जेक्ट है अभी के समय एक्सप्लोर करने के लिए।
1: बिल्कुल,
0: आध्यात्मिक होने के लिए और आध्यात्मिकता से मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या कर सकते?
1: देखिए, इसके लिए सबसे जरूरी तो हमारा जो रोजाना पूजा हम करते हैं, नहा धो करके, वो तो हम करते हैं
0: जी।
1: उसके अलावा हमें अगर सुबह को संभव नहीं है तो शाम को, और शाम को संभव नहीं है तो सुबह मंदिर या जो भी हमारा पूजा का माध्यम है किसी भी व्यक्ति का
0: जी,
1: तो वो उसको करना जरूर चाहिए। चाहे वो नमाज पढ़ने की क्रिया हो, चर्च में जाने की क्रिया हो, या पूजा पद्धति हमारी
0: जो आस्था है,
1: जिसकी भी जो आस्था है, वो उस काम को धर्म से जुड़ना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: धर्म हमें जागरूक रखता है, अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का भी बोध कराता है। अगर मान लीजिए मेरा ये शौक नहीं होता धर्म के प्रति, या मैं यहाँ कैसे आ पाता? मैं जो आज मधुबन स्टूडियो में बैठा हूँ उसका श्रेय जो है वो नारसन जी भले ही मना करें, लेकिन बाबा जी को तो जाता ही है नहीं? ब्रह्मा बाबा जी को जाता है, इन्हीं का लिखा हुआ गीत भी वो ब्रह्मा बाबा जी के लिए ही समर्पित है।
0: ईश्वरीय प्रेरणा के लिए एक धार्मिक स्वभाव
1: होना जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी।
0: और
1: जी,
0: बच्चों के जीवन में ऐसा कुछ उपयोग देखते हैं आध्यात्मिकता का, धार्मिक?
1: हाँ, बच्चे जब देखिए माँ बाप को देखते हैं करते हुए, व्रत रखते हुए देखते हैं, या पूजा पाठ करते हैं दिवाली पे, दशहरा पे, या होली पे, या किसी भी त्योहार पे जब हमारे बच्चे देखते हैं
0: जी,
1: तो वो उसको उसी हिसाब से अपने आप को डेवलप करते हैं और उनके काम आता है जीवन में।
0: तो दोस्तों, हमारे साथ बने हुए हैं अनिल वर्मा जी, आप रुड़की उत्तराखंड
1: जी
0: रुड़की उत्तराखंड से हमारे स्टूडियो पर पधारे हैं, और उनके जीवन यात्रा के कुछ छोटे छोटे चीज़ों को, बातों को हमने सेलिब्रेट किया आज, समझा और जाना, और कैसे इन चीज़ों को अपनाकर हमारे भी जीवन को हम विशेष बना सकते हैं। कुछ ऐसे अनुभव जो उनके जीवन के हैं, और वो हम अपने जीवन में उन चीज़ों से धोखा ना खाएं और उसको धारण करके उसका लाभ ले सकें, इन सभी चीज़ों के बारे में एक छोटा सा एक्सप्लोरेशन किया उनके जीवन पर। आज ऐसे एक विशेष शख्सियत जो हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर आए थे और अपने जीवन के छोटे छोटे अनुभव, लेकिन बड़ी बड़े प्रभाव उसके हमारे जीवन में हो सकते हैं, इन चीज़ों को आपने सुना होगा, जरूर कुछ बातों को नोट किया होगा। सलाम करते हैं आज उनको इस मंच से, सलामी ज़िंदगी के और रेडियो मधुबन से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: होता हूँ और मेरे दोस्त, मैं आपका होस्ट शरद त्रिपाठी और आपके साथ तो हर बार हम मिलते ही ना, और प्रोग्राम का नाम होता है जुनून। और हमारी मुलाकातों में हर बार होता है कोई जुनूनी, और उस जुनूनी से बात होती है कि उसके जुनून की शुरुआत कैसे हुई और वो दुनिया को कैसे बदलना चाहता है और वो क्या सोचता है, क्या जानता है और उसकी काबिलियत क्या है। तो हमारे साथ हैं हमारे एक नए दोस्त और नए जुनूनी, और इस जुनून प्रोग्राम में आपका स्वागत है मिस्टर यश।
1: थैंक यू सो मच सर, एंड नमस्कार सभी को। मेरा नाम यश गर्ग है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ।
0: जी यश, एक यंग एंटरप्रेन्योर है सिल्वर ट्री कंपनी के, और सिल्वर ट्री इनका ब्रांड है, और वो क्या करता है वो हम इनसे जानेंगे। और यश जो है वो बिल्कुल यंग एंटरप्रेन्योर है और उनको यूथ आइकन अवार्ड मिला है, और इतनी कम उम्र में एक जुनून इन्होंने पाल लिया। और आपको तो पता है ना श्रोताओं, कि हमारे संग जितने भी जुनूनी आते हैं उन्होंने बहुत कम उम्र में कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में एक तैयारी कर ली होती है और एक जुनून सेट कर चुके होते हैं, और उस पर वो निकल पड़ते हैं, लोगों का साथ उनको मिलता है और वो एक बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं। तो हमारे साथ जो यश गर्ग हैं, आप 2024 के राजस्थान के यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति हैं, और हम यश को तब से जाने हैं कि यश ने जब से बताया कि आपकी जो कंपनी है वो एक राजस्थान में एक नई मुहिम शुरू कर रही है। तो आइए हम उसे जानते हैं कि सिल्वर ट्री क्या कर रही है और सिल्वर ट्री ने कैसे हमारे देश के पर्यावरण को बदला है और यूथ आइकन अवार्ड इनको क्यों मिला है। जी यश, बताइए आपकी कहानी, सिल्वर ट्री क्या है?
1: सर, सिल्वर ट्री के अंदर हमारी छोटी सी कंपनी है, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, अभी स्टार्टअप कह सकते हैं हम इसको। हम इसके अंदर रिसाइकल प्लास्टिक, जो अपना सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, उसके हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे बेंचेस हो गई, ट्री गार्ड्स हो गए, वॉशरूम्स हो गए, डस्टबिन, आउटडोर फर्नीचर, इनडोर फर्नीचर, ये सारे हम मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये सारा रिसाइकल प्लास्टिक से होता है। हमारा कंपनी का लोगो स्लोगन भी यही है, रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल, मतलब चाहे कितना ही छोटा हो या कितना ही प्लास्टिक का कितना ही बड़ा टुकड़ा हो, हम सब चीजें रिसाइकल करते हैं
0: जी।
1: तो बेसिकली हमारा मोटिव यही है कि सब जानते हैं हम कि प्लास्टिक जो मल्टी लेयर सिंगल यूज प्लास्टिक होता है डीकम्पोज नहीं हो पाता है वो काफी 100-200 सालों तक, तो उसको हम कुछ नई टेक्निक से, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू, कुछ केमिकल्स के थ्रू हम उसको एक ऐसे प्रोडक्ट के अंदर उसको शेप देते हैं कि वो अपने यूज आ सके। जैसे हम गवर्नमेंट के थ्रू हम बेंचेस सप्लाई करते हैं, हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को देते हैं। तो बेसिकली मोटिव यही है सर कि जितना जल्दी हो सके हम प्लास्टिक को यूज ले लें, इससे पहले कि हमारे ऊपर हावी हो जाए। काफी जगह, जैसे मैं ये आइडिया भी, मेरे को काफी जगह में ट्रैवल करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि कचरे के पहाड़ बन चुके हैं। जैसे आप दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे पे जाएंगे, आपको वहां पे दिखेगा कि एक पूरा प्लास्टिक के कचरे का एक पहाड़ बना हुआ है, उसकी हाइट अप्रोक्स 500 मीटर हो चुकी है
0: जी।
1: तो यही है कि सर हमारा मेन मोटिव यही है कि ऐसे भी हो अपन सिंगल यूज प्लास्टिक को रीयूज ले सके और उससे कुछ ना कुछ अच्छा प्रोडक्ट्स बना सके।
0: निश्चित रूप से आपने बताया कि आपकी जो कंपनी है एक छोटा स्टार्टअप है, कंपनी बड़ी नहीं है, बट वही मैं फिर से कहूंगा कि स्टार्ट इज इम्पोर्टेंट नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज। तो आपने शुरुआत करी ना, वो कितनी छोटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, तो ये बहुत अच्छा पंच लाइन और एक अच्छा पंच आपने दिया समाज को, ये पंच पॉजिटिव पंच में से कहूंगा। इस पंच में ये मान के चल रहा हूँ कि आपने नेचर को ठीक करने के लिए प्रयास किया है, और देखिए प्लास्टिक के साथ में आपको हम सब जानते हैं कि हम उसको निकाल नहीं सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते, वो कैसे भी करके उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका एक ही सोल्यूशन है रिसाइकल, और रिसाइकल करके एटलीस्ट वो पहाड़ की फॉर्म में या गंदगी की फॉर्म में यहाँ वहाँ ना सड़के, वो एटलीस्ट हमारे समाज में ही एक पॉजिटिव भूमिका में हमारे साथ आ पाएगी। तो कुछ वैसा ही एक स्टार्टअप आपका है और आप इसमें प्लान कर रहे हैं। तो मैंने भी निश्चित रूप से, जब मैं दिल्ली पोस्टिंग के दौरान था, मैंने दिल्ली और अहमदाबाद में मैंने एक बड़े बड़े पहाड़ देखे कचरे के, हर बड़े शहर के बाहर कचरे के पहाड़ आपको मिलते हैं, शहर के बीचों बीच या शहर के बाहर, कुछ वैसा ही समस्या हमारे देश की और समाज की है। तो आप उस समस्या को ठीक करने का पीड़ा आपने उठाया, ये शुरुआत कैसे हुई और आपको कैसे लगा कि मुझे ये करना चाहिए?
1: सर, शुरू से एक आप कहते हैं, आपके जैसे शो का भी नाम है जुनून, तो एक वो शुरू से एक जुनून था कि खुद से कुछ नाम कमाना है, खुद से कुछ अच्छा करना
0: जी।
1: कुछ ऐसा ऐसा काम करना है जो हर कोई नहीं कर रहा हो
0: जी।
1: तो वही सोच के, और बाकी मेरे को मेरी मदर से भी काफी मोटिवेशन मिली, क्योंकि वो भी प्लास्टिक को लेके काफी कंसर्न रहती हैं। वो सेग्रीगेशन करती है हमेशा, जैसे जब भी वो कचरा, हम कचरे वाली वो गाड़ी आती है, हम उसके अंदर देते हैं, तो वो सेग्रीगेट करके फिर डालती है। मतलब सूखा कचरा अलग होता है, जो हमारा सब्जियों का कचरा होता है वो अलग होता है, और जो ये प्लास्टिक वेस्ट होता है वो अलग होता है, गीला कचरा होता है वो अलग होता है। तो ये अपना जो, अगर यही अपन चीज हम सभी लोग हमारे घर से चालू करें कि हम ड्राई और वेट वेस्ट अलग अलग करके कचरे की गाड़ियां फेंक रहे हैं, तो काफी कुछ हद तक जो हमको सेग्रीगेशन में बाद में दिक्कत आती है, जैसे नगर निगम्स को भी आती है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो इन फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी काफी ये सेग्रीगेशन की दिक्कत आती है, वो सेग्रीगेशन की जो इशू है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि जो प्रोसेस है सेग्रीगेशन का उसके अंदर सर काफी कॉस्टली भी पड़ता है, और उसके अंदर ये भी रहता है कि आप जो, आपको यूटिलाइजेशन लेने पड़ता है, जैसे वाटर का आपको क्लीन करने के लिए आपको यूटिलाइज लेना पड़ता है। तो एक कॉस्ट इफेक्टिव और एक इको फ्रेंडली, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी कम यूज हों और हम रिसाइकिल भी करें, तो अगर हम लोग घर से ही ये चीजें स्टार्ट करेंगे कि अपन सेग्रीगेट करें वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट को, तो काफी कुछ हेल्पफुल हो सकता है नेचर के लिए, हम काफी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इस चीज के थ्रू
0: जी। कि समाज में ये तो इम्पोर्टेंट है, और हमारे देश की जो स्वच्छता को लेकर जो पॉलिसी है उसमें ये भी है स्पष्ट है कि हमें गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक, कांच, ये हमें अलग अलग बिन्स में करने हैं, और क्लिनिकल वेस्ट के लिए तो पूरी अलग नीति बनी हुई है, लेकिन शायद हमारी जागरूकता की कमी की वजह से हम लोग सब नहीं कर पाते। और एक आप एक युवा है, और आप एक युवा का यही फर्ज है, यही उसकी पॉलिसी है, नीति है, या उसका विचार भी यही होना चाहिए कि वो कुछ समाज में बदले या बदलाव की तरफ अग्रसर हो, और आपने वो कदम उठा लिया है। तो आपका जो कंपनी है इसका नाम सिल्वर ट्री कैसे हुआ, सिल्वर लाइनिंग कैसे बना रहे हैं आप जी?
1: सर हमारी जो शीट्स होती है रिसाइकल प्लास्टिक से, उसके ऊपर एक टेक्सचर भी आता है सिल्वर, आप कभी, आपको मौका मिलेगा तो हम दिखाएंगे
0: जी।
1: उसके ऊपर टेक्सचर भी आता है सिल्वर कलर का। तो सिल्वर ट्री हमने ये सोच के रखा कि पेड़ों की तो वैसे भी कमी हो ही रही है हमारे यहाँ इंडिया के अंदर
0: जी,
1: तो एक हम ऐसी कंपनी चालू करते हैं जो चांदी का पेड़ हो
0: जी,
1: जिसके थ्रू आप एक अच्छा मैसेज दे पा रहे हो, एक कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो अपने सोसाइटी के अंदर, एक अच्छी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं, एक नई पहल चालू कर पा रहे हैं
0: जी। निश्चित रूप से आप बात आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखी है, और आप तो बड़ा अच्छा बोलते भी हैं, तो मैं ही जानना चाहता हूँ कि आपको ये यूथ आइकन अवार्ड राजस्थान सरकार ने किस लिए दिया और क्यों दिया?
1: सर यूथ आइकन अवार्ड मेरे को राजस्थान यूथ बोर्ड ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसी वर्क के ऊपर दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में दिया था मुझे, और ये जो मैं रिसाइकल प्लास्टिक का स्टार्टअप कर रखा है मैंने, इसी के ऊपर मेरे को ये अवार्ड मिला गया था। ये 12 जनवरी 2025 के अंदर हमको मिला था अवार्ड बाय सीएम बचनलाल एंड मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौर
0: जी। जी सर, ऑनरेबल सीएम ने आपको सम्मानित किया, तो निश्चित रूप से एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रही है कि आपने नए युवाओं के सामने भी एक आइडिया रखा है।
1: बिल्कुल सर,
0: आइडिया, और हम तो और भी युवाओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी ऐसी और कंपनीज बनाएं और आपके कंपटीशन में आए, और जिससे कि बाजार में लोगों में अवेयरनेस आए कि हमें रिसाइकिल करना है। और निश्चित रूप से जब प्रतियोगिता बढ़ेगी तो इस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट का जो ब्रांडिंग है वो करने में हमको सबको आसानी। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे और जानना भी चाह रहा था आपसे कि आपने ये शुरुआत कहाँ से की, मतलब कब से आप प्लान कर रहे थे, कैसे आपने कंपनी बनाई, और प्रोडक्ट डेवलप कैसे हुए कि ये प्रोडक्ट हमें जब बनाना है, प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे किया गया, ये सब मुझे जानना है बारीकी से थोड़ा पता।
1: कंपनी की डेवलपमेंट काफी 2023 के अंदर मैंने ये स्टार्टअप ऐसे फुली एग्जीक्यूट कर दिया था कि हम मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए थे। उसके एक साल पहले से हम रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर रिसाइकल प्लास्टिक के ऊपर इतना फोकस नहीं है। अगर आप दूसरी कंट्रीज के अंदर, जैसे आप सपोज बाली जाते हैं या आप जापान के अंदर देखते हैं, तो ये नाइजीरिया के अंदर जाते हैं, नाइजीरिया के अंदर जैसे सर रबर रिसाइकलिंग का काफी अच्छा प्रोसेस है, तो ये सारी कंट्रीज के अंदर सर रिसाइकलिंग के ऊपर गवर्नमेंट के थ्रू अच्छी पॉलिसीज बनी हुई है जो एंटरप्रेन्योर्स को काफी सपोर्ट करती है। तो वहीं से मैंने देखा कि रिसाइकलिंग, जैसे वो दूसरी जगह हम दूसरी कंट्रीज में देख रहे हैं कि वहां पे प्लास्टिक को रिसाइकिल करके ये प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, सपोज बेंच, ट्रिगर, तो मैंने वही सोच के वहीं से मैंने ये आइडिया लिया कि हम क्यों ना हम ये इंडिया के अंदर भी कर सकते हैं, हमारे राजस्थान के अंदर भी, क्योंकि हमारे यहाँ प्लास्टिक की तो कोई कमी है नहीं कि रॉ मटेरियल हमको मिल नहीं पाएगा, प्लास्टिक तो हमारे यहाँ लिमिटेड है
0: जी।
1: तो वहीं से हमने थोड़ा इसको आइडिया लेके हमने इसको यहाँ अपने राजस्थान में एग्जीक्यूट किया है। और मेन ये हमारा फोकस है कि एक्टिव है ये, जैसे हम लकड़ी का प्रोडक्ट यूज लेते हैं, सपोज अपन बेड बनवाते हैं, वैसे ही आप सेम बेड आप रिसाइकल प्लास्टिक से भी बना सकते हैं
0: जी।
1: तो ये हमारा मोटिव ये है कि हम पब्लिक के एक एक अवेयरनेस आए कि हाँ लकड़ी की जगह भी कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो लॉन्ग लाइफ रहेगा, टर्माइट प्रूफ रहेगा, जिसको आप और अच्छे से यूज दे सकते हैं एज कम्पेयर टू वुड, और कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा
0: जी। तो क्या आप रिसाइकल प्लास्टिक से बेड बना पा रहे हैं?
1: बिल्कुल सर, हम बेड भी बनाते हैं, अलमीरा भी बनाते हैं, रैक्स भी बनाते हैं, लाइब्रेरी शेल्फ बनाते हैं, आउटडोर फर्नीचर बनाते हैं, जैसे टेबल चेयर सेट हो गया फार्म हाउस के हिसाब से, और इंडोर फर्नीचर भी बनाते हैं। काफी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम वो चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं।
0: क्या बात है। अगर हमारे श्रोता अभी जानना चाहें तो क्या है मिनिमम कॉस्ट आपके बेड की?
1: बेड की सर एक आप एक अपन सिंगल पर्सन के हिसाब से साइज लेके चले तो आपको अप्रोक्स वो 7,000 to 10,000 का आपको पड़ता है।
0: बहुत बढ़िया। और उसकी लाइफ भी लॉन्ग लाइफ होगी?
1: लाइफ भी सर लॉन्ग लाइफ रहती है सर, बिकॉज टर्माइट प्रूफ रहता है प्लास्टिक है, उसमें टर्माइट की कोई इशू रहेगा नहीं।

0: वाटर प्रूफ रहता है, जैसे अपनी लकड़ी फूलती है तो ये फूलता नहीं है, प्लास्टिक है वो, पानी का कोई इफेक्ट है नहीं। और इसके अलावा फायर रिटार्डेंट भी है। और एक और इस चीज का ये फायदा ये है कि अगर आप इसको कहीं बाहर रख भी, सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट आपने अपने घर के बाहर लगा रखा है, सपोज ट्री गार्ड ही लगा रखा है, तो हमारे इंडिया में क्या चोरी चकारी काफी ज्यादा होती है, आपको पता ही होगा। तो हमारे ये प्रोडक्ट का एक ये फायदा है कि ये एंटी थेफ्ट बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसको क्या कबाड़ी वाला नहीं खरीदेगा
1: जी।
0: कोई अगर चोरी करके इसको कबाड़ी वाले को बेचना भी चाहे तो वो कर नहीं सकता, वो ज्यादा ज्यादा अपने घर में ले जाके उसको इस्तेमाल ले सकता है
1: जी। बिल्कुल, तो एक इंटरेस्टिंग बातचीत के मोड पर हम अब आ गए हैं, लेकिन श्रोताओं आप फिर से बता दू जो हमसे लेट से जुड़े हैं वे जान लें, हमारे साथ हैं मिस्टर यश। यश यंग एंटरप्रेन्योर है, एक स्टार्टअप है सिल्वर ट्री, माइंड सोल सब कुछ है, और मैं कहूंगा कि वो ही उसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इनके इस स्टार्टअप को देखते हुए, इनके इस प्रयास को देखते हुए और ये युवा चेतना को देखते हुए राजस्थान सरकार ने आपको 2024 में यूथ आइकन अवार्ड से भी नवाजा। तो श्रोताओं आप अपना सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन और आपका फेवरेट प्रोग्राम 107.8 FM पे, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। और आप इंटरनेशनली अगर आप हमें सुन रहे हैं माउंट आबू की वादियों से तो आप हमें सुन सकते हैं 107.8 FM पे, और आप यदि सुन रहे हैं हमें देश के बाहर से तो आप हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन से हमें सुन सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो यश मुझे बताइए कि ये जो पूरा आपने बोला कि दो, आपने एक लंबे समय से आपने ये शुरू किया, प्रोडक्शन शुरू कर दिया, 2-3 साल लगभग आपको होने जा रहे हैं इस प्रोग्राम के, इस प्रोजेक्ट के साथ में, इस कंपनी के साथ में, क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं आपके इस पूरे प्रोसेस में? आपको क्या लगता है कि एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस फ्रेंडली है भारत का?
0: सर चैलेंजेस तो देखो काफी है जो शायद मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर भी ना पाए, क्योंकि वो कई चैलेंजेस अनएक्सप्लेनेबल होते हैं। तो जैसे एक सर सपोज अभी जैसे नया नया प्रोडक्ट है, अगर मैं आपको कस्टमर फेथ काफी कम होता है मतलब नए प्रोडक्ट पे कस्टमर्स का, सपोज मैं आपको एक बेंच बेचना हूँ तो आपको लगेगा कि ये तो रिसाइकल प्लास्टिक है कि ये चलेगा कैसे, नया नया प्रोडक्ट है अभी मार्केट में, चले ना चले, अपन तो लोहे की बेंच लेके ही अपना काम चला देंगे। तो एक तो सर वो कस्टमर का एक विश्वास जीतना कि नहीं हाँ ये प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, आप इसको ले सकते हैं, मतलब वर्थ इट प्रोडक्ट है, ये काफी मुश्किल है आज के टाइम पे
1: जी।
0: और सर इसके अलावा जैसे हम गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अंदर भी करते हैं, गवर्नमेंट पार्क्स भी डेवलप करते हैं, तो उसके अंदर भी सर मेन ये इशू रहता है कि गवर्नमेंट हालांकि प्रमोट तो कर रही है कि रिसाइकल प्लास्टिक को प्रमोट कर रही है, उससे बने हुए प्रोडक्ट काफी प्रमोट कर रही है, पर कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक ये भी है कि कोई भी नए प्रोडक्ट के अंदर इतना रिस्क उठाना नहीं चाहता
1: जी।
0: मेन सर यही है, मार्केटिंग काफी ज्यादा होती है और कंपटीशन, हालांकि मेरे प्रोडक्ट में अभी तो काफी ना के बराबर है, अगर हाँ कंपटीशन बढ़ता तो शायद मार्केटिंग भी अपने आप ही हो जाएगी
1: जी। जी
0: जी सर इशू, और सर इशूज तो और भी होते हैं, जैसे आपके कॉम्पिटिटर, अब आप लकड़ी हमारे यहाँ इंडिया में क्या सस्ती काफी अवेलेबल हो जाती है पर वो ब्रांडेड नहीं होती है, तो अब अगर आप इसको लकड़ी से कई बार कंपैरिजन करेंगे तो लोकल प्लाईवुड का बोर्ड आपको सस्ता पड़ सकता है एज कम्पेयर टू हमारे रिसाइकल प्लास्टिक का बोर्ड, पर उसकी लाइफ ड्यूरेबल हो या ना हो ये इसका कुछ गारंटी नहीं देती, मतलब हमारे इंडिया के कस्टमर को सस्ता और अच्छा चाहिए पर वो सस्ते के चक्कर में अच्छा भूल जाते हैं।
1: अनीश तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं ना, यस ने कितनी अच्छी बात बोली है।
0: ये सर अब हमारी सबकी मेंटालिटी है, हालांकि मेरी भी कहीं ना कहीं है, मैं कोई सपोज कपड़े ही लेने जाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि सस्ते से सस्ता मिले, पर हाँ ये क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से
1: जी। नहीं निश्चित रूप से आपने एक मिसाल कायम की है, एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट आप लेकर आए हैं और आपको एक समय के बाद निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलना तय है, और डेफिनेटली जो हमारे फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार करने में हमें कुछ समय लग रहा है लेकिन निश्चित रूप से जीत हमारी ही होगी। और
0: सर अभी अभी हम हमारे इंडिया में सर हालांकि काफी हम मतलब इस चीज में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के अंदर काफी आगे बढ़ चुके हैं, पहले कंपैरिजन करें आज से 3-4 साल पहले, पर अभी भी सर काफी वो एक लोगों की मेंटालिटी चेंज करना और गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्ट मिलने में काफी अभी और हमको काफी अच्छा करने की जरूरत है जैसा अभी तक मुझे फील हुआ है. मतलब पॉलिसीज तो क्या बन जाती है, पर पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन होना काफी ज्यादा टफ हो जाता है क्योंकि हो नहीं पाती है बेसिकली. कई बार ऐसा मेरे को फील हुआ है, मतलब ये मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ जो अभी तक मेरे को एक्सपीरियंस किया मैंने.
1: जी निश्चित रूप से कुछ चैलेंजेस हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, ब्यूरोक्रेसी के साथ भी.
0: बिल्कुल सर,
1: लेकिन हम तो जुनूनी है ना, हम तो जुनून के साथ निकल पड़े हैं और देखते हैं कि बाजुए कातिल में कितना दम है. तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. समय के साथ हम उसको, हम लोग जुनूनी जो है निश्चित रूप से उसमें बदलाव भी करते हैं, मिलके काम करेंगे.
0: बिल्कुल सर.
1: तो श्रोताओं, इस कहानी में एक नया मूड हम ये भी लेना चाहते हैं कि ये जो प्रयास कर रहे हैं हमारे साथी, इन्होंने बताया कि इनके इनके प्रयासों में ये एक चैलेंजेस इन्होंने देखा है कि इनको एनवायरनमेंट. लेकिन मेरे, मैं फिर से वहीं पर आना चाहूँगा यश, कि ये जो कीड़ा है कि मुझे पर्यावरण के लिए कुछ करना है. तुम्हारे जैसे युवा तो बस घूम रहे हैं इधर उधर, गाड़ियों में तेल जला रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लंबे लंबे वीकेंड छुट्टियों पे जा रहे हैं. तुमने ये क्या पाल लिया है ये समस्या, ये क्या है, ये कहां से?
0: जी मेरा मोटिव ऐसा है सर कि ऑनेस्टली कि हाँ एनवायरनमेंट को लेके कंसर्न हूँ मैं, पर ये भी है कि मेरे को मेरी कंपनी और खुद की एक ब्रांड वैल्यू भी बनानी है. मतलब बेसिकली अपन शॉर्ट फॉर्म में कहें तो पैसा भी कमाना है. पैसा भी कमाना है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है, कि कुछ अच्छा काम करके निकले सर, बस बेसिकली यही है बात. और
1: नहीं, लेकिन तुम पैसा कमाने के लिए तुमने इनोवेटिव, क्रिएटिव और एक एथिकल आइडिया चुना है.
0: जी सर, जिस आइडिया ऐसा चुना है कि सर जिसमें एनवायरनमेंट को लेके जो हमारा कंसर्न है वो भी पूरा होए, और एक हमारा जो पर्सनल कंसर्न है कि पैसा कमाना है तो वो भी पूरा हो.
1: तो ये एनवायरनमेंट का कंसर्न तुमको था पहले से, या तुमने देखा कि लोगों में कंसर्न है इसलिए मुझे ये बिजनेस शुरू करना चाहिए?
0: सर अब एंटरप्रेन्योर हूं तो हम तो एक नया आइडिया ही खोजते हैं कि कुछ एक नया मार्केट में जो चीज नहीं है वो लेकर आए, कि एक खुद का ब्रांड वैल्यू बन जाए जिसकी वजह से. तो मेरी थिंकिंग थोड़ा वो बिजनेस माइंड को लेकर भी है कि अच्छे काम के साथ साथ खुद की भी ग्रोथ हो रही है तो उसमें बुरा क्या है, और आप अपने साथ साथ 10 लोगों को और आगे बढ़ा रहे हो तो मुझे नहीं लगता था उसमें कुछ गलत कर रहा हूँ मैं.
1: तो मतलब तुम एनवायरमेंट के लिए पहले कंसर्न नहीं थे, अब ज्यादा हो गए जब से तुमने
0: एनवायरमेंट के लिए? हाँ सर, हाँ ये आप कह सकते हो. पहले बेसिकली मोटिव यही था कि यहाँ से खुद का डेवलपमेंट, क्योंकि सर हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में या एनवायरमेंट के बारे में कम सोचते हैं. फिर मुझे लगा कि हाँ ये जो रिसाइकल प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट है ये हमारे यहाँ अभी है नहीं इतना, ना कोई कर रहा है, तो मैं इसके अंदर काम कर सकता हूँ. मेरे को कहीं ना कहीं पहले ये लगता था कि आसानी रहेगी कि हाँ कोई और कॉम्पिटिशन नहीं है तो सिर्फ एक होल एंड सोल प्लेयर हम ही होंगे मार्केट में तो हम मोनोपोली चला पाएंगे, पर ऐसा नहीं है सर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक नया प्रोडक्ट है तो नए प्रोडक्ट के ऊपर एक कस्टमर का विश्वास लेना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है सर. और नए प्रोडक्ट को आपको मार्केटिंग करना कि आपको लोग नाम से जाने, जैसे अपन ग्रीन प्लाय का नाम आपने सुना होगा, ग्रीन प्लाय का प्लाईवुड की बोर्ड की कंपनी है
1: ये.
0: तो उन्होंने अपना वो उनका भी जैसे काफी टाइम स्ट्रगल रहा होगा कि उन्होंने एक कस्टमर का फेस लिया, उन्होंने इतनी मार्केटिंग करी कि अब जाके पब्लिक उनको जानने लगी. तो मेरा भी एक वही मोटिव है कि हाँ कभी इन फ्यूचर 5 से 5 साल बाद रिसाइकल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के बारे में लेके कभी कोई बात आए राजस्थान के अंदर तो उसके अंदर मेरा और नाम और मेरी कंपनी का नाम लोग जाने.
1: सरकार से क्या सहयोग मिला आपको इस पूरे आपकी मुहिम को लेकर, कितना आप उनसे सहयोग ले पाए?
0: सर ऑनेस्टली अभी मैं सरकार से, मैंने इससे रिलेटेड कोई सहयोग लिया नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूँ खुद से ही कर रहा हूँ. हाँ हालांकि मैं सरकार को मेरे प्रोडक्ट सप्लाई जरूर करता हूँ फॉर डेवलपमेंट्स ऑफ पार्क या अदर पब्लिक प्रीमाइसेस जहाँ पे नगर निगम या नगर पालिका नगर परिषद डेवलपमेंट करती है, तो मैं उनको मेरे प्रोडक्ट सप्लाई जरूर करता हूँ.
1: आपकी क्लाइंट लिस्ट में कौन कौन से डिपार्टमेंट जुड़ गए हैं अभी?
0: सर क्लाइंट लिस्ट में हमारे नगर पालिका भी हैं, नगर परिषद भी है, नगर निगम भी हैं, बिल्डर्स भी हैं, और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जैसे कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, और स्कूल्स भी हैं कई. तो धीरे धीरे सर ग्रो करते हैं
1: जी.
0: वो सर वो कहते हैं ना कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, तो बस यही सोच के चल रहे हैं।
1: जी जी बिल्कुल, ये तो प्रभु श्री राम की बात है और आपने वही बात आज हमारे बीच में रख दी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी फैमिली भी आपको काफी सपोर्ट करती रही है और आप एक यंग माइंड है, तो आपके क्या प्लानिंग है और क्या योजना है आपकी, क्या योजना है आपकी इस प्रोजेक्ट को लेकर
0: आने वाले टाइम पे? सर यही है कि मेरा मेन फोकस अभी तो ये है कि जैसे हम हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो डेवलपमेंट होते हैं उसमें हम मेटल प्रोडक्ट यूज लेते हैं, जैसे मेटल बेंच हो गई या मेटल ट्री गार्ड हो गए, तो वो उनका वो मेन ये देखा आती है साल भर के अंदर अंदर तो चोरी चकारी हो जाते हैं या वो लोहा है तो जंग खा के वो खत्म हो जाता है। तो मेरा मेन फोकस यही है कि हम एक पब्लिक के अंदर भी अवेयरनेस फैला सकते हैं उसको गवर्नमेंट के थ्रू ही, कि आप सपोज कोई पार्क डेवलप कर रहे हैं तो आप इको फ्रेंडली पार्क डेवलप करो, उसके अंदर आप बेंच भी रिसाइकल प्लास्टिक लगाइए, आप डस्टबिन भी उसमें रिसाइकल प्लास्टिक के लगाइए, इवन फ्लावर पॉट्स हो गए आप वो इससे लगाइए, तो वो अपने आप जब पब्लिक देखेगी तो हाँ उनको लगेगा कि अगर सरकार ही पब्लिक प्रिमाइसेस डेवलपमेंट के अंदर ये प्रोडक्ट यूज ले रही है तो हम खुद के घर के अंदर भी यूज ले सकते हैं।
1: जी
0: तो एक मेन मोटिव यही है कि एक रिप्लेस कर रहे हैं हम लोहे के प्रोडक्ट्स को हमारे रिसाइकल प्लास्टिक से, और जो अपना वुड जिसमें अपन प्लाईवुड यूज लेते हैं, हालांकि प्लाईवुड यूज आना तो कभी बंद नहीं होगा, पर कुछ हद तक हम ये कर सकते हैं कि रिसाइकल प्लास्टिक के बोर्ड्स भी जो हम बनाते हैं वो आप यूज ले लें एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ प्लाईवुड बोर्ड।
1: जी बहुत ही बढ़िया शुरुआत, बहुत ही बढ़िया आइडिया और बहुत ही शानदार आपकी शुरुआत। श्रोताओं, जुनून में हमारे साथ हैं आज यश गर्ग और आप जयपुर से हैं और आपने अपनी कंपनी बनाई है सिल्वर ट्री, और सिल्वर ट्री इन दोनों रिसाइकल प्लास्टिक के साथ में बहुत सारे हमारे होम प्रोडक्ट बना रही है जो कि हमारे घर में काम आती है, जिनको हम चाहे फर्नीचर से रिलेटेड हो चाहे वो हमारे कुछ यूटिलिटीज के और डे टू डे यूटिलिटीज के आइटम्स हो। तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि यश को कि और भी नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लाइन में कुछ और प्रोडक्ट्स भी ऐड करें जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आते हैं, और मैं चाहता हूँ कि रिसाइकल प्लास्टिक से अगर भविष्य में सड़कें भी बन सके या निर्माण भी हो सके तो वो भी करने की गुंजाइश होनी चाहिए।
0: बिल्कुल सर।
1: तो इसी बात पर आपके साथ हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने इस पूरे वेंचर को लेकर जो शुरुआत आपने की, इस वेंचर के लिए आपने आगे क्या सोचा है, मतलब इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगे या क्या कमी आपको भी महसूस हो रही है?
0: सर अभी एट प्रेजेंट तो मेरे को लगता है कि थोड़े प्रोडक्ट रेंज या ये भी लगता है कि हम और क्वालिटी के अंदर थोड़ा और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। अब जैसा कि नया नया प्रोडक्ट है तो थोड़े कस्टमर से रिव्यूज आते हैं या हम भी खुद नोटिस करते हैं कि यहाँ ये इशू आ रहा है सर, क्या ऐसा कुछ हो रहा है। तो अभी तो सर जैसे 3 साल भी मेरे को कंप्लीट नहीं हुए तो एज सच मैं मेरी आगे की कुछ कह नहीं पाऊंगा, पर हाँ ये है सर कि अब आए हैं तो कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे, ये तो सोचा हुआ है, इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, निकल पड़े हैं बंदे तो कुछ कर गुजरेंगे। तो श्रोताओं यश से हम विदाई लें, लेकिन उससे पहले एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि आप जो केमिकल यूज कर रहे हैं अपने इस प्रोसेस में रिसाइकल प्लास्टिक को लेकर, वो केमिकल्स क्या एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं या वो भी वातावरण को
0: उनमें? जी सर बिल्कुल बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, वो एक बस एक एज अ एजेंट काम करते हैं वो प्लास्टिक जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में, और वैसे आप देखोगे तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हमारे एनवायरमेंट को लेके, और ये सारे प्रोडक्ट्स वापस रिसाइकलेबल भी होते हैं।
1: जी
0: अगर सपोज आप 3 साल बाद टूट जाती है तो आप उसको वापस रिसाइकिल कर सकते हो।
1: बढ़िया
0: सर। हाँ अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि यार चोरी चकारी नहीं होता ये आइटम, तो मेरे को लगता है आने वाले टाइम पे इसको कबाड़ी वाला भी खरीदने लग जाएगा तो मैं ये मानूंगा कि अब मैं सक्सेसफुल हूँ।
1: जी
0: तो होने लग गई तो सर ये सोच लेंगे कि आप कुछ हमने एस्टैब्लिश कर लिया है।
1: जी तो श्रोताओं आपने सुना यश गर्ग को और सुन रहे थे आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून। जुनून में अब हम यश से विदा लेना चाहेंगे, यश, आपको कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद, और भविष्य में हम ऐसे ही आपसे बात करते रहेंगे, आपसे फिर एक रिव्यू लेंगे उस समय बाद कि क्या अनुभव रहा और क्या मंजिल कितना दूर है। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, योर होस्ट शरद त्रिपाठी, साइनिंग ऑफ टुडे। थैंक यू, ओम शांति।

0: नमस्कार सभी सुनने वालों को, मैं आपका होस्ट और हमारे फेवरेट शो जुनून का दोस्त। और आप सभी तो हमें जो सुनते रहते हैं, मेरी आवाज तो कुछ लोग पहचानते भी होंगे, हमारे श्रोताओं को तो मालूम ही है। मैं आपके लिए लेकर आता हूँ आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून और आपका दोस्त शरद। तो हमारे साथ आज है एक नई आवाज रेडियो मधुबन के इस प्यारे से प्रोग्राम में, और जुनूनी है मुकेश। मुकेश एक एथलीट है और मैराथन एथलीट है, मैराथन करते रहते हैं और बहुत सारे देश के अलग अलग इलाकों में इन्होंने अपने साहस और अपने स्टैमिना का झंडा बुलंद किया है। आपका प्रोग्राम में स्वागत है मिस्टर मुकेश
1: जी। नमस्ते सर।
0: तो आप आते हैं राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर से, और आपका जो सूरज है वो मैराथन के क्षेत्र में ऊंचा करता जा रहा है, तो इसलिए हम चाहते थे कि आपसे बात की जाए और जुनून में आपके साथ जाना जाए कि आपका प्रकाश कहाँ तक पहुंचाए। वेलकम मुकेश, बताइए मुकेश अपने बारे में, अपनी इस एथलेटिक्स की यात्रा के बारे में, और आप कौन सा इवेंट खेलते हैं?
1: मैं अभी तो ट्रैक में 10 किलोमीटर इवेंट करता हूँ और हाफ मैराथन फुल मैराथन भी खेल रखी है
0: जी।
1: हाँ जी सर,
0: 10 किलोमीटर इवेंट जो है वो एक ओलंपिक इवेंट है, राइट?
1: हाँ जी, 10 किलोमीटर और मैराथन भी ओलंपिक इवेंट है
0: जी। जी, तो दो इवेंट्स में आप तैयारी कर रहे हैं। आपकी उम्र कितनी हुई मुकेश अभी?
1: 24।
0: आपको कभी साई जाने का अवसर मिला? SAI की ट्रेनिंग में गए हैं आप?
1: नहीं नहीं सर, नहीं गए। एक्चुअली वो क्या सर, हमारे को मतलब बिल्कुल ग्रामीण एरिया से आते हैं हम, हमारे को पता ही नहीं था। और हमने 12th करके जब जोधपुर में आए तो थोड़ा बहुत ऐसे पता चला गेम होता है, जो उस 12th करने के बाद नहीं पता चला गेम के बारे में। मैं 2020 से ही स्टार्ट किया गेम, जब मैं ऑलरेडी 3 ईयर हो चुका था। ज्यादातर साइंस में मतलब जूनियर लड़कों को अवसर मिलता है
0: जी,
1: मैंने गेम शुरू ही 3 ईयर से किया
0: जी। हाँ, साई के ट्रायल के लिए आपको 12वीं कक्षा के बाद आप जा सकते हैं, या फिर आप 11वीं कक्षा में भी वहाँ जा सकते हैं। Am I correct, मुकेश जी?
1: हाँ हाँ
0: जी। तो आपका कहना है कि आपकी ट्रेन छूट गई, तो फिर तो इस ट्रेन में आप चढ़े कैसे, भाग कर या आपने ये रिस्क कैसे ली, बताइए आपने भागती हुई ट्रेन कैसे पकड़ी और कब पकड़ी?
1: मैं तो सर ऐसे स्टार्टिंग से ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ जोधपुर में आया था मतलब जैसे आर्मी की तैयारी करने के लिए, ठीक है। जो आर्मी की तैयारी करने वाले लड़के थे, यहाँ कोच थे एक दिनेश परियार नाम का कोच था, उन्होंने मतलब एंट्री में वर्कआउट करता, तो उन्होंने देखा भाई ये बच्चा मतलब बहुत तगड़ा दौड़ रहा कर रहा है, क्यों नहीं इसको बताए, ऐसे ऐसे गेम भी होता है, ये सब कुछ होता है। तो उन्होंने एक बार ट्रायल दिया तो मैं फर्स्ट हो गया उन सब में। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तुम लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ऐसे ऐसे गेम होता है, यूनिवर्सिटी से होता है, ओपन से होता है, उनमें जॉब भी मिलती है, हर कुछ सब कुछ होता है। तो उस टाइम से मैंने ऐसे स्टार्ट कर लिया। फिर स्टार्ट किया तो मैं मतलब कम से महीनों में ही नेशनल खेल लिया मैंने, 6 महीने के अंदर नेशनल खेल लिया बस
0: जी।
1: फिर ऐसे खेलने जाता तो अपने आप में खुद में अलग से जुनून और देखने को मिलता था, वो ये तो ऐसे होता है गेम है, बहुत अच्छा खुद से शौक होने लग गया, मतलब ये शौक हो गया रनिंग का ही बस
0: जी। तो आपका मानना है कि आपने देर से अपनी ट्रेन पकड़ी, लेकिन आप सही रास्ते पर हैं ऐसा मुझे लगता है, आपका सफर सही चल रहा है और आप अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट है। तो मैं इसको लेकर आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए, मैराथन और लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स जितने भी हैं, ये स्टैमिना का गेम है ना, कि आप कितने लंबा चल सकते हैं, कितना लंबा दौड़ सकते हैं, तो इसमें स्पीड मैटर नहीं करती, इसमें स्टैमिना मैटर करता है। तो ये स्टैमिना लाते कहाँ से हैं, कैसे तैयार किया आपने अपना स्टैमिना, क्या आपका शेड्यूल होता है?
1: सर शेड्यूल तो सर मेरी तो पूरी अलग ही कहानी है सर। हम तो विवाह शादी मैं कुछ में घर भी नहीं जाता हूँ, मैं तो अभी दीपावली को भी घर नहीं गया, क्योंकि हमारे को मतलब इतना अधिक ऐसे लग रहा है कि घर जाने के लिए हमारे पास टाइम मिलेगा, हमारे को वो भी हमारे लिए टाइम आएगा, अभी हमारी उम्र है, ये एज है, और ये दीपावली तो बहुत सारी दीपावली आगे हमारे को मनाने के लिए मिल जाएगी, लेकिन जो अभी ये टाइम है ये टाइम वापस कभी नहीं आएगा। एज निकलने के बाद में पिस्तावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा हमारे को देखने के लिए। मेरा खुद का ही डिस्कशन है कि अब जितना हो सके इस उम्र में हम मेहनत करें
0: जी। बड़ी प्रेरणादायी बात आपने कही मुकेश, अगर भविष्य की दिवालियां मनानी है तो आज की दिवाली को हमें त्यागना होगा।
1: जी सर,
0: निश्चित रूप से आप दिवाली पे घर नहीं गए लेकिन आपने उस समय का सदुपयोग किया, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप कैसे, आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आपके कोच कौन हुए और आपकी ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या है?
1: कोच तो सर अभी जब शुरू से स्टार्ट किया था तो वो जैसे जैसे कोच चेंज होते गए, सबका सब कोच हो गया, ऐसा सपोर्ट रहा मेरे को, क्योंकि मैं जिस कोच साहब के पास गया ना वो खुद कोच ही से मेरे से संतुष्ट है और मैं कोच से संतुष्ट हूँ, क्योंकि वो जो भी वर्कआउट बताते थे मैं तुरंत कर लेता हूँ, उनसे एक्स्ट्रा ही करता था, ऐसे कभी नहीं बोलता कोच साहब मेरे से होगा नहीं, वो बताते ऐसे ही बोलते थे कर लूंगा, वर्कआउट के बाद में भी कई बार बोलते थे कि अभी ये और वर्कआउट करना, मैं कोच साहब कर लूंगा, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं कर लूंगा, ऐसे कभी मना किया ही नहीं, मैंने कभी मना नहीं किया मेरे से नहीं होगा।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.9 FM और हमारे साथ हैं एथलीट मुकेश, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वो देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें। तो आज हम उनसे कर रहे हैं बातचीत उनके सफर के बारे में और उनके जीवन के बारे में और उनकी तैयारियों के बारे में और भविष्य के सपनों और आकांक्षाओं के बारे में। तो श्रोताओं, मजा आ रहा है ना उनसे बात करने में, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मेरे साथ है मुकेश। तो मुकेश, निश्चित रूप से आपने एक बात की, सफर की बात की और आपने बताया कि आप एक कठिन प्रशिक्षण के से गुजर रहे हैं। वो कठिन प्रशिक्षण होता क्या है, मतलब मैं सुबह 5 बजे से लेकर आपकी पूरे दिन की यात्रा समझना चाहता हूँ, आप कैसे अपनी तैयारी करते हैं?
1: अभी तो ठीक है सर, जब शुरुआती का दिन थे ना तभी मेरे को कम से कम 3 बजे उठना था, क्योंकि मैं जब घर से निकला था ना तो हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि हम जो एथलीट होते हैं, जो खिलाड़ी है, लगभग मैं समझता हूँ कि मेरी कंडीशन कही है, शुरुआती में ऐसे ही होते हैं, ऐसे कोई नहीं जो पूरे कमाने वाले या फिर पूरे VIP घर से होकर के कोई गेम नहीं करेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा कष्टदायक एक जीवन यापन है, ऐसा कुछ नहीं है कि भी जो शौक से कर रहा है तो वो आगे के नहीं बढ़ पाएगा, बस वो ये डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि जब शुरुआती पल थे तो मैं तो किसी पड़ोसी से 1000 रुपये लेकर के शहर में आया बस, और वहाँ पे एक शॉप पे 8000 रुपये में पर महीने काम करता था,

0: दो तीन बजे उठ के बना के, उसके बाद में सुबह 4 बजे 5 बजे ग्राउंड पहुंच के जो भी वर्कआउट होता वो करके, उसके बाद में सीधा मैं वापस रूम नहीं जा सकता था क्योंकि सीधा उसी शॉप पे जाना था, क्योंकि मेरे को वहां पे रह करके काम करना था, काम करने के बाद में शाम को और ग्राउंड जाता था।
1: जी, ये तो बड़े परिश्रम की कहानी है आपकी और बड़ी प्रेरणादायी कहानी है। मुकेश, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह की शॉप पर काम कर रहे थे और आपने वहां से क्या सीखा?
0: जी सर, वो एक फायरवर्क्स की शॉप थी, वहां पर ही काम करता, तो वहां से भी उन्होंने मतलब उनसे भी मेरा इतना लगाव होगा, मेरा क्यों व्यवहार मेरे से मतलब लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार रहा है आज तक, और उनसे इतना लगाव हो गया वो मतलब सेठ से मैं चाहता था कि ये शॉप से अब मैं छुटकारा पा करके मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ सर, तो वो मना कर रहे हैं कि नहीं जा मुकेश, मत जा, तेरे को जो सही है वो हम दे देंगे, लेकिन ये छोड़ के मत जाओ।

0: मैंने बोला मेरे को जाना पड़ेगा कि मेरी लाइन अलग है, ये अलग है, क्योंकि अब मैराथन खेल के कैसे भी पैसे का मैनेज करके और मेरे को आगे बढ़ने और ऊंचे लेवल पे जाने के लिए ये जगह छोड़नी पड़ेगी। और उस टाइम में दिल्ली गया था प्रैक्टिस के लिए।
1: जी, तो आप भविष्य के सफर के बारे में बात हो, श्रोताओं मैं आपको बता दूं कि आप हैं श्री मुकेश, जो कि जोधपुर से आते हैं और देश के प्रतिष्ठित मैराथन दादी प्रकाश मणि मैराथन के आप उप विजेता रहे हैं। और इस मैराथन में पिछले दिनों मुकेश ने 2025 की मैराथन में अपने साहस और अपने स्टैमिना का झंडा बुलंद किया। तो मुकेश, कैसा अनुभव रहा आपका दादी प्रकाश मणि मैराथन में पार्टिसिपेट करने के बाद?
0: वो तो सर उस टाइम क्या थोड़ा ऑब्सेशन था और मैं थोड़ा प्योर में था, और जो हमारे इलाइट ग्रुप की कोऑर्डिनेट है सुनीता पोदारा मैम, उनका खुद का कॉल आया था कि मुकेश तुम्हारे राजस्थान में मैराथन हो रही है, तुम भाग नहीं ले रहे हो। तो मैम ने बोला था कि ये मैराथन खेलनी जरूरी होगी मुकेश तुम्हारे को। मैंने बोला मैं फिट नहीं हूँ, मैं अभी बुखार में चल रहा हूँ, तो मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं आ रही हूँ, तुम भी आ जाना, जितना हो सके उतना भाग लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा ठीक है, ऐसे ही मैं तो भागा, फिर फिनिश कर ली उसी हिसाब से सेट करके हुआ, तो मैं उपविजेता रह गया, वह भी बहुत अच्छी बात है।
1: आपने बताया कि आप एलीट ग्रुप के सदस्य हैं, ये एलीट ग्रुप क्या है और आप इससे कैसे जुड़े हुए हैं?
0: ये एलीट ग्रुप ये होता है कि सर ये इंडिया के टॉप 10 एथलीट होते हैं, जो इंडिया के टॉप टॉप एथलीट होते हैं उनको ये फैसिलिटी मिली जाती है एलीट ग्रुप की, हर किसी को नहीं दी जाती है सर।
1: तो इसमें क्या सुविधाएं आपको दी जाती हैं?
0: सुविधाएं ये होती है सर, जो मैराथन होती है उसमें अपने अभी आजकल ये एंट्री फीस लगती है उससे, वो हमारी मैडम के थ्रू ही होती है एंट्री और रहने का और व्यवस्था सारी मैडम करती है अपना, अभी सुविधा देती खुद से।
1: जी
0: सर,
1: बहुत बढ़िया। तो भविष्य में आपकी क्या सपना है, आपकी क्या योजनाएं हैं, आप क्या करना चाहते हैं?
0: सर देखो धीरे धीरे कर रहे हैं भविष्य के लिए, तो अब देखो हम तो जो एकदम से आप होकर के जाना वो तो है नहीं, अब धीरे धीरे नेशनल मेडल आया, आगे धीरे धीरे एशियन गेम तक पहुंचेंगे, जितना हो सके समय देंगे, अभी तो 24 साल एज हुई है, 35 साल तक खेलेंगे, 35 साल का टारगेट है हमारा, 10 साल और करेंगे तो लगभग ओलंपिक तक पहुंचने का हमारा टारगेट है, वहां तक पहुंचेंगे तो अपना देश का नाम रोशन करेंगे सर।
1: आपका बेस्ट टाइम क्या निकाल रहे हैं आप 10 किलोमीटर इवेंट?
0: 10 किलोमीटर सर 29 मिनट 41 सेकंड
1: जी।
0: आप मैराथन का 1 घंटा 3 मिनट 27 सेकंड सर
1: जी।
0: 2025 का फास्ट रनर हुआ सर।
1: तो आप अंतरराष्ट्रीय बेस्ट से कितना पीछे हैं अभी?
0: सर ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस जो परफॉर्मेंस है अप डाउन होती रहती है इधर उधर, बस पास में ही है, ऐसे ही है, मतलब बिल्कुल निशाने के पास पास घूम रहे हैं।
1: मैं जानना चाहता था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो ओलंपिक का गोल्ड मेडल है उनका क्या टाइमिंग है और आप उससे कितना पीछे हैं?
0: सर उनका तो 27 मिनट के आसपास है, 27 से 20 यही चलता रहता है, और अभी मेरा 29 मिनट आ रहा है, तो मतलब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि होगा नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, इसको टाइम देना पड़ेगा और अच्छे लेवल पे जाके प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, हर कोई सुविधा है आस पास से जो भी बातचीत करके करेंगे प्लानिंग कोई अच्छी आगे से करेंगे।
1: ये जो ओलंपिक के बेस्ट मेडलिस्ट होंगे ये मुझे लगता है अफ्रीकन होंगे, राइट?
0: जी सर।
1: तो अफ्रीकन देशों की तो तैयारी है, क्या थोड़ा बेटर है उनकी तैयारियां या हम कहां पीछे हैं?
0: नहीं उनका सर स्टार्टिंग से ही लेवल अलग है उनका, उनका रहन सहन अलग है और उनकी मतलब अलग ही लेंथ वगैरह सब कुछ अलग ही है, उनका सिस्टम अलग है पूरा, और अपना इंडिया का सिस्टम अलग है, उनका क्लाइमेट पूरा अलग है, अपना अलग है पूरा क्लाइमेट, तो उनमें ज्यादा ही स्पीड है, हमारे में कम स्पीड है, तो उसके लिए हमारे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इसीलिए सर मेन मेन इंडिया के एथलीट है वो बाहर जाके भी प्रैक्टिस करते हैं, क्लाइमेट का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सर।
1: नामीबिया के एथलीट?
0: हाँ जी सर, इंडिया के भी एथलीट वहाँ बाहर प्रैक्टिस, यूएसए में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
1: आपको भारत सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजना को लाभ मिला है अभी तक अपने संघर्ष को?
0: नहीं हमारे को सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं मिल रहा है सर, सरकार की तरफ
1: खेलो इंडिया प्रोग्राम में क्या चल रहा है, क्या कमियां हैं?
0: खेलो इंडिया तो सर वो तो यूथ गेम हो गया, 18 साल कम एज वालों का, उस चीज का तो मैं हिस्सा बन ही नहीं पाया जी सर।
1: टॉप स्कीम में आपने कभी आवेदन नहीं किया?
0: ये तो सर सरकारी चीजें हैं, इनमें सिर्फ कागजी काम होता है सर, धरातल पे कोई काम नहीं होता है, ये सिर्फ दिखावटी है और उसमें कुछ नहीं है, सरकारी सब जो भी लगे हुए हैं वो सिर्फ अपने पैसों के लिए कर रहे हैं, दिखावटी कर रहे हैं, सिर्फ कागज कागज पे ही काम होता है और धरातल पे 0% काम होता है।
1: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में आपने कभी आवेदन नहीं किया?
0: नहीं सर।
1: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के बारे में आप जानते हैं?
0: नहीं नहीं सर।
1: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से भारत सरकार कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक मेडल के लिए तैयार करती है और उसके लिए उनके मापदंड है क्वालिफिकेशन और सभी चीजों के लिए। तो मैं श्रोताओं को बता दूं कि जो भी हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनके मापदंडों पर अगर यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको टॉप स्कीम में के अंतर्गत चयनित होने का मौका मिलता है और टॉप स्कीम में भारत सरकार की ओर से हर तरह की सुविधाएं और इस साथ साथ आपको एक अच्छा सुंदर सा मानदेय भी महीने का दिया जाता है जिससे कि आर्थिक रूप से संबल प्राप्त हो सके खिलाड़ी को और एक अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। तो आप टॉप स्कीम के बारे में निश्चित रूप से मुकेश पता करिएगा और मैं चाहूंगा कि आप उसके लिए आवेदन भी करें और किसी प्रकार के सहयोग अगर हम कर पाएंगे तो हम आपको गाइड भी करेंगे। तो आपने अपनी यात्रा के बारे में बताया और मुझे अच्छा लगा। और बताइए आपकी क्या तैयारियां हैं, आप अपने टाइम को बढ़ाने के लिए कम करने के लिए क्या कर रहे हैं और कैसे इसको आगे बढ़ने जाएंगे?
0: अभी तो सर जो इंडिया के चीफ कोच है यूनिस खान सर उनका वर्कआउट कर रहा हूँ, उन्हीं से गाइड होके उनका ही वर्कआउट कर रहा हूँ और जो भी है खाना पीना जो भी हर चीज पूछ के उन्हीं से ही कर रहा हूँ तो बेहतर से बेहतर हो सके।
1: जी आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, अभी फैमिली क्या करती है और आपको कोई आर्थिक संबल मिल पाया है इन दिनों में?
0: सर आर्थिक स्थिति के बारे में बताए तो सर ऐसा स्थिति है कि एक तो होता है गरीब और हम आते हैं अति गरीब में, बिल्कुल कुछ नहीं है हमारे पास, ऐसी कंडीशन हो रखी है।
1: क्या करते हैं आपके माता पिता?
0: कोई गांव में सर जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट तो जैसलमेर लगता है ऐसे सर दोरों की धरती है, बिल्कुल ट्यूबवेल का पानी नहीं है हमारे, जो बरसात होती है तो थोड़ी बहुत खाने पीने का हो जाता है बस और कुछ नहीं है, वो भी साल में एक बार।
1: जी।
0: और फादर साहब का पहले आज से 3-4 साल पहले एक्सीडेंट हो गया तो दिमाग में लगी हुई है, इतना कुछ काम कुछ कर नहीं पाते, वैसे कोई कमाने वाला है नहीं घर में।
1: श्रोताओं जुनून में हम ऐसी ही कहानियों को लेकर आते हैं और हम जान लें कि हमें ऐसे ही जुनूनियों की आवश्यकता है कि जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है और माता पिता अभी संबल प्राप्त नहीं है, फिर भी एक जुनून है कुछ कर गुजरने का, कुछ देश के लिए कर गुजरने का और साथ में तिरंगे की आन बान शान को आगे बढ़ाने का। तो ऐसे ही हमारे युवा साथियों का हम इस्तकबाल करते हैं हमारे फेवरेट प्रोग्राम जुनून में। विषय गंभीर है और निश्चित रूप से भावुक कर देने वाली बातें हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अगर यदि आपके अंदर हौसला है तो आप हर मंजिल को पा सकते हैं और हमारे जैसे जुनूनी मुकेश की कहानी तो अलग ही है। मुकेश मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कौन कौन सी अभी तक इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और मैराथन को लेकर आप में ये जुनून कब आया?
0: इवेंट सर 10 किलोमीटर ट्रैक एंड फील्ड भी खेल रखा हूँ और क्रॉस कंट्री होती है 10 किलोमीटर की, उसमें भी नेशनल में पार्टिसिपेट भी कर चुका हूँ और पिछली बार हमारे राजस्थान टीम से मेडल भी आया था और हाफ मैराथन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल है 2024 में और अभी फिलहाल तो एक बार गवर्नमेंट जॉब हो जाए उसके बाद में सीधा मैराथन में आऊंगा क्योंकि फुल मैराथन में सीधा उसके लिए करूंगा ताकि कि मेरे भविष्य के लिए आगे ओलंपिक में क्वालिफाई हो एशियन गेम और ओलंपिक के लिए, क्योंकि मैं मेरा पूरा पूरा टाइम है जो भी आज से 5 साल हो गए मेरे को प्रैक्टिस करते हुए कि मेरा एक ही टारगेट है, मैं उसी टारगेट पे चल रहा हूँ, मैंने सब कुछ इधर उधर सब कुछ देखना जो भी करना सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ एक ही टारगेट है बस और कहीं जाना करना फोन पे बात तक नहीं होती है 7-7 दिन करवाने से, बहुत सीरियस होकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है एकदम से, ऐसा समझो कि एक कैदी जेल में बंद होकर के कैसे रहता है उसी स्थिति में एक एथलीट को रहना पड़ता है तब जाके सीरियसली गेम होता है। अब लाइट से मतलब थोड़ा बहुत भी इधर उधर भटक गए तो आप नहीं कर पाओगे।
1: जी आपने अपने देश के पूर्व एथलीट मिल्खा सिंह और श्री गोपाल सैनी के जीवन से क्या सीखा?
0: उनसे हर कंडीशन में मैं सीखना देखता था तो कि भी वो अपने आप में कितने मजबूत हैं, वो टूटते नहीं है, कितनी कंडीशन खराब हो जाओ लेकिन टूटते नहीं है, लास्ट तक मरते तक आप करते रहो सही, कितनी भी कंडीशन है वो इंसान तब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक करते रहना, बस मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, आगे जाके पिछता नहीं होना चाहिए कि मैंने किया क्यों नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि मैंने करा है, बस यही होना चाहिए।
1: और अब तो भारत के एथलीट्स ओलंपिक में ही बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप तो जानते ही हैं नीरज जी ने पिछले साल कमाल करके दिखाया है, तो

0: खेलते हैं तो क्या हमारी सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि हम खिलाड़ियों के लिए गेम करवा रहे हैं, उनके लिए खिलाड़ियों से ही पैसे लिए जा रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए 200 रुपये एंट्री फीस देनी पड़ रही है, स्टेट राजस्थान स्टेट खेलने के लिए 700 रुपये एंट्री फीस देनी पड़ रही है, और हम नेशनल में एंट्री करवाएंगे तो हमारे से 1200 रुपये एंट्री फीस ली जा रही है। ऐसी कंडीशन कर रखी है गवर्नमेंट से। तो हमारा तो यही है कि भी मैं भी सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि इसमें आप कुछ सुविधाएं दी जाए खिलाड़ियों को। ये इंडिया में मतलब गिने चुने खिलाड़ी है, इतने ज्यादा कोई खिलाड़ी नहीं है, और अभी कंडीशन बहुत खराब हो रही है। आने वाले लड़के मतलब कोई ऐसे किसी में जोश नहीं है, खिलाड़ी बहुत कम पड़ रहे हैं, इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है, खिलाड़ियों में कोई जोश नहीं है, बहुत कम पड़ रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं। अभी आजकल के एसोसिएशन में मैराथन में भी बहुत कम भीड़ देखने को मिल रही है।
1: देश आप अपनी कठिन परिस्थितियों और अपने जीवन के बारे में हमें बताया, और श्रोताओं इस प्रेरणादायी कहानी से हमें जानने को मिलता है कि जुनून यदि है तो आप हर मंजिल हासिल कर सकते हैं। तो आप सुनते रहें और मुस्कुराते रहें, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM। और मुकेश ने बताया कि जिस प्रकार से फीस ली जा रही है सरकार के द्वारा विभिन्न इवेंट्स में या जो आयोजक हैं उनके द्वारा, उससे वो थोड़ा नाखुश हैं और बताते हैं कि उनके लिए फीस भी जुटा पाना कई बार मुश्किल होता है और इस फीस में राहत दी जानी चाहिए। आशा है कि जो हमारे खेल प्रबंधक हैं और जो खेल प्रशासक हैं इस बात और इस मांग के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे। तो श्रोताओं केस से बात करते हैं। मुकेश आप बताइए ना, आपने कई सारी मैराथन में भाग लिया है, सबसे अच्छा अनुभव और यादगार अनुभव कौन सी मैराथन में रहा आपके लिए?
0: सर अगर देखी जाए तो इसमें सबसे एक तो हमारी अमृतसर में हुई थी BSF मैराथन, उसको ही बताऊंगा मैं। और सबसे अच्छी तो जो माउंट आबू ब्रह्म कुमारी मैराथन हुई थी, इससे अच्छी कोई सुविधा नहीं हो सकती। इतनी अच्छी व्यवस्था और सब कुछ, रूट पे पानी वगैरह, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी हर सुविधा, और रेलवे स्टेशन से लेकर के स्टार्टिंग से लास्ट तक ड्रॉप करना हर एक सुविधा, छोटी छोटी रुकने की, जाने आने की, इतनी अच्छी सुविधा दी जाए तो खिलाड़ियों में अपने आप में जोश होगा। हर कोई इंसान में जो भी अगर 40 साल एज होगी ना, वो भी सोच सके मैं भी मैराथन खेलूं। और ये एक भागना दौड़ करना, ये मतलब एक बहुत कठिन परिश्रम है, इसका खेल नाम दिया बहुत अच्छी बात है। कि जो भी सुबह उठते हैं जल्दी और कोई रोड पे ऐसे रनिंग करते हुए देखते हैं तो हर कोई मोटिवेट होता है, हर कोई यही सोचता है कि कितनी फिटनेस के लिए कर रहे हैं, वो इसके लिए कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, अपन सो रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, हर एक इंसान के अंदर विचार आता है।
1: जी
0: जी सर।
1: तो श्रोताओं आशा है कि आज आपने सुना गंभीरता से हमारे साथी मुकेश को, जो कि एक एथलीट हैं, जोधपुर शहर से आते हैं। आप भी इनकी कहानी से प्रेरणा लेंगे और इनकी कहानी से कुछ सीखेंगे। और उन्होंने बताया कि माउंट आबू में होने वाली दादी प्रकाश मनी मैराथन ने उनको एक अच्छा खुशनुमा अनुभव उनको दिया, और उन्होंने इस मैराथन में अपने साहस और अपने जज्बे की मिसाल कायम की। तो मुकेश आप इसी प्रकार से आगे दौड़ते रहें, और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि आप भी देश के नाम रोशन करें, अपने प्रयासों में कभी कमी ना आने दें, और जो सहयोग आपके आसपास अवेलेबल है वो निश्चित रूप से आपको मिले। और सरकार से भी हम इस कार्यक्रम जुनून के माध्यम से निवेदन करेंगे कि वो आपको आशानुरूप सहयोग प्रदान करें। केश आप हमसे ऐसे जुड़े रहें, और आप भविष्य में हम जब भी चाहेंगे तो हम निश्चित रूप से, जब आपके पास मेडल्स और होंगे तो हम आपसे और भविष्य में बातचीत करेंगे। तो आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। श्रोताओं आप सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM। थैंक यू मुकेश, जय हिंद।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी की रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: क्रांतिकारी यशवंत सिंह का जन्म 27 जुलाई 1909 को सागर में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के बलिदान ने उन्हें क्रांति की ओर आकर्षित किया। रेलवे विभाग में नौकरी करते हुए वे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। वे अपने साथियों के साथ मिलकर क्रांति साहित्य को जन जन तक पहुंचाते, क्योंकि उनका उद्देश्य था गोरी सरकार के खिलाफ लोगों की भावनाएं भड़काना। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक अंग्रेज अफसर की राइफल छीनने की योजना बनाई। योजना के क्रियान्वयन के दौरान अंग्रेज अफसर मारा गया। घटनास्थल से तो वे भाग निकले, लेकिन एक सहायक ने विश्वासघात करके पुलिस को उनकी सूचना दे दी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उन पर मुकदमा चला और गोरी सरकार ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 12 दिसंबर 1931 को जब उन्हें फांसी दी गई तो श्रद्धांजलि स्वरूप सारा जबलपुर शहर हड़ताल पर चला गया। अपने विवाह के दिन घर का त्याग करके निकले यशवंत सिंह ने शहादत के साथ दूसरा ब्याह रचा लिया था।
3: ये अशोक अब तक नहीं आया, कहीं भूल तो नहीं गया क्या? अशोक, इतनी देर लगा दी, और ये सामान?
4: लो, सवारी को छोड़कर सामान के बारे में पूछ रहे हो?
3: अरे हाँ, ये कौन है?
4: भाई, ये रमेश है, मेरे चाचा जी का बेटा। अचानक इसके जबलपुर से आने की खबर आई तो स्टेशन लेने चला गया, और इसी वजह से देर भी हो गई।
3: अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आपसे मिलकर खुशी हुई।
5: मुझे भी।
3: आप भी स्टूडेंट है क्या?
5: नहीं नहीं, मैं रेलवे में काम करता हूँ।
3: अरे वाह, इसने आपके बारे में जिक्र तो कई बार किया, पर ये रेलवे वाली बात कभी नहीं बताई।
4: भाई, अब सारी बातें यहीं करोगे तुम लोग? चलो इन्हें सीधे काका के ढाबे ले चलते हैं, और वहीं चाय पियेंगे और आराम से बातें करेंगे।
3: भाई ये भी ठीक है, चलो।
4: आओ रमेश, ये है हमारे काका का छोटा सा ढाबा।
3: छोटा सा नहीं प्यारे, प्यारा सा ढाबा। नमस्कार नवीन भाई, कैसी चल रही है आपकी रिसर्च?
6: अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तुम लोग सुनाओ?
3: बस बढ़िया है।
4: अरे नवीन भाई, आप काका कहाँ गए हैं?
6: बाहर गए हैं जरा किसी जरूरी काम से, अचानक जाना पड़ गया।
4: नवीन भाई, ये है रमेश, मेरे जबलपुर वाले चाचा जी का लड़का।
7: नमस्कार नवीन भाई।
6: नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। क्या करते हैं रमेश आप?
7: कुछ नहीं, बस रेलवे में काम करता हूँ।
3: अरे ये नवीन भाई हैं, काका के छोटे भाई, क्रांतिकारियों पर रिसर्च कर रहे हैं।
7: क्रांतिकारियों पर रिसर्च?
3: हाँ भाई।
4: नवीन भाई, हम तो यहाँ चाय पीने और काका से क्रांति कथाएं सुनने आते हैं।
3: अरे तो क्या हुआ, नवीन भाई थोड़े ही कुछ कम है? नवीन भाई आप ही कुछ सुना देते।
6: अरे मैं कहाँ हूँ और आपके काका?
3: नहीं नहीं नवीन भाई, आप भी कुछ, आप भी तो रिसर्च कर रहे हैं।
6: अच्छा अच्छा अच्छा।
4: अरे नवीन भाई, किस सोच में डूब गए?
6: कुछ नहीं, बस जबलपुर से जबलपुर वाले यशवंत सिंह की बात याद आ गई।
4: यशवंत सिंह?
6: हाँ, क्रांतिकारी यशवंत सिंह। अब वो भी अपने रमेश भाई की तरह रेलवे में नौकरी करते थे।
4: वाह, तो नवीन भाई आज आप उन्हीं के बारे में बताइए।
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं। यशवंत सिंह मजबूत इरादों वाला वो युवक था जो हरदम आजाद हिंदुस्तान में सांस लेने का सपना देखा करता था, और इसी के चलते उसने अपनी निजी जिंदगी भी ताक पर रख दी थी।
8: मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ पिताजी कि मैं शादी नहीं कर सकता।
9: शादी नहीं कर सकता तो क्या जिंदगी भर कुंवारा बैठा रहेगा?
8: ऐसी बात नहीं है पिताजी, पर आप जरा सोचिए तो, आज चारों तरफ आजादी के लिए लोग लड़ रहे हैं, जाने कुर्बान कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में मैं शादी कर लूं, क्या ये देश से गद्दारी नहीं होगी? उधर देश के नौजवान क्रांतिकारी फांसी पर लटकाए जा रहे हैं, औरतें बच्चे घर से बेघर किए जा रहे हैं, और मैं अपना घर बसा लूं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा।
9: ठीक है, मैं भी देखता हूं तू कैसे शादी नहीं करेगा।
8: अगर आपकी यही जिद है
0: मैं यहां से जा रहा हूं।
6: जाओ, और आज के बाद मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। अभी अभी जवान हुए हैं और क्रांति की बातें करते हैं।

0: अरे यशवंत, रुक रुक, इतनी तेजी में कहाँ जा रहा है?
1: मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ।
0: अरे फिर पिताजी से बहस हो गई क्या?
1: हाँ, वो फिर से मेरी शादी की माला जप रहे हैं।
0: अरे तो तू शादी कर क्यों नहीं लेता? आखिर वो तेरे पिता हैं, वो चाहते हैं तेरा घर बच जाए।
1: मेरे हिस्से में घर का सुख नहीं है दोस्त। जिसके देश का सुख चैन छिन गया हो, वो भला सुख से कैसे रह सकता है? मैंने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी है।
0: देख, मैं तेरी सब बात मानता हूँ, पर एक नजर अपने पिताजी की तरफ देख। वो अब बूढ़े हो चले हैं, अब वो भी चाहते होंगे कि मरने से पहले घर में बहू आ जाए, पोते पोतियों का मुंह देख लें।
1: पर
0: मैं छोड़, पर यदि तू मुझे अपना दोस्त मानता है तो अभी घर वापस चला जा।
2: कौन? यशवंत आ गया बेटा?
1: जी पिताजी।
2: जरा इधर आ, मेरे पास बैठ।
1: जी कहिए।
2: बेटा मुझे माफ कर दे।
1: नहीं नहीं पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं?
2: अरे नहीं बेटा, गुस्से में ना जाने मैं तुझे क्या क्या बोल गया। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था।
1: गलती तो मेरी है पिताजी।
2: नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। एक बात सुनेगा मेरी?
1: कहिए पिताजी।
2: देख बेटा, मेरी उम्र तो ज्यादा नहीं बची, पता नहीं कब बुलावा आ जाए और जाना पड़े।
1: भगवान के लिए ऐसा ना कहिए पिताजी।
2: मरने से पहले सिर्फ एक ही इच्छा थी कि तेरा घर बसा देख लूं, पर शायद अब वो भी मेरी किस्मत में नहीं।
1: पर पिताजी शादी इतनी जल्दी, सब कुछ कैसे होगा पिताजी?
2: बेटा लड़की मैंने देख रखी है, बड़ी ही सुशील और गुणी है, बड़ा अच्छा खानदान है, उसके पिता भी नेक इंसान है। ये देखो अभी अभी उन्हीं का तारा है, वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं।
1: पर पिताजी।
2: बेटा अपने पिता की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं करेगा।
1: ठीक है पिताजी, आप कहते हैं तो ठीक है।
2: देख बेटा यशवंत, शायद वही है। जा जाकर दरवाजा खोल।
3: नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
3: मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने आया था, क्या वो घर पर हैं?
1: आइए।
3: अरे आइए आइए, मुझे अभी अभी आपका तार मिला। मेरे बेटे को तो आपने देख ही लिया है।
4: क्यों नहीं, देखते ही समझ गया कि यही यशवंत है, पहली नजर में ही भाग गया। जैसा पिता वैसा बेटा।
3: और हमें तो आपकी लड़की पहले से ही पसंद थी, और अब यशवंत ने भी हाँ कर दी है।
4: वाह, तो फिर देख किस बात की, जल्दी से मुहूर्त निकलवाइए।
3: अरे पहले मुंह तो मीठा कर लीजिए। ये लीजिए। तो रिश्ता पक्का?
4: हाँ बिल्कुल पक्का, आज से आप और हम समधि हुए।
0: अरे यशवंत, तू यहाँ अकेला बैठा है और तुझे वहां सब लोग ढूंढ रहे?
1: बस ऐसे ही, मन कुछ उदास है दोस्त।
0: उदास? अरे भाई आज तो तेरी शादी है, तुझे तो खुश होना चाहिए, तू एक नए रिश्ते से जुड़ने जा रहा है।
1: रिश्ता? रिश्ता मेरा एक ही है, मेरा और मातृभूमि का, मुझे सिर्फ उसी से रिश्ता निभाना है।
0: यशवंत कम से कम आज के दिन तो ऐसी बातें मत कर।
1: क्यों ना कहूं, उधर मेरी भारत माँ गुलामी की जंजीरों में बंधी है, और मैं वरमाला पहनूं, मेरे भाइयों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, और मैं शादी की खुशियां मनाऊं?
0: तुझे समझाना मेरे बस की बात नहीं। चल अब चल, वहां सब तेरा इंतजार कर रहे हैं।

0: मैं आपसे शादी करके बहुत खुश हूँ।
1: पर मैं खुश नहीं हूँ।
0: क्या आप खुश नहीं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ?
1: नहीं, ये बात नहीं है।
0: तो फिर क्या बात है, आप साफ साफ कहिए ना।
1: देखो, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है।
0: शादी हो चुकी है? मतलब मैं आपकी दूसरी पत्नी हूँ?
1: जी हाँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। वो हरदम मेरे साथ रहेगी।
0: पर वो है कहाँ?
1: ये रही वो।
0: पर ये तो कटार है।
1: हाँ, यही मेरी पत्नी है।
0: अगर आप इस कटार को अपने साथ रखना चाहते हैं तो शौक से रखिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
1: पर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख पाऊंगा।
0: जब आप मुझे अपने साथ नहीं रख सकते तो मुझे शादी करके क्यों ले आए? मरते दम तक साथ निभाने की कसमें क्यों खाएं?
1: ये सब तुम पिताजी से पूछो। मेरे लाख मना करने पर भी उन्होंने तुमसे मेरी शादी कर दी।
0: पर इसमें मेरी क्या गलती है?
1: मैं तुम्हें भी दोषी नहीं ठहरा रहा, पर मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि मेरा जन्म देश सेवा के लिए हुआ है। उसके अलावा और कोई मेरा लक्ष्य नहीं है।
0: ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। मैं आपकी राह में बाधा नहीं बनूंगी। मैं तो आपकी जीवन संगिनी हूँ। हर कदम पर आपका साथ देना मेरा धर्म है। जाइए, आप मातृभूमि की सेवा कीजिए।

0: नमस्कार यशवंत सिंह जी।
1: आइए आइए देवनारायण जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, बैठिए।
0: हाँ भाई, और कहिए सब ठीक है ना?
1: हाँ सब कुशल मंगल। आपने जो क्रांतिकारी साहित्य मंगवाया था वो आ गया है।
0: वाह, मैं और मेरे क्रांतिकारी भाई आपके बहुत आभारी हैं।
1: मेरे आभारी?
0: हाँ, आप जो क्रांतिकारियों की किताबें हमें लाकर देते हैं उन्हें मैं लोगों में बांट देता हूँ, उसे पढ़कर लोग खुद ब खुद क्रांति के रास्तों पर चल पड़ते हैं।
1: जी ये तो बहुत खुशी की बात कि मुझे ये काम करने का सौभाग्य मिला। अपने देश के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ी ना तो मुझे कोई गुरेज नहीं।
0: अगर ऐसी बात है तो क्यों ना आप हमारे एक काम में हमारी मदद करें।
1: जरूर, कहिए कैसी मदद चाहते हैं आप।
0: मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। हमें खबर मिली है कि 3 दिन बाद 2 अंग्रेज अफसर बहुत सी राइफलों के साथ ट्रेन से कहीं जा रहे हैं।
1: तो आप उनकी राइफलें?
0: बिल्कुल सही, अगर वो राइफलें हमें मिल जाएं तो बात बन जाए। मैं जानता हूँ कि ये काम बहुत मुश्किल है, अगर आप चाहें तो करें वरना।
1: नहीं नहीं नहीं देवनारायण जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं।
0: बिल्कुल ठीक, एक सच्चे देशभक्त से यही उम्मीद थी।
1: पर ये सब हम कैसे करेंगे?
0: मेरे पास एक योजना है।
1: कैसी योजना?
0: आप छुट्टी लेकर उस दिन खंडवा स्टेशन पर पहुंच जाना था।
2: और जिस डिब्बे में वो अंग्रेज अफसर होंगे तो हमारी 2 टिकटें करवा दी और हमारे कुछ साथियों।
0: अरे भाई, अभी तक यशवंत नहीं आया, ट्रेन का वक्त होने वाला है, दलपतराव।
3: जी देवनारायण जी।
0: अरे भाई तुम उस तरफ जाकर देखो और मैं इधर देखता हूँ, वो अब तक आया क्यों नहीं।
3: जी मैं देखता हूँ।
0: अरे दलपत, ये रहे यशवंत।
1: नमस्कार देवनारायण जी।
0: अरे यशवंत, बस अभी तुम्हारा ही नाम लिया, इनसे मिलो, ये है दलपत राव, मैंने बताया था ना तुम्हें।
1: अच्छा तो आप हैं जो हमारा साहित्य आवाम तक पहुंचाते हैं।
3: जी, और मुझे गर्व है कि मैं मातृभूमि की रक्षा करने वाले सपूतों का साथ दे रहा हूँ।
1: वाह दलपत राव जी, आपने तो दिल खुश कर दिया। ये लीजिए अपने अपने टिकट, ट्रेन आती ही होगी।
3: जी लाइए।
0: ये तो पहले दर्जे की टिकट है।
1: हाँ, वो दोनों अफसर पहले दर्जे में ही सफर कर रहे हैं। लो ट्रेन आ गई, चलो चलो चलें, चलो चलो चलो।
0: हाँ चलो चलो।

0: देखो यशवंत, अभी रात होने में काफी वक्त है। रात को करीब 2 बजे जब दोनों अफसर गहरी नींद में होंगे, हम उन पर धावा बोल देंगे।
1: ठीक है, पर अगर अगर उनके साथ कोई और हुआ तो?
0: तुम चिंता ना करो, मैंने डिब्बे के उस तरफ दलपत राव को भेजा है, वो देखकर आता ही होगा।
1: लो, वो आ गया।
0: हाँ दलपत राव, कहो।
2: मैंने सब पता कर लिया है।
0: हमें विस्तार से बताओ।
2: पहला अफसर लेफ्टिनेंट जीआर हैक्स है, इसी के पास सारी राइफलें हैं।
1: और दूसरा?
2: उसका नाम लेफ्टिनेंट शीहन है, वो 28 फील्ड ब्रिगेड से है और वो भी पुणे की तरफ जा रहा है।
0: तुमने ठीक से तो देख लिया ना, कोई और तो इस डिब्बे में नहीं है?
2: नहीं, पर हैक्स के साथ एक कुत्ता भी है।
1: ओह, आप लोग चिंता ना करें, मेरी कटार की धार से कोई नहीं बचेगा।
0: हाँ दलपत राव, तुम्हारे पास तुम्हारी कटार है कि नहीं?
2: हाँ है, पर क्या हम इन कटारों से उनका मुकाबला कर पाएंगे?
1: दलपत भाई, दिल में जज्बा हो तो कोई काम मुश्किल नहीं। आप क्या कहते हैं देवनारायण जी?
0: बिल्कुल सही कहा यशवंत, और इन गोरों को सबक सिखाए बिना हमें चैन नहीं मिलने वाला।
2: सच कहते हैं आप दोनों।
0: सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। जब देर रात ट्रेन डोंगर गांव और मांडवा के स्टेशनों से गुजरेगी, तब मैं और यशवंत हैक्स पर हमला बोल देंगे।
1: ठीक है।
0: और दलपत राव, तुम शीहन को देख लेना, अगर वो हैक्स की मदद करने की कोशिश करता है तो
2: उसका भी काम तमाम।
1: ठीक है।

0: दो बज गए हैं, हमें अपने काम में लग जाना चाहिए। चलो यशवंत।
1: ठीक है, चलिए।
0: दलपत राव, तुम जाकर शीहन को संभालो।
2: अच्छी बात है।
3: Hey, who's there?
1: हम हैं देवनारायण जी, आप राइफल उठाइए, मैं इसे संभालता हूँ।
4: तुम लोग?
2: अरे जाता कहाँ है शीहन,
4: ये ले।
1: दलपत, राइफल उठाओ, यहाँ से निकलो।
5: रंजीत, किस
1: राइफल
4: उठाओ, यहाँ से निकलो। चलो
1: देवनारायण जी, पुलिस आती हो, हमें निकलना चाहिए।
0: चलो दलपत राव,
2: चलिए।

0: वाह यशवंत, तुमने तो कमाल कर दिया। और दलपत राव, तुमने भी अच्छा साथ निभाया।
1: अभी तो शुरुआत है देवनारायण जी, आगे आगे देखिए होता है क्या।
2: सच यशवंत भाई, मजा आ गया। आपने तो हेक्स को एक ही बार में चित कर दिया, लाजवाब।
1: और तुमने भी तो शीहन को धूल चटा दी। पर मेरे क्रांतिकारी साथियों, ये तो सिर्फ आगाज है, अंजाम तो इससे भी भयानक होगा, जिससे अंग्रेजों की नींव हिल जाएगी।
0: तुमने ठीक कहा यशवंत, हमने जो क्रांति का छोटा सा बीज बोया है, देखना उससे एक दिन एक नन्हा पौधा फूटेगा।
1: और वो नन्हा पौधा एक दिन बड़े, बहुत बड़े दरख्त में बदल जाएगा, आजादी के दरख्त में,
2: जिसके साए में हिंदुस्तान की आवाम खुशी खुशी जिंदगी बिताएगी। क्यों यशवंत भाई?
1: बिल्कुल सही। फिर चाहे हमें उस पौधे को अपने खून से ही क्यों ना सींचना पड़े।
0: वाह वाह यशवंत वाह, तुम जैसे कुछ क्रांतिकारी और मिल जाएं, तो हमारे देश को आजाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
1: देश की खातिर अगर जान भी चली जाए ना, तो गर्व से दे दूंगा।
2: देवनारायण जी, मेरे ख्याल से अब हमें यहां से निकलना चाहिए।
0: सही कहते हो, पुलिस यहां भी पहुंचती होगी, हमें अलग अलग दिशाओं में भागना चाहिए।
1: आप सही कहते हैं।
0: यशवंत, तुम जंगल की तरफ से जाओ।
1: ठीक है।
0: दलपत, तुम खेतों से होते हुए जाना और मैं पटियों के रास्ते जाता हूँ।
2: अच्छी बात है।
0: ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं। जय हिंद।
2: जय हिंद, जय हिंद।

0: सर।
1: यस ऑफिसर।
0: एक बुरा खबर है।
1: बुरा खबर क्या?
0: क्रांतिकारियों ने हमारे ऑफिसर मिस्टर हैक्स को मार डाला सर।
1: ओह नो।
0: और वो सारा राइफल लेकर भाग गया। हो तो और उन्होंने हमारा एक और ऑफिसर को भी जख्मी खा दिया।
1: उनका ये मजाल ऑफिसर।
0: यस सर।
1: तुम अभी क्या भी फोर्स लेके जाओ और उन तीनों को हमारा सामने लाके खड़ा करो।
0: यस सर।
1: जल्दी जाओ कहीं वो भाग न जाए। उनको पकड़ कर उनका वो हाल करो जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा।
0: ओके सर।
1: यस सर।
0: हमें जिनका तलाश है उनका नाम है यशवंत सिंह। उन्हें छोड़ना है।
1: यस सर।

0: नमस्कार यशवंत सिंह जी।
1: नमस्कार नमस्कार, कहिए क्या खबर है?
0: बहुत बुरी खबर है।
1: बुरी खबर?
0: देवनारायण जी और दलपत राव पकड़े गए हैं।
1: क्या कहते हो?
0: हाँ, और पुलिस आपको भी ढूंढ रही है। मेरे ख्याल से आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं।
2: यशवंत सिंह जी, यशवंत सिंह जी।
1: अरे तुम इतने घबराए हुए क्यों?
2: पुलिस ने चारों तरफ से गांव को घेर लिया है।
1: पर पुलिस को पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ?
0: वो सब आप छोड़िए और आप यहाँ से जल्दी भागिए, जल्दी।
1: लेकिन मैं
3: खाई खाई नहीं जाएगा।
4: आखिर फिरंगी आ गए।
3: पकड़ लो इन सबको, कोई भागने न पाए। पकड़ लो इन सबको, कोई भागने न पाए।
1: पकड़ लो, हाँ हाँ मुझे पकड़ लो। लेकिन एक यशवंत को पकड़ने से आजादी का आंदोलन खत्म नहीं हो जाएगा। अंग्रेजों, तुम्हें ये वतन छोड़कर जाना ही होगा, हमारी मातृभूमि को छोड़ना ही होगा।

0: ओह, तो वो पकड़े गए?
1: तो क्या उन सबको फांसी दे दी गई नवीन भाई?
2: नहीं, दलपत राव को आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई और यशवंत सिंह और देवनारायण को फांसी पर लटका दिया गया।
0: सच नवीन भाई, यशवंत सिंह जी सच में सच्चे क्रांतिकारी थे जो देश के खातिर फांसी के तख्ते पर झूल गए।
2: हाँ दोस्त, उन क्रांतिकारियों ने जो कहा था वो करके दिखाया। अगर वो अपनी कुर्बानी नहीं देते तो आज हम आजादी के खुले आसमान में सांस नहीं ले सकते थे।
1: आप सच कहते हैं नवीन भाई, ऐसे देशभक्तों को शत शत नमन। अच्छा तो अब हम लोग चलते हैं, फिर मुलाकात होगी।
0: नमस्कार नवीन भाई।
2: नमस्कार नमस्कार, आते रहना भैया।
0: बिल्कुल, चलो
1: नमस्कार।
3: निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: नमस्कार, मेरा नाम है मंजू, मैं बाड़मेर से हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार दोस्तों, जीना इसी का नाम है। क्या खूबसूरत नाम है। कभी कभी ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं और कोई उस सिचुएशन से उभर के बाहर आते हैं और कोई नहीं आ पाते। जो अपनी परिस्थितियों से उभर के बाहर आते हैं और एक उदाहरण सेट करते हैं तो कहते हैं इन्होंने क्या जिया है, मजा आ गया इनकी कहानी सुन करके। ऐसे ही कुछ उदाहरणों के साथ आज हमारे कार्यक्रम जीना इसी का नाम पे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हमारे साथ है सुमन बहन जी। सुमन बहन ब्रह्म कुमारी इस मुख्यालय में माउंट आबू में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एक नर्स के रूप में। एक नर्स जो योगी जीवन जीते हुए अपनी सेवाएं कर रहे हैं और एक नर्स जो लौकिक दुनिया में रहते हैं, क्या अंतर होता है, आइए जानते हैं और बातचीत करते हैं आज की हमारी मेहमान सुमन बहन जी से। सुमन बहन, आपको रेडियो मधुबन पर बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, खुशी हुई है आप यहाँ बुलाए
1: जी। हमें भी बहुत खुशी है कि आज एक योगी की कहानी, और वो योगी जो साइंस के साथ भी ताल्लुक रखते हैं और साइलेंस के साथ भी ताल्लुक रखते हैं। तो सुमन बहन, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो लौकिक जर्नी है, आपने कहाँ पे जन्म लिया और आपके परिवार, माता पिता क्या करते थे, और आपकी जो लौकिक परिवार है उसके बारे में थोड़ा सा परिचय दें।
2: मैं ऐसे कर्नाटक से कारवार डिस्ट्रिक्ट में हलियाल करके आता है, वो भरे तालुका प्लेस है, लेकिन वहाँ का सारा वातावरण यानी 30-40 साल पहले एक गांव का ही था, तो गांव के वातावरण में ही हम पले बड़े हैं। वहाँ ही लौकिक और जो अलौकिक ज्ञान को हम प्राप्त किया है। पिताजी ऐसे वुड मिल में काम करते थे और माताजी खेती बाड़ी में। घर में गाय भैंस और वो दूध का सब व्यापार चलता था, तो उसी में ही हम छोटेपन से ही काम करके ही सीखने का एक पहले से ही नियम था, तो इस तरह हम पले बड़े हैं
1: जी। आप कितने भाई बहन थे?
2: हम तीन बहनें और एक भाई है, उसमें मैं ही थोड़ा पढ़ाई किया है, क्योंकि उस जमाने में वहाँ लड़कियों को पढ़ाना इतना ये स्कोप नहीं था, सिर्फ लड़कों को थोड़ा पढ़ाते थे। लड़कियों को बस थोड़ा कोई प्राइमरी वगैरह पढ़ाया, पढ़ना लिखना आ गया तो बस हो गया, और कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं बहुत मना स्ट्रगल करके, बहुत जिद करके पढ़ाई किया है, और वो इतना सहज भी नहीं था, क्योंकि हर बार यही होता था कि इनको स्कूल छुड़ावे, इनको कॉलेज छुड़ावे, और हमेशा एक कंडीशन होता था कि आपको ये काम करके ही जाना है, ये करके ही जाना है तो जाने का, हम जैसे बोलते वैसे ही कपड़ा पहनना है तो ही जाने का। तो मैं वो सारे कंडीशन को पूरा करते हुए भी मना, बस मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे पढ़ाई करना है, तो उस तरह मेरी पढ़ाई हुई थी। और मैं बहुत छोटेपन से ही बुक्स पढ़ने की बहुत आदत थी, तो मैं बहुत बड़े बड़े महारथियों का, दार्शनिक या जो फ्रीडम फाइटर्स है, उन लोगों के सभी बहुत सारे बुक्स पढ़ती थी, तो उनके जीवन से मुझे बहुत ऐसे एनर्जी फील होती थी कि मुझे सच में पढ़ना है, पढ़ाई से आगे बहुत कर सकते हैं
1: जी। तो फिर आपके भाई बहनों ने कहाँ तक पढ़ाई किया?
2: वो लोग ज्यादा से ज्यादा कोई प्राइमरी कोई हाई स्कूल के अंदर ही छोड़ दिया, और वो अपने अपने गृहस्थी में चले गए।
1: तो फिर आपने कहाँ तक पढ़ाई किया?
2: मैंने ऐसे ग्रेजुएट किया है, और बाद में ओपन यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट भी किया, लेकिन उस टाइम में वहाँ एक रूरल एरिया को डेवलप करने के इसलिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स लेके आते थे, कुछ महीने के, कुछ साल के, कोई नर्सिंग का, कोई कंप्यूटर का पढ़ाते थे, तो उस तरह के मैंने फिर कोर्स कर लिया था साइड बाय साइड।
1: तो इतनी स्ट्रगल से आपने जो पढ़ाई किया है, फिर आपको कभी लगा नहीं कि मैं जाकर के नौकरी करूँ ये सब चीजें?
2: नहीं, थोड़ा सा आध्यात्मिकता का ये था, रुचि था, और दुनिया के बारे में सोचना, देश के बारे में सोचना, इस तरह की बुद्धि थी मेरा, सिर्फ मेरा जीवन का बहुत मैं कम सोचती थी। और पढ़ाई का मैं एक सुनाती हूँ, गांव में ऐसा पढ़ाई होती थी, एक हॉल रहता था, उसमें एक ही मास्टर जी, एक ही ब्लैक बोर्ड, और उस हॉल में 4 स्टैंडर्ड के बच्चे बैठते थे मना कोई क्लासरूम या पार्टीशन ऐसा कुछ नहीं है। जो सामने के कुछ बेंचेस होते थे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले, और बाद में कुछ होते थे वो सेकेंड वाले, फिर इस तरह माना जिस बेंच पे वो बैठा है उसे,
1: वो उसका क्लास है
2: उसका वो क्लास है ऐसे होता था। तो उस टाइम में पढ़ाई क्या किया पता नहीं इतने हॉल में बैठ के लेकिन मजा बहुत आता था, बहुत खुश रहते।
1: तो फिर इस बीच में आपको ब्रह्म कुमारी के साथ परिचय कैसे हुआ?
2: ऐसे मुझे पहले से आध्यात्मिकता को रुचि बहुत थी लेकिन मैं कभी कोई ऐसी पूजा नहीं की, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा रहता था कि कोई ना कोई एक सर्वोच्च शक्ति है उसको मुझे पाना है। अगर मैं किसी एक मंदिर या एक पूजा एक पद्धति में मैं फंस गई शायद मैं उससे वंचित हो रह जाऊंगी। और कुछ साल के बाद मुझे पता चले कि शायद मैं गलत आई हूँ और बाद में फिर चेंज करूँ तो उतने साल मेरे वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं कभी भी उस तरह का नहीं किया है। और धर्म के हिसाब से मैं सभी धर्मों के बारे में भी जानकारी लिया था, जैसे मुस्लिम्स है कुरान के बारे में, बाइबल के बारे में, बुद्धिज्म जैनिज्म ये सारा मैंने बहुत जानकारी लिया था कि मुझे ऐसा लगता था अगर इस धर्म में फॉलो करने से भगवान प्राप्त होता है और मैं इस धर्म में जा रही हूँ शायद मैं वंचित रह जाऊँगी, तो इसलिए मैं कोशिश करती थी सब तरफ से जानकारी करूँ और मैं उसमें बाद में चलूँ जब मुझे पता चले। तो मुस्लिम का जो होता है रोज़ा रखना और मुहर्रम और रमज़ान वगैरह वो सब सेलिब्रेट करते थे, चर्च में भी जाते थे। तो इस तरह मुझे अंदर से एक खोज थी कि मुझे भगवान को खोजना है, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे पूजा पाठ करके या कोई एक मूर्ति एक कहानी के पीछे, नहीं मुझे रियल में उसको पाना है, इस तरह का एक अंदर से भूख थी। तो इसलिए मैं बहुत ऐसे अंदर से एफर्ट करती थी और उस टाइम में मेरे विचारों को समझने वाले नहीं थे, उनको लगता था कि ये कुछ अलग सोचती है।
1: आपके पूरे परिवार में?
2: हाँ परिवार में कहीं भी मुझे इतना ये नहीं हुआ जो मैं खुद बुक्स वगैरह पढ़ पढ़ के अपने आप को मोटिवेट कर लेती थी। मैं स्कूल की बुक्स बहुत कम पढ़ती थी और जो दार्शनिक है बड़े बड़े होके गए हैं स्वामी विवेकानंद है, फ्रीडम फाइटर्स की भी बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ लिया था, तो मुझे लगता था कि मुझे भी कुछ बनना है।
1: बहुत अच्छा। तो फिर जैसे आपको आध्यात्मिकता में रुचि थी तो ब्रह्म कुमारी से जो परिचय मिला आपको उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी?
2: मैं 20-21 साल की थी, मैंने ग्रेजुएट भी हो गए थे। माना मैं ब्रह्म कुमारी संस्था में आने से पहले मेरी जो पहले मैंने बताया कि मेरे विचार ऐसे ऐसे थे और उस टाइम में जैसे एक टिवाटे पर खड़ी थी मैं कि मैं किधर जाऊँ, मुझे कोई इस तरह का शादी करना ये करना उस तरह का तो था नहीं लेकिन एक साधना का जीवन करना चाहिए लेकिन मैं जाऊँ किधर, ऐसा कोई मुझे क्लियर रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। और मैं थी 20-21 साल की और मुझे कोई भी डिसीजन लेना उसी टाइम में लेना है, तो मेरे विचार ऐसा था कि अगर किसी और धर्म के थ्रू मैं परमात्मा को पा लूँ तो उस टाइम में मैं ऐसी मेरी मेंटेलिटी थी कि मैं धर्म परिवर्तन करने के लिए भी रेडी थी।
1: अच्छा
2: हाँ
1: ओके
2: हाँ फिर मैंने देखा था कि और कहीं भी जाते तो थोड़ा स्त्री को दूसरी दर्जा दी जाती थी और आध्यात्मिकता भी उसमें, फिर मैं थोड़ा पीछे हट जाती थी मैं शायद इसमें जाऊँ तो वहाँ फिर ना होवे। तो ऐसे एक उलझन के टाइम में मुझे ब्रह्म कुमारी संस्था से मैं जुड़ गई। मैं जॉब के लिए गई थी, उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे वो ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए थे और कुमार थे, तो उनका जो हाव भाव है पेशेंट पूरा होने के बाद उनका पढ़ाई करने का मेडिटेशन करने का और महिलाओं के प्रति उनका रिस्पेक्ट वो सभी देख के मुझे बहुत थोड़ा ये हुआ कि ये व्यक्ति कुछ अलग है दूसरों के। जैसे कोई लड़का जाता है पुरुष तो हम वहाँ से जाने के लिए सोचना पड़ता है या थोड़ा अटेंशन से जाना पड़ता है, लेकिन उनके पास ऐसा नहीं लगता था, तो ये बहुत ऊंचे विचार वाले हैं ऐसा लगता था। और मुझे एक था ये कि भगवान के बारे में जो भी कोई कहानियाँ बताते थे उसको विरोध करना और ये सब पाखंड है ये साबित करने का बहुत वाद विवाद में आने का बहुत एक ये था और मैं काफ़ी लोगों को हरा भी देती थी तो वो एक घमंड भी था मुझे। अच्छा ये कोई ओम शांति करके कोई एक है और ये भी कोई अपना बाबा बोलते हैं कोई भगवान मिला बोलते हैं, मैं इनको भी ये भूत छुड़ा सकती हूँ इस भाव से मैं उनसे बात करना शुरू किया था।
1: okay, ये कौन सा साल रहा होगा?
2: ये 2001 का है।
1: अच्छा
2: तो फिर मैं उनको भगवान के बारे में पूछना शुरू किया तो उन्होंने ये एक बात बोला कि मैं भगवान को इतनी अच्छी तरह से संबंध में हूँ जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे ही मैं करता हूँ, एक तो मुझे अंदर से लगा ये व्यक्ति कहीं पहुंचा हुआ व्यक्तित्व वाला हो सकता है, या तो ये पागल हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान से हम इजीली बात कर सके? एक तो मैं इतना ढूंढ रही हूँ, भगवान है ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा है, और उनको मिल भी गया और इतना वो लोग आराम से बात भी करते हुए, तो ये बात से मुझे थोड़ा सा अंदर से लगा कि ये व्यक्ति एक तो पागल हो सकता है या सच में पाया हुआ है। तो भगवान के बारे में मुझे बहुत क्वेश्चन थे, जैसे सभी को रहता है, ऐसी दुनिया क्यों बनाया है, दुखी है, ये है, जात पात धर्म में सब बटी हुई है, तो ये सभी बहुत क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन सभी सुन के उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चनों को सारा हम आंसर दे देंगे, सब आपको ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन आप चाहते क्या हो, आपका क्या सपना है कि भाई भारत कैसा होना चाहिए, दुनिया कैसा होना चाहिए आपके सपनों के हिसाब से। तो वो एक ऐसे दिया था मुझे, तो मैंने 5-6 पेज लिख के लेके गई थी कि मेरे सपनों का भारत इस तरह होना चाहिए। मैं स्पेशल मेरा महिलाओं का था, तो महिलाओं को रिगार्ड होना चाहिए, और हर एक इंसान इतना संतृप्त होना चाहिए, इतना भरपूर होना चाहिए, किसी और की चोरी करना, लूटना या जलस होना इतना कोई जरूरत ही ना पड़े, इतना हर एक भरपूर होना चाहिए, और कोई किसी को शिक्षा देने जैसा कर्म होना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह की बातें जो मैं कॉलेज से लेके आई थी दिमाग में, वैसे मैं लिख के दिया था। तो वो मेरा एसे देख के उन्होंने डिसाइड किया शायद इनको सच में एक भारत के प्रति या दुनिया के प्रति ऐसी भाव है। तो तभी उन्होंने बहुत इंटरेस्ट से मुझे कोर्स देना शुरू किया, लेकिन वो ज्ञान इतना सुनाते और मैं उनको इतनी क्वेश्चन पूछती डबल मैंने इतने क्वेश्चन थे, लेकिन वो बहुत संयमता से सारे क्वेश्चन सुनते थे। तो इस तरह मेरा ये ज्ञान में आ गई।
1: तो फिर फाइनली आपका निश्चय कैसे हुआ कि ये सत्य ज्ञान है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप हर धर्म को फॉलो कर रहे थे भगवान की खोज में, और जब आप बेसिक फंडामेंटल कोर्स करने के लिए आए हैं वो ब्रह्म कुमारी, इसमें तब भी आपके मन में बहुत सारे सवाल थे, तो निश्चय किस बात से हुआ और कैसे हुआ?
2: मैं और ऐसा मेंटेलिटी था कि कोई कुछ कह रहा है तो मैं इतना इजी मानने वाली नहीं थी। तो एक तो उनका जीवन देखा मैंने, वो डॉक्टर का जीवन देखा कि उनकी कितनी सिंप्लिसिटी है, विचार कितने ऊंचे है और कितना सेवा भाव, ये भी प्रभाव डाला। और उसके बाद जब ज्ञान दिया और मेरे सारे क्वेश्चनों का आंसर मिल गया, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहानियों में देवताओं का ही भगवान बोल की कहानियां बनाया है, वो सभी जो है मुझे उसकी क्लियरिटी हो गई, सच में एक निराकार परमात्मा वो रियल में कौन है, तभी तो ये सारे क्वेश्चन फिर ऑटोमेटिक स्टॉप हो गए मेरे। फिर भी मैं अगर इस संस्था को मैं अगर आगे बढ़ना है तो मैं इतना जल्दी डिसीजन लेने वाली जैसी नहीं थी। फिर मैं पहली बार यहाँ मधुबन आई, ऐसे सच कहूँ तो ये मधुबन में भी मैं ऐसे टेस्ट करने के लिए आई थी कि कोई ऐसा तो नहीं है कि भगवान आया करके किसी को बहला रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई ड्रामा कर रहे हैं, इस तरह तो नहीं है। तो मैं वो सभी देखने के लिए यहाँ आई थी, और उसके पहले जो क्लास माउंट आबू जो आई थी।
1: अच्छा, वो कौन से साल में आए थे?
2: 2004 में मैं पहली बार आई।
1: अच्छा,
2: एक तो मुझे यहाँ का वातावरण और यहाँ के जो भाई लोगों का व्यवहार है ना, विनम्रता जो दुनिया में हम देखते हैं बहनों के प्रति उनका व्यवहार, और यहाँ देखते हैं बहुत ऊंचा, बहुत वो भी प्रभावित हुए। और जो पुरुष प्रधान समाज है, और वो कुछ साल पहले तो और भी था, अभी तो थोड़ा चेंज हो रहा है, तो उनका जो दबदबा था यहाँ ऐसा नहीं था, सभी को इक्वल रिक्वेस्ट होता था, कोई जात पात का नहीं था, कोई पढ़े लिखे अनपढ़ गाँव, इसका कोई भेदभाव नहीं था। तो तब मुझे लगा कि ये जो चेंजेस है ये भगवान ही कर सकता है, कोई इंसान नहीं। और जो प्रभु मिलन डायमंड हॉल में होता है उसके 3 दिन पहले से कोई क्लासेस होते हैं, तो एक क्लास में सुना था कि भाई इतने ऊंचा हाईएस्ट अथॉरिटी से हमें मिलना है तो हमारी अपनी स्थिति भी कुछ ऊंची बनानी पड़ेगी। तो उसके पहले मैं 3 दिन अखंड मौन रखा था, सुबह 2 बजे से उठ के योग करना, खान पीन भी बहुत लाइट रखा था, और जितना हो सके मेरी एक अशरीरी स्थिति, एक बॉडीलेस स्थिति और जो निराकार है उसको मिलने के लिए मैं अपनी स्थिति को ऊंचा बनाऊं, तो ये बहुत किया था एक स्थिति में। तो उस स्थिति के साथ ही मेरा प्रभु मिलन के लिए मैं डायमंड हॉल में बैठी थी, और बहुत जैसे चारों तरफ से ध्यान रख के जो गुलजार दादी में आते हैं वो देखने के लिए कि ये सच में प्रभु अवतरण है और ये परमात्मा ही है जो मुझ आत्मा का पिता है। तो मैं उनकी एक बच्चा कहे संतान कहे तो मुझे महसूस होना चाहिए ना कि वो मेरा बाप है
1: जी।
2: तो ऐसे बुक्स में पढ़ने से तो नहीं है, मुझे आत्मा को भी महसूस होना चाहिए वो मेरा बाप है। दूसरों को महसूस हुआ होगा वो बाप कहते हैं, लेकिन मैं क्यों कहूँ। तो उस इरादे से मैं बैठी थी, लेकिन उस दिन जो भगवान का अवतरण हुआ तब मेरी स्थिति बहुत अलौकिक थी, बहुत डिवाइन। जो वहाँ वाइब्रेशन बने पूरे हॉल में 20-30 हजार लोग, पिन ड्रॉप साइलेंस, और जो मुझे दृष्टि मिल रही थी उससे मुझे मेरा शरीर इतना बहुत जैसे टच करूँ तो हाँ मैं टच करूँ तो भी उसका फील नहीं होता था, और आंखों से इतनी आंसू बह रहे थे खुशी की जैसे प्राप्त कर लिया है, जैसे एक भूख मिट गई है। तो मैं ऐसा सोचती थी कि मैं आंखें आंसू पहुँचने के लिए थोड़ा हाथ उठाऊँ तो थोड़ी कुछ सेकेंड की भी दृष्टि मुझे मिस ना हो जाए। तो वो प्रभु मिलन से मेरा पक्का हो गया कि भगवान सच में आया है और उसका और मेरा एक बाप और अपने संतान का एक रिश्ता है। तो उसी दिन फिर मैं पक्का निश्चय कर लिया।
1: फिर आपके परिवार में ईश्वरी मार्ग पर चल रहे थे?
2: नहीं कोई नहीं, मैं ही पहले थी।
1: अच्छा, तो फिर आपको छुट्टी कैसे मिली? हाँ
2: नहीं, बहुत अपोज हुआ, बहुत सारे एक समाज में भी ये कहीं दूसरा धर्म का है, कोई ब्रेन वॉश करते हैं, शादी करना नहीं, ऐसे जो अफवाहें होते हैं वो सभी बातें हमारे सामने भी आई थी। लेकिन मैं तो भगवान का अनुभव का टेस्ट देख चुकी थी, इसलिए मुझे ज्ञान भी था कि मैं उनको आंसर दे सकूं। बहुत परेशानी हो गई, जैसे हमारे खान पान का शुद्धता होता है उसके लिए भी हमें ऐसे हुआ था कि 2 साल तक हम घर में दूध दही ये तो रहता था लेकिन दूसरी चीज़ें बनाने का अलाव नहीं था। लेकिन बाबा का नियम था कि भाई उनको हम नैवेद्य ऑफर करके ही लेना है, तो वो करने नहीं देते थे जानबूझ के, ये कोई अलग बन रहे हैं। तो हम 2 साल तक दूध और केला चावल इसी में ही रहे थे, इतना वेट भी कम हो गया था। कईयों को लगता था कि इनके ऊपर कोई ने कुछ किया है
1: ये किया।
2: लेकिन अंदर से मैं बहुत खुश थी, बहुत नशे में थी, बहुत पा लिया था। शरीर तो कभी पतला होता है कभी मोटा होता अलग बात है, लेकिन भगवान के रास्ते में मुझे चलना है, तो मैं तो अंदर से बहुत खुश थी।
1: तो फिर आपको ज्ञान मार्ग में चलने के लिए, नियम धारणाओं में आप जैसे चाहते हैं वैसे जीने के लिए इतनी चैलेंजेस थे, इन चैलेंजेस में से आपने समर्पित होने का संस्था में और एक अलौकिक जीवन जीना, एक योगी जीवन जीने का संकल्प कैसे किया, उसको कैसे सामना किया?
2: जैसे पहले ही सुनाया था कि मेरा अंदर से एक युद्ध चल रहा था आध्यात्मिकता का कि मुझे भगवान को पाना है। तो जैसे 20-21 साल में आ गई तो अपने आप को कुछ माना जजमेंट लेना पड़ेगा कहाँ जाना है क्या करना है। उस टाइम में मुझे ये मिल गया, तो जब मुझे अनुभव हो गया तो मैं उसी दिन लिख के भी दे दिया था कि जब अगर मुझे अनुभव हुआ कि यहाँ भगवान आया हुआ है तो मैं उसी दिन से ही मेरा जीवन इनकी सेवा में लगा दूंगी, अगर मुझे अनुभव नहीं हुआ मैं तो छोड़ूंगी ही, उसके साथ यहाँ जो भी आ रहे उन सभी को छोड़ाऊंगी, ऐसा मैंने बोला था। उन्होंने बोला कि बेशक आपको अगर अनुभव नहीं होता है तो आप दूसरों को भी सुना सकते हो। तो ये जो उनका कॉन्फिडेंट था वही मुझे ज्यादा निश्चय करने में प्रेरित किया। फिर घर में तो फिर थोड़ा चलता ही है रोना धोना, क्योंकि मोह तो रहता है। फिर मैंने उनको भी यहाँ लेके आए, यहाँ दिखाया कि भाई आपको बेटी का एक ही आशा रहता है कि भाई अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, आगे जाके सुखी रहे, और हमारे बाद में भी ये और भी सुखी रहे, यही तो इच्छा रहती है। तो मैं उनको लाके यहाँ दिखाया, देखो इतना बड़ा घर है और परमात्मा हमारा साथी है और मैं इस तरह जीना चाहती हूँ। तो फिर जब खुद मम्मी पापा ने देखा तब फिर समाज का रिश्तेदार का वो ज्यादा सुनने नहीं, फिर बाद में छुट्टी दे दिया। फिर मधुबन में भी सिर्फ 3 महीने के लिए सेवा के लिए यहाँ बुलाया गया था। फिर दादियों के पास हमें नर्सिंग सेवा की जरूरत पड़ती थी, उस टाइम तो ऐसा था हमें हिंदी ठीक तरह नहीं आती थी, फिर भी बाबा ने इतना सिखा लिया, सब अपनी सेवा में रख लिया। और जब पहली बार बाबा मिलन में आई थी तो मैं पांडव भवन में बाबा का कुटीर है, वहाँ ऐसे कहते हैं कि वहाँ जो भी संकल्प करते हैं उसको बल मिलता है या वो सफल होता है। तो मैं पहले बाबा मिलन में आई थी तो वहाँ बाबा के कुटीर में चिट्ठी डाल के गई थी कि मुझे अभी तो निश्चय हो गया, अभी मुझे मेरी सेवा शुरू हो जाएगी कि मैं आपका जो ज्ञान है वो सभी को देना है। तो मैं अगली बार जब आऊंगी तो मेरी जैसे 5 कन्याओं को रेडी करके लाऊंगी।
1: अच्छा।
2: हाँ, तो वो फिर हो गया, अगली बार मैं आई तो मैं मेरे जैसे 5 लोगों को लेके आई। और मेरे लौकिक रिश्तेदार में ही बहुत सारे ज्ञान में आए, तो उसमें से हम 8-9 बहने समर्पित हो गए हैं।
1: तो फिर आपके जीवन में प्रेरणा कौन रहे आपके लिए?
2: मुझे जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे बुक्स वगैरह पढ़ के मुझे बहुत सारे महान व्यक्तियों का ये रहा, लेकिन उसमें हमेशा मुझे ये लगता था कि ये लोग तो पुरुष है, तो स्त्री के लिए मैं आगे जाके फिर कहीं फेल ना हो जाऊं। तो कर्नाटक में एक साध्वी है अक्का महादेवी करके,
1: जी
2: हाँ, तो वो वचन वगैरह लिखते हैं जैसे पोएम छोटा, तो उन्होंने आध्यात्मिकता में बहुत अच्छा आगे

0: जैसे आप इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आए, राजयोगा मेडिटेशन सीखा ब्रह्म कुमारी संस्थान में, और आप समर्पित होने का भी संकल्प लिया एंड परिवार से सामना करके ये सब चीज़ें जब यहाँ पर आई, यहाँ पे भी तो आप आश्रम में एक नया जीवन है, आप दक्षिण भारत कर्नाटका से आए यहाँ पे वेस्ट में राजस्थान में, और हेडक्वार्टर होने के नाते यहाँ पे हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर भाषा हर कल्चर तरीके से। फिर आप यहाँ पे अपने आप को कैसे एडजस्ट किया और क्या क्या आपने अपने अंदर वो परिवर्तन देखा है इतने सालों से जब आप यहाँ पे रहना शुरू किया?
1: मुझे जो मुरलियों में आता है तूफान को तोहफा बनाने का, और आपके जीवन में जो भी एक घटना सिचुएशन आ रही है वो आपको कुछ ना कुछ सीख देके जाएगी, तो वो सीख को मैं लेने की कोशिश करती थी। जब मैं यहाँ आई थी तो हम इतना नर्सिंग में कोई एक्सपर्ट नहीं थे, थोड़ा जो एक क्लिनिक में सेवा किया था तो उतना ही एक्सपीरियंस हमारे पास था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं हर जो भी सामने बड़े सेवा देते थे उसको पहले हाँ कहती थी, और एक था कि जो ईश्वर सेवा देता है तो उसकी शक्ति भी देता है, ये मुझे बहुत काम आया कि मैं उस इसमें चली जाऊँ और कोई भी तूफान आता है तो उसको तोहफा बना के ही छोड़ूँ, तो ये मुझे बहुत काम आया। तो यहाँ आने के बाद भाषा का थोड़ा सा होता था क्योंकि हम इतना वहाँ हिंदी यूज़ नहीं करते थे, लेकिन घर में मराठी बात करते थे तो हिंदी अच्छे समझ में आ जाता था, लेकिन बात करने में थोड़ा हिचकिचाते थे। फिर बाद में वेदर का भी, यहाँ बहुत ठंडी होती है और बहुत गर्मी होती है, तो वो भी थोड़ा सा छोटी मोटी ऐसे लगता था, लेकिन ज्ञान जो है और ईश्वरीय नशा जो है वो सभी क्रॉस करने में बहुत मदद मिलता था। और हमारी नर्सिंग की सेवा यहाँ आके अभी 20 साल हुआ है, तो इतने साल में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो यज्ञ के महारथी दादियाँ हैं जो आध्यात्मिकता में अपनी बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर चुके हैं उनके साथ ही रहा हुआ है, तो उनके साथ सेवा करते हुए मुझे मेडिकली बहुत अपडेट रहना पड़ता था, बहुत सीखना पड़ता था।
0: तो जैसे मेडिकल प्रोफेशन में भी एक्सेलेंसी को प्राप्त किया और स्पिरिचुअलिटी में भी एक्सेलेंसी को प्राप्त किया, क्योंकि जो इतने श्रेष्ठ योगी उनके साथ आपने जीवन बिताया और उनके अंग संग रहे, उनके शरीर की ख्याल रखने के लिए आपकी सेवा होती थी, तो फिर उनका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ये सारी चीजें। तो ऐसा क्या चीजें हैं आप जो देखते हैं कि योगी जीवन में प्रकृति को जीतना, मतलब जैसे ये कहते हैं ना आध्यात्मिकता में कि आत्मा पुरुष है और ये शरीर प्रकृति है, पांच तत्वों का बना हुआ है, तो जिस तरीके से आपने इतने श्रेष्ठ और बड़े योगियों के साथ अपने जीवन बिताया, दादियों के साथ जिसने अपने जीवन के 70 साल 80 साल पूरा ही जीवन लगभग इस आध्यात्मिक मार्ग में अपना जीवन चलाया, तो क्या आप डिफरेंसेस देखते थे, क्या आपको सीखने को मिला है?
1: हाँ, वो बहुत डिफरेंस, क्योंकि मैं पहले वहाँ 5 साल अलौकिक हॉस्पिटल में जॉब करती थी, वहाँ के जो पेशेंट थे कुछ होता है तो उनका चिल्लाने का, उनका जो बात करने का वो सभी एकदम दुख दर्द वाला ऐसा होता था, और उनको समझा के सेवा करना भी बहुत ये होता था। यहाँ हमने देखा तो कि दादियों के पास जैसे कुछ बीमारी होती है तो हम कोई मेडिटेशन वगैरह उस टाइम नहीं कर सकते हैं, ना कोई हम शांति का अभ्यास करेंगे, ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन मना एक बुखार भी आया तो हमारा कॉन्सेंट ज्यादा शरीर में ही रहता है, एक तो 10 लोगों को बताने में
0: मुझे बुखार,
1: बुखार
0: मुझे
1: है बुखार, फिर क्या होगा, क्या खाने से क्या होगा, कौन सी लेना है, और शायद मुझे ऐसा तो नहीं होगा ना, इसी में ही हमारा ज्यादा बॉडी कॉन्सियस में ही ज्यादा रहते हैं जो पहले से भी। लेकिन दादियों का देखा, जैसे ही उनको शरीर में कोई मना चिकित्सा की जरूरत पड़े तो वो तुरंत उस शरीर से डिटैच हो जाते थे, तो हम कहते थे दादी ये ट्रीटमेंट करना है आपको, ये हुआ है, अच्छा ये करना है तो ठीक करो, मना आपके हवाले वो शरीर को सौंप देते थे, कभी ऐसे सोचते नहीं कि शायद आप मुझे गलत ट्रीटमेंट देंगे, मुझे ये क्या कर रहे हो वो क्या कर रहे, नहीं उसमें कभी नहीं है, उनको लगता था कि ये बाबा के बच्चे हैं, अच्छे थे अच्छे ही हमारे लिए कर रहे हैं, वो हमने देखा। और कभी हम सुई लगाते हैं, कैनोला लगाते हैं, तो उसमें भी जैसे अगर वो नहीं लग गया या हम कोई डर रहे हैं थोड़ा सा लगाने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी दादियों को एक ही प्रिक में लगना चाहिए, बहुत सॉफ्टली लगना चाहिए, वो बहुत ध्यान रखते थे, तो लेकिन अंदर से एक डर भी रहता था, लेकिन दादियां हमारे चेहरा देख के बता देते थे कोई बात नहीं, अब शांति से बाबा की याद में करो।

0: तो ये हाथ में नहीं लगा है, कोई बात नहीं ये हाथ में लगा दो, मतलब इतना सहज वो खुद हमें सहज करते थे बहुत। तो वो देखने को मिला। और जब उनका जो रूटीन होता है अमृत वेला, मुरली का जो हमारे आध्यात्मिक स्टडी है, और शाम को मेडिटेशन करना, दुनिया को सकाश देना, ये सभी रूटीन उनके शरीर को कुछ भी होता रहे, कितने भी प्रोसेस से गुजरता रहे, लेकिन ये रूटीन में उनका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था।
1: तो आप अपने जीवन में इसका प्रभाव कैसे देखते हैं?
0: हाँ, उससे मेरे में भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ है कि कोई एक बात होती है उसको ज्यादा समय तक ना रखे, ज्यादा से ज्यादा रात तक वो बात रहेगी, उसके बाद वो मैं निकाल देती हूँ। क्योंकि दादियों को देखा है वो कोई बात लेके सोते नहीं थे, जैसे दुनिया में भी कहते हैं कि भाई 7 घंटा सोना है, 6 घंटा डीप स्लीप है, सभी आजकल बहुत उसके ऊपर रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन मैंने जितने भी दादियों को देखा है सभी 80 above 90 above 100 तक भी पहुंचे। तो उन लोगों की नींद होती 10-11 बजे से लेके 3 बजे तक, यही उनकी नींद का टाइम होता था। उसके बाद वो उठना, स्नान करना, फिर हॉल में आना, ये सभी होता था। दिन में भी अगर टाइम मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, इस तरह। फिर भी वो लोग 100 साल तक भी पहुंचे, और बहुत अच्छी तरह से उनका जो कई होते कि मेंटली कोई ये होता है वो होता, ऐसा कुछ नहीं था। दादियों का लास्ट डे तक उनका अच्छा रहा। तो तब मुझे ऐसा लगा कि भाई वो जो रात को बाबा के कमरे में जाके अपने दिन भर की दिनचर्या सुना के, लिख के, सौंप के बाद में सोते थे, तो वो ज्यादा इफेक्ट होता था हमें डीप नींद की। तो ये उनके हेल्थ के ऊपर भी बहुत असर पड़ता था, क्योंकि जो कल रात तक उनकी ऐसी शारीरिक स्थिति रहती थी कि कल क्या होगा क्या होगा, लेकिन जैसे ही वो एक डीप नींद हो गई और अमृत वेले का जो उन्होंने मेडिटेशन किया, तो ऑटोमेटिकली उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती थी। तो वो देख के मुझे भी उस तरह का बहुत अभ्यास करने का होता है, और मैं करती थी।
1: बहुत सुंदर। तो आपने अपने जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव देखा और एक संघर्ष को देखा, कब आपको ये फील हुआ कि मुझे ऐसा ही जीना है, इसे कहते हैं जीना?
0: मैं पहले तो सुनाया कि मेरा कितना उलझनों से, कितना स्ट्रगलों से जीवन जिया है। भगवान मिलने के बाद तो मुझे प्यार ही प्यार मिला है, और जो भी कोई परीक्षा कहते हैं वो कोई मुझे परीक्षा नहीं लगता था, वो बहुत सारे इतना एक सटीक ज्ञान था। तभी तो अंदाज वाला मैं लेके घूमती थी, शायद यहाँ होगा, शायद ये राइट होगा, लेकिन भगवान का ज्ञान मुझे सत्य ज्ञान मिलने के बाद, उस महावाक्य को मुझे सेवा में यूज करना, या मुझे कोई उलझन आती है तो उसमें उसको यूज करने से मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे हमेशा एक होता था कि मेरे साथ स्वयं परमात्मा खड़ा है, तो मुझे बहुत सिक्योर फील होता था कि मैं उनको बोल सकती हूँ और उनके मत के अनुसार मैं कर सकती हूँ।
1: तो वर्तमान समय में आप क्या करते हैं?
0: मैं जैसे नर्सिंग का ही है, तो ऐसे जहाँ भी बड़ों के पास सेवा में भेजते हैं तो वहाँ जाती हूँ, लेकिन अभी यहाँ शांतिवन में एवर हेल्दी हॉस्पिटल में नर्सिंग की सेवा कर रही हूँ।
1: जी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच सुमन बहन, आज आया।
0: थैंक यू अमशन।
1: दोस्तों, ये था आज की कहानी आप सभी के सामने। आप सुन रहे थे सुमन बहन को, जो हमारी नर्स है एवर हेल्दी हॉस्पिटल में ब्रह्म कुमारीज में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। हम विदाई लेते हैं आप सभी से, जीना इसी के नाम से।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। थोड़ा सा जगदीश भाई साहब के बारे में भी हम जानेंगे। आज दीदी उर्मिला जी हमारे मध्य हैं। आप एक लेखिका हैं, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं और इसके साथ साथ आप एक चिंतक हैं और आप एक साधक तो है ही हैं, और आपने अनेक जीवन को मार्गदर्शन दिया है परिवर्तन करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को, एक लाइफ कोच भी आप हैं। तो आइए दीदी का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सेवा का मौका दिया मुझे
0: जी। दीदी, आज के गाने की ओर जाने से पहले, जैसे आज हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जगदीश भाई साहब को याद कर रहे हैं आज के दिन, उनके विषय में थोड़ा सा कहिए।
1: जगदीश भाई जी ब्रह्मा कुमारी के चीफ स्पोक्समैन थे। हमारी उस समय 3 मैगजीन थी, हिंदी के ज्ञानामृत, इंग्लिश की प्योरिटी और वर्ल्ड रिन्यूअल, तीनों के ही चीफ एडिटर थे
0: जी।
1: बाल्यकाल से ही उनको भगवान से बहुत अधिक प्रेम था। उनका जन्म मुल्तान शहर में हुआ था, कॉलेज के अच्छे पढ़ाकू स्टूडेंट्स में थे और उस समय कुछ कुछ सोशल एक्टिविटीज में पढ़ते पढ़ते भी भाग लेते थे, क्योंकि आतम भाई के जो बड़े भाई लक्ष्मण भाई थे वो उनके साथ उसी कॉलेज में पढ़ते थे, तो उनके बारे में उन्होंने कई बातें आंखों देखी बताई हैं। और वो कराची गए थे, उन्हें कुछ इंट्यूशन हुआ था कि भगवान धरती पे आया है और वो कराची में आया है, लेकिन जब वो कराची में उन्हें ढूंढने गए तब तक ये पूरा कारमा माउंट आबू में शिफ्ट हो चुका था। लोगों ने उन्हें बताया था कि हाँ, यहाँ कुछ सफेद कपड़े वाले लोग रहते थे, लेकिन एक तो माइनॉरिटी थी और एक बाहर की पब्लिक रिलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, तो लोग कोई बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण नहीं दे पाए थे। उसके बाद पार्टीशन के बाद वो भी दिल्ली में आ गए। दिल्ली के पास ही सोनीपत है, वहाँ पे एक हॉस्टल था जिसमें वो हॉस्टल के वार्डन भी थे और लेक्चरर भी थे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कई भाषाओं के वो बहुत ही ज्ञाता थे और जितने भी भारतीय शास्त्र हैं वो सब उन्होंने पढ़े थे
0: जी।
1: तो उनको वास्तव में ये परिचय ऐसे मिला कि दिल्ली में एक थियोसोफिकल सोसाइटी थी, उसने ब्रह्मा कुमारी बहनों को भाषण के लिए इन्वाइट किया था। उस समय 52 में एक छोटी सी जगह बनी थी जहाँ पे कुछ बहनें रहती थी और जानकी दादी और एक दो बहनें उस थियोसोफिकल सोसाइटी में भाषण करने गई थी। ये भी वो भाषण सुनने के लिए बैठे हुए थे
0: जी।
1: और जब उन्होंने इनका भाषण सुना तो इनको लगा कि हाँ, यहाँ मुझे कुछ मिल सकता है, तो ये बहनों के पीछे पीछे सेंटर पे गई और बहनों ने इन्हें अगले दिन आने का समय दिया। तो सोनीपत से दिल्ली जाना ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात थी। सोनीपत से सुबह सुबह एक ट्रेन निकलती थी, उसमें जाना और कोर्स करके वापस अपनी ड्यूटी पे भी पहुंचना। उस समय ट्रेनें इतनी ज्यादा नहीं चलती थी और फिर स्टेशन से पैदल आश्रम तक जाना, लेकिन इन्होंने ये सब कुछ किया। एक बार का अनुभव है कि थोड़े से लेट हो गए तो आखिरी का जो गार्ड का डब्बा होता उसमें चढ़ गए। गार्ड ने सोचा कि ये यंग लड़का शायद सोनीपत से भाग के दिल्ली में फिल्म देखने जा रहा है
0: जी।
1: तो उसको रोका, उसने कहा मैं फिल्म नहीं देखने जा रहा हूँ, आज निराकार भगवान धरती पे आके ब्रह्मा के मुख से जो बोल के गए हैं वो महावाक्य मुझे सुनने, पता नहीं उन्होंने क्या बोल दिया होगा और मैं वंचित रह जाऊँ। तो गार्ड को भी दया आ गई, उसको बैठने दिया, उसको सीट दी और फिर वो सीधे सेंटर पे गए, वहाँ से फटाफट सुन करके फिर सोनीपत अपनी ड्यूटी पे आए। तो इस तरह से शुरू का लाइफ बहुत ही संघर्ष का रहा, फिर इन्होंने अपने कार्य से रिजाइन कर दिया। ये कुछ अपने कॉलेज की जो मैगजीन थी उसमें लिखते थे, उसके एडिटर थे, उससे भी रिजाइन कर दिया। बाद में जब इनसे आर्टिकल मांगा गया तो इन्होंने कहा कि ये हाथ अब भगवान के लिए समर्पित हो चुके हैं, इसलिए अब ये किसी और के लिए कुछ भी नहीं लिख सकते। शुरू में दिल्ली की जो हमारी ब्रांच थी वो बहुत छोटी थी और उस ब्रांच में एक दो कमरे ही थे, गुलजार दादी रहती थी, बाकी दादियां रहती थी। ये तो उस हॉल में बैठते थे जहाँ पे क्लास होती थी, सारा दिन बैठे बैठे लिखते थे और जब इनका मन करता था कि मैं पाँव लंबे करूं तो पाँव कैसे लंबे करूं, यहाँ तो देवियां रहती, जिन देवियों की हम पूजा करते हैं पांव लंबे करें तो उनका डिस्ट्रिगार्ड हो जाए, बहनों का बोझाधारी गार्ड था। और इन्होंने अपनी अलमारी ऐसी बनाई थी जो फ्रूट की पेटी होती है
0: जी,
1: वो पेटी के ऊपर पेटी रख करके वो अलमारी बन गई। वो रफ पेटियां नहीं होती फ्रूट की, अमरूद की, सेब की, वो लकड़ी की आती है। हाँ, तो उनमें अपनी किताबें रखते थे। गर्मी के दिन होते थे, बहनों को बहुत गर्मी लगती थी, एसी नहीं, कूलर नहीं, शायद पंखा रहा होगा, तो बहुत दूर एक बर्फ की फैक्ट्री थी, वहां से सिर पे बर्फ की सिल्ली रख के लेके आते थे ताकि बहने ठंडा पानी पी सके
0: जी।
1: तो बाबा ने भी कहा था कि ये बच्चा बेगरी पार्ट में समर्पित हुआ तो इस बच्चे की तो महिमा परम अपार है। कई बार बाबा कहते थे ये मेरे से भी आगे है। और होता क्या था कि बाबा कहते थे कि बच्ची शिवरात्रि आ रही है तो तुमको ये वाली बुक छपवानी है। अब बुक छपवाने के केवल दो दिन है, उसमें वो बुक तैयार करनी, उसकी रीडिंग करनी, फाइनल करना, बाबा को दिखानी, उसमें समय चला जाता था। एक दिन बचता था उसमें वो दिल्ली की प्रेस में जाते थे कि मेरी ये बुक छपो अर्जेंट है, तो वो दिल्ली वाले कहते थे जगदीश भाई अर्जेंट तो कभी कभी होता है, आप तो जो भी काम लेके आते हो कहते हो अर्जेंट है। वो कहते थे मैं क्या करूं, ऊपर वाले का काम है, मेरी कोई वश की बात नहीं है। और उन दिनों साइकिल नहीं, स्कूटर नहीं, तो कृष्णा जहाँ वो रहते थे शक्ति नगर, वहां से पैदल प्रेस में जाते थे। कोई भोजन का टिफिन नहीं, जेब में भुगड़े होते थे, बाहर कोई पेड़ है उसके नीचे बैठ के भुगड़े खा लिए, पानी पी लिया, और जब तक वो छपेगा नहीं तब तक वापस नहीं आएंगे क्योंकि बीच में कोई मिस्टेक है तो इतनी दूर से फिर करेक्शन करना, तो वो पूरी छपाई करा के और फिर सिर पे ही रख करके वापस लेके आते थे
0: जी।
1: तो आत्म भाई कहते हैं कि जगदीश भाई चलते थे और हम उनके पीछे दौड़ते थे
0: जी।
1: क्योंकि लंबी टांगे थी और चाल बहुत तेज थी, तो बहुत मेहनत की शुरू में, और फिर आते ही लिटरेचर पैक कराना, सेंटरों पे भेजना। अगर कोई बांधेली बहन है तो उस बहन के लिए सारे प्रबंध करना, बांधेली माता है, कई लोगों ने कई बार इनकी पिटाई करने कोशिश की, बहुत कुछ हुआ, कितनी सैकड़ों बार ये मरते मरते बचा, लेकिन ये बाबा के कार्य से कभी भी पीछे नहीं हटा। बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है तो पूरा टाइम उसी में चला जाए
0: जी, तो फिर कभी सुनेंगे। और आज जिस गाने के बारे में हम बात करने जा रहे हैं तो वो गाना है ये सफ़र, और ये फिल्म 1942 ए लव स्टोरी से है, लिरिक जावेद अख्तर साहब और शिवाजी चट्टोपाध्याय जी इसमें परफॉर्म उन्होंने किया है। तो आइए सीधा हम चलते हैं उन लाइनों की ओर, दीदी से पूछते हैं। दीदी कहते हैं कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, तो आप इस लाइंस को कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे?
1: असल में ना उम्मीदी की लाइन है लेकिन इनमें भी उम्मीद छिपी हुई है। वो राइटर कहता है कि गम की शाम लंबी है मगर शाम ही तो है
0: जी,
1: क्योंकि शाम के बाद सवेरा तो आना ही है, तो हो ही नहीं सकता कि शाम हमेशा चलती रहे, आज तक नहीं चली। और ना उम्मीद नहीं है दिल, नाकाम ही तो है। मान लीजिए हम किसी काम में नाकाम हो गए
0: जी,
1: नाकामी बड़ी बात नहीं है, नाकामी तो सबको मिलती है, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए
0: जी।
1: जैसे किसी व्यक्ति का एक बहुत बड़ा मकान था, दुकान थी, तो वो शहर में गया और पीछे से शॉर्ट सर्किट हुआ, मकान भी जल गया, दुकान भी जल गई, वापस लौटा तो वहाँ राख का ढेर मिला जहाँ सुबह मकान दुकान थी। बहुत सारे लोग आए उसे सहानुभूति देने, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तेरा सब कुछ जल गया, तो उसको अच्छा नहीं लगा कि लोग मुझे सहानुभूति दें। उसने एक कलाकार को कहा कि एक सुंदर सा बोर्ड बनाओ, बोर्ड पे क्या लिखूं, तो उसने कहा इस पे लिखो कि होम इज बर्नड, शॉप इज बर्नड, बट होप इज नॉट बर्नड। तो असल में जो उम्मीद है
0: जी,
1: जो हमारी होप है, वो नहीं जलनी चाहिए, बाकी सब कुछ जल जाए नो प्रॉब्लम, क्योंकि उम्मीद के सहारे हम दोबारा खड़े हो सकते हैं। मैं जब भूकंप आया था गुजरात में 2001 में
0: जी,
1: तो जो राहत शिविर लगे थे भुज में, कच्छ में, वो एरिया ज्यादा अफेक्टेड था, वहां पे गई थी तो हमने देखा कि एक तंबू में तंबू के लगा दिए थे गवर्नमेंट ने, घर तो बिल्कुल जमीन दोज हो गए थे, 10-10 मंजिली, 5-5 मंजिली बिल्डिंग, वहां पे मलबे का ढेर पड़ा था
0: जी।
1: तो वो जो तंबू लगाए थे जिनको हम शिविर बोलते हैं टेम्परेरी, वो कपड़े का ऐसा होता है स्लोप वाला, और उसके अंदर ऐसे झुक के जाना होता है, पूरे के पूरे परिवार उसके अंदर, वहीं पे थोड़ा बहुत खाना बनाती हैं, वहीं पे रहती हैं जब तक कि उनके लिए कोई प्रबंध हो। तो मैं एक फैमिली से मिली, उनका जवान बेटा चला गया था
0: जी,
1: बहू थी और बहू के दो बच्चे और बूढ़ा ससुर, चार लोग थे उस तंबू में। तो मैंने उनको पूछा कि आपका घर चला गया और अभी पता नहीं बनने में कितना समय लगेगा। तो उसने बहुत सुंदर बात कही, उसने कहा बहन जी हम तो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं, समुद्र की एक झाल आती है हमारा घर ले जाती है और समुद्र की दूसरी झाल आती है तब तक हमारा नया घर बन जाता है। तो आप जब अगली बार आओगे ना तो हमें बहुत सुंदर मकान में देखोगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तंबू में रहते हुए भी इनके चेहरे पे खुशहाली है, मायूसी नहीं है, जवान लड़का चला गया फिर भी होप बाकी है। और सचमुच मैं अगले साल उस एरिया में फिर गई, मेरा कोई प्रोग्राम था तो मुझे उन बहनों ने कहा कि देखो यहाँ आपने मलबे का ढेर देखा था ना, अब आप देखो यहाँ कितने सुंदर मकान बन गए। बल्कि पहली जो सिटी बनी थी वो हाफ हजार्ड थी, अनप्लैंड थी, कोई घर इधर है, गली टेढ़ी है, भिड़ी गली है, चौड़ी गली है। अब ये मकान, अब ये शहर प्लैंड रीति से बना है तो आप देखो गलियां चौड़ी चौड़ी है, सब एक सीध में मकान, तो सब कुछ एक साल के अंदर फिर बन गया। इसलिए दुनिया में नाकामयाबी है लेकिन कभी भी होप खोनी नहीं चाहिए
0: जी। लेकिन कई बार देखा जाता है कि बार बार नाकाम होते हैं लोग तो वो उम्मीद छोड़ देते हैं और पूछते हैं कि कब तक उम्मीद रखें।
1: देखिए उम्मीद की कोई डेट नहीं होती है, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि उम्मीद रखो जी जाएगा। पहले उसको आईसीयू में ले जाते हैं, वेंटिलेटर पे रखते हैं, आखिरी तक उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, छोड़ नहीं देते। जीवन भी ऐसे ही है, इसकी ट्रीटमेंट आखिरी तक करनी चाहिए। वो एक बहुत पुरानी स्टोरी हमने बचपन में सुनी थी कि एक राजा युद्ध हार गया था, जंगल में उदास बैठा था तो उसने वहाँ जंगल में ही देखा कि एक स्पाइडर, एक मकड़ी
0: जी,
1: और वहाँ कोई पुराना खंडर का मकान है तो उस खंडर में दीवार पे चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है। 16 बार चढ़ी, 16 बार गिरी और 17वीं बार चढ़ गई। तो राजा ने उस स्पाइडर से प्रेरणा ली कि कोई बात नहीं, मैं भी युद्ध हार गया, फिर से अपनी सेना इकट्ठी करूंगा और फिर से अभियान चलाऊंगा, मैं भी जीतूंगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, अगर ये 16वीं बार जीत सकती है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता, ये तो छोटा सा जीव है, तो मैं तो एक मानव हूँ, सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ, मैं भी जीत सकता। तो उसको ताकत मिली और उसने अपना अभियान चलाया और वो जीत गया
0: जी। जी, चाहे वो आपकी संस्कारों के क्षेत्र में हो, चाहे स्थूल में हो,
1: चाहे वो आपका किसी ने राज्य जीत लिया, चाहे आप कोई नौकरी चाहते हैं उसमें फेल हो रही हैं बार बार, चाहे आप अपनी किसी बुराई को जीतना चाहते हैं वो बुराई फिर अड़के खड़ी हो जाती है, आपको जीतने नहीं देती है, लेकिन जीत आपकी ही होगी क्योंकि बुराई में कोई जान नहीं होती है, आप में तो जान है, आप तो जीवित हैं, आपके पास तो एक विल पावर, बुराई में कोई विल पावर नहीं होती है। और चाहे वो आपका बिजनेस सेटअप नहीं हो रहा है, चाहे आपकी कोई जमीन है वो आपको अच्छी उपज नहीं दे रही है, चाहे आपका कोई और सपना है कोई भी किसी भी प्रकार का, तो किसी भी क्षेत्र का हो, आप अपने सपने को बनाए रखिए। लेकिन कहते हैं सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वही होते हैं जो जागृत आंखों से देखे जाते हैं। तो जागृत आंखों से आपने जो भी सपना देखा है वो केवल सपना नहीं, उसको प्रैक्टिकल धरातल पे उतारने के लिए मेहनत भी कीजिए
0: जी।
1: ऐसे नहीं विजुअलाइज कर रहे हैं हाँ मैं विदेश चला गया, मैं पढ़ गया, मुझे बड़ी सी डिग्री मिल गई, मैं वापस आ गया, केवल सपना नहीं, प्रैक्टिकल में आपको उसको साकार करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। सपना वो नहीं जो आपको सुला दे, सपना वो जो आपकी नींद फिटा दे
0: जी। बिल्कुल, तो इस तरीके से आप सपने देखें और अपने संस्कार अगर परिवर्तन नहीं भी हो रहे तो अलग अलग तरीके से ट्राई करिए, सहन शक्ति हो या फिर कोई भी प्रकार से शक्ति या वैल्यूज को आप अपनाना चाहते हैं, और जितने कहा कि उम्मीद रखना है तो अंत तक कोशिश करना है। तो आइए इस गाने को सुनते हैं हम, और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप हमें 9414151415 पर मैसेज करके बता सकते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। दीदी उर्मिला जी आज हमारे मध्य हैं, ज्ञानामृत पत्रिका के संपादिका हैं आप और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, तो उनसे आप सवाल कर सकते हैं, जरूर आपको जवाब मिलेगा। आइए लेते हैं यहाँ पर ब्रेक।

0: अरे क्या बात है मैडम, आज तो आपकी चाल ही बदल गई है।
1: क्यों ना हो, त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फर्क महसूस कीजिए।
0: त्रिशूल हवाई चप्पल मजबूत, आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें
0: 9414152250
1: या लॉग ऑन करें www.trishulfootwear.in। त्रिशूल हवाई चप्पल, पैरों में मखमल।
2: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। और हम आज बात कर रहे हैं, ये सफर बहुत है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। और हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हैं दीदी उर्मिला जी। दीदी आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है।
3: थैंक यू
2: जी। दीदी जैसे हम गाना सुन रहे थे तो इसमें कठिन सफर के बारे में बात हो रही थी और लेकिन उदास नहीं होने के लिए यहाँ गीतकार कह रहे हैं, तो आपसे पूछना चाहेंगे कि गम की जो शाम होता है, यहाँ पे कहा गया है लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, लेकिन वो जो शाम है वो बहुत कठिन लगता है और जो उस शाम में गुजारा करता है उस शाम को देखता है ना वही महसूस कर पाता है शायद। तो क्या इस दुनिया में दर्द बांटने वाला कोई है जो हमें बिना जज किए दर्द बांटता हो, सुनता हो हमारी कहानी?
3: देखिए ये दुनिया गम से भरी पड़ी है
2: जी।
3: पहले तो व्यक्ति का जो अपना जीवन है वो भी गम से भरा पड़ा है। कहीं गरीबी है, कहीं बीमारी है, कुछ भी है। और फिर सामाजिक जीवन में भी बहुत गम है
2: जी।
3: कई तरह की लोक लाज, कई तरह की कुरीतियाँ, कई तरह की रीति रस्में व्यक्ति को जकड़ के रखती हैं
2: जी।
3: कोई भी क्षेत्र लीजिए, राजनीतिक क्षेत्र ले लीजिए, समाज सेवा का क्षेत्र ले लीजिए, हर एक में व्यक्ति के सामने गम आता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो गम है वो व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। जो गम है, दुख है, कष्ट की घड़ियां है वो उसको समझदार बनाती हैं, अनुभवी बनाती हैं और जिंदगी को सही दृष्टिकोण से देखने का तरीका सिखाती हैं। जैसे एक अभियान शकुंतलम नाम का नाटक है, कालिदास का लिखा हुआ है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। तो दुष्यंत जब शकुंतला के आश्रम पे यानी के कण्व ऋषि के आश्रम पे जाता है तो वहाँ फूलों को देखता है, लताओं को देखता है, पेड़ों को देखता है। तो वो कहता है कि मेरे बगीचे में भी फूल है, लताएं, लेकिन वो मालियों के द्वारा सुरक्षित, इसलिए उनमें ना तो इतनी खुशबू और ना इतनी ब्यूटी है
2: जी।
3: और ये जो अपने आप उग रही हैं और अपने आप बढ़ रही
2: है
3: इनमें एक नेचुरल खुशबू और नेचुरल ब्यूटी है। तो ये आंधी तूफान धूप सब कुछ सहन करती हैं, लेकिन जो मेरे बगीचे में है वो तो आंधी तूफान और उनसे बची हुई है। तो देखने में ये आता है कि जो प्रकृति के संरक्षण में पलता है वो व्यक्ति ज्यादा अनुभवी और समझदार बनता है। वैसे भी हम देखते हैं कि जितने भी महान लोग हुए, आप भारत या विदेश के महान लोगों की अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो उनमें से अधिकतर का बचपन अभावों में या कठिनाइयों में गुजरा है। कोई गिनती के लोग हैं, जैसे कोई महात्मा बुद्ध है, चलो राजकुमार था, महावीर जैन बचपन में राजकुमार था, कुछ गिनती के लोग हैं। अदरवाइज तो कष्टों को सहन करते हुए वो लोग बड़े हुए और फिर उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया
2: जी।
3: जो लोग, जो गमला छाया में रखा जाता है वो ज्यादा वृद्धि को नहीं पाता। तो एक तो हम ये बात सोच लें कि जो कष्ट आया है वो हमें कुछ देने आया है। एक कहावत है कि चेंज योर चैलेंजेज इनटू अपॉर्चुनिटीज। वो लोग अपनी चुनौतियों को ही अपनी एक तरह से अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं, अपने लिए सु अवसर बना लेते हैं। तो अब देखिए भारत की आजादी का संघर्ष कितना कड़ा था
2: जी।
3: कितने लोगों ने कष्ट सहे, मारे खाई, अपना धन दौलत लुटाया, जेलों में रहे, कई लोग तो जेलों में ही मर गए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनको क्या मिला, उनको बहुत कुछ मिला
2: जी।
3: एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जो देश पे शहीद हो गए अगले जन्म में वो देश में फिर आएंगे और फिर से वो देश में कोई ऊंचा स्टेटस प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनका किया हुआ त्याग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आत्मा अविनाशी है
2: जी।
3: अविनाशी आत्मा को इस जन्म में अगर नहीं मिल पाया, छोटा जीवन था, तो अगले जन्म में मिलेगा। और अगर किसी ने धोखे से इस जन्म में अधिक ले भी लिया तो अगले जन्म में उसका माइनस हो जाए। इसलिए एक तो हम गम से डरे नहीं। अब दूसरा प्रश्न ये है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें जज किए बिना हमें अपनापन दे दे? तो दो ही ऐसे लोग हैं जो हमें जज नहीं करते हैं, अनकंडीशनल लव देने वाले, एक परमात्मा और एक प्रकृति। और आज हम देखते हैं कि व्यक्ति का इन दोनों से कनेक्शन कट है, ना तो वो परमात्मा के लिए समय निकालता और ना वो प्रकृति के सानिध्य में जाता है। इसलिए उसे कोई राहत दे, कोई सोलेस दे, कोई उसके गम को बटाए, वो चीज नहीं हो पा रही है। क्योंकि ले दे के वो फिर मनुष्य के पास जाके खड़ा होता है कि भाई तू मेरा गम बटा ले, तू मुझे सहयोग दे दे। लेकिन मनुष्य से तो उसने धोखा खा ही लिया ना, एक से धोखा खाया फिर दूसरे के बाजू में जाके खड़ा हो गया, वो भी मनुष्य है। वो प्रकृति के सानिध्य में जाए। आप प्रकृति को देखिए, आप पेड़ को देखिए, नदी को देखिए, हवा को देखिए, निरंतर दे रही है हमें, इनसे हम कुछ ना कुछ सीखे। पेड़ का जन्म होता है, पेड़ को देखो, उसका जो घेरा है वो कितना होगा? वो छोटा घेरा है, इतने उसने जमीन घेर रखी है। घेरा मतलब इतनी जमीन घेर रखी और ज्यादा जगह वो लेता नहीं है, या तो ऊपर फैलता है और या फिर जमीन के नीचे फैलता है। किसी व्यक्ति को परेशानी पैदा नहीं करता कि भाई वो बहुत सारी जगह घेर ले। अब वो जब ऊपर फैलता है तो उसके पत्ते भी सेवा करते, डाली भी सेवा करते, उसका फल भी सेवा करता है, फूल भी सेवा करता है, और सबसे अधिक वो ऑक्सीजन देता है।
2: जी,
3: देता ही देता है। अंत में जब वो गिरता है तो भी किसी ना किसी का चूल्हा जलाता है या किसी की छत बनवा देता है, लेकिन उसका एक अंग भी व्यर्थ नहीं। तो इसलिए मनुष्य को प्रकृति से सीखना चाहिए, मनुष्य को परमात्मा का भी सानिध्य करना चाहिए। परमात्मा गुप्त है लेकिन सबके सुनता है, और वो किसी को देता है कहते हैं उसकी लाठी की आवाज नहीं होती, और किसी को देता है तो शोर मचा के नहीं देता, बिना शोर मचाए गुप चुप उसकी अंतरात्मा में ऐसा कुछ भर देता है कि उस व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देता है। इसलिए इन दोनों से जुड़िए।
2: तो दोनों से जुड़ने की क्या माध्यम है?
3: प्रकृति तो देखिए हमारे चारों ओर है ही। आप कुछ समय निकालिए, बगीचे में जाके बैठिए, खेतों में जाके बैठिए, नदी किनारे जाके बैठिए, नदी नहीं है तो तालाब के किनारे जाके बैठिए और वहां चिंतन कीजिए। एक एक चीज को ध्यान से देखिए कि ये जो जल है इसमें क्या क्या खूबियां हैं, ये सबको जीवन देता है। और जल जो है वो कितना हम कहेंगे कि निष्पक्ष है। आप वो जल एक गरीब की झोपड़ी पे भी गिरता है, राजा के महल पे भी गिरता है।
2: जी,
3: और उसमें कितनी एडजस्टिंग पावर है, कटोरी में डालो कटोरी जैसा, नली में डालो नली जैसा, बोतल में डालो बोतल जैसा। कभी ये नहीं कहता कि नहीं जी ये छोटी जगह मैं नहीं समा सकता, ये बड़ी जगह मैं नहीं समा सकता, हर जगह एडजस्ट हो जाता है।
2: जी,
3: तो व्यक्ति को पानी को देख देख के कितने गुण सीखने चाहिए। इधर से नल में से पानी निकालो, इधर से निकालो, ऊपर से तल उसका समतल मिले, झगड़ा नहीं है कि नहीं इधर से तू चला गया मैं ऊंचा, इधर वाला ऊंचा हो जाए, टिल्ला बन जाए, इधर से खिसक गया, नहीं वो फिर एक समान। तो कहते हैं वैसे भी जल से पतला क्या, तो जल में बहुत गुण है। प्रकृति की हर चीज को देखिए, आप धरती को देखिए, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, और कटु वचन संत सहे, और से सहे न जाए। धरती को कितना भी खोद लो सहन कर लेती है, पेड़ों को कितना भी काट लो फिर नए पत्ते दे देती है, फिर से नया सब कुछ हो जाता है। और कड़वे वचन केवल संत व्यक्ति सहन कर सकता है, सबसे सहन नहीं होती है। तो जब आप इनके नजदीक बैठोगे आप में सेंट की क्वालिटी जाएगी, ये अपने आप में सेंट, पेड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा संत है।
2: जी बिल्कुल,
3: तपस्वी है।
2: जी, इसलिए बड़े बड़े जो तपस्वी हैं उनको पीपल के पेड़ के नीचे और पेड़ के नीचे बैठ के साधना करते हुए दिखाते हैं। जी, और परमात्मा से कैसे जुड़े?
3: परमात्मा इन आंखों से तो दिखने वाली चीज सत्ता है नहीं, क्योंकि ये आंखें वास्तव में परमात्मा को देखने के लिए बनी ही नहीं। ये भौतिक आंखें भौतिक जगत को देख पाती है, परमात्मा को हमें देखने के लिए चाहिए तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र, जिसे हम प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, और जिसे हम अलौकिक नेत्र कहते हैं, बुद्धि का नेत्र कहते हैं, मन का नेत्र भी कहते हैं। तो वो तो हमारे पास है ही, उस मन के नेत्र से तो देखो हम क्या क्या देख लेते हैं। यहाँ बैठे अमेरिका को देख सकते हैं, लंदन को देख सकते हैं, बैठे आबू रोड में दिल्ली को देख सकते हैं
2: जी।
3: तो ऐसे नहीं कि कोई नेट से देख सकते। मान लीजिए हमारा कोई मित्र बॉम्बे में रहता है तो हमारी मन की आंख वहां पहुंच जाती है
2: जी,
3: नेट के बिना ही। तो भगवान भी हमारा परम मित्र है, पर वो रहता कहाँ है? हम हमेशा उंगली का इशारा ऊपर की तरफ करते हैं, ऊपर वाला जाए
2: जी।
3: तो इस दुनिया से पार एक बहुत सुंदर दुनिया है, लाल सुनहरे काश की, वहां वो परम सत्ता है जिसको हम कहते हैं डिवाइन लाइट, माइट, यूनिक लाइट, जिसे हम कहते हैं शाश्वत सत्ता, परम सत्ता, दिव्य सत्ता, अलौकिक सत्ता, सनातन सत्ता, कई नाम है उसके
2: जी।
3: तो वो एक प्रकाश रूप में वहां पे मौजूद है। तो हम अपने मन को वहां ले जा सकते हैं, उसे बातें कर सकते हैं बहुत मीठी मीठी कि प्रभु मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे आपसे बहुत प्रेम है, जो आपके गुण है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप कितने निष्पक्ष हैं, कितने दयालु हैं, आप सब कुछ करते हैं फिर भी अपने आप को छिपा के रखते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ मैं आप जैसा बनूं, क्योंकि आपकी क्वालिटीज मेरे जीवन में आएंगी तो मैं ताकतवर बन जाऊंगा
2: जी।
3: जितने गुण और क्वालिटीज आएंगे उतने हम ताकतवर बनेंगे, गुण और क्वालिटीज नहीं होंगे तो हम कमजोर बनेंगे
2: जी।
3: तो ताकतवर व्यक्ति ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है, गम की रात को एक खेल की तरह से बिता सकता है। मुसीबतों से खेलते हम जैसे खेलते खिलौने, तो हमें मुसीबतें भी ऐसे ही लगती हैं जैसे हम खिलौने से खेल रहे हैं
2: जी।
3: हमारे में ताकत, तो वो ताकत परमात्मा की याद से मिलती है, और उसका जो अनकंडीशनल लव है तो वो भी हमें ताकत देता है
2: जी।
3: क्योंकि कोई हमें जज नहीं कर रहा, तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तुमने ये गलती कर दी, तुमने ये कर दी, वो कहता तुम जो हो जैसे हो मेरे हो
2: जी,
3: आई एक्सेप्ट, और मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। जैसे एक माँ लंगड़े बच्चे को भी प्यार करती है, अंधे बच्चे को भी प्यार करती है, अगर कोई बॉडी और डिफेक्ट है उसको भी प्यार करती है, जज थोड़े करती है कि नहीं तुम अंधे हो तुम काम के नहीं हो, तुम लंगड़े हो तुम काम के नहीं, बल्कि और ज्यादा प्रेम देती है। तो परमात्मा पिता भी हम बच्चे अगर कहीं किसी चीज में कम है तो हमें अधिक प्रेम दे करके उस कमी को पूरा करते हैं, इसलिए वो प्रेम के सागर कहे जाते हैं। आप किसी मनुष्य को प्रेम का सागर नहीं कह सकते
2: जी। बिल्कुल, तो परमात्मा से जरूर जुड़े, और दीदी ने जैसे कहा कि असीमित शक्तियाँ प्राप्त करेंगे तो गम के अंधेरे को भी आप पार कर सकते हैं, और प्रकृति में वो हीलिंग पावर है, प्रकृति से बहुत कुछ सीखने का है, तो आप प्रकृति से भी जुड़ सकते हैं, और ये दोनों ही केवल हमारे दर्द बांट सकते हैं। दीदी कहते हैं कि भगवान के घर जो है वो देर है लेकिन अंधेर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है कि ये सितम की रात है ढलने को, है अंधेरा गम का पिघलने को, जरा देर इसमें लगे अगर ना उदास हो मेरे हम सफर। तो इसलिए कहा गया है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, लेकिन कई बार पूरी जिंदगी कट जाती है लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिलता। क्या कोई तरीका है गम में भी खुशी से जिया जाए, जैसे आपने कहा कि
3: हम तो कहते हैं कि
2: जरूरी है।
3: भगवान के घर में ना देर है और ना अंधेर है,
2: दोनों ही नहीं,
3: दोनों ही नहीं है
2: जी।
3: होता क्या है कि हमारा धैर्य बहुत छोटा है, अपने धैर्य को अगर हम बढ़ाएं
2: जी
3: तो हमें लगेगा कि हमारा काम चुटकियों में हो गया। जब हम कोई भी बीज बोते हैं तो उसके लिए धैर्य तो रखना पड़ता है, आज बीज बोया और सुबह हमें फल मिल जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं। मान लीजिए हमने एक अच्छा कर्म किया है तो उस कर्म को फलीभूत होने में कुछ तो समय लगेगा ना, तुरंत तो नहीं हो जाएगा ना, उसके लिए परिस्थितियां बनती है, वातावरण बनता है, उसके लिए अनुकूल लोग चाहिए, तब हमें उस कर्म का रिवार्ड मिलता है। अभी आजकल देखिए ना, हमारी जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने पद्म पुरस्कार लोगों को बांटी है
2: जी,
3: तो क्या वो पुरस्कार एक दिन के प्रयास से मिले कि उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी और अब अंत में वो जब 80-90 साल की हो गई तब उन्हें पद्म पुरस्कार के लिए बुलाया गया है
2: जी,
3: और उन्होंने वो पद्म पुरस्कार की कामना भी नहीं की थी
2: जी,
3: वो तो अपना काम किए जा रहे थे किए जा रहे थे। इसलिए हम ये ना सोचें कि मैंने इतना किया तो मुझे इसका फल कब मिलेगा, असल में अच्छा कर्म ही अपने आप में फल, क्योंकि जब हम एक अच्छा कर्म करते हैं तो हमें तुरंत खुशी की प्राप्ति होती है, हमारा वही पद्म पुरस्कार सबसे पहला पुरस्कार तो वो है, बाद में अगर हमें कोई रिकॉग्नाइज करता और हमें पुरस्कार देता है तो चलो वो सेकेंडरी बात, मिले ना मिले, मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, लेकिन हम जो कर रहे हैं। करते वक्त जो इंद्रिय सुख मिलता है, करते वक्त जो आत्मा को संतुष्टि मिलती है, भीतर से जो आत्मा गुनगुनाती है कि मैंने एक अच्छा कर्म किया, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है, ये भीतर से जो आवाज निकलती है वही हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार। और अच्छे काम करने वाले को अच्छा फल भी मिलता है और बुरे को बुरे का फल भी मिलता है। शेक्सपियर ने एक बहुत अच्छा नाटक लिखा है, वीनस का सौदागर, द मर्चेंट ऑफ वीनस। वीनस एक नगरी का नाम है और उसका एक सौदागर है। तो उसमें दो पात्र दिखाई हैं, एक का नाम है एंटोनियो, एक का नाम है शाइलाक।
2: जी,
3: तो जो एंटोनियो है वो बहुत अच्छा है व्यक्ति है, और जो शाइलाक है वो ऐसा व्यक्ति है कि लोगों को कर्ज देता है, पैसे उसके पास बहुत है, और जब लोग उसका कर्जा टाइम पे नहीं चुकाते तो किसी की जमीन ले लेता है, किसी का घर ले लेता है और गरीब लोगों को बहुत सताता है।
2: जी,
3: तो इधर एंटोनियो कहता है तुम मुझसे मत लो कर्ज, मेरे से ले लो, मैं कम ब्याज पे कर्ज दूंगा और टाइम पे नहीं चुका पाओगे तो भी मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। तो शाइलाक इससे जलता है कि इसने मेरा धंधा ही बिगाड़ दिया, ये बीच में कहां से आ गया। तो एक बार क्या होता है कि एंटोनियो का एक दोस्त बेसिनियो, उसको कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, वो कहता है भाई मुझे कुछ तो पैसे उधार दे दे। वो कहता है इस टाइम तो मेरा सारा पैसा बिजनेस में लग गया है, हाथ में कुछ भी नहीं है, तो मैं शाइलाक से उधार लेके तुमको दे देता हूँ। कहता हूँ बहुत खराब आदमी, उधार मत लो। कहता नहीं, तुम्हारी जरूरत जरूर पूरी करूंगा मैं। तो शाइलाक के पास जाता है, वो सोचता अच्छी मछली फंसी।
2: जी,
3: तो कितना पैसा चाहिए? वो पैसा उसको जितनी जरूरत है दे देता है। अच्छा, कितना ब्याज लोगे? कहता है देखो मुझे ब्याज ब्याज की कोई आवश्यकता नहीं है। कहता नहीं, फिर भी ब्याज तो लेना ही चाहिए, तुम इतना उधार दे रहे हो। बोला ठीक है, अगर तुम टाइम पे नहीं चुका पाओगे तो मैं तुम्हारे शरीर से एक पाउंड मांस ले लूंगा, बस बाकी मुझे कोई ब्याज नहीं चाहिए।
2: जी,
3: तो एंटोनियो कहता कोई बात नहीं है, ले लेना, लेकिन ये पैसा तो मुझे चाहिए क्योंकि मेरे दोस्त की मुझे मदद करनी है। तो वो पैसे लेके चला जाता है और उसके बहुत सारे जहाज विदेश में गए हुए।
2: जी,
3: और वो जहाज लौटने ही वाले हैं कि अचानक उसको खबर मिलती है सारे जहाज डूब गए। अब देखो अच्छे आदमी के साथ, कहते हैं ना अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है, अब अच्छे के साथ ही बुरा हुआ, उसके ही सारे जहाज डूबे। और जैसे ही शाइलाक को ये समाचार मिलता है वो बहुत खुश हो जाता है कि अच्छा हुआ जहाज डूब गए, अब ये टाइम पे पैसे नहीं लौट आएगा और मैं इसका मांस काटूंगा, ये मर जाएगा।
2: जी,
3: मर जाएगा तो फिर मेरा धंधा अच्छे से चलेगा। तो निश्चित दिन आ जाता है, वो पैसे मांगता है, पैसे वो दे नहीं पाता है।
2: जी,
3: और वो तैयार हो जाता है, बहुत लोग आते हैं गांव के शहर के उसको समझाने, तो इतना क्रूर काम मत कर। कहते हैं नहीं देखो मैंने जो शर्त लगाई है मैं वो पूरी करूंगा, कुछ भी हो जाए।
2: जी,
3: तो वो लोग कचहरी में पहुंच जाते हैं और जज के सामने ही वो फैसला होता है। उस जमाने में इसी तरह से बातें होती थी, इधर एंटोनियो खड़ा, इधर चाकू लेकर के शाइलाक खड़ा हुआ।
2: जी,
3: और जैसे ही वो उसका मांस काटने के लिए एकदम उसके नजदीक पहुंचता है, इतनी देर में दो लोग आते हैं, काला कोट पहने एक जज और उसके साथ एक कलर।
2: जी,
3: और वो कहते ठहरो, तो वो रुक जाता है। वो कहता है ठीक है, इस मामले में अभी एक दलील बाकी है। जज कहता है मैं आया हूँ वो दलील देने, मुझे भी पता पड़ा कि यह मुकदमा चल रहा है। तो वो कहता है कि देखो तुमने लिखा हुआ है कि मैं इसके शरीर से एक पौंड मांस काट लूंगा।
2: जी,
3: लेकिन मांस काटो आपको छुट्टी है, पर खून का एक कतरा भी नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि खून गिरेगा।
2: जी,
3: अगर खून गिरा तो फिर देखो हम आपको कड़ी सजा देंगे।
2: जी,
3: और आपकी पूरी संपत्ति हम हड़प कर लेंगे। तो चलो काटो काटो। अब वो पीछे हटता है, कहता नहीं मैं नहीं काटूंगा। उसको कहते नहीं काटो मांस काटो, तो वो कहता नहीं मुझे माफ कर दो, मैं नहीं काट सकता, क्योंकि मांस कटने से पहले ही खून निकल आएगा और पहले वो पकड़ा जाएगा।
2: जी,
3: तो फिर उससे वायदा कराते हैं कि तू गरीबों के साथ अन्याय करना बंद कर, ये सब करना बंद कर। तो असल में वो जो जज आई थी वो थी फीमेल, वो उसका जो दोस्त बसिनियो था उसकी पत्नी थी।
2: जी,
3: और वही अपनी एक फ्रेंड को लेकर के और वेश बदल करके और कोर्ट में हाजिर हुई थी। उसको जब पता पड़ा कि मुकदमा ऐसे ऐसे चल रहा है, तो बुराई कितना भी जोर लगा ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन उसको हारना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार का ये जो रंगमंच है, ये जो ड्रामा है, ये न्यायकारी है, कल्याणकारी है और बिल्कुल एक्यूरेट है। ये सुखांत है, दुखांत नहीं है। इसमें कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि फाइनल जीत बुराई की होगी, किसी भी प्लॉट या बाई प्लॉट, बड़ी स्टोरी या छोटी स्टोरी या मेन स्टोरी, कहीं भी बुराई जीत नहीं सकती। हाँ, जो अच्छाई है उसको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा, वो राइट बात है, लेकिन अंतिम जीत अच्छाई की होगी, अंतिम जीत सच्चाई की होगी, ये फाइनल।
2: जी बिल्कुल, तो अंतिम जीत सच्चाई की होगी, ये उम्मीद के साथ हम हर विघ्न को पार कर सकते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कुछ लाइंस इस प्रकार से हैं कि नहीं रहने वाली है मुश्किलें, कि है अगले मोड़ पे मंजिल है, मेरी बात का तू यकीन कर, ना उदास हो मेरे हम सफ़र। जिसे आपने वो एग्जांपल दी उससे भी ये हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये अगले मोड़ पर ही मंजिल हमें मिल रहा है, ये एहसास कैसे हो सकता है?
3: एक्चुअली जब व्यक्ति हिम्मत से पांव उठाता है ना
2: जी,
3: तो उसको ऊंचाई भी लिफ्ट लगती है
2: जी,
3: और जब वो बिना हिम्मत के पांव उठाता है तो उसे लिफ्ट में बैठना भी पहाड़ चढ़ना लगता है
2: जी।
3: सारी कहानी हिम्मत की है, हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा। तो आप अपनी हिम्मत को ना छोड़ें, कुछ भी हो जाए। हिम्मतवान व्यक्ति को लगता है कि बस अभी आया कि आया, बस अभी आया कि आया, मेरा जो मकसद है वो पूरा हुआ कि हुआ, ये हिम्मतवान को लगता है। हिम्मत जिसमें नहीं होती उसको लगता है कितनी देर हो गई चलते, कितनी देर हो गई मेहनत करते, कितनी देर हो गई पुरुषार्थ करते, अभी तो कुछ मिला ही नहीं। और अगर उसे कुछ मिल भी जाएगा तो उसका बहुत अच्छा सदुपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई प्लानिंग नहीं, उसको केवल चीज को अचीव करने की हबस है
2: जी,
3: उसका सदुपयोग करने की प्लानिंग नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति हिम्मत से बढ़ रहा है वो साथ साथ प्लानिंग भी करता जाता है कि मुझे वो अचीव होगी तो मैं उसको किस तरह से अच्छे कार्य में लगाऊंगा या किस तरह से सबके कल्याण में लगाऊंगा। तो इसलिए अगले मोड़ पे ही मंजिल है, आपका हर कदम आप यही समझो कि मंजिल को ही प्राप्त कर रहा है, आप उसे खाली वार मत समझो, आपके हर वार में कोई ना कोई अचीवमेंट अचीवमेंट मान के चली। मंजिल वो नहीं होती जो फाइनल मिलती है, रास्ते में आपको जो कुछ मिला वो भी मंजिल के हिस्से, तो उनको भी आप मंजिल के हिस्से की तरह स्वीकार कीजिए।
2: जी बिल्कुल, और कहते हैं कि कभी ढूंढ लेगा ये कारवां वो नई जमीन है आसमां, जिसे ढूंढती है तेरी नजर, ना उदास हो मेरे हम सफर।
3: नई जमीन और नया आसमां
2: जी,
3: हम सब चाहते हैं, हमारा भी एक कारवां है
2: जी,
3: हम भी चल रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमें नई जमीन मिले, नया आसमान मिले। असल में जमीन तो यही रहेगी, क्योंकि और कोई जमीन है ही नहीं, आसमान तो यही रहेगा, लेकिन जब हमारे विचार नए बन जाते तो हमें सब कुछ नया लगता है। इसलिए हम अपने विचारों में नयापन लाएं, विचारों में नवीनता लाएं। विचारों में नवीनता का अर्थ क्या है, जैसे किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो आपका पास्ट है उस पास्ट को जब आप याद करो तो इस तरह से याद करो कि मैं अपने पास्ट से बहुत संतुष्ट हूँ
2: जी,
3: और पास्ट की झोली में से कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई पॉजिटिविटी उठा लो
2: जी।
3: पास्ट की झोली में तो एक लंबा पीरियड है, बहुत कुछ पड़ा है उसकी झोली में, आपको वो सब नहीं देखना है, आपको उसमें से केवल पॉजिटिविटी, केवल प्रेरणाएं और केवल ऑप्टिमिज्म वाली बातें उठानी
2: जी
3: पास्ट, और फिर आपको कहना है कि मेरा पास्ट बहुत अच्छा था, बहुत गुड था। तो पास्ट को मुस्कुरा के पास कीजिए
2: जी।
3: अब दूसरा है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट तो वास्तव में है ही एक गिफ्ट, प्रेजेंट गिफ्ट को भी कहते हैं ना, तो प्रेजेंट एक गिफ्ट है, इसको गिफ्ट मानो। जो मोमेंट मेरे हाथ में है ये मेरे लिए गिफ्ट, मैं इसका मैक्सिमम सदुपयोग करूं
2: जी,
3: अपने लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए, इसको यूं ही गवा ना दूं, सो करके, खा करके, सोना खाना ये सब गवाना है
2: जी,
3: इसका सदुपयोग करूं। और तीसरा है फ्यूचर, तो जिसका पास्ट मुस्कुरा हट देता है, जिसका प्रेजेंट गिफ्ट के रूप में है, उसका फ्यूचर बेटर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि फ्यूचर का महल वर्तमान की नींव पे खड़ा होता है
2: जी,
3: और अगर हमारी वर्तमान की नींव सॉलिड मजबूत है तो फ्यूचर का महल बहुत सुनहरा बनेगा ही बनेगा
2: जी।
3: आप प्रेजेंट को सफल कीजिए, फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा
2: जी। तो जब जब भी मान लीजिए कोई परिस्थिति आए तो हमारी लाइफ में मुश्किलों को पार करने के लिए क्या अफर्मेशंस होना चाहिए, पॉजिटिव विचार होनी चाहिए?
3: हमको यही सोचना है कि ये एक मेरी परीक्षा है, मुझे अगली क्लास में ले जाएगी, ये एक तूफान है जो मुझे तोहफा देगा, और ये जो समस्या आई है ये कोई नया समाधान देकर के जाएगी और मुझे अनुभवी बनाएगी
2: जी।
3: मैं इससे कुछ ना कुछ सीखूंगा, और जब वो समस्या चली जाए उसके बाद आप एक कॉपी पेन लेकर के लिखो कि इस समस्या ने आपको क्या क्या दिया, तो आप पाएंगे कि उसने आपको बहुत कुछ सिखा है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया और आपने उस धोखे को सहन कर लिया, आपका नुकसान हो गया 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, अब आपने धोखे को सहन कर लिया और आपने अपने मन को मायूस नहीं होने दिया, कोई बात नहीं है, चलो 50,000 का नुकसान हो गया, अब कोई ऐसा भी मौका आएगा कि मुझे 50,000 का फायदा भी हो जाएगा, हानि लाभ तो चलता ही रहता है, लेकिन उस धोखे से क्या फायदा हुआ? नंबर एक, आप आदमी को परखना सीखे
2: जी।
3: नंबर दो, आप आदमी पे तुरंत आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे तो वो जो अंधविश्वास उसके प्रति आप जागरूक हो गए। नंबर तीन, परिस्थिति को सहन करने की आप में ताकत बढ़ी। और नंबर चार, आपने अपनी आशावादिता नहीं खोई, आप में ऑप्टिमिज्म बढ़ा कि कोई बात नहीं है, धोखा हो गया तो कभी ना कभी मेरे साथ मुझे प्रॉफिट भी हो जाएगा, संसार में सब कुछ चलता है, आंधी तूफान भी आता है उसके बाद शांति भी हो जाती है, तो कितने सारे फायदे हो गए
2: जी।
3: हर तूफान आपको कुछ ना कुछ तोहफा दे के जाता है
2: जी। तो हर तूफान कोई ना कोई तोहफा दे करके जाता है, वो क्या तोहफा मिला वो आप चिंतन करें, उसके बारे में सोच विचार करके आगे बढ़ते रहिए। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं, और यहाँ पर हमारे सुभाष भाई इन्होंने मैसेज किया है, उनको ये कार्यक्रम अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला दीदी को भी उन्होंने नमस्ते और ओम शांति कहा है, और भ्राता जगदीश जी के बारे में जो उन्होंने सुना उनको भी अच्छा लगा। तो यहीं पर हम रुकना चाहेंगे, दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत।
2: तो दोस्तों अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूँ आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। और हमराही प्रोग्राम के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग एक तो इतना पसंद करते हैं और जो इसका मेन उद्देश्य है वो भी आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। और ये आप सब जानती हैं कि हम इसमें कपल्स के साथ बात करते हैं, खासकर ऐसे लोगों के साथ जिनमें से कोई एक या फिर दोनों किसी न किसी शारीरिक समस्या को झेल रहे हों, लेकिन बावजूद इसके वो अपना जीवन बहुत ही जज्बे के साथ, जुनून के साथ और हौसले के साथ जी रहे हों। तो आज ऐसे ही मेहमान मुझे मिल गए तो फिर हम हाजिर हो गए प्रोग्राम लेकर के। अच्छा, आज की कहानी थोड़ी सी अलग इसलिए है क्योंकि देखिए, कभी कभी दोस्तों कई लोगों में हमें कॉन्फिडेंस जो है वो ढूंढना पड़ता है, कई लोगों में कॉन्फिडेंस जगाना पड़ता है, लेकिन महज एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए ऐसा बहुत कम होता है। तो हमारे आज के जो मेहमान है वो मुझे कुछ इस तरह ही मिले। मैंने व्हाट्सएप पर एक मैसेज देखा जिसमें जो महिला है वो लिख रही थी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ ब्लाइंड हैं और हम लोग हमारे दोस्तों को इंश्योरेंस में मदद करते हैं, इसके अलावा हम पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर में काम भी करते हैं और अपनी एक कंपनी भी रन करते हैं। तो ये चीज पढ़ करके मुझे अपने आप में, मतलब आप लोगों को हो सकता है प्रोग्राम सुन करके मोटिवेशन मिलता हो, लेकिन इतना मैसेज, ये चार लाइनें पढ़ करके मुझे अपने आप में बहुत मोटिवेशन मिला। तो मुझे लगा भाई इनको तो फिर जरूर इनवाइट करना चाहिए अगर ये तैयार होंगे तो। हमारे आज के मेहमान तैयार हुए और फिर प्रोग्राम हाजिर है। चलिए, तो भूमिका हो गई बहुत सारी, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संभवतः पहली बार उस राज्य से जहां पर आने वाले कुछ समय में इलेक्शन भी होने वाले हैं। कई बार वहां की राजनीति बड़ी चर्चाओं में भी रहती है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की और वहां का एक बहुत ही सिटी ऑफ जॉय जिसको कहते हैं कोलकाता, वहां से ही आज के हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। तो स्वागत करिए मेघा जी और पीयूष जी का, पीयूष रखेजा और मेघा रखेजा, वेलकम आप दोनों का।
1: हाय संदीप, थैंक यू सो मच। आपके इतने सारे शब्दों सुन के हम लोग तो बस एकदम खुशी इतनी मिल रही थी कि आपने इतना हमारी तारीफ करी, एंड थैंक यू सो मच हमें शो पे इनवाइट करने के लिए।
2: थैंक यू सो मच संदीप जी, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। बिल्कुल, हम भी बहुत एक्साइटेड है इस शो को करने के लिए, बिकॉज ये हमारा साथ में पहला ऐसा चीज़ है। ऐसे अलग अलग हम काफ़ी सारे सेशंस में बोलते हैं और कई लोग हमें इनवाइट करते हैं बोलने के लिए, बट साथ में हम ये पहली बार ही कर रहे हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ये हम लोगों के लिए भी एक तरह से अचीवमेंट है कि आप दोनों को हम साथ लेकर के आए। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये क्रेडिट जाता है उस मैसेज को जिसका मैंने जिक्र किया। अब वो मुझे नहीं पता पीयूष जी ने लिखा मेघा जी ने लिखा, लेकिन उसमें नाम और नंबर तो मेघा जी का ही था।
1: नहीं तो फिर मैं ये बोलूंगी कि मैसेज का क्रेडिट भी मैं ही ले लेती हूँ, मैंने लिखा था।
0: पता नहीं, अभी तो बाद में आप दोनों को डिसाइड करना, लेकिन हाँ डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा मेघा जी। आमतौर पर ऐसा बहुत कम देखने में आता है, लेकिन आप लोग जो सोसाइटी को देना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, ये देख करके बहुत खुशी हुई। लेकिन चलिए इस पर तो हम आएंगे, पहले शुरू करते हैं कि आप लोगों की जर्नी कहाँ से शुरू हुई। मेघा जी बताएं जरा अपने बारे में, क्या यादें हैं जुड़ी हुई हैं अपनी लाइफ के साथ।
1: सो ओरिजिनली मैं दिल्ली से हूँ एंड शादी के बाद ही मैं कोलकाता शिफ्ट हुई। तो मेरी काफी मेमोरीज है दिल्ली से लेके, लाइफ से लेके, इस विजुअल इम्पेयरमेंट से लेके, जो आई थिंक सबके साथ होती है। कुछ अच्छी मेमोरीज हैं, कुछ बुरी मेमोरीज हैं, एंड आई थिंक हम सबके स्ट्रगल्स रहे हैं। वी ऑल फॉट कि हम लोग को सारी सुविधाएं मिले, तो वही मेरा भी जर्नी रहा है पूरा। एंड एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है कि दिल्ली से हूँ और हम दोनों भी दिल्ली में ही मिले, तो
0: अच्छा।
1: हाँ बिल्कुल, दिल वालों की दिल्ली बन गई।
0: दिल्ली में ही दिल मिले दोनों के।
1: यस टोटली।
0: तो थोड़ा सा बताइए, मतलब अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और आपकी ब्लाइंडनेस के बारे में, कैसे क्या हुआ और एजुकेशन क्या क्या रही आपकी, और अभी क्या कर रहे हैं आजकल आप।
1: Sure. So, I come from a business family, and मम्मी पापा दोनों ही वर्किंग है, और आई हैव एन एल्डर सिस्टर, तो वो अभी उनकी शादी हो गई और वो यूएस में सेटल्ड है. तो बाकी उनसे मैं बहुत बहुत क्लोज हूँ, एंड जब ऑब्वियसली वो शिफ्ट हुई तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल था, बट वी आर स्टिल कनेक्टेड. बाकी अगर मैं अपनी आई कंडीशन की बात करूँ, सो आई हैव मैक्यूलर डिजेनरेशन एंड रेटिना पिगमेंटेशन, एंड ये सिंस बर्थ है, बट मेरे को ऑफिशियली डायग्नोज हुआ जब मैं 9 ईयर्स की थी. एंड
0: अच्छा
1: या एंड ये एक्चुअली हुआ भी ऐसे कि जब मैं 3 साल की थी ना, उस टाइम पे मेरी मम्मी को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने मेरे को चेक भी कराया था, और एक डॉक्टर ने बोला भी था कि इनको शायद एमडी है. लेकिन जब सेकेंड थर्ड ओपिनियन लिया तो सबने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनको कुछ गलत लगा होगा. तो मम्मी पापा ने भी छोड़ दिया, कोई भी बुरी न्यूज़ तो सुनना नहीं चाहता, राइट? आपको अच्छी न्यूज ही ज्यादा समझ
0: एग्जैक्टली
1: आती है, राइट? तो फिर उस टाइम कुछ ध्यान नहीं दिया, एंड आई वॉज इन अ मेन स्ट्रीम स्कूल. फिर हर साल ना हमारे एनुअल चेकअप्स होते थे, तो उसमें आई चेकअप भी होता था, और वो मुझे सबसे डरावना लगता था क्योंकि हमारी वो टीचर इतनी स्कैरी थी, और मेडिकल रूम के होती आई गेस. एंड मैं जब पढ़ नहीं पाती थी ना, तो बड़ी खतरनाक वे से दिखती भी थी कि अरे ऐसे
0: एंड उनको पता भी
1: कैसे.
0: नहीं होता ना कि अगर बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है या मतलब थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है,
1: राइट.
0: तो उसके साथ ट्रीट कैसे करें उनको, कई बार ये भी मुझे लगता है कि
1: हाँ,
0: नॉलेज नहीं होता.
1: ये भी लगता है ना, आई थिंक उनको कभी कभी ये भी लगता है कि बच्चा ऐसे मस्ती तो नहीं कर रहा, जान पूछ के तंग करने के लिए. बट तो यही सिलसिला चला, और हर साल मेरा नंबर बस बढ़ जाता था, चश्मे मोटे होते रहते थे. तो जब मैं 9 ईयर्स की थी, तब मम्मी ने कहा नहीं ये तो नॉर्मल नहीं है, कुछ तो है ही. तो जिनसे पहले जिनने डिटेक्ट किया था ना जब मैं 3 साल की थी, उनको ही वापस दिखाया, तो उनने फाइनली ऑफिशियली बोला कि नहीं इनको है. फिर हम शंकर नेत्रालय और ये सब गए, और कंफर्मेशन मिल गई कि मुझे आई कंडीशन है. तो तब हम लोग का वहां से शुरू हुआ, बट मैंने फिर भी अपनी पूरी एजुकेशन मेन स्ट्रीम स्कूल से ही की, सेम स्कूल से. एंड तकलीफें बहुत रही, क्योंकि एज आप जैसे आपने कहा, रही टीचर्स को समझ में नहीं आता एक्चुअली कैसे संभाले, क्योंकि पूरे स्कूल में मैं ही एक विजुअली इम्पेयर्ड किड थी. तो उनको भी थोड़ा सा जानने को मिला, कुछ टीचर्स बहुत सपोर्टिव भी मिली, कुछ बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थी.
0: नहीं थी.
1: बट धीरे धीरे करके वही एक्स्ट्रा टाइम, बड़ा फॉन्ट, बट ये सब मेरा मेनली विद टाइम डिटोरिएट हुआ. तो बोर्ड्स में जाते जाते मेरे को ये सब चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, पहले इतना
0: अच्छा.
1: दिक्कत था नहीं. एंड लकीली मेरे फ्रेंड्स हमेशा स्कूल में बहुत अच्छे रहे, तो मुझे उन लोगों से बहुत सपोर्ट मिला. उनकी नोट्स मिले, उनकी नोटबुक से ही मैं कॉपी करती थी, क्योंकि ब्लैक बोर्ड तो बहुत पहले ही दिखना बंद हो गया था. एंड ये मेरे लिए अच्छा था कि मैं हमेशा बहुत सोशल और बहुत आउटगोइंग थी, तो फ्रेंड्स बनाना बहुत ईजी था. एंड मैं स्पोर्ट्स वगैरह में भी इंटरेस्टेड थी, बट वही धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें थोड़ी छूट गई.
0: टूट गई.
1: राइट. एंड देन बस फिर 12th में था कि जब मेरी काफ़ी विजन चली गई, तो बोर्ड्स के टाइम मेरी मम्मी मेरे साथ बैठ के मेरी बुक्स पढ़ती थी, और मैं वैसे लर्न करके मैंने किया. क्योंकि इतना अवेयरनेस था नहीं, तो मुझे पता नहीं था कि ऑडियो सॉफ्टवेयर और ये सब अवेलेबल है. और उस टाइम उसके बाद कॉलेज वगैरह जैसे गई, तो मेरी सिस्टर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया.
0: अच्छा.
1: हाँ, मेरी सिस्टर ही मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई. वो मेरी मतलब वो मेरी ज्यादा मदर जैसी थी, क्योंकि मम्मा तो वर्किंग थी, तो
0: वर्किंग थी
1: उसने
0: राइट.
1: मेरा राइट तो उसने मेरा बहुत ध्यान रखा, एंड बहुत कॉन्फिडेंस भी दिया. जब कुछ चीज़ ऑडियो बुक, मेरे को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था हमेशा से, तो जैसे वो ढूंढी कि ऑडियो बुक्स भी होती हैं, मेरे को डाउनलोड करके दी, क्लासेस पे लेके जाती थी. तो दिस इज हाउ मेरा स्कूलिंग खत्म हुआ. फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं LSR साइकोलॉजी ऑनर्स में गई. अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट नहीं हो पाया, मुझे 1 ईयर में ड्रॉप आउट करना पड़ा.
0: अच्छा.
1: राइट. इसी वजह से, क्योंकि टीचर सपोर्ट थे, काफी नेगेटिविटी थी. और फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता नहीं था, उसके बाद में मुझे पता चला कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे हम पढ़ सकते हैं.
0: ये जब आपने साइकोलॉजी में एडमिशन लिया, ये कब की बात रही होगी?
1: 2010 की.
0: 2010 की. बताइए, मतलब स्कूल में आपको फिर भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, लेकिन जहां हायर लेवल पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए, वहीं पे प्रॉब्लम हो गई.
1: बिल्कुल. एंड बल्कि जहाँ बच्चे ज्यादा मच्योर भी हों, क्योंकि देखो स्कूल
0: बहुत
1: में कितने
0: छोटे
1: छोटे छोटे होते हैं, फिर भी
0: होते हैं.
1: सबने इतना सपोर्ट किया. और बड़ी एज में जाके आई थिंक लोग अपनी लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दूसरों का सपोर्ट भूल जाते हैं आई थिंक कहीं ना कहीं
0: एग्जैक्टली
1: जाके। तो वहाँ पे रहा, तो उसके बाद मेरा थोड़ा ऐसा फेज आया कि मतलब मैं कोपा भी कर रही थी कि कैसे क्या कर सकती हूँ। तो वो कुछ 5-6 साल मेरे ऐसे गए, बट उसमें मैंने क्रिएटिव चीज़ें बहुत की क्योंकि मुझे हमेशा बहुत इंटरेस्ट था। मैंने बेकिंग सीखी, बेकिंग मैंने प्रोफेशनली घर से करी भी,
0: अरे
1: राइट
0: वाह,
1: मैं काफ़ी सेल किया, ब्राउनीज एंड एवरीथिंग वाज माय फोर्टे, बहुत मज़े आते थे मुझे।
0: समय आप लो विजन थे या टोटल ब्लाइंडनेस हो गई थी एकदम आपको?
1: ऑलमोस्ट टोटल ब्लाइंडनेस, मतलब आई थिंक मुश्किल से 5% विजन बची होगी उस टाइम पे। तो उधर उस टाइम मेरे कजन ने मेरे को बड़ा अच्छा एक चीज लेके दिया था, तब वो आजकल वो आती है ना इंग्रेडिएंट स्केल टॉकिंग वाली डिजिटल, तो उस टाइम इंडिया में अवेलेबल नहीं थी बट वो बाहर रहते थे, तो उनको कहीं मिली तो वो मेरे लिए इंडिया लेकर आए थे। तो तब वहां से
0: क्या
1: मेरा शुरू हुआ और मेरे को इतना आसान हो गया ना सब कुछ करना।
0: बात है।
1: तो दैट वेज मैं लकी रही हूँ कि मेरा फैमिली सपोर्ट, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली हो इमीजिएट, सब लोग बहुत ही मतलब कभी ऐसे फील नहीं होने दिया कि ऐसा कुछ है जो मैं नहीं कर सकती या मुझे नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमेशा पुश किया टू डू मोर।
0: बेसिकली वो 5 से 5 6 साल आप एजुकेशन में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन
1: नहीं, क्रिएटिव
0: आपका
1: फील्ड्स
0: क्रिएटिविटी
1: में
0: आपकी पूरी तरह से चालू थी।
1: राइट, मैं डांस भी सीखा, पियानो सीखा, मैंने और काफी कुछ किया होगा, मुझे ऐसे याद भी नहीं आ रहा क्योंकि उस टाइम मेरा काफी एफ, मैं यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था
0: हाँ, तब पता
1: कुछ।
0: नहीं था ना कि ऐसे किसी दिन इंटरव्यू में भी बताना पड़ेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बट हाँ, लकीली बस इसके आगे छोटा ही है कि लकीली बस 2019 में जाके सोचा नहीं करना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट, ऐसे लाइफ नहीं चल सकती, आगे कुछ हासिल करना जरूरी है। तो मैंने बस सोचा, वापस ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, खत्म किया, फिर एक विजन एड करके एक वो है एनजीओ, वहां से मैंने अपना डिजिटल एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग कोर्स कंप्लीट किया। एंड देन आई वाज वर्किंग एज एन एक्सेसिबिलिटी टेस्टर विथ अ प्राइवेट कंपनी इन बैंगलोर फॉर 3 इयर्स, और उसके साथ साथ मैं काफी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी किए। और एज आई सेड, क्रिएटिव हमेशा मेरे अंदर में ही रहता है, तो और कुछ ऑडियो स्टोरीज के लिए अपनी वॉइस और वॉइस ओवर लैंड किया, कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, मैराथन किया, और काफी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज का काफी शौक है। लकीली हम दोनों को, सो पीयूष और मैं जब मिले तो हमारा आई थिंक बॉन्डिंग फैक्टर यही था, सबसे पहले हमारी
0: बात,
1: बात ही एडवेंचर एक्टिविटीज के ऊपर शुरू
0: क्या बात है।
1: हुई थी।
0: नहीं खैर, आपके मिलने पर तो हम आएंगे, और
1: राइट
0: मेन वही काम करना है हमको, प्रोग्राम में भी आप दोनों को मिलाना है। लेकिन पहले पहले जो हमारी ऑडियंस है उनको आप दोनों से अलग अलग मिलवाना है, फिर आप दोनों को साथ साथ मिलवाना है।
1: राइट यस। तो आई थिंक
0: तो
1: लास्ट, आई थिंक आपने एक बस ये चीज पूछी थी कि अभी करंटली क्या कर रही हो, राइट?
0: हाँ जी,
1: तो एज आपने जैसे मैसेज पढ़ के बोला कि अब मैं इंश्योरेंस संभाल रही हूँ, ये तो आप पीयूष से वैसे पूछेंगे एंड वो बताएगा, बट उसका खुद का फाइनेंशियल
0: ठीक से कर रहे हो कि
1: सपोर्ट
0: नहीं कर
1: ये तो हाँ पूछना बनता
0: हो? आगे ऐसे ही मैसेज भेज दिया सोशल मीडिया पे, पता चला।
1: नहीं, एक्चुअली फाइनेंस फील्ड से ऐसे ही जुड़ी मैं इन्हीं के वजह से। सो ही हैज इज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, तो व्हेन जब हमारी शादी हुई तो ये इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करते हैं, बट ही आल्सो हैज अ लिटिल बिट ऑफ इंश्योरेंस क्लाइंट्स, एंड
0: अच्छा।
1: हमारे काफ़ी सारे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स थे एंड सबको बहुत दिक्कत आती है, हमें खुद को बहुत दिक्कत आई टू गेट इंश्योरेंस। तब हम
0: ओ, काम
1: दोनों ने सोचा कि हमें इस पे काम करना चाहिए,
0: करना चाहिए। बहुत सही।
1: तो वहीं से मेरा शुरू हुआ। एंड मैं फुली डेडिकेटेड हूँ टू द इंश्योरेंस वर्टिकल, एंड मेन स्ट्रीम के तो हम ऑब्वियसली करते ही हैं, बट विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हम ब्रेक थ्रूज करने की कोशिश कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस में, कि उनको जितने लोगों को दिला सके विदाउट एनी प्रॉब्लम्स तो वो हम कर सकें। तो उसी से रिलेटेड वो मैसेज था।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उस मैसेज की वजह से मैं आप दोनों को बुला पाया। क्या
1: यस
0: बात है। और अभी कुछ आपको है आईसाइट या नहीं? अभी टोटल लॉस?
1: ऑलमोस्ट टोटल लॉस है, मे बी 1% होगी, बट वो भी जैसे एकदम सब्जेक्टिव है, जैसे सनलाइट वगैरह या अंधेरे में तो बिल्कुल भी नहीं दिखता,
0: ओके ओके
1: थोड़ी
0: ओके ओके
1: बहुत लाइट हो तो थोड़ा बहुत ऐसे सब पता है कहाँ है तो थोड़ा बहुत दिख जाता है ऐसे बस।
0: चलिए, अब मुझे लगता है काफी बातें हो गई आपके साथ, लेकिन पीयूष जी
1: यस
0: कहेंगे भाई हम भी तो हैं यहाँ पर। पीयूष जी,
2: हाँ जी
0: अब हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को जरा आप अपने बारे में बताएं बॉस।
2: हाँ संदीप जी, तो मेरा डायग्नोसिस हुआ था जब मैं 4 साल का था। सिमिलर स्टोरी है घर में, जैसे मैं घड़ी जब जब हम देखते हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं, मतलब वो पेरेंट्स का वो रहता है कि एज अ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको टाइम देखना सिखाए, तो पेरेंट्स बार बार मम्मी पूछती थी कि टाइम देख कर बताओ, तो बहुत पास से तो मैं देख के बताया था, थोड़ा सा भी अगर मेरे को मेरा वॉल हैंगिंग जो क्लॉक था उससे थोड़ा सा डिस्टेंस होता था तो मैं नहीं बता पाता था टाइम। तो
0: जी
2: उनको थोड़ा डाउट होने लगा, फिर डॉक्टर कई डॉक्टर्स से हम मिले, टेस्टिंग वगैरह कराया, तो 4 साल में मेरी डायग्नोसिस हुई मैक्यूलर डिजेनरेशन, पहली डायग्नोसिस थी उस समय। और
0: अच्छा
2: उसके बाद मतलब लो विजन था, मैं ब्लाइंड ब्लाइंड तो नहीं था उस समय, लो विजन था, तो मैं फर्स्ट रो से ब्लैक बोर्ड भी मुझे दिखता था। इनिशियली तो मैंने फर्स्ट रो से ब्लैक बोर्ड दे के वैसे मैनेज किया, फिर ग्रेजुअली वो ट्रांजिशन फेज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि ग्रेजुअली क्या
0: अच्छा
2: होता है ना, जब आपका साइट, आपको नहीं पता एवरी 3 मंथ्स 6 मंथ्स में आपका साइट धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो उसमें क्या होता है आपको भी नहीं समझ आ रहा है आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पास जितने सारे बच्चे हैं आप भी उस समय इमेच्योर, जितने बच्चे हैं वो आराम से काम कर पा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, आपको क्यों नहीं दिख रहा बोर्ड। कहीं ना कहीं आई साइट, वो तो पता है कि नेचुरली आई साइट वीक के कारण, अब हमें पता है कि चलो ठीक है उसके कारण हो रहा था, बट कहीं ना कहीं अपने अपना कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मेरा बहुत खराब हो गया, बहुत कम हो गया कि मुझे मुझे नहीं दिख रहा, आई थिंक मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है।
0: प्रॉब्लम है, राइट।
2: तो और टीचर्स ने भी कभी मतलब आई थिंक काउंसलिंग स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स की भी जरूरत होनी चाहिए, और ये मैंने उस
0: एग्जैक्टली
2: समय, हाँ उस समय रियलाइज किया। पर और जैसे मेघा का है, मेघा को स्कूल में स्पेशली इनिशियली मुझे इसको बहुत सपोर्ट मिला, मेरा इनिशियल फेज बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, टिल सिक्स
0: अच्छा
2: स्टैंडर्ड मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि बच्चे भी इमेच्योर होते हैं, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं कि अगर आप ये नहीं देख पा रहे हो, तो उनको भी नहीं पता क्यों हो रहा है, उनको लग रहा है कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, बेसिकली उनको ऐसा लग रहा है वो, मतलब तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट था सिक्स स्टैंडर्ड तक। फिर इनफैक्ट एक मेरे को इंसिडेंट याद आता है, स्कूल का नाम तो मैं नहीं लूंगा बट स्कूल का एक इंसिडेंट मैं बता सकता हूँ। तो एक इंसिडेंट ऐसा था कि मेरी पेरेंट को बुलाया गया, मेरी मम्मी को बुलाया गया कि एक बार आप आओ और देखो आपका बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है क्लास में, तो आप एक बार आओ। तो मेरी मम्मी गई और उन्होंने कोशिश किया टीचर को समझाने का कि देखिए ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहता, इसके आंखों में आंखों की रोशनी कम है, ये नहीं कोप अप कर रहा पा रहा मे बी, तो इसको दूसरी तरीके से थोड़ा कराना पड़ेगा। तो वो बोले दूसरी तरीका का कुछ होता ही नहीं है, सेम एक ही तरह होता है काम करने का, दूसरा तरह नहीं होता है। तो फिर टीचर ऐसा था कि होता है ना, मतलब पेरेंट और टीचर आमने सामने बैठे हैं टेबल के अक्रॉस, ठीक है, वो बोलते बोलते मम्मी समझाने की कोशिश करे, टीचर उठ के चली गई पेरेंट के सामने, मतलब
0: बताइए,
2: कितनी
0: हद है,
2: कितनी
0: मतलब
2: इंसल्टिंग बात है ये, मतलब पेरेंट के
0: बताइए,
2: लिए।
0: मतलब कोई, हाँ, मदर बैठी हुई हैं और आपको एटलीस्ट कम से कम चलो कुछ कर नहीं पाओ तो उनकी बात तो सुन लो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, वो एकदम उस समय फिर मम्मी को भी समझ में आ गया कि शायद ये स्कूल मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने 7th स्टैंडर्ड में मेरा स्कूल चेंज कराया। और वो बोलते हैं कि लाइफ में टर्निंग पॉइंट, मम्मी ने बहुत लड़ के कैलकटा के सबसे एक्सपेंसिव स्कूल में, जब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थी फाइनेंशियली, बट कैलकटा के सबसे एक्सपेंसिव स्कूल में सुन के लोगों से कि नहीं ये स्कूल अलग तरीके से काम करता है, हर बच्चों को समझाना। और वहाँ पे एक और चीज़ मदर ने नोटिस किया कि यहाँ टीचर्स को भी काउंसलिंग होती है, एक इन हाउस काउंसलर है स्कूल में जो टीचर्स की
0: अच्छा,
2: काउंसलिंग करती है बच्चों से पहले।
0: क्या बात है।
2: तो वहाँ पे फिर मेरा एडमिशन हुआ 7th स्टैंडर्ड में, और डे वन से ही ऑब्वियसली इतना ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही चीज़ें बदल गई, वहाँ भी मैं मेघा की तरह मैं भी एक ही विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट था पूरे स्कूल में। तो पहले 2-3 साल थोड़ी डिफिकल्टी हुई, बट टीचर्स ने कभी उस तरह बिहेव नहीं किया, हमेशा समझने का कोशिश किया। और फिर एक दिन प्रिंसिपल को भी मम्मी ने, मतलब मम्मी को प्रिंसिपल ने बुलाया स्कूल में कि एक बार आप आओ, हम अच्छे से समझना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कैसे हम इसको सपोर्ट करें और इसको बच्चे को आगे बढ़ाएं।
0: आगे
2: तो
0: बढ़ाएं जी।
2: और वो फिर रेगुलरली मिलना चालू कर दी मम्मी से, मतलब ऐसा होता है ना कि चलो आप मतलब 3 महीने 6 महीने हर साल होते टीचर पेरेंट टीचर मीटिंग होता है तो नॉर्मली टीचर्स पेरेंट्स से मिलती है, प्रिंसिपल नहीं मिलती है इंडिविजुअली पेरेंट्स से, वो हर बार मिलती थी पेरेंट्स से, मतलब मम्मी से। तो मिसेस सीमा सप्रू जो हमारी प्रिंसिपल थी द हेरिटेज स्कूल में,
0: जी
2: उनकी उनकी बदौलत आई थिंक शी वॉज द इंस्पिरेशन, मतलब वो और मेरे साथ भी लेती थी सेशंस, तो वो काफ़ी मुझे सपोर्ट की। फिर टीचर्स भी काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे कि कैसे इसको हम ज़रूरत पड़े तो अलग से इसको पढ़ाएं समझाएं और चीज़ों को करवाएं कि ये परफॉर्म कर पाएं। फिर परफॉर्मेंस में भी इमीडिएटली रिजल्ट्स आने लगे। 9th स्टैंडर्ड से मेरा मतलब एकदम ही टर्न अराउंड हो गया, आप मानिए बिल्कुल, जो मेरा 7th 8th स्टैंडर्ड में मैं सब्जेक्ट्स में फेल होता था, बिल्कुल टर्न अराउंड हो गया। फिर
0: वाह क्या
2: 9th से 12th मेरा इस तरह गया, अच्छे से मैंने परफॉर्म करके अच्छी मार्क्स के साथ मैंने अपने 10th और 12th बोर्ड को फिनिश किया। फिर ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में मैं मोस्टली इस टाइप का कॉलेज में था जहाँ पे कॉलेज जाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, आप दो अटेंडेंस थी बट आप मैनेज कर सकते थे, उस तरह का कॉलेज था। तो क्योंकि मेरे को एक्चुअली साथ में सीए की पढ़ाई करनी थी, तो उसमें भी प्रिंसिपल ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने, उन्होंने गाइड किया कि कैसे आप स्क्राइब करवा सकते हो। इनफैक्ट एक और स्टोरी है कि मेरी छोटी सिस्टर जो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, वो भी विजुअली इम्पेयर्ड ही है, वो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, उसके टीचर प्रिंसिपल जो मैंने जैसे पहला स्कूल में फेस किया वो भी फेस कर रही थी। तो मेरी प्रिंसिपल ने एफर्ट लेके, मेरी प्रिंसिपल ने उसके स्कूल की प्रिंसिपल से बात की, उसको पूरा समझाया, क्योंकि मेरी प्रिंसिपल का एक्चुअली सिटी में और मतलब बाकी स्कूल में नाम भी बहुत था, तो उनको उनकी उनका कॉल या उनकी बात को कोई टालनी या मतलब एटलीस्ट सुनेंगे वो तो पता ही था हमें। तो उन्होंने मेरी मेरी मदर के रिक्वेस्ट में उन्होंने बात करके पूरा उसके लिए भी एकदम रास्ता क्लियर करवा दिया, मेरी छोटी बहन के लिए भी। तो अब फिर मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सीए की पढ़ाई की, जो मेरे को बीच में इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो मैं इंटर करके छोड़ दिया सीए को और मैं फिर कैट की तैयारी करने लगा। फिर कैट करके मेरी आईआईएम रायपुर में एडमिशन हो गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, जो एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, आज भी टॉप 15 इंस्टीट्यूट्स में आता है इंडिया में।
0: डेफिनेटली
2: तो वहाँ तो डेफिनेटली, और वो बोलते हैं ना कि मेघा के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिफिकल्ट था, मेरे लिए पोस्ट ग्रेजुएशन वॉज लाइक द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। मतलब वहाँ पे इतना सपोर्ट मिला मुझे स्टूडेंट से, टीचर से मिला जो मिला चलो ठीक है, मतलब मैं बोलता हूँ अगर टीचर से सपोर्ट नहीं भी मिला होता तो स्टूडेंट्स और फेलो लोगों का इतना सपोर्ट था कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि आज भी वो मुझसे कनेक्टेड है।
0: कौन से ईयर में आपने आईआईएम किया पीयूजी?
2: 2013 से 15, 15 में मैंने फिनिश किया, 2 साल।
0: जबकि जबकि उस समय भी मतलब टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी,
2: हाँ, पर आप ये
0: तो
2: नहीं मतलब
0: वहां का
2: ऐसा,
0: एक्सपीरियंस तो कैसा थोड़ा बताएं, वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा
2: बिल्कुल
0: आईआईएम का,
2: बिल्कुल
0: क्योंकि हर कोई जा नहीं पाता आईआईएम, और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए
2: हाँ
0: तो मतलब सोचना ही बड़ा मुश्किल है।
2: बिल्कुल, वो सोचना मुश्किल मेरे लिए था, पता नहीं इसको डेस्टिनी बोले या क्या बोले, हमेशा से मेरे मन में, मतलब जब से मैं स्कूलिंग में 9th 10th 11th 12th स्टैंडर्ड इस टाइम से मेरे मन में हमेशा था कि मुझे एमबीए करना है। पता मुझे भी नहीं पता था क्यों करना है, बट हमेशा मन में था कि एमबीए करना है। और फिर ग्रेजुएशन करते हुए मेरे को ये था कि इनिशियली बहुत चैलेंजेस आया, क्योंकि कैट की, अगर मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले चलूँ, कैट की कोचिंग के लिए भी मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, सबने मना कर दिया था। तो मेरे जो ग्रेजुएशन में मुझे जो टीचर ने घर में पढ़ाते थे, उन्होंने कैट का कभी ट्यूशन नहीं करवाया था वैसे, पर बोले कि चलो तुम्हारे साथ साथ मैं भी पढ़ लूंगा। वो मेरे साथ साथ बैठ के उन्होंने कैट की पढ़ाई में मेरी बहुत सपोर्ट की, क्योंकि जो करियर लॉन्चर और ये सब जो कोर्सेज करवाते हैं जो इंस्टीट्यूट्स, उन्होंने मना कर दिया था कि उन्होंने कभी ऐसा विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को लिया नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, हम आपको मटेरियल दे सकते हैं पर आप घर में पढ़ो अपने आप, हम नहीं पढ़ा सकते। तो फिर उन्होंने पूरा पढ़ा के मुझे कैट की तैयारी करवाई, फिर मैंने कैट क्लियर किया। और अब कमिंग टू आईआईएम रायपुर, कैसे मैंने वहाँ मैनेज किया, डे 1 से ही आई थिंक मुझे इतना सपोर्ट मिला फेलो स्टूडेंट से कि मेरे को लगा कि मैं इनको बरसों से जानता हूँ सारे लोगों को, और ऐसा नहीं कि एक दो, ऑलमोस्ट अब मैं आपको बोलूंगा हमारा बैच था 120 लोगों का, 50-60% बैच, मतलब आप समझ लो 50 से 60 लोग, एटलीस्ट 60 लोग मान लो, उनसे मेरा ऐसा रिलेशन था कि मैं उनको कभी भी फोन कर सकता हूँ। आज भी
0: क्या
2: इस यहाँ तक मैं, इनफैक्ट आज भी ऐसा हाल है, मैं उनको फोन करके बोलूँ कि अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल से मुझे एक पेमेंट करना है, वो सोचेंगे भी नहीं,
0: क्या
2: क्रेडिट कार्ड का डिटेल भी मुझे दे देंगे।
0: बात है।
2: मतलब वो ऑब्वियसली मैं क्रेडिट के लिए ही वो कार्ड यूज करता, मैं यूज करता क्योंकि कोई डिस्काउंट होता है ना कार्ड में, आपको एयरलाइन की टिकट बुक करनी है कोई डिस्काउंट है तो वो सोचेंगे भी नहीं कि यार ये क्या क्यों मांग रहा है, एक सेकंड वो सोचेंगे पॉज लेंगे, ऐसा होता है ना कि भाई ये पैसा
0: ट्रस्ट,
2: वापस दे तो
0: मतलब
2: दे देगा
0: वो
2: ना।
0: उनका इतना ट्रस्ट और इतना अच्छा आपका रिलेशन उनके साथ।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो 2 साल मेरी इतनी अच्छी गई और मैंने उनको बहुत, मैं दो, क्योंकि क्या होते हैं 80% ऑफ बैच इंजीनियर्स थे, तो वो इंजीनियरिंग पढ़ के आए थे, उनको फाइनेंस अकाउंट्स का नॉलेज बिल्कुल नहीं था और मेरा बैकग्राउंड था अकाउंट्स का, तो मैंने भी उनकी बहुत हेल्प की, बहुत कई लोगों को पढ़ाया, तो आज भी वो याद करते हैं कि मैं उनको काफ़ी एग्जाम के पहले काफ़ी उनको तैयारी मैं भी कराता था, और जहाँ उनका सपोर्ट मैं भी, मैं तो अपने लेवल पे जो कर पाया किया, पर उनका जो सपोर्ट था ऑल थ्रू आउट, जब मेरे को चाहिए, चाहे रात हो दिन हो, जब मुझे कोई भी सपोर्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ रीडिंग द मटेरियल, कुछ समझना है, किसी से बात करना है, कुछ करना है, हमेशा वो अवेलेबल थे।
0: तो उस समय 100% विजन लॉस हो गया था आपका या कुछ था आई साइड
2: मतलब
0: आपको?
2: आप समझ लो 5%, 4-5% कुछ
0: और
2: साइट बची
0: अभी?
2: होगी, अभी आप मेघा के बराबर ही है, लगभग 1-2% साइट
0: अच्छा,
2: मेरा है।
0: मतलब आप लोग काफी चीजों में बराबर हैं। अच्छा, फिर ये वहां से IIM से निकलने के बाद ये अपनी कंपनी
2: हाँ,
0: रन करने के बारे में कब सोचा और कैसे ये शुरुआत हुई?
2: ये मैंने एक्चुअली सोचा IIM करते हुए, जब मैं
0: अच्छा
2: IIM में पढ़ाई कर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो लोग आए हैं वो जनरली वर्क एक्सपीरियंस के साथ आए थे, वो पहले जॉब करके आए थे, तो पहले उन्होंने पैसा कमाया हुआ था, तो अब जब पैसा कमाते हो तो ऑब्वियसली आप कोई ना कोई स्कीम में इन्वेस्ट भी करते हो और कहीं ना कहीं कुछ सोचते समझते हो भी इन चीज़ों के बारे में, तो कई लोगों ने बैंक के कहने पे, कहीं और किसी के एडवाइस पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हुए थे, मैं उनको एनालाइज करना चालू किया, और कई लोग मेरे से पूछते भी थे वहाँ पे, मेरे फ्रेंड्स बैचमेट्स मेरे से पूछते थे कि भाई ये हमने जो इन्वेस्टमेंट किया ये सही है कि नहीं, पहले तो उनको पता आइडिया भी नहीं था कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या प्रोडक्ट है, कुछ आइडिया नहीं था, मैंने उनको उसमें गाइडेंस देना स्टार्ट किया, और मेरा मेरा रुचि इन्वेस्टमेंट्स में बहुत पहले से था, स्कूल से है, स्टॉक्स, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, इनके बारे में, बॉन्ड्स के बारे में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था, क्योंकि पापा को मैंने इन्वेस्ट करते हुए उस समय देखा समझा, तो इंटरेस्ट मेरा था, और फाइनेंशियल एडवाइस, पापा के जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे भी मैं डील करता था, समझता था चीज़ों को, तो अब उनको मैं समझाने लगा कि हाँ आपको इस तरह से करना चाहिए था, ये आपने गलती की है, तो वही मेरा एक्चुअली मेरे को बताया कि ये जब मैं अपने बैचमेट्स फ्रेंड्स को जब समझा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इसी को अपना करियर बनाऊँ, मुझे जॉब करने की
0: वाह,
2: ज़रूरत ही क्या है, मैं अपना ही बिजनेस बनाऊंगा और लोगों को फिर एम्प्लॉय करूंगा और जॉब्स भी क्रिएट करूंगा।
0: बिल्कुल सही।
2: तो अब उसके बाद 2015 में मैंने MBA फिनिश की, MBA के दौरान मैंने लास्ट ट्राइमेस्टर, जो 3 महीने का ट्राइमेस्टर था, वो मैंने फ्रांस में किया था, ग्रेनोबल फ्रांस गया था मैं 3 महीने, वो भी ऑब्वियसली अपने फ्रेंड के भरोसे गया, क्योंकि हम मेरा रूममेट ही, जो मेरा रूममेट था इधर IIM रायपुर में, वो भी मेरे साथ फ्रांस गया था स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में, तो 3 महीना
0: वाह,
2: हमने वहाँ रह के पढ़ाई की, ग्लोबल एक्सपीरियंस मिला उन लोगों, मतलब ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब वहाँ पे अमेरिका से लोग थे, अफ्रीका से थे, चाइना से थे, रशिया से थे, तो हर, यूरोप से तो ऑब्वियसली थे ही, तो हर जगह के लोगों से इंटरेक्ट करके काफ़ी ग्लोबल एक्सपोजर और चीज़ें सीखने को मिली, तो फिर मैं जब वापस आया 6 महीने मुझे लगे चीज़ों को समझने में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है, इट्स नॉट जस्ट कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे कहाँ करना है, अभी आपको पता है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ऑपरेशंस कैसे सेटअप करना है, किस तरह के आपको एम्प्लॉयज चाहिए, किस तरह के क्लाइंट्स चाहिए, पूरा सब सेटअप करने में मुझे 6 महीना लगा, एंड ऑफ 2015 या अर्ली 2016 में मैंने अपना बिजनेस चालू किया, अभी लगभग मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गया काम करते हुए, मेरे अभी 350 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं इंडिया में, और कुछ NRI क्लाइंट्स भी हैं मेरे जिनको मैं सर्विस देता हूँ, मेरे कैलकटा में से ज़्यादा एक्चुअली बाहर क्लाइंट्स हैं, और लगभग 25 विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को भी हम सर्विस दे रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ उनका इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को मैनेज कर रहे हैं, और
0: और आपने जॉब जॉब कितने लोगों को दी हुई है पीयूष जी?
2: जॉब अभी हमने, अभी तो हम 5 लोगों को हमने रखा है अपने टीम में, अब टीम, अब इनिशियली ऑब्वियसली सैलरी देना हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि डे वन से ऐसा है कि एक मारवाड़ी बिजनेस बैकग्राउंड से होता तो आप लॉस में तो काम नहीं कर सकते, तो डे वन से, पर यह है कि अब धीरे धीरे हमारा भी बिजनेस इस लेवल पे पहुंच गया कि हम हर साल कुछ डेफिनेटली कुछ एम्प्लॉयज को ऐड करेंगे।
0: वेरी गुड, चलो करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि भाई अब ऑप्शंस हैं लोगों के पास जॉब। चलिए, वो तो श्रोताओं सुन रहे हैं आप प्रोग्राम हमरा ही, और आज पीयूष राखेजा जी और मेघा राखेजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। तो काफी बात हो गई अब आप लोगों की पर्सनल जो जर्नी रही है अब तक की उस पर, तो लेकिन अब असली कहानी पर आते हैं जिसके लिए ये प्रोग्राम है। तो मेघा जी बताइए, ये दिल्ली में रहते हुए दिल कैसे मिला पीयूष जी से?
1: ये हम आज ही दोनों को साथ में बताना चाहिए थोड़ा थोड़ा.
0: थोड़ा थोड़ा, हाँ तो बताओ ना, बिल्कुल दोनों बताइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन शुरुआत
1: सो
0: कहाँ से हुई मिलने की?
1: शुरुआत ऐसे हुई कि दिल्ली में तो मेरे इतने कोई विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स थे नहीं, और ज्यादा किसी कम्युनिटी में किसी को इतना जानती नहीं थी, कनेक्टेड नहीं थी. इवन इन 2024 तक यही सच था. व्हाट्सएप
0: अच्छा,
1: ग्रुप्स, हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे थी पार्ट,
0: नाइस।
1: बट ऐसे किसी को नहीं जानती थी इतना. फिर एक दिन मैं अपनी मम्मी के साथ धर्मशाला गई थी, एंड हम उनके फ्रेंड के ही रुके हुए थे. सो आंटी की एक नेबर थी जो दिल्ली से थी, एंड वो जब मुझसे मिली तो एकदम से ऐसे पूछी कि तुम्हारे कोई विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स हैं दिल्ली में? तो मैंने कहा नहीं, कोई भी नहीं है. तो कहती है तुम यू शुड नो योर कम्युनिटी, बहुत सीखने को
0: सही है।
1: मिलता है ना. तो वो मुझे एक जने का नंबर दी, उनने कहा इनका अपना एनजीओ है, दिल्ली में रहते हैं और इनके काफी फ्रेंड्स और काफी गेट टुगेदर्स और फंक्शंस होते हैं, तो आपको मिलने को बहुत लोगों से मिलेगा. तो मैंने कहा ठीक है
0: मिलेगा।
1: बिल्कुल. तो वो एक किसी का नंबर दिए, एंड मैं वापस आई, उनसे बात हुई, एंड उनका एक गेट टुगेदर हो रहा था सितंबर में. तो उन्हें बोला कि आप व्हाई डोंट यू कम, हम लोग फ्रेंड्स ही हैं, 13-14 लोग हैं, एंड उसमें ना काफी सारे मैरिड कपल्स भी हैं जो दोनों
0: अच्छा।
1: ही विजुअली इम्पेयर्ड भी हैं, और बहुत अच्छा, वेरी एजुकेटेड ग्रुप, सब वर्किंग है, अच्छे से इंडिपेंडेंट हैं, तो और सब मेरी एज के ही थे. तो उन्होंने कहा आपको आना चाहिए, यू विल गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल. तो मैंने कहा ठीक है. तो मैं गई, 2 दिन का प्लान था.
0: सिस्टर के साथ गए अकेले? अरे
1: नहीं, अकेले, क्योंकि ये सिर्फ सारे विजुअली
0: अच्छा,
1: इम्पेयर्ड ही थे.
0: ओ
1: और वो मेरे, नहीं अब मेरी सिस्टर तो है नहीं ना यहाँ, वैसे भी यूएस में है, तो अब सोच लिया था कि और लोगों से मिलना जरूरी है, नहीं तो ऐसे
0: जरूरी
1: अकेले
0: है,
1: अकेले तो नहीं इतना टाइम निकलता.
0: निकलता, बिल्कुल सही
1: हाँ,
0: है।
1: और अब जॉब भी कर रहे हो, तो आजकल तो सब वर्क फ्रॉम होम होने लगा, तो बहुत मतलब यू नीड दैट सोशलाइजिंग.
0: कहाँ का ट्रिप था वो मेघा जी?
1: दिल्ली का ही था, गुड़गांव में हम लोगों ने एक, हाँ जी, गुड़गांव में एक होटल बुक करके, तो ये लोग सब मिलते हैं, तो पूरा अपना दिन पार्टी करते हैं, बातें बातें करते हैं, मिलते हैं, खाना पीना होता है, तो इट वाज गुड फन. तो मैं वैसे तो बड़ा डर डर के गई थी मम्मी
0: हाँ
1: को
0: वही,
1: बोल
0: मैं भी मन में वही
1: के.
0: सोच रहा था कि ऐसे मतलब आप तो फिर भी चले गए, नहीं तो हर कोई सोचेगा यार पता नहीं सेफ्टी सिक्योरिटी और बाकी सब इश्यूज का क्या होगा।
1: देखो चांस कभी कभी लाइफ में लेना पड़ता है, और प्लस मैं वैसे पर्सनली किसी को जानती तो नहीं थी, बट इससे पहले हम लोग डिनर पे मिले थे एक बारी, तब मैं एक लड़की से मिली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो ये भी होगी तो ठीक ही रहेगा, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एंड वही जैसे मैंने आपको कहा ना कि सब देखो
0: आपकी
1: अच्छी
0: तो कहानी
1: फैमिलीज.
0: सिमरन से बहुत मिलती जुलती है।
1: हाँ तो शायद मेरा राज आ ही गया वहां पे, मिल ही गया था.
0: राज पता नहीं राखे जा जरूर आ गया।
1: वही है, मैंने चांस लिया, पर मैं मम्मी को बोल के गई थी कि देखो अगर मैं बोर होंगी, ज्यादा दूर तो है नहीं, आप मुझे लेने आ जाना. बट लकीली हम वहां पहुंचे, तो पहले तो हम लोग ने किया, पीयूष था नहीं वहां पे उस टाइम, मुझे पता नहीं था कि पीयूष के बारे में उस टाइम कुछ, तो ये बाय चांस उस टाइम कैलकटा से दिल्ली आया हुआ था, इसकी कोई म्यूचुअल फंड की कॉन्फ्रेंस थी,
0: अच्छा
1: तो हाँ, और ये भी वहां सबको जानता था, तो ये भी इनवाइटेड था. तो शाम को ये हम लोग सब स्विमिंग विमिंग करके आए, अपना तैयार व्यार हो रहे थे, तो एकदम से ये आया. वहां पे एकदम एंट्री मारी,
0: ओहो
1: एंड हाँ बिल्कुल आया, एंड देन बस एकदम से एक होता है ना कनेक्शन, आपको फील होता है हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को हाय बोला, बट उतने में ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ कनेक्शन है.
0: मतलब कुछ तो है।
1: हाँ ये पीयूष
0: कुछ
1: को
0: है,
1: ज्यादा
0: कुछ
1: लगा
0: कुछ
1: था
0: है।
1: वैसे, आप इससे पूछना जब इसकी बारी आएगी.
0: लेकिन
1: एंड देन बस पूरा रात बाय चांस ऐसा होता रहा कि हम एक दूसरे
0: आपको तो कुछ
1: के,
0: पता थोड़ी था कि ये सिंगल है कि मतलब कहाँ से है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी पता थोड़ी था आपको? लेकिन
1: सिंगल था ये पता था, क्योंकि ग्रुप में जो मैरिड थे उनके बारे में तो पता ही था, और बाकी सब हम सिंगल ही थे.
0: अच्छा,
1: एंड
0: मतलब
1: हाँ
0: बेसिकली आपके नाम वगैरह और वो क्या बैकग्राउंड है या बायो क्या है, वो सब छोटा मोटा आपको मालूम था कुल मिला के?
1: नहीं, सिर्फ इनका नाम पता था और थोड़ा बहुत पता था, क्योंकि क्या हुआ था उसी के 2 हफ्ते पहले ना, इनका एक यूट्यूब पे वीडियो आई, ये चंद्रशिला ट्रिक के लिए गए थे,
0: अच्छा,
1: तो वो वीडियो मैंने देखा था, क्योंकि एज आई सेड ना, मुझे एडवेंचर एक्टिविटीज का बहुत शौक है.
0: बहुत शौक है, राइट?
1: तो आई वॉज लाइक, एक वी आई कम्प्लीटली ब्लाइंड ये ट्रिक्स कैसे कर रहा है, तो मैंने इसका वो वीडियो देखा था, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा. तो एक्चुअली यही हुआ कि जब हम मिले तो इनका नाम पता था, बेसिक पता था बिल्कुल, दो तीन चार चीजें.
0: और आपने
1: तो
0: सोचा होगा यार यूट्यूब पे जिसको देखा वो यही मिल गया?
1: हाँ बिल्कुल. ये अच्छा टाइम है पूछने का कैसे. तो जब इससे साइड बाय साइड हम बैठे थे, इससे बात होनी शुरू हुई, तो ऐसा तो ऑब्वियसली कुछ सोच के बात शुरू किया नहीं था, क्योंकि ये दिल्ली से भी नहीं थे, एंड आई हैड नेवर थॉट कि मैं कभी दिल्ली छोड़ के यू नो जाऊंगी,
0: कहीं
1: तो
0: जाऊंगी?
1: वो क्वेश्चन ही नहीं था कभी. बट मैंने सोचा इंटरेस्टिंग है, समझना चाहिए कैसे ट्रैक कर रहे हो और क्या क्या चीजें कर रहे हो, तो उसी टॉपिक पे बस बात शुरू हुई और हमारी बात होती गई. और हमें अच्छा लगा एक दूसरे का कंपनी, तो नंबर शेयर किए, फिर वी स्टेड इन टच, एंड फिर बस चीजें बदलती गई. तो दिस इज हाउ वी मेट. एंड
0: ये आपका ऐसे मिलना हुआ आपका? और पीयूष
1: यस
0: जी,
2: हाँ
0: आपको भी
2: जी,
0: कुछ कुछ हुआ था कि बहुत कुछ हुआ था?
2: मेरे को तो बहुत कुछ हुआ था, जो झूठ क्यों बोलूं, पर ये पहला मीटिंग में इतनी देर हमने बात की, आप समझो कि ऑलमोस्ट पार्टी चल रही थी, मैं आया उधर शाम को 6-7 बजे, 8-9 बजे से पार्टी हुई और सुबह 4 बजे तक चली, ऑलमोस्ट हम आधे से ज्यादा टाइम हम दोनों ही बात कर रहे थे साइड
0: अरे भाई
2: बाय
0: साहब,
2: साइड बैठ के.
0: लोगों को तो वही समझ में आ गया होगा।
1: हाँ वो तो उन्हीं लोगों से पूछना पड़ेगा.
0: गेट टुगेदर जो है सफल हो गया।
2: बिल्कुल. नहीं, मेरा भी स्टोरी मेघा जैसे ही है. मैं विजुअली इम्पेयर्ड जो कम्युनिटी है, हार्डली लोगों को जानता था, सिर्फ दो तीन लोगों को ही जानता था. फिर आई थिंक बिजनेस के वजह से ही, काम के वजह से ही, पहले किसी ने बोला कि जॉर्ज के पास आपको रेकमेंड किए हैं, जॉर्ज सर एक सेशन करना चाहते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि फाइनेंशियल प्लानिंग एक एक्सेसिबल वे में कैसे पर्सन विद डिजेबिलिटीज कर सकते हैं. तो उसके लिए मैंने एक सेशन किया और वहाँ काफ़ी चीज़ों को समझा. तो उसके बाद मेरा धीरे धीरे कम्युनिटी में. हाँ
0: उसी ट्रिप में?
2: नहीं,
0: नहीं
2: उस ट्रिप
0: नहीं
2: में नहीं, ये
0: उससे
2: थोड़ी
0: पहले,
2: थोड़ी
0: पर्पल
2: पुरानी, उससे आई थिंक,
0: फेस्ट के
2: उससे
0: टाइम
2: दो
0: ना, उससे
2: साल
0: पहले की बात।
2: मतलब हम
0: अच्छा,
2: मिले 2024, ये 2022 की बात है.
0: की बात है।
2: 2022 में मेरा पहला सेशन हुआ था जॉर्ज के साथ. फिर जॉर्ज के साथ, तो मैंने जॉर्ज सर के साथ करीब करीब 3-4 सेशन किया है. फिर उन्होंने मुझे एक बार ये जो पर्पल फेस्ट होता है गोवा में,
0: जी
2: 2024 में, उन्होंने जनवरी के महीने में
1: हाँ,
2: हुआ
1: सेम
2: था.
1: योर. हाँ
2: हाँ, तो उस टाइम उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था वहाँ पे कि हम एक लाइव सेशन आपके साथ करना चाहते हैं, तो आप गोवा आओ और अपने अपनी जो जर्नी है, कैसे आपने चैलेंजेस फेस किए, कैसे उनको ओवरकम किए, और कैसे आप बिजनेस रन कर रहे हो, थोड़ा एक्सपीरियंस आज लोगों के साथ आप शेयर करो वहाँ आकर. तो ऐसे ऐसे कई सारे, जैसे दानिश जी के साथ भी मैंने किया है सेशंस. तो इसके कारण क्या है कि लोग जानने लगे कम्युनिटी में, तो ऐसे कनेक्शन बढ़ता रहा. और गोवा में ही, आई थिंक गोवा में जब मैं गया था, तभी मैं सबसे ज़्यादा लोगों से मिला. और एक होता ना कि आपको कम्युनिटी में भी लाइक माइंडेड लोग चाहिए, जिसके साथ आप समय बिता सको, चीज़ें डिस्कस कर सको. तो वहाँ पे मुझे गोवा में कई लोग ऐसे मिले, और वहाँ से फिर मेरा काफ़ी इस कम्युनिटी में भी काफ़ी जान पहचान लोगों से हुआ. और अभी मैं एक थोड़ा बहुत कनेक्टेड हूँ कम्युनिटी में लोगों से. और यही होता है ना कि आपकी एक, मैं वही बोलता हूँ ना, बिजनेस के वजह से ही मैं आज कम्युनिटी में भी कनेक्टेड हूँ. और मेरी शादी भी, मैं कॉन्फ्रेंस में गया म्यूचुअल फंड का, वहाँ मुझे मेगा भी मिल गई.
1: ये वो भी थोड़ा डिग्रेस हो गया. आई थिंक ये वही है कि पर्पल फेस्ट में जब ये गया, तो उसी टाइम ये भी उन्हीं लोगों से वही मिला था. सो द सेम ईयर जब मैं उस
0: ओहो,
1: पूरे ग्रुप से मिली, वो भी सेम ईयर स्टार्टिंग में उस ग्रुप से वहां पर्पल
0: बताइए
1: फेस्ट पे मिला.
0: कहाँ दिल, कहाँ दिल्ली, कहाँ कोलकाता, कहाँ धर्मशाला, कहाँ गोवा और कहाँ
1: सही में.
0: गुड़गांव।
1: सच्ची में तो वही है ना, जब मिलना होता है, लिखा होता है, तो हो ही जाता है. बिल्कुल.
0: हाँ, तो हम थे गुड़गांव के ट्रिप पर, वहां पर बहुत बातें की आप दोनों ने मिलकर के, और बातें करने के बाद फिर ये कब तय हुआ कि भाई अब तो बातों से काम नहीं चलेगा?
2: बहुत जल्दी, क्योंकि मैं देखिए, हमारे दोनों का ही माइंडसेट हमेशा ऐसा था कि ऐसे ऐसे तो कोई शादी की बात भी नहीं हो सकती. पहले आप एक जन को जानोगे, समझोगे, एटलीस्ट 1-2 साल निकलते हैं, उसके बाद आप सोचोगे कि क्या हम दोनों लाइक माइंडेड हैं, हम दोनों कंपैटिबल हैं और शादी की सोच है। हम तो लगभग सितंबर एंड में मिले थे और आप समझ लो नवंबर मिड में तो हमने डिसाइड ही कर लिया था कि हम शादी कर रहे हैं।
0: अरे
2: आप
0: भाई
2: समझ लो
0: साहब,
2: ऐसे,
1: इसने
2: या आप समझ लो
1: डिसाइड किया
2: नवंबर
1: था, इसने डिसाइड किया था।
2: चलो इसने नवंबर एंड में डिसाइड कर लिया, ठीक है 15 दिन बाद इसने
0: अच्छा।
2: डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो मतलब
0: हाँ नहीं,
2: अब
0: मैं
2: समझ
0: वही
2: लो
0: पूछ
2: दो
0: रहा हूँ,
2: महीने
0: मैं उस पर आने वाला भी था कि भाई प्रपोज किसने किया पहले।
1: इसने
2: प्रपोज मैंने किया था, बट मैं ये बोलूंगा कि 2 महीने में आप पॉइंट हुई है कि 2 महीने में ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में मेरे को इतना मैं श्योर हो जाऊंगा कि 2 महीने में मैं डिसाइड कर लूं कि मुझे शादी करनी है।
0: नहीं कि
1: एंड आई
0: मुझे
1: थिंक
0: परफेक्ट, मुझे मेरी सेनोरिटा मिल गई है।
1: नहीं सही बात है। आई थिंक यहाँ पे मैं भी यही बोलना चाहूंगी, बिकॉज यू नो एक होता है आप एक सर्टेन टाइम से जब आप नहीं किसी के साथ होते हो एंड ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा होता है, तो आई थिंक आपके माइंड में वो चीज आ भी जाती है कि चलो अब तो शादी नहीं करेंगे, बट ठीक है फ्रेंड्स हैं, जॉब है, आप सक्सेसफुल हो, तो वो शादी का पॉइंट भी नहीं होता। एंड अब ऐसा नहीं है, हम मिले भी काफी, ये लोगों से मिला होगा इससे पहले, मैं भी मिली, लेकिन किसी के साथ ना कभी वो कनेक्शन फील नहीं हुआ कि चलो इसको यू नो किसी चीज में कन्वर्ट करा जा सकता है। बट आई
0: हाँ यार,
1: थिंक
0: मेघा जी मैं पूछने वाला ये था कि लाइफ पार्टनर के बारे में, मतलब चलो आप अकेले थे, सब कुछ था, ब्लाइंड कम्युनिटी को नहीं जानते थे, उस दौरान मतलब कुछ तो सोचा होगा कि यार पता नहीं कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, शादी करूंगी तो इससे करूंगी उससे करूंगी, तो वो कैसा था दौर?
1: बिल्कुल, आई थिंक जैसे पहले तो 20s में तो ऐसा लगता है हाँ चलो कोई तो मिल ही जाएगा, काफी कुछ हम कर रहे हैं एवरीथिंग। और मेरा क्या था कि, और ये आई थिंक काफी लोगों का होता है, हम आई थिंक पहले भी इसके बारे में आप और हम शो से पहले बात कर रहे थे कि विजुअली इम्पेयर्ड खुद हो के आपको ये लगता है यार कोई साइटेड मिल जाए, और ऐसा ही था मतलब पहले। और मेरे एज आई सेड राइट, मेरे कोई विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स या कम्युनिटी में कोई कनेक्शन था नहीं, मैं हमेशा
0: नहीं,
1: मेनस्ट्रीम
0: आपके सर्कल में मेन स्ट्रीम के लोग ही थे।
1: राइट, तो हमेशा वही रहे हैं और वही मेरे लाइफ का पार्ट भी रहे हैं, उसी ग्रुप में मतलब फ्रेंड्स के साथ, साइड फ्रेंड्स के साथ अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं, बट कभी कुछ पैन आउट हुआ नहीं। फिर एक सर्टेन एज के बाद आके तो यही लगा कि देखो शादी जबरदस्ती सिर्फ करने के लिए तो नहीं करनी थी, करती तो इसलिए करती कि हाँ कोई सच्चा मिला तो। एंड जैसे सबके साथ होता है, मेरे पेरेंट्स ने भी अरेंज मैरिज में भी किया, जैसे पोर्टल्स वगैरह पे दो तीन लोगों से मिली, कुछ साइटेड कुछ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से। पहले तो पेरेंट्स का यही था कि नहीं साइटेड से ही करो, तुम दो विजुअली इम्पेयर्ड कैसे मैनेज करोगे जिंदगी, बहुत डिफिकल्ट होगी, और वही मेरा भी माइंड फ्रेम था। बट और फिर काफी लोगों से मिली बट किसी से कभी कनेक्शन फील नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे करके यही सोच लिया कि ठीक है नहीं होएगी तो नहीं होएगी, यू नो अब ठीक है कभी कोई मिल गया तो देखा जाएगा, अरेंज मैरिज तो नहीं करूंगी, और बाकी कुछ होगा तो वील सी इन द फ्यूचर, तो वही माइंडसेट हो भी गया था। एंड पेरेंट्स भी आई थिंक यही सोच लिए थे कि ठीक है हमारे साथ खुश है तो हमारे साथ ही रह ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसी माइंडसेट में ही आई थिंक चलते चलते बट सडनली पीयूष के साथ इट जस्ट हैपेंड कि वो एकदम क्लिक हुआ, ऐसा स्ट्रॉन्ग क्लिक हुआ कि बस 2 महीने में ही सब कुछ हो गया, सोचा ही नहीं कि अरे 2 साल की जरूरत भी है। अब
0: डिसीजन लेने में टाइम क्यों लगा मेगा जी?
1: इतना टाइम तो चाहिए, दो महीने से कम
0: नहीं
1: तो बहुत कम है।
0: नहीं पीयूष ने कहा ना 15 डेज बाद आपने भी डिसाइड कर लिया था।
1: अब थोड़ा टाइम तो लगता है, अब एक्चुअली जैसे
0: जब कभी मन में आ गया था आपके कि यार मतलब यही कर दे प्रपोज पहले तो ठीक रहे?
1: हाँ वो तो था ही ऑफ कोर्स। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि पीयूष मतलब कि किसी को डेट या किसी को लाइक करता है या नहीं करता। जब हम मीटिंग हमारी हुई, हमने काफी बात की, तब ऐसा लगा तो कि सिंगल है, जैसे आपने पूछा भी था ना इस सेट की, तब वहां सब सिंगल ही थे, बट फिर भी किसी के लाइफ में कोई हो तो पता तो ऐसे रहता नहीं है, और किसी से ऐसे डायरेक्टली पूछो तो अजीब लगता है। तो अक्टूबर हम पूरा महीना ऐसे बात करते रहे एंड ऑन एंड ऑफ बात होती रही, फिर तब लगता था जैसे आप कह रहे हो यार खुद ही बोल दे तो सही रहेगा। हाँ
0: काम आसान हो जाए, अपन को नहीं बोलना पड़े,
1: तो देखो
0: अपना
1: लाइक
0: काम,
1: लाइक हाँ जी
0: अपना काम खाली सोचने का ही रहे।
1: हाँ सही में कि हाँ ना बोलो खत्म। तो लाइकिंग तो थी ऑब्वियसली, एंड जब इनने प्रपोज किया, ही ऑब्वियसली प्रपोज्ड फॉर अ रिलेशनशिप, पहले शादी का था माइंड में, बट पहले देखा था कि ठीक है, अभी तक मिले एक ही बारी है, मिलके थोड़ा पता चलेगा. तो ही प्रपोज्ड, एंड देन नवंबर के एंड में ये दिल्ली आए थे. उस टाइम इनको एनएबी से एक अवार्ड मिल रहा था, तो ही केम अ फ्यू डेज अर्ली सो दैट हम लोग थोड़ा मिल पाए, टाइम स्पेंड कर पाए. तो उस टाइम बस मिलके लगा फर्स्ट टाइम में कि नहीं यार, जो डिसीजन लेने का सोच रहे हैं वो अच्छा है, इट वुड बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी. तो ही मेट माई फैमिली, मम्मी पापा से मिला, इसके कुछ कजिन्स दिल्ली में रहते हैं, इसके भैया, तो उनसे मैं मिली, एंड हमें काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग आई. तो हाँ, तो इसलिए वो तब उस टाइम मेरे लिए डिसीजन लेना ईजी था कि हाँ ठीक है, शादी कर सकते हो इससे.
0: ओके, वेरी गुड। और नवंबर से मई 2025 में तो आपकी शादी हो गई। तो
1: लिटरली वो बोले चट मंगनी पट बिया.
0: नवंबर से अप्रैल तक, मई तक का जो दौर था वो कैसा था?
2: ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हमें अपने पेरेंट्स को भी बताना था, तो नवंबर मिड में मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि ऐसे मैं किसी से मिला था दिल्ली में और मैं उसको लाइक करता हूँ. तो इनिशियली पेरेंट्स पहले मेरे हम दोनों के पेरेंट्स ऐसे ही थे कि देखो, दो वीआई की शादी तो बहुत मुश्किल है, ऐसा करना आगे लाइफ में दोनों के लिए डिफिकल्टी होगा, इससे बेटर है कि कोई साइटेड को ढूंढ ढूंढ ले, भले और चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें. बट ऐसे फिर और वीआई कपल, जो एक और वीआई कपल से, विजुअली इम्पेयर्ड कपल से मेरे पेरेंट्स कैलकटा में मिल के इतने इम्प्रेस हुए कि ये देखो, ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कितने खुश हैं, और इनको कोई चीज़ की कमी नहीं है, और इतना मतलब ऐसा लगता नहीं इनसे मिलके कि ये बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ अपना साइट को लेके, ब्लाइंडनेस को लेके बिल्कुल भी चिंता करते हैं. तब उनसे मिलके और उनसे बात करके उन्हें उन्हें ये समझ में आ गया कि विजुअली इम्पेयर्ड सामने वाला, अगर लड़की विजुअली इम्पेयर्ड मिलती है तो भी इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो तब मैंने मतलब पेरेंट पहले तो पेरेंट्स ने एकदम मना कर दिया था, फिर पेरेंट्स सामने से बोले कि नहीं, ये ऐसा कुछ आता है रिश्ता तो हमें बिल्कुल देखना चाहिए. तो फिर जब मैंने बताया तो बहुत ईजी हो गया. जब नवंबर में मैंने पापा मम्मी दोनों को बताया तो बहुत ईजी था, उन्होंने एक बार में एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं पूछा उस बारे में, बट लड़की के बारे में ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछेंगे. और फिर ये था कि उनको कि एक बार मिल लें और एक बार लड़की को देख लें, उसके बाद फिर देख लें आगे क्या क्या करना है. तो दिसंबर में फिर दोनों के पेरेंट्स मिले, हम ये क्या इसके पेरेंट्स और मेघा दोनों कैलकटा आए थे, सब मिले, और फिर वहीं ट्रिप में ही डिसाइड कर लिया. आगे हमने फिर जनवरी में रोका कर ली और फिर मई में शादी.
0: तो पीयूष जी, मेघा से मिलने से पहले, क्योंकि आप भी थ्रू आउट पूरा मतलब मेन स्ट्रीम में ही रहे, कभी ये था मन में कि यार ब्लाइंड से शादी करनी है या साइटेड से करनी है, या फिर मतलब जो मिल जाए उससे करनी है, क्या सोचा था आपने?
2: देखिए, पहले 20s में ऐसा कुछ सोचा नहीं था. मैं बिल्कुल ऐसे जैसे इसका था ना, मेघा ने बताया कि कुछ न किसी ना किसी से शादी हो ही जाएगी, इतना मैंने सोचा नहीं कभी. लेट 20s में ही मैं रियलाइज करने लगा कि पता नहीं कोई मिलेगा भी कि नहीं, और पेरेंट्स भी रिश्ता देख रहे थे, साइटेड ही देख रहे थे, वो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं देख रहे थे, बट कोई रिश्ता वैसा आ नहीं रहा था. और कोई रिश्ता आता भी नहीं तो आपके मन में डाउट होता है, भले ये अगर सामने से ऐसा रिश्ता आ रहा है तो क्यों ऐसा आ रहा है ना, मतलब अगर मैं साइटेड होता तो मैं क्यों ही विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, अगर मेरे पास सब कुछ है तो मैं क्यों सोचूंगा, जबकि लव मैरिज अगर नहीं है, अरेंज मैरिज है, तो क्यों कोई ऐसा देखेगा रिश्ता. तो वो एक फेज था जिसमें ये था, बट फिर मतलब ये मेरे को था कि विजुअली इम्पेयर्ड कोई अगर मिलना होगा तो मिल जाए, मैं ओपन हूँ, मेरे को कोई ऐसा कुछ इशू या
0: कोई दिक्कत
2: प्रॉब्लम नहीं
0: नहीं।
2: है. और क्योंकि मैंने लास्ट 2-3 सालों में कई विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से मिला, समझा कि काफ़ी अच्छे से सब अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, खुश हैं, और काफ़ी चीज़ों में एक्सेल भी कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ एप्रिहेंशन नहीं था कि विजुअली इम्पेयर्ड से नहीं करना है या करना है, मैं दोनों तरह से ओपन था.
0: आप दोनों की स्टोरी सुन के ना एक बात मेरे मन में आ रही है,
1: हाँ जी.
0: और मैं आप दोनों से पूछना चाह रहा हूं। जो लोग ब्लाइंड फील्ड में रहते हैं शुरू से, उनको जब ये शादी की बात आती है तो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, यानी फॉर ब्लाइंड सेम डिसेबिलिटी, उनको डिसीजन लेने में कई बार मैंने देखा है कि थोड़ी सी मुश्किल होती है। आप दोनों थ्रू आउट मेन स्ट्रीम में रहे, लेकिन आप दोनों को, आप दोनों वीआई हैं, तो आप दोनों को ये डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। क्या रीजन है इसके?

0: ये समझा कि मैं एडवेंचर एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड हूँ, तो आई थिंक उसको भी ये चीज़ अच्छी लगी।
1: आई थिंक वही बात है कि लाइक माइंडेड लोग मिलना ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बहुत बारी क्या होता है कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि ब्लाइंड लोग जो स्टार्टिंग से इस कम्युनिटी में है, उनको डिसीजन लेने में मुश्किल रहता है. आई फील कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि आप अपने लाइक माइंडेड लोग नहीं ढूंढते. आप ना ये सोचते हो कि ठीक है, हमको कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है हम लोग ही साथ में हो लेते हैं, एटलीस्ट कोई रहेगा साथ में जिंदगी भर. बट वो मुझे लगता है एक कॉम्प्रोमाइज है. और वो ठीक है, आपको कंपेनियनशिप मिल जाएगी, लेकिन जो एक वो खुशी होती है ना कि हाँ आपके साथ सच्ची में कोई है. तो जब मैं पीयूष से मिली तो मुझे यही ऑनेस्टली लगा कि कोई विजुअली इम्पेयर्ड हो या साइटेड हो, फर्क नहीं पड़ता. अगर आप क्लिक करते हो, आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, आप एक दूसरे के लिए कॉन्फिडेंट हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है.
2: मेरे क्वेश्चन का ये तो एक पार्ट रहा है ना,
1: हाँ जी
2: और लेकिन हो सकता है 1000 में से एक दो लोगों के मन में ये भी बात आ रही होगी कि आप लोगों ने जो बात अभी कही अपने आंसर में बिल्कुल ठीक कही अपने अपने हिसाब से, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों को यानी जो शुरू से ब्लाइंड फील्ड में रहे उन्हें एक दूसरे के चैलेंजेस का पता होता है, और चूंकि आप दोनों नहीं रहे ब्लाइंड फील्ड में तो आप लोगों के लिए चैलेंजेस मैटर नहीं करते थे एक दूसरे के?
1: आई डोंट थिंक मे बी आप सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इंटायरली ट्रू नहीं है. क्योंकि देखो, ऐसा तो है नहीं दैट पीयूष या मुझे अपने सेट ऑफ चैलेंजेस नहीं रहे. एंड स्पेशली जब आप पहले देख सकते हो और फिर आप अपनी साइट खो देते हो, तो थोड़ा डिप्रेसिंग ज़्यादा लगता है फील. क्योंकि एक चीज़ करते करते एकदम से उस चीज़ को नहीं कर पाना और उस वजह से काफ़ी चीज़ों को छोड़ देना, और फिर उसके बावजूद आप इतनी सारी चीजें लाइफ में अचीव कर लेते हो क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहता है. आई थिंक वो कॉन्फिडेंस पीयूष का मुझे अट्रैक्ट करता है देन चैलेंजेस. बट आई से हैविंग सेड दैट, आई थिंक हम एक दूसरे के चैलेंजेस को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं बिकॉज हम दोनों लेट ब्लाइंड हैं. तो हमें वो ही जो मैं आपको बोल रही हूँ, वो डिप्रेसिंग फेज और हम लोगों ने जो चैलेंजेस फेस किए ऑफ रीलर्निंग, जैसे एक छोटी सी बात कहूँ तो देखो,
2: आइसोलेशन में भी एक तरह से आप मेन स्ट्रीम में होते हुए भी आइसोलेशन में रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल वो चैलेंजेस, राइट, ये जब आप देख सकते हो कि आपके आसपास सब लोग सब कुछ कर रहे हो और आप नहीं कर पा रहे, वो भी एक अपने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. एंड एक छोटा सा एग्जांपल लूँ तो आप सिंपली एक मोबिलिटी की बात कर लीजिए. व्हेन इट कम्स टू अ वाइट केन, जो लोग स्टार्टिंग से ब्लाइंड होते हैं, मैंने देखा है कि वो लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं केन यूज़ करने के लिए क्योंकि हमेशा से उनका माध्यम मोबिलिटी का वही रहा है. बट ये लेट ब्लाइंड में हमने देखा और हमारे साथ भी हुआ है कि हमें इनिशियली बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, टू वॉक विद अ वाइट केन.
2: वाइट कैन।
1: हाँ जी, तो हम इसलिए बहुत बारी खुद से चल के, नहीं, हम तो चल ही लेंगे, हम बहुत गिरे हैं, हमें बहुत लगी है, और हमें सब बोलते हैं अरे तुम कितने पागल हो, वाइट केन यूज करो, कितना आसान हो जाएगा. बट वो लोग ये समझ नहीं पाते कि वो इमोशनली एक बहुत मुश्किल चीज़ है टू एक्सेप्ट. तो पीयूष और मैं एक दूसरे के बारे में वो चीज़ समझ पाते हैं कि हमें कितना डिफिकल्ट हुआ वो चीज़ को एक्सेप्ट करना. एंड अब बल्कि हम दोनों, ऑनेस्टली बताऊँ तो हम दोनों को जरूरत है, हमें यूज करना चाहिए, बट हम शादी से पहले दोनों में से कोई यूज नहीं कर रहा था. बट अब शादी के बाद आई थिंक हमने एक दूसरे का उस चीज में भी कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि अब हम दोनों अकेले बहुत घूमते हैं. हम डिनर्स, लंचेस, शो सब जाते हैं अकेले, और हम वाइट केन लेके जाते हैं. एंड हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं कि हाँ वाइट केन तो यूज करना ही, और हमें वो नॉर्मल लगता है. तो
2: जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं दोस्तों, समझिए आपको कि ये लोग आज मतलब अपने अपने पर्सनल असिस्टेंट रख सकते हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इनको व्हाइट केन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। जी
1: हाँ जी, तो हाँ मैं तो बिल्कुल बोलूंगी क्योंकि जैसे हम बिल्कुल, जैसे पीयूष भी, आई थिंक पीयूष अपना ओपिनियन तो हम लोग को ना एक्चुअली इंडिपेंडेंट रहने का बहुत शौक है एंड हमें बहुत अच्छा लगता है. हम दोनों बहुत फूडी हैं. एक तो ये कैलकटा से, हमें दिल्ली से हो, तो दोनों को खाने का शौक बहुत है.
2: शौक है ही बिल्कुल।
1: एंड हम लोग को काफी
2: अच्छा, आप
1: ऐसे
2: दोनों के
1: मिले,
2: बीच में कहीं वेज नॉन वेज वाला इश्यू तो नहीं आया?
1: नहीं हम दोनों
2: क्योंकि
1: वेजिटेरियन
2: अच्छा फिर
1: है.
2: ठीक है, वेस्ट बंगाल में ऐसा माना जाता है ना कि नॉनवेज थोड़ा ज्यादा चलता है।
0: ऐसे एक्चुअली मैं जैन हूँ, राजस्थान से हूँ, बट फैमिली हम पहले से ही, मेरे बर्थ के पहले यहाँ सेटल हो गई थी कलकत्ता में. तो शुरू से ही हम वेजिटेरियन रहे हैं.
2: वेरी
0: और
2: नाइस
0: कमिंग कमिंग टू योर टॉपिक, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये दो विजुअली इम्पेयर्ड लोग रहते हैं या उनकी उनकी शादी होती है या कंपेनियनशिप होती है, तो आई थिंक थोड़ा मेरे हिसाब से बेटर इसलिए रहता है क्योंकि चीजें जो आपको पसंद है बहुत बार ऐसा होता है कि वो सिमिलर होगी, और जैसे आप

0: दोनों विजुअली इम्पेयर्ड नहीं, एक साइटेड है और एक विजुअली इम्पेयर्ड है, एक शादी में या मतलब एक रिलेशनशिप में। तो कई बार होता है कि जो साइटेड इंसान है उसे साइट सीइंग की शौक है और ऐसी कई चीज़ें शौक है जो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं, उनको उसके उसके मतलब का चीज़ नहीं है। पर जब दोनों विजुअली इम्पेयर्ड हो तब उनके वो लाइक माइंडेड भी होते हैं और उनके जो इंटरेस्ट की चीज़ें कई बार सिमिलर मैच हो जाती है।
1: मतलब ये मैं इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत कपल्स हैं जहाँ हम लोग जानते हैं पर्सनली, जो एक विजुअली इम्पेयर्ड है और एक साइटेड है, वो लोग भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बट वही, एक दोनों पार्टनर्स का एक दूसरे के लिए स्ट्रांग होना भी जरूरी है, बिकॉज आई फील एक रिलेशनशिप में एक दूसरे को मोटिवेट करना कि और ग्रो हो इंसान, बेटर चीजें करे, वो इम्पोर्टेंट है। आई फील एज ए सेक लाइक माइंडेडनेस, कंपैटिबिलिटी, वो इम्पोर्टेंट है। अब चाहे विजुअली
0: बहुत
1: इम्पेयर्ड हो,
0: बढ़िया,
1: साइटेड हो, डजेंट मैटर।
0: काफी सीरियस बातें हो गई। जरा ये बताओ, हनीमून प्लान किया कि नहीं दोनों ने?
1: बिल्कुल किया। एंड हम लोग अकेले गए भी, हमारे लिए फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप अलोन था। एंड
0: ओ
1: यस, एंड हम लोग ने पहले एक्चुअली बहुत डिबेट किया। हमने सोचा इंडिया में ही पहले कहीं सोचा चले जाए, क्योंकि इजी रहेगा, राइट? इंडिया में अपने ही लोग हैं, असिस्टेंस मिल जाता है, हेल्प हो जाता है। बट फिर पीयूष ने एक्चुअली पुश किया कि नहीं यार, बाहर जाने का मन है तो चलते हैं, वर्स कम वर्स क्या होगा, हम होटल में बैठे रह जाएंगे कहीं नहीं जाएंगे, बट
0: सही
1: ट्राई
0: है।
1: नहीं है ना, तो ट्राई नहीं किया तो वो बनता नहीं। तो हम लोग ने फिर सोचा ठीक है, बाली चलते हैं, क्लोज है, अगर कुछ हुआ भी
0: इंडोनेशिया।
1: तो। हाँ जी, यही सोचा, क्लोज है, कुछ हुआ भी तो फैमिली पहुंच सकती है, हम वापस आ सकते हैं। एंड यू नो, वहाँ पे भी लोग अच्छे हैं काफी, हमने लोगों से सुना, रिव्यूज लिए, खुद से इसने अपनी आइटिनरी सेट की।
0: क्या बात है, बहुत खूब। तो श्रोताओं, ये था आज का हमरा ही प्रोग्राम पीयूष राखेजा और मेघा राखेजा के साथ। लेकिन हम इनको इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। अभी तो जो इंश्योरेंस और जो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट और वो सारा जो काम है उसके ऊपर इनके साथ एक पूरा सेपरेट प्रोग्राम नहीं बल्कि एक सेशन करेंगे, जहां आप खुल करके इनके साथ सवाल, क्यों भाई, कर सकते हैं ना आप दोनों के साथ?
1: ऑफ कोर्स, बिल्कुल
0: क्या बात है,
1: कर
0: थैंक यू सो मच, आप लोगों ने तुरंत हाँ भी भर दी। तो उम्मीद करते हैं श्रोताओं, आज का प्रोग्राम आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा, इंतजार रहेगा हमें आपके कमेंट्स का, आपके मैसेजेस का, 9414151415 पर। और रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा और पीयूष।
1: सकते। थैंक यू।
0: थैंक यू।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी के नए रंग लेकर आते हैं हम आपके पास। वैसे तो हर कोई चाहता है कि मैं जिंदगी में ये करूं, मैं जिंदगी में वो करूं, लेकिन लौट कर अपने घर की ओर आते हैं, अपने पन की ओर आते हैं, उनके पास आते हैं जिनसे हम बेहद प्यार करते हैं। लेकिन अगर वहाँ रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी भी मुश्किल आ जाती है तो ऐसा लगता है वो सफलता भी कुछ फीकी सी है। तो चलिए उन इमोशंस को संवारते हैं, आपकी जिंदगी को संवारते हैं, सफलता को खुशियों से और भर देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं भावनाओं के बारे में, सेंसिटिविटी वर्सेस सेंसिबिलिटी में आप कहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी एक्सपर्ट ग्लोबल अस्पताल से कल्पना जी, जो कि हमारे गाइड हैं और साथ साथ हमारे दोस्त भी हैं। वो एक साइकोथेरेपिस्ट हैं और स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। एक लंबे काल का अनुभव है उन्हें, बहुत लोगों को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं। कल्पना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरुषि जी, ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे रेडियो के माध्यम से श्रोताओं से मुखातिब होने का चांस मिलता है। और जब हम श्रोताओं से ऐसे बातचीत करते हैं तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो अनसुलझी पहेलियां होती है अपने जीवन की, वो धीरे धीरे सुलझते हुए महसूस होती है। सो मुझे अक्सर श्रोताओं से बात करना बहुत पसंद है, तो इस चांस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और मुझे एक बात, जब हम टॉपिक पे आए उससे पहले, क्योंकि कई बार हमें काउंसलर के पास जब जाने की बात आती है तो डर लगता है या फिर घबराहट लगती है कि मुझे कुछ हुआ थोड़ी है जो मुझे जरूरत पड़े जाने की। लेकिन जिसने भी काउंसलिंग की है वो आई थिंक एक्सपीरियंस करके बता सकते हैं कि बहुत ही फ्रेंडली अप्रोच होती है, एक्सेप्टिंग होते हैं और जैसा आपने कहा सुलझाते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप काउंसलिंग के बारे में भी अगर आज हमारे श्रोताओं को बताएं तो हमें अच्छा लगेगा।
1: वंडरफुल, मुझे ये प्रश्न सुनकर बहुत अच्छा लगा और मैं थोड़ा सा पास्ट में चली गई, रिफ्लेक्ट करने लगी कि जब मेरे पास पेशेंट आता है तो वो बहुत चिढ़ा हुआ और गुस्से में होता है कि डॉक्टर ने मुझे यहाँ क्यों भेजा, मैं कोई पागल हूँ या मुझे कोई काउंसलिंग की जरूरत है। सो सचमुच आपने बिल्कुल सही कहा, लोगों के अंदर ये भ्रांति है कि काउंसलिंग में जाना मतलब आपके मेंटल फिजिकल कुछ प्रॉब्लम है, आप मेंटली शायद ठीक नहीं हो इसलिए आपको काउंसलर के पास जाना पड़ता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास आने वाला कोई भी व्यक्ति केवल 10 मिनट के लिए ही उलझा हुआ रहता है, 10 मिनट के बाद वो महसूस करने लगता है कि अरे मैं तो सही जगह पर आया, क्योंकि हमारा जो अप्रोच होता है हमारे आने वाले हर व्यक्ति की तरफ, जिसको हम काउंसिली कहते हैं या क्लाइंट कहते हैं, उनके प्रति हमारा जो अप्रोच होता है वो किसी भी प्रकार के जजमेंटल नहीं होता है, रिलैक्सिंग होता है। हम अपने आसपास का एटमॉस्फेयर भी ऐसा बना के रखते हैं फिजिकल, जिससे कि आने वाले को ऐसे लगता है कि अरे कितनी अच्छी जगह है ये, कितनी शांति है यहाँ, कितना सुकून है। और फिर जो हमारा इसको कहते हैं ना एप्रिसिएटिव इंक्वायरी,
0: जी
1: एप्रिसिएटिव इंक्वायरी या कंपैशनेट इंक्वायरी का तरीका हम अपनाते हैं, तब उन्हें महसूस होता है कि अरे मेरी बात छोटी भी है या बड़ी भी है तो भी मुझे डिस्कस करनी चाहिए, इतना प्यार से मुझे रिस्पेक्ट देते हुए पूछा जा रहा है। सो 10 मिनट्स लगते हैं लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन जब जुड़ जाते हैं तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि कई माउंट आबू के यूथ है, बच्चे है, जो सालों से खुद फोन करके कहते हैं दीदी मैम मुझे आपके पास आना है, क्या मैं आऊं, थोड़ा मुझे जरूरत है आपके साथ बातचीत करने की। सो दिस इज आवर क्रेडिट कि जब लोग खुद फोन करके कहते हैं कि आज मुझे आपसे मिलने आना है, कई लोग ऐसे हैं माउंट आबू के, आबू रोड के या सिरोही जिले के, जो कहते हैं कि हम खास आपके पास इसलिए आए हैं कि आपके डिपार्टमेंट में आसपास इतनी जो शांति है उस शांति का अनुभव करने के लिए आए हैं। फिर जो आपके पास स्पेशल मेडिटेशन रूम है वहाँ पर बैठने के बाद हमें अपने कई सारे सवालों का जवाब ऐसे ही मिल जाता है, तो हम वहाँ केवल बैठने आए हैं।
0: मतलब आप जब बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कितना प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, और वो डर तो सिर्फ मन में ही है, एक्चुअल रियलिटी तो है ही नहीं। तो अगर आप किसी को नहीं सुना सकते हैं तो आप काउंसलर के पास जाइए, आपको वो एक्सपीरियंस होगा जो आपने सोचा भी नहीं है। तो डेफिनेटली परसेप्शन बहुत अलग है और रियलिटी बहुत अलग है, हम सोचते अलग है होता अलग है,
1: राइट।
0: आज आप हमारे साथ जुड़े हैं और हम रेडियो के माध्यम से भी पहुंच रहे हैं बहुत घरों तक, और ये भी एक तरह की काउंसलिंग है जो शायद हम सबको चाहिए, क्योंकि हम अपनी भावनाओं में खुद ही बहुत फंसे हुए हैं आज, कल्पना जी। तो जी, आज जब हमने कुछ एपिसोड्स में बात की थी कि हम सेंसिटिव हो गए बहुत ज्यादा इमोशंस को लेके भी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी सेंसिबिलिटी क्या होते हैं, और सेंसिबिलिटी मतलब ऐसा लगता है कि वो दिमाग का काम है बहुत, तो इमोशनल सेंसिबिलिटी
1: सिंपल से सेंसिटिव होना, ये जनरल कॉमनली शब्द हम यूज करते हैं कि क्या अरुषि जी आज बहुत आप सेंसिटिव हो गए थी। सबको याद है कब आप सेंसिटिव हुए थे, तो आज ही मेरे पास एक सिस्टर आए थे जो कैंसर पेशेंट के लिए प्रमोशन का काम कर रहे थे, जो हमारा अबू रोड में कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर बना है जो कि फ्री कैंसर स्क्रीनिंग करवाता है हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए और आसपास की बहनों के लिए भी ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। तो वो प्रमोशनल काम कर रही थी और देख रही थी कि इतना प्रमोशन करने के बाद भी लेडीज स्क्रीनिंग के लिए आने में दिक्कत होती है उनको या नहीं पहुंच पाती है। तो बड़ी उदास हो रही थी, निराश हो रही थी और सेंसिटिव इसलिए हो रही थी, उसके आंखों में आंसू आ गए। इतनी बहनें तकलीफ में हैं, कईयों को पता ही नहीं है, कैंसर जैसी बीमारी ऐसे है जो माताओं बहनों में ज्यादा होती है। एक पेल्विक कैंसर होता है, एक ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो वो बीमारी माताओं बहनों में क्योंकि उनको ब्रेस्ट है, तो वो कैंसर ऐसी चीज है ना, वो पेनलेस गांठे होती है या पेनलेस होता है, वो उसका हमें जल्दी पता नहीं चलता है। तो वो रोने लग गई कि देखो ना इतनी बहनें तकलीफ में हैं, कई बहनों का स्क्रीनिंग के बाद डिटेक्ट होने के बाद भी वो मेडिसिन नहीं ले रही है, ट्रीटमेंट नहीं ले रही है, मुझे नहीं समझ में आता है क्या मजबूरी है उनकी। तो वो रोने लगी, तो हम थोड़ा सा चुप हुए, आसपास हम दो काउंसलर्स बैठे थे, हमने कहा जो आपको रोना आ रहा है ना, इसे सेंसिटिविटी कहते हैं, जो आपका काम है, जो आपका प्रोफेशन है, अगर आप हर बार ऐसे रोते रहेंगी, मेरे पास पेशेंट आते हैं अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं, तो अगर हम उनकी कहानी में रोने लगे या सेंसिटिव हो जाए तो हम उनको मदद कैसे करेंगे, है ना। तो सेंसिटिव होना मतलब जल्दी से इमोशंस के प्रभाव में आकर उस इमोशंस के साथ रिएक्ट करना, चाहे वो गुस्सा हो, रोना हो, उदास होना हो, निराश होना हो, या डर लगना हो, चिंता होनी हो, या लज्जा आनी हो, शेम फील करना हो, या गिल्ट फील करना हो, ये जो फीलिंग हम तुरंत रिएक्ट करते हैं उसको सेंसिटिविटी कहते हैं। ये बहुत सेंसिटिव है, तुरंत रोने लगती है, ऐसे बोला जाता है,
0: ऐसे बोला जाता
1: है। एंड हमें अब सेंसिटिविटी से सेंसिबिलिटी की तरफ बढ़ना है। सेंसिबिलिटी का मतलब है समझदारी, संवेदनशीलता।
0: ओके,
1: संवेदनशील, उसमें शील शब्द आता है, शील मना वो ऊंचा चरित्र है।
0: ओके,
1: है ना। सो संवेदना क्या है कि भाई हम दूसरों की बात को समझते हैं, उनके साथ हम खड़े हैं, परंतु जब वो इमोशनल है तब हम स्टेबल रहते हैं, शांत रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और उनके अपने साथ होने का, मैं उनके साथ हूँ ऐसा हम उनको एहसास कराते हैं। इसलिए रोना जरूरी नहीं है, रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, चेहरे के हाव भाव बदलना जरूरी नहीं है, बस किसी के साथ होना, उसको कहते संवेदनाशीलता या समझदार इमोशंस के एक्सप्रेशन। समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के घर में डेथ हो जाती है
0: जी,
1: है ना, तो हम उनके पास सांत्वना देने के लिए जाते हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, उनको रोता हुआ देखकर खुद भी रोने लग जाते हैं
0: जी,
1: है ना, तो माहौल गमगीन हो जाता है। बट ऐसे समय पर ऐसे समझदार लोगों की आवश्यकता है जो बिना रोए उनको साथ का अनुभव कराए। और कई लोग क्या करते हैं कि रोते हुए को बोलते, अरे क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रोने से क्या होगा, रोने से क्या फायदा, ऐसे रिएक्ट करते हैं। ये भी समझदारी नहीं। अगर कोई रो रहा है तो उसे रोने का पूरा मौका देके, जरा सा हल्का करके, फिर उसके बाद हम उनको प्यार से अगर कहे कि कोई बात नहीं, अब जो हुआ है सो हुआ है, हम आपके साथ हैं, बहुत जल्द आप शांत और रिलैक्स महसूस करेंगे, बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा, है ना। वास्तविकता को सामना करना, किसी की मृत्यु हो या कई बार किसी को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तब भी उनकी स्थिति ऐसी होती है जैसे कोई व्यक्ति मर गया हो, सब कुछ डूब गया, खत्म हो गया, उड़ीसा में बाढ़ आई, कई जगह बाढ़ आती है, सब कुछ खत्म हो रहा, कल था आज कुछ भी नहीं है। तो ऐसे समय पर रोना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, तो किसी को रोने से रोकने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो रोने का उबाल जब शांत हो जाए तब तक इंतजार करके उस व्यक्ति को सही सपोर्ट करना। इंग्लिश में दो शब्द है, सिंपथी और एम्पथी, है ना, इनको समझना बहुत जरूरी है। सिंपथी वो है कि हम सहानुभूति दिखाते हैं लोगों को और रहम करते हैं उनके ऊपर, उनकी स्थिति पर हमें दया आती है। लेकिन एम्पथी, एम्पथी का मतलब है आप उनके साथ उनकी भावनाओं का अनुभव करते हुए, कदर करते हुए उनके साथ खड़े हैं, है ना, बिना रिएक्टिव हुए, स्टेबिलिटी के साथ।
0: ये एक लाइन है कि हम वहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं भावनाओं के साथ, और यहाँ पे भावनाएं हैं, ऐसा नहीं है भावनाएं चली गई हैं, लेकिन हैंडल कर पा रहे हैं सिचुएशन को बेटर, दूसरे को भी मदद कर पा रहे हैं।
1: जी,
0: बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना, मुझे लगता है हम सबको काम आने वाली चीज है। खासतौर से हम आज बच्चों की बात करें अगर, या यंगस्टर्स की बात करें, कई बार में बहुत बुरा लगता है, जैसे हम मान लीजिए एक छोटी सी ही बात है, किसी को कुछ चाहिए और लेकिन वो नहीं मिलता है, तो हमें कभी कभी ये लगता है कि बहुत अनफेयर हो रहा है हमारे साथ, कि हमारे माता पिता दे तो सकते हैं हमें, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं दे सकते हैं, बट वो नहीं दे रहे हैं, उनको लग रहा है हम बिगड़ जाएंगे या हम वो कर जाएंगे, तो फिर वो फील होता है कि उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या, और ये तो हमारे लिए जरूरी है, ये तो नॉर्मल है, सबके पास है, चाहे वीडियो गेम हो या फोन हो, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगती है जितना बड़ा रिएक्शन होता है पेरेंट्स का कि नहीं मिलेगा, तो फिर उससे इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, और लगता है कि वो हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे, वो इनसेंसिटिव है हमारे भावनाओं को लेकर, तो ऐसे में फिर क्या करें।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, आजकल की जो पीढ़ी आगे आ रही है उनमें बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, सेंसिबिलिटी की कमी महसूस होती है। सेंसिटिविटी का मतलब है कि उनको हर वो चीज जो चाहते हैं वो तुरंत मिलनी चाहिए, अगर ना मिले
0: इनसेंसिटिव लगते हैं, ऐसा लगता है वो हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे, वो इनसेंसिटिव है, हमें तो जरूरत है, बट हाउ कैन दे बी सो इनसेंसिटिव।
1: बिल्कुल, ये उनकी जो समझ है वो सही नहीं है। मैं एक घटना के साथ आपको उस बात को समझाना चाहूंगी।
0: जी।
1: हमें साइकिल चाहिए, या हमें स्कूटर चाहिए, या हमें मोबाइल चाहिए। अच्छा, मोबाइल की आवश्यकता जब है तब वो आवश्यकता कितनी है, मतलब बेसिक चीजें उसमें से हमें यूज करनी है, जैसे फोन पर बात करनी है, या मैसेजिंग के लिए यूज करना है, इमरजेंसी के लिए यूज करना है, पढ़ाई के लिए यूज करना है, बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो पढ़ाई में काम आते हैं, बट फोन एक लग्जरी हो जाए, रिक्वायरमेंट की जगह वो एक लग्जरी का साधन बन जाए, शो करने के लिए अपने दोस्तों के सामने कि मेरे पास इतना महंगा मोबाइल है। तो जब माता पिता वो पूरी नहीं करते इच्छा, तो बच्चे रिएक्ट हो जाते हैं, इनसेंसिटिव समझते कि इनके पास तो इतना धन दौलत है, फिर ये हमें क्यों नहीं देते हैं,
0: हमारी खुशी के लिए इतना तो कर सकते हैं,
1: ना, बट बच्चे तो नादान है, उनको नहीं पता, पेरेंट्स को पता है कि ये चीज के साथ नहीं, भावनाओं की बात है, चीज की बात नहीं है, भावनाओं की बात है। अब इसमें कौन सी भावनाएं जुड़ी है, देखो हर एक इंसान को समझना चाहिए कि मेरी आवश्यकता क्या है और लग्जरी क्या है, मतलब बिना आवश्यकता के मैं दूसरों को दिखाने के लिए वो चीज कितनी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर शो के लिए मुझे वो चीज लेनी है, तो ये सेंसिबिलिटी है भावनाओं की कि वो चीज आपके काम नहीं आएंगी, या काम की चीज आप उससे यूज नहीं कर पाएंगे, बिना काम के चीजों में आपका उसमें टाइम चला जाएगा, जैसे गेमिंग है, या फिर मेरे पास कई ऐसे यूथ के माता पिता आए हैं, यूथ के, कि हमारा बेटा मोबाइल पर पता नहीं क्या कुछ गेम के माध्यम से पैसे कमाने का कोई पता, मुझे भी नहीं पता है ये, कि वो कुछ करते हैं। तो पेरेंट्स आते हैं कि ये इसको अभी लत लग गई है, ये गेम्स के माध्यम से पैसा कमाने के लिए घंटों फोन से चिपका रहता है। सो ये नहीं हो, इसलिए पेरेंट्स लग्जरियस चीजें बच्चों को प्रोवाइड करने में थोड़ा सा समय लेते हैं। तो अब मतलब मेरी भलाई तो मुझे ही सोचनी है ना, पेरेंट्स सोचते हैं तो हमें उनको लगता है कि वो सेंसिटिव नहीं है,
0: इस जनरेशन को नहीं समझ रहे, वो हमें वैसे बड़ा करना चाहते हैं जैसे वो बड़े हुए।
1: हाँ जी,
0: टाइम चेंज हो गया, उनके पास फोन उस समय नहीं था, अब है, तो फिर वाई नॉट।
1: हाँ, तो सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी अगर हम हर चीज में इस बात को अप्लाई करते हैं तो बहुत मजा आएगा। सेंसिबल बनकर कोई काम करना या सेंसिटिव होकर कोई काम करना, इसमें हमें फायदा है। अगर हम सेंसिबल बनके, मतलब समझदार बनके अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए, अगर पेरेंट आपको कुछ चीज देने में देरी करते हैं तो मुझे बताइए कि आप में कौन सी एक वैल्यू है जो डेवलप होगी अगर आप इंतजार करेंगे।
0: ओके, आई थिंक पेशेंस।
1: यस, पेशेंस डेवलप होगा, है ना। और पेशेंस कितना जरूरी है, कोई भी चीज पाने के लिए अगर हमें इंतजार करना पड़ता है तो वो चीज मिलने के बाद उसकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है। और हम में वो वैल्यू आ गई पेशेंस की, तो हर चीज हमें सिखाने वाली है। क्यों ना हम सेंसिबल बनकर ये सोचे कि चलो अगर देर हो रही है या पेरेंट्स मेरी बात नहीं समझ रहे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम एक किस्सा लेते हैं कि समझो एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स से कुछ डिमांड कर रहा है और पेरेंट्स उसको नहीं दे रहे हैं, तो वो समझता है कि मेरे पेरेंट्स के पास तो है, कैपेबिलिटी है, फिर भी नहीं दे रहे हैं। और बच्चे की मांग, तो अब बच्चा अगर ये करे, जिद करने की जगह, गुस्सा करने की जगह, टेंट्रम दिखाने की जगह, वो पेरेंट्स को बोले कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ।
0: ओके,
1: मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो दोनों पेरेंट्स बैठ जाओ एंड मैं भी बैठता हूँ। क्या बात करनी है बेटा? तो वो बेटा बोलेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने इतने कामों के लिए जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे ये चीज आप अगर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पेरेंट्स क्या कहेंगे? हाँ बेटा, हम जानते हैं आपको इस चीज की बहुत आवश्यकता है, परंतु हम जो घर का खर्चा चला रहे हैं, EMIs भर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने EMIs जो जा रहे हैं, इसके कारण थोड़ा मैनेज करने में हमें अभी दिक्कत आ रही है, तो क्या हम आपको थोड़े दिन के बाद पैसे को मैनेज करके आपको दे तो आपको चलेगा?
0: मतलब बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स बताते नहीं है कई बार।
1: हाँ, वो सोचते हैं क्यों हम अपनी परेशानी बच्चों को बताएं। हाँ, तो वो सोचते हैं कि ठीक है थोड़े दिन बाद मैनेज करके दे देंगे उनको। तो बच्चों को जब समझ में आता है कि अरे जैसे मेरी 4-5 प्रायोरिटीज है, रिक्वायरमेंट्स है, वैसे 4-5 चीजों जगह पर उनको मनी मैनेज करना है, तो मैं थोड़ा सा रुक सकता हूँ। और वो देखता है कि कितना सिंसियर एफर्ट कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स मुझे वो चीज दिलवाने के लिए, तो उसको कदर होती है उस चीज की, उसे एहसास होता है कि इस वजह से देरी हो रही है।
0: ओके,
1: है ना। तो उसमें पेरेंट्स के बीच में बहुत, ये जो फैमिली का बॉन्डिंग है ना, पेरेंट्स के बीच में एक पीसफुल कम्युनिकेशन होता है, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में एक बहुत सुंदर ब्रिज बन जाता है। मैं देखती हूँ आजकल रिलेशनशिप में वॉल्स बनती जा रही है, दीवारें खड़ी हो रही है आपस में,
0: शेयर नहीं करते
1: तो ब्रिज बन जाएगा।
0: That's wonderful, क्योंकि सेंसिबिलिटी की बात है, भावनात्मक, मुझे लगता है बच्चे शायद इतना नहीं समझेंगे, पर बच्चों को बताएंगे तो समझेंगे और वो बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा। ये हमने आज जाना आज के एपिसोड में। आई थिंक बहुत बहुत ही अच्छा आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन था, बहुत इंटरेस्टिंग था कॉन्वर्सेशन। जाते जाते कल्पना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई भी ऐसे 2 मिनट का आप हमें एक्सपीरियंस करा सके या कोई भी ऐसे शब्द बता सके जो हम शायद रिकॉल करें, तो हम ये बातें याद रखें, अपने साथ लेकर जाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आज हमने सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी दो शब्दों को अच्छे से समझा और उन्हें महसूस किया, तो उसी तरह से अगर हम सेंसिटिविटी को सेंसिबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो हमें कुछ अभ्यास मेंटल और फिजिकल करने की आवश्यकता है। जो एक छोटा सा अभ्यास हमें बहुत सारी चीजों को अचीव करने में मदद करेगा, इंटरनली, इमोशनली और फिजिकली भी। तो एक बहुत सुंदर अभ्यास है जिसको अगर हमारे यूथ 1 मिनट के लिए भी बैठकर करें। अरुषि जी, आप ये बताएंगे कि 1 मिनट में हम कितनी सांसें लेते हैं?
0: कितनी पड़ेगी?
1: चलो, तो हमारे श्रोताओं को ये अभ्यास है कि वो गिने 1 मिनट में कितनी सांसें।
0: मैं भी करूंगी अभ्यास, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है।
1: और गिनते समय थोड़ा हर सांस को लंबा और गहरा लेने की कोशिश करें। इसे सांस हम नाक से लेते हैं तो हमारे छाती से होकर पेट तक पहुंचती है सांस। तो एक बहुत सुंदर अभ्यास है कि बस शांति से बैठ जाए, अपनी सांसों को देखे और लंबी और गहरी सांसें ले, और उसके साथ अपने मन में दो या तीन विचारों को दोहराए जो भी आपको अच्छे लगते हैं, है ना। सो आज के टॉपिक के अनुसार हम क्या ले सकते हैं कि आई एम अ सेंसिबल पर्सन। गहरी और लंबी सांस लेकर अपने सांसों को देखने का अभ्यास करें, हर सांस के साथ अपने मन और शरीर को रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स फील करें। अपने मन में इन विचारों को दोहराए, मैं संवेदनाशील सेंसिबल हूं। संवेदनाशीलता सेंसिबिलिटी मेरी शक्ति है। गहरी और लंबी सांस ले, इस सवाल को, इस प्रश्न को या इस वाक्य को दोबारा दोहराए, मैं संवेदनाशील हूं, मेरी संवेदनाशीलता मेरी शक्ति है। गहरी लंबी सांस ले, दूसरा वाक्य है, मैं प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना और सोचना ये अभ्यास करती हूं। मैं प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना और सोचना ये अभ्यास करती हूं। गहरी लंबी सांस ले और रिलैक्सेशन के साथ तीसरा अफर्मेशन या तीसरा वाक्य अपने मन में दोहराए, मैं आहत होने पर भी सम्मान पूर्वक संवाद करना चुनती हूं या चुनता हूं। मैं आहत होने पर भी सम्मान पूर्वक संवेदनाशील होकर संवाद करना चुनती हूं या चुनता हूं। गहरी लंबी सांस लें और इसी के साथ हम यहीं पर इस चीज को समाप्त करते हैं।
0: थैंक यू सो मच कल्पना जी। मुझे लगता है हमने आज डिफरेंस भी जाना, सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी की वो लाइन को भी समझा, और किस तरह से रिएक्ट करते हैं इमोशंस को लेके, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है वो भी जाना, और कैसे हमारा उससे बॉन्ड भी हमारे हर रिलेशनशिप से बेटर हो रहा है ये भी जाना। वो तो हम सब चाहते हैं कि हो, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमें इस कार्यक्रम में समय देने के लिए।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और सबसे पहले हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच दोस्तों, और चलिए फिलहाल वक्त हो गया इजाजत लेने का। लव यू जिंदगी के साथ लव यू जिंदगी कार्यक्रम में अगली कड़ी में मुलाकात होगी। तब तक जिंदगी को खुल कर कहिए कि लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वंदे मातरम गीत भारत की आजादी की लड़ाई का प्रतीक था। इसमें स्वशासन की सामूहिक इच्छा और लोगों का अपनी मातृभूमि के प्रति भावनात्मक जुड़ाव झलकता था। शुरुआत में स्वदेशी और विभाजन विरोधी आंदोलनों के दौरान लोकप्रिय हुआ ये गीत जल्द ही क्षेत्रीय सीमाओं के ऊपर उठकर राष्ट्रीय जागृति का गीत बन गया। बंगाल की सड़कों से लेकर बॉम्बे के मुख्य इलाकों और पंजाब के मैदानों तक वंदे मातरम का स्वर ब्रिटिश शासन के विरोध के प्रतीक के रूप में गूंज उठा। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि देश के अनेक वीर क्रांतिकारियों का प्रेरणा मंत्र भी था। फिर वो अमेरिका में गदर पार्टी के प्रमुख क्रांतिकारी रहे करतार सिंह सराबा ही क्यों ना हो। वंदे मातरम का नारा उन्हें वतन पर मर मिटने का हौसला देता था। आज के एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा कार्यक्रम में हम सुनेंगे इन्हीं वीर क्रांतिकारी करतार सिंह की कहानी, जो मात्र 19 साल की आयु में फांसी पर चढ़ा दिए गए।
1: दीदी, सच में वंदे मातरम गीत में बड़ी शक्ति है। आज भी सुनती हूँ तो अंदर एक जोश भर जाता है।
2: हाँ बन्नू, सोचो आज जब ये गीत हमारे दिलों को इतना झंझोर देता है, वैसे में स्वतंत्रता आंदोलन के समय इसका कितना प्रभाव रहा होगा कि इसने देश के अनेक युवाओं में क्रांति की लौ जगाने का कार्य किया। वंदे मातरम गीत न सिर्फ क्रांतिकारियों में नया जोश, शक्ति और उम्मीद भरता था, बल्कि वो उनका बीज मंत्र बन गया था। गदर आंदोलन के दौरान भी इस गीत ने क्रांतिकारियों के हृदय में जल रही ज्वाला को बुझने नहीं दिया।
0: आप श्रोताओं को याद होगा कि कैसे 15 जुलाई 1913 को कैलिफोर्निया के पंजाबी भारतीयों ने एकत्रित होकर गदर पार्टी का गठन किया था। उसका उद्देश्य था सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाना। वीर क्रांतिकारी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना पार्टी के संस्थापकों में से थे। उन्होंने गदर नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला था, जो पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती और पश्तो भाषाओं में प्रकाशित होता था। देखते ही देखते वो अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बन गया था। वो उसमें प्रकाशित होने वाले लेखों से भयभीत रहने लगे थे। लेखकों में एक नाम था करतार सिंह, जो अखबार के लिए देशभक्ति की कविताएं और लेख लिखा करते थे। साथ ही साथ अखबार की गुरमुखी संस्करण की छपाई का जिम्मा भी संभालते थे। बहुत कम समय में गदर पार्टी गदर आंदोलन के माध्यम से प्रसिद्ध हो गई और इसने समाज के हर वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया।
1: गदर पार्टी के ये करतार सिंह आखिर कौन थे दीदी, जिनके लेख अंग्रेजों को बिल्कुल नहीं सुहाते थे?
2: अरे बन्नू, उनके बारे में बताऊंगी तो दांतों तले उंगली दबा लोगी तुम।
1: अच्छा, ऐसा क्या था उनमें?
2: बेजोड़ साहस, बेखौफ युवा जिसे किसी का डर नहीं था।
0: सोहन सिंह भाकना करतार सिंह को बाबा जनरल कहा करते थे। देश की स्वाधीनता की लड़ाई में मर मिटने को तैयार करतार ने अमेरिकियों से बंदूक चलाना और विस्फोटक उपकरण बनाना सीखा था। साथ ही हवाई जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण भी लिया था। यह साल 1914 की घटना होगी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। ब्रिटिश हुकूमत अपने मित्र देशों के साथ युद्ध में तल्लीन हो गया था। तब गदर पार्टी के नेताओं ने इस अवसर को भुनाने का फैसला किया।
3: क्यों ना गदर पत्रिका के जरिए कुछ वड्डा किया जाए।
4: कोई सुझाव हो तो बताओ,
3: एक दमदार आलेख प्रकाशित करते हैं।
0: इस तरह 5 अगस्त 1914 के अंक में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का निर्णय शीर्षक से एक लेखक प्रकाशित हुआ। पत्रिका की हजारों प्रतियां सैन्य छावनियों, गांवों और शहरों में वितरित की गई। इसके साथ ही पार्टी के नेताओं ने कलकत्ता जाने का निर्णय लिया ताकि आगे की कार्रवाई को संपन्न करा सकें।
4: हम कलकत्ता कैसे जाएंगे?
3: आप लोग ऐसे सलामिन जहाज से कोलंबो और वहाँ से कलकत्ता पहुँचेंगे।
4: मेरे साथ और कौन कौन जा रहे हैं?
3: आपके साथ सत्यन सेन, विष्णु सेन, विष्णु गणेशन पिंगले और गदर के स्वतंत्रता सेनानी भी होंगे।
4: ठीक है, फिर हम जाने की तैयारी करते हैं।
3: जुगंतर नेता जतिन मुखर्जी के परिचय पत्र के साथ कलकत्ता पहुंचकर आप और पिंगले बनारस जाएंगे और वहां राज बिहारी बोस से मुलाकात करेंगे। उन्हें सूचित करेंगे कि 20,000 और गदर सदस्य जल्द ही आने वाले हैं।
0: हालांकि इस बीच ब्रिटिश अधिकारियों को इस योजना की भनक लग गई और बड़ी संख्या में गदर पार्टी के नेताओं को बंदरगाहों पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
1: फिर क्या हुआ दीदी?
2: होना क्या था, गदर के क्रांतिकारी कहां से पीछे हटने वाले थे। गिरफ्तारियों के बावजूद पार्टी के सदस्यों ने लुधियाना के पास लादोवाल में एक बैठक की। बैठक में सशस्त्र कार्रवाई के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अमीरों के घरों में डकैती करने का निर्णय लिया गया।
0: तय योजना के तहत सब ठीक ही चल रहा था, तभी एक छापे के दौरान हुए बम विस्फोट में दो गदरी वाराम सिंह और भाई राम रखा मारे गए। उधर 25 जनवरी 1915 को राज बिहारी बोस अमृतसर पहुंचे और 12 फरवरी को साथियों के साथ एक बैठक की।
5: साथियों, हाल ही की घटनाओं से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे। हमें बहुत सोच समझकर और संभल कर विद्रोह का निर्णय लेना है।
6: आपने क्या सोचा है?
5: अगर आप सभी की सहमति हो तो 21 फरवरी को विद्रोह शुरू किया जाएगा। पहले हम मियां मीर और फिर फिरोजपुर की छावनियों पर कब्जा करेंगे। उसके बाद अंबाला और दिल्ली के पास विद्रोह को अंजाम दिया जाएगा।
6: ठीक है, हम सब आपके साथ हैं।
0: पार्टी के सदस्य योजना अनुसार तैयारी में जुटे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके बीच कोई पुलिस मुखबिर है जो सभी योजना पर पानी फेर सकता है।
7: जनाब, गदर पार्टी वाले बड़ी योजना बना रहे हैं।
8: What is their plan? Tell me.
7: साहब जी, मेरा नाम नहीं आना चाहिए वरना वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। आप गारंटी दें तो मैं बताऊं।
8: Don't test my patience. Just tell their plan.
7: वे सभी 21 फरवरी को बड़ा धमाका करेंगे। छावनियों पर कब्जे की बात कर रहे थे। दिल्ली अंबाला किसी को नहीं छोड़ेंगे।
8: Oh, how dare are they?
0: किरपाल सिंह की मुखबिरी के कारण 19 फरवरी को ही बड़ी संख्या में पार्टी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने देशी सैनिकों को निहत्था कर दिया। इससे विद्रोह विफल हो गया। क्रांति की विफलता के बाद जो सदस्य गिरफ्तारी से बच गए थे उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया।
9: मुझे कहाँ जाना है सोहन सिंह जी?
3: आप हरनाम सिंह तुंदिलाद, जगत सिंह और कुछ अन्य साथी अफगानिस्तान जाएंगे। ईश्वर सिंह चीन जाएंगे।
0: सोहन सिंह ने तो फैसला सुना दिया था, लेकिन करतार सिंह के मन में कुछ और ही चल रहा था। 2 मार्च 1915 को वो दो दोस्तों के साथ वापस आए और सरगोधा के चक नंबर 5 में चले गए, जहां एक सैन्य अड्डा था। वहां उन्होंने सेना के जवानों के बीच विद्रोह का प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी भनक रिसालदार गंडा सिंह को मिल गई और उन्होंने करतार, हरनाम सिंह तुंदिलाद और जगत सिंह को लायलपुर जिले के चक नंबर 5 से गिरफ्तार करवा दिया। गदर पार्टी में खलबली मच गई।
1: आगे क्या हुआ दीदी? गिरफ्तारी के बाद करतार सिंह और उनके साथियों के साथ क्या हुआ?
2: बन्नो, तुम क्यों घबरा रही हो? क्रांतिकारी सदा अपनी जान हथेली पर लेकर चला करते हैं। उन सभी पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का गंभीर आरोप लगा था, लिहाजा सजा भी बड़ी होनी थी।
1: क्या सजा मिली दीदी?
2: फांसी।
1: ओह, ये तो बहुत दुखद हुआ।
2: हाँ, लेकिन सच यही है।
1: किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की?
0: ब्रिटिश पुलिस ने करतार सिंह और उनके साथियों पर जो षड्यंत्र के आरोप लगाए थे उसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया था कि ये सिर्फ विदेशी हुक्मरानों को एक खुली चुनौती थी, जिसे राजद्रोह का नाम दिया जा रहा था।
9: सारे आरोप गलत हैं। मुझे अपने किए पर किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं है। ये तो सत्ता हथियाने वालों की महज एक चुनौती थी जिस पर मुझे गर्व है। प्रत्येक दास को विद्रोह करने का अधिकार है। अपने देशवासियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उठ खड़ा होना कभी अपराध नहीं हो सकता।
0: करतार सिंह की अपनी दलील थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार उसे कहां मानने वाली थी। उन्होंने राजद्रोह का मुकदमा चलाया। करतार सिंह भी पीछे हटने वाले नहीं थे।
9: आप अपनी करो, मैं अपनी। सारा दोष मेरा है।
10: I'm really surprised to see this man. He is so fearless.
0: न्यायाधीश इतने कम उम्र के लड़के को इस तरह बेपरवाह व्यवहार करते देखकर चकित थे। करतार की उम्र को देखते हुए उन्होंने उनसे अपना बयान बदलने की सलाह दी। उनसे अपील करने को कहा गया। तब करतार ने पलटवार किया।
9: मैं ऐसा क्यों करूं? अगर मेरे पास एक से अधिक जीवन होते ना, तो अपने देश के लिए उनमें से प्रत्येक का बलिदान करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होता।
0: करतार को वापस जेल भेज दिया गया। उन्हें एहसास था कि ब्रिटिश सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं, इसलिए वो अपने साथियों के साथ जेल से भागने की योजना बनाने लगे।
9: सुनो, अगर हमें कुछ औजार मिल जाए ना, तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं।
11: कौन करेगा हमारी मदद?
9: कोई ना कोई देशभक्त तो मिल ही जाएगा, उसे ढूंढो।
11: ठीक है, देखता हूँ।
0: और एक दिन करतार के साथियों को एक मददगार मिल गया, जिसने उन्हें सलाखों को काटने वाला एक औजार उपलब्ध करा दिया। सभी बड़े सावधानी से अपनी योजना को अंजाम देने में लग गए, लेकिन किस्मत ने फिर से धोखा दिया। किसी गद्दार ने जेल अधिकारियों को इसकी खबर दे दी।
12: साहब, करतार और उसके साथी जेल से भागने की योजना बना रहे हैं।
13: तुम पागल हो, इस जेल से कोई भी भाग नहीं सकता।
12: जनाब जनाब, आप उसके सेल में छापा तो डालिए। मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे दो कोड़े लगा देना।
13: Oh, you foolish! चलो देखता हूँ।
0: जेलर अचानक से करतार सिंह के सेल के पास पहुंचता है और ताला खोलने को कहता है।
13: तुम साहब एक साइड खड़े हो जाओ। सिपाही, तलाशी लो पूरे सेल की।
14: जी जनाब।
12: लगता है किसी ने गद्दारी कर दी है।
14: सर जी, ये देखिए, इस मिट्टी के गड्ढे के नीचे क्या मिला।
13: औजार? चप कर लो सबको और अलग अलग सेल में डाल दो।
0: जेलर करतार को घूरते हुए बाहर निकल जाता है। फिर सुनवाई की तारीख आती है। एक बार फिर से सभी जज के सामने थे।
15: करतार, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है?
12: नहीं जी, जो कहना था मैं कह चुका हूं।
10: Then I must announce the judgment.
15: करतार और उसके साथ षड्यंत्र में शामिल सभी लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है।
0: इस तरह जज ने सजा सुना दी और फिर वो मनहूस तारीख आई, 17 नवंबर 1915, जब करतार सिंह और उनके साथियों को लाहौर के केंद्रीय जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के समय करतार की उम्र मुश्किल से 19 वर्ष थी। लेकिन उसका साहस ऐसा था कि कैद के दौरान उसका वजन 14 पाउंड बढ़ गया था।
1: इतनी छोटी उम्र में इतना साहस, वो तो सच में बड़े निडर थे।
2: हाँ बन्नो, करतार सिंह की रगों में देशभक्ति इतनी कूट कूट कर भरी थी कि वो कैसे भी उस पर अपनी जान न्योछावर करने को तैयार रहते थे। जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती उसे सहर्ष स्वीकार करते थे।
1: देश को तो उन पर नाज है, उनके परिवार वालों को भी बेटे पर फक्र होगा।
2: तुम जानना चाहोगी कि करतार सिंह ने भावी क्रांतिकारियों के सामने कितनी बड़ी मिसाल पेश की? यहाँ तक कि शहीद भगत सिंह भी उनसे प्रेरित थे। भगत सिंह की गिरफ्तारी पर उनके पास से करतार सिंह सरबा की तस्वीर बरामद हुई थी। वे हमेशा इस तस्वीर को अपनी जेब में रखते थे।
0: ये थी एक महान युवा क्रांतिकारी के शहादत की कहानी। वो क्रांतिकारी जिसका जन्म पंजाब के लुधियाना के समीप सरभा गांव में मंगल सिंह ग्रेवाल और साहिब कौर के घर हुआ था। वो एक जट सिख परिवार से थे। बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। दादा ने उनका पालन पोषण किया। गांव में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद करतार सिंह का लुधियाना के मालवा खालसा हाई स्कूल में दाखिला कराया गया। वहाँ 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद जुलाई 1912 में

दे मातरम के मूल मंत्र को अपने दिल में बसाए, इस वीर क्रांतिकारी ने देश को आजाद कराने का ना सिर्फ सपना देखा बल्कि उसे पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में सुनेंगे एक और वीर क्रांतिकारी के शहादत की कहानी।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया, और अपना भाषा में कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में जिस गाँव और जिस अंचल में पले बड़े वो गाँव और अंचल कभी नहीं भूल पाते हैं। कहीं भी रहे तो अपना गाँव याद आता है, क्योंकि गांव को स्वर्ग कहते हैं। बोले कुछ भी रुखा सुखा हो फिर भी अपना गांव अपना लगता है। तो इस कार्यक्रम को लेकर जब हम हर जगह जाते हर वर्ग से मिलते तो हमें खुशी मिलता है, क्योंकि सरकार का जो मंच है आसपास का गतिविधि सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन मिला हुआ है। तो इस अंचल का गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए हम हमेशा इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं और सभी वर्ग से रूबरू कराते हैं, क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि समुदाय तक पहुँचे ये हमारा मंशा है। और हर एपिसोड की तरह आज का एपिसोड में हम पर्यावरण के बारे में बात करेंगे, और पर्यावरण में फास्ट सब्जेक्ट है, विशाल विषय है, जितना भी ले कम ही होगा और हम उसी में रहते हैं और उससे हम लाभ लेते हैं। कभी कभी खेती कर देते हैं जिसका चलता हमें खेती सहन करना पड़ता है, क्योंकि हम जैसे देंगे उस तरह हमें मिलता है। तो हमारा ऊपर निर्भर करता है हमारा प्रकृति। तो प्रकृति का बात करते हुए, एनवायरमेंट का बात करते हुए आज हमारा साथ हर एपिसोड की तरफ आज भी श्रीमान गोपाल राम पुरे जी उपस्थित है, जो कि पर्यावरण के ऊपर में बहुत कुछ जाना है और रिसर्च कर रहे हैं, अभी भी करते रह रहे, पढ़ाई कर रहे हैं और कराते रहते हैं। तो उनको स्वागत करते, श्रीमान जी आपको स्वागत करते रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। तो आप अपना परिचय इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दीजिए, ऐसे तो हर एपिसोड में आपका इंट्रोडक्शन हमारा इंट्रोडक्शन चलता ही है, फिर भी आज का कार्यक्रम को लेकर जब आए तो आज का विषय क्या रहेगा और क्या फायदा होगा?
1: सर नमस्कार। सर आपके द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले रेडियो मधुबन के इस कार्यक्रम में मैं पुनः आपके साथ उपस्थित हूँ, जिसमें किस प्रकार से हमारे वातावरण में चेंजेज हो रहे हैं, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन बहुत बड़े एरिया से संबंध रखता है। और जहाँ जलवायु का मतलब है वह है सामान्य तौर पर अगर हम सभी समझें तो 100 वर्षों के मौसम का, वार्षिक मौसम का जो औसत है सामान्य तौर पर 100 वर्षों तक का, उसको हम जलवायु कह सकते हैं। क्योंकि जो मौसमी परिवर्तन है, जैसे ऋतु चक्र, ऋतु में परिवर्तन है, सर्दी गर्मी बरसात, एक वर्ष का, ये एक वर्ष का हुआ, इस तरह से लगभग 100 वर्ष की जो स्थिति है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है उसको हम जलवायु कह करके, उसमें जो चेंज हो रहे हैं ड्रास्टिक, उसको हम जलवायु परिवर्तन से जानते हैं।
0: शुरू से अभी तक,
1: हाँ, लगभग 100 वर्षों तक का औसत जी वो जलवायु परिवर्तन के अंदर आता है। बाकी जो दैनिक रूप से होता है वो तो मौसमी परिवर्तन है, दैनिक परिवर्तन है, वार्षिक परिवर्तन है, वो नहीं। 100 वर्षों तक की सामान्य स्थिति जो मौसम की रहती है उसको हम जलवायु कहते हैं, और उसमें जो चेंज होता है वो जलवायु परिवर्तन है। और वो धीरे धीरे, जैसे 100 वर्ष का है तो वो धीरे धीरे किस तरह से जो वातावरण की जो अवस्था है, जिसमें तापमान है, वर्षा का मात्रा है, इन सब में लेकर के जो प्रकृति पर असर होता है वो जलवायु परिवर्तन है।
0: बहुत अच्छा बात बताए, जलवायु मतलब हम ऐसे सोचे थे, लेकिन
1: सर यही बात सर समझाना चाह रहे हैं आपके साथ में। हमने कक्षाओं तक जाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर दिक्कत एक दूसरी आई कि उन बच्चों में वो समझ लाने का जो प्रयास हो रहा है, सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन वो चीज उन बच्चों तक जा पा रही है नहीं जा पा रही है, वो आपके साथ रह करके हमने देखा। अब जब कक्षा कक्ष में हम जाते हैं तो उनके समझ के लेवल को पता करना चाहते हैं, वो बच्चा उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता तो फिर हम उस पर ज्यादा बातचीत कर ही नहीं पाते,
0: ठीक है,
1: तो अपने को रुकना पड़ता है।
0: वो भी परिवर्तन हो चुके हैं भाई,
1: वो भी परिवर्तन हो गया है। तो बच्चे बहुत अच्छे रिसेप्टर होते थे।
0: आपका एज कितना है?
1: सर मेरा है 63।
0: और 63 में जब आप 11 क्लास में पढ़ रहे थे
1: उस समय, देखिए उस समय सर उस समय बहुत उत्साह
0: परिवर्तन स्टूडेंट का, जो उस समय का स्थिति आप कैसे था और आज का स्टूडेंट का हम देख रहे हैं
1: जी बिल्कुल। कक्षा कक्ष में आपकी अपेक्षाओं के साथ में मैंने भी आपसे निवेदन किया, आपने भी मुझे सहयोग किया, हम कक्षा कक्ष में गए, विभिन्न परिवेश की कक्षाओं में गए,
0: पर वो भी परिवर्तन हो चुका
1: है। वो भी
0: हम जैसे थे उस तरफ नहीं,
1: हमने ये मैंने ये सोचा था उसमें सर कि हम वहाँ जा करके वो बच्चे कुछ बोलेंगे तो हम वो करके बैलेंस कर पाएंगे, लेकिन वास्तव में 3 दिन का आपका हमारा ऐसा अनुभव रहा, ये मतलब रूबरू अनुभव, कि जब बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा फिर उनको अपन क्या कुछ कहते रहे वो उनके ऊपर से निकलेगा,
0: तो फिर परिवर्तन
1: वो सर वो बड़ा ही सर उनके रिसेप्टर्स बहुत अच्छे।
0: 50 साल का पहले का जो जलवायु और आज का
2: का अंतर होगा ना,
1: जी सर बिल्कुल।
2: सोचो वो दिन और आज दिन, हम चाहते हम जैसे थे कि बच्चे वैसे रहे, हो नहीं पाएगा
1: सर। वास्तव में बच्चे या तो बहुआयामी हो गए हैं, क्योंकि ब्रेन तो वही है, तो या तो उनका ध्यान भटक रहा है या उनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए हो सकता है वो इसको कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाए, ये मेरे लिए आज का भी आश्चर्य था। तो जब बच्चा समझे नहीं तो हम फिर उनको समझाने का ज्यादा प्रयास करें, इसका भी कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ
2: अपना ठीक है
1: नहीं। पर प्रैक्टिकली ये एक तरह से रिसर्च हो गया कि बच्चों में अगर कोई बात ले जा रही है सर, तो आपने ही मेरे से बात की थी कि सारा नॉलेज है उन पर, वो ले तब तक तो देना ठीक है, जब वो ले ही नहीं पा रहे हैं फिर
2: देने से कोई फायदा नहीं।
1: कई बार अपन कहते हैं ना,
2: बीज में जाकर पहाड़ी में
1: ऐसे ही लगा देंगे तो उसका तो कोई मतलब नहीं हुआ ना,
2: बीज का बल्लू।
1: तो इसलिए ये बहुत बड़ा अनुभव हुआ। तो सर पहले सर वो जो समय था उसमें नदियों में पानी बहता था, हम नदियों में नहाने जाया करते थे, हम पैदल चला करते थे सर। मैं स्वयं रोज 13 किलोमीटर दूर पैदल पढ़ करके वापस आता था घर पे, तो रोज की 26 किलोमीटर की पैदल यात्रा में पढ़ाई होती थी सामान्य तौर पे सभी की। जो बच्चा 11वीं में आ गया, 12वीं में आ गया, महाविद्यालय लेवल तक जाने के, उनको पैदल जाना पड़ा, हमको 10-12 किलोमीटर साइकिल से भी जाना। तो सर वो जो उसमें बॉडी की जो स्ट्रेंथ थी वो भी अच्छी थी, लगन भी बहुत अच्छी थी। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा ही
2: परिवर्तन,
1: ये भी एक परिवर्तन ही है। बच्चा चलना नहीं चाहता सर, जब हम कहते हैं उसको 2 किलोमीटर चलना है तो वो पैदल चलना नहीं चाहेगा आज की तारीख में। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला। तो जो आप बता रहे थे कि उसमें कैसे किए थे, उसमें सर एक संभावना जो निकली आज मैंने सोचा कि जो इस सब्जेक्ट को जानते हैं वही बच्चे लेकर के उन्हीं के साथ काम किया जाए। आम बच्चों को साथ में रखेंगे सर तो वो परिणाम नहीं आएगा जो लाना है, लेकिन जैसे उस स्कूल विशेष में बड़ी कक्षा के वो बच्चे जो 6-12 के होने चाहिए सामान्य तौर पर, वैसे सभी बच्चे होंगे, उसमें कम से कम 4-5 बच्चे रुचि जो लेने वाले उन्हीं को ये बात बताई जाए।
2: और ये चीज जो शिक्षक है ना उनको बलिवंत जानना,
1: उन्हीं को बताना है।
2: टैलेंट है बच्चे हर साथ लगाव है, पढ़ाते जानते
1: बिल्कुल
2: बोलने में
1: एक्सपर्ट होना चाहिए,
2: तो वो बच्चे सिलेक्ट करके,
1: तो वो सर वही बच्चे उनके स्कूल में फिर जब आगे आएंगे ना वो उन बच्चों को प्रेरित करते रहे। तो ये सर इसका एक नया मॉडल हो सकता है कि 5-7 स्कूलों से उन बच्चों को इकट्ठा किया जाए, जो भी 2-2, 5-5 और 5-7,
2: उसका तो डिबेट भी रख सकते हैं,
1: डिबेट रख सकते बिल्कुल सर। तो निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा करके, और उनको जब अपन थोड़ा संबोधन देंगे ना तो निश्चित रूप से वो बच्चे बहुत बड़ा काम कर जाएंगे, इसका ये मॉडल हो सकता है। क्योंकि जो नहीं चाह रहा है उसका तो कोई मतलब ही नहीं होगा। तो ये उसमें थोड़ा सा एक अपन इसको एज चैलेंज इसको लेते हैं तो वो कर सकते हैं। तो सर जो ये जलवायु परिवर्तन है
2: जी,
1: ये बच्चे के या व्यक्ति के या उस पर्यावरण के क्रिया और प्रतिक्रिया पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर अब उस जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने में एक सर बहुत बड़ा घटक है कार्बन डाइऑक्साइड
2: ओके,
1: और वो हरित गृह प्रभाव का कारण है। इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट एक शब्द इसमें बहुत ज्यादा काम में आता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? वो ये है कि जो ऊपर से वायुमंडल में जो अधिक मात्रा में CO2 है, ग्रीन हाउस अपने कार्बन डाइऑक्साइड है, सूर्य से आने वाली कम दैर्ध्य की तरंगों को तो वायुमंडल में प्रवेश करने देती है, लो डेंसिटी कम तरंग दैर्ध्य वाली, लेकिन जब पृथ्वी पर जाकर के वो हाई डेंसिटी में बदल जाती है, उसकी तरंग दैर्ध्य हाई हो जाती है, उसको वो रोकती है
2: कार्बन डाइऑक्साइड।
1: जी हाँ, तो कम दैर्ध्य वाली तो नीचे आने देगी जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, और हाई वो जब पृथ्वी पर जाती है उसके बाद वो हाई हो जाती है, और उसके बाद में जब वो ऊपर उठती है तब उसको वो रोकती है, और इससे जो टेम्परेचर बढ़ता है उस आवरण से जो टेम्परेचर बढ़ता है वो जब रोकती है तो जितना टेम्परेचर बढ़ता है मतलब वो कितना आने देती है और फिर कितना नहीं जाने देती, फिर वो टेम्परेचर को बढ़ा देती है, और इसको हरित गृह प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट।
2: नुकसान कर,
1: हाँ सर, नहीं सर ये नुकसान तो करता है लेकिन एक सीमा के बाद बहुत बड़ा नुकसान करता है। जैसे उसका लेवल, जैसे अभी जो आदर्श स्थितियां हैं जैसे 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चल रहा है
2: जी,
1: तो वो सामान्य तौर पे अच्छा हो सकता है, लेकिन उससे जो अधिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा वो विकिरण बाहर नहीं जाएगा और उनको वो अवशोषित कर लेगा, और इससे जो तापमान बढ़ेगा वो एक निश्चित सीमा तक बढ़ता है, वहां तक तो ठीक है क्योंकि तापमान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जब उससे अधिक बढ़ जाएगा या उसका प्रभाव कम हो जाएगा, वो जो गैसें ज्यादा हो जाएगी तब उसका या तो उसका आवरण कमजोर हो जाएगा, जब वो अधिक हो जाएगा तो निश्चित रूप से जब टेम्परेचर बढ़ेंगे वो अतिशय टेम्परेचर बढ़ेंगे वो व्यक्ति को हर तरफ से जीवों को, प्रकृति को, सभी को सब तरह से प्रभावित करेगी, दुष्प्रभावित करेगी, और वो उसके शरीर पर या अन्य अन्य तरीके से हर एक जीव को वहां पर प्रभावित करेगी। जैसे इसमें अपन ये ले सकते हैं, जैसे कुछ पक्षी मर जाते हैं, विलुप्त हो रहे हैं, प्रकृति भी विलुप्त हो रही है, वन औषधियां हैं, बेले हैं, वो विलुप्त हो गई क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बरसात कम हो रही है या अधिक हो रही है। तो मतलब जो सस्टेन करना चाहिए उस वातावरण में, जिस औषधि को, जिस पेड़ पौधे को, जिस जीव जंतु को, जिस अच्छे जीव को, जिस हानिकारक जीव को बैलेंस के साथ में जो डेवलप करते हैं, वो सब इम्बेलेंस हो जाएंगे। उनके इम्बेलेंस होने से हमारा जो पर्यावरण है वो असंतुलित हो जाएगा, जो हमारे विकास को दुष्प्रभावित करेगा। तो सर, ये सबसे बड़ा जो इफेक्ट है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसमें कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस में जो प्राकृतिक कारण है वो सर जल वाष्प है।
2: जल वाष्प
1: जी,
2: ऊपर जाता है,
1: एवोपरेशन, कितना टेम्परेचर है वो इन सबको मिला के कितना बढ़ गया, तो वो एवोपरेट होकर के ऊपर चला जाता है।
2: नीचे तो खाली हो गया पानी,
1: नीचे खाली हो गया, फिर वो जहाँ अच्छा होगा वहाँ जाके बरसेगा।
2: कहाँ पर अतिवृष्टि, अनावृष्टि,
1: मतलब जहाँ पर हरित ग्रह है, जहाँ पर बैलेंसिंग प्रकृति है,
2: वहाँ पर
1: वो वहाँ पर बादल आकर्षित होते हैं, वहाँ बरसात कर जाते हैं। जैसे अपने सर आबू पर्वत क्षेत्र है ना, ग्रामीण अंचल में बरसात कम होती है, लेकिन आबू पर्वत के उस एरिया में आप चले जाओ, पहाड़ी एरिया, वहाँ बरसात
2: बादल बादल पूरा नदी दिखाई दे रहा।
1: क्यों सर, क्यों?
2: यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा,
1: और बरसात भी रोज होती है, रोज होती है, थोड़ी थोड़ी रोज होती है, तो वो प्रकृति भी हरी भरी रहती है, पहाड़ भी वहाँ पर है,
2: बैलेंस,
1: तो वहाँ बैलेंस इम्बेलेंस है। इसलिए इम्बेलेंस है तो कभी अधिक वर्षा हो जाती है, कम हो जाती है, कभी नहीं होती, तो फिर वो वाटर टेबल को प्रभावित करती है। इसका सारा प्रभाव पूरे सिस्टम पर पड़ता है। अब जैसे सर जलवाष्प के बाद में अगर अपन ले तो इसमें आता है मीथेन गैस, CH4। CO2 की बात तो अपन ने कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड की, अब CH4 है, फिर ओजोन है, ये भी इसी तरह से इनकी जो परसेंटेज है वो कम या ज्यादा होने पर उससे संबंधित जितने भी जीव हैं छोटे बड़े वो सारे के सारे उसमें या तो जीते हैं या फिर वो मर जाते हैं। तो वो संबंधित जो प्रभाव है उसको वैसा ही छोड़ते हैं ताकि उसका जो बैलेंसिंग है वो उसमें से खत्म हो जाती है, तो वैसा प्रभाव वो छोड़ेंगे। तो ये तो सार सब हो गए प्राकृतिक कारण, जिसमें ओजोन भी एक है। सर, इसमें ऐसा माना गया है कि अपनी जो ओजोन लेयर है उसमें भी छेद हो गया है सर, अंटार्कटिका के एरिया पे। वैज्ञानिक शोधों से ये पता चला है वो जो छेद हो गया मतलब वो अपनी छाता की तरह से काम करता है, जो हानिकारक किरणें आती है ना सूर्य की, उनके लिए वो एक छाता की तरह हमारा काम करता है।
2: कहने मतलब घर में छत बना दिया,
1: हाँ,
2: लीकेज होता है,
1: छेद हो गया,
2: दिक्कत
1: छेद हो गया,
2: तो हमें बहुत दिक्कत होता है बारिश का टाइम में।
1: तो सर ये
2: डर रहता है, तो इस तरह ओजोन लेयर का जो आपने बात की है छेद हो गया, तो ये पूरा हमारा प्रोटेक्ट था
1: जी, हाँ
2: प्रोटेक्ट नहीं रहेगा,
1: वो प्रोटेक्शन वाली छाता वो हमारी छिन्न भिन्न हो गई है,
2: जो भी डैमेज तरफ जा रहा
1: है, डैमेज हो गई है।
2: तो क्या होगा अस्तित्व
1: सर, उसका इतना खतरनाक असर होगा सर कि उससे नीचे जितना भी ग्लेशियर्स वगैरह है ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स वो सर पिघलेंगे, और पिघलेंगे तो क्या होगा सर,
2: पूरा बाढ़ आएगा,
1: अतिवृष्टि होगी,
2: बाढ़ भी आएगा सब कुछ।
1: और सर वो समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तो समुद्री किनारे जितने शहर है ना वो सब डूबने के कगार पर है।
2: फिर भी तो मकान बनाते जा रहे हैं,
1: बनाइए तो फिर कहाँ दिक्कत, नदी के बीच में बनाइए तो फिर आप बहे भी जाएंगे,
2: समुद्र का बीच में भी मकान
1: तो सर, इसलिए तो अपने कई बार सुनते हैं
2: बैलेंस नहीं होता,
1: कई बार सर अपन सुनते हैं कि साहब अतिवृष्टि होती है, बादल फट जाता है, अभी बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है, ये सर क्लाइमेटिक चेंज है सर। जब नदी के किनारे जब लोगों ने मकान बना लिए, जो नाला था उसकी जगह पर मकान बना लिए, फिर कहते हैं कि साहब बाढ़ आ गई, लोग डूब रहे हैं, व्यवस्था करो, फिर क्या व्यवस्था होगी, व्यवस्था
2: सरकार तो उसको दे देता है,
1: भाई रास्ते में ही तो हमने बना दिया, सरकार ने पट्टे काट दिए, रास्ते में बना दिया, तो आपका तो नुकसान हो गया ना,
2: आपने का जगह में जो रहना चाहिए हम उस जगह में,
1: बस उस जगह पर हम गलत काम कर रहे हैं, तो फिर प्रकृति छोड़ेगी क्या, उन्होंने छोड़ा, वो उनके जाने का रास्ता चाहिए, पानी के जाने के रास्ते में आपने मकान बना दिया तो फिर वो तो मकान में ही घुसेगा, फिर हम सरकार को दोष देते हैं।
2: मकान क्यों बना रहे इतना सर, पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा था, उनको रहने के लिए तो जगह चाहिए ना,
1: तो सर
2: जगह कहाँ लाएंगे
1: सर, जगह तो है ना सर, जगह व्यवस्थित जगह पर आप रहिए ना, ठीक है, व्यवस्थित पे रहना चाहिए,
2: हम जो चाहते उस तरह होना चाहिए ना।
1: ये बात वो प्रकृति का सब, फिर वो तो वही अतिक्रमण हो गया ना।
2: नहीं
1: सर, आप रहे तो
2: यहाँ पर रहेंगे तो इतना दूर में रहेगा तो पानी यहाँ पर मिलेगा नहीं। नदी का किनारे, समुद्र किनारे में रहेगा तो हमको पानी का बिना थम रहो नहीं सर।
1: तो फिर समुद्र के अंदर ही रह जाओ ना, पानी मिल जाएगा।
2: तो
1: इसलिए प्रकृति अपने को समेट लेगी,
2: पानी वहाँ पर बसवास करते हैं सर।
1: सर पानी के किनारे तो बसिए, पानी का एक एरिया छोड़ के तो बसिए।

0: मना ही कहा है, जब आप पानी के क्षेत्र में आप रहने लगेंगे तो पानी आपको अंदर नहीं लेगा,
1: वो उस समय देखा जाएगा बोलते
0: तो सर वो ग्रीडीनेस आपका जो लालचपन है वो प्रकृति फिर आपको माफ नहीं कर।
1: अभी बहुत लोग देखने के लिए जाते हैं सर,
0: सर
1: जल महल कहते हैं चार तरफ टापू में हम रह रहे हैं ऐसे जो
0: सर यही चीज भावना करते हैं। यही सही चीज सर मुझे देख करके एक याद आता है सर, अभी सर घटना हुई है गोवा में जिसमें बिना परमिशन के किसी होटल वाले ने उसमें छोटी सी झील बना दी,
1: समझ गए,
0: तो और उसमें होटल बना दिया सर। वो इतना बढ़िया होटल बनाया कि फॉरेनर्स वगैरह सब वहीं आते, और वहां पर कोई प्रोग्राम हो रहा था और संकरा प्रवेश का रास्ता था, उसमें आग लग गई, 50 लोग जल करके मर गए। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है,
1: ये तो अति ना सर,
0: तो अति है। अच्छा सर वो पता किया,
1: मतलब जब मनुष्य का ग्रीडी का अति में
0: अति है सर, पर जब पता किया तो पता चला कि वो सारा अवैध था। तो जब अवैध था प्रकृति की जगह आप जा करके बैठ गए तो पैसा भले ही कमा लो, वो लोग मर गए, अब सारी हालत सबकी खराब है, तो फिर गलत का तो रिजल्ट तो गलत ही आएगा।
1: चलते हैं जो अच्छा आदमी को भी जाकर इनकार करना पड़ रहा है, वो बेचारा मैं गलत किया है।
0: जी हाँ जी,
1: फिर मेरा साथ आ रहे गोपाल राम जी थे तो उसको चलो पकड़ेंगे।
0: बिल्कुल सही बात,
1: आप कुछ नहीं किए, मैंने रिकॉर्डिंग के टाइम में कर दिया, मैंने कुछ गलत किया,
0: ठीक है ठीक,
1: कोई देखोगा पवित्र के साथ गोपाल राम जी थे
0: जी
1: पकड़ते
0: बिल्कुल,
1: आपका उसे कुछ
0: लेना देना।
1: तो सर होटल वाला को कितने होटल का इस तरह परेशान हुआ होगा।
0: हाँ सर, तो वो देखिए बिल्कुल सही
1: हिसाब किताब बनता, देखिए सर
0: सही बात है सर,
1: कोई हिसाब किताब कभी का होगा
0: बिल्कुल,
1: हिसाब किताब को जन्म का तो जाकर उससे
0: वो पूरा हो गया,
1: ये पूरा कर्म का सिद्धांत।
0: तो सर देख लिए ये कर्म का सिद्धांत, वो कैसा नुकसान हुआ, तो जो प्रकृति का अतिक्रमण किए तो ये लालचपन ने तो भारी नुकसान कर दिया इनका।
1: आज का संसार कौन ऐसे जो अभी जो कॉलेज समय जो चल रहा है
0: जी जी,
1: साइंस का पूरा भौतिकवादी सब हो चुके हैं
0: जी जी जी जी,
1: तो ये चीज कैसे कंट्रोल होगा।
0: बस सर
1: जानेंगे
0: कंट्रोल के लिए तो
1: क्योंकि ये तो रीजन सबको पता है,
0: हमको
1: तो अनुभव ही है,
0: आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा
1: तो उसके लिए क्योंकि आवश्यकता है, कारण तो सबको मालूम है
0: जी जी,
1: आप और हम सब पढ़े लिखे हैं, आप भी इंटरनेट में गूगल पूछेंगे तो क्यों
0: बता देगा,
1: बता देगा, लेकिन हमें इससे कैसे निजात पाए और हम बचेंगे कैसे, मैं खुद
0: जी जी बिल्कुल सही कहा,
1: तो मैं खुद को बचाऊंगा तो मुझे देखकर सभी लोग बचेंगे
0: बिल्कुल,
1: ये क्योंकि स्व परिवर्तन ही हमारा नारा है,
0: स्व परिवर्तन ही सभी में,
1: क्योंकि आज सभी लोग अंगुली उधर तुम करो
0: तुम करो तुम करो,
1: आज तक इतना जो 100 साल का आप देखा है ना परिवर्तन,
0: इसलिए
1: 100 साल का पहले जो स्थिति था पर्यावरण का
0: जी हाँ जी,
1: खुशी गोकुल गांव था,
0: सब आनंद था,
1: भाईचारा था, कोई ताला नहीं था,
0: कोई लड़ाई झगड़े कुछ नहीं था,
1: भाई तुम लेना तो ले मेरा भी बहुत है,
0: सही बात है,
1: और आप बुलाते भाई लो हमारा,
0: बिल्कुल सही
1: गन्ना बहुत है
0: बहुत है, हाँ एक दूसरे को बांटते थे बांटते थे,
1: तो समय परिवर्तन था और आज का समय में
0: जी,
1: तो 100 साल में कितना विकसित वो भारत है, लेकिन विकसित किसमें, भौतिकता में,
0: भौतिकता में हो गया है,
1: प्रकृति को क्या नुकसान हो रहा है उसको कोई देख नहीं रहे, अब जिसका चलते उसका भोगना हमको
0: पड़ेगा,
1: कोरोना क्या है पार्ट है,
0: हाँ हाँ वो इसका पार्ट है, वो भोगना पड़ा,
1: भोगना प्रेशर बढ़ा, हर रोज कुछ ना कुछ
0: होता ही
1: हो रहा है, आज यहाँ तो कल वहाँ हुआ,
0: महामारी भी सर ऐसे ही
1: आती है
0: सारी महामारी,
1: तो इसका कारण जब तक नहीं होगा रूट ग्रास रूट हमें जाएंगे तब जाकर सभी लोग उसको पहचानेंगे तो बच सकते, सभी नहीं बचेगा तो कुछ तो बच जाएंगे,
0: कुछ तो नहीं बचेगा ही सर, प्रकृति तो बचा
1: जानेंगे। अल्प विराम का बस सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। तो आज का विषय भी बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि सर का जो सिलेस बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें कम्युनिटी का जो एंगेजमेंट सही में आज देखने को मिला,
0: जी हाँ बिल्कुल मिला,
1: क्योंकि सरकार का जो भावना है कम्युनिटी को एंगेज करो रेडियो मधुबन में
0: जी,
1: तो आज क्यूअरली से हमारा जो भाई साहब है पूरे लगे रहता हर एपिसोड में कुछ ना कुछ जो विशेषता है उसको देने के लिए, और प्रकृति हमें कितना देता है, हमें तो कुछ देना सीखे करते थे
0: हम भी तो समर्पित रहे प्रकृति को,
1: जानेंगे अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ डांस, डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म, अर्थात ये जीवन को हमेशा उमंग और उत्साह के साथ जियो। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है जिसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हर पल हर क्षण हमें उमंग उत्साह में रहना है। और वो बहुत सुंदर स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। तो देखो, हमें अपने भाग्य पर कितना नशा होना चाहिए, कितना नाज होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। तो क्या हमें दुखी होना चाहिए क्या? नहीं, हर पल हर क्षण वी हैव टू डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाने वाला हूँ। सभी करेंगे डांस? इसको कहते हैं पीकॉक डांस। पीकॉक जब खुशी में होता है ना तो कितना वंडरफुल डांस करते हैं, वही डांस मैं आपको भी सिखाता हूँ। और वो कैसे करना है? वाह मेरा जीवन वाह। जब आप ये डांस करते हो तो एक तो इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, और दूसरा मन में भी जो आपको विचार मिलते हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक और मोटिवेटिंग होते हैं। तो मैं आपको एक एक बोलता रहूंगा, वैसे आप करते रहना, ठीक है? करेंगे सभी? ओके, चलिए। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे मम्मी डैडी वाह, वाह मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह। स्टूडेंट्स बहुत खुशी से कह सकते हैं वाह एग्जाम्स वाह, वाह मेरी पढ़ाई वाह, वाह ये दिन वाह, वाह वाह वाह। तालियां बजाइए। तो हर दिन सुबह उठकर ये पीकॉक डांस जरूर जरूर करना।
2: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पिछला लिंक में हम चल रहे परिवर्तन, और 100 साल का कम नहीं है, उसमें कितना अंतर आ गया, प्राकाश और पाताल जैसे। तो ये परिवर्तन समय अनुसार हो रहा है, और प्रकृति में हम जो रह रहे पशु पंछी जीव जंतु सभी का अपना अपना जो भाव और भावना समय अनुसार बदलता है। जैसे हम छोटे बच्चे उसमें भावना कम था, बड़े हुए उसका भावना और कुछ क्रिएटिव बना, इसके बाद फिर उसका ऐसे ही प्रकृति भी जो इतना साल तक पहुंचा है। तो कोई भी चीज का सत्व रजो तम होता है सर, अच्छा बुरा बुरा, तब तक
3: तीनों
2: का आना चाहिए। प्रकृति का जो शुरू में अच्छा था जो आपने बताया का पहले, ये सत्वगुणी जलवायु था,
3: सत्वगुणी
2: सबसे सुखदायी था,
3: बिल्कुल सही।
2: लेकिन आज सोचना पड़ रहा है कैसे बचाए हम खुद।
3: जी जी जी बिल्कुल।
2: संदर्भ में ये जो बात चल रहा है उसका कारण था, हमें थोड़ा बहुत जान गए,
3: थोड़ा बहुत
2: थोड़ा सा निवारण करने के लिए हम कैसे जिम्मेवारी, सरकार हम आप जो भी हमारा सभी सुन रहे प्रकृति का जितना भी घटक है वो भी अपना कार्य करेंगे तो जरूर हम प्रकृति को बचा पाएगा और समय अनुसार बच जाएगा भी। तब तो ऐसे प्रश्न उत्तर हम कैसे बचाओ, जरूर बचेगा, बोला आज नहीं तो कल
3: बचेगा बचाने। सर देखिए सर, अपन उसके बचाव पर आते, इससे पहले थोड़ा सा हमने प्राकृतिक कारण जाने थे हरित ग्रह के, अब थोड़े मानव जनित कारण थोड़ा सा उसमें प्लस है कुछ।
2: जी जी बताएं।
3: जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है सर, ये आंकड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं, वो सर 76% तो ये रिस्पॉन्सिबल है।
2: 76%
3: उसका प्रभाव होता है इसका हरित ग्रह पर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर। CH4 का होता है 16%, नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है 6%, और सर क्लोरीनेटेड गैसेस का होता है 2%, जिसमें सर है ना आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सारी की सारी चीजें। ये जो सर उत्सर्जन है ना, ये सर कहाँ से होता है? ये सर जैसे AC से होने वाला उत्सर्जन है
2: जो घर में यूज करते हैं।
3: जी हाँ सर,
2: जैसे कार में भी AC यूज करते,
3: कार में AC का यूज करना है, ये इसी पर मैं संकेत कर रहा हूँ। और भी जहाँ भी जैसे
2: AC से इतना गैस आप,
3: जी सर ये नुकसान करती है, 1% है इसका। और सर जैसे फ्रिज में होने वाला जो गैसेज वगैरह है, ये भी इसके ऊपर इम्बेलेंसिंग में बहुत बड़ा कारक बन जाती है। और उसका जितना ज्यादा उपयोग बढ़ेगा तो भारी नुकसान करने वाला,
2: बढ़ रहा है
3: बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला।
2: सभी का घर में चाचा मामा का।
3: अच्छा सर, इसका तो इतना बड़ा नुकसान होगा सर कि जैसे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और अपन ये सारे जो ब्लैक कार्बन वगैरह, ये सभी मिल करके ये दहन से उत्पन्न होने जा रहा, आंशिक दहन से, जो ईंधन का आंशिक दहन है सर, किसी भी ईंधन का, जैसे गाड़ियों के इंजन वगैरह है, उन सबके दहन से जो भी ये प्रोड्यूस होता है, ये भी सर वातावरण को बहुत बड़ा नुकसान देते हैं। सर अब मैं फ्रिज की बात कर रहा था सर, सर जहां तक फल सब्जी और एक सीमित समय तक उनके संरक्षित करने वाली बात है, वहां तक तो हम भी सहमत है, साइंस सहमत है, लेकिन जब उसकी अति हो जाती है तब तो वो नुकसान ही करेगा ना
4: सर। अति क्यों होता है
3: सर? अति बस वो मानव इतना लालची हो गया, वो सब जगह अति, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, आगे से आगे जब उसको फ्रिज में रख जाओ तो क्या सर उसमें गुण रहेंगे क्या?
4: लेकिन उसका यूज नहीं हुआ तो फिर और प्रोडक्ट आ गया तो कहाँ रखेंगे
3: सर? बहुत बराबर है, वो एक सीमा तक, वो उसका एक लेवल हो जाएगा कि जैसे अधिकतम जनसंख्या जब भूख से प्रभावित हो रही है वहाँ इसका स्टोर करना कर लीजिए, लेकिन जब छोटे मोटे आप लोग उपयोग करते हैं वो तो मत कीजिए ना सर। मेरा निवेदन हर बार, मैं पर्यावरण के एक तो अंत पर्यावरण की बात करता हूँ जो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होगा, और एक सर अभी मैंने अभी ढूंढा है एनवायरमेंट माइक्रो मैनेजमेंट वाली बात है। ये नया शब्द भी इसमें नया जोड़िए आप, आपके विश्वविद्यालय की तरफ से जोड़ दीजिए। वो माइक्रो मैनेजमेंट क्या है कि हम एक व्यक्ति उसमें क्या छोटा सा सहयोग कर सकते, आपका हल्का भोजन बचा करके, आपके पानी को शुद्ध करके पीना, आपके गंदे पानी को शुद्ध करके अपनी क्यारियों में डालना, आपके 40 माइक्रो जो माइक्रोन का जो प्लास्टिक है उसको यूज रीयूज न करना, ये काम तो आप और हम कर ही सकते हैं ना?
4: कर रहे हैं कुछ लोग, कर रहे हैं।
3: नहीं सर, ये इट इज माइक्रो मैनेजमेंट सर, बड़ा मैनेजमेंट सरकार करे, उससे भी बड़ा अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं करें, जो जिम्मेदार संस्थान है एनजीओ वो करें, लेकिन मेरा माइक्रो मैनेजमेंट
4: जो राष्ट्र नहीं कर पाएगा तो ऊपर वाला तो कर लेगा,
3: वो उससे बड़ा मैनेजमेंट करे। तो सर मैं माइक्रो मैनेजमेंट की ये बात करता हूँ सर इसके अंदर, कि आप खुद के स्वास्थ्य को मैनेज करने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट ये करें, अपने विचारों को माइक्रो मैनेज करें और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करने का जितना हो सके उतना प्रयास करें। मेरा तो आप सबसे यही निवेदन है,
4: लेकिन एज एंड कर रहे हैं इसलिए आप सबको बोल रहे
3: हैं, तो मैं सबसे अपेक्षा भी तो करूंगा ना।
4: हाँ,
3: खुद का खुद करो, आपका आप करूंगा, आपका आप कर लूंगा, आपका आप कर लूंगे, जैसे आप नहीं कहते आप करो, आप करो, आप करेंगे तो सभी का सुविधा हो जाएगी,
4: आपको कोई दिक्कत नहीं आता जैसे आप करते हैं, लोग नहीं कर पाए उनको दिक्कत आ रहा है, ऑब्स्टेकल आता है,
3: तो हम
4: इसलिए नहीं करते।
3: इस मुहिम में जुड़ना है सभी को, नहीं तो फिर वो प्रकृति है ना, वो आपको नदी में मकान बनाओगे वो उठा के बाहर ले जाएगी, आपका मेहनत काम नहीं आएगा, इसलिए सही दिशा में काम करें तो माइक्रो मैनेज करें आप अपने आप। बस सर बात वही
4: हुई, नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे लोग, हम कर पा रहे हैं तो हम लोग कर पा रहे हैं।
3: आपको सर दृढ़ निश्चय होकर के,
4: दृढ़ता निश्चय सब गुण होकर के,
3: फिर
4: अंतर में सब तक होना चाहिए,
3: फिर
4: मैं तो बार बार वही कहता
3: हूं, सभी के लिए भलाई का संकल्प करना पड़ेगा अपने मन में, तब जाकर के ये काम होगा।
4: तो आपका वृत्ति
3: खुद को पहचानो, खुद को पहचानो,
4: वृत्ति में क्या सुभावना सबका प्रति रहे,
3: सुभावना रहेगी
4: प्रकृति का प्रति, आपका आसपास जो भी आपका प्रकृति दिखाई दे रहा है सबका प्रति सुभावना।
3: तो सर जैसे कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये कई बार मैं भी सर कभी कभार मुरली हाथ में लिया करता हूँ, बाबा की मुरली भी आती है, मैं एक सामान्य मुरली की बात करता हूँ, हाथ में लिया करता हूँ, और सर रोज सुबह में एक बार बजाता भी हूँ, तो सर उसकी आवाज कितनी मधुर है,
4: कृष्ण को प्रिय था और आप
3: तो सर वो मुरली वो प्रकृति से आवाज लेती है, वो शंखनाद आपको करना पड़ेगा और एक एक व्यक्ति
4: अच्छा
3: को
4: बात बता दिया आपने,
3: तो सर करना ही पड़ेगा।
4: चार जो अलंकार है सर नारायण का हाथ में,
3: जी हाँ जी हाँ,
4: जैसे बांसुरी कृष्ण का दिखा दी,
3: कृष्ण जी हाँ,
4: शंख
3: हाँ हाँ
4: बता दिया ना,
3: बिल्कुल शंखनाद, तो वो शंखनाद आपको करना पड़ेगा,
4: शंख तो वो तो देखे है, लेकिन आपका जो मुख है ना सर,
3: जी जी जी,
4: ये आपका शंख होना चाहिए,
3: ठीक बात है,
4: अच्छा बोले,
3: अच्छा बोले, मीठा बोले, मीठा बोले, धीरे बोले,
4: सही बोले
3: और कर्णप्रिय बोले,
4: बोले और जहाँ आवश्यकता है उतना बोले,
3: जी जी बिल्कुल।
4: तो सर ये जो शंख
3: जी
4: चक्र
3: जी गदा और पद्म,
4: आप तो दो चीज बताए,
3: जी जी जी,
4: शंख का जो नाम लिया, तो शंख हमारा मुख जो है,
3: जी जी,
4: शंख से आवाज निकलता, शंख से क्या होता
3: है, आवाज, आवाज निकलता है, आवाज निकलती
4: नहीं निकलता, हम
3: उसमें फूंक मारेंगे तो आवाज करेगा,
4: तो मारने वाला कितना एक्सपर्ट होता है,
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: व्यक्ति सर जो शंख को चलाता है,
3: चलाता है सही, बिल्कुल सही बात,
4: शंखा जिसको बोलते हैं उस तरह, ये मुख को, ये हमारा
3: शंख, ये शंख ही है, शंख ही,
4: शंख को चलाने वाला कौन है,
3: तो ऊपर वाला,
4: ऊपर वाला, वाला तो सबका शंख अच्छा बजता है,
3: सबका अच्छा बजाता है,
4: अच्छा नहीं बज रहा ना सर, शंख कौन बजा, खुद बजा रहे हैं, ऊपर वाला कैसे बजाएगा?
5: हाँ, वो बजवाता है तब प्रेरणा से बजाते हैं।
4: नहीं, प्रेरणा तो प्रेरणा जब देता तो अच्छा क्यों नहीं बजाते हैं? उसका बात मानते नहीं
5: वो उसके
4: बाद सर, ये सोचने के बाद मैंने गहरा से बोल रहे
5: जी, बिल्कुल सही कहा।
4: शंख ऑपरेट व्यक्ति में गांव वाला नहीं करता है, शंख जो बना है वो नहीं बजाता है सर।
5: ठीक बात,
4: शंख आप खरीद ले।
5: जी जी बिल्कुल,
4: अभी बजाएंगे आप।
5: ठीक,
4: तो आप जैसे फूकेंगे उस तरह आवाज
5: करेगा, करेगा
4: उस तरह की जो मुख सर भगवान ने हमें दे दिया है।
5: जी जी,
4: माँ बाप हमें
5: दे दिए
4: शरीर में मुख, तो उसको नियंत्रण कौन बोलता है?
5: मैं बोलता हूँ।
4: ऊपर वाला नहीं बोलता, ऊपर वाला बोलता है तो शंख हमारा अच्छा बोलता है।
5: मैं खराब अहम बोल रहा है, अहम को मिटाने वाली बात।
4: मैं जो व्यक्ति, जो आत्मा, जो प्राण है,
5: आत्मा
4: ये मुख से बोलता है, वो चेतना है, ये जड़ है।
5: बिल्कुल, वो चेतना है।
4: ये जो जब तक हम चेतना, मैंने आज निवारण का बात कर रहे हैं
5: जी, बिल्कुल
4: सभी लोग इसका ऊपर में रिसर्च कर बहुत कुछ बोल, जैसे आपने बताया
5: जी, हाँ जी,
4: सबको पता है, गीता में सब
5: सबको सब जगह मिल जाएगा। आप बता रहे सब जगह मिल जाएगा,
4: निवारण करने का उपाय कौन बताए?
5: बिल्कुल सही बात है,
4: तब तो हम जानेंगे ना भाई सर।
5: जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
4: धूप हो रहा है सबको पता है, लेकिन धूप से निजात पाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? छाया।
5: बिल्कुल, छाया में जाना है,
4: हमारे दिमाग में होना,
5: दिमाग में हमारे संकल्प।
4: छाया जो मालूम नहीं शेड में, तो हम वहाँ भी बैठेंगे।
5: बिल्कुल सही,
4: गर्मी में। अरे गर्मी में क्यों बैठेंगे, चलो अच्छा जगह में
5: छाया में बैठे, छाया में
4: उस तरह।
5: जी हाँ बिल्कुल,
4: ये चीज हो रहा है।
5: जी जी, हो रहा है।
4: और आगे बढ़ेगा?
5: आगे बढ़ेगा नहीं, नहीं
4: कैसे होता है तो अभी 10 साल पहले हो जाता है।
5: हाँ सही बात है,
4: ट्राई की उस समय भी तो आप हम जैसे कितने लोग ट्राई किए होंगे।
5: जी जी, किए ही होंगे,
4: कर रहे
5: चल ही रहे,
4: अभी कर रहे, सिर्फ हम नहीं कर रहे, बहुत लोग फिर भी
5: बहुत कर रहे,
4: कर रहे फिर भी
5: बहुत लोग,
4: फिर भी कुछ तक
5: एक सीमा तक ही हो रहा है,
4: जो इतना पर्याप्त नहीं है,
5: पर्याप्त नहीं कर पा रहे, पर्याप्त नहीं कर
4: नहीं पा रहे, क्योंकि जितना हमको अति आवश्यकता।
5: जी,
4: सिर्फ 5 लोग से नहीं होगा, सभी लोग
5: सभी करेंगे, अपने अपने स्तर पर करेंगे, सब जुटेंगे, थोड़ा थोड़ा सब करेंगे। सर यही बात माइक्रो मैनेजमेंट वाली है कि थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा सब करेंगे तो हो जाएगा।
4: और शुरुआत तो
5: हमसे ही,
4: हमसे भी होगा
5: शुरुआत,
4: और
5: सभी करेंगे
4: नहीं, शुरू कर दीजिए।
5: जी बिल्कुल सही बात, शुरू करना है।
4: जैसे आज हम एपिसोड का बात करेंगे, कल वो सोचा है, लेकिन करेंगे कल कौन देखा है?
5: नहीं नहीं नहीं, कल का तो पता ही नहीं, पता ही नहीं,
4: बारिश आ जाएगा कि यहाँ पर कुछ होता है, हमारे हाथ में नहीं ना,
5: कुछ भी हाथ में नहीं,
4: तो अभी जो है हमारे हाथ में
5: उसको कर डालिए,
4: करना
5: कर डालिए,
4: ये चीज पॉइंट आउट सर।
5: बिल्कुल,
4: अभी जो करना है अच्छा चीज तुरंत,
5: बिल्कुल तुरंत कीजिए,
4: तब देखना सक्सेस। आज सक्सेस मिल गया ना?
5: बिल्कुल सर, वो तो मिलेगा, हमने 2-3 दिन देखा, पता चला कि भाई हमारी जो दिशा उधर से जा रही थी वहाँ तो अपने बात को लेने वाले नहीं, आप बांट रहे हैं लेकिन लेने वाला ही नहीं है, तो फिर जहाँ चीज जो ग्रास्प करने वाले हैं वो उस चीज को उसी स्थान से रखा जाए, उसका उपयुक्त जगह।
4: इसको विवेकवान कहते हैं सर।
5: बिल्कुल विवेक,
4: हम विवेकवान होकर हम ट्राई देखे, यहाँ पर ट्राई किए नहीं, फिर दूसरा
5: बिल्कुल करना, बिल्कुल करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा,
4: हमारा जो लक्ष्य है उस तक पहुँचा,
5: लक्ष्य के लिए सारे सरल रास्ता अपनाना भी तो पड़ेगा,
4: कर रहे हैं सब, करना ही भी चाहिए।
5: जी हाँ जी,
4: और सर जैसे अपना निवारण तो मेन आवश्यकता,
5: मुख्य आवश्यकता निवारण,
4: क्योंकि निवारण सभी लोग जानेंगे तब जब करेंगे, नहीं जानेंगे तो करण कर कोई मैं कैसे करूँ, प्रश्न आएगा ना सर।
5: बिल्कुल, वो कहेगा कि कैसे किया जाए,
4: आप कर दो, सभी लोग करना चाहिए, अरे करेंगे तो ठीक, काम चाहते
5: हैं पर
4: उसका विधि बता
5: कीजिए ना, इसकी विधि क्या है, विधि क्या है,
4: तो ये होना,
5: तो इसमें स्वयं को पहचानना पड़ेगा,
4: स्वयं
5: स्व को पहचानो
4: सर, स्वयं ही दुख और सुख का
5: कारण है,
4: कारण है
5: स्वयं ही, व्यक्ति स्वयं ही है।
4: अच्छा फूंकेंगे तो अच्छा बजेगा, फूंकेंगे नहीं तो पीछे से करेंगे तो आवाज आएगा,
5: बिल्कुल आवाज ही नहीं, सही जगह से उसको सही उपयोग करेंगे तभी जाके उसका सही अर्थ भी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा।
4: इसलिए समय का मांग जो है खुद को पहचान,
5: खुद
4: और खुद का जो कर्म खुद खुद, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, भगवान भी अंतर्जान बोलते कि जानता था आप रोक देता है,
5: सही बात,
4: खराब हम जो कर रहे थे गलत जो हो रहा है।
5: जी जी,
4: भगवान इसमें क्यों इंटरफेयर करेगा?
5: नहीं नहीं, भगवान ने तो आपको सही कर्म करने के लिए
4: ज्ञान दे दिया,
5: करना
4: तो चक्र मार्ग,
5: अब जैसे आप सामान्य तौर पर बता रहे कि ज्ञान सबके पास है ही है ना, जैसे पर्यावरण सब जगह मिल रहा है, सब जगह, आप क्यों दौड़ रहे हैं? आप इसलिए दौड़ रहे हैं कि हम समझाने का एक प्रयास करें कि भाई ऐसे नहीं, इसको ऐसे देख, ऐसे नहीं, उसका व्यवहारिक धरातल पर उसको उतारो, उस पेड़ को लगाओ, उस पौधे को लगाओ, उसका क्या फायदा है, उसकी क्या छाया मिलेगी, उसका क्या फल मिलेगा, वो आपको उसके
4: निवारण का एक कारण है, निवारण का एक पॉइंट स्टेप,
5: बिल्कुल एक स्टेप है कि आपको करना,
4: स्टेप में एक तो स्टेप तो चलना पड़ेगा ना भाई, छत का जाना है तो पहला स्टेप तो,
5: पहले स्टेप तो पूरा करना पड़ेगा,
4: स्टेप बाय स्टेप
5: करना तो पड़ेगा ही, करेंगे तभी कुछ ना कुछ तो होना है
4: जी,
5: अब नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा।
4: और तो ये सब देखिए पर्यावरण के साथ हम दोस्ती लगाकर बहुत अच्छा से करेंगे सहयोग कर, हमें बहुत सुकून मिलेगा, किसको मिले चाहे नहीं मिले,
5: नहीं सर
4: हमको मिलेगा और हमारा वाइब्रेशन से दूसरा तक पहुंचेगा।
5: सभी को सुकून मिलता ही है, पर्यावरण और प्रकृति तो सबको सुख देने के लिए
4: दाता है सर,
5: वो दाता है और वही चला रहा है, सृष्टि भी वही चला रहा है, पूरी सृष्टि उसी के हिसाब से चल रही है, सारा कंट्रोल भी उसी के हिसाब से हो रहा है,
4: लेकिन मालिक बनकर बैठा है।
5: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मुनि से मालिक बन करके बैठा, जी मालिक है तो नहीं वो लालची मालिक बन करके बैठा है, पर मालिक है तो नहीं
4: जी। बस और क्या कहना चाहेंगे सर, आज टॉपिक तो इतना, देखेंगे अगला एपिसोड में आप क्या कहना चाहेंगे, आज का जो मूल मंत्र है कारण और निवारण, हमें हर एपिसोड में
5: ये तो लेते ही है,
4: क्योंकि उस समय दे देंगे तो फिर कल कौन देखेगा, 15 एपिसोड में आएगा।

0: इंतजार क्यों करेगा?
1: सही बात है, नहीं करेगा। हर एपिसोड में अपने को निवारण
0: और निवारण करना है।
1: सर, इसका निवारण तो यही है कि आप इस प्रकृति के प्रति समर्पित होकर के काम करना शुरू कर दीजिए, दृढ़ संकल्पित होकर के, खुद को पहचान कर। इस प्रकृति से बहुत कुछ मिलने वाला है, तो आप इसके लिए एक बार शुरुआत कर दीजिए सभी अपने अपने स्तर से, तो हम उस लक्ष्य को पालेंगे जहाँ तक जाना है।
2: तो श्रोता मित्र रुग्णवासी सुन ले, जो आवश्यकता है भाई, शुरुआत तक खुद से करना ही पड़ेगा। और सभी लोग जैसे इस खुद से करेंगे तो भाई किसको कोई बोलने का नहीं, तुम करो बोल के, कहीं सब इस तरह से समझ जाएंगे। और शुरुआत हम खुद करें, व्यक्तिगत स्तर
1: जी,
2: सरकार जितना करना वो अपना स्तर पर कर रहा है,
1: तो हम अपना सब जगह काम हो रहा है।
2: जानकर हमें प्रकृति हमें दिया है, हम उसको रिटर्न देने का समय आया है।
1: बिल्कुल,
2: बहुत कुछ जो किए भूल जाओ।
1: हाँ,
2: अभी जो करना है अच्छा काम, शुरुआत करो,
1: उसकी शुरुआत करो।
2: हम करेंगे, आप करेंगे तो सभी लोग
1: हो जाएंगे।
2: और
1: माइक्रो मैनेज कीजिए अपने आप को, सभी को थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा सेव करेंगे, ढेर लग जाएंगे, बहुत बढ़िया काम।
2: एग्जाम्पल जैसे सुने हुए,
1: बिल्कुल सामान्य तौर पे आता है,
2: छोटा सा
1: एक एक पत्थर और एक गिलहरी, वो लोट पोट करके रेत डाल रही है कि मैं भी सहयोग कर रही हूँ।
2: नया दुनिया जो आने वाला है, तो हम सब करेंगे सहयोग, तो मांग रहा
1: हूँ ऐसा सहयोग हम भी कर रहे हैं,
2: तो जरूर हो
1: तो हो जाएगा हमारा उसमें सर योगदान तो हो जाएगा।
2: कभी कभी बोल ज्ञान का, परमात्मा का, ऊपर वाला का, क्यों? क्योंकि वो सहयोग मांग रहे हैं, हमें आवश्यकता है क्या?
1: हाँ, तो
2: उस समय हम शास्त्र में पढ़े हैं भाई, रामचंद्र चाहेंगे तो बात नहीं कर पाते, उनके पास शक्ति नहीं
1: थी, कर सकते थे,
2: कर सकते, क्यों उसको सहयोग लिया?
1: बिल्कुल सही बात, क्यों? वो चाहते थे कि वो भी सहयोग करे,
2: तो उनका नाम आए।
1: बिल्कुल सही बात है,
2: जो करेगा सो पाएगा। तो आज परमात्मा जो चाहते हैं
1: जी,
2: दुनिया को अच्छा दुनिया बनाने के लिए, विश्व गुरु तक लाने के लिए, तो विश्व गुरु तो बनेगा, क्यों हम इसलिए सहयोग दे रहे,
1: तो हम भी पुण्य के भागी बने,
2: भागीरथ। इसलिए हमारा लक्ष्य यही था, अभी जो समय आ रहा है, अच्छा समय जो आएगा, समय हम अच्छा बन जाएंगे और हम परमात्मा का काम में सहयोग करेंगे, तो हमारा काम सफल हो जाएगा। और परमात्मा भी कोई करे नहीं, इतिहास में हमारा स्वर्ण अक्षर में
1: नाम लिखा
2: जाए, लिखा जाएगा। अभी भी हम
1: बच्चे गिलहरी का लिखा गया है, चिड़िया की चोंच का पानी आग जाने में। अब ये देखो, यही तो चीजें समझाती है कि आप जितना हो
2: सर, ये जब मैंने लेता ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई बोला अरे तुम पर्यावरण के बारे में क्या तुम रोक पाएगा, अरे मैं नहीं रोक पाएगा, जिसका रोकना है।
1: अरे सर, पर्यावरण से शरीर स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा तो हम उस ऊपर वाले को धन्यवाद कर पाएंगे,
2: सर
1: आत्मज्ञान होगा तो अपन संकल्प से अपना काम कर पाएंगे। वहीं पर
2: अच्छा बात, संकल्प से ही,
1: संकल्प से और अपनी साधना से, अपने राजयोग से हम इस काम को जब करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से वो सफलता आपके कदमों में होगी।
2: क्योंकि जो विश्व रचयिता जिसको कहते हैं, विश्व का मालिक जो प्रकृति पति जिसको कहते हैं, रचयिता सर, रचयिता एक शब्द है।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
2: रचना हम सब है, एक प्रकृति भी रचना है, लेकिन रचयिता
1: सर, देखिए इसमें एक चीज कही गई है, एक चौपाई में बोल रहा हूँ, सामान्य समझ में आ जाने की। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा।
2: क्या बात,
1: तर्क करके कोई चीज बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। भगवान ने कर्म प्रधान बनाया है विश्व को, आपको तो सुकर्म करना है बस,
2: कर्म योगी है,
1: बस कर्म किए जाओ,
2: योग युक्त होकर
1: बस,
2: आराम से निस्वार्थ
1: बस,
2: तो जरूर इसका निवारण एक ही है। जैसे हम लास्ट में बता भाई, सबका मूल आधार है जो परमात्मा प्रति और खुद का प्रति विश्वास होना,
1: विश्वास होना चाहिए
2: और दृढ़ता आना चाहिए, आत्मा में दृढ़ता जो बात,
1: सुकर्म किए जाओ,
2: किए जाए, जैसे गिलहरी हो चाहे हमारा पंछी, अपना दृढ़ता दिया भाई हम करें,
1: बिल्कुल, तब जाकर
2: बाघ हाथी सभी था जंगल में आग लगा तो भाग गए,
1: बिल्कुल, लेकिन वो करने लगे,
2: करने लगे, तो उसका आज
1: नाम है, नाम है।
2: तो हम सब कौन है, एक एक
1: बिल्कुल
2: उसको सहयोग करने के लिए, आग को ये जंगल में आग लगे, दुनिया पूरा जंगल जैसे
1: जल रहा है,
2: जंगल जल रहा है ना,
1: जल रहा है,
2: जहाँ भी जाए स्टेप बाय स्टेप
1: जल रहा है,
2: राख हो जाएगा,
1: बिल्कुल
2: हो गया कि नहीं सर?
1: बिल्कुल सर,
2: आग लग गया मीन्स रुकने वाला,
1: वो आग लग ही गई है, इम्बेलेंसिंग हो रहा है, वो आ गई है,
2: घर घर में अशांत,
1: हाँ अशांति है, वही आग है,
2: सुख नहीं, वही आग है, वो स्थूल चल आग तो दिखा देगा,
1: जी जी,
2: हेलीकॉप्टर में पानी डालकर,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: लेकिन इस ये जो आग लगा है,
1: हाँ उसके लिए, हाँ उसके लिए तो आपको अपने स्तर से ही जागना होगा,
2: ये खुद को लिभाना होगा सर, कोई आएगा तो
1: दूसरा नहीं आएगा,
2: आएगा फिर भी आप उसके बात मानना पड़ेगा,
1: हाँ, हाँ, बिल्कुल, तब ना,
2: तब आपको ध्यान से
1: सुनना।
2: तो ये था हमारा निवारण का स्टेप है,
1: नमस्कार,
2: राज्यों का और जो आत्मचिंतन
3: बस, बस
2: प्रकृति चिंतन पर्यावरण चिंतन करिए,
3: ये सब चिंतन करिए, स्वस्थ बनिए और राजयोग कीजिए।
2: अंतरात्मा से निकलेगा सर, ये गारंटी है। अंतरात्मा खुद बोले कब तक मैं दस रत्नाकर भी अपना चेंज हो गया।
3: बिल्कुल बिल्कुल सर,
2: पंचम सिंह
3: सब सब चेंज हो, सब चेंज हो।
2: चंडा शोक से
3: सर अभी कितने ये जो,
2: सर, अशक, सर,
3: अशक कितने नक्सलवादी समर्पण किए,
2: सब करेंगे, समय
3: करते ही रहेंगे,
2: समय आ रहा है और समझदार सभी
3: समझदार
2: हम समय समर्पण कर लेंगे, जैसे अपने समर्पण की भावना की दृढ़ता लिए,
3: इसी से होगा,
2: इससे होगा। और ये सब आध्यात्मिक प्रेमी सभी
3: सभी मिलकर
2: आज हमें प्रकृति यहाँ तक पहुँच जाते, फिर हम बैक करेंगे तो जरूर हमें अपना स्तर को अपना स्थिति को आ पाएंगे।
3: जी,
2: ये ही निवारण का एक रास्ता है,
3: तरीका है।
2: और ये कोई मनुष्य कोई शास्त्र पाए, स्वयं जो डायरेक्टर है, जो निर्देशक है, जो रचयिता है, उनका ही, नहीं तो हमारे पास कैसे आया।
3: सही बात है, उन्हीं का निर्देश।
2: हम आत्मा में वो चीज जब रखेंगे तो जरूर आपको कैसे लगा, जी आत्मा का जो स्वधर्म है
3: जी जी जी
2: वो आज नहीं है।
3: हाँ हाँ, स्वधर्म की तरफ जाएंगे तभी होगा, तभी होगा।
2: परधर्म है सर, अशांत,
3: अशांति, अशांति,
2: अपवित्रता,
3: शांति और आनंद में रहने वाली है
2: आत्मा है, लेकिन उसको क्या कर दिए, अशांत कर,
3: अशांत कर दिए,
2: वातावरण का चल अशांत हो गया, घर में जाते
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: कोई कुछ बोल मारपीट हो जाता है घर
3: में। सही बात है, सही
2: है। तो अपना सौदर में शांति प्रेम
3: आनंद
2: और ज्ञान,
3: ज्ञान सभी कुछ, सभी साथ में।
2: तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जाते जाते अपना एक पॉइंट बताया, सबका मूल जो निवारण है खुद को पहचाना और खुद क्या कर, खुद से आत्मा से
3: जग जाओ,
2: जग जाओ,
3: जग जाओ। धन्यवाद साहब, धन्यवाद,
2: धन्यवाद। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, इसी एपिसोड में आप यहाँ तक रखते हैं, फिर अगला एपिसोड में मिलेंगे श्रीमान गोपाल राम पुरेत जी से।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीज़ें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूँ, सपोज पाँव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पाँव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीज़ें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड और आज का कार्यक्रम दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जब हम संगीत से प्यार की बात करते हैं तो उन सभी का धन्यवाद करते नहीं थकते जिन्होंने उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया, जिन्होंने उसे नई पहचान दी, नई उड़ान दी। तो आज हमारे समक्ष ऐसे ही एक अतिथि हैं जिन्होंने संगीत को सच में जिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर श्रीमती अमिता त्रिपाठी जी की, जो कि प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हैं, शोध निर्देशक है, गुरु है। वैसे तो बहुत कुछ है उनके बारे में बताने के लिए, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर उन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं, विद्वानों की सराहना अर्जित की है। वृंदावन के हरिदास संगीत सम्मेलन की बात करें या आगरा के ताज महोत्सव की, अनेक सम्मेलनों को उन्होंने अपने गीतों से सजाया है। वो राष्ट्रीय प्रसारण भी उनके कई गीतों का हुआ है, चाहे आकाशवाणी पर हो चाहे दूरदर्शन पर हो। और साथ साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और अनेक शोधार्थियों का सफलतापूर्वक उन्होंने PhD भी करवाया है। और आपके अगर जीवन की बात करें तो जैसे संगीत को आपने समर्पित कर दिया है अपना जीवन, तो ऐसी कलाकार हमारे समक्ष हैं। हम बेहद कृतज्ञ हैं कि आपने समय निकाला और आप यहाँ पधारे। अमिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: मैं अमिता त्रिपाठी आगरा से आई हूँ और मैंने 42 वर्ष संगीत के शिक्षण का कार्य किया और सन 1981 में मैंने MA किया। उसके बाद ही मुझे तुरंत रिजल्ट मिलते ही मुझे
0: जी
1: शिक्षक का दायित्व निभाने का अवसर मिला
0: जी।
1: तो उस मामले में बड़ा भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे गुरुओं का, माता पिता का आशीर्वाद है। और मेरे गुरुजी GN गुणे जी ग्वालियर घराने के बहुत मूर्धन्य कलाकार थे, उन्होंने मुझे संगीत की विधिवत शिक्षा दी और इस बात से वो अति प्रसन्न होते थे कि आप प्रवक्ता हो गई हैं, उसके बाद भी इतना बड़ा पद मिल गया है फिर भी आप संगीत सीखना चाहती हैं। तो मैंने उसके बाद 81 में उनसे संगीत का शिक्षकत्व आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया, क्योंकि संगीत डिग्री से नहीं आता है, साधना है। और उनके चरणों में बैठ के मैंने ग्वालियर घराने की तालीम ली।
0: क्या बात है।
1: हाँ, और मेरे विद्यार्थी दूर दूर तक, कोई प्राचार्य हैं, कोई कमिश्नर हैं और अच्छे अच्छे पदों पर, उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ, जब मिलते हैं सेमिनार में, कॉन्फ्रेंसेस में, तो अक्सर पूछती हूँ तो कहते हैं मैम आपने हमको इतना अच्छे डांट से, प्यार से ना सिखाया होता तो शायद उन बंदिशों को हम याद ना कर पाते। तो संगीत में साधना के साथ साथ एक प्रेरणा, अच्छा मार्गदर्शक और ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं।
0: तो
1: शिष्यों के माध्यम से मुझे पता चलता है कि मैंने शायद उन्हें अच्छा रास्ता दिलाया कि आज भी अवकाश प्राप्त होने के बाद भी वो मुझे याद करती हैं
0: जी।
1: तो इस तरह से संगीत का सफर निरंतर, 8वीं क्लास में थी।
0: हाँ,
1: सन 19,
0: ये मैं जानना चाहती थी कि शुरू कैसे हुआ।
1: हाँ,
0: ये
1: 1973 से मैं संगीत से जुड़ी। मेरा जन्म 1961 में हुआ था फिरोजाबाद में। तो मेरे पिताजी को, जो मेरे फादर, उनको संगीत का बहुत शौक था। हाँ, उन्होंने मुझे जो भी बचपन से जो तालीम दिलवाई, जहाँ भी जो शिक्षक होते थे, इसके साथ साथ तबले का भी मैंने कोर्स किया।
0: हाँ,
1: प्रभाकर विशारद, और डांस में भी मैंने पंचम वर्ष किया, सितार में भी पंचम वर्ष किया, क्योंकि वो संगीत की उस समय की उच्च कोटि सत्ताओं को समझते थे। उन्होंने मुझे एक प्रेरणा दी कि तुम्हें अगर गाना गाना है तो उसके साथ ताल, लय और इन विद्याओं का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो उन्होंने मुझे उस समय सुविधाएं दी, जबकि घर से लड़की का निकलना बहुत मुश्किल होता था। मैं फिरोजाबाद से आगरा संगीत सीखने के लिए आती थी।
0: क्या बात है। तो आपके पिताजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है
1: जी,
0: इसमें।
1: मेरे पिताजी का बहुत योगदान है। उसके साथ ही उस समय, और जब मेरी शादी हुई तो मुझे ससुराल भी बहुत अच्छा मिला। मेरे पति, मेरे दूसरे पिता जो मेरे ससुर साहब थे, वो मेरी संगीत की साधना में निरंतर मुझे उकसाते थे कि तुमको साधना करनी है, तुम हमारी बेटी हो, तुम्हें साधना करी। तो इस मामले में मुझे ऐसा लगता है शायद मैं बहुत भाग्यशाली थी और कि मुझे उसी तरह का वातावरण
0: मिला,
1: ससुराल में भी मिला।
0: क्या बात है।
1: तो मेरी संगीत की शिक्षा में मेरे मायके पक्ष के साथ साथ ससुराल पक्ष का भी बहुत अदम्य योगदान है।
0: क्या बात?
1: मेरे ससुर साहब वो संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान।
0: अच्छा।
1: हाँ, डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी जिनको की पढ़ाया जाता है।
0: वाह।
1: हाँ, एक पिक्चर आई थी दिल्ली की पिक्चर में
0: जी,
1: पिताजी की किताब, डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी किताब धर्मेंद्र लिए हुए हैं, उसमें उनका नाम भी है।
0: जब
1: आप देखेंगे दिल्ली की पिक्चर तो ध्यान से देखिएगा, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच में जो बातचीत होती है उसमें जो पुस्तक लिए हैं संस्कृत की उसमें मेरे ससुर साहब का नाम है। मायके पक्ष से भी मैं पत्रकारों के परिवार की बेटी हूँ
0: जी,
1: तो मेरे अंदर थोड़ा सा नेतृत्व के भी गुण थे, तो मैं अपनी शिक्षक जो हमारी यूनियन होती थी उसकी मैं वाइस प्रेसिडेंट थी, तो मैंने नेतृत्व प्रदान करने की कोशिश की। तो संगीत की साधना एक प्रकार का नेतृत्व ही है, उसमें जब अनुशासन के साथ हम बैठक करते हैं, साधना करते हैं, गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा और लगन के साथ संगीत की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल होता है और एक कोशिश रहती है कि आप निरंतर उसमें साधना में रत रहें
0: जी।
1: और विद्यार्थियों को भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि संगीत से के अनुशासन से जीवन में समग्र विकास होता है। संवेदनाओं की आवश्यकता बहुत है जो कि हमें संगीत कलाएं सिखाती हैं, और कलाओं को जब मंच मिलता है तो वो निश्चित रूप से प्रस्फुटित होती हैं।
0: क्या बात है अमिता जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे आपने अपने सफर की शुरुआत तो की, तो अमिता जी क्या हमारे श्रोताओं को कोई आपके ऐसी पंक्तियां हो या कोई भी ऐसे स्वर जो आपके दिल के बहुत करीब हों, जिनको आप बहुत स्नेह से, वैसे तो आप सब कुछ गाते हैं, आपके पास बहुत खजाना है, लेकिन जो हमारे अगर श्रोताओं को कुछ अगर आप सुनाएं आज तो ये।
1: जी जरूर, कोशिश करती हूँ। मैं आपके समक्ष एक बंदिश प्रस्तुत करती हूँ जो कि राग यमन में है, और कोशिश करती हूँ कि आपको निश्चित रूप से अच्छी लगेगी
0: जी।

0: ममता जी, मंत्रमुग्ध कर दिया आपने, और मुझे ऐसा लगता है कि संगीत की ना नॉलेज हो तब भी शायद ऐसा लगेगा कि ये चलता रहे, हम सुनते रहें और इसमें जैसे खो गए थे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। ये जैसा जो गीत था यमन कल्याण में
0: जी,
1: इसकी ताल भी एक ताल थी
0: जी,
1: हाँ, जिसके बोल होते हैं धिन धिन धागे त्रिक तूना कत्ता धागे त्रिक धीना। तो ये इस लय में उस लय का कैसे गीत उसको बांधा गया था, ये मैंने अपने जीएन गुणे जी से, गुरु जी की इससे शिक्षा ली थी। तो मुझे उन्होंने कई बंदिशा सिखाई थी यमन कल्याण में, दस दस बारह बारह, कोई तीन ताल में, कोई एक ताल में, कोई रूपक में, वो विभिन्न तालों में सिखाते थे बंदिशें। तो उसमें से एक मुझे याद आ गई, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अभिभूत हूँ कि आपको पसंद आई, थैंक यू।
0: बहुत सच में, बहुत शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं ना, तो कई बार एक आज हम देखते हैं कई तरह के संगीत हैं, वेस्टर्न म्यूजिक भी है और बहुत पॉपुलर है, लेकिन शास्त्रीय संगीत जब सुनते हैं तो वो जो महसूसता होती है वो बयां करना बहुत मुश्किल होता है, वो
1: दिल की उच्चतम अनंत गहराइयों से जो अनहद नाद की अंदर से अनुभूति होती है। ऐसे ही मैं वहाँ ज्ञान सरोवर में अभी गई थी, वहाँ पूरे टाइम मुझे इतना आध्यात्मिक वातावरण आकर्षित किया, क्योंकि मेरे संगीत की साधना करती हूँ तो वो सब ओम की साधना, वो सब तो मुझे बहुत इतना अच्छा लगा उस आध्यात्मिक पवित्र प्रांगण समारोह में, कि मैं बहुत हृदय से अभिभूत हूँ। ऐसे कार्यक्रम में ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे निरंतर अक्सर बुलाते रहे, ये मुझे मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद होगा। बहुत नमन करती हूँ, ओम शांति।
0: अमिता जी, यहाँ पे मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी,
1: जरूर,
0: क्योंकि जब संगीत की शिक्षा की बात होती है तो गुरु शिष्य परंपरा की बात होती है, तो आप जब शिक्षा ले रहे थे वो कैसा था, मतलब क्या दिनचर्या होती थी या कैसा वो रिश्ता होता था गुरु के साथ, क्या वहाँ का कुछ उस समय के बारे में कुछ बताए?
1: जी जरूर बताऊँ। हम लोग सुबह उठते थे 4 बजे, हमारे फादर सुबह 4 बजे उठा देते थे, तो उस प्रकार से हम संगीत का रियाज करते थे। और हमारे गुरुजी का भी यही नियम था कि सुबह उठ के हमको 5 बजे स्वरों की साधना, स्वर गाते थे हम, फिर उसके बाद आकार ईकार उकार में स्वरों का अभ्यास करते थे, ओम की साधना करते थे, तो उससे स्वर पक्के होते हैं। और जितना आप, मैं अपने शिष्याओं को भी, मैंने अपने छात्राओं, अभी भी मैं एक विद्यालय से जुड़ी, मेरे गुरुजी का जो विद्यालय था वहाँ मैं जाती हूँ रिटायरमेंट के बाद शाम को 3 घंटे, और कोई पैसा नहीं लेती हूँ, निःशुल्क वहाँ अपनी सेवाएं देती हूँ, क्योंकि इतना हमने समाज से लिया है तो अब हमारा समय है कि हम समाज को दें, उन विद्यार्थियों के माध्यम से, और या जो भी और कोई उच्च शिक्षा कोई भी जानकारी जानना चाहे पीएचडी के मामले में कोई भी, तो मैं उसको जो भी हेल्प होती है, ये मेरा सौभाग्य है कि उन छात्राओं के, उन बच्चों के मैं काम आऊँ, समाज के काम आऊँ, तो मैं वहाँ जाती हूँ। तो नियमित जो एक विद्यार्थी और स्टूडेंट का जो रिश्ता है वो बिल्कुल माता पिता पुत्र पुत्री की भांति होता है, और माता पिता गुरु, गुरु का स्थान भी समकक्ष ही होता है माता पिता की, तो उन बच्चों को बहुत जो सिखाना चाहिए हमको, बहुत प्यार से, लगन से, और जहाँ कुछ संचेतना उनको देनी हो वहाँ देनी भी चाहिए, क्योंकि हम उनका भला चाहते हैं तो हमको कहना पड़ेगा। तो पहले तो स्वयं अपने आचरण में गुरु को वो सब बातें लानी होती हैं, क्योंकि विद्यार्थी संगीत तो सीखता है लेकिन बाकी चीजें स्वयं देख के गुरु के आचरण से सीखता है। ऐसे पेरेंट्स से भी, माता पिता से भी बच्चे हम बहुत कुछ कह के नहीं सिखाते हैं, हम स्वयं आचरण करें, सुबह सुबह खुद जल्दी उठें, टेक्नोलॉजी का प्यार प्रयोग एक साधन के रूप में करें, उस पर एकदम डिपेंड ना हो जाएं कि पूरे दिन व्हाट्सअप, ऐसे आजकल वहां भी चर्चा चली थी जैसे कि, तो मुझे यही लगा कि जो भी हमारे यहाँ ये व्हाट्सअप है, ये सशक्त माध्यम है, उनको हम सीमित साधन की तरह यूज करें, एक माध्यम की तरह यूज करें, तो कोई भी चीज हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती है, वो अपनी अनुशासन हम करेंगे तो हमारा विद्यार्थी, चाहे वो शिष्य हो, शिष्या हो या पुत्र पुत्री हो, वो हमें अनुकरण निश्चित रूप से करेंगे। तो ये बहुत प्यार भरा रिश्ता होता है, जैसे माँ का बेटे बच्चे से होता है, उसी प्रकार से अपने विद्यार्थियों से वही रिश्ता होता है।
0: तो आपको लगता है अमिता जी कुछ बदलाव आया है या अभी भी ये वैसा ही है?
1: मैम, बदलाव तो आया है, और थोड़ा सा ये अपने संस्कार और व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है, हम किस परंपरा से आए हैं, क्या हमने घर में अपने देखा है, उस प्रकार के गुरु हैं तो वो फिर वही, हमारे गुरुजी ने कभी हमसे कोई पैसा या तो नहीं हमसे ली, हम उनकी सेवा करते थे वो बात अलग है, लेकिन एक ऐसा पवित्र उन्होंने हमें वातावरण दिया, वैसे को नहीं देखना है। मैं कमाती थी, प्रवक्ता हो गई, फिर भी उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं लिया। आप आती हैं, अमिता जी आती हैं, सबको बताते थे अमिता जी फिरोजाबाद से आती थी, क्योंकि मैं, मेरे गुरुजी आगरा में थे, मैं फिरोजाबाद से नियमित आगरा आती थी, और 5 बजे से 7 बजे तक मुझे शिक्षण ग्रहण करती थी उनके चरणों में बैठकर, और फिर बस से अपने घर आती थी। अनमेरिड थी, अविवाहित थी, तो माताजी चिंता भी करती थी, लेकिन मेरे पिताजी का बहुत सहयोग था, मेरे को बहुत विश्वास किया उन्होंने मेरे ऊपर, तो वो तालीम इस तरह चलती थी। और फिर जाके, क्योंकि मेरा जॉब 19 वर्ष में ही लग गया था।
0: अच्छा
1: जी, मैं बहुत भाग्यशाली थी कि एक साथ मुझे चार चार जॉब मिले।
0: अच्छा,
1: जब मैं एमए पास किया तुरंत ही मेरे पास नौकरी, एक जगह लोग नहीं रखती उस समय, एमए पास करके लग जाती थी एक तो। फिर थोड़ा सा मेरा इतना प्यार भरा रिश्ता रहा सबसे, जहाँ मैं पढ़ती थी वो मेरा इंतजार करते थे कब मैडम एमए करके आए लड़की ये, हम इसको अपने विद्यालय में रख लेंगे। इस तरह से मुझे कॉलेज की जॉब 19 वर्ष पार किया था, मैंने 20वां लगा था सन 1981 में। मैं बरेली से मैंने अपना शिक्षक की यात्रा शुरू प्रारंभ की।
0: क्या बात है अमिता जी, मैं एक और आपसे चीज जानना चाहूंगी कि हम जानते हैं आजकल बहुत से लोग हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत है, टेंशन है, जीवन में डिप्रेशन भी आ रहा है कई, तो क्या कोई आप उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो ये सुने या इस प्रकार का संगीत सुने जो मदद कर सके, या कुछ अगर आप ऐसा सुनाए हमारे श्रोताओं को जो आपको लगता है कि हाँ इस प्रकार का अगर आप संगीत सुनेंगे तो आप अपनी स्थिति को भी बेहतर कर पाएंगे?
1: जी, कई बच्चे आते हैं हमारे पास, कुछ तकलीफ में होते हैं, परेशान में होते हैं, लेकिन संगीत का हम प्रारंभ सरगम से ही करते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे प्रांतीय लोक संगीत है, भक्ति संगीत है, वो छोटे छोटे गीत जो होते हैं, जैसे मैं एक जैसे कहूँ, बच्चे का कुछ नहीं जानते, बच्चे जैसे राम का सब जीवन चरित्र सब जानते हैं, छोटा सा एक हम छोटी छोटी हम बंदिशों में बताएं उनको, राम

0: ज्यादा उसको टेक्निकल ना शुरू शुरू में प्रारंभ में अवसाद इन सब चीजों से निश्चित रूप से दूर होता है, भक्ति संगीत है और जिस प्रांत में हम रह रहे हैं उसके छोटे छोटे गीत बनाकर उनको और सरंगम के माध्यम जैसा मतलब विद्यार्थी हो, विद्यार्थी किस लेवल का है, डिप्रेशन का शिकार है और थोड़ी सी हम उसको एक गाइडेंस भी देते रहे, समझाते रहे उसके मन की बातों को
1: जी।
0: क्योंकि सारा कुछ मन में है और किस परिस्थिति से वो आहत है उसकी बात को पूरी सुननी चाहिए, सुनने के बाद फिर संगीत के माध्यम से उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सुनना भी एक मैडम लर्निंग प्रोसेस है, श्रवण की एक क्रिया है, बहुत सशक्त क्रिया है। सुनेंगे जितना सीखने से नहीं आता ये सुनने आता है। हमारे गुरु जी के विद्यालय में हम जाते हैं वहां जो आधा घंटा सीखता है वो पहले एक घंटा सुनता है तो उससे काफी हद तक बच्चे नॉर्मल होते हैं, उनके अवसाद दूर होते हैं क्योंकि सुनेंगे हम, सुनने की धैर्यता ही तो खत्म हो रही है वर्तमान में
1: जी।
0: वो सहनशीलता, वो धैर्यता, बड़ों के प्रति थोड़ा आदर सम्मान, तो जब बैठने की प्रक्रिया से एक अनुशासन आता है
1: जी,
0: तो उस प्रक्रिया से जब सुनेंगे तो फिर उतनी देर उनको समझने का मौका मिलेगा
1: जी।
0: है ना, तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा ऐसा मैं मानती हूँ, कोशिश करती हूँ।
1: ये बहुत सुंदर आपने बात कही, एक घंटा सुनते हैं तो आधा घंटा फिर हाँ। आप सीखते हैं गाते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: तो सुनना बहुत जरूरी
0: सुनना
1: है जीवन में।
0: उसमें कई कई राग उनको बच्चे डिफरेंट टाइप के बच्चे आते हैं उन सबकी भी उनको समझ में आता है ये तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है फिर इतना अच्छा गा रहा है, तो बच्चों के लिए प्रेरणा बन जाती है कि नहीं मुझे अपना धैर्य नहीं खोना है। हम धैर्य खो के ही तो अवसादग्रस्त हो रहे हैं
1: बिल्कुल,
0: तो वो धैर्य, ये संगीत हमें बहुत धैर्यवान बताता है, हमें संवेदनशील बनाता है संगीत की साधना,
1: तो संगीत से जुड़े तो
0: हाँ बिल्कुल, संगीत वो सशक्त माध्यम है जो हर अवसाद और वेदना का जो पूर्ण करने में सहयोग, सशक्त माध्यम है,
1: सशक्त माध्यम है, बिल्कुल
0: सशक्त माध्यम है।
1: अमिता जी मैं आपसे एक और, अगर कोई ऐसी जैसे आपने अभी जो राग सुनाया इसके अतिरिक्त कोई ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आप अक्सर गुनगुनाते हो या रिक्वेस्ट करते हो सभी सुनने के लिए, कोई ऐसा गीत या कोई एक राग अगर हमारे श्रोताओं को आप सुनाए।
0: इस समय मुझे याद आ रहा है बस थोड़े उसके राग दरबारी की एक बंदिश याद आ रही है
1: जी।
0: जो अक्सर पसंद की जाती है, मान जा दरबारी के स्वर में गाधानी कोमल लगता है और ये रात्रि के प्रथम मध्य रात्रि कालीन गाया है, आशा भरी थाट से उत्पन्न होता है, तो इसकी मैं बंदिश सुनाती हूँ आपको।

0: मुझे ऐसा लगता है जब आप गा रहे होते हैं तो उसके बाद कुछ ना बोलूं या कुछ ना पूछूं आपसे।
1: बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ, आपको पसंद आया।
0: इसके बाद शायद कुछ भी कहना कम लगता है, कुछ भी सुनने का मन और नहीं करेगा। आपकी आवाज में सच में जादू है और दिल गदगद हो जाता है सुनकर। अमिता जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ, महसूस करती हूँ कि आज मैं आपको लाइव यहाँ सुन पा रही हूँ।
1: थैंक यू सो मच। मैं समस्त प्रमुखारी का बहुत हृदय से, भाइयों और दीदियों का बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हम आगरा से ईदगाह से अंशुना दीदी हैं, उन्होंने हमको भेजा है और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ज्योति मैम के माध्यम से मैं आई। ज्योति खंडेलवाल आगरा से कथक नृत्य की डायरेक्टर हैं, वो मुझे लाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं एक बहुत सारी सीख यहाँ से लेके, गाइडेंस लेके जा रही हूँ, जिससे अपने परिवार में, समाज में और राष्ट्र में उनको वैसा ही करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।
0: अमिता जी, जाते जाते अगर आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ आप ऐसे टिप्स या गाइडेंस उन्हें देना चाहें कि वो बेहतर गायक बन पाए, या जैसा आपने कहा कि गुरु से और भी चीजें सीखते हैं संगीत के अलावा, तो बेहतर इंसान भी बन पाए, बेहतर गायक भी बन पाए, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं नए बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, एक तो उनको बहुत, जो भी मार्ग चुने उनके सामने खुला द्वार है। प्राचीन काल में जो हम लोग पढ़ते थे उससे पहले के काल में उतना साधन नहीं थे, आज तो बहुत अच्छे साधन हैं, इसलिए अपनी जो दिशाएं हैं वो स्वयं तय कर सकते हैं। एक उनके सामने खुला द्वार है, चाहे वो PhD करें, चाहे वो गायक बने, चाहे वो अच्छे कोरियोग्राफर बने, डांसर बने। तो आज तो बहुत ही ये बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो बच्चे अपना मार्ग आसानी से चुन सकते हैं अपनी टैलेंट के हिसाब से। बस वो अपने संस्कारों से बने रहे, जो घर का संस्कार है और जो गुरु से संस्कार लिया है उनसे विरत होकर कोई मार्ग ना चुने। और जो भी उनके अंदर टैलेंट है, जब तबले का आया तो तबला करें। अब बच्चों को ये नहीं समझ पाते हैं बच्चे कि मुझे तबला करना है, मुझे गाना करना है या कोई वाद्य करना है। जिस चीज की आपके अंदर अभिरुचि हो, अपने टैलेंट को, अपने गुणवत्ता को समझते हुए गुरु के निर्देशन में उस दिशा में अपने संलग्न होकर कार्य करें, तो निश्चित रूप से सफलता उनको मिलेगी।
0: जी, तो उन्हें शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए या फिर क्या सीखना चाहिए? जैसे मान लीजिए कोई गाना गाना चाहते हैं तो वो गाना गाने के लिए क्या करना चाहिए?
1: ये कहना चाहूंगी कि जो गाना है, कुछ भी आप गाइए, जड़ उसकी शास्त्रीय संगीत है। निश्चित रूप से उनको सरगम का अभ्यास करना पड़ेगा। सरगम का अभ्यास करने से जब स्वर पकड़ में होगा तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी गा सकते हैं। तो शास्त्रीय संगीत के जो सरगमों का जो अभ्यास है वो बेसिक में वो सीखना बहुत जरूरी है। हमारे विद्यालय में जो मैं जहाँ जाती हूँ वहां पर तानपुरे से गाते हैं सब लोग, नो हारमोनियम। हारमोनियम ध्यान भटकाता है, तो हारमोनियम को बहुत आगे जाके गए, विदेशी वाद्य है, शुशुर वाद्य है, लेकिन हम जो साधारण गाना गाते हैं उसमें हारमोनियम बहुत हमें सहायता करता है। लेकिन नींव में जाकर पहले तानपुरे से हमें स्वरों का अभ्यास करना चाहिए। तानपुरा भी इलेक्ट्रिक तानपुरे चल गए हैं आजकल तो, लेकिन वैसे उसको मिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमेशा गुरु के सामने ही अभ्यास करें प्रारंभ में।
0: अच्छा,
1: फिर वो अच्छा लोकगीत भी गा सकते हैं, अच्छा फिल्मी संगीत भी गा सकते हैं, लेकिन स्वरों का अभ्यास गुरु के सामने बैठ के करें। जब पक्के हो जाए सरगम है उनकी, सारे रे गामा शुरू में, फिर ये डिफरेंट टाइप के होंगे, सारे गामा, इस तरह के जो छंद हैं, 3 के 2 के 4 के 5 के, तो उन छंदों में जब सशक्तता आ जाएगी, जब उनमें मौलिकता आ जाएगी, एक सुरीले हो जाएंगे वो, तब फिर जाके आगे उनको सीखना चाहिए। प्रारंभ में सरगम का अभ्यास करना चाहिए और गुरु के सामने करना चाहिए। ये तो बेसुरापन आ जाता है ना घर में। घर में भी अभ्यास करने का हम तभी अलाउ करते हैं जब उनका सामने स्वर अच्छा हो जाए।
0: अच्छा।
1: प्रैक्टिस जब भी करनी चाहिए जब आपका गुरु कह दे कि दिस इज ओके, आपका सही हो गया है,
0: तब उसका अभ्यास करें।
1: अभ्यास तब तक नहीं करना चाहिए था जब आपके शिक्षक हैं या गुरु जो भी है वो आपको आदेश ना दे, क्योंकि आप फिर गलत कर लेंगे अभ्यास। तो प्रारंभ में उसको संगीत को सुरीला करने के लिए, अच्छा करने के लिए, स्वर में गाने के लिए सरगम को और गुरु के सामने, शिक्षक है या गुरु जो भी है, क्लास में पढ़े या अलग से पढ़े, उनके सामने ही अभ्यास करना चाहिए। जब पक्का हो जाए फिर आप अपना अभ्यास भी करें घर में और फिर गुरु को सुनाएं। यह एक सही तरीका है मैम, कोई भी विधा गाएं आप
0: जी,
1: क्लासिक, बल्कि वाद्य लोग बजाते हैं सितार और वायलिन और वीणा वगैरह जो बताते हैं, उनके लिए भी, तंत्र वाद्यों के लिए, उसके लिए भी लोग पहले गाना सीखते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, NM राजन थी, इतनी अच्छी वायलिन वादिका, सब गाना बहुत अच्छा गाते थे। हाँ, गाना सीखने से क्या होता है, वो मन में एक अंदर से तीन अवस्थाएं होती है ना सीखने में, चेतन अचेतन अवचेतन, उनमें संगीत जाता है तो वो फिर निकलने में भी उतना सुरील निकलता है। तो गायन कला उच्च क्यों मानी गई, क्योंकि गायन कला सब चीजों की जननी है, गायन कला श्रेष्ठ है। तीनों कलाओं में गायन कला श्रेष्ठ क्यों है, कि हमें कोई साधन नहीं चाहिए, मैंने यहाँ बैठ के आपको गात्र वीणा से, जो प्रभु ने मुझे दी है उस गात्र वीणा से मैंने आपको संगीत सुना दिया। मैं शब्दों को भी माध्यम ना बनाऊं, फिर भी आकार के माध्यम से भी आपको, लता जी एक आकार लेती थी, लोग गदगद हो जाते थे। तो हमें संगीत में, गायन कला में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ना तबला चाहिए, ना हारमोनियम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी अपनी साधना कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गाना तो अपनी साधना के लिए होता है। वो ठीक है हम थोड़ा प्रदर्शन भी करते हैं, मन की शांति के लिए, अपना अनहदनाद अंदर का जगाने के लिए, आत्मा और परमात्मा का पूजा करने के लिए। तो संगीत वो सशक्त साधना है जिसमें गायन कला बहुत उच्च कोटि की है, क्योंकि इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है।
0: आवश्यकता नहीं है
1: जी।
0: आता जी, आपके फेवरेट सिंगर कौन है, आपके पसंदीदा?
1: मेरी फेवरेट सिंगर से तो फिल्मी में तो आशा जी है
0: जी।
1: और वैसे जो शास्त्रीय संगीत में मेरे गुरु जी के अलावा बहुत से कलाकार हैं जिनको मैंने सुना है, मुझे किशोरी मुनकर जी बहुत पसंद है, बेगम अख्तर जी बहुत पसंद है, ये अच्छी गजल गायिका थी, बहुत अच्छी। किशोरी मुनकर जी का क्लासिकल गाना हे गोविंद हो गोपाल आंसू से ऐसे रुला देता था, बहुत भावुक गाना उनका था, ये मेरी पसंदीदा गायक है।
0: आपको गजल का भी शौक है?
1: गजल का शौक है मुझे, शौक है तो बहुत ज्यादा नहीं गाती हूँ, लेकिन हाँ कोई अवसर आता है तो मुझे कोई कहे तो मैं कोशिश करती हूँ गाने की।
0: क्या बात है।
1: हाँ, वैसे तो मैं शास्त्रीय संगीत की कोशिश में रही हूँ, पर मैंने जैसा कि आपसे कहा कि अगर शास्त्रीय संगीत हमने अच्छी विधि विधान से सीखा है तो हम कोई भी गाना कोशिश कर सकते हैं गाने की, तो मैं क्या नाचीज हूँ जिनका मात्र हूँ।
0: आपने इतनी जगह जो परफॉर्मेंस आपने दी, आगरा के ताज महोत्सव की बात करें या वृंदावन के हरिदास संगीत सम्मेलन की बात करें, बहुत सारे राष्ट्रीय संगीत सम्मेलनों में, सांस्कृतिक आयोजनों में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, कोई जैसे आपने गजल की बात कही आपको शौक है, क्या तो पंक्तियां आप गुनगुना सकते हैं हमारे श्रोताओं के लिए?
1: थैंक यू, मैं गुनगुना कोशिश करती हूँ। अभी ये गजल का कार्यक्रम हुआ था आगरा में, आशा जी को श्रद्धांजलि दी गई थी, तब भी मैंने उनके उनको गा के ही श्रद्धांजलि दी थी, क्योंकि संगीतकार की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होती है कि उन्होंने जो काम किया है अपनी जिंदगी में उसको गाकर हम उनको सम्मान दें। उनको उनकी प्राइवेट एल्बम से एक गजल मुझे याद आ रही है जो अभी मैंने आगरा में कुछ एक डेढ़ महीने पहले गाई, कोशिश की थी गाने की।

0: आपने श्रद्धांजलि दी जी। और इस
1: श्रद्धांजलि मैंने दूसरे गाने को की थी।
0: अच्छा,
1: ये तो मैंने अभी गजल का परफॉर्मेंस हुआ था तो मैंने आशा जी की एल्बम से ये गजल गाई थी।
0: अच्छा जी, जी।
1: वो उनका श्रद्धांजलि दूसरे से की थी, वो उनका बड़ा दर्द भरा गीत है जो मैंने गाया था। आप कहेंगी तो मैं दो लाइन सुनाऊंगी। उनका बहुत पसंदीदा, और जब वो बहुत तकलीफ में थी तब उन्होंने वो गाना गाया था जो मेरे दिल को छू गया। जब मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ी तो उनका इतनी महान कलाकार को भी इतना कष्ट, कितना कष्ट उनको, पारिवारिक कष्ट उनको हुआ, तब उन्होंने वो गीत गाया था।
0: जी।

0: चैन से हमको कभी। ये आशा जी का बहुत दर्द भरा गीत है और इसमें जब उनकी बायोग्राफी पढ़ी मैंने तो आंखों से आंसू की धारा बैठी। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके गीतों को और ध्यान से मैंने सुना। कितनी महान कलाकार को कितनी समस्याओं से गुजर के उन्होंने बहुत संघर्ष से संघर्ष को सीखा बहुत जी, जी, अपने को सेव करते हुए बचा के। कैसे एक लड़की का जीवन किस प्रकार के होता है, जब उनकी वो सब मैंने जीवन परिचय पढ़ा तो फिर मुझे याद आया कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे परिवार ने हमको इतना एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, हमको सहयोग किया हमारे फादर ने। माता जी बहुत नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपने घर को संभालने से मुझे जो सहयोग दिया और पिता ने मुझे आगे मेरे फॉर्म मेरे फादर भरते थे। अच्छा। तो कितने ये देख के मुझे लगा कि हम बहुत लकी हैं, ईश्वर का बहुत धन्यवाद है, बाबा जी का बहुत आशीर्वाद है।
1: ऐसे पिता ऐसे माता पिता ऐसे घर मिला। मुझे लगता है जैसा आपने कहा आशा जी की बायोग्राफी शायद हम सबको पढ़नी चाहिए
0: बहुत प्रेरक है,
1: प्रेरक है,
0: हर लड़की को तो पढ़नी ही चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए,
1: सबको पढ़नी चाहिए। जी जैसे कि अमिता जी आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी 19 साल की उम्र में ही आपने शिक्षा का क्षेत्र अपनाया और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया, करीबन 40 से ज्यादा तो आपके शोध पत्र ही प्रकाशित हुए हैं, अनगिनत शोधार्थियों को आपने सफलतापूर्वक PhD भी करवाई है। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं, किस प्रकार के शोध किए, किस प्रकार के टाइटल्स थे या क्या अनुभव था आपका?
0: जी बहुत अच्छा। शोध कराने में जब मैं 96 में मेरी PhD अवार्ड हुई तो जैसे ही डिग्री मेरे हाथ में आई या वो लेटर मिला तो विश्वविद्यालय ने कहा अब आपको शोध विशेषज्ञ बनना है, आपको गाइड बनना है। ये देखिए क्योंकि उस समय बहुत कम लोग कराते थे PhD, तो बहुत विद्यार्थी मेरे पास अच्छे अच्छे विद्यार्थी आए। मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में, एक से एक अच्छे कलाकार, एक ITC से पढ़ी हुई थी डॉक्टर रूबी मलिक
1: जी
0: जो कि लताफत हुसैन खां की शिष्या थी। अब जब वो इतनी बड़ी कलाकार मेरे पास आई तो मुझे लगा मैं ही उनके आगे कुछ नहीं हूँ, वो कहती है नहीं मुझे आपके साथ काम करना है। तो उन्होंने अपने गुरुजी के योगदान के ऊपर जो कि आगरा घराने के विशिष्ट बहुत उम्दा उच्च स्तरीय कलाकार भी थे और शोध मर्मक भी थे संगीत के, उनके ऊपर उन्होंने काम किया। लताफत हुसैन खां का संगीत में योगदान, मीडियम उनका इंग्लिश था तो बहुत अच्छे से काम किया। फिर उनको एक फेलोशिप मिली तो वो टिनी टार्ड में चली गई थी जैसे अवार्ड हुई, और फिर उनका यहाँ पर दाऊदयाल कॉलेज फिरोजाबाद में नियुक्ति में भी मैं ही विशेषज्ञ थी, मेरा ही पद था और मैं ही विशेषज्ञ थी। तो उनको रूबी जी बहुत अच्छा गाती थी आगरा घराने की गायकी, शोध उनकी जो परख थी, गुरु के प्रति इतना समर्पण था, तो मुझसे बोली कि मैं इस तरह उनके ऊपर ही कुछ काम करना चाहती हूँ। उनकी जो विशिष्ट गायकी थी उनके ऊपर उन्होंने उनकी विशेषज्ञता के परतों से शोध के निष्कर्ष निकाले। उन्होंने उनकी गायकी कैसी थी, उनकी बंदिशें कैसी थी, आधुनिक संदर्भ में उनकी क्या क्या और विशेषताएं परख हो सकती थी, तो उन्होंने उनकी बंदिशों के ऊपर काम किया अपने गुरु जी की गायकी के ऊपर और बहुत अच्छा उनका काम हुआ। आगे जाके उनको फेलोशिप भी मिली और वो फिर ट्रेनी टावर में सेटल हो गई।
1: क्या बात है,
0: अब तो रिटायर हो गई है, आ गई है। दूसरा मुझे एक मिली शोभी माथुर है आगरा की, बहुत उच्च स्तरीय शोरमणि प्राप्त है उनको, कलाकार है, उन्होंने भी बंदिशों के ऊपर काम किया, बहुत अच्छी अच्छी बंदिशें बनाती थी वो।
1: अच्छा।
0: तो जिस विद्यार्थी के अंदर जो गुणवत्ता हो, आगरा कॉलेज में प्रोफेसर है, बहुत प्रोफेसर ने मेरे साथ काम किया, इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, मुझे अच्छे विद्यार्थी मिले। कुछ ऐसे भी मिले जिनके साथ मैंने बहुत मेहनत की, एक ने किया संगीत के माध्यम से, मतलब मीडिया एक सशक्त माध्यम है
1: जी।
0: संगीत के प्रचार प्रसार में उस लड़की ने बहुत अच्छे निष्कर्ष निकाले, जैसे हम पहले कहते थे ना वॉशिंग पाउडर निर्मा। हाँ। तो संगीत से हर चीज बहुत आसानी से याद हो जाती थी, उसको कहने में उसका प्रचार प्रसार करने में एक सशक्त माध्यम था।
1: जी बिल्कुल।
0: और भी विद्यार्थी आए जिन्होंने उत्तर प्रदेश में तबले का योगदान पर काम किया, क्योंकि मैं तबले में भी मैंने शिक्षा ग्रहण की थी तो तबले के विद्यार्थी भी मेरे पास आए, क्योंकि संगीत में तीनों ही चीजें आ जाती हैं। क्योंकि मैं प्रोफेसर हुई तो उसके बाद फिर मेरे पास तबले के भी विद्यार्थी आए, जिनको 5 विद्यार्थियों ने ऐसे किए जिनको नेट क्वालिफाइड थे।
1: अच्छा।
0: उनको JRF मिलती थी
1: जी।
0: हाँ, बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थियों ने काम किया, बहुत मेहनत की और अच्छा मुकाम हासिल किया। अभी एक का तो पीलीभीत में अपॉइंटमेंट हो गया, नियुक्ति हुई है
1: जी।
0: एक रचना गुप्ता जी हैं, वो नवोदय विद्यालय है, उनका भी आगरा में कुंडों में जगह है, वहाँ उनका हुआ है।
1: क्या बात है।
0: और एक मैं आपको बताना चाहूंगी जो मेरी जिंदगी में बहुत यादगार विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी मुझसे उम्र में बड़ी थी, वो चंडीगढ़ में प्राचीन कला केंद्र की डायरेक्टर हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: जी,
0: तो काफी ओल्ड है और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक की डांसर है।
1: वाओ।
0: वो जब मेरे पास आई तो मेरे मैंने कहा दीदी आप तो कितनी गुणी हैं, आपको क्या कुछ करना नहीं। अमिता जी मैंने सुना है पीएचडी तो आपके निर्देशन में करनी है, क्योंकि आप एक अच्छी इंसान है, आपके अंडर में कोई विद्यार्थी कभी परेशान नहीं होता है। तो ये मेरी मुझे उनके मुंह से सुन के लगा शायद मैं सही मार्ग पर चल रही हूँ, इतनी दूर से चंडीगढ़ से आके उनको ये लगा कि मैं ही उनको करा सकती हूँ। तो ये मेरे मुझे लगा शायद मेरा इस मेरा जो मार्ग है वो ठीक चल रहा है, मेरा लोगों का जो स्नेह है, तो मैं उससे धन्य हुई और मैंने उनको फिर ग्रहण किया। रातों रात हम लोगों ने मिलकर सिनॉप्सिस बनाई और दीदी का काम किया उन्होंने लोक पंजाब के लोक संगीत पर, उन्होंने कथक में
1: जी
0: कथक की थी वो
1: जी
0: डॉक्टर शोभा कौसर
1: जी।
0: हाँ तो कथक की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर मॉरिशस वियतनाम सब जगह जाती थी प्रोग्राम देने, और
1: जी
0: बहुत अच्छा मुकाम है उनका कथक क्षेत्र में
1: जी।
0: तो उन्होंने मेरे अंडर में काम किया, तो तीन चार विद्यार्थी तो ऐसे लगे जिनको मुझे देख के ये लगता था ये तो खुद ही इतने अभीष्ट कलाकार हैं, इनको मैं क्या गाइडेंस दूंगी, लेकिन उनको लगा कि नहीं आपके साथ ही करना है। तो एक रिसर्च करते समय एक टॉपिक होता है शोध प्रविधि, है ना, शोध प्रविधि, और सेकंड में हम डालते हैं उपलब्ध साहित्य का सिंगालोकन, जो भी आपने टॉपिक लिया उससे संबंधित कितनी बुक्स पढ़ी आपने। अक्सर विद्यार्थी उनको छोड़ देते हैं संगीत में, खास तौर से जो रिसर्च करते हैं तो टेक्नोलॉजी और इनका वो ऐसे विवरणात्मक ज्यादा टॉपिक होते हैं, क्योंकि संगीत में अभी रिसर्च का मार्ग उतना अच्छा नहीं था क्योंकि कोई कराता नहीं था, होते तो आप देखें
1: बहुत गिने चुने,
0: हाँ गिने चुने होते थे और विवरणात्मक ज्यादा लिख देते थे, उसमें विवेचनात्मक या रिसर्च मेथोलॉजी डाल के उसके अच्छे शोध की संभावनाएं क्या है उस तरह की तुलनात्मक। तो रिसर्च का मतलब तो ये होता है, मतलब रिसर्च जो सर्चेज हुई है उनको हमें फिर से पढ़ के कुछ नए मार्ग लोगों के सामने प्रशस्त करने होते हैं। तो इस तरह की रिसर्च मुझे कराने का मुझे मौका मिला, जिसमें विद्यार्थी का भी बहुत सहयोग होता है और मेहनत तो गाइड को ज्यादा करनी पड़ती है,
1: गाइड की बहुत मेहनत होती है। ये रिसर्च फील्ड में कहते हैं अगर आपको अच्छा गाइड मिल जाए तो आपका जीवन संवर जाता है।
0: सही कह रही है, ये तीनों लोग इसीलिए आए थे, अच्छा गाइड का मतलब है कोई सहयोग भी करे कोई व्यपना। आजकल गाइड का आप जानती हैं जैसा है वातावरण, तो वो तो उस मामले में मुझे सुन के ये अच्छा लगता था कि पैसा सब चीज नहीं होती, वैल्यूज भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छे अवसर मिले काम करने के, और अभी मैंने जो मेरे अंडर में जमा हुई है दिव्यांगता के ऊपर, दिव्यांग बच्चों के ऊपर मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम कराए। तो उस बच्ची को मैंने संगीत के माध्यम से दिव्यांगता की भागीदारी, एक सशक्त माध्यम, दिव्यांग है
1: जी,
0: और
1: जी,
0: उसने संगीत सीखा है
1: जी, जी,
0: तो उस माध्यम से वो अपनी भागीदारी को निश्चित कर सकते हैं। नहीं तो कोई कहता है ये ऐसे है वैसे, लेकिन हमारी वर्तमान सरकार ने दिव्यांग शब्द जो दिया उससे बड़ी इज्जत मिलती है। तो उसमें काम किया उस लड़की ने कि संगीत के माध्यम से क्या उनकी भागीदारी कितनी निश्चित है, कितना उनको सम्मानजनक स्थान प्राप्त है समाज में।
1: पीएचडी की
0: टॉपिक है जी जी,
1: क्या बात,
0: रेयर टॉपिक, अनुभव हुए इसमें। जितने भी आर्टिस्ट मंच पे आते थे तो हम ढूंढते थे दिव्यांग है उनके अनुभव लेना, उनकी फिर डाटा निकाला वहां से, जो एक सूरकुटी है आगरा में
1: जी जी,
0: वहां से डाटा निकाल के फिर काम किया इस तरह।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: और बच्ची ने भी बहुत मन से किया, हालांकि मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ उस काम से, क्योंकि लड़कियों के साथ ये होता है कि उतना हर छात्रा उतनी लगनशील नहीं होती है, तो मैं उतना उसको अच्छे से गाइड करूँ, क्योंकि पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक काम है, उसने जमा कर दिया उसको। अब देखते हैं आगे एक और वाइवा होगा तो उसमें भी कुछ और अच्छी गाइडेंस देकर उसको परिमार्जित करने की कोशिश करेंगे।
1: मतलब संगीत के क्षेत्र के अलग अलग जो
0: आयाम है,
1: हाँ, और बहुत ही विभिन्न, मतलब ऐसे जो विषय है वो एक दूसरे से बड़े अलग, अलग है। और वैसे संगीत सागर है, कितने गोते लगाए जाए उसमें, लेकिन शोध का माध्यम बड़ा
0: ये होता है, विद्यार्थी सीख रहा, हम भी सीख रहे हैं, हम भी निरंतर सीखते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उसमें शिक्षक का भी लाभ है, गुरु का भी लाभ है और विद्यार्थी। इससे पहले समय था उसमें उस गायन शैली से ही गुणवत्ता मानी जाती थी, कौन कितना बड़ा कलाकार है, लेकिन वर्तमान समय में रिसर्च करें आप, पेपर लिखें आप अभ्यास भी करें, अच्छे कलाकार भी, एक अच्छे शास्त्रज्ञ भी बने, तो ये अलग अलग मार्ग है, इन सब में महारत हासिल करते हैं।
1: आपने शोध पत्र भी लिखे
0: जी,
1: 40 से ऊपर आपने शोध पत्र लिखे, उसमें किन विषयों पर आपने काम किया
0: जी? मैंने उसमें एक दो तीन पेपर निकाले थे, मीराबाई जो मध्यकालीन संगीतज्ञ थी, क्योंकि मेरे रिसर्च का टॉपिक

0: मीराबाई थी, मध्य भक्ति गीत संगीत की परंपरा एवं मीराबाई। तो मैंने उनकी जो उनका संगीत तत्व था, मीराबाई का जीवन आपने देखा हो तो मीरा के भक्ति गीत संगीत के प्रयोग कैसे, कौन कौन से अभिनव प्रयोग थे, है ना। और ये मनोविज्ञान के ऊपर भी मैंने लिखा।
1: अच्छा।
0: संगीत और मनोविज्ञान जो हमारी तीन अवस्थाएं होती हैं संगीत के शिक्षण प्रशिक्षण में, ये तीनों अवस्थाएं हमारी काम करती हैं मनोविज्ञान की। इस पर भी मैंने पेपर लिखे, कोशिश की। और मध्यकाल में भक्ति संगीत के कौन कौन से प्रयोग हुए, मध्यकालीन कवियों ने संगीत को क्यों सशक्त माध्यम बनाया, संगीत को क्यों माध्यम बनाया, उसमें मीरा कैसे सबसे सशक्त हो गई, क्योंकि वो स्वयं प्रेयसी हो गई, उनके और प्रभु के बीच में कोई नहीं था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई माध्यम ही नहीं था, सूरदास जी ने उद्धव को माध्यम बनाया, लेकिन मीरा जी तो स्वयं प्रेयसी हो रही। तो ये कैसा समर्पण, एक लगन और कैसा प्रेम था अलौकिक, कि इसी एक लाइन से समझ आता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो मीरा एक सशक्त माध्यम थी, उन्होंने उस समय की नारी को एक जो नेतृत्व प्रदान किया। तो मीरा जी का जीवन मुझे बहुत अंदर से आकर्षित करता है। उनके नेतृत्व को देख के, उनके संगीत और समर्पण को देख के, उसमें त्याग तपस्या और बहुत कुछ था।
1: जी, समर्पण की बात आती है तो मीरा बाई का नाम ना लिया जाए ये तो संभव ही नहीं होता।
0: जी
1: बिल्कुल,
0: थैंक यू
1: जी। क्या आप कोई ऐसा, जैसे आप भक्ति संगीत की बात कर रहे हैं, मीरा बाई जी की बात कर रहे हैं, तो क्या दो और पंक्तियां आप हमारे श्रोताओं को?
0: जी जरूर, थैंक यू मैम।

हर भी दो लाइन में मैं एक आपको एक और उनका समर्पण का प्रेम जो गीत मैंने बताया उसमें एक और मैं जोड़ना चाहूंगी, वो छोटी सी ताल में है और बड़ा अच्छा, वो मैं ज्ञान सरोवर में गा के भी आई हूँ, पसंद आया सबको।

0: ये उनका बड़ा समर्पित गीत जो मीरा बाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं और कोई है नहीं, तो कितना समर्पण, ये प्रेम की अभीष्ट पराकाष्ठा आप देखती हैं इसमें। और वर्तमान नारी के लिए भी उन्होंने एक संदेश भेजा कि जिस रिश्ते में रहो प्रेम, प्रेम सर्वोत्कृष्ट है, हर रिश्ते में भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, त्याग और उसमें बलिदान, तो ये रखेंगी भाव तो हर रिश्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा और आप भी आनंदित रहेंगी और आपके साथ जो रहेगा वो भी आनंदित रहेगा। जी, ये जीवन का, जीवन जीने की कला मैं वहाँ भी सीख के आई हूँ, यही और ज्यादा प्रबल हो गई और तो मुझे वहाँ इसीलिए बहुत अच्छा लगा। जी, आनंद आनंद मतलब पराकाष्ठा आनंद, चंद्रकांता दीदी वगैरह सबका, सारी दीदियों का बहुत उत्प्रेरक। हालांकि मैं इतनी ऐसी हतप्रद हो गई वहाँ सुनकर, अभिभूत हो गई कि मैं वाणी ऐसा लगा मैं निशब्द हो गई, आपके सामने मैं अच्छी बातचीत कर रही हूँ, ऐसा लगा मैं प्रेम में आनंदित हो गई, अभिभूत हो गई, निशब्द नहीं हो जाता है व्यक्ति, उस तरह का मुझे लगा।
1: हम अभी निशब्द हो गए आपको सुनकर, सच में मुझे लगता है हम और हमारे श्रोतागण सभी इस वक्त भाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे कि हम आपको सुन पाए। आपकी आवाज है ये हमारे दिलों में बसाकर हम रखेंगे। मुझे लगता है
2: जैसा आपने कहा कि संगीत बहुत मदद करता है हमारे जीवन शैली में, आपने बताया डिप्रेशन या स्ट्रेस भी होता है तो संगीत किस प्रकार से हमें खींचकर बाहर निकाल लेता है, और हम सभी, मैं फिर से ये कहूंगी, बहुत भाग्यशाली है कि हम आनंदित होने का ये अवसर मिला, आपको सुनने का ये अवसर मिला। बहुत बहुत दिल से आभार है आपका अमिता जी।
0: थैंक यू, मैं भी बहुत आह्लादित हूँ आपसे, आपके समक्ष अपने विचारों को व्यक्त करके गायन के माध्यम से या अपनी जो भी जीवन की जो अनुभव था उससे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत सादर के साथ अंदर से अभिभूत हूँ, बहुत प्रणाम करती हूँ। ओम शांति,
2: ओम शांति। तो दोस्तों आपने सुना प्रोफेसर श्रीमती अमिता त्रिपाठी जी, उनकी साधना को जाना, उनके सुरों को अपने दिल में आज हमने समा लिया और एक प्रेरणा स्रोत हमें और मिले जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों अमिता जी का हम दिल से आभार तो व्यक्त करते ही हैं, साथ साथ जो प्रेरणा मिली उसे जीवन में साथ लेकर चलते हैं ये वादा भी करेंगे। पर फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रेडियो मधुबन पर अक्सर हम जानते हैं बात होती है बदलाव की, बात होती है उन्नति की, और कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे भारत में जन्मे हैं जिन्होंने न सिर्फ अपना जीवन भारत माँ को समर्पण कर दिया बल्कि समाज सेवा में दूसरों का जीवन खुशनुमा और उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए अपना हर एक क्षण लगा दिया। उन्हीं में से एक ऐसी महान विभूति आज हमारे समक्ष है जिनका नाम है भिखू राम जी इदाते, या उनको सब दादा इदाते के नाम से भी जानती है। पद्मश्री जैसे सम्मान से सम्मानित है और भारत की एक जानी मानी हस्ती है, और उनके बारे में उनका परिचय मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो के।
1: नमस्कार
0: दोस्तों, मैं आपको बता दूं, श्री भिखू राम जी इदाते यानी दादा इदाते विमुक्त घूमतू एवं अर्ध घूमतू समुदायों के लिए केंद्रीय विकास एवं कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता तथा कई जातियों के विकास में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान किया है। 2 जून 1949 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के छोटे से गांव में वे जन्मे। एक शिक्षक के रूप में अपना करियर उन्होंने शुरू किया और कैसे कैसे उनका जीवन, जो कहें कि 55 वर्षों से भी अधिक उन्होंने सिर्फ अपने समाज सेवा को अर्पित कर दिया, लोगों को अर्पित कर दिया, इस देश को अर्पित कर दिया। आगे की जर्नी उन्हीं से सुनेंगे। आपसे ही जानना चाहेंगे, आपकी जुबानी आपकी कहानी।
1: मैं बताया कि नाम है भिखू राम जी इदाते
0: जी,
1: दादा इदाते इस नाम से परिचित हो
0: जी।
1: महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में दापोली तहसील है, उस तहसील में टेटोली नाम का एक गांव है
0: जी।
1: उस गांव में मेरा जन्म हुआ। एक नॉमेडिक ट्राइब जिसको हम कहते हैं
0: जी,
1: ऐसे सरोदे नाम की एक कम्युनिटी वहाँ है, उस कम्युनिटी में वो जन्म हुआ। इस कम्युनिटी में कोई शिक्षा नहीं थी
0: जी,
1: कोई विशिष्ट व्यक्ति कोई बहुत बड़ी हुई ऐसा नहीं था। ज्यादा से ज्यादा 7वीं कक्षा तक कोई 2-3 लोग पढ़े थे, और पहली बार मैं 8वीं कक्षा में गया
0: जी। कौन से साल की बात है
1: ये? सामान्यतः 1964 की बात है।
0: ओके।
1: जब मैं उस समय 8वीं में जाना, 8वीं कक्षा में जाना तय हुआ था
0: जी,
1: क्योंकि उस समय मेरे स्कूल में गोपाल विट्ठल भागवत करके हमारे एक शिक्षक थे
0: जी,
1: मुख्याध्यापक, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी। उन्होंने हमारे गांव में एक संघ की शाखा शुरू की और उन्होंने मुझे वहां लाया। वो काम मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें बहुत मैं लिप्त हो गया। तो उन्होंने एक बार मुझे बताया कि अभी 7वीं के आगे थोड़ा शिक्षा तो करनी चाहिए। मैंने कहा कैसा करेंगे, घर की स्थिति तो कुछ नहीं है, देखो हम कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपको शिक्षा करनी है। इसलिए मैं मेरे घर में बताया कि मुझे शिक्षा करनी है। मेरे माता पिता जी ने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन हम तो आपकी शिक्षा नहीं कर सकते। मैंने कहा वो तो मुझे मालूम है, अभी क्या करेंगे। मैंने कहा अभी ऐसा करो, आप अपना देखो, मैं मेरा देखता हूँ। इतनी बात हो गई। मैं वहां से 50 किलोमीटर दूरी पर विद्यार्थी आश्रम था, वहाँ मामा महाजन करके आर्य संघ के प्रचारक भी रहे थे। उस गांव में एक उन्होंने विद्यार्थी आश्रम खोला था।
0: अच्छा।
1: उस विद्यार्थी आश्रम में मैं दाखिल हो गया। मेरे माता पिता ने मेरे 3 उस समय बहने थी उनको ले लिया, और दोनों मुंबई में एक फुटपाथ पर रहने। और फुटपाथ पर रहकर धीरे धीरे मेरे मामा थे, वह उन्होंने कहीं न कहीं छोटी झोपड़ी उनको कहीं न कहीं मिला दी उसमें रहने, लेकिन काम तो कुछ नहीं था, बहुत परेशानी में थे
0: जी।
1: तो किसी ने बताया यहाँ सिद्धि विनायक मंदिर है, एक छोटा था उस समय मंदिर है, वहाँ दुर्वा फूल जो है
0: जी
1: वो उसकी वो बेचो, बहुत लोग करते हैं काम, वहाँ मेरे माता पिता लगे वो काम करने लगे। मैं यहाँ आठवीं कक्षा में आ गया, क्रमशः नौवीं तक दो बरस में वहाँ था
0: जी।
1: उस समय मुझे नाइन्थ क्लास में 92% मार्क्स मिले।
0: वाह क्या बात है।
1: वार्षिक परीक्षा में एनुअल में
0: जी,
1: वहाँ के लोगों ने मामा माजन वगैरह बैठे उन्होंने कहा अरे आप जरा वो तहसील की जो स्कूल है वहाँ जाओ, हमारे आपके आपकी कोई कुछ बातें हुई है नहीं लगता है मुझे। मैं ठीक है, तो मैं दापोली शहर में आ गया, एजिया स्कूल नाम का स्कूल था, उस स्कूल में मैं दाखिल हो गया
0: जी।
1: इस तरह चलते चलते एक बार मैं मुंबई गया माता पिता को मिलने के लिए, देखा तो फूल माला बेच रहे हैं, माता जी रात को दूर दूर तक जा रही थी, वहां से वो दुर्वा वो लाके गणेश जी को तो बहुत लिया मालूम है
0: जी,
1: वो लाते थे उसका वो जुड़ी करते हैं छोटे उसकी फूल और माला करके। तो मेरे तीन बहनें माता पिता जी ये बेचते थे, मैं जब गया तो मैंने देखा तो मैंने भी जो तीन दो तीन दिन था तो मैंने भी फूल वगैरह बेचते उनके साथ करना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, उन्होंने कहा जरा यहाँ एक सिनेमा लगा है, ये लोग बोलते हैं बहुत अच्छा सिनेमा है,
0: अच्छा
1: तो आप देख क्या जाओ। तो मैंने कहा मैं सिनेमा नहीं देखू, देखियो लोग तो क्या क्या करते हैं सिनेमा देखने के लिए। मैंने कहा नहीं मुझे ना किताबें चाहिए पढ़ने के लिए, जो पैसे दिया है उसके मैं फुटपाथ पर कुछ किताबें देखता हूँ। तो उन्होंने कहा देखो, मैं गया चार आठ आने तो थे, उसमें से दो तीन छोटी छोटी किताबें फुटपाथ पर
0: जी
1: लेके मैं आ गया। मेरे माता पिता को बहुत दर्द हुआ कि बेटे ने किताबें मांगी थी लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, बोले कुछ नहीं। फिर से जब मैं दो चार महीने के बाद आ गया था, उन्होंने दो बॉक्स मेरे सामने रखे, 10 पैसे 5 पैसे 25 पैसे ऐसे रखकर उन्होंने मेरे हवाले कर दी। मुझे कहा आपको पैसे चाहिए थे ना, किताबें चाहिए ना, ले लीजिए। 400 रुपये मिले उसमें, अभी उस समय 228 रुपये तोला सोना था, 400 रुपये ने लगभग 2 तोले का सोने की कीमत हो सकती थी। पूरे दिन में मैंने मुंबई में जेकब सर्कल किंग सर्कल वहां जाके मन चाहे किताबें पद पर ले, तो आगे चलकर मुझे छंद ही लगा उसका, और आगे बहुत आगे चलकर
0: जी
1: महाराष्ट्र में कोकण मराठी साहित्य परिषद का निर्माण हुआ था
0: जी,
1: मधु मंगेश कर्णिकर के बहुत बड़े साहित्य उसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने एक पुरस्कार जाहिर किया था उत्तम ग्रंथ संग्राहक और वाचक,
0: अच्छा
1: वो उन्होंने मुझे दिए। तो उस समय मेरे पास 10,000 किताबें
0: 10,000
1: उस समय हुई थी मेरे पास, साहित्य सम्मेलन उन्होंने मुझे पुरस्कार दिया, मैंने मेरे माता पिता को समर्पित किया था कि जो तो नहीं पढ़ते थे लेकिन मुझे चाहिए थे इसलिए उन्होंने क्रेडिट गोज टू दे। इस तरह होने लगा, संघ में लिप्त उस कार्यक्रम में जाने लगा, संघ का प्रथम द्वितीय तृतीय शिक्षा वर्ग होता है, तीसरा नागपुर में होता है, तो 8वीं 9वीं और 10वीं 3 बरस में मैंने वो पूरा कर दिया। उस समय 11th SSC थी उस समय, इस हिस्से में जब था मैं, तो एक शिक्षक करके संघ शिक्षा वर्ग पर आया इतने स्मॉल एज में। लेकिन जब मैं कुलथरी में गया था
0: जी,
1: तो मेरे ध्यान में आ गया तो मैं अकेला आया हूँ यहाँ, मैं पढ़कर क्या करूँगा, आपके साथी कहाँ पढ़ेंगे, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। इसलिए मैंने वहाँ एक संगठन शुरू कर दिया एट द एज ऑफ 14।
0: अच्छा,
1: जब मैं 8वीं कक्षा में था
0: जी,
1: सर्वोदय समाज शिक्षण सुधार मंडल।
0: अच्छा,
1: आगे 15 बरस उसमें मैंने बहुत प्रयास किया, अभी 100% शिक्षा है उस कम्युनिटी में। 100% शिक्षा,
0: क्या बात है।
1: और पहला 8वीं कक्षा वाला मैं था, अभी 10-20 डॉक्टर्स है, 10-20 इंजीनियर्स है, 50 से ऊपर कोई नर्सेस है, 200 करीबन टीचर्स है
0: जी,
1: कोई अभी मामलेदार हो गए हैं, कोई हर क्षेत्र में अभी वहाँ वो नेतृत्व कर रहे हैं, वो कम्युनिटी जिले के हर क्षेत्र में, राजनीति से लेकर शिक्षा संस्थान तक, किसी ने शिक्षा संस्थान खोला, किसी ने हॉस्पिटल्स खोले, इस तरह का डेवलपमेंट आपको देखा उनके सामने
0: जी।
1: हम जो परिवर्तन जिसको कहते हैं, जिसका जहाँ उनका बहुत ही तुच्छता से उनका उल्लेख करते थे कम्युनिटी की
0: जी,
1: भिखारी जिनको कहते हैं सामान्यतः, वो अभी वो श्रीमंत वाड़ा हो गए।
0: क्या बात है सर।
1: तो इस तरह का एक परिवर्तन उस कम्युनिटी में देखने मिला, वैसा संघ का काम मेरे सामने आ गया
0: जी।
1: तो धीरे धीरे वो गांव, तहसील, जिला, विभाग, प्रांत और अखिल भारत
0: जी,
1: सलग 50 बरस ये काम करता रहा। और समरसता का जो विषय है
0: जी,
1: उसका अखिल भारतीय पहला प्रमुख मैं था।
0: अच्छा, क्या बात।
1: और वो पूरे देश में मैंने वो संगठन के लिए बहुत काम किया था
0: जी।
1: तो इस तरह का एक छोटे शहर जिसको कहते हैं, तो भूमि से लेकर रहने के लिए भी ठीक जगह नहीं थी। मेरा बहुत अच्छा मकान था उस समय
0: जी,
1: मेरी माता जी ने बनाया था कष्ट से, उसकी कीमत उस समय 88 रुपए थी, 28 रुपए में वो मकान बनाया था, ऐसी स्थिति थी। आज आप वहाँ जाएंगे तो बहुत बड़े बंगले हुए हैं, मुझे एक साइकिल लेने के लिए हरक्यूलस की 300 रुपए नहीं थे मेरे पास, तो 30-30 रुपए देके 10 महीने में मैंने एक साइकिल ले दी। अभी से 100-200 फोर व्हीलर्स उस कम्युनिटी में, तो भौतिक में भी, शिक्षा में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी उन्नति एक छोटे रूप में, और इसका भी बड़ा रूप आगे चलकर पूरे देश में एक काम करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला
0: जी।
1: इन शॉर्ट इतना ठीक है सर।
0: मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन आप जो बता रहे हैं, हर क्षेत्र में, सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से, हर रूप से हुआ है, और इसकी शुरुआत शिक्षा से हुई
1: जी।
0: जी,
1: शिक्षा के सिवा कोई अन्य चारा नहीं है उसमें।
0: कोई परिवर्तन लाना है तो शिक्षा,
1: शिक्षा
0: सबसे पहले। दोस्तों, हम अभी बहुत जो ये कहानी सुन रहे थे दादाई दादी जी की, वो एक एग्जाम्पल है कि क्या संभव नहीं है जीवन में उसका। और अगर उनके पुरस्कारों की बात करें तो बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। 2005 में स्वामी विवेकानंद सेवा सम्मान सामाजिक पुरस्कार, 2006 में कर्मवीर, 2010 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रबोधन पुरस्कार, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड, और ऐसे न जाने कितने पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी दादा दादी जी, कि जो भी आपने ये बदलाव लाया, और मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने कहा विमुक्त जातियों के प्रति हमारी मानसिकता स्वतंत्र नहीं है, हम विमुक्त जातियों को, उनकी संस्कृति को भारतीय दृष्टिकोण से ना देखकर पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखते हैं, तो इसका अर्थ मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी।
1: सामान्यतः हमारे देश में तो बहुत बड़ा संघर्ष हो
0: जी,
1: जो मुगल आए थे उस समय से अंग्रेज आने के बाद, डच, फ्रेंच, पुर्तगीज वो भी आए थे, शक गुण तुषार वो भी आए थे, उन्होंने पूरा हमारा जनजीवन उद्वस्त किया। लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में एक नई शिक्षा पद्धति थी, उसके बारे में उन्होंने अपने एक खत लिखा था घर में, उसमें लिखा था भैया इस तरह की एक शिक्षा पद्धति लाना चाहता हूँ, यह इससे पढ़ाई करने वाले लोग रंग और रक्त से भारतीय रहेंगे, आचार विचार उच्चार संस्कार अंग्रेजों जैसा होगा और उनके आधार पर हम इस देश पर राज करेंगे उन लोगों के आधार। ये उन्होंने तो सिद्ध करके दिया और 1837 में उन्होंने इस देश में जो शिक्षा पद्धति चल रही थी वो एक जार निकल कर रद्द कर दी, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लाई
0: जी
1: और हमारी शिक्षा पद्धति नष्ट कर दी। तो उस समय ब्यूटीफुल ट्री नाम का धर्मपाल जी का एक किताब है, महात्मा गांधी के बहुत बड़े अनुयायी थे, 10 खंडों में उन्होंने लिखा है देश की एक हिस्ट्री, उसमें शिक्षा के बारे में उन्होंने लिखा है ब्यूटीफुल।

0: ट्री,
1: ब्यूटीफुल ट्री
0: जी, उसमें उन्होंने लिखा है कि हर गांव में पाठशाला थी, सब प्रकार के लोग आते थे, ये नहीं आता हुआ ऐसे कोई बात नहीं थी, विथ प्रूफ विथ संदर्भ रेफरेंसेस उन्होंने दिया है। लेकिन नेपाले आने के बाद और वो शिक्षा पद्धति आने के बाद हमारा पूरा माइंडसेट ही बदल गया। ऐसे क्यों है? क्योंकि ये हमारे पूर्वज ठीक नहीं थे, हमारी संस्कृति ठीक नहीं थी, अंग्रेज आ गए इसलिए हम सुधर गए।
1: हाँ, ये बात कहते हैं कि
0: ये जो उन्होंने बिठाया मन में, एक बात हो गई। वो भी उस समय जब मुगल आ गए, हमारे मंदिर उद्ध्वस्त कर दिए
1: जी,
0: दो बातें उन्होंने की, हमारे देश के दो श्रद्धा स्थान उद्ध्वस्त किए, उद्ध्वस्त किए उन्होंने, एक मंदिर, दूसरे स्त्री। मंदिर तो उद्ध्वस्त कर दे
1: जी,
0: तोड़फोड़ कर दी, और स्त्रियां कुछ भी किया उन्होंने, बोल भी नहीं सकते, इस तरह का सब उन्होंने किया
1: जी।
0: जैसे वायुमंडल में जो बचा कुचा था, मंदिर नहीं तो जाएगा था, नहीं जा सकता था, यदि यदि छोटा फोटा कोई है और जाना ही है तो जिजिया कर लगाया था, और जिजिया कर गरीब लोगों को ज्यादा था, श्रीमान लोग को कम था, क्योंकि तो यदि जिजिया कर नहीं देते तो उनका धर्मांतरण कर दे, तो गरीब लोग धर्मांतरण में आ गए, थोड़े ही दिया उन्होंने। उस समय हमारे देश में जो कम्युनिटी
1: जी
0: विविध प्रकार की सामने आ गई, उन्होंने मंदिर जो है नहीं है, ऑल राइट, मंदिर में कौन है, कौन सा देव है, कौन सी देवी है, वो उन्होंने लोगों के घर तक जाकर उनको बताया।
1: अच्छा,
0: मानो मरिया वाले नाम का एक कम्युनिटी है
1: जी,
0: वो चाबुक के फटके ऐसे मारते हैं, लेकिन उनकी जो महिला रहती थी उनके माथे पर एक बहुत एक पेटारा रहता था,
1: ओके,
0: वो तो नाचते वगैरह सब होता है, अंत में क्या करते थे, वो नीचे रखते थे और धीरे धीरे बाजू करते थे अगले सामने वाले दरवाजे, और उसमें सब देव देवी था, हमारे दैवत हमारी देवी वो सब दिखते थे, तो सब बहुत खुश होते थे।
1: अच्छा,
0: तो उनको देव धर्म किसने सिखाया? आज जिनको हम विमुक्त घुमन तो बोलते हैं, उनको मेरे पिताजी अपने काक में एक भवानी देवी की मूर्ति रखकर, उनका जो गांव एक सातारा जिले में था, वहां जाते थे मल्लारपेट नाम के स्थान पर, और वहां नौ दिन नवरात्र में नौ दिन रहते थे, कोई मंदिर, अभी मंदिर हुए थे अब बाद में
1: जी,
0: उसमें कोई कीर्तन मनन वगैरह करते थे, और बाद में अपने काक में जो रखी हुई जो देवी है वो सामने उनके रखते थे, यह हमारी देवी है, यह हमारा धर्म है, इसका गीत गाना है, इसका भजन करना है, ये करके आते थे, आराधी गोंदड़ी गुते गोपे सरोदे दोषी, इस तरह के जो लोग है मरिया वाले, अभी मैंने बताया, ये लोगों ने हमारा धर्म और संस्कृति जीवित रखा। कल्चर सेवर्स
1: हैं बिल्कुल,
0: हम उनको करते हैं भिखारी, घुमंतु, और दूसरी ओर जो आक्रमण आया था
1: जी,
0: उसका संघर्ष जिन्होंने किया
1: जी,
0: वो 1034 में राजा सुहेल देव, राजभर नाम की एक कम्युनिटी है विमुक्त में
1: जी,
0: वो राजा थे,
1: राजा सुहेल देव,
0: बहुत बड़ा पराक्रम उन्होंने किया, वहां से इतने लोग संघर्ष करते रहे, यूपी में हम जाएंगे तो हरदेसा करके 1940 में उन्होंने संघर्ष शुरू किया, 1826 में महाराष्ट्र में उमाजी नाइक
1: जी,
0: तो रामोशी कम्युनिटी युक्त आज हम कहते हैं उनको, उनमें से आज आ जाए, लेकिन उन्होंने संघर्ष शुरू किया और स्वातंत्र का जाहिरनामा लोगों के सामने रखा, आज हम उनको एक्स क्रिमिनल कहते हैं, स्वतंत्र का जाहिरनामा रखा और उन्होंने अंग्रेजों को इतना परेशान किया, परेशान हो गए सब, करेंगे क्या इसका, वो मिलता ही नहीं है, कहाँ से आता है मालूम नहीं। तो आप ध्यान रखने लायक एक बात है
1: जी,
0: तो उन्होंने क्या किया, मैसूर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, मुंबई, यहाँ से पुलिस प्रमुखों को बुलाया।
1: अच्छा जी,
0: देश में से, और उनको भाई अभी क्या करे इसका,
1: उनको समझ ही नहीं आ रहा था
0: कुछ समय। आप कल्पना करें कि कितना बलशाली होगा वो। अभी वहाँ हमारा मल्लारी मारुतकर्ण करके जेजुरी में स्थान है
1: जी,
0: वहाँ वो आते थे। अभी उनके तलवार जो है जिससे वो लड़ते थे
1: जी,
0: वो रखी है
1: जी।
0: इसका वजन 65 कीजिए,
1: 65 किलो,
0: मैं दो हाथ से भी उसको उचल नहीं पाया, हाथ में लेकर लड़ते थे, ऐसा था। अभी अभी वो को हो गया तो गुनहगार हो गया, उसकी बता दो मैं
1: जी।
0: लेकिन है कौन हो? वो स्वतंत्र सैनिक, वो फ्रीडम फाइटर,
1: फ्रीडम फाइटर
0: राजा रणजीत सिंह। आपने सुना है शेरे पंजाब लाहौर के थे
1: जी,
0: बाद में जम्मू कश्मीर में जम्मू तावी नदी का जो संगम है
1: जी,
0: एक बहुत बड़े टिकड़े है वहाँ, वहाँ उनका एक बंगला था ऊपर, वहाँ बैठते थे और सब देखते थे समोर, आने जो लोग आते थे उनका न्याय करते, कुछ कुछ समस्या जो सुलझाते
1: थे जी।
0: उस सोने का उनका वो जो बैठने का जो सब साहो सुवर्ण का था, अभी केवल लोड जो है वो सुवर्ण का है। मैं देख के आया हूँ, जाके आया हूँ, एक आग नहीं था उनको।
1: अच्छा,
0: लेकिन उन्होंने वहां से क्या किया उस समय देखो, अभी 350 बरस के पहले की बात मैं बता रहा हूँ
1: जी।
0: तो उन्होंने वहां से तो स्वर्ण मंदिर जो है पंजाब में वो उन्होंने बनाया।
1: अच्छा।
0: हमारा जो काशी विश्वेश्वर है
1: जी,
0: वहाँ अहिल्यादेवी होलकर ने मंदिर बनाया था
1: जी जी,
0: लेकिन उस पर सोना नहीं था, कलश सोने का नहीं था, वो उन्होंने भेज दिया। पूरे देश में ऐसा उनको ध्यान में आता था, वो तो करते थे। अभी वो जो समुदाय है
1: जी,
0: जो आज हम देखते हैं सासी समाज कहते हैं, सासी समाज
1: जी,
0: तो विमुक्त में है,
1: विमुक्त में
0: एक्स क्रिमिनल मानते हैं। आज बहुत चोरी करने वाले, डकैत निकालने वाले ऐसे लोगों को लगते हैं, लेकिन कौन थे? राजा थे,
1: वो इतिहास है जी।
0: और उनका पराक्रम शेरे पंजाब था उस समय, अहिल्यादेवी होलकर महाराष्ट्र में
1: जी,
0: तो धनगर कम्युनिटी में थे, शेफर्ड कम्युनिटी में थे, वो इंदौर की रानी थी
1: जी जी।
0: और उन्होंने क्या किया, बाकी तो उनकी बहुत बड़ी कहानी है
1: जी जी,
0: ये विषय के संदर्भ में केवल बता दूं
1: जी।
0: उस समय का जो खजीना था 16 करोड़ का था
1: उस समय जी,
0: 350 बरस पहले। वो जो गवर्नमेंट का था उसको उन्होंने हाथ नहीं लगाया, तो उनका स्वयं का था
1: जी,
0: उसमें से उन्होंने सब प्रकार के मंदिर का जीर्णोद्धार किया, काशी विश्वेश्वर
1: जी,
0: सोमनाथ, नीचे रामेश्वरम तक जहाँ जहाँ मंदिर है उसका पुनर्जीवित किया, जहाँ नदी है वहाँ घाट बनाए लोगों को जाने के लिए आने के लिए
1: जी।
0: तो एक दृष्टि से देखे पुण्य श्लोक हम कहते हैं उनको, पुण्य श्लोक ही थी, ऐसी राज्य करती थी, हमारे देश में इस तुलना में और कोई राज्य
1: कोई नहीं।
0: लेकिन वो कौन है, नॉमिनल ट्राइब में, कुछ राज्य में शेड्यूल ट्राइब में, लेकिन है कौन, वो राज्य करते।
1: ये बड़ी आश्चर्य की बात है सच में।
0: तो ये है फ्रीडम फाइटर्स। अभी इनका प्रॉब्लम हो गया अंग्रेजों
1: जी,
0: तो उन्होंने क्या किया, 1857 का जो युद्ध हुआ
1: जी,
0: उन्होंने बंड कहा सिपाहियों का बंड, लेकिन वो तो स्वतंत्र सावरकर ने 1857 का स्वतंत्र युद्ध
1: जी,
0: ये 1910 में उन्होंने इंग्लैंड में एक किताब लिखा और उसके आधार पर यह हमारा स्वतंत्र युद्ध था, पहली बार उन्होंने कहा बंड वगैरह नहीं था और पूरे देश व्यापी वो संघर्ष था,
1: वो पहला फ्रीडम स्ट्रगल माना जाता है
0: जी। लेकिन उसमें जो अनुभव आ गया अंग्रेजों को, उन्होंने एक बात की, सबको शस्त्र विहीन किए, जिनके हाथ में शस्त्र था वो उन्होंने निकाल दिया, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने जाति जाति में संघर्ष शुरू किया
1: आपस में,
0: बड़ा श्रेष्ठ ये वो इस तरह। उन्होंने ब्राह्मण द्वेष वो निर्माण किया हमारे देश में, पूरे देश में उन्होंने जिस तरह के लोगों का निर्माण करने का प्रयास किया, आगे कुछ बताएंगे नहीं उनका सवार करेंगे हम, इस तरह की स्थिति आ गई
1: जो उन्होंने डिवाइड एंड रूल
0: की, डिवाइड एंड रूल कर दिया। लेकिन आगे चलकर उनके ध्यान में आ गया तो भी लोग कुछ ना कुछ करते, कुछ नाम आपको बताए, अवंतिका बाई लोधी, झांसी की रानी देसी उनका वर्ताव है, झलकारी बाई
1: जी
0: जो यूपी में से, ऐसा सोचे आज आज सोचे तो सी बिलोंग्स टू एससी कम्युनिटी, उस कम्युनिटी में से रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति। लेकिन हम अभी उनको क्या बताते, मैंने बताया आपको
1: जी जी जी बिल्कुल।
0: इस तरह संथाल जो विद्रोह हमारे देश
1: संथाल
0: आदिवासियों का विद्रोह, संथाल जो है वो एक आप बिहार से लेकर उड़ीसा तक पूरा एरिया हाँ उन्होंने संघर्ष में डाल दिया संथाल लोगों
1: जी।
0: आज हम देखते हैं उसी संथाल में से हमारे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, और जिनका बहुत जब संघर्ष कर रही थी
1: जी,
0: उस समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से उनका संपर्क आया था
1: जी,
0: उसमें से उनको शांति मिली, गया पुत्र गया स्नुषा गई
1: जी,
0: इस तरह के बहुत बातें हो गई
1: जी।
0: लेकिन मैं संदर्भ इसलिए बता रहा हूँ कि कितना संघर्ष करते थे, आज भी उसमें से एक राष्ट्रपति,
1: बिल्कुल
0: दो राष्ट्रपति तो ऐसे हो गए
1: ऐसे।
0: तो ये कम्युनिटी दे आर फ्रीडम फाइटर्स, तो अंग्रेजों ने क्या किया 1871 में CTA एक्ट, सिटी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 हम उन्होंने निकाला, और उसके आधार पर जो जो इस तरह के जो लोग थे
1: जी,
0: उनको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई किया
1: जिनके लिए खतरा हो सकते थे
0: हाँ, दूसरा शब्द है उसको नोटिफाई किया, और नोटिफाई करके उनको 52 सेटलमेंट पूरे देश में लगाकर उस जेल में उनको डाल दिया। कहा यदि सेटलमेंट नहीं होती तो तार का कुंपल होता है ना, तीन के फेजिस रहते थे के अंदर वो रहते थे लोग, दिन में तीन बार उनको हाजिरी देना पड़ता था, अटेंडेंस रात दो को भी देना पड़ता था, और उनको बताया कि आप कौन है, आप गुनहगार है, आप क्रिमिनल है, आप क्रिमिनल है, 140 बरस उनको लोग कहते हैं कि आप क्रिमिनल है, उनकी पीढ़ी आ गई अगली, उन्होंने कहा कि आपकी जो अगली आ जाएगी नहीं नहीं अच्छा। आपका बच्चा हो जाएगा वो क्रिमिनल ही पैदा हो जाएगा, बॉर्न क्रिमिनल दुनिया में है ऐसा कोई,
1: बिल्कुल बॉर्न क्रिमिनल कह दिया पहले से
0: कर दिया
1: घोषित कर दिया,
0: और 100-150 बरस यही मानसिकता रही तो लोगों में हम ही क्रिमिनल है ऐसा ही आ गया,
1: ये मानसिकता ही बन गई सब
0: बन गई
1: जी।
0: लोगों ने संघर्ष किया
1: जी,
0: अभी वो एक उनका जेल एक्ट आया था 1915 में
1: जी,
0: एक जेल कमीशन बैठा था
1: जी,
0: उसमें कुछ बातें कर दिया उन्होंने, 1924 में और एक रिपील किया था उन्होंने एक्ट, 1930 में एक स्टार्ट कमेटी उसके लिए बिठाई थी
1: जी,
0: स्टार्ट कमेटी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी एक सदस्य थे
1: ओके।
0: आगे चलकर हर एक तरह की संबंध आ जाएगा तो मैं बताऊंगा
1: जी।
0: तो इस तरह का संघर्ष करते करते
1: जी,
0: क्रिमिनल है क्रिमिनल है क्रिमिनल है क्रिमिनल है क्रिमिनल, अभी स्वतंत्र भारत हो गया
1: जी,
0: भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, लेकिन ये नहीं हुए,
1: सोच भी रहे,
0: कोशिश ही रहे। तो 1952 में 31 अगस्त 1952 में
1: जी
0: एक लोकसभा में बिल लाकर उनको उसमें से निकाला उन्होंने, और क्या किया उनको, तो नोटिफाई किया था ना उनको
1: जी,
0: तो डी नोटिफाई किया, तो डी नोटिफाई ट्राइब कहते हैं DNT ऐसा जो शब्द है
1: जी,
0: तो डी नोटिफाइड ट्राइब, डी नोटिफाइड क्यों, नोटिफाई करके उनको बंधक बनाया था
1: ब्रिटिशर्स ने,
0: डी नोटिफाई किया, इसलिए हिंदी शब्द उसको इसके लिए आया विमुक्त।
1: अच्छा, तो ये यहाँ से आया
0: डी नोटिफाइड है ने विमुक्त। तो इस तरह की एक जो परिस्थिति पूरे देश में थी, जो देशभक्त थे, फ्रीडम फाइटर थे, विलुप्त हो गए, जो संस्कृति रक्षक थे, कल्चर सेवर थे, वो तो भिखारी बन गए। इस तरह की मानसिकता उनकी हो गई, समाज की हो गई। अभी आजीविका लिए तो कुछ नहीं था, वो करेंगे क्या, काम कोई देता नहीं था
1: जी।
0: एक क्रिमिनल है वो कुछ चोरी करने लगे, डकैती लगाने लगे, तो एक अलग रास्ते में जाना जाने के लिए बाध्य कर दिया लोगों ने, और वही ढब्बा उनको लगने के कारण पूरे देश में स्थिति ऐसी है
1: जी।
0: मैं महाराष्ट्र में 1997
1: जी
0: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री
1: जी
0: हमारे मुंडे जी, गोपीनाथ जी मुंडे, उन्होंने एक खास और संशोधन कमेटी बनाई, उसका मुझे अध्यक्ष कर दिया
1: जी।
0: तो मैंने पूरे महाराष्ट्र का सर्वे किया, जेल में गया, 7 जेल में गया।
1: अच्छा।
0: तो वहाँ इतने कच्चे कैदी जो है सब विमुक्त घुमंत दो, कुछ रिकॉर्ड नहीं, कुछ FIR नहीं, वैसे ही लाया वैसे ही रखा, काम कर,
1: उनका कोई डेटा नहीं, कुछ
0: डेटा नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो मैंने सामने लाया, करीबन हमारे महाराष्ट्र में तो पूरे देश में आज करीबन 20 करोड़ लोग है विमुक्त घुमंत, 1658 जनजाति है पूरे देश में
1: जी।
0: वो है कोई अपवाद है, जैसा लक्षद्वीप जैसा कोई है वहाँ, ऐसा कोई अपवाद तो है, अंडमान निकोबार में है वो तो प्रिमेटिव आदिवासी ऐसा उनको कहते हैं, ये तो बात है। ऐसा कुछ स्टेट है जिसमें केवल आदिवासी है
1: जी,
0: जैसा हम सिक्किम की ओर जाएंगे
1: जी,
0: तो इस तरह मैं गया हूँ कि मैं
1: जी,
0: मैंने 36 out of 36 स्टेट का मेरे कमीशन ने प्रत्यक्ष प्रवास किया, हर स्टेट में जाकर 3 वर्ष में एक भी छुट्टी नहीं ली। तो भारत सरकार ने, मोदी जी ने मुझे बनाया था नेशनल कमीशन चेयरमैन
1: जी,
0: और वो रिपोर्ट मैंने विद इन 3 इयर्स 100% काम करके दिया था, एक भी छुट्टी मैंने नहीं ली थी, नॉट इवन सैटरडे संडे,
1: संडे भी नहीं।
0: 3 बरस में वो हो गया। तो हमारे जो मोदी जी है तो बहुत ही अभ्यासु है, संवेदनशील है, वंचित पीड़ित के लिए तो उनके मन में अपार करुणा है। तो उन्होंने एक कमीशन बिठाया, उसके पहले अटल जी ने शुरुअत की इसकी।
1: अच्छा जी।
0: अटल जी जाने के बाद एक बीच में रेणके कमीशन भी हो गया, मोतीलाल नाम का न्यायमूर्ति मोतीलाल नायक, 1 बरस था, 2 बरस का कमीशन रेणके का था, 3 बरस का मेरा था
1: जी।
0: रेणके का 8 बरस उन्होंने लेनदेन कर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, और बाद में एक नए कमीशन की आवश्यकता है बताया, इसलिए नए कमीशन इदाते कमीशन आ
1: जी।
0: उसके आधार पर
1: जी
0: नरेंद्र भाई मोदी ने केवल 7 महीने में उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी, वो लागू करने पहली बार हमारे देश में हुआ
1: जी।
0: लोगों को ध्यान में भी नहीं आता क्योंकि उसकी चर्चा भी नहीं हुई, उन्होंने रिपोर्ट पढ़ा और वो इम्प्लीमेंट के लिए दिया। मेरे 20 सिफारिशें थी, उस 20 सिफारिश में से उन्होंने 12 सिफारिशें थी रिकमेंडेशंस, वो कल्याण और विकास के लिए संदर्भ थे
1: जी।
0: उसके आधार पर उन्होंने विकास और कल्याण बोर्ड बनाया, DWBDNC
1: जी
0: डेवलपमेंट, उसका चेयरमैन फिर से मुझे बुलाया, उसका भी 3 वर्ष में
1: चेयरमैन रहे आप
0: जी। और वो समाप्त करते करते इनके विकास और कल्याण के लिए एक बजट हेड आ गया
1: जी,
0: करीबन उन्होंने 200 करोड़ रुपए तो दिए थे, लेकिन मैंने 10,000 करोड़ रुपए मांगे थे उनको
1: जी।
0: लेकिन पहले स्टेप में तो ऐसा होता है कभी कभी, और तो उसके लिए उन्होंने एक गूगल पर एक पोर्टल बनाया
1: जी,
0: पोर्टल के आधार पर उसकी कोई जानकारी आ जाए, इसके आधार पर उनको 4 स्कीम दे दिया। एक शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए क्या कि कोई स्पर्धा परीक्षा में जाना चाहिए
1: तो
0: जा ही नहीं सकते, फीस भी नहीं दे सकते, तो हमने एक प्रस्ताव दिया था गवर्नमेंट, वो अप्रूव हो गया कि ऐसे जो लोग हैं वो जहाँ कोई शिक्षा करेंगे उसका सब पैसा भारत सरकार दे देगी, ये पहला
1: जी।
0: दूसरा उसमें जो हर हाथ को काम जो कहते हैं
1: जी,
0: विशेषता महिलाओं के लिए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है
1: जी,
0: तो उनके लिए भी देना है। मकान के लिए आ गए प्राइम मिनिस्टर आवास योजना तो है अलग
1: जी जी जी,
0: फिर वो DNT के लिए एक अलग
1: अलग
0: मकान योजना भी उन्होंने बनाया, और वो पोर्टल पर उनकी जानकारी आ जाए तो उसके आधार पर वो
1: उनको मिलता है फिर बेनिफिट।
0: और चौथा था उसमें
1: जी
0: हेल्थ के बारे में
1: जी,
0: कि इन लोगों को कोई बीमारी होती है कहाँ जाएंगे, पैसा ही नहीं है हॉस्पिटल में कौन लेगा। भारत सरकार ने ऐसा किया है कि इस तरह की कोई भी बीमारी हो तो उनका हर कुटुंब का यदि संभव हो तो 5 लाख रुपए का खर्चा भारत सरकार करे। ये 4 स्कीम्स लाई है
1: जी।
0: और इतने में मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया, अभी इम्प्लीमेंटेशन का अभी शुरू होना थोड़ा
1: अच्छा बाकी
0: बाकी।
1: मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपने शुरू किया एक बहुत बड़ा परिवर्तन एक बड़े रूप में एक देश में पूरा, जैसा आपने बताया 20 करोड़ लोग हैं और वो पॉलिसीज बन रही हैं, लेकिन क्या क्योंकि ऐसी मानसिकता बन गई थी और क्रिमिनल या फिर इस तरह की बातें कही जाने लगी, विमुक्त जातियां घुमंतू कहा गया, तो आपको कुछ उस समय अगर ये बदलाव लाने में क्या कुछ चैलेंजेस महसूस हुए, किस तरह के महसूस हुए, या आपने शिक्षा पे तो काम किया साथ में और कौन सी चीजें थी जिन पे आपने काम की?
0: नहीं केवल शिक्षा में, शिक्षा ये बेसिक आधार है
1: जी जी,
0: कहा भी कुछ करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एजुकेट एजुकेट एजुकेट ऑर्गेनाइज यही बताया, तो एजुकेशन पहले
1: जी,
0: सावित्री बाई फुले ने
1: जी,
0: अभी यदि शिक्षा नहीं है तो आप पशु ही है, शिक्षा ही इसके लिए चाहिए
1: जी।
0: कोई भी जो आता है, महात्मा फुले ने शिक्षा के लिए प्रयास लड़कियों के शिक्षा के लिए किया
1: जी,
0: तो जिसको कुछ करना है तो वहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जो सामाजिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं रहने का, अभी जो घुमंत लोग हैं एक जगह पर रहते नहीं, कुछ लोग रहते हैं जिसको शिक्षा मिली
1: वरना तो नहीं रहते हैं,
0: वो तो काम में लगे नौकरी करने लगे उद्योग करने लगे अपना अपना मकान गाड़ी सब भौतिक सुविधाएं वो आ गई
1: जी।
0: उन्होंने शिक्षा में प्रयास किया था, हमारे महाराष्ट्र में वंजारी कम्युनिटी है
1: जी,
0: गोपीनाथ मुंडे जिस कम्युनिटी में से है
1: जी जी,
0: उस कम्युनिटी में वसंतराव नाईक जो चीफ मिनिस्टर थे वो नहीं, उस कम्युनिटी में के वसंतराव नाईक 1936 में वो MLA थे, वहां से उन्होंने तो शिक्षा संस्थान शुरू कर दिया मराठवाड़ा में इतना बड़ा, गोपीनाथ मुंडे वहां पढ़े है।
1: अच्छा
0: अभी देखो पिछली बार 50 UPSC के नंबर आ गए, उसमें 15 नंबर केवल एक कम्युनिटी के थे वंजारी कम्युनिटी, आज भी 2-3 अपॉइंटमेंट इस सप्ताह में हुए है पूरे देश व्यापी, क्यों? क्योंकि तो शिक्षा से शुरुआत हुई थी ठीक ढंग से हुई थी वो आगे चले, जो उस समय जिन्होंने शिक्षा ली वसंतराव राय का हमारे चीफ मिनिस्टर
1: जी
0: महाराष्ट्र के, वो बंजारा समाज में से 11 बरस चीफ मिनिस्टर कोई नहीं रहा महाराष्ट्र में
1: सिर्फ
0: उनके सिवाय, बाद में उनका जो भतीजा वो 2 बरस था चीफ मिनिस्टर, तो जिन्होंने शिक्षा ली और आंदोलन में आ गए उसका कुछ तो कुछ तो हो गया
1: जी।
0: तो इस तरह करना पड़ता है, तो एक कोई मानसिकता सामाजिक रहती है, वो हम अलग है, हमारी आइडेंटिटी अलग है।

0: हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते है, तो छुआछूत का तो इसमें नहीं है कुछ, लेकिन वो अलग है हम अलग है। तो हमें एक ऐसा करना पड़ा कि हम संपूर्ण समाज एक है, लेकिन आपको यही भाषा समझते हैं, तो जितने उपयुक्त तो घुमंतु जो है वो सब मिलकर एक उनका अपना वर्ग क्या करना चाहिए। अच्छा। एक यूनिट करना चाहिए
1: जी।
0: इसलिए मैंने 2015 में जब मैं कमीशन का चेयरमैन था, उस समय विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास परिषद नाम की एक संस्था मैंने शुरू कर दी।
1: अच्छा।
0: रजिस्टर्ड है मुंबई में, रजिस्टर्ड से
1: जी,
0: और उसके अभी देश में करीबन 20 स्टेट में उनका कार्यकलाप शुरू हुआ है। और वहाँ ये जो विमुक्त घुमंतु के जो जो निर्णय होते हैं केंद्र स्तर पर होते हैं
1: जी,
0: तो सबको समझ में नहीं आता है कुछ क्या करना चाहिए। तो हम इमीडिएट कोई बजट पेश होता है, वो बजट में वंचित लोगों के लिए क्या क्या रखा है, उसमें विमुक्त घुमंतु के क्या मिल सकता है, कौन सा कैटेगरी आता है, कितने पैसे आवंटित, इमीडिएट हम उस पत्र पूरे देश में फैलाते हैं,
1: कम्युनिकेट करते हैं,
0: कम्युनिकेट करते हैं
1: जी।
0: कोई आता केंद्र सरकार है, मिनिस्टर बनते हैं, मिनिस्टर में इस लोग बिलोंग करने वाले कितने मिनिस्टर है, तब हमने 8 मिनिस्टर की लिस्ट दी थी, इतने मिनिस्टर है मोदी गवर्नमेंट में। ऐसा जहां जहां चलता है
1: जी,
0: तो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। एक महत्व की एक बात हमने की मेरे कमीशन के कालखंड में कि कोई जाति का दाखला नहीं मिलता, जहाँ रहते हैं वो एक तो जंगल में रहते हैं
1: जी,
0: लेकिन जहाँ रहते हैं उनकी जगह नहीं रहते, कभी भी कोई 10-15-20 बरस में आता है, अरे मेरी जगह है उठो यहाँ से, वहाँ से गाना करते हैं, इस तरह के जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं
1: जी,
0: तो कैसा सॉल्व करेंगे। इसलिए हमारे उस समय के मेरे MS थे
1: जी,
0: मेंबर सेक्रेटरी अग्निहोत्री मैडम, तो उन्होंने पूरे देश के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा था
1: जी,
0: कि ये जो प्रश्न है विमुक्त घुमंतु हो गए बहुत क्रिटिकल है
1: जी,
0: कहा घूमते मालूम नहीं रहता स्थिति है, तो इसके लिए कलेक्टर के अध्यक्षता में एक रिड्रेसल कमेटी बना।
1: ओके।
0: वो अंतिम अध्यक्ष रहता है, इसको दाखला देना है, जमीन का कुछ करना है, वही करते थे, तो वो हमने पहुंचा है, लेकिन इसका अवेयरनेस अभी तक नहीं हुआ है। मैं बोल रहा हूँ हर जगह ऐसा हुआ है, महाराष्ट्र में हमने वर्धा जिले में ये प्रयोग किया, अभी वो प्रयोग करते करते अभी उन्होंने एक रिड्रेसल कमेटी बनाई, इसका कारण इसके लिए ऐसा हो गया कि उस रिड्रेसल कमेटी ने कलेक्टर ने हर तहसील में उनको दाखला लेने का प्रयास शुरू कर दिया, एक मेला बनाना, लोगों को साथ लगाना, अधिकारियों को बुलाना, उनका सर्टिफिकेट देना,
1: ये जागरूक भी करना पड़ेगा सबको,
0: करना पड़ता है,
1: ये कार्य हो रहा है,
0: नहीं तो इसलिए वो तो संगठन बनाया ना,
1: इसीलिए संगठन है वो,
0: और इसलिए सब बात वहाँ तक जाते हैं ना
1: जी
0: सबकी। तो इस तरह के बहुत प्रश्न जो है एक्चुअल उसका कुछ तो कुछ करना पड़ता है
1: जी।
0: जनगणना हमारे अभी शुरू हो गई
1: जी,
0: इसके पहले 11 में हुई थी जनगणना, तो विमुक्त घुमंतु की नहीं थी ऐसा उनका कहना है, हमारी जानकारी ऐसे है कि हुई है उस समय। अच्छा। भी लेकिन गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं किए, तो मानो नहीं ऐसा
1: जी,
0: मानो
1: जी,
0: 21 की होने वाली थी, तो मैं तो उस समय बोर्ड का चेयरमैन गया था, तो मैंने जो कमिश्नर रहते हैं
1: जी
0: हमारे, तो उनको मैंने बुलाया, जनगणना आप करने वाले हैं तो इनका क्या करे, तो इनका तो अभी नहीं होने वाला, करेंगे क्या, इनको आप स्कीम कैसे देंगे, यदि आपको उनकी पॉपुलेशन मालूम नहीं तो स्कीम कैसे देंगे,
1: बिल्कुल
0: वो क्या करे। तो उन्होंने कहा एक कर सकते हैं समाज कल्याण विभाग
1: जी,
0: ये कर सकते हैं, तो ये यदि करेंगे तो उसका सब खर्चा भारत सरकार दे, वो दिया है
1: जी,
0: लेकिन अभी तो वो शुरू नहीं हुआ है,
1: वो होना बाकी है,
0: बाकी है
1: जी।
0: ऐसे जो जो प्रॉब्लम मुझे लगते थे
1: जी,
0: उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास किया है, लेकिन एक लोगों की एक मानसिकता, एक संगठन चलाना, इसका लीडर बनना, भाषण करना, हम मई लीडर हुए करना, इसलिए उनका जो मूल प्रश्न है इसके लिए जो करना चाहिए वो करने में जरा
1: देरी लगती,
0: डिले लगता है
1: जी,
0: इसलिए कुछ प्रश्न आगे नहीं आ रहे
1: जी।
0: तो मेरा आह्वान पूरे देश के इस विषय में काम करने वाले लोगों को है, संगठन को है, कि इदाते कमीशन के कारण 20 में से 14 उसकी सिफारिशें जो है वो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने के लिए लिए थी। मैंने पहले 12 का उल्लेख किया था, 13 था, मैं 265 कम्युनिटी का एक लिस्ट दिया है भारत सरकार को और बताया कि ये कम्युनिटी
1: जी
0: है, लेकिन उस राज्य में उनका कोई नाम नहीं है, तो उनका आइडेंटिफिकेशन करो और क्लासिफिकेशन करो इसका, ये मैंने बताया था। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष के अध्यक्षता में उसकी कमेटी बनाई है, उसका मैं एक मेंबर भी हूँ।
1: तो
0: करीबन उन्होंने सब लोगों का आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट करने के लाया है। और 14वां था उसमें हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट, जो 60 जो आया था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1952 में
1: जी,
0: उसमें से उन्होंने हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट बनाया और वो निरस्त कर दिया, यानी जो क्रिमिनलिटी में हैबिचुअल है
1: जी
0: उसको लगेगा इस तरह का। लेकिन गवर्नमेंट, प्रशासन, पुलिस, ये सबको इतनी आदत पड़ी थी
1: जी,
0: कि उनके मन में कोई बदलाव नहीं हुआ, वो तो सिटी एक्ट ही मानते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट।
1: अच्छा,
0: इस तरह का वर्तन आज भी करते, इसलिए मैंने बताया था कि यह निरस्त करना चाहिए हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट, तो वो उन्होंने गृह मंत्रालय को भेजा है
1: जी।
0: अभी उसका क्या हुआ है अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल 6 बातें हैं, 6 सिफारिशें, वो अलग रखी है
1: जी।
0: उसमें से तो पहला मेरा कहना था कि इनके लिए एक परमानेंट कमीशन चाहिए
1: जी,
0: कि जो कोई भी समस्या आ जाए इसके लिए वो बातें बताएंगे, और इसका उनको अधिकार भी रहते हैं, कलेक्टर भी बुला सकते हैं क्यों नहीं हुआ क्या, इस तरह का अधिकार भी आना चाहिए। नीति आयोग ने भी वो सपोर्ट किया इसके लिए, इदाते कमीशन की सिफारिशें लागू करने चाहिए और वो जो विशेष मैंने कमीशन जो बताया था
1: जी,
0: वो भी करना चाहिए
1: जी।
0: 22 डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने बताया था, उसमें केवल शेड्यूल ट्राइब डिपार्टमेंट ने एक अलग भूमिका ली, उनको ऐसा लगने लगा कि हमारे में आ जाएंगे, हमारे में से कुछ जाएगा, उन्होंने विरोध किया, बाकी किसी ने विरोध नहीं किया। तो मेरा कहना है कि माननीय पंतप्रधान जी को कि उन्होंने इतने संवेदनशीलता से इन लोगों के लिए किया है, जब वो चीफ मिनिस्टर थे
1: जी,
0: तब उन्होंने गुजरात में 2,00,000 मकाने घुमंतुओं के लिए बनाई थी।
1: बनाई, क्या बात। और ये बहुत बड़ा कार्य है और बहुत लंबे समय तक, जैसे आपने कहा कि एक कमीशन होनी ही चाहिए उनके लिए लगातार, तभी और हर तरह के मामले जहाँ आ सके, एड्रेस हो सके। दादाजी दादी जी, एक बहुत लंबी जर्नी है, 55 वर्षों से भी अधिक आपकी, और जो एक स्कूल से शुरू होती है और धीरे धीरे वो देश के 20 करोड़ लोगों से भी अधिक, जैसा आपने कहा, उनको उनका सम्मान भी, उनका जीवन भी, सब कुछ वो वापस मिलने का पूरा अधिकार है, और उस पर आपने बहुत बहुत बड़ा काम किया है। मैं अंत में आपसे संक्षिप्त में एक चीज जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि पद्मश्री अवार्ड की बात होती है, हम जानते हैं बहुत बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान है, उस समय आपकी क्या महसूसता थी या क्या फीलिंग थी जब इसकी घोषणा हुई या जब आपको प्राप्ति हुई?
0: जब मैंने मेरा कमीशन का रिपोर्ट गया था
1: जी,
0: तो माननीय पंतप्रधान जी ने वो डिटेल से देखा था, इसलिए उनके मन में भी कुछ बातें थी
1: जी।
0: तो 2021 को मुझे पद्मश्री मिली, लेकिन 2022 को
1: जी
0: उन्होंने मुझे पद्मश्री के सिलेक्शन कमेटी का सदस्य बनाया था।
1: अच्छा जी, क्या बात।
0: इसलिए मुझे तो जानकारी थी
1: जी,
0: कैसे 1,000 लोगों का एनालिसिस मैंने किया था
1: जी,
0: उसमें वो तो जानकारी तो थी
1: जी,
0: इस तरह के थे। और ये गवर्नमेंट का विशेषता और नरेंद्र भाई मोदी का जो विजन है वो पुराना जो है ये हटके अलग
1: जी,
0: कि वही ढूंढते हैं कहाँ है लोग, वो ढूंढ कर लाते हैं और उनको पद्मश्री देते हैं, वह अपने जगह पर इस चीज चालीस चालीस बरस काम करता है, उनको ढूंढ कर देते हैं।

0: प्रिया मुझे मालूम थी
1: जी
0: कि कितना सूक्ष्म विचार कर है, हम एनालिसिस करते हैं कोई आरजे का एप्लीकेशन का
1: जी,
0: कितनी बातें उसमें करने पड़ते हैं। तो मैंने उसका देखा था
1: जी जी,
0: जी। तो परीक्षक मैंने
1: हजार से भी ज्यादा
0: देखा था
1: जी।
0: इसलिए पहले तो भावना थी ठीक है
1: जी,
0: हमने जिसको दिया था ऐसे लोग थे, तो जो काम था ऐसा काम था उनको देना चाहिए था
1: जी।
0: ये काम भी ऐसा है कि ये काम करने वाले को देना चाहिए था। तो उन्होंने मुझे जो सोशल वर्क के लिए दिया है
1: जी,
0: लेकिन उसमें भी उन्होंने विमुक्त घुमंतों के काम के लिए ये पद्मश्री दिए
1: जी।
0: तो इसलिए बहुत अच्छा लगा कि जिस काम के लिए गत 50 बरस सोशल एक्टिविटीज में मैं 50 बरस हूँ, केवल विमुक्त घुमंतु नहीं, एससी एसटी ओबीसी वंचित कोई भी इनका काम के 50 बरस में कर रहा हूँ, तो इनमें किसी को कोई राहत मिलती है
1: जी,
0: तो बहुत आनंद भी होता है। और पहली बार
1: जी
0: विमुक्त घुमंतु में काम करने के कारण मुझे वो मिला है, ये तो विशेष बात है
1: बहुत।
0: तो इसके लिए बहुत आनंद हो गया, जो काम हमने किया, जो कमीशन में चला, जो बोर्ड का मैं अध्यक्ष था, ये सब ध्यान में लेकर तो ठीक है, उन्होंने तो दिया, इसका बहुत आनंद भी हुआ
1: जी।
0: और आश्चर्य तो नहीं लगा क्योंकि तो मुझे इसकी जानकारी किस तरह का है विषय तो मालूम थी
1: जी,
0: इसलिए आश्चर्य तो नहीं हुआ
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंत में अगर मैं आपका ही नाम लूं, ये भीखू राम जी दाते जी, तो आप कौन है या आप अपने बारे में कौन से दो शब्द कहेंगे जो हम आप...
0: एक थोड़ा इसका एक्सप्लेन में करता हूँ
1: जी।
0: मेरे माता पिता को मेरे पहले 5 संतान हुए थे, 5 भी नहीं रहे, तो एक अलग गांव में रहते थे हम, हमारे जो इधर थे घराने के जो लोग थे उन्होंने वापस हमें लाया टेटोले हमारे मूल गांव में, और वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता ने परमेश्वर का ऐसे प्रार्थना की थी कि अभी ऐसा करो हमें एक भीख दे दीजिए, भीख डालो हमारे, क्योंकि हम कोई संतान नहीं है
1: जी।
0: अभी मेरा जन्म होने के बाद उन्होंने मेरा नाम भिक्खू रखा, क्योंकि परमेश्वर ने दी हुई भीख है, इसलिए इस नाम से मैं किसी को छेड़छाड़ करना नहीं देता। मेरे माता पिता की जो भावना है वो इससे जुड़ी हुई है, लेकिन माता पिता शिक्षित तो नहीं थे, लेकिन वो उनके उन्होंने जो संस्कार दिए, जो कष्ट उन्होंने झेले मैंने आंखों से देखे हैं, तो वही मेरे जीवन की एक प्रेरणा रहती है। और संघ में आने के कारण
1: जी
0: पूरा जीवन मेरा बदल गया
1: जी।
0: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण पूरे देश में मैं इस विषय के आधार पर गया, पूरा देश देखा, असित हिमाचल मैंने प्रवास किया है
1: जी,
0: 6 बार देश का प्रवास मैंने किया है, जो एक गांव में एक छोटे से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, वहाँ छोटे छोटे लोगों के साथ खेलने बागड़ने वाला एक छोटा लड़का, केवल एक संस्कार के कारण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार के कारण, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए, ये मेरा देश है, ये भावना मन में आ गई और धीरे धीरे उन्नत हो गई और आज मैं इस पायदान पर आया हूँ, ये मेरा मैं उल्लेख कर सकता हूँ
1: जी। ऐसे माता पिता को भी हम नमन करते हैं
0: जी,
1: और क्योंकि जैसा आपने कहा उनका जीवन, उन्होंने बहुत कष्ट देखे, परंतु जो शिक्षा के प्रति आपने जैसे कुछ इंसिडेंट सुनाए और बहुत भावुक करने वाली बातें हैं कि आपके लिए जो किताबें उन्होंने कहा कि आप खरीदिए, ऐसे माता पिता का बहुत बड़ा रोल है। और जो भी ये कार्य हुआ है संपूर्ण भारत में आज, उसके लिए आपका और उनका भी मुझे लगता है पूरा भारत आभार मानेगा और मानता ही है। सभी को धन्यवाद करते हुए, नमन करते हुए आज हम इस एपिसोड को समाप्त करेंगे। और आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें जो भी इतिहास आपने बताया, जो भी

0: बातें बताई, बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो शायद हमें संक्षिप्त में मालूम है लेकिन उसकी गहराइयां नहीं पता। पर आज हर व्यक्ति को जानना जरूरी है, तभी वो उन्नति की ओर हम भी अपना योगदान दे पाएंगे एक भारतीय होने के नाते। तो आपका हृदय से आभार यहाँ आने के लिए।
1: आपका भी धन्यवाद क्योंकि आपने बुलाया और व्यक्त होने का एक एक संज्ञा आपने दे दी, इसलिए आपका भी आभार।
0: धन्यवाद। तो दोस्तों, फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत। जुड़े रहिए रेडियो मधुबन के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।

0: शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकात के कार्यक्रम में, और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष डॉक्टर भावना स्वामीनाथन जी हैं, उनके साथ हम लोग बातें करेंगे। और आप विशेष जिस विषय को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं वो डायबिटीज पर आपने काम किया है ग्रुप के साथ, और बहुत सारे लोग डायबिटीज होने के बाद बड़े परेशान होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि करे क्या। तो ऐसे सिचुएशन में जो है कि आपने एक डाइट सिस्टम और होलिस्टिक कोचिंग के माध्यम से लोगों को आपने अच्छा किया है और उनके जीवन में काफी बदलाव आया, तो उनके जीवन के जो बदलाव है उन्हीं से हम लोग जानेंगे। और अभी हम लोग जो बातें करेंगे वो इस विषय को जानेंगे कि डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे आपसे। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर भवानी स्वामीनाथन जी का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति, नमस्ते, स्वागत है डॉक्टर स्वामीनाथन जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया बढ़िया एकदम।
0: जी जी जी, और मुझे लगा कि आज हम लोग जो बातें करेंगे वो हमारे मित्रों को भी अच्छा लगेगा और एक नई चीज जो है उनको सीखने को मिलेगा कि जो डायबिटीज को हम लोग सोचते हैं कि बहुत कभी ठीक नहीं हो सकती है, उसके लिए उनको एक नया चैप्टर उनके लाइफ का होगा, एक आई ओपनिंग सेशन रहेगा आज हम लोग बातें करेंगे। तो आइए डॉक्टर भवानी जी का स्वागत में एक छोटा सा गीत रश्मि जी हमारे साथ लेकर आ रही है।

0: थैंक यू रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और आइए मैं डॉक्टर भवानी जी से सीधे जोड़ता हूँ आप सभी को। स्वागत है भवानी जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ शांति, थैंक यू।
0: जी, मैं चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना परिचय भी दीजिए, और उसके बाद हम लोग जिस विषय को बात करने वाले हैं उस विषय पे बातें करें। जी
1: तो जैसा आप नाम मेरा देख रहे हैं, डॉक्टर भवानी स्वामीनाथन, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ और न्यूट्रिशन मेरा मेजर सब्जेक्ट रहा है। और उसके बाद मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, कई सालों तक मैंने पढ़ाया न्यूट्रिशन सब्जेक्ट एमएससी बीएससी के बच्चों को। फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कुछ कुछ हटके करना चाहिए, क्योंकि वही रोज कॉलेज जाना, वही पढ़ाना, तो कुछ लग रहा था कुछ नया कुछ करें। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अपने न्यूट्रिशन का जो भी नॉलेज है तो वो सोसाइटी को क्यों ना दूं। तो मैंने अपना एक खुद अपना वेंचर स्टार्ट किया, जिसका नाम मैंने रखा आकांक्षा डिजायर फॉर वेलनेस। तो ये लॉकडाउन के पहले की बात है, जब मैं देखती थी लोगों को खाने पीने का तरीका ही नहीं पता, क्या खाना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, जो मिला खा लेते और हेल्थ खराब होती है। तो मैं ये सोचने लगी कि हर एक को एक डिजायर होती है, एक इच्छा होती है कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, लेकिन वो हेल्थ
0: बिल्कुल
1: अच्छी रखने के लिए एक अच्छा डाइट और लाइफस्टाइल भी होना जरूरी है। तो ये सोच के मैंने अपने इसका नाम रखा अपने वेंचर का आकांक्षा डिजायर फॉर वेलनेस। और धीरे धीरे मैंने शुरू किया, और शुरू करके कुछ ही महीनों में मार्च 2020 लॉकडाउन शुरू हो गया। फिर मैंने देखा ऑनलाइन में लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे, तो ऑनलाइन में लोग जुड़ने लगे, काफी हेल्थ के बारे में टिप्स देने लगे, किस तरह का डाइट लेना चाहिए। और इसी दौरान मेरी पीएचडी की पढ़ाई भी चल रही थी, तब मैंने सोचा, क्योंकि मैं डायबिटीज जो एजुकेटर हूँ, तो नेशनल डायबिटीज एजुकेटर जो कहा जाता है, तो मैंने डायबिटीज सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत नजदीक है, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है, जो सासू माँ है, और मेरी सगी लौकिक बहन जो है बड़ी मुझसे, दोनों डायबिटीज का शिकार हैं, और एक को डायबिटीज नेफ्रोपैथी और एक न्यूरोपैथी। तो मैं सोचती थी कि ये दवाइयां तो ये लोग खा रहे, तो फिर क्यों ठीक नहीं हो रहा है। उसके बाद में मैंने जो पीएचडी जब करना शुरू किया, तो साइको न्यूरोबिक्स एक टेक्निक है, जिससे मेरे जो गाइड हैं डॉक्टर स्वामीनाथन भाई जी जो है, तो वो मेरे गाइड हैं, तो हमने मिलकर के ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम। और इसके अंदर बहुत लोग जुड़ने लगे, और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम का।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे ये कहानी शुरू हुई डायबिटीज, और डायबिटीज पर आपने पहले भी काम किया है, और एक तरह का आपको जो है इसके बारे में, इसके पेशेंट्स के बारे में काफी कुछ जानकारी भी है, तो निश्चित तौर पे आप इस पे ज्यादा वर्कआउट अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो निश्चित पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि आप थोड़ा सा डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम जो है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा नो हाउ हमें कराइए, क्योंकि डायबिटीज तो सुना है, डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम ये क्या है? थोड़ा सा लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई दूसरा टाइप का डायबिटीज तो नहीं।
1: डायबिटीज को लेके आजकल इतना डायबिटीज जो है, मतलब जैसे हम अभी कोरोना वायरस, हाँ जैसे कोरोना वायरस अब इतना फैल रहा है, नए नए वेरिएंट्स आते जा रहे, तो डायबिटीज भी उसी एक क्या कहते हैं ना, कम्युनिटी का ऐसा लगता है कि बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और आप 1970 में जब देखेंगे, तो 1970 में सिर्फ 2 या 3 दवाइयां आई थी डायबिटीज के लिए, आज बहुत सारी दवाइयां लोग खाते जा रहे हैं, पर फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है, डायबिटीज चलता जा रहा है। तो ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, मतलब जीवन शैली अगर हमारी सही नहीं है, खान पान सही नहीं है, तब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड, पीसीओएस, ये सारी बीमारियां होती है। तो मेरा जो रिसर्च टॉपिक, क्योंकि मुझे रिसर्च एक ही टॉपिक पे मैं कर सकती थी, सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस नहीं ले सकते हम पीएचडी में, तो मैंने सोचा
0: बिल्कुल
1: डायबिटीज लेते हैं, क्योंकि और मैं नेशनल डायबिटीज एजुकेटर हूँ, तो मुझे लगा डायबिटीज से रिलेटेड ही काम होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में काफी मुझे जानकारी है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया, और तब लॉकडाउन शुरू हो चुका था, तो ऑफलाइन कुछ होने के चांसेस नहीं थे, तो ऑनलाइन करवाना था मुझे कोर्स। तो मैंने जैसे व्हाट्सएप पे तो सब भेज देते हैं ना आजकल सारे, तो मैंने भेजना शुरू किया। तो व्हाट्सएप के जरिए, मतलब एक कहते हैं ना कि लॉकडाउन भी एक तरह से अच्छे के लिए आया, जैसे काफी सारी बातें हुई जो काफी अच्छी
0: बिल्कुल
1: नहीं थी, पर हर बुराई में हम अगर कुछ अच्छाई भी ढूंढे, तो इस तरह से लोग जुड़ने लगे इस डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम। क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं ना, लोगों को वही बड़ा आश्चर्य लगा रहे, ये रिवर्स कैसे होगा, अब डायबिटीज मैनेजमेंट सुना है, ये रिवर्स कैसे हो सकता है। अब लोगों को उत्सुकता होने लगी और ज्वाइन करने लगे प्रोग्राम, और इसी तरह से संख्या बढ़ती गई और ये रिवर्सल प्रोग्राम ऑनलाइन शुरू हुआ।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, ये जैसे कि आपने कहा कि डायबिटीज ये जो रिवर्सल प्रोग्राम है आप लॉकडाउन के बाद शुरू हो गया ऑनलाइन में, तो अब इसमें जो बात आती है है कि कितना टाइम लेता है ये डायबिटीज को रिवर्स करना। बात आती है कि डायबिटीज जो पेशेंट है टाइप 1 के भी टाइप 2 के भी है, और फिर इन सभी लोगों को क्या हम लोग इस प्रोग्राम में डालने के बाद, आपके साथ जुड़ने के बाद, वो चाहे आप डाइट कहो या कुछ भी कहो, लेकिन इसमें कितना टाइम लगता है वो वापस अपने नॉर्मल लाइफ जीने?
1: तो ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन आपने पूछ लिया, कितना टाइम लगता है। जैसे जब लोग मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि मैडम देखिए मुझे 20 किलो वजन कम करना है, तो कितने दिनों में आप कर देंगे? तो अब चूंकि 20 किलो बढ़ा हुआ है वजन, अब दिनों तक तो हो नहीं सकता है, महीनों सालों भी लग सकते हैं। तो डायबिटीज रिवर्सल भी कुछ इसी तरह से है कि कितने सालों से आपको डायबिटीज है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और कौन से लेवल पे है। क्योंकि कुछ लोगों के जो HbA1c है वो 11-11 तक पहुंच जाते हैं, पोस्ट जो मील होता है पोस्ट प्रांडियल वो 450 तक चला जाता है, और सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो उस पर डिपेंड करता है कि कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने सालों से वो पर्सन इस प्रॉब्लम को सफर कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि वो कितने सिंसियरली इस प्रोग्राम में जो जो कहा जाता है, मतलब ये 3-dimensional अप्रोच है जहाँ पे हम डाइट, फिर लाइफस्टाइल चेंजेस और हम मेडिटेशन के टेक्निक सिखाते हैं। तो मतलब कोई कोई ऐसे जैसे स्कूल में होते हैं ना 50 बच्चे क्लास में होते हैं, तो वो 50 में से 50 के 50 सिंसियर नहीं होते हैं, कुछ बहुत सिंसियर होते हैं, एकदम फर्स्ट मेरिट में आ जाते हैं, कुछ थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो ये अपने विल पावर पे भी डिपेंड करता है। एक तो हो गया कि आप कितने सालों से आपको ये प्रॉब्लम है, दूसरा आपका विल पावर कितना स्ट्रांग है कि आप इसको कर रहे हो, मतलब कंटिन्यूअसली आप कर रहे हैं। ये दो चीजें बहुत जरूरी है रिवर्स करने के लिए। जैसे हमारे साथ एक बहन जुड़ी थी, तो उनकी एज काफी हो चुकी है, वो 70 के ऊपर है, लेकिन उनका कुछ ही महीने में ठीक हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया। तो डॉक्टर ने भी कहा ये तो पूरा आपका तो आपको दवाई खाने की जरूरत ही नहीं, नॉर्मल हो गया। एक साल पहले कुछ उन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी, तो उन्हें रिवर्स करना जल्दी उनके लिए आसानी हो गई। पर ऐसे लोग थे जो 10-10 सालों से सफर कर रहे, काफी सारी दवाइयां लेते जा रहे, तो उनके लिए थोड़ा सा वक्त लगा। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम शॉर्ट में कहें तो कम से कम समझिए कि 6 महीने से 1.5 से 2 साल, मतलब जितना सीवियरिटी उसके ऊपर डिपेंड करता उतना टाइम तो लगेगा, और दूसरा कि कितना पेशेंट शिद्दत से वो फॉलो कर रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि ये कितना शिद्दत से यानी कितना टाइम उनको लगा है वो चीजें आने में, और मोस्टली 400-450 ऐसा उनका शुगर आता है काउंटिंग में, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है कि भाई इतना ज्यादा जो काउंटिंग है उसको रिवर्स करने में उतना ही टाइम लगेगा। ऐसा कहा जाता भाई कुछ चीजें हैं जल्दी भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उतना ही टाइम लगेगा, कुछ चीजें हो उनके साथ में। जैसे कि तो जैसे हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 ये बात करते हैं डायबिटीज में, तो आप जो प्रोग्राम करवाते हैं डायबिटीज रिवर्सल, इसमें दोनों काम करते हैं या फिर किसी एक पर ज्यादा फोकस है?
1: नहीं देखिए, टाइप 1 जो है जिसको हम कहते हैं जुवेनाइल डायबिटीज, मतलब बच्चा जब छोटा होता है तभी उसको ये प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। तो टाइप 1 डायबिटीज में हम ये रिवर्सल ऑफ डायबिटीज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चे की जो पैनक्रियाज है वो फंक्शन ही नहीं कर रही है। टाइप 2 डायबिटीज में होता ये है कि वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, गलत खानपान, गलत जीवन शैली की वजह से टाइप 2 डायबिटीज हुआ है। तो उसमें जो है पैनक्रियाज की फंक्शनिंग जो है वो कुछ हद तक कम हो गई है, तो उसको हम वापस से ठीक कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन टाइप 1 में ये चीज नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम था ये स्पेसिफिकली टाइप 2 डायबिटीज वालों के लिए था, और इसके अंतर्गत जो जिनको अपने अपने जिन्होंने अपने डाइट को चेंज किया, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, मतलब कोई ऐसे भी बहुत लोग होते हैं कि उनको खाने पीने का तरीका सही नहीं पता, कोई भी टाइम पे सो जाते हैं, कोई भी टाइम पे उठते हैं। तो आज अगर आप देखेंगे आज के दिन में तो लोगों का एक बहुत अजीब सी कहते ना जो ख्यालात है नींद के बारे में, कि 8 घंटा अगर सो लो तो 8 घंटा है ना, वो समझते नहीं है कि वो रात की नींद होनी चाहिए, दिन में भी सो लिया कॉम्पेंसेट कर लिया, ऐसे नहीं। तो टाइप 2 डायबिटीज लाइफस्टाइल जो गलतियां हम करते हैं और खान पान की गलतियां करते हैं उसकी वजह से होता है। तो इस केस में हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन टाइप 1 जो जुवेनाइल डायबिटीज है बच्चों का, उसको रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पैनक्रियास की फंक्शनिंग पूरी बंद रहती है। तो उसको रिवर्स करना अभी तक संभव नहीं है, आगे अगर देखिए क्या हो सकता है कि नहीं, पर फिलहाल तो नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। टाइप टू जो है इस भी काम हो रहा है, टाइप वन तो बच्चों के लिए है, उसमें इतना काम होना संभव नहीं, लेकिन फिर भी आगे चल के कुछ हो सकता है तो उसमें देखा। तो एक और बात, ये डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम कब शुरू करना चाहिए?
1: अच्छा, ये शुरू करना चाहिए मतलब जब आपको लगे कि आप दवाइयां खा रहे हैं, मैनेज नहीं हो रहा है, कभी भी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए कोई डेट या टाइम या हमें कोई अच्छे से मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, पर कभी भी शुरू कर सकते हैं। पर शुरू करके कम से कम मतलब मिनिमम 3 महीने का टाइम हमें अपने आप को देना है, क्योंकि लोगों में जल्दबाजी बहुत रहती है। अभी शुरू किया तो 15 दिन में कि दीदी कुछ फर्क नहीं आ रहा है, मैडम कुछ हो नहीं रहा है ऐसे, क्योंकि कोई भी आप चेंज देखेंगे ना, उसको कम से कम चेंज होने में 15 दिन तो 3 महीने तो लगते ही है, उससे कम में तो होगा नहीं। तो वो 3 महीने अगर हम लगातार, क्योंकि पहले का जो महीना जाता है, जो 21 दिन 30 दिन जो पहले के जाते हैं, उसको तो वो एडजस्ट करने में हमारा उतना टाइम चला जाता है, क्योंकि नया सब कुछ सीख रहे कर रहे हैं ना। तो धीरे धीरे आप 3-6 महीने अगर आप लगातार करेंगे बिना अपना विल पावर खोए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कि नहीं मैं ठीक हो सकता हूँ, तब जरूर जरूर ये टेक्निक काम करता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं चाहूंगा कि कुछ एक्सपीरियंसेस, जैसे आपने जो शुरू शुरू में ये प्रोग्राम आपने शुरू किया, तो आपको क्या लगा कि कैसे, क्योंकि ऑलरेडी आप डायबिटीज के पेशेंट्स के साथ रहे हैं, तो ये प्रोग्राम जो है कैसे स्टार्टअप हुआ, और थोड़ा सा उसमें बताइए कि आपको कैसे लगा कि ये चीजें रिवर्स में आ सकती है।
1: तो बहुत आपको हंसी आएगी सुन के, शुरुआत जब हमने किया था तो जैसे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जब हम डालने लगे तो बहुत सारे लोग जुड़े, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था इतने लोग जुड़ जाएंगे। और देखते रोज वो लिंक भेजा ना, तो लिंक ग्रुप बढ़ती जा रही है, बहुत लोग आ गए। फिर बाद में शुरुआत करने के पहले वो मैसेजेस जैसे डालते हैं ना, अभी ये दिन से शुरुआत हुई, क्योंकि मुझे आज भी डेट याद है, 19 मई को हमने शुरू किया था, तो 1 साल होने को आया, अभी हो जाएगा 1 साल। तो जब स्टार्ट किया तो इतने लोग सब खुश हो गए, और जैसे ही उन्होंने देखा टाइम 6 बजे सुबह का, क्योंकि सुबह हम लोग को 6 से 7 का ये प्रोग्राम रखा था, रोज 6 से 7 सबको मिलना है, सुबह 1 बार 6 से 7 और शाम को 5 से 6 एक्सरसाइज के लिए मिलना है, और सारा दिन जो मैं डाइट प्लान शेयर करूंगी वो डाइट बना के वो घर पे खाएंगे और उसके फोटोज भेजेंगे, क्योंकि मुझे भी तसल्ली होनी चाहिए कि ये लोग सही सही सब कर रहे हैं करके। तो देखा मैंने जब 6 बजे का जैसे ही टाइम देखा उस लोगों ने, तो आधे लोगों ने वैसे ही ड्रॉप आउट कर दिया, कहते कि नहीं सुबह सुबह 6 बजे तो मुश्किल है, नींद ही नहीं खुलती है, कैसे होगा। लेकिन फिर भी काफी लोग जुड़े, और जुड़ने के बाद में कुछ दिनों के बाद में फोन करके कहने लगे कि दीदी बड़ा मुश्किल लग रहा है सुबह सुबह 6 बजे उठना, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है तो घर पे क्या मेड नहीं आती, सारा काम खुद करो, रात को लेट सोते कैसे होगा। तो थोड़े और लोग कम हो गए, फिर भी काफी बचे थे लोग, उनमें से फिर देखा कि बहुत सिंसियर उसमें काफी कई सारे लोग थे, तो ठीक सुबह 6 बजे जुड़ जाते थे। तो हम लोग की शुरुआत होती थी साइकोन्यूरोबिक्स ट्रेनिंग से, तो ये जो साइकोन्यूरोबिक्स एक्सरसाइज है इसमें ये एक तरह का मेडिटेशन है, तो इस मेडिटेशन में हम कलर, साउंड और मुद्रा थेरेपी, इन तीनों चीजों का हम यूज करते हैं। तो कलर मतलब जो 7 कलर्स है, जो काफी दर्शकों को पता भी होगा, जिन्हें नहीं पता है वो जो 7 कलर जिसको हम चक्रास कहते हैं, जो हमारे रूट चक्र से शुरू होकर सहस्रार चक्र तक जो जाता है, मतलब रेड से लेकर के वायलेट कलर तक, तो इसमें हम स्पेशली अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे हम काम करते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही पैनक्रियाज है, तो उसको हील करते हैं। तो ये 25 मिनट का मेडिटेशन होता है जहाँ पे हम मुद्रास, हर एक चक्र के नाम एक मुद्रा रखते हैं, तो मुद्रा मैंने उनको सिखाया, जैसे कि हम ज्ञान मुद्रा करते हैं, उसके बाद में अपान वायु मुद्रा हुआ, फिर अपान मुद्रा हुआ, तो अलग अलग मुद्रास होते हैं। तो सारे जो ऑडियंस जो जुड़े, तो थोड़ा टाइम लगा उन्हें सिखाने के लिए कि भाई मुद्रास ऐसे आपको करना है, आपको कलर देखना है, फिर एक साउंड आपको करना है जिससे आपकी हीलिंग होगी, ये एक तरह का मेडिटेशन है। तो इस चीज को समझ काफी वक्त गया, और क्योंकि काफी सारे आप जैसे जानते हैं कि जो लोग होते हैं ना, मतलब इतने आसानी से किसी चीज को मानते नहीं, तो कहते खाली हमने उंगलियां ऐसी रख ली तो फिर कैसे तबीयत ठीक हो जाएगी। तो बहुत
0: हाँ
1: मेहनत करके, सब बड़े बड़े उम्र वाले, ऐसे नहीं कि बच्चे हैं, सब 40 के ऊपर वाले।
0: हाँ
1: समझाना पड़ता था कि भाई देखिए, हमारे जो पांच तत्व है, जिसको पंच महाभूतास कहते हैं, तो फायर, वाटर, एयर, ये सारी, तो ये जब इम्बैलेंस होता है तो बीमारियां आती है। तो हम अगर उंगली को ऐसे रखते हैं या ऐसे रखते हैं, तो हम अपना एयर एलिमेंट और हम अपना स्पेस एलिमेंट इस तरह से हम बैलेंस कर रहे हैं। तो एक एक चीज, क्योंकि सारे पढ़े लिखे और जॉब जाने वाले लोग थे, तो ऐसा नहीं था, क्योंकि उनको हर हर एक सवाल का उनको जवाब चाहिए था। और सही भी है, अगर वो जुड़ रहे हैं, अगर वो अपना समय दे रहे हैं, एक एक दो दो घंटा दिन का, तो उन्हें लगना नहीं चाहिए ना कि हमने टाइम वेस्ट किया है करके। तो सारी चीजों को जब वो धीरे धीरे समझने लगे, उसके बाद में एक या 1.5 महीने के बाद में एक ऐसा टाइम आया जब वो खुशी खुशी जुड़ते थे। मतलब अगर कभी ऐसा अटेंडेंस कम नहीं होता था, मतलब सब आ
0: अच्छा
1: रहे
0: अच्छा
1: एकदम सुबह उठ के, बहुत खुश होके आते थे। तो धीरे धीरे उनको ना, जैसे हम एडिक्शन कहते हैं ना, लोगों को चाय की एडिक्शन लगती है, फिर हार्ड ड्रिंक्स की
0: बिल्कुल
1: एडिक्शन लगती है, अल्कोहल की, तो उन्हें फिर ये 6 बजे का एडिक्शन हो गया। तो उसमें कई ऐसे थे जो कहते थे कि हम तो सुबह उठ ही नहीं सकते, और वो 10-15 मिनट पहले जुड़ जाते थे। तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की शुरुआत तब से हुई, और उन्होंने चेंजेस, उनके समझ में आने लगा कि वो चेंजेस अपने में आने लगे उनको, कि सुबह उठ के अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। हम ये 25 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद में हम प्राणायाम करते थे। फिर धीरे धीरे हमने फिर कोर्स, जो हमारा 7 दिन का जो कोर्स है राजयोगा का, फिर वो इंट्रोड्यूस किया, तो वो भी उन्होंने किया। उसके बाद धीरे धीरे हमने वो मुरली सुनने लगे। तो मतलब डाइट चल रहा था, एक्सरसाइज भी चल रहा था, और साइको न्यूरोबिक्स के साथ साथ फिर कोर्स करने के बाद में मुरली भी उन्होंने सुनना शुरू किया। तो मतलब ये शुरू 7-8 महीने में इतने चेंजेस उनमें आए जो उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और उन्हें ना एक फील गुड फैक्टर जो कहते हैं, वो उन्हें अच्छा लगने लगा। उसका धीरे धीरे जब वो रिपोर्ट्स अपने वापस शुगर टेस्ट कराने लगे, अपना ब्लड टेस्ट, तो एक एक रिपोर्ट्स वो शेयर करते थे। तब वो रिपोर्ट्स
0: बिल्कुल
1: देख के, मतलब हर 1-2 महीने में ना जो चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस देख के उनको भी खुशी होती थी, मुझे भी खुशी होती थी कि भाई इतना डिफरेंस आ रहा है करके। सो नेचुरली जैसे ब्लड शुगर लेवल उनका एक रिपोर्ट में कम दिखा, तो खुश होके वो और ज्यादा सिंसियरली करने लगते थे। तो इस तरह से, और एक दूसरे को रिपोर्ट देख के उनको मोटिवेशन होता था कि भाई चलो, इनका कम हुआ तो मैं भी कर लूं, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। तो एक तरह से बहुत एक हेल्दी जो गेम, जिस तरह से खेलते हैं ना, उस तरह से एक सबने खेला, और सब खुशी खुशी सबने अपना, मतलब काफी हद तक अपने में इम्प्रूवमेंट लाना शुरू किया।
0: बिल्कुल बिल्कुल। कई बार होता है कि शुरुआत में हम लोग उन चीजों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज करना है, इससे कब क्या होगा पता नहीं, लेकिन मजबूरी से ही, जबरदस्ती से ही थोड़ी दिनों के लिए हम लोग करते हैं, तो जब रिजल्ट आता है या कुछ ऐसे रिपोर्ट हम लोग देखते हैं या खुद में चेंज अपने को देखने को मिलता है, तो नेचुरली ये जो है बहुत ही अच्छा अपने को लगता है, पॉजिटिव साइंस मिल जाते हैं, तो फिर अपने से खुद करने। तो कई बार होता है कि चीजें जो है काम करते रहते हैं हम लोग, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट्स कहीं से दिखाई नहीं देते, तो वहां पर पीछे जाने वाली जो है बात आती है। लेकिन रिजल्ट अगर दिखने लगती है तो फिर हम लोग थोड़ा स्टेप आउट, हाई जंप करते हैं, थोड़ा ज्यादा मेहनत करते हैं, तो चीजें आती है। और ये जो चीजें है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपको फील भी होगा डायबिटीज वाले पेशेंट्स को, वैसे में डायबिटीज क्या है, एक मैनेज काम करता है, चीज हो गया मना, और कोई बड़ी बात नहीं है, देयर इज समथिंग व्हिच यू हैव टू मैनेज, मतलब आप अपने खाने को, अपने डेली रूटीन को पूरा सा बारीकी से, और भी आप इनसाइड हो जाते हैं, एक्चुअली में डायबिटीज आउटसाइड यानी ध्यान नहीं दिया इसलिए आप डायबिटीज जैसा बीमारी आता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको हुआ, दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी अच्छी बात ये है कि आपको सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ यानी खुद की तरफ अटेंशन देना डायबिटीज, और जैसे ही आप अपने आप को मैनेज करना शुरू कर देते हो, आप खाना उस टाइप के खाने लगते हो, एक्सरसाइज करने लगते हो, अपने आप को प्यार करने लगते हो, तो फिर आपका डायबिटीज नॉर्मल हो जाता है। प्रॉब्लम वही था ना कि आपने अपने आप को कभी प्यार किया ही नहीं, अपना खाने का ध्यान नहीं दिया, जो आया सो करके गए, आगे बढ़ते गए, कभी अपने आप से ज्यादा टाइम नहीं दिया हमने कि क्या मेरा शरीर मेरा अपना है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, कभी हमने उसको नहीं देखा। दूसरे जो फिजिकली हमें जो बाहर से दिखता है, उन चीजों को अपना समझने के चक्कर में अपने आप को जो है नुकसान। तो कोई नहीं, ऐसा कहते हैं कि जैसे ये संसार जो है इसमें कल्याणकारी भावना छुपा है, क्योंकि ये ईश्वर की बना है, दैट वो चाबी आपको मिल जाए कि कल्याणकारी है तो कैसा करें। तो डायबिटीज जैसे पेशेंट अगर ये सोचने लगे, ये अच्छा हुआ कि मुझे की मिल गया सेल्फ इंट्रो में اندر جھانکنے کا ایک موقع ملا ہے, ادروائز میں کبھی جھانکتے ہی نہیں. تو ایکچولی میں ایک بہت بڑا کی ہے آپ کے پاس, یو آر گیونگ ٹائم ٹو یور سیلف, اور اپنے آپ کو ٹائم دے کر آپ اپنے ساتھ جی رہے ہو, سچی میں آپ جی رہے ہو. تو وہ جو ہے ایشور نے, جیسے چھوٹا بچہ ہے نکرا کرتا ہے, بیمار ہے تو ماں باپ کیا کریں گے, ناک پیر پکڑ کے اس کو دوا دے دیں گے ٹھیک ہو جائے. ماں باپ کا کوئی وہ نہیں رہتا کہ اس کو ہاتھ پیر پکڑو, اس کا نہیں, اس کا کلیان ارتھ اس کو پکڑ کے اس کو دوا پلایا جاتا ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو. تو ڈائبٹیز یہ بھی ایک ہمارے انٹروورٹ یعنی خود کو ملنے کا ایک بہت ہی سو اوسر پردان کرتا ہے. ڈونٹ وری بی ہیپی, اور ڈاکٹر بھوانی جیسے لوگ ہیں جو آپ کو بہت طریقے سے ٹیکنیکلی ان چیزوں کے اپنے آپ سے جوڑنے کا پریاس کرتے ہیں, اور آپ کو جو ہے ایکسرسائز سکھاتے ہیں, پران مدرا یہ سب چیزیں, یوگ راج یوگ سکھاتے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کا جو صحیح اپنی پہچان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کو سمجھے اور جیون کا سچا سکھ جو ہے وہ پائے. تو آئی ہمارے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہیں اور میں چاہوں گا کہ ان سے بھی بات چیت کریں. ڈاکٹر بھاونا جی میرے کو بتائیے ان کے بارے میں اور تھوڑا سا کچھ پوچھنا ہے. میں پوچھوں
1: تو سندھیا جی ہمارے ساتھ جڑی ہیں. تو سندھیا جی ریٹائرڈ ہے, ریٹائرڈ ہے, ممبئی کی رہنے والی ہے. تو ممبئی میں رہتے ہوئے میں ان سے کبھی ملی نہیں تھی, تو واٹس ایپ کے ذریعے انہوں نے جوائن کیا تھا گروپ. اور سندھیا جی اسکول میں بچے ہوتے ہیں نا, بچے جیسے گڈ اسٹوڈینٹ, تھوڑے سے بدماش اسٹوڈینٹ, تو سندھیا جی بہت گڈ اسٹوڈینٹ میں آتی ہیں. مطلب جو میں نے کہا تو بڑی گڈ اسٹوڈینٹ ہے وہ, مطلب سب کچھ کریں گی. اور ان کو اور مدھوبن بھی میرے ساتھ آتی ہے میرے کہنے پہ, تو ان کو ہاں جی ان کو بہت فائدہ بھی ہوا. تو سندھیا جی خود بتائیں گی کہ انہیں کیا فائدہ ملا یہ پروگرام جوائن کر کے.
2: نمستے میم.
1: نمستے
0: نمستے
2: بھوانی میڈم, اسی وقت شیر اور ہسمکھ ہے اور پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ کی ہے.
1: سندھیا جی آپ بتائیے کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا یہ, آپ میرے بارے
2: میں. ایک دم پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ کی ہو گئی میں بھی, مجھے ابھی انرجی لگ رہی ہے, کچھ بھی کبھی بھی تھکاوٹ نہیں لگتا ہے. پہلے تو میں ایک دم ہمیشہ تھکاوٹ لگتی تھی, ابھی میں 6-7 مہینے سے میں جو سائیکو نیورو بھی کر رہی ہے تو مجھے بہت ہی آنند مل رہا ہے. ہم لوگ صبح 5 بجے اٹھ کے مرلی بھی سنتے ہیں میڈم, بہت ہی ایک دم وقت سے رہے, 2 منٹ بھی ادھر کا ادھر نہیں ہوتا ہے. ہم جیسے جلدی آتے ہیں ویسے میڈم بھی جلدی آتی ہے, تو ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ ہمارا ویٹ بھی کم ہو گیا ہے. میڈم ابھی نیوٹریشن ڈائٹیشن بن گئی ہے ابھی, تو ہمیں چارٹ بھی دیا ہے تو ہم اس کا پالن کرتے ہیں ہمیشہ. اور ابھی تو صبح 6:30 to 7 تک میڈم ہمارے سے فزیکل ایکٹیویٹیز بھی کرا کے لیتی ہے, تو ہمیں بہت ہی فریش لگتا ہے. رات کو ہمیں نیند بھی اچھی آتی ہے, نو اینی نیگیٹو تھنکنگ آتا ہی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کبھی جلدی صبح اٹھے اور میڈم کا درشن لے لوں, اتنی میڈم بہت ہی اچھی ہے. جو کچھ ہے میڈم کے لیے ہے. ابھی میرا
0: بالکل بالکل. سندھیا جی شروعات میں جب پروگرام اٹینڈ نہیں کرتے تھے تو تبھی کا ڈائبٹیز کیسا تھا, کتنا؟
2: تبھی ہم لوگ ذرا دیر سے اٹھتے تھے, ابھی ہم لوگ ایک دم.
0: شوگر لیول کتنا ہوتا تھا اس سمے؟
2: ہاں شوگر ہماری تبھی 140 کے اوپر تھی, ابھی ایک دم کم ہو گئی ہے, 114 تک ہو رہی ہے. ابھی کا 10 دن پہلے ہی میرا رپورٹ ہے, ایک دم نارمل ہو گیا ہے. ریئلی آئی ایم سو ہیپی میڈم کی وجہ سے, ایک دم اچھا لگتا ہے.
0: بالکل بالکل بالکل, بہت بڑھیا. سندھیا جی اور مجھے آپ کو کتنا ٹائم لگا یہ ریورسل پروگرام میں آپ جڑے بھوانی جی؟
2: 6-7 مہینہ ہو گیا فی الحال, ابھی 6-7 مہینہ ہو گئے. کنٹینیوس ہم لوگ کرتے ہیں, راج یوگا بھی کرتے ہیں, میڈیٹیشن کرتے ہیں. میڈم ایک دم اپ ٹو ڈیٹ ہے, ایک دم ہمیں بھی اپ ٹو ڈیٹ کیا ہے, وہ میڈم بھی اپ ٹو ڈیٹ ہے. ہم ڈسپلن ہو گئے, ابھی پہلے کیسا ہوا نہیں ہوا چلتا تھا, ابھی نہیں. صبح اٹھ کے برابر جوس بھی نہیں, لیمن جوس بھی پیتے ہیں, کریلا جوس بھی پیتے ہیں. میڈم نے اچھی طرح سے ڈائٹ پلان دیا.
0: اچھا یہ سب کرنے میں آپ کو کنٹالا تو نہیں آ رہا ہے؟ یو آر فیلنگ دیٹ آر
2: صبح کی سر, ہم لوگ صبح کی یاد کرتے ہیں کہ کبھی جلدی صبح ہو گئے, 4:30 ہم لوگ یاد سے اٹھتے ہی ہے وداؤٹ اینی الارم. نیند کھلتی ہے, اچھی طرح سے نیند ہوتی ہے نا.
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू संध्या जी, बहुत ही अच्छी बात आपने
2: थैंक यू
0: बताया
2: सर,
0: हमें,
2: थैंक यू
0: और
2: मैडम,
0: आपको 6 महीने से
2: थैंक
0: इस प्रोग्राम में जुड़े हैं और बहुत सारी खुशियां आपको मिली हैं और डायबिटीज आपका जो है कंट्रोल में है और आप लाइफ को
2: यस
0: एंजॉय कर। सबसे बड़ी बात यह है कि कंट्रोल ना कंट्रोल वो मैं इम्पोर्टेंट नहीं देता हूँ, मैं इम्पोर्टेंट
2: यस
0: देता हूँ
2: सर,
0: आपको जीना अच्छा लग रहा है, जीने को आ रहा
2: यस
0: है,
2: सर, यस सर,
0: वो
2: हंड्रेड
0: इम्पोर्टेंट
2: परसेंट 100%,
0: है। वो चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि आप जिए, खुशी से जिए, और
2: यस सर,
0: ये सेकेंडरी है, सारे बीमारियां सेकेंडरी है। फर्स्ट पार्ट तो आपके चेहरे की मुस्कान और आपको जो भी आप कर रहे हैं उसमें खुशी मिले, दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग।
2: यस सर,
0: आप एक राइट
2: यस
0: पाथ में हैं, राइट हैंड के साथ घूम रहे हैं, तो बहुत बहुत आपको अच्छी बात है, यू आर लकी। तो टेक केयर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखा हमने संध्या जी को, बहुत अच्छी तरह से वो 6 महीने से इस प्रोग्राम से अपने आप को जो है एनहांस कर रही हैं, और सबसे अच्छी बात मुझे वही लगी कि उनके चेहरे पे जो मुस्कान है और वो इस उम्र में भी खुश रहना चाहती हैं, और सवेरे उठकर 6 बजे जो है, 5 बजे से उनका तैयारी होता होगा, तब तो 6 साढ़े 6 बजे अपने क्लास को अटेंड करती होंगी, तो बहुत ही अच्छा लगे हमें। अभी अनुराधा जी हमारे साथ हैं। अनुराधा जी नमस्ते,
3: जी
0: कैसे हैं आप?
3: नमस्ते, बहुत अच्छी हूँ। मैं
0: और
3: हैदराबाद
0: तो
3: से हूँ,
0: जी,
3: मैं हैदराबाद से हूँ और मैं
0: हाँ
3: एक होम मेकर हूँ। भवानी जी को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक मेरे फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया था कि ऐसा,
0: अच्छा।
3: जब तभी था जब मेरे को डायबिटीज शुरू हो गया था तभी, तो डॉक्टर सारे डॉक्टर्स बोल रहे थे कि अभी मेडिसिन आप मत यूज करो, एक्सरसाइज और डाइट के साथ आप शुरू करो बोल के। तो भगवान का कृपा है, 10 दिन के बाद मेरे को भवानी जी का प्रोग्राम में मैं तो शुरू कर दी पूरा। तो उन्होंने जैसे बोला था कि 6 बजे उठना, पहले हमको 6 बजे था, तो 6 बजे उठने के बाद 6 to 6:30 साइकोन्यूरोबिक्स था, उसके बाद हमको मुरली का सेशन भी था ब्रह्म कुमारी का, और उसके बाद उनको एक्सरसाइज भी सिखाया था भवानी जी ने, और थोड़े क्लासेस भी डाले शाम को, न्यूट्रिशन क्लासेस और कैसे वॉक, क्योंकि ज्यादातर सभी लोग डायबिटीज बोले तो वॉकिंग करते हैं, लेकिन भवानी जी ऐसा नहीं है, वो तो पहले से योगा भी सिखाई और कैसे हमको माइंड को कंट्रोल करना है वो सब, और शाम को भी थोड़ा डिफरेंट वॉकिंग एक्सरसाइज बोल के, तब कोविड भी था तो घर में ही हम लोग वॉकिंग एक्सरसाइज कर रहे थे विथ एक्सरसाइज, विथ मसल एक्सरसाइज और डिफरेंट पार्ट्स का भी एक्सरसाइज हो रहा था, तो ये सबसे मुझे तो बहुत फायदा हुआ था। तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हम तो जब डायबिटीज में क्या होता है कि हमको जब भूख लगता है तो हम जो भी हाथ लग गया तो वो हम लोग खा लेते हैं, बिस्किट्स या कोई भी जंक फूड,
0: बिल्कुल
3: तो
0: बिल्कुल
3: उसका पहले हमको सेशन मिला कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है,
0: बिल्कुल
3: उसका कितना क्वांटिटी में खाना है, वो सब हमको बहुत अच्छी तरह से सिखाया था भवानी जी मैडम ने। फिर
0: बिल्कुल
3: साइको न्यूरोपिक्स तो बहुत हेल्प हुआ था मुझे, तो मेंटल टेंशन पूरा कम हो गया, क्योंकि वन ऑफ द रीजंस क्या है कि डायबिटीज में टेंशन होना भी है, और आजकल हम लोग
0: बिल्कुल
3: बहुत मोबाइल भी देखते हैं, तो ठीक तरह से सोना हो या उठाना हो वो
0: अच्छा,
3: सब
0: अनुराधा जी
3: पूरा।
0: थोड़ा सा अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बताइए, आप कहाँ रहते हैं और परिवार
3: जी
0: में कौन कौन?
3: मैं तो अपनी सास और ससुर के साथ रहती हूँ, और एक बड़ा बेटा है मेरा जो अभी 10th में है अभी,
0: अच्छा,
3: तो मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे
0: बिल्कुल
3: पति तो आईटी में काम करते हैं, तो यही
0: बिल्कुल
3: है और कुछ।
0: अच्छा। आपको जो डायबिटीज या जो भी ये हुआ वो कितने टाइम से है?
3: 1 ईयर है अभी तक, 1 ईयर हो गया है अभी
0: अच्छा, और ये रिवर्सल प्रोग्राम कितने टाइम से आप अटेंड कर रहे हैं?
3: जी। रिवर्सल प्रोग्राम तो मैं 6 महीने से कर रही हूँ,
0: अच्छा अच्छा
3: तो पहले जब ज्वाइन हुई तो तब अराउंड 140 था मेरा लेवल, आई मीन बिफोर फास्टिंग में बोल रही हूँ, तो जब प्रोग्राम चालू हो गया 3 मंथ्स में ही मेरे को फायदा हुआ, रिजल्ट्स देख पाई थी मैं, ऑलमोस्ट 100 तक आ गया था फास्टिंग,
0: अरे
3: और
0: वाह,
3: जो 3 मंथ्स लेते हैं रेटिंग वो भी बहुत कम हो गया है, तो मुझे तो पहले बहुत टेंशन था कि मुझे मेडिसिन स्टार्ट करना है, तो
0: हाँ
3: जब वो स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक
0: अच्छा,
3: और वही लिमिट में है, ज्यादा नहीं हो रहा है अभी तक, उससे कम नहीं आया है क्योंकि अभी 6 महीने ही तो हुआ है, तो
0: बिल्कुल
3: थोड़ा टाइम लगेगा, तो
0: अच्छा। अभी
3: दैट्स
0: मेडिसिन आप ले
3: नहीं
0: रहे हैं क्या? मेडिसिन कौन से ले रहे हैं
3: ले रही
0: अभी?
3: हूँ मैं, पहले से ही नहीं ले रही हूँ
0: अच्छा,
3: मेडिसिन,
0: मेडिसिन ले ही नहीं रहे हैं। ओके ओके,
3: मेडिसिन
0: बहुत
3: पहले से ही
0: बढ़िया,
3: नहीं ले रही हूँ, विदाउट मेडिकेशन ही हो रहा है मेरे पहले से ही,
0: बहुत
3: क्योंकि अभी
0: बढ़िया,
3: वन
0: बहुत
3: ईयर ही
0: बढ़िया।
3: हुआ है ना, तो वो लेवल भी बहुत कम है, 180 से कम है मेरा लेवल, प्री डायबिटीज कहते हैं ना वो लेवल
0: बिल्कुल
3: पे हूँ
0: बिल्कुल
3: मैं, टाइम लगेगा, अभी हम लोग नेचुरल लेवल कर रहे हैं ना विदाउट मेडिसिन, तो इसलिए और फुल नॉर्मल आने तक थोड़ा लगेगा, क्योंकि डॉक्टर तो मैं कंसल्ट कर रही हूँ, डॉक्टर भी बहुत खुश है कि तुमने एक्सरसाइज कर रही हूँ, डाइट कंट्रोल कर रही हूँ और ये मेडिटेशन या साइकोन्यूरोबिक्स कर रही हूँ, तो डॉक्टर तो यही बोले कि तुम बहुत लकी हो कि तुम विदाउट मेडिसिन तुमको मिल गया है वो प्रोग्राम। जनरली किसी को नहीं मिलता है ऐसा।
0: सही बात, सही। ओके अनुराधा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बातें आपने बताया। और छह महीना जैसे आपको पता चला कि डायबिटीज है, तो आप ये सोच रहे थे कि मेडिसिन स्टार्ट करें या नहीं करें, कंसल्टिंग आपकी चल रही थी और उसी बीच आपको ये प्रोग्राम के बारे में पता चला, तो आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपका 140 से 100 फास्टिंग में है शुगर, तो एक अच्छे रिजल्ट है आपके पास। तो मैं चाहूंगा कि आपके एग्जाम्पल बनेंगे आप आगे चल के, क्योंकि कई बार चीजें जो है डायबिटीज आ जाता है तो फिर मेडिसिन लो, इंजेक्शन लो, कंटिन्यू लाइफस्टाइल में ही डलवा देते हैं डॉक्टर्स तो, और आपको भी डर लगता है कि अभी दवा खाएंगे तो ही ठीक रहेंगे, नहीं तो नहीं, मुश्किल है जीना। तो ऐसे समझ के हम लोग दवाइयाँ खाते जाते हैं और खाना भी खाते जाते हैं, तो उसमें फिर वापस कॉम्प्लिकेशन ये हो जाते हैं कि मेडिसिन डबल हो जाते हैं धीरे धीरे, हमें पता नहीं चलता है, फिर इंजेक्शन शुरू हो जाते हैं ना। तो वो सारी चीजों से आप शायद बच गए हैं और आपने अभी कंट्रोल कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका लाइफस्टाइल में आपने चेंजेस किया है और जो लाइफस्टाइल आपको जिस तरह से रखना है वो आप रखेंगे कंटिन्यू, तो आपको फिर बढ़ने का चांसेस भी नहीं होगा। तो दूसरे लोगों को आप इस प्रोग्राम में जुड़ने वाले दूसरे लोगों के लिए एक मोटिवेटर बन के आप उनको भी सजेशन दे सकते हैं आपने कैसे विदाउट मेडिसिन इसको कंट्रोल किया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और डॉक्टर भवानी जी जिनको ट्रीटमेंट दे रही है, जिनके साथ रिवर्सल प्रोग्राम जो कर रहे हैं, संध्या जी और हमने अनुराधा जी से बातें की, आशा करता हूँ आप बिल्कुल ध्यान से सुन रहे होंगे और आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम डायबिटीज के अंदर, डायबिटीज हो जाने पर घबराने की बात नहीं है, बस आपको एक ऐसा प्रोग्रामर ढूंढना है जो आपको रिवर्स कर सके डायबिटीज, इसके लिए बातचीत करना। तो डॉक्टर भवानी जैसे बहुत सारे लोग ऐसे प्रोग्राम्स देते हैं, बस आपको वहां पर पहुंचने की जरूरत है और उनको समझे और अपने आप को समझे और थोड़ा सा एक जो लाइफस्टाइल में बदलाव है उसे जरूर कीजिए, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण हमारा डायबिटीज आता है और जैसे फिर से हम लोग अपने नेचुरल लाइफस्टाइल में आ जाते हैं तो फिर से डायबिटीज जो है कम होना शुरू हो जाता है। तो चलिए मैं चाहूंगा कि डॉक्टर भवानी जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आपको, सभी लोग सुन रहे हैं, उन सभी के लिए एक मैसेज।
1: तो मैसेज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कहते हैं ना ऊपर वाले ने इतनी सुंदर जिंदगी दी है हमें, और जैसे कि हम गाड़ियां जैसे मुंबई में आप देखोगे तो इतनी सारी गाड़ियां कहते हैं ना एकदम एक्सपेंसिव कार्स लोग रखते हैं और कार की इतनी देखभाल करते हैं कि हल्का सा एक डेंट भी लग जाए तो परेशान होके घूमते कि कार में दाग लग गई, और जो ऊपर वाले ने इतनी सुंदर सी ये कार जो दी है ये बॉडी हमें उसका ध्यान नहीं रखते। तो मैं हर किसी से यही अर्ज करना चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपनी खान पान पे जरूर जरूर ध्यान दे, और जीवन शैली जिसको कहते हैं डाइट एंड लाइफस्टाइल, ये दोनों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सामने आज बहुत ऑप्शंस हैं। आप हर जगह आउटलेट आप देखोगे, घर पे आप बस एक ऐप आपको दबाने की जरूरत है, घर पे आपको 10 मिनट में डिलीवर हो जाएगा फूड, लेकिन फूड इस तरह से खाने का कोई मतलब नहीं है। आजकल फूड को हम एंटरटेनमेंट की तरह खा रहे हैं कि बस दोस्तों के साथ पार्टी हो गई, हमने खाया, बच्चा पास हो गया तो हमने एंजॉय किया, तो फिर हमने पार्टी कर ली। तो फूड को एंटरटेनमेंट की तरह ना देखते हुए आप देखोगे, मतलब मैं जब लोगों से कहती हूँ ना लोग हंसते हैं, मैं कहती हूँ जब आप 10 साल बाद अपने दोस्त से मिल रहे हो तो जरूरी थोड़ी है कि आप रेस्टोरेंट में जाकर डिनर टेबल पे मीट करो, आप ये भी कह सकते हो चलो साथ में मिलके वॉकिंग करते हैं। तो लोग कहते ये कोई बात हुई क्या, वॉकिंग करते हैं, किसी को बुलाते हैं कि इन्वाइट करते हैं क्या, मैंने कहा यही तो हेल्थ और फिटनेस तो यही होता है। चलिए आप चाय पे बुला लीजिए, तो कहते हैं चाय पे बुलाएंगे तो कहते ये कंजूस है, ये तो बुलाया नहीं खाना खाने के लिए। तो फूड को हम एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं, तो एंटरटेनमेंट की तरह ना देखते हुए हम उसको न्यूट्रिएंट्स उसमें से हमें कितनी क्या कहते हैं जो पौष्टिक आहार जो हम खा रहे हैं हमारी कोशिकाओं में वो सारे न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेंगे उस हिसाब से हमें खाना खाना चाहिए। और दूसरी बात ये आजकल आप देखोगे मिडनाइट स्नैकिंग का बहुत जमाना चल रहा है, मतलब आधी रात टाइम पास के लिए खाना, तो ये आधी रात को टाइम पास के लिए खाना मतलब हम अपने शरीर को बिगाड़ने का पूरा पूरा तरीका नया तरीका ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने फूड पे ध्यान रखना है और लाइफस्टाइल मतलब जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करने की जरूरत है। और जैसे पेरेंट्स जो है ना हमेशा कंप्लेन करते कि हमारा बच्चा सुनता नहीं है, इनडिसिप्लिन है, तो मैं पूछती हूँ पेरेंट्स को आप खुद पहले डिसिप्लिन हो क्या वो देखो, आप खुद जब ऑर्डर करके खाओगे तो बच्चा क्या सीखेगा, वही तो सीखेगा। आप खुद अगर 8 बजे उठोगे और चाहोगे कि बच्चा 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करे पढ़े तो होगा नहीं। तो ये पेरेंट्स की माता माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद एक अच्छी जीवन शैली जिए, अच्छा डाइट खाए, तब उनको देखकर बच्चे समझे, क्योंकि बच्चों को आज के दिन में सिर्फ बोलना काफी नहीं है, अगर आप खुद एक रोल मॉडल बनोगे तब वो जाकर समझेंगे। तो डाइट और लाइफस्टाइल का जरूर जरूर ध्यान रखें, क्योंकि वेट जैसे ही बढ़ेगा मतलब आप सारी बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। तो वेट को कंट्रोल में रखना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल लीड करें। और जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, लोग समझते हैं हेल्दी इज बोरिंग, तो मैं बता दूं इतने सारे हेल्दी रेसिपीज आप बना के खा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे आकांक्षा डिजायर फॉर वेलनेस, तो मैंने इतने रेसिपीज डाले हैं कि आप रोज एक एक नया रेसिपी आप ट्राई करोगे, सारे हेल्दी और सारे टेस्टी है, तो कभी भी कोई हेल्दी रेसिपी बोरिंग नहीं होती है। तो हमें इन सब छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, डाइट अच्छी वाली लेना, टाइम टू टाइम खाना, रात में सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज वालों को स्ट्रेस, जैसे अनुराधा जी ने कहा, स्ट्रेस से भी ये लेवल्स बढ़ते हैं। तो अगर आप सोएंगे नहीं रात को टाइम पे, तो आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, फिर आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, तो आपके शुगर लेवल्स बढ़ने के चांस है, मोटापा बढ़ने के चांस है। तो एक अच्छी नींद, अच्छा खान पान और अच्छी एक्सरसाइज, बस बहुत सिंपल चीज है। हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें, बस इतना हम ध्यान रखेंगे तो हम सब हेल्दी रह सकते हैं।
0: डॉक्टर भवानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया। और डायबिटीज रिवर्सल जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, कंटिन्यू करें आप, और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े, ऐसा मैं शुभकामना करता हूं। और जो भी लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप डॉक्टर भवानी स्वामीनाथन करके लिखिए डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम, गूगल में भी आपको मिल जाएगा उनका डिटेल्स, तो आप उनसे जरूर जुड़े, और जुड़ने के बाद जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऑनलाइन भी प्रोग्राम्स आपको करने को मिलेंगे, और कहीं दूर है तो आप ऑनलाइन भी उनसे बातचीत करके और मीटिंग अटेंड करने से आपको काफी चीजें सीखने को। तो निश्चित तौर पे डायबिटीज कोई बड़ी बात नहीं है, ये जस्ट आपको अपने आप से मिलाता है
1: जी बिल्कुल
0: जो है अपने आप से मिलाने का काम करता है बस, क्योंकि आपने पूरे लाइफ टाइम में कभी अपने आप को टाइम नहीं दिया। आपने टाइम दिया बच्चों के लिए, आपने टाइम दिया दूसरों के लिए, आपने टाइम दिया अपने जॉब के लिए, आपने टाइम दिया अपने प्रॉपर्टीज को बनाने के लिए, आपने टाइम दिया भविष्य अच्छा बनने के, लेकिन वर्तमान आपका जो है मुश्किल में आए, तो अब टाइम आ गया है वर्तमान में अपने आप को टाइम दे। यू गिव मना, आप जितना अपना टाइम दे देंगे अपने आप को, उतना ही अच्छा फील करेंगे और डायबिटीज आपसे दूर हो जाएगा। नेचुरल सिंपल आइडिया, तो सिंपल तरीका यही है, और आप गहरी नींद लें, है ना, और जो डाइट आपको बताया जाता है वो डाइट आप शुरू करें, थोड़ा डाइट को चेंज भी जरूरत है। जीभ की मत सुने, ऐसा कहा जाता है जीभ अगर सुनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा तो ये थोड़ा सा आपको समझना है बस, और कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और डॉक्टर भवानी जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि आप डायबिटीज के साथ साथ आप डायटिशियन भी हैं, तो डायटिशियन अर्थात आपने काफी रिसर्च किया है इंडियन फूड पर, तो इंडियन फूड एंड हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में आपसे जानेंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड और सवेरे का ब्रेकफास्ट कैसे होना चाहिए, दोपहर का लंच कैसे होना चाहिए, रात का डिनर कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत सारी है। हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स को लेकर भी बड़ी मुश्किलें आती है, और किस तरह से कभी कभी हम लोग पिकलेट्स वगैरह खाते हैं, अचार भी खाते हैं, तो क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ऐसे कई सवाल डाइट को लेकर आते हैं। तो इसीलिए आज इंडिया में जो है डाइटिशियंस का भी इम्पोर्टेंस बढ़ गया है डॉक्टरों के साथ साथ में, फिजियोथेरेपी वालों का भी इम्पोर्टेंस बढ़ गया है डॉक्टरों के साथ में, तो ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन में जो चीजें आ रही हैं, जहाँ पर डाइट और फिजियोथेरेपी, ये दोनों चीजें क्यों इम्पोर्टेंस आज हो गए हैं, क्यों डॉक्टर लोग खुद प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप डाइटिशियन के साथ जुड़िए, आप फिजियोथेरेपिस्ट के साथ जुड़िए, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलते हैं, जो खुद डॉक्टर इन लोगों के पास आपको भेजते हैं। तो नेचुरली कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो हमें मिस कर रहे हैं, या हम कहीं उससे दूर हो गए, तो इंडियन फूड एंड उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम लोग डॉक्टर भवानी जी से सुनेंगे इसी तरह। तब तक आप वेट कीजिए, है ना, सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से, तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: वादियों से। आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम कार्यक्रम एक नारी शक्ति पर आधारित है। हर एक महिलाओं में कोई न कोई विशेषताएं होती है, लेकिन वो विशेषताएं बाहर तक नहीं आ पाती है। लेकिन रेडियो मधुबन का मंच ऐसा है जिसके द्वारा आप अपनी आवाज, आप अपने विचार, आप अपनी बात को सभी तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी नारी शक्ति आज हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो में विराजमान है, जिनका नाम है नीलम शर्मा। आप आबू तलेटी में रहते हैं। आपने पढ़ाई नहीं की है, आपकी उम्र 50 वर्ष की है। शिक्षा का अभाव है जो आज भी आपको खलता है। बाकी आप कढ़ाई बुनाई और मधुर व्यवहार आपका सभी के साथ है और घर बार तो सभी संभालते हैं। और एक नारी शक्ति घर परिवार को कितनी बखूबी संभालती वो आप सभी जानते ही है। तो आइए मिलवाते हैं नीलम जी से। नमस्कार नीलम जी।
1: नमस्ते दीदी,
0: बहुत बहुत स्वागत आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: थैंक यू दीदी।
0: तो नीलम जी, चलिए हम आपके बचपन की तरफ चलते हैं थोड़े समय के लिए। आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता?
1: सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है।
0: सोनीपत हरियाणा?
1: जी हरियाणा।
0: अच्छा जी।
1: उधर मेरा जन्म हुआ था और एक गरीब परिवार से जन्म हुआ था। हम 7 भाई बहन है
0: जी।
1: 3 भाई है, 4 बहने।
0: अच्छा, आपका नंबर कौन सा था?
1: मैं सबसे लास्ट हूँ।
0: क्या बात है, आप तो सबसे छोटे, तो आपके ऊपर इतना लोड नहीं रहा होगा?
1: नहीं, लोड तो नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे मास्टर मारते पीटते बहुत थे बच्चों को।
0: अच्छा।
1: तो मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन भाइयों ने मेरे को भेजा नहीं। कह रहे नहीं नहीं, बहुत मारते हैं, तू मार नहीं सहन कर पाएगी। तो इस कारण से मेरे को स्कूल में भेजा ही नहीं।
0: अच्छा, तो आप कोई भी बहन ने पढ़ाई नहीं की?
1: कोई बहन ने पढ़ाई नहीं,
0: भाइयों ने की।
1: हाँ, भाइयों ने किसी ने 8, किसी ने 10, किसी आगे नहीं।
0: अच्छा, इससे ज्यादा नहीं। तो आपके पढ़ने की इच्छा थी?
1: जी।
0: तो आप कहते हैं ना कि भाई मैं गलती करूंगी तो मुझे मारेंगे, बिना गलती मुझे कैसे मारेंगे, मुझे पढ़ने दो।
1: लेकिन कोशिश तो करी थी, किसी ने मेरा नाम ही नहीं लिखवाया वहाँ पे।
0: अच्छा, पढ़ने की बड़ी इच्छा थी लेकिन नाम नहीं लिखाया और आप पढ़ाई से वंचित रहे।
1: जी।
0: तो आपकी सखी सहेलियां भी रही होगी, वो भी सभी अनपढ़ी थी या उन्होंने पढ़ी की?
1: बस एक ही थी, वो भी कम ही पढ़ी हुई थी, बाकी खेती थी हमारी, तो खेत वगैरह का ही काम था।
0: अच्छा, खेती बाड़ी संभाल देते हैं
1: जी।
0: और आपस में आप सभी भाई बहन कैसे रहते थे?
1: मैं सबसे छोटी थी तो बस एक भाई के साथ में मैं अच्छे से बोल लेती थी, बाकी के साथ में तो चुपी रहती थी।
0: अच्छा, उम्र का ज्यादा गैप था क्या?
1: जो बड़ी बहनें वे सब जब मैं 2 साल की थी उनके साथ हो चुकी थी।
0: अच्छा जी जी। तो एक भाई के साथ आपकी अच्छी बनती थी जो आपसे बड़े थे?
1: हाँ।
0: उनको आप दिल खोल करके बात करते थे?
1: हाँ, उनसे अच्छे से बात।
0: लड़ाई झगड़ा भी होता था कभी? चिटचैट
1: होते थी।
0: होते थे। और बाकी तो भाई बड़े हैं, बहनें बड़ी हैं, तो शादी हुई होगी तो आपके सामने भाभियां भी रही होगी, आपके जीजा भी आए होंगे। तो भाभियों के साथ किस तरह का तालमेल था?
1: बस जो छोटे वाले हैं उनके साथ में थोड़ा अच्छा था, क्योंकि वो मेरे साथ सीखे थे, बाकी बड़ों के साथ में तो ऐसे ही जैसे माँ बाप के सामने रहते हैं।
0: जी जी, उस समय की बात कर रहे हैं जब मर्यादाएं हुआ करती थी, भाभी को भी माँ के समान देखा जाता था।
1: जी।
0: तो ज्यादा ऐसे हंसी मजाक वगैरह नहीं होती थी?
1: नहीं।
0: फिर आपको कोई चीज चाहिए तो आप किसको कहते थे, अपने माता जी को या भाइयों को?
1: मम्मी को बोलती थी।
0: जी जी, चलिए अच्छी बात है। और खेती बाड़ी में आप क्या काम करते थे?
1: खेती बाड़ी में हर प्रकार की खेती होती थी, जैसे भुट्टे वाला मक्का होता और सगरगंदी वगैरह, गेहूं भी होते, धान भी होते, सभी खेती होती थी, सब्जी भी सभी होती है।
0: तो आप क्या करते थे, बोतने का काम करते थे या पानी या केयर करने का, पंछी पक्षी कहीं आपके दाने नहीं खा जाए ऐसे?
1: नहीं, जैसे भाई वगैरह जाते थे तो उनका खाना देने के लिए चले जाते थे, और थोड़ा अपने खेत को चारों तरफ से देखते थे, बाकी तो काम तो कोई और ही करते थे।
0: भाई लोग खेत पर जाते तो आप खाना लेके जाते, बना के आपके भाभियां देती, तो आप किचन में मदद करते थे?
1: जी।
0: अपनी भाभियों की मदद करते थे?
1: जी।
0: अच्छा, और आप सबसे छोटे हैं तो प्यार तो बहुत आपको मिला होगा सभी का?
1: हाँ
0: जी,
1: सभी का बहुत प्यार मिला है।
0: खेती बाड़ी में जाना आपको अच्छा लगता था? आप टिफिन लेके जाते थे, फिर वहाँ खेतों को निहारते थे, और आपको क्या अच्छा लगता है?
1: बस ऐसे जैसे सभी खेतों में होते थे, उनके साथ में ऐसे ही चिट चैट करना, थोड़ा पेड़ पौधों पे चढ़ जाना।
0: अच्छा।
1: ऐसे खेल कूद में
0: पेड़ पौधों पर क्या तोड़ने के लिए, कुछ फ्रूट तोड़ने के लिए?
1: हाँ, जैसे कोई अमरूद तोड़ने के लिए, कभी जामुन तोड़ने के लिए, ऐसे कई बार पेड़ से गिर भी गई थी।
0: अच्छा, वो तो चढ़ेंगे तो गिरेंगे भी है, लेकिन बचपना होता है ना तो गिरने का भी डर नहीं रहता है कि गिरे तो फिर से संभलेंगे और फिर से चढ़ेंगे।
1: वही वही।
0: तो कभी कोई डांटते नहीं थे कि भाई गिर गई हो, लगी है, अब नहीं चढ़ना है?
1: नहीं, डांटते थे लेकिन बचपना था, फिर कर देते थे वही।
0: जी जी जी, वो मजा ही अलग है। भले सब नीचे अपने को मिल जाता है, कि किसी को बोलते तो कोई आपको हाथ में लाके दे देते हैं। हाँ। लेकिन एक चढ़ करके तोड़ के खाने का मजा ही अलग था।
1: वो अलग।
0: और आप क्या क्या काम करते हैं?
1: तो जैसे सिलाई वगैरह करते थे।
0: अच्छा, सिलाई आती थी?
1: हाँ,
0: सिलाई कहाँ से सीखी आपने?
1: सिलाई मैंने घर से ही सीखी थी, और सिलाई वैसे तो कम ही आती थी, लेकिन फिर जैसे ससुराल में चले गए थे उस टाइम के बाद थोड़ी सी कुछ परिस्थिति आई, तो उस टाइम पे थोड़ा सिलाई का।
0: अच्छा, बाद में सीखा, पहले नहीं सीखा था?
1: पहले सीखी थी लेकिन कम ही करते थे।
0: जी, आप सबसे छोटे थे, इतनी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। आपकी भाभियाँ थी, माताजी थे। हाँ। बहनें थी बड़ी। हाँ। तो वो करते होंगे। हाँ। लेकिन आपने वो ध्यान नहीं दिया होगा।
1: हाँ
0: जी जी। और किचन में आप क्या बनाते थे, किस तरह की मदद करते थे अपने मम्मी और भाभी?
1: ऐसे जैसे बर्तन वगैरह धुलाई कर दिए, थोड़ी साफ सफाई में, खाना तो बाकी वही बनाते थे।
0: अच्छा। कभी खाना नहीं बनाया आपने शादी के पहले?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो कभी जैसे कोई घर पर नहीं है, कुछ बनाने का आपको बोल दिया
1: तो बनाते थे?
0: अच्छा, ऐसे ज्ञान था।
1: ऐसे तो बना लेते, रोटी सब्जी सब कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी।
0: जी जी। और आप बता रहे कि आपके सखी एक ही है?
1: हाँ, वो एक ही है।
0: तो आपके मोहल्ले में एक ही?
1: नहीं, और भी थी, लेकिन ज्यादा कर उन्हीं के साथ मैं ज्यादा रहती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ। और उससे पहले एक और भी थी जिसको थोड़ा सांप ने काट लिया था और उनकी डेथ हो गई थी।
0: अच्छा, तो क्या सांप भी निकलते थे क्या आप जा रहते थे वहाँ?
1: पता नहीं, वो जैसे अपने ही घर में कोई पैसे उसने छुपा रखे थे वहाँ पे, तो उनकी मम्मी ने बोला कि कुछ सामान लेके आना है, तो वो वहां से पैसे निकालने लगी, कह लगी पता नहीं मेरे हाथ में कुछ लग गया, तो एक दो घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई।
0: अच्छा, तो फिर कैसे पता चला? वो सांप पकड़ में आया?
1: नहीं, सांप पकड़ में नहीं आया, बस फिर जैसे वो नीली हो गई, जहर चढ़ गया, तो यही लगा कि वहां से पैसे निकाली थी शायद, फिर वहीं पे इसको कुछ
0: काट दिया। ओहो, पता भी नहीं चला और सांप भी पकड़ में नहीं आया। कितने बड़ी होगी और उसकी डेथ हुई इस तरह?
1: नहीं, उसकी डेथ हुई जब वो होगी 16-17 साल तक की।
0: अच्छी बड़ी होकर गई।
1: काफी जी, बड़ी जी।
0: आपको तो उस समय बहुत ऐसा लगा होगा कि जैसे मेरा कोई नहीं लगता है ना?
1: बिल्कुल।
0: सखियों के साथ जितना हम खुल करके बात कर सकते हैं, उतना किसी के सामने नहीं कर सकते।
1: किसी के सामने नहीं कर सकते
0: जी। बिल्कुल। थोड़े हंसी मजाक भी कर लेते हैं। हर प्रकार से हम जैसे चाहे सखियों के साथ रह सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप तीन सखियां थी जी, फिर आप दो ही रह गए?
1: फिर हम दो।
0: तो खेती बाड़ी में आप दोनों साथ में जाते या फिर आप ही जाते?
1: नहीं, साथ साथ में भी चले जाते थे हम। कभी उन्होंने भी जाना होता था जब कह देते ठीक है चलो आज दोनों चलते हैं
0: जी,
1: तो दोनों चले जाते थे। फिर ऐसे थोड़ा जैसे पापा के भाई थे, चाचा हमारे
0: जी,
1: तो उनके साथ में ज्यादा हमारी टकराव ज्यादा रहते थे।
0: अच्छा, क्यों, कारण?
1: बस कुछ ऐसा होता था, जैसे मैं तो जब जन्म लिया था, मैंने एक दो साल की होंगी तभी मेरे पापा की डेथ हो गई थी।
0: अच्छा, तो आपने तो पिताजी को देखा ही नहीं?
1: नहीं, मेरे कोई शक्ल भी याद नहीं है मेरे पापा की
0: जी।
1: तो उसके बाद में फिर जैसे चाचा अम्मा को दबा के रखना चाहते थे
0: जी।
1: एक बार चाचा ने काफी कुछ हमारे साथ में मारपीट की, भाभी का हाथ तोड़ दिया था।
0: भाभी के ऊपर भी हाथ उठा दिया?
1: हाँ, भैया का सिर फोड़ दिया था और हमारी भैंसों को जहर वगैरह भी दे दिया था।
0: रे रे रे। तो भैंसे भी मर गई?
1: सब मर गई थी।
0: फिर आपने पुलिस केस नहीं किया?
1: सब कुछ हुआ था लेकिन मैं तो उस टाइम पे बिल्कुल छोटी थी
0: जी,
1: तो सब कुछ किया था। मेरी मम्मी के भी अंगूठे भी खा लिए थे।
0: अच्छा,
1: उनकी लड़की। हाँ, काफी कुछ हुआ था।
0: चलिए नीलम जी, और भी आपके अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चाहे गीत सुनने का, तो एक गीत सुन करके पुणे लौट रहे हैं, कहीं भी जाइएगा नहीं। नीलम जी के अनुभव और भी बाकी है जो हम बाद में सुनेंगे, पहले सुनेंगे गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नारी केवल रिश्तों की डोर नहीं, नारी केवल रिश्तों की डोर नहीं, आधुनिक युग की मजबूत हकदार है। वो चलती है स्नेह भी लेकर, वो चलती है स्नेह भी लेकर, और हर कदम पर प्रखर प्रहार है, और हर कदम पर प्रखर प्रहार है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में नीलम जी हमारे साथ बने हुए हैं। नीलम जी के काफी अनुभव हमने सुने हैं, और आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। तो नीलम जी, जैसे आप बता रहे थे कि आप साल डेढ़ साल के थे और आपके पिताजी का देहांत हो गया
2: जी।
1: फिर चाचा जी ने बहुत खराब व्यवहार किया, हाथ भी तोड़ दिया आपके भाभी के, आपके मम्मी के हाथ की उंगलियां खा गए, भाई का सिर फोड़ दिया, आपके जो भैंसे थी उनको जहर दे दिया
2: जी।
1: पहले तो ये बताइए कि आपका गांव कितना बड़ा था, शहर था या गांव था?
2: गांव था।
1: गांव था। तो आपके आसपास के लोगों ने या और भी रिश्तेदारों ने कुछ कहा? नहीं
2: नहीं, सभी आए थे, लेकिन जो हो गया तो उसको तो कोई बदल नहीं सकता था उस टाइम पे
1: जी।
2: लेकिन उसके बाद फिर पुलिस केस वगैरह हुए, काफी दिन तक केस चले
1: जी।
2: लेकिन हमारे चाचा का यही रहता था, थोड़ा सा चलते थे, एक केस खत्म हुआ दूसरे के साथ में फिर कर देते थे।
1: आपके साथ ही करते थे
2: और किसी के साथ में भी कर देते थे?
1: अच्छा।
2: लेकिन हमारे साथ में कुछ ज्यादा करते थे।
1: अच्छा, तो वो हर एक के साथ ऐसे झगड़ना करना?
2: हमारे साथ में तो इसी बात पे किया था कि उनका घर नीचे की साइड में था, हमारा ऊपर की साइड में, कह रहे यहाँ से ना पानी नहीं जाने देंगे आपका।
1: अच्छा।
2: जो ढलाव में पानी जाता था, क्योंकि पानी नहीं जाने देंगे, तो कह लगे भी पानी तो यहीं से ही जाएगा
1: जी।
2: तो ऐसे करके उन्होंने हमारा पानी रोक रखा था
1: जी।
2: फिर पड़ोसियों ने आके भाइयों को बोल दिया तुम खोल लो, हम खड़े हैं
1: जी।
2: जैसे उन्होंने उस पानी को खोला तो बस उस टाइम पे फिर मारपीट उन्होंने शुरू कर दी।
1: तो आपके तो चार भाई है, वो तो अकेले चाचा जी थे?
2: नहीं नहीं, उनके भी चार पांच लड़के थे, और उसके पास में और भी कोई आते थे बाहर के भी।
1: बाहर के लोग भी सपोर्ट करते थे?
2: हाँ।
1: तो सबने मिल के मारा? तो उस समय गांव वालों ने कुछ नहीं किया जब उन्होंने कहा कि आप खोलो? तो
2: बस उस टाइम पे देखो, बीच में लड़ाई के बीच में जब मारपीट होती है तो तब कोई नहीं जाता है
1: जी।
2: लेकिन फिर भी कुछ इंसान आगे आके छुड़वाने के लिए आए थे
1: जी,
2: छुड़वाया था। उसके बाद फिर केस वगैरह आगे चले गया
1: जी। तो आपके तो, एक ही चाचा जी है?
2: हाँ, एक ही थे, वो भी चले गए अब तो
1: जी। लेकिन ऐसे वो बहुत उन्होंने,
2: हाँ बहुत कुछ उन्होंने
1: जी
2: किया।
1: तो
2: हाँ।
1: उनके बेटे भी ऐसा ही करते थे जैसे चाचा कहते वैसे ही करते थे उनके बेटे? हाँ। या वो थोड़े अक्कल वाले थे?
2: बस एक ही उनका अच्छा था, जो नहीं मानता था, वो अपनी पत्नी को लेके कहीं बाहर चला गया था, कैसे ना कैसे करके उन्होंने खत्म करवा दिया।
1: बेटे को ही खत्म करवा दिया?
2: उनको भी खत्म करवा दिया था।
1: अच्छा, ये तो बड़े खतरनाक बात है। तो आपके
2: फिर जैसे उनकी बहू को भी एक बेटा था, उन्होंने अपने घर पे जन्म दिया, वहीं पे पाला, कम से कम 10-12 साल का हो गया, वो वहीं पे बैठी थी कि भाई मेरे को ले जाएं, लेकिन कोई इसको लेने नहीं जा रहा था। तो फिर जैसे थोड़ा सा वो बड़ा हो गया था, बड़ा होने के बाद उसको खोस लिया, लड़के को भी
1: खुद ले गए, लड़के को ले गए?
2: लड़के को भी उन्होंने खोस लिया।
1: क्यों, लड़के को क्यों ले गए भाई? आपने तो माता पिता को चाहा ही नहीं, फिर लड़के को कैसे ले जा सकते? उन्होंने केस नहीं किया?
2: बस वो बहू भी थोड़ी गरीब घर की थी, तो ज्यादा कुछ नहीं उसने किया, बस इंतजार ही किया। लेकिन लास्ट में सुनाई में आई है कि वो आ गई थी वहीं पे ही, अपने बेटे के पास में ही आ गई थी।
1: अच्छा, बेटा तो छोटा था, फिर पालन पोषण कौन करता है?
2: उस टाइम तो पे दादा दादी जिंदे थे तो उन्होंने ही किया।
1: फिर वो बहू को ले आए?
2: नहीं, वो नहीं लेके आए। जब जैसे धीरे धीरे वो बड़ा हुआ तो थोड़ा सा हमारे चाचा जी चले गए, फिर उसके अंदर में थोड़ी हिम्मत आ गई कि मैं अब जाके अपना हक लूं, मेरा बच्चा है मैं उससे मिलूं, तो ऐसे करके फिर वो लास्ट में उधर आ गई थी।
1: अच्छा, फिर तो बेटा ने भी माँ को
2: हाँ
1: रखा। तो उनके साथ तो फिर अच्छे रहे, वो उनके भी चाचा चाची हो गए ना?
2: हाँ उनके भी चाचा चाची थे, लेकिन उस टाइम पे थोड़े सही रहे, लेकिन हमारे साथ में बाकी कुल मिला के अच्छा नहीं रहा था।
1: तो ये कितने साल आपके चला था?
2: ये कम से कम चला होगा 15-20 साल।
1: 15-20 साल बहुत लंबे होते हैं। आपके पिताजी की डेथ के बाद ही वो झगड़ते या पहले से झगड़ते आए?
2: डेथ के बाद ही।
1: अच्छा, बाकी आपके पिताजी का रुतबा था?
2: हाँ, बाकी उस टाइम पे कुछ नहीं कहते थे।
1: तो बाद में उनको क्या सूझा, क्यों वो आड़ाई पर आ गए?
2: पता नहीं उनका क्या दिमाग में आ जाती थी, जैसे खेत में अच्छा कुछ हो जाता था उनके जैसे, तो पैसा आने के बाद उनके अंदर में एक अजीब सी फीलिंग हो जाती थी।
1: पैसा कहाँ से आता उनका?
2: वो जो खेत में जाते थे ना
1: जी,
2: तो खेत से उनके पैसा आता था।
1: तो आपके शामिल तो नहीं था, अलग अलग था?
2: अलग अलग था।
1: अच्छा, तो वो पैसे को ऐसे बर्बाद करते थे?
2: बर्बाद कर देते थे।
1: तो बेटे कुछ नहीं कहते कि घर में पैसे नहीं है और आप झगड़ा?
2: बेटे भी उनके साथ में थे।
1: अच्छा, इसलिए वो सब ऐसा ही करते थे। तो कभी पुलिस तक वो पहुंचे? जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत जनों के साथ झगड़ते थे, तो कभी उनको अरेस्ट भी किया नहीं?
2: हाँ, अरेस्ट भी किया था उनको, लेकिन वही बात है, फिर आगे भी क्या होता है, पैसा वगैरह भर देते हैं और छूट जाते हैं।
1: जी जी जी हाँ।
2: तो केस तो काफी साल चला भी था
1: जी,
2: लेकिन फिर हो कुछ नहीं पाया, पैसा भर दिया गया और वे छूट गए।
1: जी जी जी। अभी कैसा है? अभी जैसे चाचा जी तो नहीं है आपके, उनके लड़के हैं, तो वो सब आते जाते हैं परिवार में?
2: नहीं, आते जाते नहीं है।
1: पर अभी तो झगड़ा खत्म हो गया या अभी तक भी ऐसा ही है?
2: नहीं, झगड़ा तो खत्म हो गया है, लेकिन आते जाते नहीं है। किसी ने कभी बोलना हो तो बोल भी लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं है।
1: वो तो फिर रख के भी क्या करेंगे? हाँ। जब कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, इतना नुकसान पहुंचा चुके हैं। हाँ। कितनी भैंसे मरी होगी उस समय?
2: पांच।
1: पांच भैंस? अब उनको मारने से उनको क्या मिला?
2: अब क्या बताएं, ये सोच रहे थे ना भाई, अब ये कहीं कहीं से पैसा इनका नुकसान हो जाएगा, कहाँ से लगाएंगे केस में, इस प्रकार से मतलब उन्होंने सोच के ऐसा।
1: जी जी जी। और झूठ भी बोल दिया होगा, क्योंकि डायरेक्ट तो मारेंगे नहीं।
2: हाँ नहीं, ऐसे देखो देखा नहीं कुछ वो करते हुए, लेकिन जैसे ऐसे कभी किसी के साथ में हुआ नहीं भाई, सभी भैंस एकदम से ऐसे मर गई हैं और फट भी गई हैं जैसे।
1: अच्छा, ओहो, वो जहर इतना खतरनाक था। चलिए, आपके बचपन की बातें चल रही है, आप तो साल डेढ़ साल के थे तो आपको कुछ पता नहीं। जब आप संभले तो आपके पिताजी तो नहीं थे, आपके माताजी ने आपको शिक्षा संस्कार दी होगी?
2: जी।
1: तो उस समय आपके माताजी के साथ सब अच्छे रहते थे, भाई भाभी आपके सभी?
2: हाँ, सभी अच्छे रहते थे।
1: जी, तो आपको विशेष करके उस समय क्या आपको सीखने को मिलता, क्योंकि आप सबसे छोटे हैं, तो काफी मर्यादाओं में आप रहे होंगे, बड़ों के सामने नहीं बोलना या विशेष डिमांड नहीं करना। पिताजी ने होने से भी बहुत सारी चीजें ऐसे लगता है ना कि माताजी दे नहीं पाएंगे, तो अपने मन को मारते थे या फिर आपको मिल जाता था जो चाहते थे वो?
2: नहीं, बस किसी बड़ी चीज की तैसी में डिमांड नहीं करती थी, क्योंकि हमने पता था अपने घर का हालात कैसे हैं।
1: जी।
2: लेकिन कोई भी ऐसी छोटी मोटी कोई सूट है, कोई भी चीज है ऐसी मेरी, तो मम्मी को बोल देती थी, दिला देती थी।
1: अच्छा, मम्मी दिलाते?
2: भाई भी कोई ऐसे वो नहीं करते थे, सब अच्छे थे।
1: जी जी। और आपके तो बड़ी बहनें भी थी?
2: हाँ, बड़ी बहनें।
1: तो बहनों से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा?
2: बस बहनें तकरीबन ससुराल में ही चली गई थी।
1: जी।
2: तो कई बार बहनों के पास में जाना हुआ, जैसे उनके छोटे छोटे बच्चे थे इस टाइम पे।
1: जी।
2: तो कई बार चली जाती थी, काफी काफी दिन उधर रुक आती थी। वहां का भी उनका सबका प्यार बहुत अच्छा रहता था, क्योंकि सबसे छोटी थी तो सबका ही लगाव था मेरे साथ में।
1: जी जी जी। और जैसे आप बड़े हुए, आपने दुनिया देखना शुरू किया, तब आपके चाचा चाची आपको बुलाते थे या बिल्कुल बेटियों से भी बात नहीं करते थे?
2: नहीं, वो बात नहीं करते थे।
1: अच्छा, और उनके बेटों बेटियों से भी बात नहीं करना?
2: नहीं, कभी कभी कभार हो भी जाती थी, लेकिन वो बात नहीं थी कि उनके घर जाके बैठना।
1: हाँ,
2: करना।
1: हाँ, वो कुछ नहीं था।
2: हाँ, ऐसा नहीं था।
1: जी जी जी।
2: बस निकलते राम रमी हो जाती थी।
1: जी जी,
2: बस इतना ही।
1: अच्छा, और आपको क्या शौक रहा?
2: सिलाई का भी शौक था मेरे को और पढ़ाई का भी शौक था। सिलाई का तो फिर भी कुछ हद तक मैंने पूरा किया, लेकिन पढ़ाई का नहीं हो पाया।
1: तो जैसे घर में बैठ के भी तो आप पढ़ सकते थे, कभी ये नहीं सोचा कि मैं घर पर बैठ कर भी अपना साइन करना है, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना सीखूं?
2: नहीं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। भाभी भी मेरी कोई सी पढ़ी लिखी नहीं है और बहन भी पढ़ी लिखी नहीं है।
1: अच्छा,
2: भाई पढ़े लिखे थे
1: जी जी
2: तो भाइयों ने भी कुछ फिर आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की।
1: जी जी सभी उन्हीं उलझन में उलझे हुए थे।
2: जो मेरा छोटा वाला भाई था मास्टर, उसको इतना मार देते थे, वो चक्कर खा के बेहोश होकर गिर जाता था।
1: टीचर इतना मारते थे?
2: इतना मारते थे, तो इसीलिए वो कहता था देख मैं इतना, मेरे को मार देते तू तो इतना सहन भी नहीं कर पाएगी।
1: तो इतना क्यों मारते
2: पता नहीं, क्या पहले के क्यों करते थे ऐसा। अभी तो
1: भाई बच्चे गलती करे तो उनको भाई समझाओ मारो, लेके ऐसे मारते थे कि चक्कर भी आ जाए।
2: हाँ, चक्कर खा के बेहोश हो जाता था।
1: ओ, तो फिर सुन करके तो दूसरे तो घबराएंगे ना। तो फिर कभी कंप्लेन नहीं की कि आप क्यों इतना मारते हो?
2: बस ऐसे कंप्लेन वगैरह का नहीं था उस टाइम पे इतना कुछ।
1: अच्छा,
2: इतना कुछ नहीं था, बस काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ।
1: चलो, अब उसका तो कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि समय बीत चुका है। तो नीलम जी आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर से समय हो चला है गीत सुनने का। तो ये गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: Jis ghar mein betiyan muskura de, jis ghar mein betiyan muskura de, wo ghar mandir ho jata hai. Uske aanchal ki thandi chhaya mein har dukh chhota ho jata hai. Uske aanchal ki thandi chhaya mein har dukh छोटा हो जाता है. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में नीलम जी हमारे साथ बने हुए हैं. नीलम जी, आपके काफी अनुभव हमने सुने हैं. अब इतना सा हम पूछना चाहेंगे कि आपके शादी कितने साल के थे और हुई, और शादी के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया?
2: जब मैं होंगी 24 साल के करीब तब मेरी शादी हुई थी
1: जी.
2: तो अगले ससुराल में भी 6 भाई थे, 2 ननद थी
1: जी,
2: ससुर नहीं थे, सास थी
1: जी.
2: सभी परिवार अच्छा था. और लेकिन जैसे जैसे ससुराल में रहे, सभी के साथ में अच्छे से रहे.
1: आपका ससुराल में कौन सा नंबर आता है?
2: ससुराल में मेरा 3रा नंबर आता है.
1: अच्छा अच्छा. गांव से कितना दूर था?
2: गांव से काफी दूर था. गांव से?
1: अच्छा, काफी दूर.
2: हाँ.
1: क्या नाम है आपके ससुराल के गांव का?
2: लेकिन है सोनीपत के उसमें मुरथल.
1: मतलब मुरथल में आपकी शादी हुई. तो ये एक गांव है, कस्बा है, कैसा है?
2: सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ही लगता है.
1: मतलब गांव है या कस्बा है, शहर है?
2: शहर में ही लगता है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के नजदीक है, बिल्कुल लगता ही है.
1: जी जी. तो यहाँ पर भी बड़ा परिवार, सभी साथ में रहते थे?
2: साथ में रहते थे. दो जो बड़े जेठ थे वे बाहर गए हुए थे.
1: अच्छा, वो बाहर रहते थे?
2: वो बाहर रहते थे.
1: अच्छा, और आप लोग गांव में रहते थे?
2: हम गांव में रहते थे.
1: तो आपके हस्बैंड क्या काम करते थे?
2: इनका अपना काम था, बस थोड़े दिन रहे थे गांव में, फिर इनका अपना काम था. हम दिल्ली आ गए थे, इनका फ्रूट का काम था. हिमाचल से फ्रूट लेके आते थे और आड़त की दुकान पे सप्लाई करते थे.
1: होलसेल का?
2: होलसेल का
1: जी. तो फिर आप कितने समय ससुराल रह करके हिमाचल चले गए?
2: बस दो साल के करीब रहे होंगे.
1: अच्छा, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आए? ससुराल में आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपको मिलता था?
2: हाँ, ठीक था, सब अच्छा था
1: जी. और ससुराल वाले भी, सास ससुर सभी अच्छे थे?
2: सभी अच्छे थे.
1: जेठ जेठानी देवर देवरानी
2: सभी अच्छे थे
1: जी. जी, तो दो साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला होगा
2: जी.
1: फिर उसके बाद आप हिमाचल चले गए, तो वहां पर आपको बहुत ही अकेलापन लगा होगा, क्योंकि बड़े परिवार से आप निकले.
2: नहीं, हिमाचल ऐसे बीच बीच में जाते थे, बाकी दिल्ली आ गए थे हम.
1: अच्छा.
2: हाँ,
1: फिर दिल्ली? तो दिल्ली आप अकेले रहते होंगे?
2: दिल्ली अकेले नहीं, साथ में रहते. हाँ, हस्बैंड के साथ में.
1: हाँ, वही आप. हाँ, और आपके हस्बैंड. हाँ. तो इधर तो इतना बड़ा परिवार, उधर आप दोनों जने, तो आपको बहुत ही ऐसे अकेलापन महसूस हुआ होगा.
2: ये तो है.
1: तो पूरे दिन आप क्या करते हैं? आपके हस्बैंड बिजनेस पर चले जाते हैं फिर?
2: वो करीब 10 बजे सी बज जाते थे, उसके बाद घर का काम करना, कपड़े धुलाई, साफ सफाई, इसी में लगे रहते थे. और उसी टाइम पे था
1: बेटे का जन्म भी हुआ.
2: जन्म हुआ उसी टाइम पे, समय से सत्संग में जाने लग गई थी.
1: अच्छा, आप गर्भवती थे तब से आपको सत्संग मिल गया?
2: जी.
1: तो आप सत्संग में जाते थे
2: जी,
1: दिल्ली में
2: जी.
1: तो आप एक छोटे से गांव से बड़े शहर में आए, आपको पहले तो बड़ा अजीब लगा होगा कि ये मैं कहाँ आ गई. एक तो गांवों में तो मिलना जुलना चालू रहता है.
2: बिल्कुल.
1: अब शहरों में सब व्यस्त होते हैं.
2: हाँ,
1: तो कैसे आप समय व्यतीत करते थे? आपको ऐसा लगता होगा ना कि मैं किससे बात करूं?
2: नहीं, जिसके हम किराए पर रहते थे वो दीदी बहुत अच्छे थे
1: जी.
2: बहुत प्यार से रहते थे, ऐसे रहते थे जैसे अपने घर की तरह से. खाना भी मेरे पास ही आके खाते थे और अच्छे मिलजुल कर रहते थे बहुत अच्छी तरह से.
1: जी जी.
2: उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया.
1: अच्छा.
2: हाँ, अच्छे से रहते थे.
1: तो आप कितने साल वहाँ?
2: वहाँ मैं 4 साल के करीब.
1: दिल्ली में?
2: दिल्ली.
1: फिर 4 साल बाद?
2: फिर 4 साल बाद जैसे इधर भी आए थे एक बार.
1: आबू?
2: आबू भी
1: जी.
2: तो पूरे परिवार के साथ में आए थे, बेटा भी और उनके पापा भी
1: जी.
2: तो उस टाइम पे ये इससे जुड़ चुके थे, इस सत्संग से.
1: जी जी.
2: तो फिर जैसे यहाँ आए उसके बाद, फिर वो जाने के बाद थोड़े से ऐसे सत्संग में जाते थे, उनको पसंद नहीं आता था कि भाई कहते थे नहीं ये कुछ नहीं है, ढोंग होता है, ये होता है।
1: अच्छा हाँ। फिर आबू आने के बाद आप अपने ससुराल गए?
2: नहीं ससुराल नहीं गए, हाँ फिर एक बार यहाँ से आके फिर एक बार वापसी चले गए थे।
1: हाँ तो आप अपने गांव ही गए होंगे ना आपके
2: हाँ,
1: ससुराल।
2: हाँ
1: तो वहाँ पर फिर सभी ने कहा कि इस सत्संग में नहीं जाना है, तो फिर क्या किया आपने?
2: तो फिर ऐसे करके इनकी तबीयत खराब हो गई, ये दौर चलते चलते तबीयत खराब होने के बाद ये एक दो साल बीमार रहे, और फिर इनको अचानक ही उल्टी दस्त वगैरह हो उनकी, उस टाइम पे फिर डेथ हो गई।
1: तो इलाज नहीं करवाया?
2: हाँ हॉस्पिटल में ही थे उस टाइम पे जिस टाइम पे डेथ हुई, तो इलाज ही अच्छा। चल रहा था लेकिन कुछ नहीं हो पाया।
1: अच्छा बेटा कितना बड़ा था उस समय?
2: 4 साल का।
1: 4 साल का ही था? आपके ससुराल में ही ये हादसा हुआ?
2: नहीं ये हादसा हुआ करनाल में।
1: करनाल आ गए थे रहने
2: जो हॉस्पिटल में?
1: नहीं वो तो है लेकिन रहते थे आप अपने ही घर में, ससुराल में ही रहते थे?
2: नहीं करनाल में ही रहते थे।
1: अच्छा करनाल में क्या बिजनेस था आपका?
2: नहीं फिर उन्होंने दिल्ली से जब बीमार हो गए थे तो कहने लगे भाई मैं थोड़ा सा ऐसे एरिया में रहना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आ गए थे थोड़ा खुला खुला से उसमें।
1: अच्छा करनाल आ गए रहने और फिर यहीं पर यह तकलीफ शुरू हो गई?
2: जी।
1: और यहीं पर डेथ हो गई? तो फिर क्या किया आपने? आप अपने ससुराल जाकर रहे या फिर सीधे आबू आए रहने?
2: नहीं ससुराल तो नहीं गई, थोड़े ही जैसे उनकी डेथ के बाद जो जेठ थे उनके थोड़े से मेरे प्रति गलत संकल्प हो गए थे
1: जी,
2: तो थोड़ा जिठानी के दिल दिमाग में ऐसा हो गया भाई मेरा घर उजड़ जाएगा ये हो जाएगा
1: जी,
2: तो मैंने उसको बोला कि दीदी आप चिंता ना करें, मैं ऐसा कभी सुन नहीं सकती जो आप सोच रहे हैं
1: जी,
2: तो ऐसा कभी नहीं होएगा। तो फिर मैं बेटे को उधर से लेके और मैं कहीं बाहर आ गई, रेवाड़ी आ गई मैं।
1: रेवाड़ी क्या है?
2: बस ऐसे ही आ गई, रेवाड़ी की जान पहचान थी उधर, तो उनके उधर आके मैं किराए पर रहने लग गई।
1: 4 साल के बच्चे को लेके उस समय आपके सास ससुर नहीं थे?
2: नहीं ससुर तो पहले ही नहीं था, सास थी
1: जी। तो आपके सास ने कुछ नहीं कहा कि तू अकेली कहाँ जाएगी रहने, तू यही घर में रह?
2: नहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा उस टाइम पे।
1: तो फिर रेवाड़ी में आकर
2: उन्होंने और उल्टा इल्जाम मेरे ऊपर ही लगा दिया कि तेरे वजह से ये हो गया वो हो गया, तो फिर इसीलिए मैंने वहां पर रहना फिर अच्छा नहीं समझा
1: जी। तो रेवाड़ी तो कोई नहीं था, आप अपने पियर जा सकते थे?
2: देखो पियर में भी अब मैं सबसे छोटी थी और सबको ये हो जाता, मम्मी मेरी डेथ हो गई थी।
1: अच्छा जी जी जी हाँ, तो भाई भाभी है तो फिर अपना अधिकार इतना नहीं रहता।
2: हाँ फिर सभी को ये रहता उसके पास रहे उसके पास रहे, तो ये चीजें मैं फिर मैं उधर मैंने किसी को परेशान नहीं किया
1: जी। बहुत अच्छा किया। फिर रेवाड़ी में आपने क्या किया?
2: मैंने वहाँ पे आके सिलाई शुरू की।
1: अच्छा तो पहले सिलाई सीखी होगी आपने?
2: नहीं सिलाई मैं पहले से थोड़ी सीख रही थी ना, तो वहाँ पे मैं रेडीमेड जैसे साड़ी के नीचे वाले पेटीकोट होते हैं वो मैं रेडीमेड सिलती थी।
1: अच्छा।
2: और बच्चे को पढ़ाती थी।
1: तो गुजारा चल जाता था?
2: बस चल जाता था
1: जी जी। तो चलिए नीलम जी के अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन फिर से समय हो चला है एक गीत सुनने का, तो एक ब्रेक लेंगे उसके बाद पुनः लौटेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। नारी को कमजोर कहने वालों, हिम्मत करो, पहले उसे समझो तो सही। नारी को कमजोर कहने वालों, हिम्मत करो, पहले उसे समझो तो सही। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में नीलम जी हमारे साथ है। नीलम जी के काफी अनुभव सुने हैं, और आइए और भी हम सुनेंगे। नीलम जी, जैसे आप बता रहे थे कि आपके हस्बैंड की डेथ के बाद आप रेवाड़ी चले गए रहने के लिए, 4 साल के बच्चे को लेकर। उस समय आपके पास कोई काम धंधा नहीं था, क्या करेंगे क्या नहीं कुछ पता नहीं था। फिर वहां आकर के आपने सिलाई शुरू की, फिर कैसे आप आगे बढ़े, और वहां पर किसी का सपोर्ट मिलता था?
3: नहीं, जैसे कुछ मेरे को इंश्योरेंस था इनका, तो वो पैसा मिला था, उधर ही मैंने घर ले लिया था।
2: अच्छा।
3: और बस ऐसे सिलाई वगैरह करती रही, थोड़ा किराए पे भी मैंने दे दिया था उधर।
2: अच्छा, घर रेवाड़ी में खरीदा आपने?
3: जी।
2: तो आपको घर में से तो कुछ नहीं मिला हिस्सा?
3: नहीं मिला, उधर से तो कुछ नहीं मिला था, इंश्योरेंस था, मैं वहां से कुछ नहीं लेके आई।
2: अच्छा अच्छा, हाँ वो इंश्योरेंस था जो उससे आपका बच्चे हाँ, का भी गुजारा हाँ। और आपका मतलब घर भी खरीद सके।
3: हाँ।
2: तो ये अच्छा किया कि कम से कम अपना घर होगा तो कोई निकालने वाला तो नहीं मिलेगा। फिर आप आबू तलेटी कैसे आए?
3: जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी रही, तो मैंने बस ये ठान लिया, भगवान भी कहते हैं कि लास्ट में इधर ही आना है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अभी से ही अपने जाने की तैयारी करूं। बीच बीच में इधर मैं माउंट आबू में आती रहती थी,
2: तो ये अच्छा लग गया आपको?
3: अच्छा लगता था जब अपने बहन भाइयों का इतना प्यार, इतना स्नेह से मिलन देखते थे, बाबा का प्यार, तो फिर मैंने ठान लिया कि अब मैं यहाँ से अब रोड चली जाऊंगी।
2: बच्चा कितना बड़ा था और आप इधर आए?
3: अब तो बड़ा हो गया था बच्चा, काफी 17-18 साल का हो गया।
2: और आपको इधर आए हुए कितना समय हो गया?
3: 5-6 साल हो गए।
2: 5-6 साल हो गए, तो अच्छा लग रहा है आपको?
3: हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान के प्यार में, सभी भाई बहनों के स्नेह में, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
2: जी, कहते हैं ना कि आपके 4 साल का बच्चा था और आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, बहुत जने दूसरी शादी कर लेते हैं, आपने कभी सोचा नहीं?
3: नहीं, लेकिन देखो परिस्थितियों को देखते हुए देख रहे थे, और फिर थोड़ा सा सत्संग की तरफ भी थे
2: जी,
3: तो इसी कारण से फिर समझा के ठीक है, जो भी हमारी किस्मत में था वो मिल गया है, अब भगवान में जुड़ गए तो फिर दूसरी तरफ नहीं देखा।
2: जी जी, बिल्कुल आपने सोचा ही नहीं, क्योंकि आप सत्संग में शुरू से जाते थे इसलिए।
3: जी,
2: चलिए बहुत अच्छा। और बच्चे को कहाँ तक पढ़ाया आपने?
3: बच्चे ने 10 की थी बस, उससे आ गया, इसका दिमाग नहीं चला, बाकी ये और काम हर काम कर लेता है, इससे कोई काम भी नहीं छूटा। शायद ऐसा महसूस होता जैसे पिछले जन्मों का कोई इंजीनियर है।
2: अच्छा।
3: इससे कोई काम नहीं छूटा, हर काम को कर लेता ये।
2: चलिए बहुत बढ़िया। और आपके ससुराल जाते हैं आप?
3: नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाती हूँ, न

0: जी अच्छा चल रहा था।
1: और फिर आपके रेवाड़ी में घर उसका क्या किया?
0: नहीं, उसको बेच के हमने इधर ही ले लिया था।
1: अच्छा, इधर खरीद लिया।
0: हाँ
1: चलिए, बहुत अच्छा है। और नीलम जी, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जो हमारी बहनें सुन रही है उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखो, यही कहना चाहते कि अब खुद ही हम करेंगे तभी हमें सुख मिलेगा, दूसरों के ऊपर जिएंगे तो दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है।
1: जी जी जी, तो आपके कहने का मतलब यह है कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए।
0: जी,
1: तो बहुत अच्छा संदेश दिया है नीलम जी ने कि आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। दूसरों पर डिपेंड रहेंगे तो दुखी होंगे और आत्मनिर्भर बन के रहेंगे तो सुखी होंगे। बहुत ही सही मैसेज आपने दिया है, क्योंकि आपने भी सिलाई के द्वारा अपने बच्चे की पालना की है और स्वयं का भी किया है। तो नीलम जी के हिम्मत को दाद देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, जो आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन के अनुभव शेयर किए सभी के साथ, इसके लिए
0: थैंक यू दीदी, थैंक यू।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में नीलम जी शर्मा हमारे साथ बने हुए थे। आपकी उम्र 50 वर्ष की, आप हरियाणा से थे, लेकिन अभी 6-7 वर्षों से आप आबू तलेटी में रहते हैं और आपके जीवन के अनुभव हम सभी ने सुने हैं, कितने गहरे हैं। कम उम्र में आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और आपने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन सिलाई के द्वारा आपने 4 साल के बच्चे की परवरिश की, घर चलाया। उस समय आप किराए पर रहते थे, धीरे धीरे आपने घर भी खरीदा, बच्चे को भी काबिल बनाया और इस तरह आप अपने घर की गाड़ी को आज भी अच्छी तरह चला रहे हैं। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया, और अपना भाषा में कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में जिस गाँव और जिस अंचल में पले बड़े वो गाँव और अंचल कभी नहीं भूल पाते हैं। कहीं भी रहे तो अपना गाँव याद आता है, क्योंकि गांव को स्वर्ग कहते हैं। बोले कुछ भी रुखा सुखा हो फिर भी अपना गांव अपना लगता है। तो इस कार्यक्रम को लेकर जब हम हर जगह जाते हर वर्ग से मिलते तो हमें खुशी मिलता है, क्योंकि सरकार का जो मंच है आसपास का गतिविधि सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन मिला हुआ है। तो इस अंचल का गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए हम हमेशा इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं और सभी वर्ग से रूबरू कराते हैं, क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक गतिविधि सामुदायिक तक पहुँचे ये हमारा मंशा है। और हर एपिसोड की तरह आज का एपिसोड में हम पर्यावरण के बारे में बात करेंगे, और पर्यावरण में फास्ट सब्जेक्ट है, विशाल विषय है, जितना भी ले कम ही होगा और हम उसी में रहते हैं और उससे हम लाभ लेते हैं। कभी कभी क्षति कर देते हैं जिसका चलते हमें क्षति सहन करना पड़ता है, क्योंकि हम जैसे देंगे उस तरह हमें मिलता है। तो हमारा ऊपर निर्भर करता है हमारा प्रकृति। तो प्रकृति का बात करते हुए एनवायरमेंट का बात करते हुए आज हमारा साथ हर एपिसोड की तरफ आज भी श्रीमान गोपाल राम पुरे जी उपस्थित है, जो कि पर्यावरण के ऊपर में बहुत कुछ जाना है और रिसर्च कर रहे हैं, अभी भी करते रह रहे, पढ़ाई कर रहे हैं और कराते रहते हैं। तो उनको स्वागत करते हैं। श्रीमान जी आपको स्वागत करते रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। तो आप अपना परिचय इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दीजिए, ऐसे तो हर एपिसोड में आपका इंट्रोडक्शन हमारा इंट्रोडक्शन चलता ही है, फिर भी आज का कार्यक्रम को लेकर जब आए तो आज का विषय क्या रहेगा और क्या फायदा होगा?
1: सर नमस्कार। सर आपके द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले रेडियो मधुबन के इस कार्यक्रम में मैं पुनः आपके साथ उपस्थित हूँ, जिसमें किस प्रकार से हमारे वातावरण में चेंजेज हो रहे हैं, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन बहुत बड़े एरिया से संबंध रखता है। और जहाँ जलवायु का मतलब है वह है सामान्य तौर पर अगर हम सभी समझें तो 100 वर्षों के मौसम का, वार्षिक मौसम का जो औसत है सामान्य तौर पर 100 वर्षों तक का, उसको हम जलवायु कह सकते हैं। क्योंकि जो मौसमी परिवर्तन है, जैसे ऋतु चक्र, ऋतु में परिवर्तन है, सर्दी गर्मी बरसात, एक वर्ष का, ये एक वर्ष का हुआ, इस तरह से लगभग 100 वर्ष की जो स्थिति है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है उसको हम जलवायु कह करके, उसमें जो चेंज हो रहे हैं ड्रास्टिक, उसको हम जलवायु परिवर्तन से जानते हैं।
0: शुरू से अभी तक,
1: हाँ, लगभग 100 वर्षों तक का औसत जी वो जलवायु परिवर्तन के अंदर आता है। बाकी जो दैनिक रूप से होता है वो तो मौसमी परिवर्तन है, दैनिक परिवर्तन है, वार्षिक परिवर्तन है, वो नहीं। 100 वर्षों तक की सामान्य स्थिति जो मौसम की रहती है उसको हम जलवायु कहते हैं, और उसमें जो चेंज होता है वो जलवायु परिवर्तन है। और वो धीरे धीरे, जैसे 100 वर्ष का, तो वो धीरे धीरे किस तरह से जो वातावरण की जो अवस्था है, जिसमें तापमान है, वर्षा का मात्रा है, इन सब में लेकर के जो प्रकृति पर असर होता है वो जलवायु परिवर्तन है।
0: बहुत अच्छा बात बताए, जलवायु मतलब हम ऐसे सोचे थे, लेकिन
1: सर यही बात सर समझाना चाह रहे हैं आपके साथ में। हमने कक्षाओं तक जाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर दिक्कत एक दूसरी आई कि उन बच्चों में वो समझ लाने का जो प्रयास हो रहा है, सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन वो चीज उन बच्चों तक जा पा रही है नहीं जा पा रही है, वो आपके साथ रह करके हमने देखा। और जब कक्षा कक्ष में हम जाते हैं तो उनके समझ के लेवल को पता करना चाहते हैं, वो बच्चा उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता तो फिर हम उस पर ज्यादा बातचीत कर ही नहीं पाते,
0: ठीक है,
1: वो अपने को रुकना पड़ता है।
0: वो भी परिवर्तन हो चुके हैं भाई,
1: वो भी परिवर्तन हो गया है। तो बच्चे बहुत अच्छे रिसेप्टर होते थे।
0: आपका एज कितना है?
1: सर मेरा है 63।
0: जी, और 63 में जब आप 11 क्लास में पढ़ रहे थे
1: जी, सर उस समय बहुत उत्साह
0: परिवर्तन बाद स्टूडेंट का जो उस समय का स्थिति आप कैसे था और आज का स्टूडेंट का हम देख रहे हैं
1: जी बिल्कुल। कक्षा कक्ष में आपकी अपेक्षाओं के साथ में मैंने भी आपसे निवेदन किया, आपने भी मुझे सहयोग किया, हम कक्षा कक्ष में गए, विभिन्न परिवेश की कक्षाओं में गए,
0: पर वो भी परिवर्तन हो चुका,
1: वो भी
0: हम जैसे थे उस तरफ नहीं।
1: हमने ये मैंने ये सोचा था उसमें सर कि हम वहाँ जा करके वो बच्चे कुछ बोलेंगे तो हम वो करके बैलेंस कर पाएंगे, लेकिन वास्तव में 3 दिन का आपका हमारा ऐसा अनुभव रहा, ये मतलब रूबरू अनुभव, कि जब बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा फिर उनको अपन क्या कुछ कहते रहे वो उनके ऊपर से निकलेगा,
0: तो फिर परिवर्तन
1: वो सर बड़ा ही सर उनके रिसेप्टर्स बहुत अच्छे।
0: 5 साल का पहले का जो
2: और आज का मतलब थोड़ा अंतर होगा ना
1: जी सर, बिल्कुल
2: सोचो वो दिन और आज दिन हम चाहते हम जैसे थे कि बच्चे वैसे रहे, हो नहीं पाएगा
1: सर। वास्तव में बच्चे या तो बहुआयामी हो गए हैं क्योंकि ब्रेन तो वही है, तो या तो उनका ध्यान भटक रहा है या उनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए हो सकता है वो इसको कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाए, ये मेरे लिए आज का भी आश्चर्य था। तो जब बच्चा समझे नहीं तो हम फिर उनको समझाने का ज्यादा प्रयास करें, इसका भी कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ
2: अपना ठीक है
1: नहीं। पर प्रैक्टिकली ये एक तरह से रिसर्च हो गया कि बच्चों में अगर कोई बात ले जा रही है सर, तो आपने ही मेरे से बात की थी कि सारा नॉलेज है उन पर, वो ले तब तक तो देना ठीक है, जब वो ले ही नहीं पा रहे हैं फिर
2: देने से कोई फायदा नहीं।
1: तो कई बार अपन कहते हैं ना
2: बीज में जाकर पहाड़ी में
1: ऐसे ही लगा देंगे तो उसका तो कोई मतलब नहीं हुआ ना
2: बीज का भल्लू,
1: तो इसलिए ये बहुत बड़ा अनुभव, बहुत बड़ा अनुभव हुआ। तो सर पहले सर वो जो समय था उसमें नदियों में पानी बहता था, हम नदियों में नहाने जाया करते थे, हम पैदल चला करते थे सर, मैं स्वयं रोज 13 किलोमीटर दूर पैदल पढ़ करके वापस आता था घर पे, तो रोज की 26 किलोमीटर की पैदल यात्रा में पढ़ाई होती थी सामान्य तौर पे सभी की, जो बच्चा 11वीं में आ गया 12वीं में आ गया महाविद्यालय लेवल तक जाने के उनको पैदल जाना पड़ा, हमको 10-12 किलोमीटर साइकिल से भी जाना। तो सर वो जो उसमें बॉडी की जो स्ट्रेंथ थी वो भी अच्छी थी, लगन भी बहुत अच्छी थी, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा ही ये भी एक परिवर्तन ही है, बच्चा चलना नहीं चाहता सर, जब हम कहते हैं इसको 2 किलोमीटर चलना है तो वो पैदल चलना नहीं चाहेगा आज की तारीख में, तो ये थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला। तो जो आप बता रहे थे कि उसमें कैसे किए थे, उसमें सर एक संभावना जो निकली आज मैंने सोचा कि जो इस सब्जेक्ट को जानते हैं वही बच्चे लेकर के उन्हीं के साथ काम किया जाए, आम बच्चों को साथ में रखेंगे सर तो वो परिणाम नहीं आएगा जो लाना है, लेकिन जैसे उस स्कूल विशेष में बड़ी कक्षा के वो बच्चे जो 6-12 के होने चाहिए सामान्य तौर में, वैसे सभी बच्चे होंगे उसमें कम से कम 4-5 बच्चे रुचि जो लेने वाले उन्हीं को ये बात बताई जाए,
2: और ये चीज जो शिक्षक है ना उनको बलिबंध जानना,
1: उन्हीं को बताना है,
2: टैलेंट है बच्चे हर साल लगाव है, पढ़ रहा थे जानते
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: बोलने में
1: एक्सपर्ट होना चाहिए,
2: तो वो बच्चे सिलेक्ट करके
1: तो वो सर वही बच्चे उनके स्कूल में फिर जब जब आगे आएंगे ना वो उन बच्चों को प्रेरित करते रहे। तो ये सर इसका एक नया मॉडल हो सकता है कि 5-7 स्कूलों से उन बच्चों को इकट्ठा किया जाए, जो भी 2-2, 5-5 और 5-7
2: उसका तो डिबेट भी रख सकते हैं,
1: डिबेट रख सकते बिल्कुल सर, तो निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा करके और उनको जब अपन थोड़ा संबोधन देंगे ना तो निश्चित रूप से वो बच्चे बहुत बड़ा काम कर जाएंगे, इसका ये मॉडल हो सकता है, क्योंकि जो नहीं चाह रहा है उसका तो कोई मतलब ही नहीं होगा। तो ये उसमें थोड़ा सा एक अपन इसको एज चैलेंज इसको लेते हैं तो वो कर सकते हैं। तो सर जो ये जलवायु परिवर्तन है
2: जी,
1: ये बच्चे के या व्यक्ति के या उस पर्यावरण के क्रिया और प्रतिक्रिया पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर अब उस जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने में एक सर बहुत बड़ा घटक है कार्बन डाइऑक्साइड
2: ओके,
1: और वो हरित गृह प्रभाव का कारण है। इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट एक शब्द इसमें बहुत ज्यादा काम में आता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? वो ये है कि जो ऊपर से वायुमंडल में जो अधिक मात्रा में CO2 है, ग्रीन हाउस अपने कार्बन डाइऑक्साइड है, सूर्य से आने वाली कम दैर्ध्य की तरंगों को तो वायुमंडल में प्रवेश करने देती है, लो डेंसिटी कम तरंग दैर्ध्य वाली, लेकिन जब पृथ्वी पर जाकर के वो हाई डेंसिटी में बदल जाती है, उसकी तरंग दैर्ध्य हाई हो जाती है, उसको वो रोकती है
2: कार्बन डाइऑक्साइड।
1: जी हाँ, तो कम दैर्ध्य वाली तो नीचे आने देगी जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, और हाई वो जब पृथ्वी पर जाती है उसके बाद वो हाई हो जाती है, और उसके बाद में जब वो ऊपर उठती है तब उसको वो रोकती है, और इससे जो टेम्परेचर बढ़ता है उस आवरण से जो टेम्परेचर बढ़ता है वो जब रोकती है तो जितना टेम्परेचर बढ़ता है मतलब वो कितना आने देती है और फिर कितना नहीं जाने देती, फिर वो टेम्परेचर को बढ़ा देती है, और इसको हरित गृह प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट।
2: नुकसान कर?
1: हाँ सर, नहीं सर, ये नुकसान तो करता है लेकिन एक सीमा के बाद बहुत बड़ा नुकसान करता है, जैसे उसका लेवल, जैसे अभी जो आदर्श स्थितियां हैं जैसे 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चल रहा है
2: जी जी।
1: तो वो सामान्य तौर पे अच्छा हो सकता है, लेकिन उससे जो अधिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा वो विकिरण बाहर नहीं जाएगा और उनको वो अवशोषित कर लेगा, और इससे जो तापमान बढ़ेगा वो एक निश्चित सीमा तक बढ़ता है, वहां तक तो ठीक है क्योंकि तापमान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जब उससे अधिक बढ़ जाएगा या उसका प्रभाव कम हो जाएगा, वो जो गैसें ज्यादा हो जाएगी तब उसका या तो उसका आवरण कमजोर हो जाएगा, जब वो अधिक हो जाएगा तो निश्चित रूप से जब टेम्परेचर बढ़ेंगे वो अतिशय टेम्परेचर बढ़ेंगे वो व्यक्ति को हर तरफ से जीवों को, प्रकृति को, सभी को सब तरह से प्रभावित करेगी, दुष्प्रभावित करेगी, और वो उसके शरीर पर या अन्य अन्य तरीके से हर एक जीव को वहां पर प्रभावित करेगी। जैसे इसमें अपन ये ले सकते हैं, जैसे कुछ पक्षी मर जाते हैं, विलुप्त हो रहे हैं, प्रकृति भी विलुप्त हो रही है, वन औषधियां हैं, बेले हैं, वो विलुप्त हो गई क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बरसात कम हो रही है या अधिक हो रही है। तो मतलब जो सस्टेन करना चाहिए उस वातावरण में, जिस औषधि को, जिस पेड़ पौधे को, जिस जीव जंतु को, जिस अच्छे जीव को, जिस हानिकारक जीव को बैलेंस के साथ में जो डेवलप करते हैं, वो सब इम्बेलेंस हो जाएंगे, और उनके इम्बेलेंस होने से हमारा जो पर्यावरण है वो असंतुलित हो जाएगा, जो हमारे विकास को दुष्प्रभावित करेगा। तो सर, ये सबसे बड़ा जो इफेक्ट है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसमें कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस में जो प्राकृतिक कारण है वो सर जल वाष्प है।
2: जल वाष्प
1: जी
2: ऊपर जाता है,
1: एवोपरेशन, कितना टेम्परेचर है वो इन सबको मिला के कितना बढ़ गया, तो वो एवोपरेट होकर के ऊपर चला जाता है।
2: नीचे तो खाली हो गया पानी,
1: नीचे खाली हो गया, फिर वो जहाँ अच्छा होगा वहाँ जाके बरसेगा।
2: कहाँ पर अतिवृष्टि, अनावृष्टि,
1: मतलब जहाँ पर हरित ग्रह है, जहाँ पर बैलेंसिंग प्रकृति है,
2: वहाँ पर
1: वो वहाँ पर बादल आकर्षित होते हैं, वहाँ बरसात कर जाते हैं। जैसे अपने सर आबू पर्वत क्षेत्र है ना, ग्रामीण अंचल में बरसात कम होती है, लेकिन आबू पर्वत के उस एरिया में आप चले जाओ, पहाड़ी एरिया, वहाँ बरसात
2: बादल बादल पूरा नदी दिखाई दे रहा।
1: क्यों सर, क्यों?
2: यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा,
1: और बरसात भी रोज होती है, रोज होती है, थोड़ी थोड़ी रोज होती है, तो वो प्रकृति भी हरी भरी रहती है, पहाड़ भी वहाँ पर है,
2: बैलेंस
1: है, तो वहाँ बैलेंस इम्बैलेंस है, इसलिए इम्बैलेंस है तो कभी अधिक वर्षा हो जाती है, कम हो जाती है, कभी नहीं होती, तो फिर वो वाटर टेबल को प्रभावित करती है। इसका सारा प्रभाव पूरे सिस्टम पर पड़ता है। अब जैसे सर जलवाष्प के बाद में अगर अपन ले तो इसमें आता है मीथेन गैस, CH4। CO2 की बात तो अपन ने कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड की, अब CH4 है, फिर ओजोन है, ये भी इसी तरह से, इनकी जो परसेंटेज है वो कम या ज्यादा होने पर उससे संबंधित जितने भी जीव हैं छोटे बड़े, वो सारे के सारे उसमें या तो जीते हैं या फिर वो मर जाते हैं, तो वो संबंधित जो प्रभाव है उसको वैसा ही छोड़ते हैं, ताकि उसका जो बैलेंसिंग है वो उसमें से खत्म हो जाती है, तो वैसा प्रभाव वो छोड़ेंगे। तो ये तो सर सब हो गए प्राकृतिक कारण, जिसमें ओजोन भी एक है। सर इसमें ऐसा माना गया है कि अपनी जो ओजोन लेयर है उसमें भी छेद हो गया है सर, अंटार्कटिका के एरिया में, वैज्ञानिक शोधों से ये पता चला है, वो जो छेद हो गया मतलब वो अपनी छाता की तरह से काम करता है, जो हानिकारक किरणें आती है ना सूर्य की, उनके लिए वो एक छाता की तरह हमारा काम करता है।
2: कहने मतलब घर में छत बना दिया,
1: हाँ हाँ,
2: उसमें लीकेज होता है,
1: छेद हो गया,
2: दिक्कत
1: उसमें छेद हो गया,
2: तो हमें बहुत दिक्कत होता है बारिश का टाइम में,
1: तो सर ये
2: डर रहता है। तो इस तरह ओजोन लेयर का जो आपने बात की, छेद हो गया, तो ये भी पूरा हमारा प्रोटेक्ट था
1: जी, हाँ
2: प्रोटेक्ट आउट नहीं रहेगा,
1: वो प्रोटेक्शन वाली छाता वो हमारी छिन्न भिन्न हो गई है,
2: जो भी डैमेज तरफ जा रहा है,
1: डैमेज हो गई है,
2: तो क्या होगा अस्तित्व
1: सर? उसका इतना खतरनाक असर होगा सर कि उससे नीचे जितना भी ग्लेशियर्स वगैरह है ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स, वो सर पिघलेंगे, और पिघलेंगे तो क्या होगा सर,
2: पूरा बाढ़ आएगा,
1: अतिवृष्टि होगी,
2: बाढ़ भी आएगा सब कुछ,
1: और सर वो समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तो समुद्री किनारे जितने शहर है ना वो सब डूबने के कगार पर है।
2: फिर भी तो मकान बनाते जा रहे हैं,
1: बनाइए तो फिर कहाँ दिक्कत, नदी के बीच में बनाइए तो फिर आप बहे भी जाएंगे,
2: समुद्र का बीच में भी मकान,
1: तो सर इसलिए तो अपने कई बार सुनते हैं
2: बैलेंस नहीं होता,
1: कई बार सर अपन सुनते हैं कि साहब अतिवृष्टि होती है, बादल फट जाता है, अभी बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है, ये सर क्लाइमेटिक चेंज है सर। जब नदी के किनारे जब लोगों ने मकान बना लिए, जो नाला था उसकी जगह पर मकान बना लिए, फिर कहते हैं कि साहब बाढ़ आ गई, लोग डूब रहे हैं, व्यवस्था करो, फिर क्या व्यवस्था होगी, व्यवस्था
2: सरकार तो उसको दे देता है,
1: भाई रास्ते में ही तो हमने बना दिया, सरकार ने पट्टे काट दिए, रास्ते में बना दिया, तो आपका तो नुकसान हो गया ना,
2: आपने का जगह में जो रहना चाहिए हम उस जगह में,
1: बस उस जगह पर हम गलत काम कर रहे हैं, तो फिर प्रकृति छोड़ेगी क्या, उन्होंने तो छोड़ा, वो उनके जाने का रास्ता चाहिए, पानी के जाने के रास्ते में आपने मकान बना दिया, तो फिर वो तो मकान में ही घुसेगा, फिर हम सरकार को दोष देते हैं।
2: मकान क्यों बना रहे इतना सर, पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा था, उनको रहने के लिए तो जगह चाहिए ना,
1: तो सर
2: कहाँ लाएंगे
1: सर, जगह तो है ना सर, जगह व्यवस्थित जगह पर आप रहिए ना, ठीक है, व्यवस्थित पर रहना चाहिए,
2: हम जो चाहते उस तरह होना चाहिए ना,
1: ये बात, वो प्रकृति का सब, फिर वो तो वही अतिक्रमण हो गया ना
2: सर,
1: आप रहे तो
2: यहाँ पर रहेंगे तो इतना दूर में रहेगा तो पानी यहाँ पर मिलेगा नहीं। नदी का किनारे समुद्र किनारे में रहेगा तो हमको पानी का बिना हम रह नहीं सकते।
1: तो फिर समुद्र के अंदर ही रह जाओ ना, पानी मिल जाएगा। तो प्रकृति अपने को समेट लेगी।
2: पानी वहाँ पर बसवास करते हैं सर
1: पानी के किनारे तो बसिए, पानी का एक एरिया छोड़ के तो बसिए, कहाँ मना ही कहा है। जब आप पानी के क्षेत्र में आप रहने लगेंगे तो पानी आपको अंदर नहीं लेगा,
2: वो उस समय देखा जाएगा बोलते लोग।
1: तो सर वो ग्रीडीनेस आपका जो लालचपन है वो प्रकृति फिर आपको माफ नहीं कर।
2: अभी बहुत लोग देखने के लिए जाते हैं सर जल महल कहते हैं। चार तरफ टापू में हम रह रहे हैं ऐसे जो
1: सर यही चीज भावना कर, यही सही चीज सर मुझे देख करके एक याद आता है सर। अभी सर घटना हुई है गोवा में जिसमें बिना परमिशन के किसी होटल वाले ने, बिना परमिशन के होटल वाले ने उसमें छोटी सी झील बना दी,
2: समझ गए,
1: तो और उसमें होटल बना दिया सर। वो इतना बढ़िया होटल बनाया कि फॉरेनर्स वगैरह सब वहीं आते, और वहां पर कोई प्रोग्राम हो रहा था और संकरा प्रवेश का रास्ता था, उसमें आग लग गई, 50 लोग जल करके मर गए। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है।
2: ये तो अति ना सर,
1: तो अति है। अच्छा सर वो पता किया,
2: मतलब जब मनुष्य का ग्रीडी का अति मैंने
1: अति है सर, पर जब पता किया तो पता चला कि वो सारा अवैध था। तो जब अवैध था प्रकृति की जगह आप जा करके बैठ गए तो पैसा भले ही कमा लो, वो लोग मर गए, अब सारी हालत सबकी खराब है, तो फिर गलत का तो रिजल्ट तो गलत ही आएगा।
2: चलते हैं जो अच्छा आदमी को भी जाकर इनकार करना पड़ रहा है, वो बेचारा मैं गलत किया है।
1: जी हाँ जी,
2: फिर मेरा सदारे गोपाल राम जी थे तो उसको चलो पकड़ेंगे।
1: बिल्कुल सही बात,
2: आप कुछ नहीं किए, मैंने रिकॉर्डिंग के टाइम में कर दिया, मैंने कुछ गलत किया।
1: हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है,
2: देखो अरे पवित्र के साथ गोपाल राम जी थे
1: जी,
2: पकड़ते हैं
1: बिल्कुल,
2: आपका उसे कुछ
1: लेना देना।
2: तो सर इस तरह होटल वाला को कितने होटल का इस तरह परेशान हुआ होगा।
1: हाँ सर, तो वो देखिए बिल्कुल सही
2: हिसाब किताब बनता। देखिए सर
1: सही बात है सर,
2: कोई हिसाब किताब कभी का होगा,
1: बिल्कुल
2: हिसाब किताब को जन्म का, तो जाकर उससे
1: वो पूरा हो गया,
2: ये पूरा कर्म का सिद्धांत।
1: तो सर देख लिए ये कर्म का सिद्धांत कैसा नुकसान हुआ। तो जो प्रकृति का अतिक्रमण किए तो ये लालचपन ने तो भारी नुकसान कर दिया इनका।
2: आज का संसार कौन ऐसे जो अभी जो कॉलेज समय जो चल रहा है,
1: जी जी,
2: साइंस का पूरा भौतिकवादी सब हो चुके हैं।
1: जी जी जी जी,
2: तो ये चीज कैसे कंट्रोल होगा।
1: बस सर
2: जानेंगे
1: कंट्रोल के लिए तो
2: क्योंकि ये तो रीजन सबको पता है,
1: हमको
2: तो अनुभव भी है,
1: आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा
2: तो उसके लिए क्योंकि आवश्यकता है, कारण तो सबको मालूम है।
1: जी जी,
2: आप और हम सब पढ़े लिखे हैं, आप भी इंटरनेट में गूगल पूछेंगे तो क्यों
1: बता देगा, बता देगा,
2: लेकिन हमें इससे कैसे निजात पाए और हम बचेंगे कैसे। मैं खुद,
1: जी जी बिल्कुल सही कहा,
2: तो मैं खुद को बचाऊंगा तो मुझे देखकर सभी लोग बचेंगे।
1: बिल्कुल,
2: ये क्योंकि स्व परिवर्तन ही हमारा नारा है,
1: स्व परिवर्तन ही सभी में,
2: क्योंकि आज सभी लोग उंगली उधर तुम करो
1: तुम करो तुम करो
2: बोलते, आज तक इतना जो 100 साल का आप देखा है ना परिवर्तन,
1: इसीलिए
2: 100 साल का पहले जो स्थिति था पर्यावरण का,
1: जी हाँ जी,
2: खुशी को कुल गांव था,
1: सब एक आनंद था,
2: भाई जा रहा था, कोई ताला नहीं था,
1: कोई लड़ाई झगड़े कुछ नहीं था,
2: नहीं था। भाई तुम लेना तो ले, मेरा भी बहुत है यार।
1: सही बात है,
2: और आप बुलाते भाई लो हमारा,
1: बिल्कुल सही,
2: गन्ना बहुत है
1: बहुत है। हाँ, एक दूसरे को बांटते थे
2: तो समय परिवर्तन था, और आज के समय में
1: जी
2: तो एक 100 साल में कितना

0: विकसित वो भारत है, लेकिन विकसित किसमें, भौतिकता में ज्यादा,
1: भौतिकता में हो गया है।
0: प्रकृति को क्या नुकसान हो रहा है उसको कोई देख नहीं रहे, अब जिसका चलते उसका भोगना हमको पड़ेगा। कोरोना क्या है, पार्ट है।
1: हाँ हाँ, वो इसका पार्ट नहीं है, वो भोगना पड़ा,
0: भोगना पड़ा। हर रोज कुछ ना कुछ होता ही हो रहा है, आज यहाँ तो कल हुआ, परसों हुआ,
1: महामारी भी सर ऐसे ही
0: हो रहा है,
1: सारी महामारी।
0: तो इसका कारण जब तक नहीं होगा, रूट ग्रास रूट हम जाएंगे तब जाकर सभी लोग उसको पहचानेंगे तो बच सकते, सभी नहीं बचेगा तो कुछ तो बच जाएंगे,
1: कुछ तो बचेगा ही सर, प्रकृति तो बचा
0: जानेंगे। अल्प विराम का बस सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। तो आज का विषय भी बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि सर का जो सिलेक्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें कम्युनिटी का जो एंगेजमेंट सही में आज देखने को मिला।
1: जी हाँ, बिल्कुल मिला,
0: क्योंकि सरकार का जो भावना है कम्युनिटी को एंगेज करो रेडियो मधुबन में।
1: जी,
0: तो आज किवली से हमारा जो भाई साहब है पूरे लगे रहता है हर एपिसोड में कुछ ना कुछ जो विशेषता है उसको देने के लिए, और प्रकृति हमें कितना देता है, हमें तो कुछ देना सीखे, करते थे
1: हम भी तो समर्पित रहे प्रकृति को।
0: जानेंगे अल्प विराम के बाद, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ डांस, अ डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। अर्थात ये जीवन को हमेशा उमंग और उत्साह के साथ जियो। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है जिसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हर पल हर क्षण हमें उमंग उत्साह में रहना है। और वो बहुत सुंदर स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। तो देखो, हमें अपने भाग्य पर कितना नशा होना चाहिए, कितना नाज होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। तो क्या हमें दुखी होना चाहिए क्या? नहीं, हर पल हर क्षण वी हैव टू डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाने वाला हूँ। सभी करेंगे डांस। इसको कहते हैं पीकॉक डांस। पीकॉक जब खुशी में होता है ना तो कितना वंडरफुल डांस करते हैं, वही डांस मैं आपको भी सिखाता हूँ। और वो कैसे करना है? वाह मेरा जीवन वाह। जब आप ये डांस करते हो तो एक तो इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, और दूसरा मन में भी जो आपको विचार मिलते हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक और मोटिवेटिंग होते हैं। तो मैं आपको एक एक बोलता रहूंगा, वैसे आप करते रहना, ठीक है? करेंगे सभी? ओके, चलिए। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे मम्मी डैडी वाह, वाह मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह। स्टूडेंट्स बहुत खुशी से कह सकते हैं वाह एग्जाम्स वाह, वाह मेरी पढ़ाई वाह, वाह ये दिन वाह, वाह वाह वाह। तालियां बजाइए। तो हर दिन सुबह उठकर ये पीकॉक डांस जरूर जरूर करना।
2: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पिछला लिंक में हम जलवायु परिवर्तन और 100 साल का कम नहीं है, उसमें कितना अंतर आ गया प्राकाश और पाताल जैसे। तो ये परिवर्तन समय अनुसार हो रहा है और प्रकृति में हम जो रह रहे पशु पंछी जीव जंतु सभी का अपना अपना जो भाव और भावना समय अनुसार बदलता है। जैसे हम छोटे बच्चे उसमें भावना कम था, बड़े हुए उसका भावना और कुछ क्रिएटिव बना, इसके बाद फिर उसका ऐसे ही प्रकृति भी जो इतना साल तो पहुंचा है। तो कोई भी चीज का सत्व रजो तम होता है सर, अच्छा बुरा बुरा, तब तक
3: तीनों
2: का आना चाहिए। प्रकृति का जो शुरू में अच्छा था जो आपने बताया रेखा पहले, ये सत्वगुणी जलवायु था,
3: सत्वगुणी
2: सब चीज सुखदायी था,
3: बिल्कुल सही।
2: लेकिन आज सोचना पड़ रहा है कैसे बचाए हम खुद।
3: जी जी जी बिल्कुल।
2: संदर्भ में ये जो बात चल रहा है उसका कारण तो हमें थोड़ा बहुत जान गए,
3: थोड़ा बहुत थोड़ा सा
2: निवारण करने के लिए हम कैसे जिम्मेवारी, सरकार हम आप जो भी हमारा सभी सुन रहे प्रकृति का जितना भी घटक है वो भी अपना कार्य करेंगे तो जरूर हम प्रकृति को बचा पाएगा और समय अनुसार बच जाएगा भी। तब तो ऐसे प्रश्न उत्तर हम कैसे बचा, जरूर बचेगा, बोला आज नहीं तो कल
3: बचेगा बच्चा। सर देखिए सर, अपन उसके बचाव पर आते, इससे पहले थोड़ा सा हमने प्राकृतिक कारण जाने थे हरित ग्रह के, अब थोड़े मानव जनित कारण थोड़ा सा उसमें प्लस है कुछ।
2: जी जी बताएं।
3: जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है सर, ये आंकड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं, वो सर 76% तो ये रिस्पॉन्सिबल है।
2: 76%
3: उसका प्रभाव होता है इसके हरित ग्रह पर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर। CH4 का होता है 16%। नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है 6% और सर क्लोरीनेटेड गैसेस का होता है 2%, जिसमें सर है ना आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सारी की सारी चीजें। ये जो सर उत्सर्जन है ना, ये सर कहाँ से होता है? ये सर जैसे AC से होने वाला उत्सर्जन है
2: जो घर में यूज करते हैं।
3: जी हाँ सर, जैसे
2: कार में भी AC यूज करते,
3: कार में AC का यूज करना है, ये इसी पर मैं संकेत कर रहा हूँ। और भी जहाँ भी जैसे
2: AC से इतना गैस आप,
3: जी सर ये नुकसान करती है, 1% है इसका। और सर जैसे फ्रिज में होने वाला जो गैसेज वगैरह है, ये भी इसके ऊपर इम्बेलेंसिंग में बहुत बड़ा कारक बन जाती है। और उसका जितना ज्यादा उपयोग बढ़ेगा तो भारी नुकसान करने वाला,
2: बढ़ रहा है
3: बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला।
2: सभी का घर में चाचा मामा का।
3: अच्छा सर, इसका तो इतना बड़ा नुकसान होगा सर कि जैसे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और अपन ये सारे जो ब्लैक कार्बन वगैरह ये सभी मिल करके ये दहन से उत्पन्न होने जा रहा, आंशिक दहन से, जो ईंधन का आंशिक दहन है सर, किसी भी ईंधन का, जैसे गाड़ियों के इंजन वगैरह है, उन सबके दहन से जो भी ये प्रोड्यूस होता है, ये भी सर वातावरण को बहुत बड़ा नुकसान देते हैं। सर अब मैं फ्रिज की बात कर रहा था सर, सर जहां तक फल सब्जी और एक सीमित समय तक उनके संरक्षित करने वाली बात है, वहां तक तो हम भी सहमत है, साइंस सहमत है, लेकिन जब उसकी अति हो जाती है तब तो वो नुकसान ही करेगा ना
4: सर। अति क्यों होता है
3: सर? अति बस वो मानव इतना लालची हो गया, वो सब जगह अति, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, आगे से आगे जब उसको फ्रिज में रख जाओ तो क्या सर उसमें गुण रहेंगे क्या?
4: लेकिन उसका यूज नहीं हुआ तो फिर और प्रोडक्ट आ गया तो कहाँ रखेंगे
3: सर? बहुत बराबर है, वो एक सीमा तक, वो उसका एक लेवल हो जाएगा कि जैसे अधिकतम जनसंख्या जब भूख से प्रभावित हो रही है वहाँ इसका स्टोर करना कर लीजिए, लेकिन जब छोटे मोटे आप लोग उपयोग करते वो तो मत कीजिए ना सर। मेरा निवेदन हर बार, मैं पर्यावरण के एक तो अंत पर्यावरण की बात करता हूँ जो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होगा, और एक सर अभी मैंने अभी ढूंढा है एनवायरमेंट माइक्रो मैनेजमेंट वाली बात, ये नया शब्द भी इसमें नया जोड़िए आप, आपके विश्वविद्यालय की तरफ से जोड़ दीजिए। वो माइक्रो मैनेजमेंट क्या है कि हम एक व्यक्ति उसमें क्या छोटा सा सहयोग कर सकते, आपका हल्का भोजन बचा करके, आपके पानी को शुद्ध करके पीना, आपके गंदे पानी को शुद्ध करके अपनी क्यारियों में डालना, आपके 40 माइक्रो जो माइक्रोन का जो प्लास्टिक है उसको यूज रीयूज न करना, ये काम तो आप और हम कर ही सकते हैं ना?
4: कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं।
3: सर ये इट इज माइक्रो मैनेजमेंट सर, बड़ा मैनेजमेंट सरकार करे, उससे भी बड़ा अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं करें, जो जिम्मेदार संस्थान है एनजीओ वो करें, लेकिन मेरा माइक्रो मैनेजमेंट
4: जो राष्ट्र नहीं कर पाएगा तो ऊपर वाला तो कर लेगा,
3: वो उससे बड़ा मैनेजमेंट कर। तो सर मैं माइक्रो मैनेजमेंट की ये बात करता हूँ सर इसके अंदर, कि आप खुद के स्वास्थ्य को मैनेज करने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट ये करें, अपने विचारों को माइक्रो मैनेज करें और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करने का जितना हो सके उतना प्रयास करें। मेरा तो आप सबसे यही निवेदन है,
4: लेकिन एज एंटिटी इसलिए आप सबको बोल
3: तो मैं सबसे अपेक्षा भी तो करूंगा ना। आप खुद का खुद करो, आपका आप करूंगा, आपका आप कर लूंगा, आपका आप कर लूंगी, जैसे आप नहीं कहते आप करो, आप दिक्कत नहीं, आप करो, आप करेंगे तो सभी का सुविधा हो जाएगी,
4: आपको कोई दिक्कत नहीं आता जैसे आप करते हैं, लोग नहीं करते उनको दिक्कत आ रहा है, ऑब्स्टेकल आता है,
3: तो हम इसलिए नहीं करते। इस मुहिम में जुड़ना है सभी को, नहीं तो फिर वो प्रकृति है ना, वो आपको नदी में मकान बनाओगे वो उठा के बाहर ले जाएगी, आपका मेहनत काम नहीं आएगा, इसलिए सही दिशा में काम करें, तो माइक्रो मैनेज करें आप अपने आप। बस सर बात वही,
4: नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे लोग, हम कर पा रहे हैं तो हम कर पा रहे हैं।
3: आपको सर दृढ़ निश्चय होकर के,
4: दृढ़ता निश्चय सब गुण होकर के,
3: फिर
4: अंतर में सशक्त होना चाहिए,
3: फिर
4: मैं तो बार बार वही कहता हूं,
3: सभी के लिए भलाई का संकल्प करना पड़ेगा अपने मन में, तब जाकर के ये काम होगा।
4: तो आपका वृत्ति
3: खुद को पहचानो, खुद को पहचानो,
4: वृत्ति में क्या सुभावना सबका प्रति रहे,
3: सुभावना रहे
4: प्रकृति का प्रति, आपका आसपास जो भी आपका प्रकृति दिखाई दे रहा है सबका प्रति सुभावना।
3: तो सर जैसे कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये कई बार मैं भी सर कभी कभार मुरली हाथ में लिया करता हूँ, बाबा की मुरली भी आती है, मैं एक सामान्य मुरली की बात करता हूँ, हाथ में लिया करता हूँ और सर रोज सुबह में एक बार बजाता भी हो, तो सर उसकी आवाज कितनी मधुर है,
4: कृष्ण को प्रिय था और आप
3: तो सर वो मुरली वो प्रकृति से आवाज लेती है, वो शंखनाद आपको करना पड़ेगा और एक एक व्यक्ति
4: अच्छा
3: को
4: बात बता दिया आपने,
3: तो सर करना ही पड़ेगा।
4: चार जो अलंकार है सर नारायण का हाथ में,
3: जी हाँ जी हाँ,
4: जैसे बांसुरी कृष्ण का देखा दी,
3: कृष्ण जी हाँ,
4: शंख
3: हाँ हाँ
4: बता दिया ना,
3: बिल्कुल शंखनाद, तो वो शंखनाद आपको करना पड़ेगा,
4: शंख तो वो तो देखे है लेकिन आपका जो मुख है ना सर,
3: जी जी,
4: ये आपका शंख होना चाहिए।
3: ठीक बात है,
4: अच्छा बोले,
3: अच्छा बोले, मीठा बोले, मीठा बोले, धीरे बोले,
4: सही बोले
3: और कर्ण प्रिय बोले,
4: बोले और जहाँ आवश्यकता है उतना बोले,
3: जी जी बिल्कुल।
4: तो सर ये जो शंख चक्र
3: जी गदा और पद्म,
4: आप तो दो चीज बताए,
3: जी जी जी,
4: शंख का जो नाम लिया, तो शंख हमारा मुख जो है,
3: जी जी,
4: शंख से आवाज निकलता, शंख से क्या होता
3: है, आवाज, आवाज निकलता है, आवाज निकलती
4: नहीं निकलता, हम
3: उसमें फूंक मारेंगे तो आवाज करेगा,
4: तो मारने वाला कितना एक्सपर्ट होता है,
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: व्यक्ति सर जो शंख को चलाता है,
3: चलाता है, सही बिल्कुल सही बात,
4: शंख जिसको बोलते हैं उस तरह, ये मुख ये हमारा
3: शंख, ये शंख ही है, शंख ही समझो,
4: शंख को चलाने वाला कौन है,
3: तो ऊपर वाला,
4: ऊपर वाला तो सबका शंख अच्छा होता है,
3: सबका अच्छा बजाता है,
4: अच्छा नहीं बज रहा ना सर, शंख कौन बजा, खुद बजा रहे हैं, ऊपर वाला कैसे बजाएगा?
3: हाँ, वो बजवाता है तब प्रेरणा से बजाते हैं।
4: नहीं, प्रेरणा तो प्रेरणा जब देता तो अच्छा क्यों नहीं बजाते हैं? नहीं, उसका बात मानते नहीं
5: वो उसके बाद
4: सर ये सोचने के बाद मैंने गहरा से बोल रहे
3: जी बिल्कुल सही कहा।
4: शंख अपने व्यक्ति में गांव वाला नहीं करता है, शंख जो बना है वो नहीं बजाता है सर।
3: ठीक बात,
4: शंख आप खरीद ले।
3: जी जी बिल्कुल,
4: अभी बजाएंगे आप।
3: ठीक
4: तो आप जैसे फूकेंगे उस तरह आवाज
3: करेगा
4: उस तरह। ये मुख सर भगवान ने हमें दे दिया है।
3: जी जी,
4: माँ बाप हमें
3: दे दिए
4: शरीर में मुख, तो उसको नियंत्रण कौन बोलता है? मैं
3: बोलता हूँ।
4: ऊपर वाला नहीं बोलता, ऊपर वाला बोलता है तो शंख हमारा अच्छा बोलता
3: है। मैं अहम बोल रहा है, अहम को मिटाने वाली बात।
4: मैं जो व्यक्ति जो आत्मा जो प्राण है
3: आत्मा,
4: हाँ, ये मुख से बोलता है, वो चेतना है, ये जड़ है।
3: बिल्कुल वो चेतना है।
4: हाँ, ये जो जब तक हम चेतना मैंने आज निवारण का बात कर रहे हैं
3: जी बिल्कुल,
4: सभी लोग इसका ऊपर में रिसर्च कर बहुत कुछ बोल, जैसे आपने बताया
3: जी, हाँ जी,
4: सबको पता है गीता में गूगल सब
3: सबको सब जगह मिल जाएगा। आप बता रहे सब जगह मिल जाएगा,
4: निवारण करने का उपाय कौन बताया?
3: बिल्कुल सही बात है,
4: तब तो हम जानेंगे ना भाई सर।
3: जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
4: धूप हो रहा है सबको पता है, लेकिन धूप से निजात पाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? छाया।
3: बिल्कुल छाया में जाना
4: है, हमारे दिमाग में होना,
3: दिमाग में हमारे संकल्प।
4: छाया जब मालूम नहीं तो हम वहाँ भी बैठेंगे।
3: बिल्कुल सही,
4: गर्मी में, अरे गर्मी में क्यों बैठेंगे, चलो अच्छा जगह में
3: छाया में बैठे, छाया में
4: उस तरह।
3: जी हाँ बिल्कुल,
4: ये चीज हो रहा है।
3: जी जी हो रहा है,
4: और आगे बढ़ेगा?
3: आगे बढ़ेगा नहीं, नहीं
4: कैसे होता है तो अभी 10 साल पहले हो जाता है।
3: हाँ सही बात है,
4: ट्राई की उस समय भी आप हम जैसे कितने लोग ट्राई किए होंगे।
3: जी जी किए ही होंगे, ट्राई
4: कर रहे
3: हैं, चल ही रहे
4: हैं, कर रहे हैं, सिर्फ हम नहीं कर रहे, बहुत लोग फिर भी
3: बहुत कर रहे हैं,
4: फिर भी
3: बहुत लोग,
4: फिर भी कुछ तक
3: एक सीमा तक ही हो रहा है,
4: जो इतना पर्याप्त नहीं है,
3: पर्याप्त नहीं कर पा रहे, पर्याप्त नहीं कर
4: नहीं पा रहे, क्योंकि जितना हमको अति आवश्यकता।
3: जी
4: सिर्फ 5 लोग से नहीं होगा, सभी लोग
3: सभी करेंगे, अपने अपने स्तर पर करेंगे, सब जुटेंगे, थोड़ा थोड़ा सब करेंगे। सर यही बात माइक्रो मैनेजमेंट वाली है कि थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा सब करेंगे तो हो जाएगा,
4: और शुरुआत तो
3: हमसे ही
4: होगा, हमसे भी होगा
3: शुरुआत,
4: और
3: सभी करेंगे
4: नहीं, शुरू कर दीजिए।
3: जी बिल्कुल सही बात, शुरू करना है,
4: जैसे आज हम एपिसोड का बात करेंगे, कल वो सोचा है लेकिन करेंगे, कल कौन देखा है?
3: नहीं नहीं नहीं, कल का तो पता ही नहीं, पता ही नहीं,
4: बारिश आ जाएगा कि यहाँ पर कुछ होता है, हमारे हाथ में नहीं ना,
3: कुछ भी हाथ में नहीं,
4: तो अभी जो है हमारे हाथ में
3: उसको कर डाली,
4: करना
3: कर डाली,
4: ये चीज पॉइंट आउट सर।
3: बिल्कुल
4: अभी जो करना है अच्छा चीज तुरंत,
3: बिल्कुल तुरंत कीजिए,
4: तब देख रहे सक्सेस, आज सक्सेस मिल गया ना?
3: बिल्कुल सर, वो तो मिलेगा, हमने 2-3 दिन देखा, पता चला कि भाई हमारी जो दिशा उधर से जा रही थी वहाँ तो अपनी बात को लेने वाली नहीं, आप बांट रहे हैं लेकिन लेने वाला ही नहीं है, तो फिर जहाँ चीज जो ग्रास्प करने वाले हैं वो उस चीज को उसी स्थान से रखा जाए, उसका उपयुक्त जगह,
4: इसको विवेकवान कहते हैं सर।
3: बिल्कुल विवेक,
4: हम विवेकवान होकर हम ट्राई देखे, यहाँ पर ट्राई किए नहीं और फिर दूसरा
3: बिल्कुल करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा,
4: हमारा जो लक्ष्य उस तक पहुँचा,
3: लक्ष्य के लिए सारे सरल रास्ता अपनाना भी तो पड़ेगा,
4: कर रहे हैं सब, करना भी चाहिए।
3: जी हाँ जी,
4: और सर जैसे अपना निवारण तो मेन आवश्यकता,
3: मुख्य आवश्यकता निवारण,
4: क्योंकि निवारण सभी लोग जानेंगे तब जब करेंगे, नहीं जानेंगे तो करण कर कोई मैं कैसे करूँ, प्रश्न आएगा ना सर।
3: बिल्कुल वो कहेगा कि कैसे किया जाए,
4: आप कर दो, सभी लोग करना चाहिए, अरे करेंगे तो ठीक, काम हम चाहते हैं,
3: वहाँ पर
4: उसका विधि बताओ,
3: कीजिए ना इसकी विधि क्या है, विधि क्या है,
4: तो ये होना,
3: तो इसमें स्वयं को पहचानना पड़ेगा, स्वयं स्व को पहचानो
4: सर, स्वयं ही दुख और सुख का
3: कारण है,
4: कारण है
3: स्वयं ही, अच्छा स्वयं ही है,
4: अच्छा फूकेंगे तो अच्छा बजेगा, फूकेंगे नहीं तो पीछे से करेंगे तो आवाज आएगा,
3: बिल्कुल आवाज ही नहीं, सही जगह से उसको सही उपयोग करेंगे तभी जाके उसका सही अर्थ भी निकलेगा,
4: राइट,
3: नहीं तो नहीं निकलेगा।
4: इसलिए समय का मांग जो है खुद को पहचान,
3: खुद
4: और खुद का जो कर्म खुद, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, भगवान भी अंतर्जामी बोलते हैं कि जानता था आपको रोक देता है,
3: सही बात,
4: खराब हम जो कर रहे थे गलत जो हो रहा है,
3: जी जी,
4: भगवान इसमें क्यों इंटरफेयर करेगा?
3: नहीं नहीं, भगवान ने तो आपको सही कर्म करने के लिए
4: ज्ञान दे दिया, करना तो आपको है ना,
3: अब जैसे आप सामान्य तौर पर बता रहे कि ज्ञान सबके पास है ही है ना, जैसे पर्यावरण सब जगह मिल रहा है, सब जगह, आप क्यों दौड़ रहे हैं? आप इसलिए दौड़ रहे हैं कि हम समझाने का एक प्रयास करें कि भाई ऐसे नहीं, इसको ऐसे देख, ऐसे नहीं, उसका व्यवहारिक धरातल पर उसको उतारो, उस पेड़ को लगाओ, उस पौधे को लगाओ, उसका क्या फायदा है, उसकी क्या छाया मिलेगी, उसका क्या फल मिलेगा, वो आपको उसके
4: निवारण का एक कारण है, निवारण का एक पॉइंट स्टेप,
3: बिल्कुल एक स्टेप है, आपको करना
4: स्टेप तो चलना पड़ेगा ना भाई, छत का जाना है तो पहला स्टेप, तो
3: पहले स्टेप तो पूरा करना पड़ेगा,
4: स्टेप बाय स्टेप
3: करना तो पड़ेगा ही, करेंगे तभी कुछ ना कुछ तो होना है,
4: जी
3: नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा,
4: और तो ये सब देखिए पर्यावरण के साथ हम दोस्ती लगाकर बहुत अच्छे से करेंगे सहयोग करें, हमें बहुत सुकून मिलेगा, इसको मिले चाहे नहीं मिले,
3: नहीं सर
4: उनको मिलेगा और हमारा वाइब्रेशन से दूसरा तक पहुंचेगा।
3: सभी को सुकून मिलता ही है, पर्यावरण और प्रकृति तो सबको सुख देने के लिए
4: दाता है,
3: वो दाता है और वो वही चला रहा है, सृष्टि भी वही चला रहा है, पूरी सृष्टि उसी के हिसाब से चल रही है, सारा कंट्रोल भी उसी के हिसाब से हो रहा है,
4: लेकिन मालिक बनकर बैठा है।
3: बिल्कुल हाँ, मुनि से मालिक बन करके बैठा जी, मालिक है तो नहीं वो लालची मालिक बन करके बैठा है, पर मालिक है तो नहीं
4: जी। बस आप क्या कहना चाहेंगे सर, आज टॉपिक तो इतना देखेंगे अगला एपिसोड में, आप क्या कहना चाहेंगे आज का जो मूल मंत्र है कारण और निवारण, हमें हर एपिसोड में
3: ये तो लेते ही है,
4: क्योंकि उस समय दे देंगे तो फिर कल कौन देखेगा, 5-15 एपिसोड में आएगा, इंतजार क्यों करेगा।
3: सही बात है, नहीं करेगा, हर एपिसोड में अपने को निवारण
4: और निवारण करना है
3: सर। इसका निवारण तो यही है कि आप इस प्रकृति के प्रति समर्पित होकर के काम करना शुरू कर दीजिए, दृढ़ संकल्पित होकर के खुद को पहचान कर, इस प्रकृति से बहुत कुछ मिलने वाला है, तो आप इसके लिए एक बार शुरुआत कर दीजिए सभी अपने अपने स्तर से, तो हम उस लक्ष्य को पा लेंगे जहाँ तक जाना है।
4: तो श्रोता मित्र रुग्णवासी सुन ले, जो आवश्यकता है भाई शुरुआत तक खुद से करना ही पड़ेगा, और सभी लोग जैसे इस खुद से करेंगे तो भाई किसको कोई बोलने का नहीं, तुम करो बोल के कहीं सब इस तरह से समझ जाएंगे, और शुरुआत हम खुद करें व्यक्तिगत सरकार जितना करना वो अपना स्तर पर कर रहा है,
3: हम सब जगह काम हो रहा है,
4: जानकर हमें प्रकृति हमें दिया है, हम उसको रिटर्न देने का समय आया है।
3: बिल्कुल,
4: हम बहुत कुछ जो किए भूल जाओ, अभी जो करना है अच्छा काम शुरुआत करो,
3: उसकी शुरुआत करो,
4: हम करेंगे आप करेंगे तो सभी लोग
3: हो जाएंगे,
4: और
3: माइक्रो मैनेज कीजिए अपने आप को, सभी को थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा सेव करेंगे ढेर लग जाएंगे, बहुत बढ़िया काम।
4: एग्जाम्पल जैसे हम सेतु बंध रामचंद्र इसका रामायण में सुने हुए,
3: बिल्कुल सामान्य तौर पे आता है,
4: छोटा सा
3: एक एक पत्थर और एक गिलहरी वो लोटपोट करके रेत डाल रही है कि मैं भी सहयोग कर रही हूँ,
4: माया दुनिया जो आने वाला है तो हम सब करेंगे सहयोग, तो मांग रहा
3: ऐसा सहयोग हम भी कर रहे हैं
4: तो जरूर हो
3: तो हो जाएगा हमारा उसमें सर योगदान तो हो जाएगा।
4: कभी कभी बोल ज्ञान का परमात्मा का ऊपर वाला का क्यों, क्योंकि वो सहयोग मांग रहे हैं, हमें आवश्यकता है क्या।
3: हाँ तो
4: उस समय हम शास्त्र में पढ़े हैं
3: जी,
4: भाई रामचंद्र चाहेंगे तो बस नहीं कर पाते, उनके पास शक्ति नहीं
3: चाहते,
4: कर सकते क्यों उसको सहयोग लिया।
3: बिल्कुल सही बात, क्यों वो चाहते थे कि वो भी सहयोग करे
4: तो उनका नाम आए।
3: बिल्कुल सही बात है,
4: जो करेगा सो पाएगा। तो आज परमात्मा जो चाहते हैं
3: ये
4: दुनिया को अच्छा दुनिया बनाने के लिए, विश्व गुरु तक लाने के लिए, तो विश्व गुरु तो बनेगा क्यों, हम इसलिए सहयोग दे रहे
3: तो हम भी पुण्य के भागी बने,
4: भागीरथ, इसलिए हमारा लक्ष्य यही था। अभी जो समय आ रहा है अच्छा समय जो आएगा
3: जी, जी।
4: समय हम अच्छा बन जाएंगे और हम परमात्मा का काम में सहयोग करेंगे तो हमारा काम सफल हो जाएगा, और परमात्मा भी कोई करे नहीं इतिहास में हमारा स्मरण अक्षर में
3: नाम लिखा जाएगा,
4: लिखा रहा
3: लिखा जाएगा,
4: लिखा जाएगा। अभी भी हम
3: पहुंचे गिलहरी का लिखा गया है, चिड़िया की चोंच का पानी जाने में। अब ये देखो यही तो चीजें समझाती है कि आप जितना हो
4: सर,
3: उतना
4: ये जब मैंने लेता ना मुझे बहुत अच्छा लगता है
3: जी, जी।
4: कोई बोला अरे तुम पर्यावरण के बारे में क्या तुम रोक पाएगा, अरे आज मैं नहीं रोक पाएगा जिसका रोकना है।
3: अरे सर पर्यावरण से शरीर स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा तो हम उस ऊपर वाले को धन्यवाद कर पाएंगे,
4: जानते ना सर,
3: आत्मज्ञान होगा तो अपन संकल्प से अपना काम कर पाएंगे वहीं पर।
4: अच्छा बात, संकल्प से ही
3: अपना संकल्प से और अपनी साधना से अपने राजयोग से हम इस काम को जब करने लगेंगे तो निश्चित रूप से वो सफलता आपके कदमों में हो,
4: क्योंकि जो विश्व रचयिता जिसको कहते हैं, विश्व का मालिक जो प्रकृति पति जिसको कहते हैं, रचयिता सर, रचयिता एक शब्द है।
3: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
4: रचना हम सब है, एक प्रकृति भी रचना है लेकिन रचयिता
3: सर। देखिए इसमें एक चीज कही गई है, एक चौपाई में बोल रहा हूँ, सामान्य समझ में आ जाने जी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा।
4: क्या बात,
3: तर्क करके कोई चीज बढ़ाने से कोई मतलब नहीं, भगवान ने कर्म प्रधान बनाया है विश्व को, आपको तो सुकर्म करना है बस,
4: कर्म योगी है
3: बस, कर्म किए जाओ
4: योग युक्त होकर
3: बस,
4: आराम से निस्वार्थ
3: बस,
4: तो जरूर इसका निवारण एक ही है जैसे हम लास्ट में बता भाई, सबका मूल आधार है जो परमात्मा प्रति और खुद का प्रति विश्वास होना,
3: विश्वास होना चाहिए
4: और दृढ़ता होना चाहिए आत्मा में, दृढ़ता जो बात
3: सुकर्म किए जाए,
4: किए जाए जैसे गिलहरी हो चाहे हमारा पंछी, अपना दृढ़ता दिया भाई हम करे
3: करे, बिल्कुल तब जाकर
4: बाघ हाथी सभी था जंगल में आग लगा तो भाग गए,
3: बिल्कुल लेकिन वो करने लगे,
4: करने लगे तो उसका आज
3: नाम है, नाम है, नाम है।
4: तो हम सब कौन है एक एक,
3: बिल्कुल
4: उसको सहयोग करने के लिए, आग को
2: ये जंगल में आग लगे हुआ, दुनिया पूरा जंगल जैसे
3: जल रहा है,
2: जंगल जल रहा है ना,
3: जल रहा है,
2: जहाँ भी जाए स्टेप बाई स्टेप जल
3: जल जल रहा है,
2: जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, राख हो जाएगा,
3: बिल्कुल
2: हो गया कि नहीं सर?
3: बिल्कुल सर,
2: आग लग गया मीन्स रुकने वाला,
3: वो आग लग ही गई है, इम्बेलेंसिंग हो रहा है, वो आ गई है,
2: घर घर में अशांत,
3: हाँ अशांति है, वही आग है,
2: सुख नहीं, वही आग है, वो स्थूल आग तो दिखा देगा,
3: जी जी,
2: हेलीकॉप्टर में पानी डालकर,
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: लेकिन इस ये जो आग लगा है,
3: हाँ उसके लिए, हाँ उसके लिए तो आपको अपने स्तर से ही जागना होगा,
2: ये खुद को लिभाना होगा सर, कोई आएगा तो
3: दूसरा नहीं आएगा,
2: आएगा फिर भी आपको उसका बात मानना पड़ेगा,
3: हाँ, हाँ, बिल्कुल तब ना,
2: तब तब आपको ध्यान से
3: सुनना,
2: तो ये था हमारा निवारण का स्टेप है,
3: नमस्कार,
2: राज्योग और जो आत्मचिंतन और प्रकृति चिंतन पर्यावरण चिंतन करिए,
3: ये सब चिंतन करिए, स्वस्थ बनिए और राजयोग कीजिए,
2: अंतरात्मा से निकलेगा सर, ये गारंटी है, अंतरात्मा खुद बोले कब तक मैं दस रत्नाकर भी अपना चेंज हो गया,
3: बिल्कुल बिल्कुल सर,
2: डाकू पंचम सिंह
3: सब सब चेंज हो, सब चेंज हो,
2: चंडा शोक से
3: सर, अभी कितने
2: ये जो, सर, असक, सर,
3: असक कितने नक्सलवादी समर्पण किए,
2: सब करेंगे, समय करते ही रहेंगे, समय आ रहा है, और समझदार सभी
3: समझदार
2: हम भी समर्पण कर लेंगे, जैसे आपने समर्पण की भावना की, दृढ़ता ली,
3: इसी से होगा,
2: इससे होगा, और ये सब आध्यात्मिक प्रेमी सभी ये
3: सभी मिलके
2: आज हमें प्रकृति यहाँ तक पहुँच जाते, फिर हम ब्रेक करेंगे तो जरूर हमें अपना स्तर को अपना स्थिति को आ पाएंगे, ये ही निवारण का एक रास्ता है,
3: तरीका है,
2: और ये कोई मनुष्य कोई शास्त्र पाए स्वयं जो डायरेक्टर है, जो निर्देशक है, जो रचयिता है, उनका ही नहीं तो हमारे पास कैसे आया,
3: सही बात है, उन्हीं का निर्देश,
2: हम आत्मा में वो चीज जब रखेंगे तो जरूर आपको कैसे लगा, जी आत्मा का जो स्वधर्म है,
3: जी जी जी,
2: वो आज नहीं है,
3: हाँ हाँ स्वधर्म की तरफ जाएंगे तभी होगा, तभी होगा,
2: परधर्म है सर, अशांत
3: अशांति अशांति
2: पवित्रता
3: शांति और आनंद में रहने वाली है
2: आत्मा है, लेकिन उसको क्या कर दिए, अशांत कर,
3: अशांत कर दिए,
2: वातावरण का चल अशांत हो गया, घर में जाते
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: कोई कुछ बोल मारपीट हो जाता है घर में,
3: सही बात है, सही
2: है, तो अपना सौदर में शांति प्रेम आनंद और ज्ञान
3: ज्ञान सभी कुछ सभी साथ में,
2: तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जाते जाते अपना एक पॉइंट बताया, सबका मूल जो निवारण है खुद को पहचाना और खुद क्या कर, खुद से और आत्मा से
3: जग जाओ,
2: जग जाओ,
3: जग जाओ, धन्यवाद साहब, धन्यवाद
2: धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, इसी एपिसोड में आप यहाँ तक रखते हैं, फिर अगला एपिसोड में मिलेंगे श्रीमान गोपाल राम पुरेश जी से।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीज़ें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूँ, सपोज पाँव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पाँव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे

0: चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, चाय गिर गई, चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे, उठकर साफ करेंगे. ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है. क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं. इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है. अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, दाग लग जाएगा. और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीज़ें गिरती गई गिरती गई गिरती गई. लास्ट कब साफ किया और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए.

0: की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम कार्यक्रम एक नारी शक्ति पर आधारित है। हर एक महिलाओं में कोई न कोई विशेषताएं होती है, लेकिन वो विशेषताएं बाहर तक नहीं आ पाती है। लेकिन रेडियो मधुबन का मंच ऐसा है जिसके द्वारा आप अपनी आवाज, आप अपने विचार, आप अपनी बात को सभी तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी नारी शक्ति आज हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो में विराजमान है, जिनका नाम है नीलम शर्मा। आप आबू तलेटी में रहते हैं। आपने पढ़ाई नहीं की है, आपकी उम्र 50 वर्ष की है। शिक्षा का अभाव है जो आज भी आपको खलता है। बाकी आप कढ़ाई बुनाई और मधुर व्यवहार आपका सभी के साथ है और घर बार तो सभी संभालते हैं। और एक नारी शक्ति घर परिवार को कितनी बखूबी संभालती वो आप सभी जानते ही है। तो आइए मिलवाते हैं नीलम जी से। नमस्कार नीलम जी।
1: नमस्ते दीदी,
0: बहुत बहुत स्वागत आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: थैंक यू दीदी।
0: तो नीलम जी, चलिए हम आपके बचपन की तरफ चलते हैं थोड़े समय के लिए। आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता?
1: सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है।
0: सोनीपत हरियाणा?
1: जी हरियाणा।
0: अच्छा जी।
1: उधर मेरा जन्म हुआ था और एक गरीब परिवार से जन्म हुआ था। हम 7 भाई बहन हैं
0: जी।
1: 3 भाई हैं 4 बहनें।
0: अच्छा, आपका नंबर कौन सा था?
1: मैं सबसे लास्ट हूँ।
0: क्या बात है, आप तो सबसे छोटे, तो आपके ऊपर इतना लोड नहीं रहा होगा?
1: नहीं, लोड तो नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे मास्टर मारते पीटते बहुत थे बच्चों को।
0: अच्छा।
1: तो मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन भाइयों ने मेरे को भेजा नहीं। कह रहे नहीं नहीं, बहुत मारते हैं, तू मार नहीं सहन कर पाएगी। तो इस कारण से मेरे को स्कूल में भेजा ही नहीं।
0: अच्छा, तो आप कोई भी बहन ने पढ़ाई नहीं की?
1: कोई बहन ने पढ़ाई नहीं।
0: भाइयों ने की?
1: हाँ, भाइयों ने किसी ने 8, किसी ने 10, किसी आगे नहीं।
0: अच्छा, इससे ज्यादा नहीं। तो आपके पढ़ने की इच्छा थी?
1: जी।
0: तो आप कहते ना कि भाई मैं गलती करूंगी तो मुझे मारेंगे, बिना गलती मुझे कैसे मारेंगे, मुझे पढ़ने दो।
1: लेकिन कोशिश तो करी थी, किसी ने मेरा नाम ही नहीं लिखवाया वहाँ पे।
0: अच्छा, पढ़ने की बड़ी इच्छा थी लेकिन नाम नहीं लिखाया और आप पढ़ाई से वंचित रहे।
1: जी।
0: तो आपकी सखी सहेलियां भी रही होगी, वो भी सभी अनपढ़ी थी या उन्होंने पढ़ाई की?
1: बस एक ही थी, वो भी कम ही पढ़ी हुई थी, बाकी खेती थी हमारी, तो खेत वगैरह का ही काम था।
0: अच्छा, खेती बाड़ी संभालते थे।
1: जी।
0: और आपस में आप सभी भाई बहन कैसे रहते थे?
1: मैं सबसे छोटी थी तो बस एक भाई के साथ में मैं अच्छे से बोल लेती थी, बाकी के साथ में तो चुपी रहती थी।
0: अच्छा, उम्र का ज्यादा गैप था क्या?
1: जो बड़ी बहनें वे सब जब मैं 2 साल की थी इनके साथ हो चुकी थी।
0: अच्छा जी जी। तो एक भाई के साथ आपकी अच्छी बनती थी, जो आपसे बड़े थे?
1: हाँ।
0: उनको आप दिल खोल करके बात करते थे?
1: हाँ, उनसे अच्छे से बात।
0: लड़ाई झगड़ा भी होता था कभी? चिटचैट
1: होती थी।
0: और बाकी तो भाई बड़े हैं, बहनें बड़ी हैं, तो शादी हुई होगी तो आपके सामने भाभियां भी रही होगी, आपके जीजा जी भी आए होंगे। तो भाभियों के साथ किस तरह का तालमेल था?
1: बस जो छोटे वाले हैं उनके साथ में थोड़ा अच्छा था, क्योंकि वो मेरे साथ सीखे थे, बाकी बड़ों के साथ में तो ऐसे ही जैसे माँ बाप के सामने रहते हैं।
0: जी जी। उस समय की बात कर रहे हैं जब मर्यादाएं हुआ करती थी, भाभियों को भी माँ के समान देखा जाता था।
1: जी।
0: तो ज्यादा ऐसे हंसी मजाक वगैरह नहीं होती थी?
1: नहीं।
0: फिर आपको कोई चीज चाहिए तो आप किसको कहते थे, अपने माता जी को या भाइयों को?
1: मम्मी को बोलती थी।
0: जी जी, चलिए अच्छी बात है। और खेती बाड़ी में आप क्या काम करते थे?
1: खेती बाड़ी में हर प्रकार की खेती होती थी, जैसे भुट्टे वाला मक्का होता और सगरगंदी वगैरह, गेहूं भी होते, धान भी होते, सभी खेती होती थी, सब्जी भी सभी होती है।
0: तो आप क्या करते थे, बोतने का काम करते थे या पानी या केयर करने का, पंछी पक्षी कहीं आपके दाने नहीं खा जाए ऐसे?
1: नहीं, जैसे भाई वगैरह जाते थे तो उनका खाना देने के लिए चले जाते थे और थोड़ा अपने खेत को चारों तरफ से देखते थे, बाकी तो काम तो कोई और ही करते थे।
0: भाई लोग खेत पर जाते तो आप खाना लेके जाते, बना के आपके भाभियां देती, तो आप किचन में मदद करते थे?
1: जी।
0: अपनी भाभियों की मदद करते थे?
1: जी।
0: अच्छा, और आप सबसे छोटे हैं तो प्यार तो बहुत आपको मिला होगा सभी का?
1: हाँ
0: जी,
1: सभी का बहुत प्यार मिला है।
0: खेती बाड़ी में जाना आपको अच्छा लगता था? आप टिफिन लेके जाते थे, फिर वहाँ खेतों को निहारते थे, और आपको क्या अच्छा लगता है?
1: बस ऐसे जैसे सभी खेतों में होते थे, उनके साथ में ऐसे ही चिट चैट करना, थोड़ा पेड़ पौधों पे चढ़ जाना।
0: अच्छा।
1: ऐसे खेल कूद में
0: पेड़ पौधों पर क्या तोड़ने के लिए, कुछ फ्रूट तोड़ने के लिए?
1: हाँ, जैसे कोई अमरूद तोड़ने के लिए, कभी जामुन तोड़ने के लिए, ऐसे कई बार पेड़ से गिर भी गई थी।
0: अच्छा, वो तो चढ़ेंगे तो गिरेंगे भी है, लेकिन बचपना होता है ना तो गिरने का भी डर नहीं रहता है कि गिरे तो फिर से संभलेंगे और फिर से चढ़ेंगे।
1: वही वही।
0: तो कभी कोई डांटते नहीं थे कि भाई गिर गई हो, लगी है, अब नहीं चढ़ना है?
1: डांटते थे लेकिन बचपना था, फिर कर देते थे वही।
0: जी जी जी, वो मजा ही अलग है। भले सब नीचे अपने को मिल जाता है, कि किसी को बोलते तो कोई आपको हाथ में लाके दे देते हैं। हाँ। लेकिन एक चढ़ करके तोड़ के खाने का मजा ही अलग था।
1: वो अलग है।
0: और आप क्या क्या काम करते हैं?
1: जैसे सिलाई वगैरह करते थे।
0: अच्छा, सिलाई आती थी?
1: हाँ,
0: सिलाई कहाँ से सीखी आपने?
1: सिलाई मैंने घर से ही सीखी थी, और सिलाई वैसे तो कम ही आती थी, लेकिन फिर जैसे ससुराल में चले गए थे उस टाइम के बाद थोड़ी सी कुछ परिस्थिति आई, तो उस टाइम पे थोड़ा सिलाई का।
0: अच्छा, बाद में सीखा, पहले नहीं सीखा था?
1: पहले सीखी थी लेकिन कम ही करते थे।
0: जी, आप सबसे छोटे थे, इतनी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। आपकी भाभियाँ थी, माताजी थे। हाँ। बहनें थी बड़ी। हाँ। तो वो करते होंगे। हाँ। लेकिन आपने वो ध्यान नहीं दिया होगा।
1: हाँ
0: जी जी। और किचन में आप क्या बनाते थे, किस तरह की मदद करते थे अपने मम्मी और भाभी?
1: ऐसे जैसे बर्तन वगैरह धुलाई कर दिए, थोड़ी साफ सफाई में, खाना तो बाकी वही बनाते थे।
0: अच्छा। कभी खाना नहीं बनाया आपने शादी के पहले?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो कभी जैसे कोई घर पर नहीं है, कुछ बनाने का आपको बोल दिया
1: तो बनाते थे?
0: अच्छा, ऐसे ज्ञान था।
1: ऐसे तो बना लेते, रोटी सब्जी सब कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी।
0: जी जी। और आप बता रहे कि आपके सखी एक ही है?
1: हाँ, वो एक ही है।
0: तो आपके मोहल्ले में एक ही?
1: नहीं, और भी थी, लेकिन ज्यादातर उन्हीं के साथ मैं ज्यादा रहती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ। और उससे पहले एक और भी थी जिसको थोड़ा सांप ने काट लिया था और उनकी डेथ हो गई थी।
0: अच्छा, तो क्या सांप भी निकलते थे क्या आप जा रहते थे वहाँ?
1: पता नहीं, वो जैसे अपने ही घर में कोई पैसे उसने छुपा रखे थे वहाँ पे, तो उनकी मम्मी ने बोला कि कुछ सामान लेके आना है, तो वो वहां से पैसे निकालने लगी, कह लगी पता नहीं मेरे हाथ में कुछ लग गया, तो एक दो घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई।
0: अच्छा, तो फिर कैसे पता चला, वो सांप पकड़ में आया?
1: नहीं, सांप पकड़ में नहीं आया, बस फिर जैसे वो नीली हो गई, जहर चढ़ गया, तो यही लगा कि वहां से पैसे निकाल थी, शायद फिर वहीं पे इसको कुछ
0: काट दिया। ओहो, पता भी नहीं चला और सांप भी पकड़ में नहीं आया। कितने बड़ी होगी और उसकी डेथ हुई इस तरह?
1: नहीं, उसकी डेथ हुई जब वो होगी 16-17 साल तक की।
0: अच्छी बड़ी होकर गई।
1: काफी जी, बड़ी जी।
0: थी। आपको तो उस समय बहुत ऐसा लगा होगा कि जैसे मेरा कोई नहीं लगता है ना?
1: बिल्कुल।
0: सखियों के साथ जितना हम खुल करके बात कर सकते हैं, उतना किसी के सामने नहीं कर सकते।
1: किसी के सामने नहीं कर सकते
0: जी। बिल्कुल। थोड़े हंसी मजाक भी कर लेते हैं। हर प्रकार से हम जैसे चाहे सखियों के साथ रह सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप तीन सखियां थी जी, फिर आप दो ही रह गए?
1: फिर हम दो
0: ही। तो खेती बाड़ी में आप दोनों साथ में जाते या फिर आप ही जाते?
1: नहीं, साथ साथ में भी चले जाते थे हम, कभी उन्होंने भी जाना होता था जब कह देते ठीक है चलो आज दोनों चलते हैं
0: जी,
1: तो दोनों चले जाते थे। फिर ऐसे थोड़ा जैसे पापा के भाई थे, चाचा हमारे
0: जी,
1: तो उनके साथ में ज्यादा हमारी टकराव ज्यादा रहते थे।
0: अच्छा, क्यों, कारण?
1: बस कुछ ऐसा होता था, जैसे मैं तो जब जन्म लिया था मैंने, एक दो साल की होंगी तभी मेरे पापा की डेथ हो गई थी।
0: अच्छा, तो आपने तो पिताजी को देखा ही नहीं?
1: नहीं, मेरे कोई शक्ल भी याद नहीं है मेरे पापा की
0: जी।
1: तो उसके बाद में फिर जैसे चाचा अम्मा को दबा के रखना चाहते थे
0: जी।
1: एक बार चाचा ने काफी कुछ हमारे साथ में मारपीट की, भाभी का हाथ तोड़ दिया था।
0: भाभी के ऊपर भी हाथ उठा दिया?
1: हाँ, भैया का सिर फोड़ दिया था और हमारी भैंसों को जहर वगैरह भी दे दिया था।
0: तो भैंसे भी मर गई?
1: सब मर गई थी।
0: फिर आपने पुलिस केस नहीं किया?
1: सब कुछ हुआ था लेकिन मैं तो उस टाइम पे बिल्कुल छोटी थी
0: जी,
1: तो सब कुछ किया था। मेरी मम्मी के भी अंगूठे भी खा लिए थे।
0: अच्छा,
1: उनकी लड़की? हाँ, काफी कुछ हुआ था।
0: चलिए नीलम जी, और भी आपके अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चाहे गीत सुनने का, तो एक गीत सुन करके पुणे लौट रहे हैं, कहीं भी जाइएगा नहीं। नीलम जी के अनुभव और भी बाकी है जो हम बाद में सुनेंगे, पहले सुनेंगे गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ओम।
1: नारी केवल रिश्तों की डोर नहीं, नारी केवल रिश्तों की डोर नहीं, आधुनिक युग की मजबूत हकदार है। वो चलती है स्नेह भी लेकर, वो चलती है स्नेह भी लेकर, और हर कदम पर प्रखर प्रहार है, और हर कदम पर प्रखर प्रहार है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में नीलम जी हमारे साथ बने हुए हैं। नीलम जी के काफी अनुभव हमने सुने हैं, और आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। तो नीलम जी, जैसे आप बता रहे थे कि आप साल डेढ़ साल के थे और आपके पिताजी का देहांत हो गया
2: जी।
1: फिर चाचा जी ने बहुत खराब व्यवहार किया, हाथ भी तोड़ दिया आपके भाभी के, आपके मम्मी के हाथ की उंगलियां खा गए, भाई का सिर फोड़ दिया, आपके जो भैंसे थी उनको जहर दे दिया
2: जी।
1: पहले तो ये बताइए कि आपका गांव कितना बड़ा था, शहर था या गांव था?
2: गांव था,
1: गांव था। तो आपके आसपास के लोगों ने या और भी रिश्तेदारों ने कुछ कहा? नहीं,
2: सभी आए थे, लेकिन जो हो गया तो उसको तो कोई बदल नहीं सकता था उस टाइम पे
1: जी।
2: लेकिन उसके बाद फिर पुलिस केस वगैरह हुए, काफी दिन तक केस चले
1: जी।
2: लेकिन हमारे चाचा का यही रहता था, थोड़ा सा चलते थे, एक केस खत्म हुआ दूसरे के साथ में फिर कर देते थे।
1: आपके साथ ही करते थे
2: और किसी के साथ में भी कर देते थे?
1: अच्छा।
2: लेकिन हमारे साथ में कुछ ज्यादा करते थे।
1: अच्छा, तो वो हर एक के साथ ऐसे झगड़ना करना?
2: हमारे साथ में तो इसी बात पे किया था कि उनका घर नीचे की साइड में था, हमारा ऊपर की साइड में, कह रहे यहाँ से ना पानी नहीं जाने देंगे आपका।
1: अच्छा।
2: जो ढलाव में पानी जाता था, क्योंकि पानी नहीं जाने देंगे, तो कह लगे भी पानी तो यहीं से ही जाएगा
1: जी।
2: तो ऐसे करके उन्होंने हमारा पानी रोक रखा था
1: जी।
2: फिर पड़ोसियों ने आके भाइयों को बोल दिया तुम खोल लो, हम खड़े हैं
1: जी।
2: जैसे उन्होंने उस पानी को खोला तो बस उस टाइम पे फिर मारपीट उन्होंने शुरू कर दी।
1: तो आपके तो चार भाई है, वो तो अकेले चाचा जी थे?
2: नहीं नहीं, उनके भी चार पांच लड़के थे, और उसके पास में और भी कोई आते थे बाहर के भी।
1: बाहर के लोग भी सपोर्ट करते थे?
2: हाँ।
1: तो सबने मिल के मारा? तो उस समय गांव वालों ने कुछ नहीं किया जब उन्होंने कहा कि आप खोलो? तो
2: बस उस टाइम पे देखो, बीच में लड़ाई के बीच में जब मारपीट होती है तो तब कोई नहीं जाता है
1: जी।
2: लेकिन फिर भी कुछ इंसान आगे आके छुड़वाने के लिए आए थे
1: जी,
2: छुड़वाया था। उसके बाद फिर केस वगैरह आगे चले गया
1: जी। तो आपके एक ही चाचा जी है?
2: एक ही थे, वो भी चले गए अब तो
1: जी। लेकिन ऐसे वो बहुत उन्होंने,
2: हाँ बहुत कुछ उन्होंने
1: जी
2: किया।
1: तो
2: हाँ।
1: उनके बेटे भी ऐसा ही करते थे जैसे चाचा कहते वैसे ही करते थे उनके बेटे? हाँ। या वो थोड़े अक्कल वाले थे?
2: बस एक ही उनका अच्छा था, जो नहीं मानता था, वो अपनी पत्नी को लेके कहीं बाहर चला गया था, कैसे ना कैसे करके उन्होंने खत्म करवा दिया।
1: बेटे को ही खत्म करवा दिया?
2: उनको भी खत्म करवा दिया था।
1: अच्छा, ये तो बड़े खतरनाक बात है। तो आपके
2: फिर जैसे उनकी बहू को भी एक बेटा था, उन्होंने अपने घर पे जन्म दिया, वहीं पे पाला, कम से कम 10-12 साल का हो गया, वो वहीं पे बैठी थी कि भाई मेरे को ले जाएं, लेकिन कोई इसको लेने नहीं जा रहा था। तो फिर जैसे थोड़ा सा वो बड़ा हो गया था, बड़ा होने के बाद उसको खोस लिया, लड़के को भी
1: खुद ले गए, लड़के को ले गए?
2: लड़के को भी उन्होंने खोस लिया।
1: क्यों, लड़के को क्यों ले गए भाई? आपने तो माता पिता को चाहा ही नहीं, फिर लड़के को कैसे ले जा सकते? उन्होंने केस नहीं किया?
2: बस वो बहू भी थोड़ी गरीब घर की थी, तो ज्यादा कुछ नहीं उसने किया, बस इंतजार ही किया। लेकिन लास्ट में सुनाई में आई है कि वो आ गई थी वहीं पे ही, अपने बेटे के पास में ही आ गई थी।
1: अच्छा, बेटा तो छोटा था, फिर पालन पोषण कौन करता?
2: उस टाइम पे दादा दादी जिंदे थे तो उन्होंने ही किया।
1: फिर वो बहू को ले आए?
2: नहीं, वो नहीं लेके आए। जब जैसे धीरे धीरे वो बड़ा हुआ तो थोड़ा सा हमारे चाचा जी चले गए, फिर उसके अंदर में थोड़ी हिम्मत आ गई कि मैं अब जाके अपना हक लूं, मेरा बच्चा है मैं उससे मिलूं, तो ऐसे करके फिर वो लास्ट में उधर आ गई थी।
1: अच्छा, फिर तो बेटा ने भी माँ को
2: हाँ
1: रखा। तो उनके साथ तो फिर अच्छे रहे, वो उनके भी चाचा चाची हो गए ना?
2: हाँ उनके भी चाचा चाची थे, लेकिन उस टाइम पे थोड़े सही रहे, लेकिन हमारे साथ में बाकी कुल मिला के अच्छा नहीं रहा था।
1: तो ये कितने साल आपके चला था?
2: ये कम से कम चला होगा 15-20 साल।
1: 15-20 साल बहुत लंबे होते हैं। आपके पिताजी की डेथ के बाद ही वो झगड़ते या पहले से झगड़ते आए?
2: डेथ के बाद ही।
1: अच्छा, बाकी आपके पिताजी का रुतबा था?
2: हाँ, बाकी उस टाइम पे कुछ नहीं करते थे।
1: तो बाद में उनको क्या सूझा, क्यों वो आड़ाई पर आ गए?
2: पता नहीं उनका क्या दिमाग में आ जाती थी, जैसे खेत में अच्छा कुछ हो जाता था उनके जैसे, तो पैसा आने के बाद उनके अंदर में एक अजीब सी फीलिंग हो जाती थी।
1: पैसा कहाँ से आता है उनका?
2: वो जो खेत में जाते थे ना
1: जी,
2: तो खेत से उनके पैसा आता था।
1: तो आपके शामिल तो नहीं था, अलग अलग था?
2: अलग अलग था।
1: अच्छा, तो वो पैसे को ऐसे बर्बाद करते थे?
2: बर्बाद कर देते थे।
1: तो बेटे कुछ नहीं कहते कि घर में पैसे नहीं है और आप झगड़ा?
2: बेटे भी उनके साथ में थे।
1: अच्छा, इसलिए वो सब ऐसे ही करते थे। तो कभी पुलिस तक वो पहुंचे? जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत जनों के साथ झगड़ते थे, तो कभी उनको अरेस्ट भी किया नहीं?
2: हाँ, अरेस्ट भी किया था उनको, लेकिन वही बात है, फिर आगे भी क्या होता है, पैसा वगैरह भर देते हैं और छूट जाते हैं।
1: जी जी जी हाँ।
2: तो केस तो काफी साल चला भी था
1: जी,
2: लेकिन फिर हो कुछ नहीं पाया, पैसा भर दिया गया और वे छूट गए।
1: जी जी जी। अभी कैसा है? अभी जैसे चाचा जी तो नहीं आपके, उनके लड़के हैं, तो वो सब आते जाते हैं परिवार में?
2: नहीं, आते जाते नहीं है।
1: पर अभी तो झगड़ा खत्म हो गया या अभी तक भी ऐसा ही है?
2: नहीं, झगड़ा तो खत्म हो गया है, लेकिन आते जाते नहीं है। किसी ने कभी बोलना हो तो बोल भी लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं है।
1: वो तो फिर रख के भी क्या करेंगे? हाँ। जब कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, इतना नुकसान पहुंचा चुके हाँ। हैं, कितनी भैंसे मरी होगी उस समय?
2: 5।
1: 5 भैंस। अब उनको मारने से उनको क्या मिला?
2: अब क्या बताएं, ये सोच रहे थे ना भाई अभी ये कहीं कहीं से पैसा, इनका नुकसान हो जाएगा, कहाँ से लगाएंगे केस में, इस प्रकार से मतलब उन्होंने सोच के ऐसा।
1: जी जी जी। और झूठ भी बोल दिया होगा, क्योंकि डायरेक्ट तो मारेंगे नहीं।
2: हाँ नहीं, ऐसे देखो देखा नहीं कुछ वो करते हुए, लेकिन जैसे ऐसे कभी किसी के साथ में हुआ नहीं कि भाई सभी भैंस एकदम से

0: बड़ों के सामने नहीं बोलना या विशेष डिमांड नहीं करना, पिताजी नहीं होने से भी बहुत सारी चीजें ऐसे लगता है ना कि माताजी दे नहीं पाएंगे, तो अपने मन को मारते थे या फिर आपको मिल जाता था जो चाहते थे वो?
1: नहीं, बस किसी बड़ी चीज की तैसी में डिमांड नहीं करती थी, क्योंकि हमने पता था अपने घर क्या हालात कैसे हैं
0: जी।
1: लेकिन कोई भी ऐसी छोटी मोटी कोई सूट है, कोई भी चीज है ऐसी मेरी, तो मम्मी को बोल देती थी, दिला देती थी।
0: अच्छा, मम्मी दिलाते?
1: भाई भी कोई ऐसे वो नहीं करते थे, सब अच्छे थे।
0: जी जी। और आपके तो बड़ी बहनें भी थी।
1: हाँ, बड़ी बहनें।
0: तो बहनों से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा।
1: बस बहनें तकरीबन ससुराल में चली गई थी
0: जी,
1: तो कई बार बहनों के पास में जाना हुआ, जैसे उनके छोटे छोटे बच्चे थे इस टाइम पे
0: जी,
1: तो कई बार चली जाती थी, काफी काफी दिन उधर रुकी आती थी। वहां का भी उनका सबका प्यार बहुत अच्छा रहता था, क्योंकि सबसे छोटी थी तो सबका ही लगाव था मेरे साथ में।
0: जी जी जी। और जैसे आप बड़े हुए, आप ने दुनिया देखना शुरू किया, तब आपके चाचा चाची आपको बुलाते थे या बिल्कुल बेटियों से भी बात नहीं करते थे?
1: नहीं, वो बात नहीं करते थे।
0: अच्छा, और उनके बेटों बेटियों से भी बात नहीं करना?
1: नहीं, कभी कभी कभार हो भी जाती थी, लेकिन वो बात नहीं थी कि उनके घर जाके बैठना।
0: हाँ
1: करना।
0: हाँ, वो कुछ नहीं था।
1: हाँ, ऐसा नहीं था।
0: जी जी जी।
1: बस निकलते राम रमी हो जाती थी।
0: जी जी,
1: बस इतना ही।
0: अच्छा, और आपको क्या शौक रहा?
1: सिलाई का भी शौक था मेरे को और पढ़ाई का भी शौक था। सिलाई का तो फिर भी कुछ हद तक मैंने पूरा किया, लेकिन पढ़ाई का नहीं हो पाया।
0: तो जैसे घर में बैठ के भी तो आप पढ़ सकते थे, कभी ये नहीं सोचा कि मैं घर पर बैठ कर ही अपना साइन करना है, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना सीखूं?
1: नहीं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। भाभी भी मेरी कोई सी पढ़ी लिखी नहीं है, और बहन भी पढ़ी लिखी नहीं है।
0: अच्छा,
1: भाई पढ़े लिखे थे
0: जी जी।
1: तो भाइयों ने भी कुछ फिर आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की।
0: जी जी, सभी उन्हीं उलझन में उलझे हुए थे।
1: जो मेरा छोटा वाला भाई था मास्टर, उसको इतना मार देते थे, वो चक्कर खा के बेहोश होकर गिर जाता था।
0: टीचर इतना मारते थे?
1: इतना मारते थे, तो इसीलिए वो कहता था, देख मैं इतना, मेरे को मार देते तू तो इतना सहन भी नहीं कर पाएगी।
0: तो इतना क्यों मारते?
1: पता नहीं क्या पहले के क्यों करते थे ऐसा, अभी तक
0: भाई बच्चे गलती करे तो उनको भाई समझाओ मारो, लेकिन ऐसे मारते थे कि चक्कर भी आ जाए?
1: हाँ, चक्कर खा के बेहोश हो जाता था।
0: ओ, तो फिर सुन करके तो दूसरे तो घबराएंगे ना, तो फिर कभी कंप्लेन नहीं की कि आप क्यों इतना मारते हो?
1: बस ऐसे कंप्लेन वगैरह का नहीं था उस टाइम पे इतना कुछ।
0: अच्छा,
1: इतना कुछ नहीं था, बस काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ।
0: चलो, अब उसका तो कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि समय बीत चुका है। तो नीलम जी, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर से समय हो चला है गीत सुनने का। तो ये गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: Jis ghar mein betiyan muskra de, jis ghar mein betiyan muskra de, wo ghar mandir ho jata hai. Uske aanchal ki thandi chhaya mein har dukh chhota ho jata hai. Uske aanchal ki thandi chhaya mein har dukh छोटा हो जाता है. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में नीलम जी हमारे साथ बने हुए हैं. नीलम जी, आपके काफी अनुभव हमने सुने हैं. अब इतना सा हम पूछना चाहेंगे कि आपके शादी कितने साल के थे और हुई, और शादी के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया?
2: जब मैं होंगी 24 साल के करीब तब मेरी शादी हुई थी
1: जी.
2: तो अगले ससुराल में भी 6 भाई थे, 2 ननद थी
1: जी,
2: ससुर नहीं थे, सास थी
1: जी.
2: सभी परिवार अच्छा था. और लेकिन जैसे जैसे ससुराल में रहे, सभी के साथ में अच्छे से रहे.
1: आपका ससुराल में कौन सा नंबर आता है?
2: ससुराल में मेरा 3रा नंबर आता है.
1: अच्छा अच्छा. गांव से कितना दूर था?
2: गांव से काफी दूर था. गांव से?
1: अच्छा, काफी दूर.
2: हाँ.
1: क्या नाम है आपके ससुराल के गांव का?
2: लेकिन है सोनीपत के उसमें, मुरथल.
1: मतलब मुरथल में आपकी शादी हुई. तो ये एक गांव है, कस्बा है, कैसा है?
2: सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ही लगता है.
1: मतलब गांव है या कस्बा है, शहर है?
2: शहर में लगता है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के नजदीक है, बिल्कुल लगता ही है.
1: जी जी. तो यहाँ पर भी बड़ा परिवार, सभी साथ में रहते थे?
2: साथ में रहते थे. दो जो बड़े जेठ थे वे बाहर गए हुए थे.
1: अच्छा, वो बाहर रहते थे?
2: वो बाहर रहते थे.
1: अच्छा, और आप लोग गांव में रहते थे?
2: हम गांव में रहते
1: थे. तो आपके हस्बैंड क्या काम करते थे?
2: इनका अपना काम था, बस थोड़े ही दिन रहे थे गांव में, फिर इनका अपना काम था. हम दिल्ली आ गए थे, इनका फ्रूट का काम था, हिमाचल से फ्रूट लेके आते थे और आड़त की दुकान पे सप्लाई करते थे.
1: होलसेल का?
2: होलसेल का
1: जी. तो फिर आप कितने समय ससुराल रह करके हिमाचल चले गए?
2: मैं दो साल के करीब रहे होंगे.
1: अच्छा, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आए? ससुराल में आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपको मिलता था?
2: हाँ, ठीक था, सब अच्छा था
1: जी. और ससुराल वाले भी, सास ससुर सभी अच्छे थे?
2: सभी अच्छे थे.
1: जेठ जेठानी देवर देवरानी
2: सभी अच्छे थे
1: जी. जी, तो दो साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला होगा
2: जी.
1: फिर उसके बाद आप हिमाचल चले गए, तो वहाँ पर आपको बहुत ही अकेलापन लगा होगा, क्योंकि बड़े परिवार से आप निकले.
2: नहीं, हिमाचल ऐसे बीच बीच में जाते थे, बाकी दिल्ली आ गए थे हम.
1: अच्छा.
2: हाँ,
1: फिर दिल्ली. तो दिल्ली आप अकेले रहते होंगे?
2: दिल्ली अकेले नहीं, साथ में रहते. हाँ, हस्बैंड के साथ में.
1: हाँ, वही आप. हाँ, और आपके हस्बैंड. हाँ, तो इधर तो इतना बड़ा परिवार, उधर आप दोनों जने, तो आपको बहुत ही ऐसे अकेलापन महसूस हुआ होगा.
2: ये तो है.
1: तो पूरे दिन आप क्या करते हैं? आपके हस्बैंड बिजनेस पर चले जाते हैं फिर?
2: वो करीब 10 बजे से बज जाते थे, उसके बाद घर का काम करना, कपड़े धुलाई, साफ सफाई, इसी में लगे रहते थे. और उसी टाइम पे था
1: बेटे का जन्म भी हुआ.
2: जन्म हुआ उसी टाइम पे, समय से सत्संग में जाने लग गई थी.
1: अच्छा, आप गर्भवती थे तब से आपको सत्संग मिल गया?
2: जी.
1: तो आप सत्संग में जाते थे
2: जी,
1: दिल्ली में
2: जी.
1: तो आप एक छोटे से गांव से बड़े शहर में आए, आपको पहले तो बड़ा अजीब लगा होगा कि ये मैं कहाँ आ गई. एक तो गांवों में तो मिलना जुलना चालू रहता है.
2: बिल्कुल.
1: अब शहरों में सब व्यस्त होते हैं.
2: हाँ,
1: तो कैसे आप समय व्यतीत करते थे? आपको ऐसा लगता होगा ना कि मैं किससे बात करूं?
2: नहीं, जिसके हम किराए पर रहते थे वो दीदी बहुत अच्छे थे
1: जी.
2: बहुत प्यार से रहते थे, ऐसे रहते थे जैसे अपने घर की तरह से. खाना भी मेरे पास ही आके खाते थे और अच्छे मिलजुल के रहते थे बहुत अच्छी तरह से.
1: जी जी.
2: उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया.
1: अच्छा.
2: हाँ, अच्छे से रहते थे.
1: तो आप कितने साल वहाँ?
2: वहाँ मैं 4 साल के करीब.
1: दिल्ली में?
2: दिल्ली.
1: फिर 4 साल बाद?
2: फिर 4 साल बाद जैसे इधर भी आए थे एक बार.
1: आबू
2: भी
1: जी.
2: तो पूरे परिवार के साथ में आए थे, बेटा भी और उनके पापा भी
1: जी.
2: तो उस टाइम पे ये इससे जुड़ चुके थे, इस सत्संग से.
1: जी जी.
2: तो फिर जैसे यहाँ आए उसके बाद, फिर वो जाने के बाद थोड़े से ऐसे सत्संग में जाते थे, उनको पसंद नहीं आता था कि भाई, कहते थे नहीं ये कुछ नहीं है, ढोंग होता है, ये होता है।
1: अच्छा, हाँ। फिर आबू आने के बाद आप अपने ससुराल गए?
2: नहीं, ससुराल नहीं गए। हाँ, फिर एक बार यहाँ से आके फिर एक बार वापसी चले गए थे।
1: हाँ, तो आप अपने गांव ही गए होंगे ना आपके?
2: हाँ,
1: ससुराल।
2: हाँ,
1: तो वहाँ पर फिर सभी ने कहा है कि इस सत्संग में नहीं जाना है, तो फिर क्या किया आपने?
2: तो फिर ऐसे करके इनकी तबीयत खराब हो गई, ये दौर चलते चलते तबीयत खराब होने के बाद ये एक दो साल बीमार रहे, और फिर इनको अचानक ही उल्टी दस्त वगैरह और उनकी उस टाइम पे फिर डेथ हो गई।
1: तो इलाज नहीं करवाया?
2: हाँ, हॉस्पिटल में ही थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे डेथ हुई तो इलाज ही चल रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया।
1: अच्छा, बेटा कितना बड़ा था उस समय?
2: 4 साल का।
1: 4 साल का ही था? आपके ससुराल में ही ये हादसा हुआ?
2: नहीं, ये हादसा हुआ करनाल में।
1: करनाल आ गए थे रहने?
2: जो हॉस्पिटल में?
1: नहीं, वो तो है, लेकिन रहते थे आप अपने ही घर में? ससुराल में ही रहते थे?
2: नहीं, करनाल में ही रहते थे।
1: अच्छा, करनाल में क्या बिजनेस था आपका?
2: नहीं, फिर उन्होंने दिल्ली से जब बीमार हो गए थे तो कहने लगे भाई मैं थोड़ा सा ऐसे एरिया में रहना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आ गए थे थोड़ा खुला खुला से उसमें।
1: अच्छा, करनाल आ गए रहने, और फिर यहीं पर यह तकलीफ शुरू हो गई?
2: जी।
1: और यहीं पर डेथ हो गई? तो फिर क्या किया आपने? आप अपने ससुराल जाकर रहे या फिर सीधे आबू आए रहने?
2: नहीं, ससुराल तो नहीं गई, थोड़े ही जैसे उनकी डेथ के बाद जो जेठ थे उनके थोड़े से मेरे प्रति गलत संकल्प हो गए थे
1: जी,
2: तो थोड़ा जिठानी के दिल दिमाग में ऐसा हो गया भाई मेरा घर उजड़ जाएगा, ये हो जाएगा
1: जी,
2: तो मैंने उसको बोला कि दीदी आप चिंता ना करें, मैं ऐसा कभी सुन नहीं सकती जो आप सोच रहे हैं
1: जी,
2: तो ऐसा कभी नहीं होएगा। तो फिर मैं बेटे को उधर से लेके और मैं कहीं बाहर आ गई, रेवाड़ी आ गई मैं।
1: रेवाड़ी क्या है?
2: बस ऐसे ही आ गई, रेवाड़ी की जान पहचान थी उधर, तो उनके उधर आके मैं किराए पर रहने लग गई।
1: 4 साल के बच्चे को लेके? उस समय आपके सास ससुर नहीं थे?
2: नहीं, ससुर तो पहले ही नहीं था, सास थी
1: जी। तो आपके सास ने कुछ नहीं कहा कि तू अकेली कहाँ जाएगी रहने, तू यही घर में रह?
2: नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा उस टाइम पे।
1: तो फिर रेवाड़ी में आकर
2: उन्होंने और उल्टा इल्जाम मेरे ऊपर ही लगा दिया कि तेरे वजह से ये हो गया वो हो गया, तो फिर इसीलिए मैंने वहां पर रहना फिर अच्छा नहीं समझा
1: जी। तो रेवाड़ी तो कोई नहीं था, आप अपने पियर जा सकते थे?
2: देखो, पियर में भी अब मैं सबसे छोटी थी और सबको ये हो जाता, मम्मी मेरी डेथ हो गई थी।
1: अच्छा जी जी जी। हाँ, तो भाई भाभी है तो फिर अपना अधिकार इतना नहीं रहता।
2: हाँ, फिर सभी को ये रहता उसके पास रहे उसके पास रहे, तो ये चीजें मैं फिर मैं उधर मैंने किसी को परेशान नहीं किया
1: जी। बहुत अच्छा किया। फिर रेवाड़ी में आपने क्या किया?
2: मैंने वहाँ पे आके सिलाई शुरू की।
1: अच्छा, तो पहले सिलाई सीखी होगी आपने?
2: नहीं, सिलाई मैं पहले से थोड़ी सीख रही थी ना, तो वहाँ पे मैं रेडीमेड जैसे ताड़ी के नीचे वाले पेटीकोट होते हैं वो मैं रेडीमेड सिलती थी।
1: अच्छा,
2: और बच्चे को पढ़ाती थी।
1: तो गुजारा चल जाता था?
2: बस चल जाता था
1: जी जी। तो चलिए नीलम जी के अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन फिर से समय हो चला है एक गीत सुनने का, तो एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद पुनः लौटेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। नारी को कमजोर कहने वालों, हिम्मत करो, पहले उसे समझो तो सही। नारी को कमजोर कहने वालों, हिम्मत करो, पहले उसे समझो तो सही। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में नीलम जी हमारे साथ है। नीलम जी के काफी अनुभव सुने हैं, और आइए और भी हम सुनेंगे। नीलम जी, जैसे आप बता रहे थे कि आपके हस्बैंड की डेथ के बाद आप रेवाड़ी चले गए रहने के लिए, 4 साल के बच्चे को लेकर। उस समय आपके पास कोई काम धंधा नहीं था, क्या करेंगे क्या नहीं कुछ पता नहीं था। फिर वहां आकर के आपने सिलाई शुरू की, फिर कैसे आप आगे बढ़े? और वहां पर किसी का सपोर्ट मिलता था?
3: नहीं, जैसे कुछ मेरे को इंश्योरेंस था इनका, तो वो पैसा मिला था, उधर ही मैंने घर ले लिया था।
2: अच्छा।
3: और बस ऐसे सिलाई वगैरह करती रही, थोड़ा किराए पे भी मैंने दे दिया था उधर।
2: अच्छा, घर रेवाड़ी में खरीदा आपने?
3: जी।
2: तो आपको घर में से तो कुछ नहीं मिला हिस्सा?
3: नहीं मिला, उधर से तो कुछ नहीं मिला था, इंश्योरेंस था, मैं वहां से कुछ नहीं लेके आई।
2: अच्छा अच्छा, हाँ वो इंश्योरेंस था जो उससे आपके बच्चे का भी गुजारा। हाँ। और आपका मतलब घर भी खरीद सके।
3: हाँ।
2: तो ये अच्छा किया कि कम से कम अपना घर होगा तो कोई निकालने वाला तो नहीं मिलेगा।
3: भाई भाई।
2: फिर आप आबू तलेटी कैसे आए?
3: जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी रही, तो मैंने बस ये ठान लिया, भगवान भी कहते हैं कि लास्ट में इधर ही आना है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अभी से ही अपने जाने की तैयारी करूं। बीच बीच में इधर मैं माउंट आबू आती रहती थी।
2: तो ये अच्छा लग गया आपको?
3: अच्छा लगता था जब अपने बहन भाइयों का इतना प्यार, इतना स्नेह से मिलन देखते थे, बाबा का प्यार, तो फिर मैंने ठान लिया कि अब मैं यहाँ से अब रोड चली जाऊंगी।
2: बच्चा कितना बड़ा था और आप इधर आए?
3: अब तो बड़ा हो गया था बच्चा, काफी 17-18 साल का हो गया।
2: और आपको इधर आए हुए कितना समय हो गया?
3: 5-6 साल हो गए।
2: 5-6 साल हो गए, तो अच्छा लग रहा है यहाँ आपको?
3: हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान के प्यार में, सभी भाई बहनों के स्नेह में, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
2: जी, कहते हैं ना कि आपके 4 साल का बच्चा था और आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, बहुत जने दूसरी शादी कर लेते हैं, आपने कभी सोचा नहीं?
3: नहीं, लेकिन देखो परिस्थितियों को देखते हुए देख रहे थे, और फिर थोड़ा सा सत्संग की तरफ भी थे।
2: जी,
3: तो इसी कारण से फिर समझा कि ठीक है, जो भी हमारी किस्मत में था वो मिल गया है, अब भगवान में जुड़ गए तो फिर दूसरी तरफ नहीं देखा।
2: जी जी, बिल्कुल आपने सोचा ही नहीं, क्योंकि आप सत्संग में शुरू से जाते थे इसलिए।
3: जी,
2: चलिए बहुत अच्छा। और बच्चे को कहाँ तक पढ़ाया आपने?
3: बच्चे ने 10 की थी बस, उससे आगे इसका दिमाग नहीं चला, बाकी ये और काम, हर काम कर लेता, इससे कोई काम भी नहीं छूटा। शायद ऐसा महसूस होता जैसे पिछले जन्मों का कोई इंजीनियर है।
2: अच्छा।
3: इससे कोई काम नहीं छूटा, हर काम को कर लेता ये।
2: चलिए बहुत बढ़िया। और आपके ससुराल जाते हैं आप?
3: नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाती हूँ, ना मायके जाती ना ससुराल जाती।
2: नहीं बुलाते वो, या फिर आपने अपने मन से?
3: मैं जाती ही नहीं हूँ।
2: और बच्चा अभी यहाँ पे खुश है?
3: हाँ खुश है
2: जी। सिलाई काम अभी भी करते हैं आप?
3: नहीं अभी नहीं करती।
2: तो अभी आप क्या काम करते हैं?
3: अभी बस थोड़ा सा ये SLPS कंपनी से जुड़े हुए हैं, और उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हम अभी इसी में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागृत करते हैं।
2: अच्छा, तो ये आपने कहीं से ट्रेनिंग ली?
3: हाँ, ये ट्रेनिंग चलती है हमारी ऑनलाइन।
2: अच्छा, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर के ऐसे आप जुड़े हैं?
3: जी।
2: तो आपका काम अच्छा चल रहा है?
3: जी अच्छा चल रहा है।
2: और फिर आपके रेवाड़ी में घर, उसका क्या किया?
3: नहीं, उसको बेच के हमने इधर ही ले लिया था।
2: अच्छा, इधर खरीद लिया।
3: हाँ,
2: चलिए बहुत अच्छा है। और नीलम जी, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जो हमारी बहनें सुन रही है उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
3: देखो, यही कहना चाहते कि अब खुद ही हम करेंगे तभी हमें सुख मिलेगा, दूसरों के ऊपर जिएंगे तो दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है।
2: जी जी जी, तो आपके कहने का मतलब यह है कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए।
3: जी,
2: तो बहुत अच्छा संदेश दिया है नीलम जी ने कि आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। दूसरों पर डिपेंड रहेंगे तो दुखी होंगे और आत्मनिर्भर बन के रहेंगे तो सुखी होंगे। बहुत ही सही मैसेज आपने दिया है, क्योंकि आपने भी सिलाई के द्वारा अपने बच्चे की पालना की है और स्वयं का भी किया है। तो नीलम जी के हिम्मत को दाद देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, जो आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन के अनुभव शेयर किए सभी के साथ इसके लिए।
3: थैंक यू दीदी, थैंक यू।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में नीलम जी शर्मा हमारे साथ बने हुए थे। आपकी उम्र 50 वर्ष की, आप हरियाणा से थे लेकिन अभी 6-7 वर्षों से आप आबू तलेटी में रहते हैं और आपके जीवन के अनुभव हम सभी ने सुने हैं कितने गहरे हैं। कम उम्र में आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और आपने पढ़ाई नहीं की है लेकिन सिलाई के द्वारा आपने 4 साल के बच्चे की परवरिश की, घर चलाया। उस समय आप किराए पर रहते थे, धीरे धीरे आपने घर भी खरीदा, बच्चे को भी काबिल बनाया और इस तरह आप अपने घर की गाड़ी को आज भी अच्छी तरह चला रहे हैं। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

ओम शांति। आज है 28 सितंबर 2026 और हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चे सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के हो, परंतु एक होते हैं मुख वंशावली ब्राह्मण, दूसरे हैं कुख वंशावली ब्राह्मण।

दुनिया के मनुष्य ये नहीं समझते हैं कि कुखवंशाली ब्राह्मण किसको कहते हैं या मुखवंशावली ब्राह्मण किसको कहते हैं। कोई भी शुभ कार्य कराना होता है तो ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। बाबा कहे इस समय तुम ईश्वरीय कुल के ब्राह्मण बनते हो, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के तुम बच्चे हो। तो एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप, जिसको तो सारी दुनिया जानते हैं। परंतु अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा को कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि समझते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में है। परंतु ब्रह्मा को अगर दाढ़ी मूछ दिखाई है, अर्थात इस साकार वतन में है, और अंतिम समय में वही प्रजापिता बनते हैं और आकर के तुम ब्राह्मणों को रचते हैं, तभी तुम कुखवंशावली ब्राह्मण बनते हो। तो यह हो गया अलौकिक पिता। तो तीन पिता का परिचय सबको देना है। साथ ही बाबा कहते हैं ब्राह्मणों के बिना यात्रा तो होती नहीं है। तो इस समय तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। दुनिया में लोग अमर लोक की यात्रा पर जाते हैं तो समझते हैं कि वहां शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वास्तव में बाबा कहते अमर लोक दो है, एक है परमधाम जिसको भी अमर लोक कहा, दूसरा है सतयुग जिसको भी अमर लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक ये दुनिया है, और शांति लोक या निर्वाण धाम व शांति लोक है। तो ये तीनों लोकों के बारे में भी तुम बच्चे ही अभी समझते हो। तो बाबा कहते हर एक को ये समझाने जरूर देनी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी ये बुद्धि की रूहानी यात्रा है, जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। ये बुद्धि की रूहानी यात्रा बाबा कहे तुम ब्राह्मण ही कर सकते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है? उत्तर, अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़ वापस घर जाएंगे। यह तन कोई काम का नहीं, अब तो बाबा के साथ जाएंगे। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, सबका कल्याण किस तरह हो, सबको रास्ता कैसे बताए। यही शुभ सम्मेलन है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण अपने कुल को जानते हैं। जो जिस कुल के होते हैं वह अपने कुल को जानते हैं, चाहे कम कुल वाले हो व अच्छे कुल वाले हो। हर एक अपने कुल को जानते हैं और समझते हैं कि इसका कुल अच्छा है। कुल कहो व जाति कहो, दुनिया में तो तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते कि ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है। पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों का, ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल। पहले है निराकारी कुल, फिर आते हैं साकारी सृष्टि में। सूक्ष्म वतन में तो कुल होता नहीं, ऊंचे से ऊंचा साकार में है तुम ब्राह्मणों का कुल। तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो, बहन और भाई होने कारण विकार में नहीं जा सकते। तुम अनुभव से कह सकते हो कि ये पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है। हर एक कहते हैं हम ब्रह्मा को
कुमार कुमारी है, शिव वंशी तो सब है, फिर जब साकार में आते हैं तो प्रजा पिता का नाम होने कारण भाई बहन हो जाते हैं। प्रजा पिता ब्रह्मा है तो जरूर रचता है, बाबा कहते प्रजा पिता ब्रह्मा है तो जरूर रचता है, एडॉप्ट करते हैं। तुम कुख वंशावली नहीं हो, मुख वंशावली हो। तो मनुष्य कुख वंशावली और मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं जानते। मुख वंशावली अर्थात एडॉप्टेड बच्चे, कुख वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले। तुम्हारा ये जन्म अलौकिक है। बाप को लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक कहा जाता है। प्रजा पिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहा जाता है। लौकिक बाप तो सभी को है, वह तो कॉमन है, पारलौकिक बाप भी सभी का है। भक्ति मार्ग में भी हे भगवान, हे परम पिता सभी कहते रहते हैं, परंतु इस बाबा यानी प्रजा पिता ब्रह्मा को कभी कोई पुकारते नहीं है। ये बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का। प्रजा पिता ब्रह्मा बाबा है ब्राह्मण बच्चों का। उन दोनों को तो सब जानते हैं, लौकिक पारलौकिक को तो सब जानते हैं। बाकी ब्रह्मा में मूंझ पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो है ही सूक्ष्म वतन में, यहां तो दिखाते नहीं है। चित्रों में भी ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, क्योंकि प्रजा पिता ब्रह्मा यहाँ सृष्टि में है। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रच नहीं सकते, यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। ये सब बातें बाप समझाते हैं। तुम बच्चों की यह रूहानी यात्रा भी गाई हुई है, बच्चों की रूहानी यात्रा भी गाई हुई है जो बुद्धि की यात्रा है। रूहानी यात्रा वह जहां से फिर लौट नहीं आना है। दूसरी यात्राएं तो सब जन्म जन्मांतर करते रहते हैं और जाकर लौट आते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा, ये तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इस रूहानी यात्रा करने से तुम मृत्यु लोक में नहीं लौटते हो। बाप तुमको अमर लोक की यात्रा सिखलाते हैं, वह कश्मीर तरफ अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। वह कोई अमर लोक नहीं है। अमर लोक एक है आत्माओं का, दूसरा है मनुष्य का, जिसको स्वर्ग अथवा अमर लोक कह सकते हैं। आत्माओं का है निर्वाण धाम, बाकी अमर लोक सत्ययुग और मृत्यु लोक है कलयुग, और निर्वाण धाम है शांति लोक, जहां आत्माएं रहती है। बाप कहते तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो, पैदल जाने की वह शारीरिक यात्राएं हैं, यह है रूहानी यात्रा। जो सिखलाने वाला एक ही रूहानी बाप है और एक ही बार आकर सिखलाते हैं, वह तो जन्म जन्मांतर की बात है, यह है मृत्यु लोक के अंत की यात्रा। यह तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। रूहानी यात्रा अर्थात याद में हो, रूहानी यात्रा अर्थात याद में हो। गाया भी जाता है अंत मते सुगति, तुमको याद आता ही है बाबा का घर। समझते हो कि अब नाटक पूरा होता है। ये पुराना वस्त्र पुराना तन है, आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है। जब आत्मा पवित्र बनती है तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता है, यह भी तुम बच्चे समझते हो। बाहर वाले तो कुछ नहीं समझते, तुम देखते हो कि कोई कोई समझते भी है, कोई की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं। समझने वाला होगा तो जरूर किसको समझाएगा। मनुष्य जब यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर अपवित्र बनते हैं। मास दो मास पवित्र रहते हैं। यात्रा की भी सीजन होती है, सदैव तो यात्रा पर जा न सके, ठंडी और बरसात के समय कोई जा न सके। तुम्हारी यात्रा में तो ठंडी व गर्मी की कोई
आती नहीं है। बुद्धि से खुद समझ सकते हो, क्या समझ सकते कि हम जा रहे हैं बाप के घर। जितना हम याद करते हैं उतना विकर्म विनाश होते हैं। बाप के घर में जाकर फिर हम नई दुनिया में आएंगे, ये बाबा ही समझाते हैं। यहां भी नंबरवार बच्चे हैं, वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए। क्यों? बाबा कहते यात्रा को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन माया भुला देती है। इसलिए लिखते भी है, बाबा आपकी याद भूल जाती है। अरे याद की यात्रा, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, ऐसी दवाई को तुम भूल जाते हो। वह यह भी कहते हैं कि बाबा को याद करना तो बड़ा ही सहज है। ये भी कहते हैं कि बाप को याद करना तो बड़ा ही सहज है, अपने साथ बातें करनी होती है कि हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गई है। अब शिव बाबा हमको युक्ति से बहुत अच्छी बातें बताते हैं। बाकी अभ्यास करना है, आंख बंद कर विचार नहीं किया जाता। बाबा ने एक्ट करके दिखाया, आंख बंद करके ऐसे विचार नहीं किया जाता। ऐसे अपने साथ बातें करो कि हम सतो प्रधान थे, हम ही राज्य करते थे, वह दुनिया गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एज में आ गए, अब आयरन एज का अंत है, तब बाबा आया हुआ है। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो और अपने घर को याद करो, जहां से आए हो तो फिर अंत मते सो गति हो जाएगी, तुमको वहां ही जाना है। यह युक्ति बाप बतलाते हैं कि सवेरे उठकर अपने से बातें करो। बाबा एक्ट करके दिखाते हैं कि हम भी सवेरे उठ विचार सागर मंथन करता हूं, सच्ची कमाई करनी चाहिए ना, सुबह का साय बेड़ी बड़े लाए, तो उस साय को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा जो करते हैं जैसे करते हैं वह बच्चों को भी समझाते हैं। इसमें खिटपिट की बात नहीं है, यह कमाई की बहुत अच्छी युक्ति है। अलफ को याद करने से बे की बादशाही तो मिल ही जाएगी। बच्चे जानते हैं कि हम राजयोग सीख रहे हैं, बाबा बीज रूप नॉलेजफुल है, तो हम भी झाड़ को पूरा समझ गए हैं। यह भी मोटे रूप में, बाबा कहते यह भी मोटे रूप में नॉलेज है। आदि से यह झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे उनकी आयु पूरी होती है, और झाड़ को तूफान आदि के लगने से गिर जाते हैं, परंतु इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का पहला फाउंडेशन देवी देवता धर्म प्रायलोक हो जाता है। यह भी होना ही है, ये सब गुम हो जाए तब कहा जाए कि एक धर्म की फिर से स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। एक धर्म की फिर से स्थापना और अनेक धर्म का विनाश। कल्प कल्प यह धर्म प्रायलोप होता है, आत्मा में खाद पड़ जाती है तो जेवर झूठा हो जाता है। बच्चे समझते हैं हमारे में खाद थी, अब जब हम स्वच्छ बनते हैं तो औरों को रास्ता बताते हैं। दुनिया तो तमो प्रधान है, पहले सतो प्रधान हेवन था, तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें अर्थात रूहान करनी चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर किसको समझाना होता है कि ये 84 जन्म का चक्र है। 84 जन्म कैसे लेते हैं, कौन लेते हैं? जरूर जो पहले आएंगे वही लेंगे। बाप भी भारत में आते हैं, आकर 84 का चक्र समझाते हैं। बाप कहाँ आए हैं यह भी नहीं जानते हैं। बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं, कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं,
मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, ऐसी समझाने कोई दे ना सके। बल गीता आदि सुनाते हैं, वहां भी लोग जाते रहते हैं, परंतु भगवान कभी तो आया होगा, ज्ञान सुनाया होगा, फिर जब आए तब सुनाए ना। वो लोग तो गीता पुस्तक उठाकर बैठ सुनाते हैं, यहाँ तो भगवान है ज्ञान का सागर, इनको कुछ हाथ में ले पढ़ना नहीं है, ये सीखता नहीं है। कल्प पहले भी आकर तुम बच्चों को संगम पर सिखाया था, शिव बाबा ही आकर सिखाते हैं, बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, यह है याद की यात्रा, तुम्हारी बुद्धि ही जानती है। सिवाय ब्रह्मा मुख वंशावली ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास ये ज्ञान होगा, सब में सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है। ये कोई नहीं जानते कि परमात्मा बिंदी है, ज्ञान सागर पतित पावन है, सिर्फ ऐसे ही गाते रहते हैं। गुरु लोग जो सिखाते हैं वह सत सत करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, न उस पर कभी विचार चलाते तो ये सत्य है व नहीं। बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में जरूर रहना है, नहीं तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते। कुछ भी कर्म करते रहो परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। बाबा कहते कोई भी कर्म करो लेकिन बुद्धि में बाप की याद रहे। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं तो बुद्धि में वह श्रीनाथ रहता है ना, बैठे ही मंदिर में है, जानते हैं कि हम श्रीनाथ के लिए बनाते हैं, भोजन बनाया भोग लगाया फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते रहेंगे। वहां भोजन बनाते हैं मुख बंद, बात नहीं करेंगे। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते समय मुख बंद बात नहीं करेंगे, मनसा से कोई भी कर्म नहीं बनता है। वह श्रीनाथ के मंदिर में बैठे हैं, यहाँ तो शिव बाबा के पास बैठे हो, यहाँ भी बाबा युक्ति बताते रहते हैं, बच्चे कोई फालतू बात नहीं करना, सदैव बाप से मीठी मीठी बातें करनी है, जैसे बाप वैसे बच्चे। बाप की स्मृति में रहता है कि चक्र कैसे फिरता है, तब तुम बच्चों को आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है, कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना, उस बीज को हम चैतन्य नहीं कहेंगे, ये नॉलेजफुल चैतन्य है, ये एक ही है। वह बीज तो अनेक प्रकार के होते हैं, भगवान को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो बाप हो गया ना, आत्माओं का बाप परमात्मा है, तो सभी ब्रदर्स ठहरे। बाप भी वहां रहते हैं जहां तुम आत्माएं रहती हो, बाप भी वहां रहते हैं जहां तुम आत्माएं निवास करती हो, निर्वाण धाम में बाप और बच्चे रहते हैं। इस समय प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई और बहन हो, इसलिए कहलाते हैं शिववंशी, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। यह भी तुमको लिखना है, क्या लिखना है? हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन है। बाप ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचेंगे तो भाई बहन ठहरे ना, कल्प कल्प ऐसे ही क्रिएट करते हैं, अडॉप्ट करते जाते हैं। मनुष्य को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहा जाता, भल बाबा कहते हैं परंतु वह है हद का, इनको प्रजापिता कहेंगे क्योंकि बहुत प्रजा है, अर्थात ढेर बच्चे हैं, तो बेहद का बाप बच्चों को सभी बातें बैठ समझाते हैं। ये दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई छीछी है, अब तुमको वाह वाह की दुनिया में ले जाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो भूल जाते हैं, अगर यह याद हो तो बाप की याद रहे और गुरु की याद रहे कि

अब वापस जाना है, पुराना शरीर छोड़ देंगे क्योंकि यह तन अब काम का नहीं है। आत्मा जब पवित्र होती है तो बाबा कहते शरीर भी पवित्र होना है, आपस में ऐसी ऐसी बातें बैठ करनी चाहिए। इसको कहा जाता है शुभ सम्मेलन, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हो, सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, कल्याण कैसे करे, इन्हों का तो छी छी सम्मेलन है, गपोड़े मारते रहते हैं। यहाँ गपोड़े आदि की कोई बात ही नहीं है, सच्चा सच्चा सम्मेलन इसे कहा जाता है। तुमको ये कहानी सुनाई है कि ये कलयुग है, सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, भारत स्वर्ग था, भारतवासी ही 84 जन्म भोगते हैं, अब अंत में है, भारतवासी ही 84 जन्म भोगते हैं और अब कहाँ है, अंत में है। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, इसमें कोई गंगा स्नान आदि नहीं करना है। भगवान वाच कि मैं सभी का बाप हूं, श्री कृष्ण सबका बाप हो नहीं सकता, एक दो बच्चे का बाप श्री नारायण है, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो कुमार है, इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे हैं, कहां श्री कृष्ण भगवान वाच, कहां शिव भगवान वाच, भूल कितनी बड़ी कर दी है। कहां भी प्रदर्शनी करो तो मुख्य बात यह है, कौन सी, गीता का भगवान यह है और वह। पहले पहले ये समझाना चाहिए कि भगवान शिव को कहा जाता है, ये बुद्धि में बिठाना है, इस पर प्रोब होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। गीता के भगवान का चित्र भी बड़ा परमानेंट होना चाहिए, बड़ा भी हो और परमानेंट भी हो। नीचे में लिख देना चाहिए कि जज करो और आकर समझो, फिर लिख कर सही लेनी चाहिए, सबकी सिग्नेचर लेनी चाहिए। बाबा के समझा करके सबकी सिग्नेचर तो ऑथेंटिसिटी आ जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं, अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है, कभी भी कोई व्यर्थ फालतू बातें नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करना है, भोजन बनाते एक बाप की याद में रहना है, मनसा भी बाहर न भटके ये ध्यान रखना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव, सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। जो बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं, वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना है, अभी से विश्व महाराजन नहीं बनना है, अभी विश्व सेवाधारी बनना है। स्नेह देना, देखना है कि अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया है। विश्व महाराजन बनने के लिए क्या करना है, सिर्फ ज्ञान दाता नहीं बनना है, इसके लिए सबको स्नेह और सहयोग दो। आज का स्लोगन है, जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगा। तो जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगी।
आज का व्यक्ति इशारा है, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा अब बच्चों से यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा मास्टर दाता बने। अब रहम दिल बन अपने गुणों का, शक्तियों का सबको सहयोग दो। फ्राक दिल बनो, जितना दूसरों को देते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। विनाशी खजाना देने से कम होता है और अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। 1-2 हजार पाव इतना बढ़ जाता है। 1-2 हजार पाव। अच्छा, ओम शांति।